फाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rvm। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rvasatyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, बावरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। और हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। साथियों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मन दर्पण, जिसका शीर्षक है हम में हो सबके लिए प्रेम भाईचारा, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं आस्था उपमन्यु, लेखक हैं कृष्णकांत दुबे और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

मन दर्पण के अंतर्गत लीजिए प्रस्तुत है वार्ता हम में हो सबके लिए प्रेम भाईचारा। इसके लेखक हैं श्री कृष्णकांत दुबे और प्रस्तुत करता है आस्था उपमन्यु। साथियों, बात वर्षों पुरानी है। विश्व कवि गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने एक बहुत ही सुंदर कविता की रचना की थी, जिसमें शांतिपूर्ण विश्व की सुखद मानवता की सबके लिए प्रेम और बंधुत्व के भाव से भरी एक व्यवहारिक कल्पना थी। वो कविता रचना निश्चित आज भी महानता की सीमा छूती है, जिसमें उन्होंने विश्व मानवता की एकता का स्वप्न देखा था। गुरुदेव ने अपनी उस रचना में लिखा था, सब जगह मेरा अपना घर है, मैं उसी घर को खोज रहा हूं। हर देश मेरा अपना देश है, मैं उसे अपनाऊंगा, परदेसी के रूप में जिस द्वार के भीतर झांक कर देखता हूं, मैं उसे अपना ही पाता हूं। भीतर जाने के मार्ग का मैं पता लगा ही लूंगा। हर घर में मेरे अपने ही बंधु हैं, उन्हीं को तो मैं खोज रहा हूं। साथियों, यही भाव विचार हमें विश्व भाईचारे की दिशा में प्रेरित करते हैं, जिनका कि हमें हर ओर अभाव नजर आता है। अगर हम गुरुदेव की भांति ये स्वीकार कर लें कि इस धरती पर बसे हर घर में मेरे अपने बंधुओं का ही निवास है, अगर हम अपने अंतर मन में इस भाव को जागृत कर लें, तब क्या हर दूर शांति का विस्तार नहीं होगा? पर इसके लिए हमें अपने मन में एक गहरी संवेदना जागृत करनी होगी, तभी हम इस भाव प्रकाश को अपने अंतर मन में जागृत कर सकेंगे। स्मरण आता है कि इस संदर्भ में सुप्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक श्री जे कृष्णमूर्ति ने अपने एक महत्वपूर्ण प्रवचन में कहा था कि संवेदनशीलता का अर्थ है अपने आसपास की समस्त चीजों के प्रति संवेदनशील होना, पौधों, प्राणियों और वृक्षों के प्रति, आकाश और नदी जल और उड़ते पंछियों के प्रति और अपने आसपास के आदमियों के प्रति, राह चलते अजनबी के प्रति भी। संवेदनशील होने का अर्थ है प्रेम। प्रेम शब्द का अर्थ मात्र प्रेम नहीं होता, प्रेम को ईश्वर का प्रेम और मनुष्य का प्रेम इस तरह बांटा नहीं जा सकता, और न उसे एक का प्रेम और अनेक के प्रेम के रूप में मापा जा सकता है। प्रेम उन्मुक्त होकर अपने आप को दे डालना है, जैसे फूल अपनी सुगंध देता है। जैसे कि श्री जे कृष्णमूर्ति ने कहा, ये संवेदनशीलता, ये प्रेम भाव हमें सबके प्रति प्रेम में बदल देता है। यहां हम विश्व भाईचारा, विश्व बंधुत्व भाव को ही तो पाते हैं। साथियों, यहां हम विश्व की महान लेखिका श्रीमती पर्ल बक की संवेदनशीलता, उनके मानवतावादी विचारों के संदर्भ में जाने तो हमें उनमें यही भाव विचार देखने को मिलेंगे। श्रीमती पर्ल बक अमेरिका में जन्मी, लेकिन वर्षों चीन की भूमि पर रही, वहीं निवास किया। उन्होंने वहां के मनुष्यों को अपनापन दिया, उनमें स्वयं अपनापन खोजा, उसी के अनुरूप अपने विचार संवारे। यही नहीं, वहां के मानव विचारों का अध्ययन ही नहीं किया, बल्कि उन्हीं के भाव विचारों को लेकर संपूर्ण अध्ययन करके एक अद्भुत साहित्य की रचना की। उन्होंने वहां के जनजीवन को सीधे खुली आंखों देखा। हम इस बात को भूले नहीं कि ये सब इसलिए संभव हुआ कि वे मानवता के प्रति पूरी तरह समर्पित थीं, और उन्हें अपने इसी मानवतावादी विचारों और उसी से पूरी तरह जुड़े लेखन से उन्हें विश्व के प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, उन्हें विश्व के कई अन्य श्रेष्ठ पुरस्कारों से नवाजा गया था। जब तक उनके महत्व विचारों को जानने का प्रयत्न हम करते हैं, उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो लगता है कि उनके सुंदर भाव विचारों में मानवता के लिए असीम प्यार, उसके प्रति संपूर्ण समर्पण, उसी सब के प्रति असीम नेह की अभिव्यक्ति, उसी को तो पाते हैं। एक दार्शनिक हुए हैं खलील जिब्रान। उन्होंने अपने लेखन, अपने प्रवचनों से मानवता का बड़े ही सुंदर ढंग से प्रतिपादन किया है। उनका ये वाक्य ही हमें एक दीप शिखा की तरह मानो प्रकाश देता सा लगता है।
उन्होंने अपने उस वाक्य में ये कहा था कि परमात्मा के निकट होना है तो मनुष्य के निकट हो जाओ। श्री खलील जिब्रान का कहा गया वाक्य यही तो अर्थ देता है कि हमें यही दिशा देता है कि मनुष्य के निकट होने पर हम अपने में मानवता का सही प्रकाश पा सकेंगे, उससे हम में प्रेम और बंधुत्व भावों का विस्तार कर सकेंगे। तब कहीं कोई भेद नहीं होगा, कहीं विग्रह नहीं होगा और हर ओर स्नेह और प्रेम का निरंतर विस्तार होता चला जाएगा। तब विषमता नहीं होगी, असहायता नहीं होगी, तब सब एक के लिए होंगे और एक सबके लिए होगा। तब विश्व में शांति होगी, सुख होगा। इसी तरह का एक सुंदर मनोकामना वाली बड़ी ही महत्वपूर्ण रचा है। उसमें जो भाव विचार हैं, वो इस संपूर्ण धरती पर निवास करने वाली मानवता के रूप स्वरूप उसके सुख की समृद्धि की कामना से ही भरा पूरा है। उसका यही भाव है कि हमारी ये धरा, हमारी ये पृथ्वी, जो विविध भाषा भाषियों को, विविध धर्मावलंबियों को इस प्रकार धारण करती है जैसे वे एक ही परिवार के सदस्य हों, हमारे लिए दुग्धवती धेनु की भांति निरंतर सहस्त्रों अर्थात हजारों हजार ऐश्वर्यों की धाराएं प्रवाहित करे, हमारे लिए मंगलकारी हो। ये समग्र मानवता के लिए सुख की सुंदरतम कामना है, ये सही है। लेकिन हमें भी इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हमारे अपने भाव विचार सुंदर हों, हमारी सोच भी उत्तम हो, लेकिन अगर वो हमारे व्यवहार में नहीं है तो फिर उसका कहीं कोई उपयोग नहीं। जरूरी है कि ये भाव विचार हमारे अंतर में हो। जो आदर्श हमें दिए गए हैं उन्हें व्यवहार रूप देना ही होगा, उनके प्रति मन में प्रतिबद्धता उत्पन्न करनी ही होगी। हाँ, वर्तमान समाज में कई कई वैचारिक नवीनताएं पैदा हुई हैं जिनके तहत व्यक्ति को स्वकेंद्रित किया जा रहा है, यानी वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचे। आज के मनुष्य को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यही पाठ पढ़ाया जा रहा है। अगर आज की मनुष्य जाति इस पाठ को पढ़कर आचरण करने लगी तब निश्चित ही समझिए कि सब उलट पुलट हो जाएगा। मनुष्य जाति के आसपास संतरास की कटीली झाड़ियां खड़ी हो जाएंगी। आज कई जगह यही कुछ होता जा रहा है। अब हम सबको ये स्पष्ट समझना होगा कि आज तक मनुष्य जाति ने जो भी विकास पाया है, उन्नति की है, उपलब्धियां पाई हैं, वो केवल एक व्यक्ति, एक समाज, एक देश की ही अपनी उपलब्धि नहीं है, बल्कि सारी मनुष्य जाति ने उसमें योगदान दिया है। ये सब कुछ मिलकर हुआ है, समवेत हुआ है। ये विकास, ये विराट ज्ञान क्षेत्र का विस्तार, ये महान और वैज्ञानिक चमत्कार मानव जाति ने मिलकर संपन्न किए हैं। आज भी समग्र मनुष्य जाति इन सबका लाभ ले रही है। इन सबको हम विश्व धरोहर ही तो कहेंगे। इन सबके बीच हम सब एक बात देख रहे हैं, संचार साधनों के जबरदस्त विकास ने इस धरती को एक ग्राम आंगन का सा रूप दे दिया है। कहां गई वे दूरियां जिनको पार करने में वर्षों व्यतीत हो जाया करते थे, आज आप उन्हें एक दो दिन में नाप सकते हैं। आज संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं का अस्तित्व है जो विश्व बंधुत्व को ही चरितार्थ करती है। आज एक देश दूसरे देश की मदद करता है। हाँ, ये सब विश्व मानवता को समर्पित आयोजन ही तो है। अगर ये मानवता प्रेम विकसित नहीं होता तो क्या इस दिशा में मनुष्य जाति को सफलता के दर्शन होते? साथियों, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत।

दोस्तों अभी आपने सुना कार्यक्रम मन दर्पण, जिसका शीर्षक था हमें हो सबके लिए प्रेम भाईचारा, जिसके लेखक थे कृष्णकांत दुबे और जिसे प्रस्तुत कर रही थी आस्था उपमन्यु और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों आइए सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वाज मुंबई की।

दोस्तों अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वाज मुंबई की। तो साथियों आइए सुनते हैं कार्यक्रम पर्यावरण, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं माइकल होजेस और इनकी वार्ता का शीर्षक है प्राकृतिक संसाधन और जीवन और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

पर्यावरण के अंतर्गत प्रस्तुत है वार्ता प्राकृतिक संसाधन और जीवन। लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं माइकल हॉजेस। श्रोता साथियों, मानव द्वारा नित नए आविष्कार अपनी जिंदगी को आरामदायक बनाने और सुविधा के लिए किए गए हैं। इन आविष्कारों से मानव जीवन सहज और सुलभ तो हुआ है, लेकिन इससे प्रकृति में मानव हस्तक्षेप भी बढ़ा है, जिससे सीधा प्रभाव पड़ा है पर्यावरण पर। प्रकृति में मानव हस्तक्षेप के कारण ही प्रदूषण बढ़ा है और जिसने जलवायु परिवर्तन में भी अपना योगदान दिया है। सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो मानव द्वारा प्रकृति में दखल देने के कारण प्राकृतिक संसाधनों का मनमाना और गैर टिकाऊ ढंग से उपयोग हुआ है, और यही उपयोग प्राकृतिक संसाधनों के विनाश का कारण भी बना हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों का विनाश इसलिए हो रहा है क्योंकि हम प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल बड़ी बेरहमी और लापरवाही से कर रहे हैं। श्रोता साथियों, पर्यावरण प्रदूषण से केवल पर्यावरण को ही नुकसान नहीं पहुंचता है, बल्कि उन सभी लोगों को भी भारी नुकसान पहुंचता है जो अपनी आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। जी हाँ, घने जंगलों के आसपास बसे गांवों में रहने वाले अधिकतर लोग प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहकर ही अपनी आजीविका कमाते हैं। वे पहाड़ों और जंगलों में उगने वाली जड़ी बूटियों को खोजकर उनका संग्रह करके बिचौलियों के माध्यम से कंपनी और कारखानों तक पहुंचाते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि इस काम के लिए उन्हें सुबह से शाम तक पहाड़ों, जंगलों, नालों और नदी के तट पर भटकना पड़ता है, यानी कि इस काम में अत्यधिक श्रम और समय लगता है। लेकिन अब हालात कुछ ऐसे हो चले हैं कि इनका श्रम और समय लगने के बाद भी कभी कभी इन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। यह सब क्यों होता है? क्योंकि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ चुका है, पर्यावरण का प्रदूषण जारी है। जी हां श्रोता साथियों, पर्यावरण के असंतुलन का प्रभाव उन पेड़ पौधों पर भी पड़ता है जिनसे यह गरीब ग्रामवासी जड़ी बूटियां प्राप्त करते हैं। इसी पर्यावरण प्रदूषण के कारण बहुत से पौधे लुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। यह बात इस तथ्य से भी प्रमाणित होती है जब आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति को किसी जड़ी बूटी के बारे में यह कहते हुए सुनते हैं कि फलां जड़ी या बूटी पहले मिल जाया करती थी, अब तो देखने में ही नहीं आती है। इसका सीधा अर्थ यही है कि अब वह जड़ी बूटी लुप्त हो चुकी है। यह विचार करने वाली बात है कि जो गरीब और जानकार लोग इस जड़ी बूटी के काम से जुड़े हुए हैं, यदि पेड़ पौधे इसी गति से साफ होते रहे, इसी गति से नष्ट होते रहे, तो फिर इन लोगों की आजीविका का क्या होगा? आयुर्वेदिक वैद्य और औषधि विक्रेताओं का क्या होगा? जो लोग जड़ी बूटी की दवाओं का सेवन करते हैं, उन रोगियों का क्या होगा? बाजार में आजकल हर्बल का जमाना फिर लौट आया है। लोग हर्बल के उत्पादनों की मांग करने लगे हैं। वे उस वस्तु को अपने लिए भरोसेमंद और फायदेमंद मानने लगे हैं जो हर्बल उत्पादक हैं। जो प्राकृतिक संसाधनों से बनी औषधियां या क्रीम अथवा हेयर डाई हैं, लोग प्राकृतिक संसाधन की वस्तुओं की मांग इसलिए करते हैं क्योंकि ये वस्तुएं अगर फायदा नहीं करती तो किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं करती हैं। लेकिन हाल ही में विभिन्न विशेषज्ञों अथवा आयुर्वेद के डॉक्टर की जानकारी के बिना उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने मन से या किसी की देखा देखी करके औषधि लेने वाले को यह पता नहीं होता कि किस बीमारी के लिए उसे कौन सी और कितनी मात्रा में तथा कितने दिनों तक दवा लेनी है। यदि वह बिना पूरी जानकारी के ऐसा करेगा तो लाभ के बजाय उसे नुकसान ही उठाना पड़ेगा। क्या आजकल के एलोपैथी के इस जमाने में भी अधिकतर लोग हर्बल प्रोडक्ट की मांग करते हैं? यही कारण है कि आजकल हर सौंदर्य प्रसाधन निर्माता और
देशी दवा निर्माता अपनी वस्तु के विज्ञापन में सबसे पहले जो चीज लिखते हैं वह है हर्बल प्रोडक्ट। पर्यावरण प्रदूषण के कारण आज प्राकृतिक संसाधन के स्रोत पेड़ पौधे और फूलों में कमी आई है। कई प्रजातियां नष्ट हो गई हैं और कई विनाश के कगार पर खड़ी हैं। इसलिए कई निर्माता रसायनों का प्रयोग करके हर्बल के नाम पर रासायनिक पदार्थ बेच रहे हैं। परिणाम स्वरूप लोगों को लाभ के स्थान पर हानि उठाना पड़ रही है और वे हर्बल के नाम पर ठगे भी जा रहे हैं, क्योंकि जब वास्तविक प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध ही नहीं होंगे तो निर्माता उसे लाएंगे कहां से, और यदि उपलब्ध भी हुए तो उनकी ऊंची कीमत के कारण निर्माता उनके स्थान पर नकली वस्तु से ही काम चलाएगा। हर्बल के स्थान पर फिर वह रासायनिक उत्पाद ही बेचता है। बाजार में हर्बल उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को देखकर आजकल कुछ कंपनियों ने अपने खेत और जमीन पर जड़ी बूटियों के नाम पर कुछ प्राकृतिक संसाधनों की खेती करना भी शुरू कर दिया है। वे अपनी जमीन पर उन जड़ी बूटियों की खेती करने लगे हैं जो विभिन्न तरह की दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के बनाने में काम आती हैं। लेकिन उनके उत्पादों को लेकर दो प्रश्न खड़े होते हैं। क्या उनके द्वारा उत्पादित संसाधन उनके उत्पादनों के लिए पर्याप्त होते हैं? दूसरा कि क्या पहाड़ों और जंगलों से दूर की शहरी हवाओं में उनके संसाधन उतने ही समर्थ होते हैं जितने कि पहाड़ों और जंगलों के प्राकृतिक संसाधन होते हैं? श्रोता साथियों, इसलिए बेहतर यही है कि हम अपने आने वाले कल और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करें और उन्हें बचाए रखने के लिए उनका लापरवाही से न तो स्वयं दुरुपयोग करें और न ही किसी अन्य को दुरुपयोग करने दें। श्रोता साथियों, दोनों ही प्रश्न के उत्तर नहीं में होंगे, क्योंकि पहले उत्तर में यह कहा जा सकता है कि उनके द्वारा यानी हर्बल निर्माताओं द्वारा कुछ जमीन के क्षेत्रों में कुछ एकड़ या कुछ बीघा तक ही वे खेती करते होंगे, जबकि उनका उत्पादन उससे कहीं अधिक होता है। इसलिए उनके द्वारा की जाने वाली खेती को किसी भी सूरत में पर्याप्त नहीं माना और कहा जा सकता है। दूसरी बात, उनके द्वारा उत्पादित संसाधनों में वह बात नहीं होती जो पहाड़ों और जंगलों में उत्पन्न होने वाले प्राकृतिक संसाधनों में होती है। भले ही खेती करने वाले कितना भी खाद और पानी क्यों न दे दें, लेकिन क्या वे पहाड़ों की मिट्टी, जंगलों की मिट्टी और वहां का वातावरण और आबोहवा ला पाते हैं? जिन मिट्टी और वातावरण तथा आबोहवा में प्राकृतिक संसाधन पनपते और बढ़ते हैं, इनके अंतर को ठीक गांव के निवासी और शहर के निवासी में अंतर की तरह समझा जा सकता है। जैसे गांव का निवासी शुद्ध मिट्टी और आबोहवा में पला बड़ा शक्तिशाली होता है, वहीं शहर की आबोहवा में पला बड़ा एक सामान्य व्यक्ति कमजोर किस्म का इंसान होता है। श्रोता साथियों, आइए अब जरा कुछ बातें अन्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और दुरुपयोग की भी कर ली जाए। प्राकृतिक संसाधन के रूप में हवा, पानी और मिट्टी को प्राथमिकता के साथ रखा जा सकता है।

साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम पर्यावरण, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे माइकल होजेस, और इनकी वार्ता का शीर्षक था प्राकृतिक संसाधन और जीवन, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आइए सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वाज मुंबई की। दोस्तों, अभी आपने सुना भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वाज मुंबई की। साथियों, इसी के साथ आज्ञा दीजिए ग्लोरिया गांगले को। अगली मुलाकात में आपसे बात करेंगे विवेक पीटर रॉबर्ट। धन्यवाद।

रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को प्रवीण परमार का प्यार भरा नमस्कार तथा आज की इस प्यारी से सभा में हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज के समय सारणी के अनुसार आप सुन पाएंगे आज का बाइबल पाठ, प्रभु वचन, कार्यक्रम मन दर्पण और भक्ति गीत। तो आइए दोस्तों, हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के पहले पाठ से, जो लिया गया है संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 22 से अध्याय 4 वाक्य संख्या 6 तक, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: हम उससे जो कुछ मांगेंगे वो हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे अच्छा लगता है। और उसकी आज्ञा ये है कि हम उसके पुत्र ईसा मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें, जैसा कि मसीह ने हमें आदेश दिया। जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वो ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें, और हम जानते हैं कि वो हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है।
1: प्रिय भाइयों, प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत करो, आत्माओं की परीक्षा करके देखो कि वे ईश्वर के हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी संसार में आए हैं। ईश्वर के आत्मा की पहचान इसमें है। प्रत्येक आत्मा जो ये स्वीकार करता है कि ईसा मसीह सचमुच मनुष्य बन गए हैं, ईश्वर का है, और प्रत्येक आत्मा जो इस प्रकार ईसा को स्वीकार नहीं करता ईश्वर का नहीं है और वो ईश्वर विरोधी है। तुमने सुना है कि वो संसार में आने वाला है और अब तो वो संसार में आ चुका है। बच्चों, तुम ईश्वर के हो और तुमने उन लोगों पर विजय पाई है क्योंकि जो तुम में है वो उससे महान है जो संसार में है। वे संसार के हैं और इसीलिए वे संसार की बातें करते हैं और संसार उनकी सुनता है, किंतु हम ईश्वर के हैं और जो ईश्वर को पहचानता है वो हमारी सुनता है। जो ईश्वर का नहीं है वो हमारी बात सुनना नहीं चाहता। हम इसके द्वारा सत्य के आत्मा और भ्रांति की आत्मा की पहचान कर सकते हैं।

दोस्तों, अभी आपने सुना आज का पहला पाठ, जो लिया गया था संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 22 से अध्याय 4 वाक्य संख्या 6 तक, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं आज का पवित्र सुसमाचार जो लिया गया है संत मत्ती के अनुसार। पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य संख्या 12 से 17 एवं 23 से 25 तक, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

ईसा ने जब यह सुना कि यूहन्ना गिरफ्तार हो गया है तो वे गलीलिया चले गए। वे नाजरेत नगर छोड़कर जबुलोन और नफ्ताली के प्रांत में समुद्र के किनारे बसे हुए कफरनाहूम नगर में रहने लगे। इस तरह नबी इसायस का यह कथन पूरा हुआ, जबुलोन प्रांत, नफ्ताली प्रांत, समुद्र के पथ पर यर्दन के उस पार गैर यहूदियों की गलीलिया। अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी। मृत्यु के अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ। उस समय से ईसा उपदेश देने और यह कहने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ईसा उनके सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी और निर्बलता दूर करते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। उनका नाम सारी सीरिया में फैल गया। लोग मिर्गी, लकवा आदि नाना प्रकार की बीमारियों और कष्टों से पीड़ित सब रोगियों को और अपदूतग्रस्तों को ईसा के पास ले आते और वे उन्हें चंगा करते थे। गलीलिया, देकापोलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यर्दन के उस पार से आया हुआ एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे चलता था।

दोस्तों, अभी आपने सुना आज का पवित्र सुसमाचार जो लिया गया था संत मत्ती के अनुसार। पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य संख्या 12 से 17 एवं 23 से 25 तक, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर।

दोस्तों, अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rvasia.org पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप स्टोर से RV मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है RVA हिंदी। हमारा ट्विटर हैंडल है @RVAHindi। हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है रेडियो वेरितास एशिया हिंदी। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मन दर्पण, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

मन दर्पण के अंतर्गत लीजिए प्रस्तुत है। खुश रहना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। श्रोता साथियों, स्वीकार्य समता का प्यार भरा, खुशी से भरा, खुलूस से भरा नमस्कार। साथियों, इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है एक खुश मिजाज प्राणी होने की। खुश रहना जीवन का चरम पहलू नहीं है, बल्कि जीवन का बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं, तो फिर आखिर आपने जीवन में हासिल ही क्या किया? यदि एक बार आप खुश रहेंगे ना, तभी तो दूसरी महान संभावनाओं के लिए रास्ते खुल सकेंगे। दोस्तों, चाहे आप जो भी करें, आप अपने अंदरूनी गुणों को ही विस्तार देते हैं। चाहे आप इस बात को पसंद करें या नहीं, लेकिन सत्य तो यही है। जब तक कि कोई अति महत्वपूर्ण चीज आपके भीतर घटित नहीं होती, आप दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण कुछ नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं कहती हूं कि अगर आप दुनिया के बारे में चिंतित हैं, समाज के प्रति चिंतित हैं, अपने घर परिवार रिश्तेदारों के प्रति चिंतित हैं, तो जो सबसे पहली चीज आपको करनी चाहिए वो ये कि खुद को एक खुश मिजाज प्राणी के रूप में रूपांतरित करें। दोस्तों, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। आप बिजनेस में हैं, सत्ता में हैं, शिक्षा में हैं, सेवा में हैं, या जो भी कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भीतर कहीं गहराई में एक भावना है। इससे आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो कुछ भी करते हैं ना, वो खुश रहने की इच्छा से करते हैं, क्योंकि यही हमारी मूल प्रकृति है। जब आप बच्चे थे तो आप यूं ही खुश थे बिना वजह, क्योंकि उस समय वो आपकी प्रकृति थी। खुशी का स्रोत आपके भीतर है। आप उसे हमेशा के लिए एक जीवंत अनुभव बना सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि भला कैसे, तो आइए मैं आपको बताती हूं। सबसे पहले चीजों के महत्व को पहचानें। आज सुबह जब आप जागे, तो क्या आपने देखा कि सूर्य बड़े अद्भुत तरीके से उगा, फूल खिले, कोई सितारा नीचे नहीं गिरा? ये तारामंडल बहुत अच्छे से काम कर रहा है, सब कुछ व्यवस्थित। आज समूचा ब्रह्मांड बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। मगर आपके दिमाग में आया किसी विचार का एक कीड़ा आपको ये मानने पर मजबूर कर देता है कि आज बुरा दिन है।

बहुत बढ़िया तरीके से घटित हो रही है, मगर हमारा सिर्फ एक विचार या भावना कि आज का दिन बुरा है, क्या इन्हें नष्ट कर सकती है? आप कहते हैं कि मेरा मन कहता है कि आज का दिन बुरा है। दोस्तों, असल में ये जो आपका मन है ना, वो असल में आपका है ही नहीं। आपका अपना कोई मन नहीं, इस बात पर ध्यान दें। जिसे आप मेरा मन कहते हैं, वो बस समाज का कूड़ेदान है। कोई भी और हर कोई जो आपके पास से गुजरता है, वो आपके दिमाग में कुछ न कुछ डाल जाता है। आप वाकई ये चुन नहीं सकते कि किससे आपको चीजें ग्रहण करनी है और किससे आपको चीजें ग्रहण नहीं करनी। आप कहते हैं कि मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं, और अगर आपने ये बात कहा कि ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं, तो यकीन मानिए किसी भी और व्यक्ति से ज्यादा उस व्यक्ति को आपने ग्रहण कर लिया है। आपके पास और कोई चारा ही नहीं। अगर आपको इस बात की जानकारी हो कि उसे ठीक करके कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये कूड़ेदान उपयोगी बन सकता है। असर और जानकारी का ये ढेर जो आपने जमा किया है, वो सिर्फ दुनिया में जीवित रहने के लिए उपयोगी है। आप कौन हैं, इसका उसे कोई संबंध नहीं है। देखिए दोस्तों, आज हम इतने जोर शोर से खुशी की तलाश कर रहे हैं कि धरती का जीवन ही खतरे में पड़ गया है। खुशी की तलाश में ना रहें, दुनिया में अपनी खुशी को अभिव्यक्त करना जाने। अगर आप मुड़कर अपने जीवन को देखें, तो आपके जीवन के सबसे खूबसूरत पल वे थे जब आप अपनी खुशी को अभिव्यक्ति दे रहे थे, न कि वो जब आप उसकी तलाश कर रहे थे। जो आप बचाते हैं वो कभी आपका गुण नहीं होगा, जो आप फैलाते हैं, जो आप बिखेरते हैं, वो आपका गुण होगा। अगर आप अपनी खुशी को बचा बचा कर रखेंगे ना, तो जीवन के अंत में कोई ऐसा नहीं कहेगा कि उसने आपके अंदर खुशी का एक अंश बचा कर रखा है, वो खुशी के साथ मरा। वो ये कहेंगे कि ये बड़ा भयानक प्राणी अपनी जिंदगी में कभी न मुस्काया। इसीलिए अगर आप हर दिन खुशी के साथ जीना चाहते हैं, तो अपनी खुशी और प्यार को फैलाएं। हाँ, तब लोग जरूर कहेंगे कि अरे, वो तो बड़ा खुश मिजाज और प्यार करने वाला व्यक्ति था। तो दोस्तों, सुबह जब आप उठते हैं, तो सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि आप मुस्कुराएं। किस पर? अरे, किसी पर नहीं, क्योंकि आप जागे, ये कोई छोटी बात नहीं है। लाखों लोग जो कल रात सोए थे, आज नहीं जागे, मगर आप और मैं जाग गए। क्या ये बहुत बढ़िया बात नहीं है दोस्तों? तो इसीलिए अपने जागने पर मुस्कुराइए, फिर इसके बाद अपने आसपास देखिए, और अगर कोई है तो उन्हें देखकर मुस्कुराइए। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उनका कोई प्रियजन सुबह नहीं जागा। आपको जो भी लोग प्यारे हैं, वो सुबह जाग उठे, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा दिन है ना? और फिर बाहर जाइए, पेड़ों को देखिए, वो भी पिछली रात को नष्ट नहीं हुए थे। बहुत से लोगों को ये अजीब लगता है, मगर आपको इसका महत्व तब पता चलेगा जब आपका कोई प्रियजन सुबह नहीं जागेगा। इसलिए इस बात को जानिए, इस बात के महत्व को समझिए कि हमें सबसे पहले मुस्कुराना सीखना है, दूसरों को प्यार से देखना सीखना है। जब हम ये बात सीख जाएंगे, तभी हम अपने मुस्कुराहटे, अपनी खुशियां दूसरों को बांट सकेंगे। दूसरों को ये याद दिलाइए, और खुद को भी, कि मैं जीवित हूं, तुम जीवित हो, फिर और क्या चाहिए? दोस्तों, वर्तमान में आपके जीवन की गुणवत्ता उन कपड़ों से तय नहीं होती जो आप पहनते हैं। वो आपकी शैक्षणिक योग्यताओं, आपके परिवार की स्थिति, आपके बैंक बैलेंस से तय होती है। आपके जीवन की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि आप अपने भीतर कितने शांत और खुश हैं। देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें दो वक्त का भोजन नहीं मिलता। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें जीवित रहने के लिए जरूरी बुनियादी चीजें भी नहीं मिलती। बहुत से ऐसे हैं जिन्हें शारीरिक रूप से कष्ट है। यहां आप ध्यान दीजिए कि आपके पास ऐसा कोई अभाव नहीं है। क्या ये खुश रहने की वजह नहीं है? हम में से ज्यादातर लोग इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि दूसरे के पास हमसे ज्यादा है। ये सोचिए कि क्या आपके पास जो है वो कम है? दूसरों से

तुलना करना छोड़ दीजिए। जब आप इन सभी बातों पर गौर करेंगे तब आप महसूस करेंगे कि आपके पास असल में खुश रहने की बहुत सी भरपूर वजहें हैं। तो श्रोता साथियों, मेरा आपसे यही कहना है कि खुश रहिए, मुस्कुराइए। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे अनिसमता को दे इजाजत। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आपने सुना कार्यक्रम मन दर्पण और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, अगर आप यह कार्यक्रम पुनः सुनना चाहते हैं तो अपने मोबाइल में आरवी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर आर्काइव में यह कार्यक्रम पुनः सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज्ञा दीजिए अपने मित्र प्रवीण परमार को। धन्यवाद।

रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को प्रवीण परमार का प्यार भरा नमस्कार तथा आज की इस प्यारी से सभा में हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज के समय सारणी के अनुसार आप सुन पाएंगे आज का बाइबल पाठ, प्रभु वचन, कार्यक्रम मन दर्पण और भक्ति गीत। तो आइए दोस्तों, हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के पहले पाठ से, जो लिया गया है संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 22 से अध्याय 4 वाक्य संख्या 6 तक, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: हम उससे जो कुछ मांगेंगे वो हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे अच्छा लगता है। और उसकी आज्ञा ये है कि हम उसके पुत्र ईसा मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें, जैसा कि मसीह ने हमें आदेश दिया। जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वो ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें, और हम जानते हैं कि वो हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है।
1: प्रिय भाइयों, प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत करो। आत्माओं की परीक्षा करके देखो कि वे ईश्वर के हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी संसार में आए हैं। ईश्वर के आत्मा की पहचान इसमें है। प्रत्येक आत्मा जो ये स्वीकार करता है कि ईसा मसीह सचमुच मनुष्य बन गए हैं, ईश्वर का है, और प्रत्येक आत्मा जो इस प्रकार ईसा को स्वीकार नहीं करता, ईश्वर का नहीं है और वो ईश्वर विरोधी है। तुमने सुना है कि वो संसार में आने वाला है और अब तो वो संसार में आ चुका है। बच्चों, तुम ईश्वर के हो और तुमने उन लोगों पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे महान है जो संसार में है। वे संसार के हैं और इसीलिए वे संसार की बातें करते हैं और संसार उनकी सुनता है, किंतु हम ईश्वर के हैं और जो ईश्वर को पहचानता है वो हमारी सुनता है। जो ईश्वर का नहीं है वो हमारी बात सुनना नहीं चाहता। हम इसके द्वारा सत्य के आत्मा और भ्रांति की आत्मा की पहचान कर सकते हैं।

दोस्तों, अभी आपने सुना आज का पहला पाठ, जो लिया गया था संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 22 से अध्याय 4 वाक्य संख्या 6 तक, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं आज का पवित्र सुसमाचार जो लिया गया है संत मत्ती के अनुसार। पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य संख्या 1217 एवं 23 से 25 तक, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

ईसा ने जब यह सुना कि यूहन गिरफ्तार हो गया है तो वे गलीलिया चले गए। वे नाजरेत नगर छोड़कर जबुलोन और नफ्ताली के प्रांत में समुद्र के किनारे बसे हुए कफरनाहूम नगर में रहने लगे। इस तरह नबी इसायस का यह कथन पूरा हुआ, जबुलोन प्रांत, नफ्ताली प्रांत, समुद्र के पथ पर यर्दन के उस पार गैर यहूदियों की गलीलिया। अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी। मृत्यु के अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ। उस समय से ईसा उपदेश देने और यह कहने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ईसा उनके सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी और निर्बलता दूर करते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। उनका नाम सारी सीरिया में फैल गया। लोग मिर्गी, लकवा आदि नाना प्रकार की बीमारियों और कष्टों से पीड़ित सब रोगियों को और अपदूतग्रस्तों को ईसा के पास ले आते और वे उन्हें चंगा करते थे। गलीलिया, देकापोलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यर्दन के उस पार से आया हुआ एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे चलता था।

दोस्तों, अभी आपने सुना आज का पवित्र सुसमाचार जो लिया गया था संत मत्ती के अनुसार। पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य संख्या 12 से 17 एवं 23 से 25 तक, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर।

दोस्तों, अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rvasia.org पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप स्टोर से आरवी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है RVA हिंदी। हमारा ट्विटर हैंडल है @RVA हिंदी। हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है रेडियो वेरितास एशिया हिंदी। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मन दर्पण, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

मन दर्पण के अंतर्गत लीजिए प्रस्तुत है। खुश रहना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। श्रोता साथियों, स्वीकार्य समता का प्यार भरा, खुशी से भरा, खुलूस से भरा नमस्कार। साथियों, इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है एक खुश मिजाज प्राणी होने की। खुश रहना जीवन का चरम पहलू नहीं है, बल्कि जीवन का बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं, तो फिर आखिर आपने जीवन में हासिल ही क्या किया? यदि एक बार आप खुश रहेंगे ना, तभी तो दूसरी महान संभावनाओं के लिए रास्ते खुल सकेंगे। दोस्तों, चाहे आप जो भी करें, आप अपने अंदरूनी गुणों को ही विस्तार देते हैं। चाहे आप इस बात को पसंद करें या नहीं, लेकिन सत्य तो यही है। जब तक कि कोई अति महत्वपूर्ण चीज आपके भीतर घटित नहीं होती, आप दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण कुछ नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं कहती हूं कि अगर आप दुनिया के बारे में चिंतित है, समाज के प्रति चिंतित है, अपने घर परिवार रिश्तेदारों के प्रति चिंतित है, तो जो सबसे पहली चीज आपको करनी चाहिए वो ये कि खुद को एक खुश मिजाज प्राणी के रूप में रूपांतरित करें। दोस्तों, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। आप बिजनेस में हैं, सत्ता में हैं, शिक्षा में हैं, सेवा में हैं, या जो भी कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भीतर कहीं गहराई में एक भावना है। इससे आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो कुछ भी करते हैं ना, वो खुश रहने की इच्छा से करते हैं, क्योंकि यही हमारी मूल प्रकृति है। जब आप बच्चे थे तो आप यूं ही खुश थे बिना वजह, क्योंकि उस समय वो आपकी प्रकृति थी। खुशी का स्रोत आपके भीतर है, आप उसे हमेशा के लिए एक जीवंत अनुभव बना सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि भला कैसे, तो आइए मैं आपको बताती हूं। सबसे पहले चीजों के महत्व को पहचानें। आज सुबह जब आप जागे, तो क्या आपने देखा कि सूर्य बड़े अद्भुत तरीके से उगा, फूल खिले, कोई सितारा नीचे नहीं गिरा? ये तारा मंडल बहुत अच्छे से काम कर रहा है, सब कुछ व्यवस्थित। आज समूचा ब्रह्मांड बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। मगर आपके दिमाग में आया किसी विचार का एक कीड़ा आपको ये मानने पर मजबूर कर देता है कि आज बुरा दिन है। कष्ट इसीलिए होता है क्योंकि ज्यादातर इंसान इस जीवन के प्रति सही नजरिया खो बैठे हैं। इसकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अस्तित्व की प्रक्रिया से कहीं बड़ी हो गई है, या सीधे सीधे कहें तो आपने अपनी रचना को सृष्टा की सृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया है, और यही पीड़ा का बुनियादी स्रोत है। हम इस बात को पूरी समझ खो बैठे हैं कि यहां जीवित रहने के आखिर मायने हैं क्या। आपके दिमाग में आया कोई विचार या आपके मन की कोई भावना फिलहाल आपके अनुभव की प्रकृति को तय करती है, और ये भी हो सकता है कि आपके विचार और भावना आपके जीवन की सीमित हकीकत से कोई लेना देना ही नहीं रखती। अब देखिए ना, पूरी सृष्टि बहुत बढ़िया तरीके से घटित हो रही है, मगर हमारा सिर्फ एक विचार या भावना कि आज का दिन बुरा है, क्या इन्हें नष्ट कर सकती है? आप कहते हैं कि मेरा मन कहता है, मेरा मन कहता है कि आज का दिन बुरा है। दोस्तों, असल में ये जो आपका मन है ना, वो असल में आपका है ही नहीं। आपका अपना कोई मन नहीं, इस बात पर ध्यान दें। जिसे आप मेरा मन कहते हैं, वो बस समाज का कूड़ेदान है। कोई भी और हर कोई जो आपके पास से गुजरता है, वो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ डाल जाता है। आप वाकई ये चुन नहीं सकते कि किससे आपको चीजें ग्रहण करनी है और किससे आपको चीजें ग्रहण नहीं करनी। आप कहते हैं कि मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं, और अगर आपने ये बात कहा कि ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं, तो यकीन मानिए किसी भी और व्यक्ति से ज्यादा उस व्यक्ति को आपने ग्रहण कर लिया है। आपके पास और कोई चारा ही नहीं। अगर आपको इस बात की जानकारी हो कि उसे ठीक करके कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये कूड़ेदान उपयोगी बन सकता है।
असर और जानकारी का ये ढेर जो आपने जमा किया है वो सिर्फ दुनिया में जीवित रहने के लिए उपयोगी है। आप कौन हैं? इसका उसे कोई संबंध नहीं है। देखिए दोस्तों, आज हम इतने जोर शोर से खुशी की तलाश कर रहे हैं कि धरती का जीवन ही खतरे में पड़ गया है। खुशी की तलाश में ना रहें, दुनिया में अपनी खुशी को अभिव्यक्त करना जानें। अगर आप मुड़कर अपने जीवन को देखें तो आपके जीवन के सबसे खूबसूरत पल वे थे जब आप अपनी खुशी को अभिव्यक्ति दे रहे थे, न कि वो जब आप उसकी तलाश कर रहे थे। जो आप बचाते हैं वो कभी आपका गुण नहीं होगा, जो आप फैलाते हैं, जो आप बिखेरते हैं वो आपका गुण होगा। अगर आप अपनी खुशी को बचा बचा कर रखेंगे ना, तो जीवन के अंत में कोई ऐसा नहीं कहेगा कि उसने आपके अंदर खुशी का एक अंश बचा कर रखा है, वो खुशी के साथ मरा। वो ये कहेंगे कि ये बड़ा भयानक प्राणी अपनी जिंदगी में कभी न मुस्काया। इसीलिए अगर आप हर दिन खुशी के साथ जीना चाहते हैं तो अपनी खुशी और प्यार को फैलाएं। हाँ, तब लोग जरूर कहेंगे कि अरे वो तो बड़ा खुश मिजाज और प्यार करने वाला व्यक्ति था। तो दोस्तों, सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि आप मुस्कुराएं। किस पर? अरे किसी पर नहीं, क्योंकि आप जागे ये कोई छोटी बात नहीं है। लाखों लोग जो कल रात सोए थे आज नहीं जागे, मगर आप और मैं जाग गए। क्या ये बहुत बढ़िया बात नहीं है दोस्तों? तो इसीलिए अपने जागने पर मुस्कुराइए, फिर इसके बाद अपने आसपास देखिए और अगर कोई है तो उन्हें देखकर मुस्कुराइए। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उनका कोई प्रियजन सुबह नहीं जागा। आपको जो भी लोग प्यारे हैं वो सुबह जाग उठे, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा दिन है ना? और फिर बाहर जाइए, पेड़ों को देखिए, वो भी पिछली रात को नष्ट नहीं हुए थे। बहुत से लोगों को ये अजीब लगता है, मगर आपको इसका महत्व तब पता चलेगा जब आपका कोई प्रियजन सुबह नहीं जागेगा। इसलिए इस बात को जानिए, इस बात के महत्व को समझिए कि हमें सबसे पहले मुस्कुराना सीखना है, दूसरों को प्यार से देखना सीखना है। जब हम ये बात सीख जाएंगे तभी हम अपने मुस्कुराहटे, अपनी खुशियां दूसरों को बांट सकेंगे। दूसरों को ये याद दिलाइए और खुद को भी कि मैं जीवित हूं, तुम जीवित हो, फिर और क्या चाहिए। दोस्तों, वर्तमान में आपके जीवन की गुणवत्ता उन कपड़ों से तय नहीं होती जो आप पहनते हैं। वो आपकी शैक्षणिक योग्यताओं, आपके परिवार की स्थिति, आपके बैंक बैलेंस से तय होती है। आपके जीवन की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि आप अपने भीतर कितने शांत और खुश हैं। देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें दो वक्त का भोजन नहीं मिलता। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें जीवित रहने के लिए जरूरी बुनियादी चीजें भी नहीं मिलती। बहुत से ऐसे हैं जिन्हें शारीरिक रूप से कष्ट है। यहां आप ध्यान दीजिए कि आपके पास ऐसा कोई अभाव नहीं है। क्या ये खुश रहने की वजह नहीं है? हम में से ज्यादातर लोग इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि दूसरे के पास हमसे ज्यादा है। ये सोचिए कि क्या आपके पास जो है वो कम है। दूसरों से तुलना करना छोड़ दीजिए। जब आप इन सभी बातों पर गौर करेंगे तब आप महसूस करेंगे कि आपके पास असल में खुश रहने की बहुत सी भरपूर वजहें हैं। तो श्रोता साथियों, मेरा आपसे यही कहना है कि खुश रहिए, मुस्कुराइए। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे अनिसमता को दे इजाजत। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आपने सुना कार्यक्रम मन दर्पण और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, अगर आप यह कार्यक्रम पुनः सुनना चाहते हैं तो अपने

सत्य स्वर सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को ग्लोरिया गांगले का प्यार भरा नमस्कार तथा आज की इस सभा में हार्दिक स्वागत। दोस्तों, अभी की सभा 7 से 8 में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम कृषि जगत, कानूनी ज्ञान, वसुदेव कुटुम्बकम, नाटक और भक्ति गीत। तो आइए दोस्तों, हम सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: मुखिया जी, कृषि जगत कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: आपका भी स्वागत है, अपने श्रोताओं का भी स्वागत है।
0: रवि का मौसम चल रहा है मुखिया जी, ऐसे में हमारे किसान भाइयों को ये जानना जरूरी हो जाता है कि रवि के किन फसलों की बुआई और उसकी देखभाल, प्रभेदों का चयन, खाद एवं उर्वरक का प्रयोग कितनी मात्रा में और कब करें।
1: हाँ भाई, ये तो हरेक किसान भाई को जानना जरूरी है कि सबसे पहले कि आप ही बताइए कि किस फसल से इसकी शुरुआत की जाए।
0: सबसे पहले अगर सरसों की बात की जाए मुखिया जी, तो इसके लिए कौन सा प्रभेद का चयन करना ज्यादा अच्छा रहेगा जिससे किसान अच्छी उपज प्राप्त कर सके।
1: देखिए, सरसों का उन्नत प्रभेद 66/197/3 है
0: जी।
1: इसकी औसत उपज 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और तैयार होने की अवधि 120 से 125 दिन है। तेल की मात्रा 43% से बीज दर 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है
0: जी।
1: एक किस्म है जिसे राजेंद्र 1 और 2 के नाम से जानते हैं। इसकी क्षमता 13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। तैयार होने की अवधि 110 से 120 दिन है। इसमें तेल की मात्रा 46%। एक किस्म और है, उसके बारे में भी बता देता हूँ, वो है स्वर्णा
0: जी।
1: इसकी औसत उपज 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और तैयार होने की अवधि वही 110 से 120 दिन और इसमें तेल की मात्रा 47% है।
0: इसकी बुआई की विधि और खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग प्रति हेक्टेयर कितनी मात्रा में करेंगे यह भी बता दीजिए मुखिया जी।
1: इसकी बुआई का समय 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक है। बुआई की दूरी 30x10 सेंटीमीटर रखें। जहां तक खाद एवं उर्वरक की बात है तो 100 क्विंटल कंपोस्ट बुआई के 20-30 दिन पहले खेत में डालें। 60 किलोग्राम नेत्रजन, 40 किलोग्राम स्फुर, 40 किलोग्राम पोटास का प्रयोग करें।
0: सरसों फसल में सिंचाई की बहुत आवश्यकता पड़ती है मुखिया जी।
1: हाँ,
0: तो कितनी बार और कब सिंचाई करनी चाहिए।
1: देखिए, दो सिंचाई की जरूरत पड़ती है
0: जी।
1: पहली सिंचाई फूल लगने के समय और दूसरी सिंचाई फलियों के लगने के समय की जाती है।
0: राई के लिए समयकालीन खेती के लिए इसके उन्नत प्रभेद कौन कौन से हैं मुखिया जी।
1: इसके कई उन्नत प्रभेद हैं, जिनमें एक है वरुणा। इसकी औसत उपज 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। तैयार होने की अवधि 135 से 140 दिन। तेल की मात्रा 43% है। पूसा बोल्ड दियारा क्षेत्र के लिए एक उत्तम किस्म है। इसकी औसत उपज क्षमता 19 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। तैयार होने की अवधि 120 से 145 दिन और इसमें तेल की मात्रा 42% है। एक है क्रांति राई
0: जी।
1: सिंचित खेती हेतु ये प्रभेद अच्छा है। इसकी उपज क्षमता 21 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और तैयार होने की अवधि 125 से 130 दिन
0: जी। जी,
1: तेल की मात्रा 40%। राई पिछात धान की फसल कटने के बाद खेती के लिए राजेंद्र राई पिछौती है, पिछैती
0: जी।
1: रोग सहिष्णुता 2073, ये एक नई किस्म है ना
0: जी।
1: 2073 रोग सहिष्णु
0: जी,
1: नाम के अनुरूप है। इसकी औसत उपज 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। तैयार होने की अवधि 106 से 116 दिन है। तेल की मात्रा 41% है। ये सब प्रभेद हुए आपको और मैंने बता दिया। हाँ
0: जी, जी। क्या इसकी बुआई के लिए किसी खास क्षेत्र को अनुशंसित किया गया है या फिर इसकी बुआई पूरे बिहार में की जा सकती है।
1: इसकी बुआई पूरे बिहार में की जा सकती है। पिछात राई की बुआई धान कटने के बाद 15 नवंबर से दिसंबर के पहले सप्ताह तक की जा सकती है। राजेंद्र अनुकूल ये भी एक नई किस्म है। इसकी औसत उपज 13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और तैयार होने की अवधि 105 से 110 दिन। इसमें तेल की मात्रा 40% है। इसकी बुआई पूरे बिहार में की जा सकती है
0: जी।
1: पिछात की बुआई धान कटने के बाद 15 नवंबर से दिसंबर के पहले सप्ताह तक की जा सकती है।
0: राजेंद्र सुखनाम एक प्रभेद सुनने को आया था मुखिया जी, यह किस प्रकार का प्रभेद है और इसकी खास विशेषता क्या है।
1: राजेंद्र सुखनाम मोटे दाने वाली रोग सहिष्णु नई किस्म है। इसकी औसत उपज 16.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। तैयार होने की अवधि 107 से 116 दिन है और तेल की मात्रा 39.7% यानी लगभग 40%।
0: जी जी।
1: इसके लिए उपयुक्त क्षेत्र पूरा बिहार है। तिछात राई की बुआई धान कटने के बाद 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक की जाती है।
0: इसकी बुआई की क्या कुछ खास विधि है मुखिया जी, और उर्वरक का प्रयोग प्रति हेक्टेयर कितना करना पड़ता है इसमें?
1: देखिए, बीज दर प्रति हेक्टेयर 5 किलोग्राम, बुआई की दूरी 30x15 सेंटीमीटर, 100 किलो कंपोस्ट, बुआई के 20 से 30 दिन पहले खेत में छींटकर जुताई कर दें और उसके बाद खेत में डालें
0: जी,
1: 80 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम स्फुर, 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। इसके लिए भी मात्र 2 सिंचाई की जरूरत होती है, पहली सिंचाई फूल लगते समय और दूसरी सिंचाई फल लगते समय करते हैं।
0: रवि के मौसम में ही आलू की खेती भी की जाती है मुखिया जी,
1: हाँ।
0: तो इसके लिए कौन सा उन्नत प्रभेद होगा और कितने दिनों में तैयार होंगे, और साथ ही साथ उनकी उपज क्षमता क्या होगी?
1: आलू के कई उन्नत प्रभेद हैं, जिसमें कुफरी चंद्रमुखी सफेद है जो 80 से 90 दिनों में पकने वाला है
0: जी।
1: अगात तथा मुख्य दोनों फसलों के लिए उपयुक्त तो उत्पादन क्षमता 225 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।
0: अच्छा,
1: इसी प्रकार एक किस्म कुफरी अशोका सफेद है जो 80 से 90 दिनों में पकने वाली है। झुलसा से प्रभावित होते हुए भी अगात फसल के लिए गंगा के मैदानी भाग के लिए उपयुक्त है। इसकी उत्पादन क्षमता 230 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राजेंद्र आलू एक लाल रंग का कंद है जो 110 से 120 दिनों में पकने वाला है
0: जी।
1: झुलसा प्रतिरोधी मुख्य फसल के लिए उपयुक्त है। उत्पादन क्षमता 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ये क्षारीय भूमि में भी उगाया जा सकता है।
0: राजेंद्र आलू 2 और राजेंद्र आलू 3, ये दोनों किस प्रकार के किस्म है मुखिया जी, इनकी खास विशेषता क्या है और उपज क्षमता क्या है?
1: राजेंद्र आलू 2 लाल रंग के कंद 100 से 110 दिनों में पकने वाले हैं। पिछात झुलसा प्रतिरोधी है। ये आलू यानी राजेंद्र आलू 1 की तरह ही है
0: जी,
1: लेकिन गुदा मुलायम, उत्पादन क्षमता 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और ये क्षारीय भूमि के लिए अनुकूल है। राजेंद्र आलू 3 ये बड़े आकार का पीले रंग का कंद 70 से 80 दिनों में पकने वाला, गुदा पीले रंग लिए हुए, मुलायम और उत्पादन क्षमता 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।
0: अच्छा अच्छा,
1: पिछात झुलसा रोग से कुछ हद तक सहिष्णु है।
0: मुखिया जी, हम लोग आलू के प्रभेदों की बात कर रहे हैं, और कौन सा प्रभेद कितने दिनों में तैयार हो जाता है और कौन से प्रभेद से कितनी उपज क्षमता प्राप्त की जा सकती है?
1: हाँ, मुझे याद है हम लोग राजेंद्र आलू 3 तक की चर्चा कर चुके हैं
0: जी जी।
1: तो
0: वैसे तो बाजार में बहुत सारे प्रभेद हैं,
1: हाँ,
0: जिसका हमारे किसान भाई लाभ उठा सकते हैं मुखिया जी।
1: एक
0: प्रभेद कुफरी बादशाह ऐसा सुनने में आया है,
1: हाँ,
0: जो सफेद रंग का है और यह 100 से 110 दिनों में पकने वाली मुख्य फसल के लिए उपयुक्त है,
1: हाँ।
0: साथ ही साथ पिछात झुलसा रोग का प्रतिरोधी है, और जहां तक उत्पादन क्षमता की बात है तो शायद 350
1: क्विंटल
0: प्रति हेक्टेयर,
1: हाँ, क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।
0: यह तो काफी अच्छा प्रभेद है ना मुखिया जी।
1: हाँ बिल्कुल, बिल्कुल
0: हमारे
1: बिल्कुल।
0: किसान भाई इस प्रभेद की खेती कर लाभ कमा सकते हैं,
1: हाँ।
0: एक प्रभेद कुफरी सिंदूरी,
1: हाँ।
0: यह किस प्रकार का प्रभेद है?
1: देखिए, कुफरी सिंदूरी लाल 120 दिनों में पकने वाला प्रभेद है जो मुख्य फसल के लिए उपयुक्त है
0: जी।
1: भंडारण क्षमता उत्तम है, झुलसा रोग का प्रतिरोधी है। इसकी उत्पादन क्षमता 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, खास करके आलू के इतने सारे प्रभेदों की जानकारी हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए। अगली बार आपसे मुलाकात होगी तो फिर हम लोग खेती किसानी से संबंधित कुछ और बात करेंगे, आलू के उन्नत प्रभेदों के बारे में जानेंगे। अभी हम लोग चलते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: नमस्कार।

साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम कृषि जगत और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। आइए साथियों, अब सुनते हैं कार्यक्रम कानूनी ज्ञान और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: श्याम जी और कपूर साहब, कानूनी सलाह कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: आपका भी स्वागत है और अपने श्रोताओं का भी स्वागत
0: जी, आपका भी। कृषि से होने वाली आय आय नहीं मानी जाती, क्योंकि भूमि आय प्राप्त करने का अप्रत्यक्ष या वैकल्पिक तरीका है। कृपया इसको एक उदाहरण के द्वारा हमारे श्रोताओं को समझाने का कष्ट करें कपूर साहब
2: जी। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी अपनी कृषि आय से डिविडेंड का भुगतान करती है, तो ऐसी स्थिति में उस आय को कृषि भूमि से प्राप्त आय नहीं माना जाएगा, क्योंकि इन परिस्थितियों में आय प्राप्त करने का सीधा और प्रभावी स्रोत अंश धारण करना है, न कि भूमि।
0: जहां सरकार कृषि भूमि मालिक को उसे कृषि भूमि से कब्जा बेकब्जा कर दिया गया है
2: जी,
0: उस परिस्थिति में क्या हो गया?
1: देखिए, जहां सरकार ने किसी कृषि भूमि मालिक को उसकी कृषि भूमि से बेकब्जा करने के लिए विधिक उत्तरदायित्व के तहत मालिकाना भत्ते का भुगतान किया है, तो ऐसी प्राप्ति को भूमि से प्राप्त आय नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऐसे मामले में आय का सीधा स्रोत सरकार का विधिक उत्तरदायित्व है
0: जी,
1: जिसके तहत भूमि के प्रतिकर मुआवजे का भुगतान किया गया और कृषि भूमि का नहीं। इसी प्रकार धारा 2(1)(a) के साथ जुड़े स्पष्टीकरण के अनुसार, अगर कृषि भूमि के हस्तांतरण से कोई आय प्राप्त होती है, तो उसे कृषि भूमि से प्राप्त आय नहीं माना जाएगा।
0: कृषि आय को कृषि आय बनने के लिए क्या कोई और शर्त है कपूर जी?
2: किसी आय को कृषि आय बनने के लिए दूसरी शर्त ये है कि वो आय कृषि भूमि पर कृषि कार्य करने से, जिसमें कृषि उत्पाद को तैयार करना, वस्तु के रूप में किराया प्राप्त करना, जिससे वो बाजार में बिकने योग्य बने, या ऐसे उत्पाद की बिक्री आदि शामिल है। उदाहरण के लिए गन्ने से गुड़ बनाना, जूट के पौधे से रेशे अलग करना, तंबाकू को सुखाना आदि शामिल है।
0: कृषि भूमि का भारत में स्थित होना आवश्यक है श्याम जी?
1: देखिए, कृषि आय के लिए आवश्यक है कि किराया या आय कृषि भूमि से प्राप्त की जाए, और इस शर्त की पूर्ति के साथ ये भी आवश्यक है कि जिस कृषि भूमि से आय प्राप्त की जा रही है वो भारत में स्थित होनी चाहिए
0: जी।
1: ये शर्त मात्र धारा 2(1)(a)(a) की आवश्यकता पूर्ति के लिए ही नहीं, बल्कि धारा 2(1)(a)(b)(c) की आवश्यकता पूर्ति के लिए भी अनिवार्य है। अगर कृषि भूमि भारत से बाहर स्थित है, तो अधिनियम की धारा 10(1) में कोई छूट आयकर से नहीं मिलेगी, और ऐसी आय प्राप्तकर्ता की निवास स्थिति के अनुसार कर योग्य होगी।
0: कृषि आय के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त करने के लिए किन बातों का होना आवश्यक है कपूर जी?
2: देखिए, सबसे पहली बात यह है कि धारा 2(1)(a) की किसी भी उपधारा यानी ए, बी और सी के तहत कृषि आय के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि कृषि भूमि का उपयोग या उपभोग कृषि कार्यों के लिए किया जाए। हालांकि कृषि एवं कृषीय उद्देश्यों को इस अधिनियम में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है।
0: ये तो हो गया कृषि आय से संबंधित अधिनियम के बारे में श्याम जी। अब थोड़ा सा आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये अभी खास करके कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं,
1: हाँ।
0: तो यह जो कानून हमारे यहाँ कुछ साल पहले लागू किया गया था, राइट टू रिजेक्ट, उसके बारे में हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, ये जो अधिकार आम जनता को मिला है
0: जी,
1: वो काफी लंबी लड़ाई के बाद मिला है।
0: बिल्कुल,
1: इसके बारे में लोगों का जानना बहुत जरूरी है। इससे चुनाव प्रक्रिया में भारी सुधार होगा और जनता को यह अधिकार मिल जाएगा कि वो तमाम दागी प्रत्याशियों को खारिज कर सके
0: जी। जी,
1: जयप्रकाश नारायण का आंदोलन जब शुरू हुआ, तब उसमें एक प्रमुख मांग थी कि जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार मिले, यानी राइट टू रिकॉल
0: जी।
1: तभी ये बहस चली थी कि जब लोकसभा विधानसभा के चुनाव हों तो उसमें कॉलम हो इनमें से कोई नहीं
0: जी,
1: जिसे अब हम नोटा कहते हैं, आप देखते हैं ना
0: जी, जी।
1: और वो मिल चुका है ये अधिकार
0: जी।
1: लेकिन इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई। इसके लिए जयप्रकाश नारायण ने इमरजेंसी से पहले ही एक संगठन बनाया था, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज
0: जी,
1: इमरजेंसी खत्म होने के बाद PUCL ने राइट टू रिजेक्ट की भी मांग जोर शोर से उठाई, जो मांग आज भी जारी है।
0: जी, राइट टू रिजेक्ट मांग उठाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या रहा कपूर जी? क्या उस समय भी भ्रष्टाचार या भ्रष्ट प्रतिनिधियों का बोलबाला था?
2: इस मांग को उठाने का कारण ये था कि लोकसभा और राज्यसभा में दागी चरित्र के लोग, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार, हत्या, लूट, बलात्कार जैसे तमाम मुकदमे हैं, संसदीय लोकतंत्र में प्रत्याशी हो जाया करते हैं, उन पर रोक लगाई जाए। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि संसदीय लोकतंत्र में ऐसे जन प्रतिनिधियों को लेकर खुद सरकार की भूमिका जन चेतना के बिल्कुल विपरीत रही है।
0: ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि यह जनहित याचिका का ही परिणाम है कि हम लोगों को राइट टू रिजेक्ट का अधिकार मिला है।
1: देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। ये जनहित याचिका के फलस्वरूप ही सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देना पड़ा। अगर हम जनहित याचिकाओं पर जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को देखें
0: जो,
1: तो अब तक की सरकारों की मंशा के खिलाफ फैसले आए हैं।
0: जी जी,
1: मसलन 2 वर्ष तक की सजा होने पर किसी भी जन प्रतिनिधि की सदस्यता लोकसभा से या विधानसभा से जा सकती है, और दागी लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने का प्रावधान।
0: PUCL जिसकी आप चर्चा कर रहे थे श्याम जी, तो PUCL ने तो शुरू से ही यह मांग सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाती रही है कपूर साहब।
2: जी हाँ, PUCL ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के माध्यम से ये मांग की थी कि चुनाव में हिस्सेदारी करने वाले प्रत्याशियों को चुनाव आयोग से निर्देशित कराया जाए कि वे अपनी संपत्ति का विवरण सहित आपराधिक रिकॉर्ड का विवरण नामांकन करते समय घोषित करें।
0: सरकार की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया जताई गई थी?
1: देखिए, सरकार ने इसका पुरजोर विरोध सुप्रीम कोर्ट में किया था।
0: अच्छा अच्छा।
1: बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने PUCL की जनहित याचिका स्वीकार कर चुनाव आयोग को निर्देशित किया कि प्रत्याशियों को बाध्य किया जाए कि वे अपनी संपत्ति का विवरण और आपराधिक धाराओं के मुकदमों का विवरण नामांकन करते समय दर्ज करें।
0: जी,
1: ये PUCL याचिका का ही परिणाम है कि प्रत्याशियों के पास कितनी धन संपत्ति है और आपराधिक धाराओं के तहत कितने मुकदमे चल रहे हैं, इसका विवरण जनता को मालूम हो पा रहा है।
0: अभी ताजा तरीन जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, वह तो सचमुच भारतीय लोकतंत्र के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है।
2: सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से जो जन प्रतिनिधियों को खारिज करने के अधिकार के रूप में मतदाताओं को मिला है, जनता को ये अधिकार मिल जाएगा कि वो आपराधिक चरित्र के प्रत्याशियों व धन बल के आधार पर मतदाताओं को प्रभावित कर चुनाव में विजय हासिल करने का ख्वाब देख रहे उम्मीदवारों को खारिज कर दें।
0: सुप्रीम कोर्ट का यह जो महत्वपूर्ण निर्णय है श्याम जी,
1: हाँ,
0: उसका आप कैसे आकलन करते हैं?
1: देखिए, अब EVM में जनता को ये अधिकार मिल जाएगा कि वो उन सभी प्रत्याशियों को खारिज कर सकती है जिन्हें वो जनप्रतिनिधि के योग्य नहीं मानती।
0: जी,
1: जब संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने का एक मंच जनता की ओर से बन जाएगा जो ऐसे प्रत्याशियों को खारिज करने का अभियान चला सकती है।
0: जी,
1: सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक सराहनीय कदम होगा। काफी लंबी लड़ाई के बाद हमें ये अधिकार मिला है।
0: क्या अब ऐसा माना जाए कि जन दबाव की चिंता अब सरकार पर भी होगी?
2: देखिए वीरेंद्र जी, जन दबाव की चिंता सरकार को अब तक नहीं थी। यही कारण है कि राइट टू रिजेक्ट संबंधी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसको सरकार लंबे समय से नकारती रही है। हमें विश्वास है कि बदले माहौल में इससे चुनाव प्रक्रिया में भारी सुधार होगा और जनता को ये अधिकार मिल जाएगा कि वो तमाम दागी प्रत्याशियों को खारिज कर सके।
0: जनतांत्रिक के शक्तियों और मानवाधिकार के लिए संघर्ष करने वाले संगठनों में इसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है श्याम जी?
1: पूरे देश में इसको लेकर जनतांत्रिक शक्तियों और मानवाधिकार के लिए संघर्ष करने वाले संगठनों के भीतर भारी उत्साह का संचार हुआ है।
0: जी,
1: जो आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में जनता के बीच ऐसे प्रत्याशियों को खारिज करने का अभियान चला रहे हैं जिनकी जगह जेल में होनी चाहिए।
0: सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से किस तरह के व्यवहारिक परिवर्तन अब देखने को मिल रहा है।
2: इस फैसले के बाद अब लोग धन और बाहुबल के बूते पर जन प्रतिनिधि बनने का सपना देख रहे दागियों के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक दशक पहले PUCL की तरफ से जब ये याचिका दाखिल की गई थी, तब केंद्र सरकार का रुख नकारात्मक ही था। केंद्र सरकार बार बार इसको नकारती रही है।
0: इस अभियान को सफल बनाने के लिए सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा?
1: देखिए, मानवाधिकार के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति जस्टिस राजेंद्र सच्चर, वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारिख ने अभियान चलाकर लोगों को प्रोत्साहित किया कि पूरे देश में इसको लेकर अभियान चलाया जाए।
0: जी जी,
1: संसदीय लोकतंत्र जिस तरह से आज विवादों में घिर गया है, जनता के बीच ये साफ संदेश जा रहा है कि सत्ताधारी नेतागण किसी भी तरह से दागी नेताओं को बचाने के लिए हर तरह का संवैधानिक नुस्खा तलाश करेंगे। आने वाले दिनों में जो आगे और चुनौतियां आएंगी, जनता के पक्ष में खड़ी होने वाली शक्तियों को, संसदीय लोकतंत्र को कलंकित करने वाली इन पार्टियों के खिलाफ भी अभियान चलाना होगा, तभी जाकर संसदीय लोकतंत्र मजबूत होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, किसी को न चुनना, क्या इसे लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी माना जाए? आप क्या समझते हैं कपूर जी?
2: सुप्रीम कोर्ट का आया नया ऐतिहासिक फैसला रोज विकसित होते लोकतंत्र और मतदाता के अधिकार से जुड़ा है, जिससे लोकतंत्र को जीवन मिलेगा और अच्छा प्रशासन आएगा।

0: मतदान में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। दूसरी बात यह है कि नकारात्मक बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन होने से बचाया जा सकेगा।
1: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को यह अधिकार किस तरह से प्रभावित करता है कपूर जी?
2: मतदाता के लिए मजबूरी में किसी प्रत्याशी को चुनने की बाध्यता नहीं होगी और नेताओं के लिए राह मुश्किल हो जाएगी। निर्वाचन आयोग ने कहा, किसी को न चुनने वाला बटन लगाने में कोई अतिरिक्त खर्च या प्रयास जरूरी नहीं है।
1: वही मैं फिर श्याम जी आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को यह अधिकार किस तरह से प्रभावित करता है?
0: लोकतंत्र का मौलिक सिद्धांत है वोटर के पास विकल्प का होना।
1: जी बिल्कुल,
0: ये विकल्प ही लोकतंत्र की प्रकृति और गुणवत्ता को निर्धारित करने का मानक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में यही स्पष्ट किया है कि यद्यपि मत देने का अधिकार कानूनी अधिकार है, लेकिन जब वोटर उसे किसी उम्मीदवार के पक्ष में देने या न देने का फैसला करता है तो यह उसकी अभिव्यक्ति का अधिकार है जो उसे संविधान से मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जब इस आजादी के अधिकार का प्रयोग करने का मामला आता है तो वोट देने और वोट न देने के अधिकार एक समान हो जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अब तो ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उसको यह अधिकार किस तरह से प्रभावित कर रहा है?
0: देखिए, अब तक होता ये था कि यदि वोटर किसी उम्मीदवार के पक्ष में वोट दे रहा है तो उसकी पहचान गोपनीय रखी जाती थी, पर यदि वो वोट नहीं देता है तो नियम 49(o) के तहत उसकी गोपनीयता का उल्लंघन होता है।

अभी आपने सुना कार्यक्रम कानूनी ज्ञान और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। आइए साथियों, अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

अभी आपने सुना एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए साथियों, अब सुनते हैं वसुदेव कुटुम्बकम, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं भवानी कौल, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

व्यक्ति विशिष्ट के अंतर्गत सुनिए वार्ता हिंदी जगत के महान अज्ञ। दोस्तों, हिंदी के जितने महान साहित्यकार, कवि, लेखक हुए हैं उनमें अज्ञ सर्वोपरि हैं। हिंदी के तेजस्वी स्वाभिमान माने जाते हैं वे। वे इतने महान और गुणी व्यक्ति थे जिसका कोई हिसाब नहीं। जीवन में जितना काम उन्होंने किया और जितना अच्छा काम किया, खासकर हिंदी जगत के लिए, कि शायद किसी ने किया। अज्ञ एक विराट एवं विलक्षण प्रतिभाशाली लेखक थे। लेखन के जरिए हिंदी साहित्य में उन्होंने महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई और उन्होंने हिंदी के लिए बेजोड़ काम भी किया। दोस्तों, अज्ञ की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है, क्योंकि उनके जैसे उत्कृष्ट एवं उच्च कोटि के लेखक साहित्यकार बहुत कम होते हैं। 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर कस्बे में उनका जन्म हुआ था और यह हिंदी के महान साहित्यकार अज्ञ का जन्म शताब्दी वर्ष है। अज्ञ आज भी इतने समय बाद हमारे दिलों दिमाग पर बसे हुए हैं। भला उन्हें कोई कैसे भुला सकता है, जिन्होंने हिंदी के लिए अपनी महती सेवा प्रदान की। दोस्तों, अज्ञ उन तमाम लेखकों में सबसे अग्रणी माने जाते हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक धरोहर माना। उनके जैसा लेखक हिंदी जगत में कोई नहीं है। उन्हें क्रमशः हर विधा में लिखने की महारत हासिल थी। वे एक साथ कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना, यात्रा वृत्तांत, डायरी सब कुछ लिखे हैं। इसके अलावा दोस्तों, संपादन एवं आयोजन कार्य से भी जुड़े रहे। उनकी बुद्धिमत्ता एवं लेखन शैली की विराटता को मानना ही पड़ेगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। नई कविता एवं आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के वे प्रतिपादक रहे हैं। चूंकि उनके जन्म को 100 वर्ष चल रहा है, उनका प्रताप अब भी कम नहीं हुआ है। अज्ञ जी ने प्रतिष्ठापूर्ण कार्य किए हैं और देश की सेवा की है। वे उस जमाने में प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका प्रतीक एवं दिन मान के संपादक रहे थे। विराट विलक्षण, विशाल हृदयी, अनमोल प्रतिभा के धनी साहित्यकार अज्ञ को उनके अप्रतिम कार्य के लिए अनेक महत्वपूर्ण पुरस्कारों से नवाजा भी गया। उन्हें साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, भारत भारती जैसे पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया। इतना ही नहीं दोस्तों, इनके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। अज्ञ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्डन रीथ पुरस्कार से भी नवाजा गया। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वे देश और विदेश के आधुनिक कड़ी थे। वे आधुनिकता के महान नायक एवं जनक थे। वहीं हिंदी साहित्य में उन्हें एक अभिभावक के रूप में बड़े पैमाने पर देखा जाता है। वे बड़े ज्ञानी पुरुष थे। हिंदी साहित्य में उन्होंने हमेशा अपना श्रेष्ठ दिया है। वे श्रेष्ठ ही नहीं थे, अपितु दूसरों के लिए उन्होंने एक मार्ग तैयार किया, एक रास्ता तैयार किया जिस पर सब चल सकें। दोस्तों, मुक्ति बोध एवं शमशेर बहादुर सिंह भी बड़े मशहूर कवि रहे हैं, पर महानायक तो हमेशा अज्ञ ही रहेंगे। वे नायक साहित्यकार हैं। विराटता एवं विशालता ओढ़े आज भी अन्य कवि लेखकों के लिए मिसाल बने हुए हैं। दोस्तों, ऐसे अनेक लेखक और कवि हुए हैं जिन्हें एक तरह से अज्ञ ने ही रास्ता दिखाया, उन्हें मार्ग दिखाया। यूं कहें कि उनके दिखाए मार्ग पर, उनके दिखाए रास्ते पर ये कवि और लेखक चल पड़े। धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मनोहर श्याम जोशी, लक्ष्मीकांत वर्मा, नरेश मेहता, विजय देव, नारायण साही, नंद किशोर आचार्य, रमेश चंद्र शाह जैसे अनेक कवियों, लेखकों की लंबी संख्या है, एक लंबी कतार है जिन्होंने अज्ञ को सहायक के रूप में लिया। इनका अनुभव सबने लिया और उन्होंने
इन सब को संभव भी बनाया। साथियों, कहानी उपन्यास आलोचना तक में अज्ञेय के नायक सशक्त एवं निर्णायक भूमिका निभाने में सक्षम रहे हैं। उन्हें नायक संपादक भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। प्रतीक जैसी अद्भुत पत्रिका आज तक दूसरी नहीं हुई और न ही दिनमान जैसा साप्ताहिक। यूं तो कुछ लोग अज्ञेय को समाज विरोधी एवं सामान्य जीवन से कटा हुआ बताते हैं, पर सच कहा जाए दोस्तों तो अज्ञेय बेहद ही सुलझे हुए व्यक्ति थे। छोटे बड़े लेखकों, अध्यापकों, पत्रकारों, संस्थाओं से संबंध और संवाद बनाकर रखे थे। वे सबसे वार्तालाप करते थे, सबसे अपने मधुर संबंध बनाकर रखते थे और उनसे बराबर बातचीत करते थे। वे अत्यंत ही शालीन लेखक थे। उनमें यही गुण नहीं थे दोस्तों, अज्ञेय काफी पढ़े लिखे लेखकों में से एक थे। भूगोल उनका रुचि का विषय था। इसके अलावा उनकी कई विषयों में जिज्ञासा थी और उन विषयों का ज्ञान भी रखते थे। अज्ञेय काफी भाषा सजग लेखक थे। उनकी भाषा हमेशा सजी संवरी होती थी। उनमें शिल्पगत कुशलता जैसे कूट कूट कर भरी थी। उनके काव्य शास्त्र में नपा तुला आग्रह है, जो उनकी खासियत थी। एक बात और है दोस्तों, और दिलचस्प बात यह है कि अज्ञेय के बारे में उनकी प्रारंभिक छवि परंपरा के मूर्ति भंजक की थी। उनमें आधुनिकता का बोलबाला था, जो परंपरा के विरुद्ध दिखाई देता था। वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे। बाद में उनमें आत्मबोध जागा और संवाद सृजनात्मक हो चले। जापान यात्रा के पश्चात उनकी कविता में लौकिकता का विस्तार हुआ। असाध्य वीणा अज्ञेय की लौकिकता प्रधान क्लासिक कविता है। वैसे तो शुरुआती दिनों से ही वे उनकी कथा कहानियों में प्रकृति के सूक्ष्म अवलोकन थे। बाद में अज्ञेय प्रकृति के प्रति विशेष आभार व्यक्त करते नजर आते हैं। दोस्तों, लोग अज्ञेय को लेकर अलग अलग मत से जुड़े हैं। कुछ लोग उन्हें मूलतः लेखक मानते हैं तो कुछ लोग कवि के रूप में देखते हैं। कई लोग उनके उपन्यास शेखर एक जीवनी को क्लासिक मानते हैं, पर कविता में उन्हें बड़ा नहीं समझते। खैर दोस्तों, ये तो अपना अपना मत है, लेखकों और कवियों का अपना विचार है। लेकिन इस बात में इतनी सच्चाई जरूर है दोस्तों कि वे समय के साथ आधुनिक एवं उजले मान तेजस्वी साहित्यकार थे। 4 अप्रैल 1987 को 76 वर्ष की आयु में दिल्ली में उनका देहांत हो गया। यह तो कभी नहीं भूलना चाहिए पूरे हिंदी जगत को, पूरी हिंदी भाषा को, कि अज्ञेय हिंदी के स्वाभिमान लेखक रहे हैं और हमेशा रहेंगे। युग युगांतर तक उनकी साहित्यिक छटा बरकरार रहेगी। दोस्तों, अज्ञेय जैसे बुद्धिमान एवं प्रतिभाशाली लेखक बहुत कम देखने को मिलते हैं। उनकी साहित्यिक प्रतिष्ठा हिंदी जगत में हमेशा बनी रहेगी।

अभी आपने सुना कार्यक्रम वसुदेव कुटुम्बकम, जिसे प्रस्तुत कर रही थी भवानी कौल और प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए साथियों सुनते हैं नाटक मेरी नौकरी, जिसकी लेखिका और प्रस्तुतकर्ता हैं अंतरा करवड़े और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: हेलो।
1: अरे वसीम भाई, ये आपके शादाब का वादा है, कभी टूटा है इससे पहले?
0: अरे भाई, मेरी नौकरी ही ऐसी है कि सभी को काम करना पड़ता ही है।
1: अब पत्रकार है भाई क्या है?
0: अरे सभी डरते हैं
1: और इज्जत भी अलग मिलती है।
0: हाँ जी जी जी, इसी का तो खाते हैं हम सभी पत्रकार।
1: अच्छा चलो भाई, फोन रखता हूँ, ठीक है, बाय बाय।
2: अरे शादाब, या अल्लाह, ये लड़का भी, बेटे खाना तो खा लिया होता, वो राबिया आती होगी थोड़ी देर में, मेरी बहू सोचेगी कि मैंने उसके शौहर को खाना तक नहीं दिया अभी तक।
1: क्या अम्मी, आप भी खाना और राबिया, इसके अलावा और कुछ है भी आपकी जिंदगी में?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, अरे मेरा इकलौता पुत्र शादाब जो है।
1: बस भी अम्मी, लगता है खन्ना आंटी के साथ जरा ज्यादा ही जमने लगी आपकी। आजकल कर क्या रही है वो बुढ़िया?
2: या अल्लाह, तू तो उसे ऐसे बुढ़िया कह रहा है शादाब, जैसे 80-85 की हो गई। अरे पिछले महीने ही 58 की हुई है वो।
1: अरे जन्मदिन पर कुछ खिलाती पिलाती तो है नहीं कि हम याद कर लिया करें। अरे बताना उसे कि तेरा बेटा भी पत्रकार है, पत्रकार, दुनिया जहान की खबरें रहती है उसके पास। अच्छा जरा मिस्सी रोटी तो दे देना, बड़ी कवाल की बनी है मम्मी।
2: राबिया भी कह रही थी उसे ऐसी मिस्सी रोटी बनानी सीखनी है, लेकिन उस लड़की को अपनी नौकरी से फुर्सत मिले तब तो।
1: अरे राबिया की नौकरी भी कोई नौकरी है? है? बस दिन भर वो कंप्यूटर पर बैठी बैठी साइट सर्च करती रहती है, उसे तो खाली समय है, खाली समय, इसलिए शुरू कर दी नौकरी। वरना काम तो हम जैसों का होता है।
2: अच्छा।
1: फील्ड में जाकर दिखाइए।
3: कोई जरूरत नहीं है मुझे फील्ड में जाने की, मैं तो मेरे कंप्यूटर पर ही खुश हूँ। और आज आपको निकलने में बड़ी देर हो गई।
1: अरे अब उस कलाकार ने इंटरव्यू का समय ही रात 9 बजे का दिया तो मैं क्या करूँ, तुम्हारे जैसा तो है नहीं, बस 6-7 घंटे नौकरी की और आ गए बैग लटका कर।
3: इनसे तो बात करना ही मुश्किल है, अपनी नौकरी को लेकर जाने कितने पॉजिटिव है।
1: हाँ हूँ पॉजिटिव अपनी नौकरी को लेकर, तभी तो इतनी तनख्वाह मिल रही है मिसेज राबिया शादाब, आपसे पूरी दोगुनी कीमत है मेरी, समझी?
3: मैं तो अल्लाह से दुआ करूं कि मुझसे 1000 गुना की कीमत दे आपको, बस ये गुरूर मन से निकाल दीजिए।
1: बस हो गई ना तुम फिर शुरू। अरे भाई अब नहीं होती किसी किसी की किस्मत कि इतनी ऊंची कमाई कर ले या फिर इतनी ओहदेदार नौकरी मिल जाए। खैर आप हमारी शरीके हयात हैं, आपको माफ किया, अब हम चलते हैं।
2: जरा संभल कर जाना बेटे, इन दिनों शहर के हालात ठीक नहीं लगते। अरे राबिया बेटी बताओ कैसा रहा दिन तुम्हारा, थकी हुई लगती हो, चाय बनाओ या फिर सीधे खाना ही खाओगी?
3: बस फ्रेश होकर आ जाओ फिर साथ ही खाना खाते हैं, आप भी तो रुकी होंगी ना। फिर खाने के बाद मैं गर्मा गर्म कॉफी बनाऊंगी।
2: ठीक है, अच्छी बात है बेटी, तो तैयार होकर आ जा। ठीक है शादाब, और राबिया दिन पर दिन एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, कितनी ही बातें सोची थी मैंने इनकी शादी से पहले, मुझे मौलवी साहब ने बताया भी तो था, बेटा पत्रकार है, बड़ी जल्दी गुरूर पकड़ेगा, इसकी लगाम कसकर रखना, नहीं तो एक दिन औंधे मुंह रहेगा। बाकी शादाब को गुरूर तो काफी हो गया है अपने गौधे का, खैर अब अल्लाह मियाँ जो दिखाए।
3: अम्मी आज मिस्सी रोटी बनी है ना?
2: हाँ
3: मुझे भी सीखनी है।
2: हाँ बिल्कुल, शादाब से भी कहा था मैंने, वो मुझसे कहने लगा कि
3: जानती हूँ उन्होंने क्या कहा होगा, उन्हें मेरा काम करना तो फूटी आँख नहीं सुहाता।
2: अरे
3: उनका बस चले तो बस घर में बिठा कर ही दम ले, मुझे तो आने वाला समय बड़ा मुश्किल लग रहा है अम्मी।
2: ऐसा क्या हो गया बेटी, सब कुछ खैरियत से तो है ना?
3: सब कुछ ठीक है अम्मी, लेकिन शादाब के बारे में सोचकर मन खराब होने लगता है।
2: राबिया बेटी मैं जानती हूँ तूने बचपन से अपनी सारी मंजिलें खुद पाई है, बिन माँ की बेटी होकर भी हर मुकाम पर तुम आज अव्वल हो। मैं तुम्हारी अम्मी की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन अपने शौहर की अम्मी के ही हक से मुझसे अपने मन की बात नहीं कहोगी बेटी?
3: मैंने आपको कब पराया समझा है अम्मी, डर लगता है, डर लगता है तो अपने शौहर से, उनके ख्यालातों से। वे अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं है।
2: सच कहूँ राबिया, तो चंद मिनट पहले बेटे मेरे मन में भी यही ख्यालात थे। उसका गुरूर वाकई बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
3: अम्मी, मैंने कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ी न्यूज चैनल में टीम हेड की पोस्ट के लिए इंटरव्यू दिया था, और आज मुझे उनका अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है।
2: क्या राबिया? राबिया मेरी बच्ची, अरे इतनी उम्दा बात और तू इस अंदाज से सुना रही है जैसे कोई गमी की बात है। मैं तो कल ही चादर चढ़ाऊंगी परली वाली मजार पर। या अल्लाह, मेरी बेटी के दामन को खुशियों से भर दे।
3: नहीं अम्मी, अल्लाह मियाँ की यह सौगात मुझे मंजूर नहीं है।
2: कैसी बहकी हुई सी बातें करती है बेटी।
3: ठीक कहती हूँ अम्मी, आज जब मैं शादाब से ओहदे में पैसे में कम हूँ तो उनका गुरूर आसमान पर है। कल को जब उन्हें मालूम होगा कि मैं उनसे ज्यादा कमाने लगी हूँ, उनसे ऊंचे ओहदे पर हूँ, तब उनकी सोच जाने क्या क्या गुल खिलाएगी। हो सकता है कि मुझसे जलते हुए वो मुझे नौकरी छोड़कर घर बैठने को ही मजबूर कर दे।
2: देखो बेटी, कामयाबी तो हर किसी को अपनी मेहनत से मिलती है। अब शादाब को तुम्हारी कामयाबी पर जलन होगी, इस वजह से तुम हाथ आया हुआ मौका गवा दो? नहीं नहीं, ये मुझे मंजूर नहीं होगा।
3: लेकिन अम्मी।
2: लेकिन बेटी कुछ नहीं, तुम इस कंपनी के ऑफर को हाँ कहने वाली हो राबिया। आने वाले समय में शादाब को भी तो ये सोचना चाहिए कि उसे भी आगे बढ़ना है। राबिया, हो सकता है तुम्हें आगे बढ़ता हुआ देखकर वो भी आगे जाने की सोचे।
3: ऐसा हो तो कितना अच्छा होगा।

0: मम्मी मैं आ गई हूँ।
1: वाह क्या महक है, शायद बिरयानी बनी हुई है।
0: अम्मी
1: अम्मी
0: हाय अल्लाह, कैसे छुपे हुए थे पर्दे के पीछे, और अम्मी कहाँ है?
2: खन्ना आंटी की यहाँ गई है
0: इस वक्त। क्यों?
2: क्योंकि जब मैं अपने गुरूर को तोड़ते हुए तुम्हें तुम्हारी कामयाबी पर बधाई दूं, तब उनके सामने मुझे शर्मिंदगी न उठानी पड़े, इसलिए।
0: क्या?
2: कांग्रेचुलेशन राबिया, तुम्हारी पसंद के फूल हैं। क्या हुआ, पसंद नहीं आए?
0: नहीं ऐसी बात नहीं है।
2: फिर?
0: मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप और।
2: यकीन मुझे भी नहीं हो रहा था राबिया, कि तुम वाकई इतनी ऊंचाई पर कैसे जा सकती हो। लेकिन तुमने कभी गुरूर नहीं पाला, हमेशा अपने पांव जमीन पर रखे, और आज वाकई कामयाब हो।
0: मुझे आज कितनी खुशी मिली है आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अरसे बाद ये खुशनुमा फूल, आपकी ये बातें, वाकई ये कहीं सपना तो नहीं है?
2: और ये अगर सपना भी है तो कभी न टूटे, मैं हमेशा तुम्हें इन्हीं बुलंदियों पर देखता रहूं।
0: वाकई शादाब, मुझे लगा ही नहीं था कि आप भी अपनी सोच को बदल सकते हैं।
2: राबिया, मेरी सोच को बदला है मेरी अम्मी ने, उन्होंने नहीं समझाया होता तो मैं आज भी वैसा ही बिखरा हुआ होता।
0: आज के दिन को मैं अपनी डायरी में सुनहरे हरफों में लिखूंगी। आज न केवल मेरे खाविंद मुझे वापस मिल गए, मेरी सास के रूप में मेरी अम्मी भी मुझे मिल गई। या अल्लाह अपनी रहमत हमेशा हम

अभी आपने सुना नाटक मेरी नौकरी, जिसकी लेखिका और प्रस्तुतकर्ता थी अंतरा करवड़े और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। तो इसी के साथ दोस्तों आज्ञा दीजिए ग्लोरिया गांगले को, अगली मुलाकात में आपसे बात करेंगे विवेक पीटर रॉबर्ट।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोताओं को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी की समय सारणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम एक मुलाकात, युवा विकास और अंत में युग संचार। तो दोस्तों, अब हम अपनी समय सारणी के अनुसार हमारा यह कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम एक मुलाकात से, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं नुपुर दीक्षित और उनके साथ है सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ लेखक श्री चिन्मय मिश्र साहब। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं कार्यक्रम एक मुलाकात नुपुर दीक्षित के साथ।

0: एक मुलाकात कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नूपुर का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, घर से निकलते हुए, दफ्तर पहुंचते समय, दफ्तर से लौटते समय या बच्चों को स्कूल छोड़ते समय ढेर सारी समस्याएं, कई सारे सवाल हमारे मन में पैदा कर देती है। समस्या चाहे पर्यावरण से संबंधित हो, सड़कों के ट्रैफिक से संबंधित हो, हमारे सांस्कृतिक प्रदूषण से संबंधित हो या देश की नीतियों से संबंधित हो, हर समस्या हमें उद्वेलित करती है, परेशान करती है, मन में कुछ सवाल उठाती है और फिर कहीं न कहीं गुम हो जाती है। पर कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर ये समस्याएं वो ताकत पैदा करती है कि ये लोग उन समस्याओं को खत्म कर सके, उनसे लड़ सके, उन्हें दूर भगा सके। और ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे बीच मौजूद है। हमारे साथ एक मुलाकात कार्यक्रम में हम आज बात करेंगे सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ लेखक श्री चिन्मय मिश्र साहब से। मिश्र साहब, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: सर। आपका काम कई सारे क्षेत्रों में फैला हुआ है जिसके ढेर सारे आयाम हैं, तो क्यों न हम सबसे पहले शुरुआत करें इसके आधार से, सामाजिक मुद्दों के प्रति ये रुझान आपके मन में कब और कैसे जागृत हुआ?
1: दरअसल इसके लिए कोई अलग से आपको प्रयास नहीं करना पड़ता। जब आप अपने आसपास का समाज देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उनकी दिक्कतों के बारे में महसूस करते हैं, तो आपके अंदर अपने आप एक भावना पैदा होती है और आप उन सारी समस्याओं से स्वयं को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
0: और ये जुड़ाव आप लोगों को प्रेरित करता है कि आगे बढ़कर इन समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जाए?
1: हाँ, कहीं ना कहीं मतलब कोशिश हमारी तरफ से समस्याओं को दूर करने से ज्यादा समस्याओं को समझने की और समझाने की है।
0: जी,
1: क्योंकि हम जिस समय में रह रहे हैं वो इतना कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा समय है जिसमें हम ये समझ ही नहीं पाते कि कोई चीज ये बुलावे में हमें रखा जाता है कि ये चीज हमारे फायदे के लिए है और अंततः वो हमें नुकसान पहुंचाती है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त सबसे बड़ी जो चुनौती हमारे समाज के सामने है वो ये समझना पड़ेगा उसे कि अंततः उसके फायदे में क्या है।
0: जी, और ये समझना ही मेरे ख्याल से सबसे पेचीदा काम है। एक बार यदि आम नागरिकों को उनके हित समझ में आ जाते हैं, उसके बाद शायद उन्हें बुलावे में रखना आसान नहीं होगा।
1: ठीक बात है।
0: लोक संस्कृति और आदिवासी जीवन में सदैव आपकी रुचि रही। एक सवाल मन में उठता है कि जिस गति से हमारे यहाँ जंगल कम हो रहे हैं, क्या 10 साल बाद भारत की आदिवासी संस्कृति का अस्तित्व जिंदा रहेगा?
1: ये बात को बहुत गंभीरता से हमें समझना पड़ेगा कि जंगल अंततः खत्म क्यों हो रहे हैं। एक तरफ सारी दुनिया इस बात पर जुटी है कि उसे कार्बन क्रेडिट चाहिए, सब कुछ चाहिए, और दूसरी तरफ जंगलों को खत्म किया जा रहा है। और जितनी तेजी से जंगल खत्म नहीं हो रहे, उससे ज्यादा तेजी से आदिवासियों को उन जंगलों से बाहर किया जा रहा है। एक और हम वनाधिकार कानून बनाते हैं जिसके तहत हम ये मानते हैं कि इन आदिवासियों के साथ 175 वर्ष पहले एक ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, उस अन्याय की हम क्षतिपूर्ति करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हम लगातार नई परियोजनाएं बना के, फिर वो खनन की हो, वो जो टाइगर रिजर्व बनाने की हो, तमाम सारी योजनाएं हम बनाते हैं और धीमे धीमे उन आदिवासियों को हम उनके जंगल से बाहर कर देते हैं। अगर वो जंगल में है तो उनको जंगल से निकाल के हम पहले बफर में लाते हैं, बफर से फिर हम उनको बिल्कुल बाहर कर देते हैं, उनके सारे अधिकार हम छीनते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप जो कह रही हैं वो 10 साल का समय भी बहुत ज्यादा है। उससे पहले ही ये पूरा आदिवासी समाज जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को खो देगा और हम जो हमारी पूरा पारंपरिक जीवन शैली है उससे विमुख हो जाएंगे।
0: मेरे ख्याल से कई लोग जिन्होंने अलग अलग भारतीय क्षेत्रों में आदिवासी समाज को नजदीक से देखा होगा, वे अपने आसपास की आदिवासी संस्कृति को जीवित रखने के लिए कुछ कोशिश जरूर करना चाहते होंगे। तो यदि हमारे श्रोताओं में से कोई व्यक्ति इस किस्म की कोशिश को अंजाम देना चाहता है तो उसकी दिशा क्या होनी चाहिए और किस तरह से उसे अपनी आवाज उठानी चाहिए?
1: देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो पिछले 6 दशकों में हमारे देश के साथ सबसे ज्यादा हो रहा है वो सबसे बड़ा अन्याय यह है कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है।
0: जी,
1: और वो सिर्फ हमारे लिए नहीं दोहन हो रहा, यह हमारे देश के लिए की आवश्यकताओं के हिसाब से नहीं हो रहा। हम एक बार पुनः 300 साल बाद दुनिया के सबसे बड़े रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर होते जा रहे हैं और यही जड़ में है इस पूरी व्यवस्था के
0: जी।
1: जो पूरी शोषणकारी व्यवस्था है और जो आदिवासियों के पूरी तरह से खिलाफ और जो नेटिव्स हैं उनके खिलाफ है। अब झारखंड का उदाहरण आप लें,
0: हाँ।
1: झारखंड में पूरे देश के 40% से ज्यादा खनिज हैं, पर सबसे ज्यादा शोषण वहां है।
0: बिल्कुल,
1: है ना। आप जंगलों की बात कर रही हैं, सबसे ज्यादा वनाच्छादित क्षेत्र एरिया के हिसाब से अगर हम देखें परसेंटेज में तो मध्य प्रदेश है, वैसे सबसे अधिक छत्तीसगढ़
0: जी।
1: सबसे ज्यादा अत्याचार आदिवासियों पर जो है वो छत्तीसगढ़ में।
0: बिल्कुल,
1: है ना। और अब तो एक तरह का ग्रीन हंट इस,
0: हाँ।
1: शब्द ये अपने आप में ये शब्द ही इतना घृणास्पद है कि ग्रीन हंट क्या होता है? जो आपके पक्ष में नहीं है आप उसका शिकार करेंगे क्या? आप अब मनुष्य का शिकार करेंगे? अगर इस मनोवृत्ति पर एक व्यवस्था जुटेगी
0: जी।
1: तो उससे आप कैसे पार पा सकते?
0: बहुत सुनकर हैरानी होती है कि अपने ही देश में अपने ही देश के नागरिकों का हंट, हंट शब्द बहुत बहुत तकलीफ दे देता है।
1: हुँ?
0: और कहीं ना कहीं जो काम किया जा रहा है शायद लोगों ने खुद ही उसके लिए सही शब्द चुन लिया, हंट।
1: नहीं, ये लोगों ने जो कर रहे हैं हंट वो तो ठीक है, पर हमें इस बात को समझना पड़ेगा
0: जी।
1: कि उस हंट के पीछे क्या मानसिकता है। हमें ये देखना पड़ेगा कि ये सारे के सारे अत्याचार उन इलाकों में क्यों हो रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर हैं। ये उनके दोहन का मामला है
0: जी।
1: ये मामला अगर आप देखेंगी तो आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा, ये मामला आपको झारखंड में मिलता है, ये आपको उड़ीसा में मिलेगा।
0: बिल्कुल।
1: तो ये जो पूरा एक षड्यंत्र है जिसमें लगातार लोगों को एक के बाद एक आपको बेदखल करने का क्या तरीका है कि आप ये डिक्लेयर कर दें कि वो असामाजिक तत्व है। अगर कोई उस अपनी संपदा को बचाना चाहता है, हिंसा किसी भी तरह की हिंसा जो है उसका समर्थन नहीं किया जा सकता।
0: बिल्कुल सही बात।
1: परंतु हिंसा सिर्फ वही हिंसा नहीं होती जो बंदूक से या गोली से या लाठी से करी जाती है। कुछ हिंसा ऐसी भी है जो उससे ज्यादा क्रूर और अमानवीय है जो आपको दिखती नहीं है। ये लोग, ये जो नीति बनाने वाले लोग हैं, ये जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, है ना। अगर झारखंड का ही मसला आप लें कि पिछली बार ये पता लगा कि 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भ्रष्टाचार हुआ है, पर उसके समकक्ष एक दूसरी चीज पर आप गौर करें कि उसके सामने 16 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार बीपीएल परिवारों से किया गया, जो बिलो पावर्टी लाइन है उनके राशन कार्ड बनाने के लिए बाकी चीजों के लिए 16 करोड़ रुपए उन्हें रिश्वत देना पड़ी है। तो सारे जो नीति बनाने वाले लोग हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि उन्हें क्या करना है।
0: हमारे देश में युवाओं की मानसिकता फिलहाल विकास की तरफ केंद्रित है। जैसे ही हम प्रकृति के बारे में, पर्यावरण के बारे में या प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के बारे में बात करते हैं, फौरन एक तर्क हाजिर हो जाता है कि फिर विकास कैसे करेंगे, फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो क्या विकास और प्राकृतिक संतुलन के बीच कोई मध्यम मार्ग चुना जा सकता है? कोई ऐसा मार्ग है जो हमें विकास भी करने दे लेकिन हमारी प्रकृति भी बची रहे?
1: दरअसल यहां युवाओं को उनकी अपनी जीवन शैली पर पुनर्विचार करना पड़ेगा
0: जी।
1: जिस तरीके से पूरा की पूरा नया जो परिवेश बन रहा है वो अत्यधिक उपभोग के ऊपर निर्भर है।
0: बिल्कुल।
1: आप रोज सवेरे से शाम तक हम लोग देखते हैं कि आज हमारे पास एक मोबाइल है, कल वो बदल जाता है, परसों तीसरा मोबाइल हो जाता है, हमारे कपड़े हैं, हमारे और जितनी भी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें हैं वो रोज हमारी बदल रही हैं। तो विकास का मतलब अत्यधिक उपभोग नहीं है। हम विकास का मतलब मान रहे हैं कि हम अपने जितना ज्यादा उपभोग हम करेंगे उतना ज्यादा हम विकसित होंगे, जबकि इसका उल्टा है। होना ये चाहिए कि हमारा उपभोग कम हो
0: और
1: वो अपने आप एक विकास को
0: जी।
1: उन्नत करेगा, प्रमोट करेगा। अगर हमारे पास लाखों साल का जो फॉसिल फ्यूल था,
0: हाँ।
1: उसको अगर हम 200 साल के अंदर खत्म करने की स्थिति में आ गए हैं तो क्या ये विकास है?
0: ये तो विनाश है,
1: है ना। ठीक वैसे ही कि अगर पूरी दुनिया कगार पर खड़ी है कि वो 10 साल 20 साल के अंदर अगर 3 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? जो नीचे के देश डूब जाएंगे और ऊपर के जो 30-35 देश हैं नॉर्थ के वो जिंदा रहेंगे। पर ये इस युवा को समझना पड़ेगा कि अंततः उसका जीवन और उसकी जीवन शैली इन दोनों के बीच एक सामंजस्य होना चाहिए जो प्रकृति के बीच में होगा। जैसे गांधी की बात अगर आप करें तो गांधी बहुत साफ कहते थे कि इस प्रकृति में प्रत्येक व्यक्ति को देने के लिए सब कुछ है, पर ये प्रकृति एक व्यक्ति के भी लालच की पूर्ति नहीं कर सकती। अगर आप माने कि नई दुनिया में कुछ संभव है तो आप विनोबा को देखें कि अगर कोई एक आदमी अपने जीवन में पैदल चल करके लाखों एकड़ जमीन को भूदान में ले सकता है तो उसमें कुछ तो बात होगी, उसके विचार में कोई बात होगी। पर हमारी पूरी व्यवस्था उस पूरी जमीन को जो उन्होंने भूदान में मिली है उसको ठीक से वितरित नहीं कर पा रही। सिर्फ बिहार में 4.25 लाख एकड़ जमीन ऐसी है जो अभी वितरित नहीं हुई है, वो पड़ी है। अगर हम 5 एकड़ प्रति परिवार भी दें तो कम से कम 80,000 परिवारों को वो जमीन मिल सकती है।
0: जी सर, मैं जरूर जानना चाहूंगी भूदान आंदोलन की पृष्ठभूमि के बारे में।
1: दरअसल गांधी जी का अपना एक सिद्धांत था ट्रस्टी
0: जी,
1: है ना, ट्रस्टीशिप, कि आपके पास जो आपकी संपत्ति है वो आप उसके मालिक नहीं है, आप उसके संरक्षक हैं।
0: जी,
1: विनोबा को उन्होंने अपना पहला सत्याग्रही बनाया था। आजादी के बाद जब नई तरह की पूरी एक राजनीति बनी तो उसमें एक बात ये उठी कि क्या गांधीवादी विचारों की कोई जगह है, या व्यक्ति अपने हिस्से से अपने हिस्से की जमीन को क्या कभी दान भी कर सकता है। विनोबा ने जब ये देखा कि एक सिस्टम उस वक्त पर जो चल रहा था, जो रूस में था और जो चीन में हुआ, जिसमें जबरदस्ती जमीनें ली गईं और बांटी गईं, विनोबा का ऐसा मानना था कि नहीं, मनुष्य मूलतः एक अच्छा व्यक्ति है, उसकी अपनी मानसिकता है और अगर उसे समझाया जाएगा तो वो अपना जो भी अतिरिक्त है वो देगा। और उन्होंने आंध्र प्रदेश में एक छोटी सी जगह है पोचमपल्ली
0: जी,
1: पोचमपल्ली से अपना भूदान यज्ञ शुरू किया। वो जगह भी अभी भूदान पोचमपल्ली कहलाती है।
0: अच्छा,
1: है ना, वो गांव का नाम है भूदान पोचमपल्ली है। और वहां एक बुनकर ने पहली बार उसके परिवार की 100 एकड़ जमीन दान दी थी जो उसके पूरे परिवार की थी। और बुनकरों की जगह है पोचमपल्ली
0: और हाँ, वहां की साड़ियां
1: और बहुत प्रसिद्ध हैं। और वहां से विनोबा ने अपनी एक यात्रा शुरू करी और आप आश्चर्य करेंगे कि उनको सबसे ज्यादा अगर कहीं जमीन मिली तो वो बिहार में मिली। और 4 लाख एकड़ जमीन आज की तारीख में बिना बटी पड़ी है। और पूरे देश में अगर आप देखेंगी तो वो जो आंकड़ा है वो करीब 12 से 13 लाख एकड़ जमीन जो ली थी विनोबा ने, जो बढ़ गई वो अलग है। 20 लाख एकड़ जमीन एक व्यक्ति पैदल चल करके ले सकता है बिना किसी जोर जबरदस्ती के। तो आप उस बात को मानिए कि एक व्यक्ति के अंदर अच्छा होने की भावना को अगर आप जगाते हैं तो आप दुनिया में को बदल सकते हैं। और हम दूसरी तरफ जो कानून अंग्रेजों ने 1894 में भूमि अधिग्रहण कानून बनाया उसके बल पर लोगों से, आदिवासियों से खासकर जो है, हम जमीनें लगातार अधिग्रहित कर रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आजादी के बाद से इस देश में करीब 10 करोड़ लोग विस्थापित हुए हैं जिनमें से 6 करोड़ से ज्यादा आदिवासी हैं। जो जमीन सरकार ने उद्योगों के लिए और बाकी योजनाओं के लिए अधिग्रहित की है वो जमीनें बांग्लादेश जैसे एक बड़े राष्ट्र के बराबर की हैं, जिनमें 14 करोड़ लोग रह सकते हैं। इतनी जमीनें सरकार ने अधिग्रहित की हैं और उसके बावजूद लगातार वनों को, खनिज के लिए पहाड़ों को काटा जा रहा है और आदिवासियों को उनके पारंपरिक पूरे रहवास से किसी न किसी तरीके से बेदखल किया जा रहा है।
0: क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम इसे रोक सकें या कम से कम इस पर चिंतन की शुरुआत कर सकें?
1: देखिए, चिंतन की शुरुआत तो पूरी दुनिया में हो रही है
0: जी,
1: और एक बड़ा वर्ग खड़ा है जो हमने अभी कोपनहेगन में भी देखा
0: जी,
1: कि सारे बड़े राष्ट्रों के खिलाफ छोटे राष्ट्र खड़े हैं, छोटे राष्ट्रों के साथ पूरी दुनिया में। वो मतलब ऐसा नहीं है कि विकसित देशों के लोग नहीं है, वहां एक बड़ा वर्ग है जो कि इस बात को समझ रहा है और उनके देशों के जो अत्याचार हैं उनको भी समझ रहा है, वो खड़े हैं। पर जो सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरी दुनिया में फैली अशिक्षा इस पूरी चीज के पीछे एक बड़ा कारण है।
0: बात अशिक्षा की निकली है तो मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि क्या हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली से आप संतुष्ट हैं?
1: शिक्षा तो वही हो सकती है जो आपको आपका, आपके समाज का, आपके पर्यावरण का भला बुरा सोचने की ताकत दे। वो आपकी शिक्षा आपको नहीं दे रही।
0: हाँ।
1: साक्षरता के मायने बिल्कुल अलग हैं, शिक्षित होने के मायने बिल्कुल अलग हैं। और उस लिहाज से हम साक्षर हो रहे हैं पर शिक्षित नहीं हो रहे। मतलब गांधी जिस तरह की शिक्षा की बात करते थे उसमें तो क्लासरूम की इस तरीके से कोई गुंजाइश ही नहीं थी, बोर्ड की एग्जाम की कोई बात नहीं थी। वो कहते थे आप भाषा सीखिए, गणित सीखिए, आपको इससे आगे सीखने की कोई जरूरत नहीं है,
0: बिल्कुल सही,
1: बाकी चीजें आपको सीख जाएंगी। पर अब मुद्दा इस बात का आ गया है कि चीजों को इतना ज्यादा जटिल बना दिया गया है कि एक आम पालक को लगता है कि उसके बेटे को या बेटी को 5 साल की उम्र में दुनिया की हर जानकारी हो जाना चाहिए।
0: लेकिन मोहल्ले के पास में कौन सा मोहल्ला है उसका नाम नहीं पता होता।
1: यही तो साजिश है ना, जिस साजिश को हमें समझने की जरूरत है कि आपको आपकी स्थानीयता से जिस दिन विमुख कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, उस दिन आप आपकी जड़ों से कट जाएंगे।
0: इससे पहले कि ये मुलाकात खत्म हो, मैं चाहूंगी आप हमारे श्रोताओं को एक संदेश दें।
1: संदेश सिर्फ इतना सा है कि अपने आसपास का परिवेश देखें, उसे पहचानें और उसके हिसाब से अपने जीवन को जीने का प्रयास करें।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक मुलाकात, जिसे प्रस्तुत कर रही थी नुपुर दीक्षित और उनके साथ थे सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ लेखक श्री चिन्मय मिश्र साहब। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों,

युवा विकास वार्ता सुनिए संकल्पशील बने युवा। लेखक हैं कृष्णकांत दुबे और वाचिका भवानी कौल। तब मैंने श्री भवानी प्रसाद मिश्र, जिन्हें हम लोग भवानी भाई कहकर संबोधित किया करते थे, एक समय उनकी एक कविता पढ़ी थी। वे अपने समय के एक ऐसे कवि थे जिनकी कविताएं पढ़कर सुनकर युवा सर्वाधिक प्रभावित होते थे, क्योंकि उनकी कविताओं में युग जीवन की ध्वनियां होती थीं। वे इतनी सहज सरल होती थीं कि सामान्य जन भी उन्हें सुनकर पढ़कर समझ लेता था, उसमें कहे मंतव्य को जान लेता था। वे जैसे कवि थे ठीक वैसे ही सहज सरल इंसान भी थे। उनकी रचनाओं में मानवतावाद सीधे ध्वनित होता था। मैंने उस समय उनकी जिस कविता को बांचा था वह कविता यूं थी। अगर हमने आज का दिन ठीक जी लिया तो देवताओं और राक्षसों ने जितना अमृत निकाला था सबका सब पी लिया, ऐसा समझो। कल क्या लेकर आएगा ये क्यों सोचते हैं हम, जो अभी किसी विषय से डरे नहीं हैं, किसी भ्रम की आशंका से भरे नहीं हैं। मित्रों, भवानी भाई की इस कविता का यही तो संदेश था। हमें तो हर दिन का अमृत ग्रहण करना है। कल की चिंता छोड़ी, जिए तो शुभ्रता से जिए। इस रचना को पढ़ने के बाद कुछ माह पहले नगर के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में पढ़े विवरण का सहसा स्मरण हो आया और उस विवरण में सचमुच कुछ ऐसी ही बात थी जिसने मुझे ही नहीं कई कई लोगों को आकर्षित किया था। यह होना स्वाभाविक था। उस विवरण को शीर्षक दिया गया था, कई परिवारों को लौटाई खुशियां। और आगे कहा गया था, उनकी धमनियों में बह रहा रक्त सिर्फ उन्हें ही नहीं दूसरे लोगों को भी जीवन देता है। उनके रक्त से कई परिवारों में मुस्कान लौटती है। जरूरतमंदों को अपना रक्त देना उनका संकल्प है, उनका मिशन है। वे इस तरह मानवता को जिंदा रखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कोई भी समय पर रक्त न मिलने के कारण मृत्यु को प्राप्त न हो। मित्रों, आप सोच रहे होंगे यह सब कैसे क्यों कर घटित हुआ कि उन युवाओं को ऐसा कुछ संकल्प लेना पड़ा कि वे सदा रक्तदान के लिए संकल्पित और तैयार रहेंगे। हाँ, एक घटना हुई थी और उस युवा समूह ने यह पावन संकल्प लिया था। तब दो तीन युवा मित्र एक मित्र की दुकान पर बैठे थे। समय रात्रि का था। तभी उन युवाओं को सूचना मिली कि उनके एक निकटतम मित्र का कहीं एक्सीडेंट हो गया है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। यह सूचना पाकर वे सभी मित्र वह दुकान बंद कर तेजी से अस्पताल की ओर रवाना हुए। दुर्घटना में उनके उस मित्र के शरीर से काफी रक्त बह चुका था। वे लोग उस अस्पताल के डॉक्टर महोदय से मिले। डॉक्टर महोदय ने उन लोगों से यही कहा, अगर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को उचित समय पर रक्त नहीं दिया गया तो संदेह है उसका जीवित रह पाना मुश्किल होगा, मृत्यु भी तो हो सकती है। उनमें से किसी का भी रक्त ग्रुप दुर्घटनाग्रस्त युवा से नहीं मिल पा रहा था। लेकिन काफी दौड़ धूप के बाद तथा कुछ विशेष प्रयत्नों से उस ग्रुप का रक्त आखिर प्राप्त हो ही गया। निश्चित था उनका वह दुर्घटनाग्रस्त मित्र बाद में स्वस्थ होकर घर लौट आया। उससे उन मित्रों को प्रसन्नता हुई। एक समय वे सभी युवा मित्र एक साथ मिले, साथ में बैठे। तब उस मित्र मंडली ने सोचा कि इस तरह की दुर्घटनाएं औरों के साथ भी घटती रहती हैं, तब क्यों न मिलजुल कर ऐसा

किया जाए जिससे ऐसे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को रक्त प्रदान कर उनके प्राण बचाए जाएं। और उस समय पर उन चार पांच मित्रों ने मिलकर एक संस्था का गठन किया। यह संस्था कोई चार वर्ष पूर्व यानी सन 2005 में बनी। फिर धीरे धीरे उस संस्था को कोई 12 सदस्यों का सहयोग मिला। अब ज्ञात हुआ है आज इस परोपकारी संस्था की सदस्य संख्या कोई 65 तक पहुंच गई है। और मित्रों, इस संस्था के सभी सदस्य युवा हैं, जिनकी आयु 20 से 35 वर्ष के बीच है। इस संस्था के सभी युवा इस तरह लोगों की सेवा सहायता में सदैव तत्पर रहते हैं। इस संस्था के इन युवाओं ने कुछ विशेष नियम बनाए हैं, जिनके अंतर्गत सदस्यगण वर्ष में 3 से 4 बार रक्तदान करते ही हैं। यही नहीं, चिकित्सकों की सलाह के मुताबिक वे हर 3 माह में 1 बार रक्तदान करते ही हैं। इनमें कुछ युवा तो ऐसे हैं जो इतने संकल्पित हैं कि वे 2 माह में ही रक्तदान कराते हैं। उस विवरण में यह भी बताया गया था कि संस्था के सभी सदस्यों के पास सभी सदस्यों के फोन नंबर हैं। यही नहीं, उन्हें आपस में यह भी मालूम रहता है कौन सदस्य किस समय किस तिथि को रक्तदान करके लौटा है। लेकिन जब कभी कहीं से भी सूचना मिलती है, वे लोग रक्तदान के लिए तत्काल उस अस्पताल की ओर दौड़ पड़ते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी हैं सदस्य जिनकी अपनी दुकानें हैं, व्यापार है, व्यवसाय है, कुछ कहीं काम भी करते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी हैं दोस्तों जिनकी अपनी दुकान है और वे उसे अकेले ही संभालते हैं, वहां बैठते हैं और स्वयं कामकाज चलाते हैं। लेकिन रक्तदान आवश्यकता के समय अपनी दुकान बंद कर दूसरों की सहायता के लिए बिना हिचक दौड़ पड़ते हैं। वे दूसरों के हित, दूसरों की सहायता को सर्वोपरि मानते हैं। इसके अलावा एक बात यह भी, वे संकल्पित हुआ स्वयं तो रक्तदान के लिए और प्रतिबद्ध है ही, संकल्पित है ही, पर इसके लिए अन्य युवाओं को भी वे प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। अपने में यह भी एक अच्छी बात है, अच्छा संदेश है। इस संस्था के सदस्यों के रक्तदान से कई दुर्घटनाग्रस्त लोगों को जीवन दान प्राप्त हुआ है। कई बार तो यह भी हुआ है इन युवाओं को रक्तदान के अलावा पीड़ितों को आर्थिक मदद तक करनी पड़ी है, लेकिन इस काम में भी वे कभी चूके नहीं हैं। रक्तदान के अलावा अब यह संस्था पीड़ितों के लिए अन्य कुछ साधन जैसे दवाइयां, अन्य वस्त्र तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं से भी सहायता करने लगे हैं। अपने आप में यह भी एक बहुत ही भली बात है दोस्तों। अब इस संस्था के सदस्यों ने एक संकल्प यह भी लिया है कि वे स्वयं अपना जन्म दिवस नहीं मनाएंगे, लेकिन उस अवसर पर वे अस्पताल में भर्ती रोगियों के लिए फल, भोजन आदि की व्यवस्था कर प्रसन्नता प्राप्त करेंगे, उनके आशीष, उनकी सद्भावना प्राप्त करेंगे। शायद आप लोग यह विवरण सुनकर यह अनुमान लगा रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि यह संस्था मात्र युवाओं की ही संस्था है। ऐसा नहीं है, कुछ युवतियां भी इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर इस तरह अपना मानवीय दायित्व का निर्वाह कर रही हैं और अपनी भरपूर सेवा दे रही हैं ऐसे लोगों को जिनको सचमुच किसी सहायता की, किसी मदद की जरूरत है। सच है कि यह रचनात्मक और मानवतापूर्ण कार्य है जिसे युवाओं की यह संस्था साकारता दे रही है। युवा मित्रों, क्या आप इन युवाओं की प्रशंसा नहीं करेंगे जिन्होंने इस तरह के सेवा कार्य का संकल्प लिया है और बिना किसी बाधा, बिना किसी रुकावट के वे अपना यह सेवा कार्य कर रहे हैं? कहा भी तो जाता है, अगर युवा शक्ति संकल्प कर ले तो क्या कुछ नहीं हो सकता। हाँ दोस्तों, इस सत्य से सभी परिचित हैं कि देश के कई युवा अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी मानव हित के कई कई महत्वपूर्ण काम संपन्न कर रहे हैं बिना किसी प्रचार प्रसार के। हमने देखा है ऐसे कई युवा हैं जो कहीं कोई भी दुर्घटना हुई, उन्हें सूचना मिली
कि वे या तो घटनास्थल पर या फिर अस्पताल पहुंच जाते हैं ताकि आपदाग्रस्त व्यक्ति को सहायता पहुंचाई जा सके। वे युवा इस बात से भी परिचित रहते हैं कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है या जो जीवन पद्धति बनती जा रही है, समाज में जो बेहद गतिशीलता बढ़ती है या बढ़ी है, उसमें ऐसी घटना दुर्घटनाएं होना स्वाभाविक है। ऐसी ही स्थिति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, पर वे युवा उस कठिन स्थिति की परवाह न करते हुए पीड़ित जनों की सेवा सहायता के लिए पहुंच ही जाते हैं, चाहे उन्हें कितनी भी परेशानी हो, मगर गंतव्य तक वो अपनी पहुंच बढ़ा ही लेते हैं और समय पर वहां पहुंच जाते हैं। अब कुछ दिनों पहले कुछ युवाओं से मुलाकात हुई थी। चर्चा के दौरान उन्होंने यही बात बताई थी कि उन्होंने इस बार संकल्प लिया है कि वर्षा के दिनों में जहां जहां भी उनके अपने क्षेत्र में हरियाली विस्तार के लिए जो पौधे लगाए जाएंगे या रोपे गए हैं, वे पूरी सजगता के साथ उनका संरक्षण, उनकी देखभाल करेंगे ताकि वे जीवित रह सकें। उन्होंने इसके लिए अपने अपने क्षेत्र भी निर्धारित कर लिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे इस क्षेत्र में पौधे लगाओ अभियान प्रारंभ हुआ था, समाचार पत्रों ने जिसके समाचार दिए, चित्र छापे, वे मात्र प्रदर्शन और शोभा बनकर न रह जाएं, बल्कि वे इस धरती पर पूरी तरह साकार हो, हरियाली को विस्तार दे। साथियों, उन युवाओं से बात कर और उनकी बात सुनकर और उनकी इस संकल्पशीलता को देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। साथ ही यह भी अच्छा लगा कि वे मानव और प्रकृति हितैषी का काम कर रहे हैं और एक महत्वपूर्ण दायित्व निभाने जा रहे हैं, वरना अभी तक तो यह होता आ रहा था कि लोग जगह जगह पौधों का रोपण कराते, समाचार पत्र उनका विवरण दे देता, फोटो छाप देते और कुछ दिनों बाद वे पौधे जानवरों या बकरियों द्वारा चर लिए जाते, फिर वही बर्बादी का आलम, पौधे लगाए जाते और वे सूख जाते, मर जाते या जानवर खा जाते, तो भला किसका, किसी का भला नहीं था उसमें। इस बार उन युवाओं ने उन पौधों के संरक्षण का संकल्प लिया। हम कामना करें कि वह संकल्प पूर्णता पाए। ये ऐसे युवा हमेशा दूसरों के लिए काम करें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, हित का काम करें, जग की भलाई करें, दूसरों का कल्याण करें, ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए काम करें जिनको उनकी जरूरत है, रक्तदान करना चाहे, जो संकल्प लिया है उनको भली भांति निभाएं। इसी तरह और भी यदि कोई संकल्प लिया है इन युवाओं ने हरियाली संरक्षण का, तो ये हरियाली का काम भी अच्छी तरह से निभाएं। ईश्वर करे चहुं ओर हरियाली छाए, उनके पौधे लहलहाएं और लोग उस पेड़ के नीचे उस छाया तले सुस्ताएं, साथ ही उन पेड़ पौधों का फल भी खाएं। तो साथियों, हरियाली संरक्षण करने वाले युवाओं ने जो बीड़ा उठाया है, जो रास्ता उन्होंने खुद अपनाया है, उसे समाज को दें और एक बड़ा परिवर्तन लाएं समाज में। युवा यदि चाहेंगे तो यह निश्चित रूप से उनके लिए संभव हो सकता है और यह संभव है कि युवा आगे आएं और समाज को नई दिशा दें, नया काम करें, नया सोचें और दूसरों को, जरूरतमंद लोगों को रास्ता दिखाएं। ऐसा कुछ होने पर साथियों, समाज सचमुच सुव्यवस्थित दिशा ले सकेगा और समाज बहुत आगे जाएगा और परिवार के लोग भी खुश होंगे तथा समाज में आज जो निरंतर उथल पुथल मचा हुआ है तथा जो त्रासद स्थिति दिखाई दे रही है, उससे मुक्ति मिलेगी। युवाओं में भी जो मानसिक उथल पुथल मची रहती है, उसमें भी स्थिरता आएगी, युवाओं को कुछ करने को मिलेगा, वे आगे आएंगे और समाज को एक नई दिशा मिलेगी, उनमें नया संचार होगा, तो चारों ओर शांति और सुव्यवस्था का विस्तार होगा और आलम सभी ओर यही होगा कि शांति, खुशहाली, सुव्यवस्था, नियम का पाबंद। तो एक बार युवा संकल्प ले लें तो बहुत अच्छी बात है और संकल्प उन्हें लेना ही चाहिए कि उन्हें क्या करना है, समाज को किस तरह से गति देनी है, किस तरह से आगे बढ़ाना है। ये हमारे युवाओं का काम है, इसके लिए हमारे युवाओं को, आज के युवाओं को खासकर आगे आना ही होगा, क्योंकि आज के जो हमारे युवा हैं
वो जो चाहे कर सकते हैं। उनके अंदर इतनी शक्ति है, एनर्जी है, ऊर्जा है कि वो जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे उसे पा सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, राहगीर को रास्ता दिखा सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं और उनकी छाया में सबको सुकून दे सकते हैं।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा विकास के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक था संकल्पशील बने युवा। इस वार्ता के लेखक हैं श्री कृष्णकांत दुबे एवं प्रस्तुतकर्ता थी भवानी कौल। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, हमारी समय सारिणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का, कार्यक्रम युग संचार का। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं कार्यक्रम युग संचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है सूचना युग से सामंजस्य की चुनौती, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।
1: श्रोताओ नमस्कार, युग और संचार में आज हम बात करेंगे सूचना युग से सामंजस्य की चुनौती। साथियों, हम जब अपने समय में जनसंपर्क की बात करते हैं तो सवाल उठता है कि आखिर जनसंपर्क है क्या और जनसंपर्क काम क्या करता है। दरअसल इन सवालों का जवाब आसान नहीं है। जनसंपर्क एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, इसमें परिस्थिति के अनुरूप उसका स्वरूप बदलता रहता है। परिस्थिति के अनुरूप उसकी प्राथमिकता, उसके साधन और उसके माध्यम बदल जाते हैं। जनसंपर्क व्यक्ति से शुरू होकर परिवार, समूह और समुदाय के जरिए पूरी कौम तक विस्तारित होता है, और यही वजह है कि किसी भी दिए गए समय में किसी न किसी प्रक्रिया में जनसंपर्क के जरिए हर व्यक्ति, हर परिवार, हर समूह और हर समुदाय संलग्न रहता है। कहा भी तो जाता है कि किसी व्यक्ति के किसी स्थान पर पहुंचने से पहले उसकी प्रतिष्ठा संबंधी प्रतिकूल अथवा अनुकूल धारणा पहले पहुंच जाती है। और साथियों, ये बात किसी व्यक्ति से शुरू होकर हर एक संगठन तक के लिए प्रासंगिक है। एक बार ये बात हमारे ध्यान में आ जाती है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि जनसंपर्क का स्वरूप सर्वव्यापी और सार्वकालिक है। साथियों, गौर करने की बात है कि जनसंपर्क के इतिहास के जो विवरण है उनमें इतिहासकर्ताओं के जनसंपर्क का विहंगम और अति सरलीकृत विवरण दिया गया है। एक रोचक कथा के रूप में ये विवरण ज्यादा प्रचलित है। साथियों, इन विवरणों में बहुत से जनसंपर्क कर्मियों द्वारा संपादित किए गए ढेर सारे अनूठे कार्यों और उनके मनोहारी व्यक्तित्वों को प्रस्तुत किया गया है। इसलिए इन ऐतिहासिक विवरणों से जनसंपर्क का वास्तविक स्वरूप नहीं उभरता। दरअसल जनसंपर्क एक ऐसी प्रक्रिया है साथियों, जो अनंत काल से चल रही है। जी हाँ, जनसंपर्क के साधन, उसकी विशिष्टता, उसके ज्ञान के विस्तार और जनसंपर्क के लिए किए जाने वाले प्रयासों की सघनता, ये भले ही हर समय में बदलती रहती है, या फिर इसे यूं कहे कि इसमें विकासात्मक परिवर्तन होता रहता है। साथियों, चाहे ग्रीस के दर्शन शास्त्री रहे हों, जिन्होंने अपने ग्रंथों में जनता की इच्छा के महत्व को प्रतिपादित किया हो, या फिर परवर्ती नागर संस्कृति को महत्व दिया हो, हम पाते हैं साथियों कि जनमत को हर समय में, हर परिस्थिति में हमेशा ही सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। और यदि हम नए युग को देखें तो नए युग की पहचान के रूप में विकसित हो रहे बड़े बड़े व्यवसाय, ऊंचे उद्योग, बड़ी शासकीय संस्थाओं और ऊंची शिक्षा के कारण जनमत पर प्रभाव डालने वाले व्यस्त हितों के समूह भी आज बड़े विस्तृत स्वरूप में आ गए हैं। और ऐसे इस समय में मीडिया का स्वरूप और आकार काफी बड़ा हो गया है। आखिर जरूरत भी इस दिनों मीडिया की सबसे ज्यादा है। छोटे समाचार पत्र, पत्रिकाओं और छोटे संचार समूहों के अस्तित्व और महत्व पर सवालिया निशान लग रहा है। साथियों, इन दिनों हर व्यक्ति और संगठन ये चाहता है कि वो जिस पर्यावरण में काम कर रहा है उसमें सम्मिलित व्यक्तियों और अन्य संगठनों के बीच उसकी अपनी प्रतिष्ठा बनी रहे। इस प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए, या फिर यूं कहे संक्षेप में कि अपने मतों का समर्थन पाने के लिए और अपने विरुद्ध मतों को अपने अनुरूप बनाने और समान मत वालों के साथ संबंधों को निरंतर अच्छा बनाए रखने की प्रक्रिया ही जनसंपर्क का मूल है। साथियों, जनसंपर्क वास्तव में अच्छे कार्य और उत्तरदायित्वपूर्ण निष्पादन के आधार पर परस्पर संतोषजनक संचार के जरिए जनमत को प्रभावित करता है। जनसंपर्क के लिए ये जरूरी होता है साथियों कि पहला अच्छा काम किया जाए और उसके बाद श्रेय प्राप्त किया जाए। लेकिन इन दिनों यदि हम संचार की बात करें तो अच्छा काम किए बिना श्रेय प्राप्त करने की होड़ प्रत्येक स्थान पर है। काम चाहे जो भी कुछ हो, उसे रंग रूप इस प्रकार का दे दिया जाता है जिससे उसका हवा बन सके, जिससे वो किया हुआ काम भी एक खबर बन सके। आजकल यदि हम किसी बड़े प्रतिष्ठान के किसी समारोह को भी देखें, तब हमेशा ही अध्यक्ष पद पर या फिर मुख्य अतिथि के पद पर ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाता है साथियों, जिनका मीडिया के साथ जनसंपर्क बहुत अच्छा हो, जिसके चलते उस मुख्य अतिथि या अध्यक्ष के साथ साथ उस संस्था के व्यक्ति भी अपने आप को किसी न्यूज़पेपर की हेडलाइन में एडजस्ट कर सके। साथियों, ये सारी शब्दावली इन दिनों प्रत्येक प्रतिष्ठान के प्रत्येक सदस्य के जबान पर है। जनसंपर्क के लिए पहले अच्छा कार्य और फिर अच्छा शब्द जरूरी होते हैं, और फिर यहाँ आकर जनसंपर्क प्रोपेगेंडा, पब्लिसिटी, विज्ञापन इनके जैसी एकांगी विधाओं से अलग होता है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि प्रोपेगेंडा, पब्लिसिटी और विज्ञापन किस तरीके से भ्रामक हो सकते हैं, और यही तो वजह है कि विज्ञापनों पर भरोसा कम होता है, प्रोपेगेंडा पर कुछ समय के लिए होता है और पब्लिसिटी पर बड़े सीमित उद्देश्य के लिए होता है। साथियों, पब्लिसिटी वास्तव में जनसंपर्क का एक साधन है, लेकिन इस प्रकाशन या प्रचार के लिए ये जरूरी है कि ये अच्छे उद्देश्यों वाला हो या फिर जनता उसे विश्वसनीय माने। साथियों, जनमत सिर्फ शब्दों से नहीं बनता, उसके लिए वास्तविक घटना या कार्य जरूरी होते हैं। हमें प्रकाशन या प्रचार को जनसंपर्क की समग्र संचार योजना के बड़े फलक के एक हिस्से के रूप में लेना होगा। यदि हम कमजोर निष्पादन की भरपाई करने के लिए प्रचार को अपनाते हैं, तो वो प्रचार अपना उद्देश्य पूरा कर सकता है। प्रचार को अच्छे कार्यों को उभारा जाता है, कमजोरियों को दबाया जाता है। लेकिन साथियों, हमें ये मालूम है कि हमारे सामने ऐसे दूसरे लोग भी होते हैं जो हमारी कमजोरियों को ज्यादा उभारते हैं। हम सभी लोकतंत्र के एक ऐसे समय में जी रहे हैं साथियों, जहां हम सभी जानते हैं कि प्रचार में बहुत शक्ति है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान तो नहीं है। इसलिए प्रचार स्वयं किसी वस्तु, मत या अभियान को सफल नहीं बना सकता। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं साथियों, जिनमें आभासी सफलता या क्षमताओं का बहुत ढिंढोरा पीटा गया, लेकिन जनता ने उसे वास्तविक नहीं माना। इसीलिए तो जनसंपर्क की मूल धारणा के अनुरूप जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए पब्लिसिटी या प्रचार ऐसा साधन है जिसका बहुत युक्तियुक्त प्रयोग करना वांछनीय है। साथियों, सूचना युग में गोपनीयता बनाए रखना बहुत कठिन है। हमारी निजता पर टेक्नोलॉजी की कड़ी नजर है। हमारे समाज और संगठन में शिक्षा के कारण आए परिवर्तन से अब ये संभव नहीं है कि तानाशाही ढंग से चीजों को दबा दिया जाए। ऐसी परिस्थिति में उपलब्धियों से रहित संगठन या व्यक्ति के लिए प्रचार को सफल बनाना बहुत कठिन है। साथियों, हम जिन मूल्यों और आदर्शों को अपनी दृष्टि से कभी ओझल ना करें, इसे ध्यान में रखते हुए घटना के समाचार मूल्य को आंकना होगा। ये तो सही नहीं कि घटना चाहे कैसी भी हुई हो, हम उसे अपने स्वार्थ के हिसाब से, अपने प्रचलित कोण के हिसाब से जनता के सामने परोसे और उस पर स्वयं के स्वार्थ की रोटी सेके। साथियों, सभी विकसित देशों में जनसंपर्क के लिए आचार संहिता बनी हुई है। यहाँ पर उस विषय में बातचीत करने की वाकई कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये संहिता वास्तव में जनसंपर्क कर्मी की सच्चाई, यथार्थ, समता और जनता के प्रति उत्तरदायित्व के प्रति समर्पण का एक शपथ पत्र है। केवल नेट और वर्ल्ड वाइड लैब, सैटेलाइट, इन सभी ने संचार की तीव्रता और क्षमता को नए आयाम दिए हैं। इसी वजह से जनसंपर्क अब प्रयुक्त विज्ञान, परिष्कृत सामाजिक विज्ञान और परिपूर्ण प्रबंधन कला के संपूर्ण रूप में हमारे सामने है।
0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा विकास के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक था सूचना युग से सामंजस्य की चुनौती, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉयड या आईओएस मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दें आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को, और रिकॉर्डिस्ट है आकाश जांगरा। नमस्कार।

सत्य स्वर सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को ग्लोरिया गांगले का प्यार भरा नमस्कार तथा आज की इस सभा में हार्दिक स्वागत। दोस्तों, अभी की सभा 9 से 10 में आप सुन पाएंगे सर्वधर्म विचार, नारी सशक्तिकरण, मन दर्पण, पर्यावरण और भक्ति गीत। तो आइए दोस्तों, आप सुनते हैं कार्यक्रम सर्वधर्म विचार और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

श्रोताओं, फादर हेरमन बंडोर एसवीडी का प्यार भरा नमस्कार। सर्वधर्म विचार के तहत आइए सुनते हैं एक वार्ता जिसका शीर्षक है बांग्लादेश में धर्म निरपेक्षता का अर्थ। मित्रों, विक्टर ह्यूगो कहते हैं, कानून क्या कहता है? आप किसी की हत्या नहीं करोगे। कैसे कहता है? किसी को मारकर। उसी प्रकार एमनेस्टी इंटरनेशनल कहता है, हम मौत की सजा का विरोध करते हैं, इसमें कोई अपवाद नहीं है। फिर चाहे अपराध कैसा भी हो, अपराधी का चरित्र कैसा भी हो, या अपराधी को मौत की सजा देने का तरीका कोई भी क्यों न हो। बांग्लादेश की प्रसिद्ध लेखिका तस्लीमा नसरीन लिखती है, जब से मैंने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के युद्ध अपराधी मुल्ला कादर को फांसी देने का विरोध किया है, बांग्लादेश के धर्मनिरपेक्ष लोग सोशल नेटवर्किंग साइट पर मुझे कोस रहे हैं, गरिया रहे हैं। इसकी वजह यह है कि नई पीढ़ी के कई युवक और युवतियां भ्रम में पड़े हुए लोगों में से हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि उनकी आस्था किन मूल्यों में है। बांग्लादेश की यह पीढ़ी खुद को धर्मनिरपेक्ष कहती है, लेकिन इसका मतलब नहीं जानती। इनमें से बहुत से लोग युद्ध अपराधियों के तो खिलाफ हैं, लेकिन कट्टरपंथियों के विरोध में नहीं हैं। इनमें उन्हें कोई परहेज नहीं है। उन्हें नारीवाद से भी नफरत है और ये युवा मौत की सजा के बड़े हिमायती हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि लोग मौत की सजा के खिलाफ क्यों हैं। उन्हें अपने साथी को मौत की सजा देने का विरोध कर रहे आतंकवादियों और मौत की सजा खत्म करने की मांग कर रहे कट्टरपंथ विरोधियों के बीच फर्क समझ में नहीं आता, क्योंकि दोनों ही मौत की सजा का विरोध कर रहे हैं। युद्ध अपराधियों को भी मौत की सजा देना ठीक नहीं है और इसका विरोध होना चाहिए। इस प्रवृत्ति को कोसा जाना चाहिए। सच्चाई यह है कि यदि आप दुष्ट तरीकों से समस्याएं सुलझाना चाहेंगे तो अनजाने ही आप हिंसा के खिलाफ हिंसा का ही इस्तेमाल करेंगे। हालांकि यदि आप अपने समाज को हिंसा से मुक्त करना चाहते हैं तो आप एक धर्मनिरपेक्ष, वर्ग रहित, जाति रहित, समानता पर आधारित समाज का निर्माण करना चाहेंगे। आप बच्चों को उचित शिक्षा मुहैया कराएंगे ताकि कोई धार्मिक कट्टरपंथ को अपना न सके, एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। तस्लीमा लिखती है, यदि आपको वाकई भरोसा है कि मौत की सजा अपराधियों को अपराध से दूर रखने में सहायक है तो मुझे समझ में नहीं आता कि बांग्लादेश में भी सऊदी अरब की तरह सार्वजनिक रूप से अपराधियों के सिर कलम क्यों नहीं किए जाते। क्या आपको नहीं लगता इससे मौत की सजा और अधिक कारगर सिद्ध होगी? एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक मौत की सजा से अपराधी के पुनर्वास और सुलह सफाई की सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। फिर ऐसी सजा मानव की जटिलतम समस्याओं का सरलीकृत समाधान पेश करती है। इससे हत्या का शिकार हुए परिवार की तकलीफ का दौर और बढ़ जाता है और सजा पाए व्यक्ति के परिजनों के कष्ट भी बढ़ जाते हैं। इससे वे संसाधन और ऊर्जा गलत जगह व्यय होती है जिसे हिंसा रोकने और हिंसा के शिकार लोगों को मदद पहुंचाने में लगाया जाना चाहिए। फांसी हिंसक संस्कृति का प्रतीक है, न कि कोई समाधान। यह मानवीय गरिमा के एकदम विपरीत है। मित्रों, कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता और न ही कट्टरपंथी होता है। उचित शिक्षा न मिले तो लोगों में बुराई पनपने की आशंका रहती है, वे बुरे लोग बन जाते हैं। इसके बावजूद हर व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, फिर उन्होंने कोई भी अपराध क्यों न किया हो। बांग्लादेश की नई पीढ़ी ने वयस्क होने के साथ साथ 1971 के मुक्ति संग्राम के बारे में किताबें पढ़ी है, फिल्में, नाटक देखे हैं, कविताएं और संगीत सुना है। यही वजह है कि युद्ध अपराधियों के खिलाफ उनकी भावनाएं बहुत तीव्र है। हालांकि लगभग सभी यह मानते हैं कि इस्लाम शांति का पैगाम लाने वाला मजहब है। सारे युद्ध अपराधी कट्टरपंथी हैं। उन्होंने 1971 में मजहब के नाम पर लोगों की हत्या की। वे एक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहते थे। बांग्लादेश में 1980 के दशक में कट्टरपंथ बढ़ने लगा और यही वजह है कि आज कट्टरपंथियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। ये नए कट्टरपंथी धर्मनिरपेक्षवादियों, नास्तिकों और मजहब विरोधियों की निर्मम हत्या तक कर देते हैं। ये लोग 1971 के युद्ध अपराधियों से किसी भी तरीके से कम खतरनाक नहीं है। जमात इस्लामी बांग्लादेश की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसमें ऐसे लोगों की भरमार है। जब से 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में उसे राजनीतिक पार्टी के रूप में मान्यता मिली है,
वह देश को आतंकित करने में लगी है। इन कट्टरपंथियों ने इस्लामी बैंक, इस्लामी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोली है। इनके गैर सरकारी संगठन, अस्पताल, रेडियो, टेलीविजन चैनल और अखबार तक है। जमात इस्लामी का एक एजेंडा यही है कि बच्चों में कट्टरपंथ का जहर भरा जाए। वे जमात इस्लामी के संस्थापक मैदूदी का अनुसरण करते हैं, जिनका सपना पूरी दुनिया को कट्टरपंथ के रंग में रंगना था। मिस्र का मुस्लिम ब्रदरहुड भी मैदूदी से प्रेरित है। हालांकि एक राजनीतिक पार्टी के रूप में जमात इस्लामी मुस्लिम ब्रदरहुड की तुलना में कहीं ज्यादा अलोकतांत्रिक और हिंसक है। तस्लीमा आगे लिखती है, कट्टरपंथी युद्ध अपराधी 1993 से मेरी हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उन्हें फांसी पर लटकाया जाए। मैं चाहती हूं कि वे बेहतर नागरिक बने। मौत की सजा के अलावा भी सजा देने के तरीके हैं जो उन्हें दी जा सकती है। उन्हें लंबी कैद की सजा क्यों नहीं दी जा सकती? हालांकि मुझे कारावास की व्यवस्था में भरोसा नहीं है। जेल ऐसी होनी चाहिए जहां कैदियों का पुनर्वास किया जा सके। जेल किसी यूनिवर्सिटी की तरह और कोठरियां किसी क्लासरूम की तरह होनी चाहिए। कट्टरपंथी तालीम पाकर सैकड़ों हजारों कादर मुल्ला बांग्लादेश में पैदा हो गए हैं। बांग्लादेश कितने कादर मुल्लाओं को खत्म करेगा? बेहतर होगा कि देश में फैल रहे कट्टरपंथ पर लगाम लगाई जाए। किसी देश और समाज को धर्मनिरपेक्ष बनाना हमेशा ही बेहतर विकल्प होता है। कादर मुल्ला को फांसी की सजा दिए जाने के बाद से जमात ए इस्लामी लोगों की हत्याएं करने में लगी है, इसलिए जरूरत इस कट्टरपंथी प्रवृत्ति पर लगाम लगाने की है। बांग्लादेश को एकजुट होकर तरक्की की राह पर जाने की जरूरत है। युद्ध अपराधियों को मौत की सजा देने से बदले की भावना ही बढ़ेगी। बांग्लादेश में यदि लोग आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने पर सहमत होते हैं तो उन्हें देश में जमात इस्लामी पर भी रोक लगाने का समर्थन करना चाहिए। देश की तीव्र आर्थिक वृद्धि दर भविष्य की उम्मीद बंधाती है। इस देश को आगे बढ़ने का मौका देना होगा। नमस्कार।

अभी आपने सुना कार्यक्रम सर्वधर्म विचार और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए साथियों आप सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

अभी आपने सुना एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण, जिसका शीर्षक है माँ की महिमा। लेखक माइकल होजेस और इसकी प्रस्तुतकर्ता है अपर्णा सिंह और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत प्रस्तुत है वार्ता माँ की महिमा। इसके लेखक हैं माइकल हॉजेस, प्रस्तुतकर्ता अपर्णा सिंह। श्रोता साथियों, एक समय था कि युवती या महिला संतान को जन्म देने के बाद ही माँ कहलाया करती थी और माँ होने का गौरव भी प्राप्त किया करती थी, लेकिन आज के संदर्भ में ये बात कुछ अलग होकर रह गई है। आज माँ का दर्जा पाने के लिए संतान को जन्म देना जरूरी नहीं रह गया है। आज कोई भी युवती या महिला किसी भी बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने के बाद उसकी माँ बनकर माँ बनने का गौरव प्राप्त कर सकती है। इसे त्रासदी या विडंबना ही कहा जाएगा कि जहाँ पराए बच्चे को गोद लेकर कुछ माएं अपनी सारी ममता उस बच्चे पर उड़ेल देती हैं, वहीं कुछ सगी माएं अपने कोख जने बच्चे को भी अपनी ममता से वंचित रखती हैं, सुमन की तरह से। सुमन को शादी के बाद संतान की बहुत चाहत थी, लेकिन जब साल भर बाद भी उसके यहाँ संतान नहीं हुई तो सुमन की माँ ने उसका बहुत इलाज कराया, क्योंकि सुमन और उसके पति की डॉक्टरी जांच में सुमन में ही कमी पाई गई थी। लेकिन जब डॉक्टरी इलाज करते रहने के बाद भी उसकी गोद हरी नहीं हुई तो फिर उसने प्रत्येक धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों के चक्कर लगाना और उपवास आदि रखना शुरू किए। अब इसे दैवीय चमत्कार कहा जाए या फिर दवाइयों का असर, आखिर संतान की कामना करने वाली सुमन की कामना पूरी हुई और बेटे की आस लगाए बैठी सुमन के यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ। देखा जाए तो अब तक बांझ कहलाने वाली सुमन के यहाँ बेटी उत्पन्न होने से भले ही वो लड़की हो उसे खुश होना चाहिए था, मगर हुआ इसका उल्टा ही। अपने माथे से बांझ का कलंक पोंछ देने वाली बेटी को देखकर सुमन ने अपना सिर पीट लिया और बस यहीं से शुरू हो गई सुमन के मन में बेटी के लिए नफरत और जलन। एक माँ द्वारा अपनी ही बेटी से नफरत और जलन की बात थोड़ी अटपटी सी लगती है, लेकिन ये घटना और बात बिल्कुल सच है। जैसे जैसे बेटी बड़ी होती गई, उसे अपने पापा के साथ साथ घर के अन्य सदस्यों का प्यार भी मिलता रहा, सिवा अपनी माँ सुमन के। सुमन जब भी अपनी बेटी से बात करती तो कभी सीधे मुंह बात नहीं करती। इसका परिणाम ये निकला कि अब सुमन की युवा होती बेटी के मन में अपनी माँ के लिए कोई आदर सम्मान नहीं है। वह भी बात बेबात अपनी माँ को मुंह चला देती है और कहना भी नहीं सुनती है। श्रोता साथियों, इन सब बातों के लिए दोषी कौन है? बिना सोच विचार ये कहा जा सकता है कि इन सब बातों के लिए दोषी सुमन और केवल सुमन ही है। यदि उसकी बेटी उसके यहाँ पैदा हो गई, वो भी पहली और अंतिम संतान के रूप में, तो इसमें बेटी का क्या कसूर है? दूसरी ओर सुमन को भी ये सोचना चाहिए कि अपने इस तरह के व्यवहार से क्या वो अपनी ही बेटी के साथ अन्याय नहीं कर रही है। खुद नारी होकर एक दूसरी नारी के लिए उसके विकास, उसके उत्थान में बाधा नहीं बन रही है वो? क्या सुमन अपने नारी होने, अपने ममतामयी माँ होने की राह में बेवजह रुकावट नहीं डाल रही है? क्या वो स्वयं एक नारी होकर दूसरी नारी के शोषण का कारण नहीं बन रही है? यदि वो स्वयं अपनी बेटी से नफरत करती है तो दूसरे क्या कहेंगे, क्या करेंगे? वो तो भला हो अन्य लोगों का जो सुमन की तरह नहीं है, वरन वे उसकी बेटी को लाड़ प्यार करते हैं। बेटे की चाह में डूबी हुई सुमन और उसकी नफरत का सामना ना जाने उसकी बेटी को कब तक करना पड़ेगा। और सोचे स्वयं स्त्री होकर किसी बालिका के जन्म लेने पर क्या उसका मुंह बनाना और उससे नफरत करना ठीक है? स्वयं नारी होकर नारी का विरोध करना उचित है? स्वयं नारी होकर नारी से नफरत करना उचित है? यहाँ इस बात का अंदाजा भी सहजता से लगाया जा सकता है कि जब वह अपनी कोख से जन्मी बेटी से ही अपने स्वार्थ के कारण इतनी नफरत कर सकती है तो किसी और से, जिससे उसका कोई रिश्ता ही न हो, कितनी नफरत कर सकती है? श्रोता साथियों, आइए एक और बेटे के मुंह से ग्रस्त महिला प्रतिमा के बारे में भी जानते हैं हम। प्रतिमा के दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की हालांकि बड़ी है और लड़का छोटा, लेकिन घर में बेटी की बात कम सुनी जाती है और बेटे की बात खूब सुनी जाती है। बेटे की बात यहाँ तक सुनी जाती है कि खाने में कब और क्या क्या बनेगा, यही नहीं यहाँ तक कि बेटी कब क्या और कैसे कपड़े पहनेगी, कहाँ जाएगी और कहाँ नहीं जाएगी, वगैरह वगैरह।
इसी तरह से लाड़ प्यार में बढ़ते बेटे ने किशोर से युवावस्था में कदम रखा। अब आए दिन झगड़े और मारपीट करना उसी की दिनचर्या में शामिल हो गया। जब उसकी माँ प्रतिमा तक शिकायत आती तो उसकी माँ सुनी अनसुनी कर देती, और अगर सुनती भी तो अपने बेटे का ही पक्ष ले लेती। इसका नतीजा ये निकला कि प्रतिमा का बेटा दिन पर दिन और बिगड़ता गया। अब वह नशा भी करने लगा था। वह अपने पिता का कहना सुनकर भी अनसुना कर देता था, क्योंकि उसे उसकी माँ ने शह दे रखी थी। यही नहीं, उसकी गलत संगत दिनों दिन बिगड़ती गई। वो लड़की को छेड़ने के जुर्म में थाने में भी बंद होकर आ गया था। उसकी इस हरकत को भी उसकी माँ ने ये कहकर बड़े हल्के रूप में लिया था कि इस उम्र में तो सभी लड़के ऐसा करते हैं, अब लड़के इस उम्र में ऐसा नहीं करेंगे तो फिर किस उम्र में करेंगे। अब प्रतिमा के बेटे का ये हाल था कि वो नियमित रूप से नशा करने लगा था, और नशे का वो इस कदर आदी हो गया था कि पैसे हो ना हो उसे तो बस नशा ही चाहिए था। यही कारण था कि अब नशे की पूर्ति के लिए वो चोरी जैसे घृणित काम भी करने लगा था। ऐसे ही एक बार चोरी करने और चोरी का माल बेचने के जुर्म में वो और उसकी माँ प्रतिमा जेल होकर भी आ गए हैं। उसकी माँ इसलिए जेल होकर आई है क्योंकि चोरी का माल वो अपने ही घर में रखती थी, और चोरी के माल को बेचने वो अपने लाडले बेटे के साथ खुद ही दुकानों पर जाया करती थी। अब माँ को बेटे के किए की सजा मिली या बेटे को माँ की किए की सजा मिली, ये प्रश्न सहज ही उठता है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर सहज है, बेटे को माँ के किए की सजा मिली और माँ प्रतिमा को सजा मिली अपने किए की। यदि माँ अपने बेटे को अनावश्यक लाड़ ना करती, अपनी बेटी की उपेक्षा ना करती, तो उन लोगों को ये दिन शायद नहीं देखने पड़ते। यदि माँ अपने बेटे को सही रास्ता दिखाती तो बेटा कभी गलत राह पर जाता ही नहीं। यदि माँ अपना अनावश्यक लाड़ प्यार ना दिखाती तो बेटे का जीवन यूं बर्बाद ना होता। श्रोता साथियों, इसलिए महिलाओं को माँ की महिमा को समझना होगा। सौतेली या विमाता की बातें अभी भूली बिसरी बातें नहीं हुई हैं। सौतेली माँ पहले जहाँ अपने सौतेले बच्चों के प्रति निष्ठुर बनी रहती थी, वहीं आज भी उसकी स्थिति में बहुत हद तक बदलाव नहीं आया है। पहले की विमाता यानी सौतेली माँ खुलेआम अपने सौतेलेपन को दर्शाया करती थी, वहीं वर्तमान संदर्भ में सौतेली माँ छिप छिप कर आज भी अपना सौतेलापन दर्शाती रहती है। कुछ सौतेली माएं अपवाद स्वरूप भी हो सकती हैं। यहाँ सौतेली माँ की तुलना यदि हम एक सौतेले पिता से करें तो सौतेले पिता को सदा ही हम सहज रूप में पाते रहे हैं।

अभी आपने सुना कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण, जिसका शीर्षक था माँ की महिमा, लेखक माइकल होजेस, और इसकी प्रस्तुतकर्ता थी अपर्णा सिंह, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए साथियों, सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों आइए सुनते हैं कार्यक्रम मन दर्पण, जिसका शीर्षक है हमको मन की शक्ति देना प्रभु, और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं स्वतंत्र कुमार ओझा, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्र कुमार ओझा का नमस्कार। मन दर्पण, आज के मन दर्पण कार्यक्रम का शीर्षक हमने रखा है, हमको मन की शक्ति देना प्रभु। मित्रों, सुबह तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे कि कब श्रीमती जी आवाज लगाएं कि आ जाइए, नाश्ता तैयार है। ड्राइंग रूम में रेडियो बज ही रहा था, तभी एक गीत खत्म हुआ और अगला गीत बजना शुरू हुआ। वो एक प्रार्थना गीत था जो अनेकों बार हमने आपने सुना ही है और जिसे सुनकर एक उत्साहवर्धक ऊर्जा, शक्ति, आत्मिक शांति हृदय में प्रवाहित होने लगती है।

जितने भी मानव हैं उतने ही उनके मन भी हैं, लेकिन इनमें से हर एक का मन एक दूसरे से मिलता जुलता हो ऐसा तो होता ही नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाता। तो फिर हम ये मान लें कि मूल रूप से इस दुनिया में दो प्रकार के इंसान होते हैं। जहां तक मन और उसकी क्रियाओं का प्रश्न है, इसमें एक होते हैं कमजोर मन वाले और दूसरे होते हैं मजबूत मन वाले, जिनका मन दुर्बल होता है, कमजोर होता है, थोड़ा सा अंदर से भयभीत भी रहता है। वे कठिन बाधाएं और मुश्किलों में तो अपना संतुलन वो तो खो ही बैठते हैं, लेकिन उसके साथ ही अगर मामूली सी परेशानी भी आ जाए तो बिल्कुल बेचैन हो उठते हैं, घबराने लगते हैं, और इसके साथ साथ अपने आसपास वालों को भी, अपने कुटुंब में भी, दूसरों को भी तंग करने लगते हैं फिजूल में। वे शिकायत करते नजर आते हैं, सबको कोसते हैं, और अपने किसी प्रयास में सफल नहीं होने पर अपनी हार के लिए, अपनी असफलता के लिए वे दूसरों को जिम्मेदार ठहराने से भी नहीं चूकते। हमेशा कुछ न कुछ मीन में एक सामने वाले की निकालेंगे, तुम अगर ऐसा नहीं करते ना तो मैं ये काम जरूर कर लेता, ये तुम्हारी वजह से मैं ये चूका। घर में मां से लड़ रहे हैं, पिता को कुछ भी कह रहे हैं, भाई बहनों से लड़ रहे हैं, ऐसी कुछ मानसिकता बन जाती है। तो ये बात हुई कमजोर मन जिनका है उनकी। अब उनकी बात करें जिनका मन स्वस्थ है, मजबूत है, उनके कर्म में दृढ़ता है, संकल्प है। ऐसे इंसान हर मुश्किल और बाधाओं का दृढ़ता के साथ डटकर मुकाबला करते हैं। कोई उनकी बुराई करे उस पर वे जरा भी ध्यान नहीं देते और न ही डिस्टर्ब होते हैं, विचलित नहीं होते। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यही हुआ ना कि न तो ऐसे इंसान हिम्मत हारते हैं और न ही किसी को असंतुलित होकर शिकायतें करते हैं। जब भी कोई बड़ी या छोटी परेशान करने वाली घटना घटती है, वे उस घटना के समाधान का कि समस्या से कैसे निपटा जाए, तो उस घटना के समाधान का एक सकारात्मक पहलू, पॉजिटिव अप्रोच जिसको कहते हैं, वो ढूंढ ही लेते हैं। इससे क्या होता है कि जीवन में आने वाली जितनी भी चुनौतियां हैं उनका वे हमेशा हंसते हंसते सामना कर सकते हैं। अब श्रोताओं, जहां तक समस्याओं का, मुश्किलों का, परेशानियों का, चुनौतियों का सवाल है, इनके दरवाजे कभी भी खटखटाकर नहीं आते, अधिकतर ये सब दबे पांव आते हैं। ऐसी परिस्थिति में मजबूत मन वाला इंसान इससे घबराता नहीं है। अब ऐसे ही मजबूत मन वालों के अनेक उदाहरण पहले भी थे और आज वर्तमान में भी हैं, जिस युग में हम जी रहे हैं, और आज भी और पहले भी ऐसे लोगों पर अनचाही, अनसोची मुसीबतें और आफतें आई हैं। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। एक शास्त्रीय नर्तकी का पैर एक दुर्घटना में कट गया। बड़ी अच्छी शास्त्रीय नर्तकी रही हैं वो, उनका पैर कट गया एक्सीडेंट में, बड़ी भयानक स्थिति हो गई, लेकिन मन में मजबूत इच्छा शक्ति थी कि वो इन हालात में भी नृत्य करेगी। तो कैसे करेगी? धीरे धीरे वो स्वस्थ होती है, फिर एक नकली पैर लगाती है, फिर अभ्यास रियाज शुरू करना आरंभ करती है। तो शुरुआत में बड़ी तकलीफ में खड़ी होती है, क्योंकि एक पैर नकली है, लकड़ी का है, फिर भी हिम्मत नहीं हारती, रिहर्सल करती रहती है,
और एक दिन ऐसा भी आता है कि वो मंच पर फिर से नृत्य का परफॉर्मेंस देती है, अपनी नृत्य कला दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत करती है। बिल्कुल स्वाभाविक, नेचुरल, दर्शकों को आभास ही नहीं होता उसकी अपंगता का कि इस नर्तकी का एक पैर नकली है। और फिर उसके बाद तो वो टीवी चैनल्स में अभिनय भी शुरू करने लगती हैं और काफी नाम कमाती हैं। तो ये एक उदाहरण हमने आपके सामने रखा मजबूत इच्छा शक्ति का। अब एक अच्छा क्रिकेटर है, बेहद अच्छा, खेलने के बाद भी उसे अगले मैच में खेलने का मौका नहीं दिया जाता। पता नहीं क्यों कि भाई नहीं नहीं, बस अब इस मैच में आप खेल लिए, अब अगले मैच में हम आपको मौका नहीं देंगे। लेकिन उसका मन मजबूत है, वो इससे, जिसे कहते हैं कि नर्वस नहीं होता, हार नहीं मानता, वो अपना अभ्यास करता रहता है, नेट प्रैक्टिसिंग जिसको कहते हैं क्रिकेट में, वो करता रहता है और फिर से खेलने के लिए एक दिन उसको अगले मैच में बुलाया जाता है। इसी तरह एक प्रसिद्ध और नामी फिल्म डायरेक्टर एक महत्वाकांक्षी फिल्म नई थीम के साथ, यानी नई कहानी के साथ बनाता है, लेकिन दर्शक उसे नकार देते हैं। बॉक्स ऑफिस पर गिरने के कारण निर्देशक को अपना सब कुछ नीलाम कर देना पड़ता है, लेकिन फिर भी फिल्म बनाना ही उसका जीवन है। दिवालिया हो जाने पर भी इधर उधर से पैसा लेकर कम बजट की एक और फिल्म बनाता है और इस बार उसकी फिल्म सुपर ड्यूपर हिट हो जाती है। तो ये श्रोताओं होती है मजबूत इरादों की, हौसलों की। दोस्तों, ईश्वर ने सबसे अनुपम और मौलिक उपहार हमें दिया है, हमारा ये जीवन। तो उसी गीत से समापन करें, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। नमस्कार।

साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम मन दर्पण, जिसका शीर्षक था हमको मन की शक्ति देना प्रभु, और इसे प्रस्तुत कर रहे थे स्वतंत्र कुमार ओझा, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए साथियों, अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

अभी आपने सुना एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए साथियों, आप सुनते हैं कार्यक्रम पर्यावरण, जिसका शीर्षक है मृदा प्रदूषण के दुष्प्रभाव, और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं माइकल होजेस, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

पर्यावरण के अंतर्गत प्रस्तुत है वार्ता मृदा प्रदूषण के दुष्प्रभाव। इसके लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं माइकल हॉजिस। श्रोता साथियों, इसके पूर्व की वार्ता मिट्टी प्रदूषण में हमने यह जाना और माना है कि मिट्टी हम मनुष्यों के लिए कितना महत्व रखती है और मिट्टी का हमारे जीवन में कितना दखल है। तो आइए अब उसी मृदा यानी कि मिट्टी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए यह जानने का प्रयास करते हैं कि जब मृदा प्रदूषण होता है या मृदा प्रदूषण संपन्न हो जाता है तब मानव और वनस्पति आदि पर उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। मनुष्य की रोटी कपड़ा और मकान जैसी मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी से ही होती है। इसलिए यही मिट्टी जब प्रदूषित होती है तब सबसे अधिक हानि मनुष्य को ही होती है। मनुष्य को ही सबसे अधिक इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आर्थिक रूप से तो मनुष्य को हानि उठानी ही पड़ती है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मानव को अत्यधिक हानि का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मिट्टी में जमा कीटनाशकों का दुष्प्रभाव मनुष्य और उसके साथ जीव जंतु और पशु पक्षियों को भी झेलना पड़ता है। मिट्टी प्रदूषण का दुष्प्रभाव मानव, पशु पक्षी और अन्य जीव जंतुओं के साथ साथ वनस्पतियों पर भी पड़ता है, क्योंकि क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन जैसे DDT आदि का अपघटन यानी कि उपयोग के बाद विलय या समापन न होने से ये जल और खनिज के अवशोषण के साथ ये प्रदूषक पौधों आदि में भी चले जाते हैं। पौधों से ही यह खाद्य श्रृंखला यानी कि फल और सब्जियों के अवशोषण के साथ ये पौधों में चले जाते हैं। फिर पौधों से यह फल फूल और सब्जियों के भक्षण के साथ यह मानव शरीर में पहुंच जाते हैं तथा अनेक रोगों को जन्म देते हैं। हमारे घर के आसपास के कूड़े कचरे के ढेर से या कूड़ाघर से विभिन्न रोगों के वाहक कीटाणु शीघ्रता से फैलते हैं, जैसे चूहे, मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े आदि। कीटाणु वाहक इन्हें फैलाने में मददगार होते हैं। यह सारे जीव जंतु विभिन्न रोगों के कीटाणुओं को कूड़े के ढेर से हमारे घर तक लाते हैं, क्योंकि इन सभी जीवाणु वाहक जीव जंतुओं की हमारे घर से लेकर कूड़े तक आवक जावक लगातार बनी रहती है। इसलिए विभिन्न कीटाणु जो विभिन्न बीमारियों के जनक होते हैं हमारे घर में सहजता से प्रवेश कर जाते हैं। बेकार और खाद्य झूठन के साथ अन्य चीजों के सड़ने से उत्पन्न परजीवी मानव शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश उपरांत आंत्रशोध, पेचिश, हैजा, पोलियो, TB, मलेरिया, खुजली और एलर्जी जैसे रोगों को फैलाते हैं। यही नहीं, कूड़े कचरे के ढेर से उठती लगातार दुर्गंध भी मानव को बीमार बनाने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ है। इनमें भी निम्न मध्यम वर्गीय और गरीबी से रहने वालों की संख्या ही अधिक है। यही लोग स्थान की कमी के कारण घनी बस्तियां बसाकर उनमें निवास करते हैं। इसलिए जाहिर सी बात है कि जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों का उपयोग कई लोग एक साथ करेंगे और पास पास एक दूसरे सटकर रहेंगे तो गंदगी भी होगी और बढ़ेगी, तो ऐसी स्थिति में बीमारी फैलाने के अवसर बहुत अधिक हो जाते हैं। श्रोता साथियों, यदि हम मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव की बात करें तो वर्तमान में एकल परिवार का जमाना है। लोग दूर दराज के क्षेत्र में जहां आवासीय व्यवस्था के लक्षण या अवसर देखते हैं वहां अपना आवास बना लेते हैं। यही कारण है कि आज दो पहिया, चार पहिया और बड़े आवागमन के भारी वाहनों की संख्या रोज बढ़ रही है। इनकी तेज ध्वनि वाले इंजन, उन इंजनों की घरघराहट, उनके तेज हॉर्न आदि से ध्वनि प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई है। इन सभी कारणों से मानव का स्वभाव और स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। स्वच्छ जल भी हरेक की पहुंच में नहीं है। भारत में लगभग 90% जल प्रदूषित है। श्रोता साथियों, मिट्टी अपने आप में कोई एक मूल पदार्थ नहीं है। डॉक्टर बेनर के अनुसार मिट्टी भूपृष्ठ पर असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों और वनस्पति के योग से बनती है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि मिट्टी मूल चट्टानों और जैव पदार्थों का मिला जुला एक रूप है। हमारे देश में मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को
कॉप दोमट, कछारी अथवा चीका मिट्टी भी कहा जाता है। इसका निर्माण पहाड़ों से नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी के कणों से हुआ है। इस मिट्टी में फास्फोरस, वनस्पति और नेत्रजन जैसे अंशों की कमी है। जहां इसमें इन तीनों अंशों की कमी है, वहीं इसमें चूना और पोटाश पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। वर्गीकरण की दृष्टि से यह मिट्टी दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर। हमारे देश भारत में जलोढ़ मिट्टी 40% भूमि के भाग पर पाई जाती है। इसका फैलाव पूरे उत्तर भारत के मैदान, डेल्टाई भाग और उसके तटीय भागों में पाया जाता है। उत्तर भारत का संपूर्ण मैदान जलोढ़ मृदा का मैदान कहलाता है। यह बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। श्रोता साथियों, हमारे देश में काली मिट्टी भी पाई जाती है। इसे रेगड़ या कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं। इसकी विशेषता की यदि हम बात करें तो इसका रंग गहरा काला, मध्यम काला होता है और कणों की बनावट बारीक एवं घनी होती है। इस मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि लंबे समय तक यह मिट्टी अपने आप में नमी बनाए रख सकती है। इस मिट्टी में लोहा, चूना, पोटाश, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम पाया जाता है। जब यह मिट्टी पानी के संपर्क में आने के कारण गीली होती है, तब यह चिपचिपी वाली अवस्था में होती है और सूखने पर यह दरदरी यानी कि दरारों वाली हो जाती है। सूख कर जब यह फटती है तो इसमें अच्छी खासी दरारें दिखने लगती हैं। यह काली मिट्टी लावा से बनी बेसाल्ट की काली चट्टानों से बनती है। यह कपास और ज्वार उत्पादन के लिए एक बहुत बढ़िया मिट्टी है। श्रोता साथियों, बढ़ती जनसंख्या के कारण शहरीकरण में भी तीव्रता से बढ़ोतरी हो रही है। इसका परिणाम और प्रमाण यह है कि उतनी ही तीव्रता से हरियाली भी समाप्त हो रही है। नई बसाहट के कारण खुले स्थान धीरे धीरे अब अतीत की बातें बनते जा रहे हैं। इन्हीं सबसे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। शहर जंगलों की ओर खिसकता जा रहा है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के आवास नष्ट होते जा रहे हैं ताकि मानव अपना आवास बना सके। पर्यावरण के साथ यह निरंतर छेड़छाड़ और हस्तक्षेप ही पर्यावरण को हानि पहुंचाना है। भूमि के उपयोग में बदलाव के कारण न केवल मिट्टी प्रदूषित हुई है बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित हुआ है। श्रोता साथियों, इसलिए भूमि हमारे लिए एक प्राकृतिक लेकिन सीमित संसाधन है और उसे औद्योगिक अपशिष्टों से बचाकर ही हम भूमि प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण रोक सकते हैं। इसके लिए हमें भूमि पर खुले में औद्योगिकरण और अपशिष्टों को पटक रखना बंद करना होगा और शुरू करना होगा एक पौधा लगाना और उसकी देखभाल करना। तभी वास्तव में हम मृदा प्रदूषण को रोकने के संदर्भ में कुछ सार्थक कर पाएंगे। तो आइए श्रोता साथियों, इस नेक काम की शुरुआत आज ही से की जाए और अपने घर आंगन में या किसी एक सुरक्षित स्थान में एक पौधारोपण किया जाए और उस पौधे को वृक्ष बनने तक उसकी देखभाल और रक्षा की जाए। तभी हम पर्यावरण के संदर्भ में कुछ सार्थक कार्य कर पाएंगे। श्रोता साथियों, मिट्टी के संरक्षण की बात करते समय हमें यह बात सदा ध्यान रखनी चाहिए कि भूमि हमारे लिए एक प्राकृतिक संसाधन है। वह जमाना बीत गया जब आदि मानव प्रकृति से पदार्थों को जमा कर उनसे अपना जीवन यापन करता था।

अभी आपने सुना कार्यक्रम पर्यावरण, जिसका शीर्षक था मृदा प्रदूषण के दुष्ट प्रभाव, और इसे प्रस्तुत कर रहे थे माइकल होजेस, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए साथियों, अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। अभी आपने सुना एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, इसी के साथ आज्ञा दीजिए ग्लोरिया गांगले को। अगली मुलाकात में आपसे बात करेंगे विवेक पीटर रॉबर्ट। धन्यवाद।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोताओं को आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी की समय सारणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक स्वास्थ्य और बाल जगत। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बाल जगत से, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे बाल कलाकार ईशान खापड़े और उनकी कहानी का शीर्षक है रीना और राजा।

0: रीना के घर के आंगन में एक आम का पेड़ था। उसे उस आम के पेड़ से बहुत लगाव था। वो स्कूल से आकर भरी दोपहर में उस पेड़ के नीचे बैठकर उससे बातें किया करती थी। वह उस पेड़ के साथ ही लड़ती झगड़ती और हंसती खेलती। रीना ने उस पेड़ का नाम राजा रखा था। उसे जब भी कोई उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम पूछता तो वह झट से कहती राजा। राजा मानो पेड़ न होकर उसके लिए सचमुच एक चलता फिरता दोस्त हो। वह जब कभी भी नाराज होती या फिर उसे किसी बात पर मम्मी पापा से डांट पड़ी होती तो वह राजा के पास जाकर ही अपना दुखड़ा रोती। आज भी किसी बात पर उसे मम्मी ने डांटा था। वह अपनी सबसे अच्छे व प्यारे दोस्त राजा के पास चली गई। वह बोली, राजा तुम बहुत अच्छे हो जो मेरी सारे बातें ध्यान से सुनते हो। मम्मी तो बात बात पर गुस्सा करती है, मुझे डांट देती है, वे बहुत गंदी हैं। अब मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी, तुम देख लेना सच्ची। राजा से बातें करते करते रीना को नींद आने लगी थी और जाने कब वह गहरी नींद में डूबकर सपनों की दुनिया में पहुंच गई। रीना राजा से कह रही थी, राजा आज मम्मी ने मुझे बहुत डांटा, अब मैं उनके साथ नहीं रहूंगी। तुम मुझे आकाश में ले चलो, मैं वहाँ की सैर करूंगी, वहाँ मुझे कोई नहीं डांटेगा। चलो ना मुझे आकाश की सैर कराओ।
1: तो फिर बैठ जाओ मेरी टहनी पर, राजा ने कहा। टहनी उड़ते हुए आकाश में पहुंच गई। वहाँ पर काले काले सफेद बादल थे, कुछ राक्षस जैसे दिखते थे तो कुछ गुब्बारे जैसे, कुछ टॉफी चॉकलेट जैसे दिखते थे और कुछ आम पपीते जैसे। अरे राजा देख, ये बादल कितने रंग रूप के हैं, रीना हैरानी से बोली। मैं इन्हें ढक सकता हूँ, ढक कर दिखाऊं, राजा ने पूछा। हाँ हाँ, रीना ने उत्सुकता से हामी भरकर कहा। एक तेज हवा के झोंके से राजा की टहनियाँ हिलने लगी और बादल ढकने उभरने लगा। रीना ताली बजाने लगी। वह बोली, राजा अब हम सूरज के पास जाएंगे। बस कहना भर ही था कि रीना सूरज के पास थी। सूरज तेज गर्मी बरसा रहा था। वह गुस्से में बोली, ए सूरज तुम कितने गर्म हो, तुम्हारे पास आते ही मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तुम बड़े बुरे हो।
2: तुम्हें मेरे पास आने को किसने कहा था, मैंने तुम्हें मेरे घर आने का न्योता तो नहीं भेजा था। जाओ अपने दोस्त की छांव में जाओ, जहां तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी, सूरज कुड़ते हुए बोला।
0: हाँ मेरा दोस्त तो मेरी मदद करेगा ही, लेकिन तुम बुरे हो, रीना ने तन कर कहा।
2: उफ़ रीना, तुम इस गर्म मिराज के सूरज के मुंह क्यों लग रही हो, उसे उलझना छोड़ो और जल्दी से मेरे पत्तियों के बीच आ जाओ, राजा ने रीना को समझाया। रीना झटपट राजा की पत्तियों की ओट में आ गई। वह बोली, राजा अब मुझे भूख लग रही है, इतनी सैर करके मैं थक गई हूँ ना, मैं क्या खाऊं?
0: तुम मेरे फल खा लो, फल खाकर अपनी भूख मिटाओ, राजा ने कहा। रीना ने झटपट फल तोड़े और एक टहनी की आड़ में लेटकर फल खाने लगी। वह बोली, राजा ये बहुत मीठे व रसीले हैं, इन्हें खाकर मजा आ गया।
2: भरपेट खाने के बाद वह अंगड़ाई लेते हुए बोली, राजा ज्यादा खाने के कारण मुझे आलस आ रहा है, अब क्या करूं?
0: करूं क्या, कुछ नहीं, मुझे सब पता है तुम सोना चाहती हो, तुम बहुत आलसी हो गई हो, यूं तो तुम मेरे टहनियों की ओट में आराम से सो सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें अभी सोने नहीं दूंगा, अभी हम और सैर करेंगे, देखो सूरज जाने लगा है, चलो अब तुम्हें चांद की सैर करा लाऊं,
2: वरना फिर कहोगी कि घुमाया नहीं, राजा बोला।
0: अच्छा जी चलो चांद की सैर कर आते हैं, तुम्हारी बात तो माननी पड़ेगी, रीना मुस्कुराकर बोली। दोनों चल दिए।
2: राजा राजा तुम्हारे पत्तियों के बीच से झांकता चांद कितना सुंदर लग रहा है,
0: मुझे पूरा चांद देखना है, आगे चलो ना, रीना उत्सुकतावश बोली।
2: अरे जा रहे हैं ना, तुम थोड़ा सब्र तो रखो, राजा बोला।
0: चांद पर गहरे गहरे गड्ढे हैं। वाह चांद कितना अच्छा लगता है, रीना ने कहा।
2: हाँ रात भी होने को है, अब तुम्हारा घर जाना ठीक रहेगा, चलो घर चलते हैं, कहते हुए
1: राजा ने अपनी बात रखी।
0: क्यों राजा, थोड़ी और सैर करते हैं? रीना ने पूछा।
2: नहीं अब नहीं,
0: रात में मैं तुम्हें जीवन देने वाली ऑक्सीजन गैस नहीं देता हूँ ना, इसीलिए।
1: राजा ने खींचते हुए कहा।
2: अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो, चलो घर चलते हैं,
0: रीना ने कहा और वे लौट पड़े। घर लौटते हुए रास्ते में उन्हें फिर बादल मिले।
1: हम तो बरसेंगे झम झम, धरती को भिगोएंगे झम झमा झम,
0: बादल नाच नाच कर कह रहे थे। उनकी बातें सुनकर रीना राजा से बोली,
1: दोस्त लगता है बारिश होने वाली है, फिर तो हम भीग जाएंगे।
0: हम नहीं, मैं, सिर्फ मैं भीगूंगा, तुम मेरी आड़ में खड़ी हो जाना,
1: बारिश का पानी तुम तक पहुंचेगा ही नहीं,
0: राजा ने मुस्कुरा कर कहा।
2: राजा तुम बहुत अच्छे हो,
0: जानते हो सच्चा दोस्त वही होता है जो दूसरे दोस्त के काम आता है, और तुम तो मेरे काम आते हो, तुम मेरा बहुत ध्यान रखते हो, मुझे बारिश से बचाते हो, मुझे भूख लगने पर फल खाने को देते हो, जीवन देने वाली हवा देते हो, और आराम करने के लिए छाया।
1: बस बस मेरी ज्यादा तारीफ मत करो, वरना मुझे खुद पर घमंड हो जाएगा,
0: और फिर सब मुझे घमंडी कहकर बुलाएंगे।
1: क्या तुम्हें अच्छा लगेगा जब लोग तुम्हारे दोस्त को घमंडी कहेंगे?
2: मैं उन सबकी पिटाई करूंगी और डांट लगाऊंगी जो मेरे दोस्त के लिए उल्टा सीधा कहेंगे।
0: राजा क्या अब मैं सो जाऊं?
1: रीना ने भोलेपन से कहा।
0: हाँ हाँ, राजा ने सहमति दे दी, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, सबसे अच्छे,
1: कहकर रीना ने राजा को चूम लिया। तभी उसके ऊपर बारिश की एक बूंद पड़ी। वह बोली,
0: बारिश शुरू हो गई,
1: वे बादल सही कह रहे थे।
0: हाँ बेटा बारिश शुरू हो गई, घर के अंदर चलो,
1: माँ ने उसे उठाते हुए कहा।
0: माँ की आवाज सुनकर रीना आँख मीचते हुए बोली,
2: माँ तुम?
0: हाँ मैं, तुझे लेने आई हूँ, माफी मांगती हूँ, अब नहीं डांटूंगी, अब अंदर चलो, माँ ने कान पकड़ते हुए कहा।
1: रीना समझ गई कि वह सपना देख रही थी। उसने मुस्कुराकर राजा की तरफ देखा, उसके तने को अपनी बाहों से भरकर बोली,
0: थैंक यू दोस्त, तुम सच में राजा हो, मुझे बचाकर स्वयं भीग रहे हो।
1: मम्मी उसे देखकर हैरान थी,
0: उन्हें समझ में कुछ आया नहीं।
1: वे बोली, जल्दी अंदर चलो, वरना अपने दोस्त राजा की तरह तुम भी भीगोगी।
0: रीना हंसती हुई मम्मी के साथ अंदर चली गई।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल जगत के अंतर्गत एक कहानी, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे बाल कलाकार ईशान खापड़े, और उनकी कहानी का शीर्षक था रीना और राजा। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं एक बाल गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे बाल गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं बाल जगत, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं हमारी बाल कलाकार मल्लिन जेकब, और उनकी कहानी का शीर्षक है सच्चा सौदागर।

सच्चा सौदागर। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके तीन बेटे थे, सुरेश, महेश और नरेश। सेठ ने अपनी लगन और मेहनत से अपार धन संपदा कमाई थी। उसने अपने परिवार को हर ऐशोआराम दिया था। उसका व्यापार काफी फल फूल रहा था, परंतु जो जो उसकी उम्र बढ़ रही थी, वह महसूस कर रहा था कि अब उससे ज्यादा दौड़ धूप नहीं हो सकती। उसके बेटे पढ़ लिख कर समझदार हो चुके थे, इसीलिए वह एक बेटे पर कारोबार की जिम्मेदारी डालकर स्वयं आराम करना चाहता था। यो तो उसके तीन बेटे थे, तीनों बुद्धिमान थे और वह अपना व्यवसाय उसी बेटे को सौंपना चाहता था जो अपने काम के प्रति सजग होने के साथ साथ ईमानदारी और मेहनती भी हो। अपना सबसे योग्य उत्तराधिकारी चुनने के लिए उसने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया। उसने कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए मैं अपना कारोबार और संपत्ति किसी एक को सौंपना चाहता हूँ। इसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। तुम तीनों जाओ और कहीं से एक रुपया चुरा लाओ, पर ध्यान रहे कि चोरी ऐसी जगह से करना जहां तुम्हें भगवान भी ना देख पाए। तीनों बेटे पिता की बात मानकर रुपया चुराने के विषय में सोचने लगे। सुरेश ने अपने पिता की तिजोरी से हाथ साफ किया तो महेश ने अपनी माँ के पर्स से रुपया निकाल लिया, लेकिन नरेश रुपया नहीं चुरा पाया क्योंकि उसे अपने पिता के कहे शब्द याद थे। उसके पिता ने कहा था कि रुपया ऐसी जगह से चुराना जहाँ पर भगवान भी ना देख पाए। नरेश भगवान में विश्वास रखता था, इसीलिए जानता था कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान विद्यमान नहीं है। अगले दिन तीनों बेटे पिता के सम्मुख उपस्थित हुए। बड़े दोनों बेटों ने अपना अपना रुपया अपने पिता को दिखा दिया और यह भी बता दिया कि सबसे नजर बचाकर उन्होंने किस तरह वह रुपया चुराया। अतः में पिता ने सबसे छोटे बेटे नरेश से पूछा, नरेश, तुम्हारा रुपया कहाँ है? नरेश बोला, पिताजी, आपने कहा था कि रुपया ऐसी जगह से चुराना है जहाँ भगवान भी ना देख पाए। पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि भगवान हर जगह है, फिर मैं रुपया कैसे चुराता? नरेश की बात सुनकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ और आगे बढ़कर उसने नरेश को गले लगा लिया। परीक्षा में नरेश सफल हो गया था, पर अब भी सेठ पूरी तरह आश्वासित नहीं था, इसीलिए उसने एक और परीक्षा लेने की ठानी। उसने अपने तीनों बेटों को 100-100 रुपये दिए और उनसे कहा कि इन रुपयों से कोई ऐसी वस्तु खरीद कर लाओ जिससे तुम्हारा पूरा कमरा भर जाए। तीनों बेटे रुपया लेकर वहाँ से निकल गए। उनके पास थोड़े से रुपए थे और पिताजी ने शर्त रखी थी कि इन रुपयों से कोई ऐसी वस्तु खरीद कर लाओ जिससे पूरा कमरा भर जाए। सबसे पहले सुरेश पैसे लेकर बाजार गया। रास्ते में उसे सड़क के बीचों बीच एक भिखारी बैठा दिखा। वह भूखा था और खाने को कुछ मांग रहा था। सुरेश काफी जल्दी में था, इसीलिए भिखारी को ठोकर मारकर वह आगे की ओर बढ़ गया। सुबह से शाम तक वह बाजार में भटकता रहा और उसे कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली जिससे कमरे को भरा जा सके। हार कर उसने 100 रुपयों का भूसा खरीद लिया। उसे उम्मीद थी कि इससे कमरा भर जाएगा, पर जब घर लौटकर उसने भूसे का गटर कमरे में पलटा तो उससे केवल फर्श ही ढक पाया। महेश भी रुपया लेकर बाजार को निकला और उसे भी निकलते ही सड़क पर एक बुढ़ा भिखारी मिला। उसने अपना सारा शरीर एक मैले कुचले कंबल से ढका हुआ था। उसने महेश से कहा, मैं भूखा हूँ, मुझे खाने को कुछ दो। महेश पहले से ही परेशान था कि वह इतने कम पैसों से कमरे को कैसे भरेगा। उस पर यह भिखारी आ टपका। गुस्से से उसने उसे लात मारकर एक और धकेल दिया और आगे बढ़ गया। बाजार जाकर वह सारा दिन भटकता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने से पैसों से वह क्या खरीदे जिससे कमरा पूरा भर जाए। बहुत सोच विचार कर
उसने 100 रुपयों की रुई खरीद ली और कमरे में ले आया। रुई से कमरे का एक कोना भी नहीं भर पाया। दोनों भाइयों के लौट आने पर नरेश 100 रुपये लेकर बाजार गया। उसे भी सड़क पर एक भूखा भिखारी बैठा मिला। नरेश ने भिखारी को बिठाकर पेट भर खाना खिलाया और उसके बाद बचे हुए पैसे लेकर बाजार गया। बाजार जाकर उसने एक बड़ी सी मोमबत्ती और माचिस खरीदी। मोमबत्ती लाकर जब उसने अंधेरे कमरे में जलाई तो उसकी लौ बत्ती से पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। रात को सेठ अपने तीनों बेटों के कमरे में मुआयना करने पहुंचा। सबसे पहले वह सुरेश के कमरे में गया। सुरेश के कमरे में थोड़ा सा भूसा पड़ा था। फिर वह महेश के कमरे में गया। उसने देखा कि महेश के कमरे में एक कोने में रुई पड़ी है और अधिकांश कमरा खाली है। अंत में जब सेठ अपने सबसे छोटे बेटे के कमरे में गया तो यह देखकर गदगद हो गया कि पूरा कमरा प्रकाश से भरा हुआ है। नरेश अपनी दूसरी परीक्षा में भी अव्वल आया था, इसीलिए सेठ ने तीनों बेटों को अपने कमरे में बुलाया। उसने घोषणा की कि दोनों ही परीक्षाओं में नरेश उत्तीर्ण हुआ है, इसीलिए उसने थोड़े से पैसों में सबसे अच्छा सौदा किया। उसके मन में गरीब दीन दुखियों के लिए दया की भावना भी है, क्योंकि भिखारी के रूप में सेठ ही उन्हें रास्ते में मिला था। इस प्रकार सेठ जी ने अपना सारा कारोबार अपने सबसे छोटे बेटे नरेश के नाम कर दिया।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल जगत के अंतर्गत एक कहानी, जिसे प्रस्तुत कर रही थी हमारी बाल कलाकार मदलिन जेकब, और उनकी कहानी का शीर्षक था सच्चा सौदागर। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, अब हम अपने समय सारणी के अनुसार हमारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक से, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: धार्मिक और नेक परिवार में बालक ईसा बढ़ते गए। उनमें बुद्धि और बल का विकास होता गया। ईसा का ये परिवार धन धान्य से भले ही निर्धन था, मगर ईश्वर की कृपा और उनके आशीर्वाद से भरपूर था। ईसा के पालक अन्य यहूदियों के समान पास्का पर्व मनाने यरूशलेम के मंदिर जाया करते थे। ईसा की उम्र इस समय 12 वर्ष के लगभग हो चली थी। पहली बार वे इस लंबी यात्रा पर अपनी माता मरियम व संरक्षक यूसुफ के साथ पैदल ही निकले। अपने मित्रों के साथ ईसा का परिवार 7 दिन तक यरूशलेम में रहा। इस समय अपने पालकों को बगैर बताए ईसा वहीं रुक गए, जबकि उनके माता पिता नाजरेथ लौटने लगे। ईसा वहां निर्धनों व बीमारों को देखने गए। वे कुछ शिक्षकों और पुरोहितों से भी मिले, जो ईसा की बुद्धि व ईश्वरीय ज्ञान से चकित थे। इसलिए उन्होंने मंदिर में ईसा को आम लोगों के सामने परखना चाहा। उधर मरियम और यूसुफ ईसा को अपने साथ न आया देख दंग रह गए। उनकी तलाश की गई।
1: यूसुफ, ईसा तो कहीं भी नहीं है।
2: कहीं नहीं है, फिर ईसा कहाँ रह गए? मरियम, तुमने सारे कुटुंबियों के यहाँ तलाश किया ना?
1: एक एक से पूछकर आ रही हूँ। यूसुफ, मुझे डर है, कहीं ईसा को कुछ होता नहीं क्या?
2: नहीं नहीं, घबराओ नहीं मरियम, हम यरूशलेम वापस चलते हैं, हो सकता है वो वही हो।
1: ईसा के बगैर ये रास्ता भी कितना लंबा लग रहा है, काटे ही नहीं कटता। हे ईश्वर, अपने बेटे की रक्षा करना। पता नहीं कहाँ है ईसा।
2: ईसा, ईश्वर हमारे बेटे की रक्षा जरूर करेंगे मरियम। ईसा तो ईश्वर के बेटे हैं, भला वे उसे संकट में कैसे छोड़ सकते हैं?
0: यरूशलेम में ईसा को तलाशा गया। कुछ लोगों ने उस अद्भुत बालक को देखे जाने के बारे में बताया भी, मगर कोई नहीं जानता कि अब वो बालक कहाँ होगा।
1: हो सकता है ईसा मंदिर में ही हो।
2: मंदिर में?
1: हाँ।
2: आओ वहीं चलते हैं। आओ
1: यूसुफ।
2: हाँ?
1: वो रहा ईसा।
2: कहाँ?
1: वो,
2: अरे ये क्या, ईसा तो पुरोहितों और शास्त्रियों के बीच बैठा उनसे बातें कर रहा है।
1: आओ आओ, हम भी उसकी बातें सुनते हैं।
2: हाँ।
3: भला आपको कैसे मालूम है कि मसीह आ गए हैं? अरे मसीह तो शान शौकत के साथ आएंगे और अपने लोगों को रोमियों से छुटकारा दिलाएंगे।
4: मसीह आ चुके हैं और आप सबों के बीच उपस्थित हैं, मगर उस मसीह को अस्वीकृत कर मार डाला जाएगा। मसीह जिसने इस धरती पर जन्म ले लिया है, उसे पूर्व देश के 3 मंजूषी अपने उपहार भी सौंपाए। मसीह मानवता को परखने और उद्धार के लिए आ गए हैं।

0: आओ यूसुफ, हम ईसा के पास चले।
1: हाँ, चलो।
0: ईसा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो, हम तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं और तुम यहाँ हो।
2: मुझे ढूंढने की क्या जरूरत थी? क्या आप नहीं जानते थे कि मैं अपने पिता के घर निश्चित होऊंगा?
1: हमें माफ कर दो बेटे, और देखो अब घर चलो, तुम्हारी माँ बहुत थक गई है।
3: शास्त्री व पुरोहित अपने द्वारा हासिल ज्ञान के दर्प से इतने चूर थे कि उन्होंने ईसा को नहीं पहचाना। अपने घमंड के अंधकार ने उन्हें ईसा की शिक्षाओं व जो कुछ वे कह रहे हैं पर यकीन न करने दिया। यदि ये शास्त्री विनम्र व सत्य जानने को इच्छुक होते तो ईसा के तर्क उन्हें समझ भी आते, जबकि वही मरियम और यूसुफ जिनसे स्वयं ईसा ने अपने को छुपा लिया था इतने दुखी व चिंतित थे कि कैसे भी हो उन्हें पालें। लेकिन वास्तव में शास्त्री व ज्ञान के दर्प में डूबे लोग क्या ईश्वर की आशाएं भूल सत्य देखने से वंचित नहीं रह गए थे? उधर नाजरेत वापस आने के बाद ईसा घर ही अपनी माता व संरक्षक यूसुफ के साथ रहने लगे। वे घर के काम में मदद देते और अपने पालकों के साथ प्रार्थना में मग्न। उम्र के साथ साथ उनके चेहरे से ईश्वरी महिमा का फूटता प्रकाश बढ़ने लगा, मगर वे अपने पालक के प्रति नम्र, प्रिय और आज्ञाकारी रहे। युवक ईसा अपने आसपास के निर्धनों और बीमारों को नित्य मिलते जाते। अपनी बातों से वे लोगों की आध्यात्मिक व शारीरिक रूप से मदद करते। ईसा लोगों को दुख संकट में धन धान्य से नहीं वरन धैर्य और साहस की शिक्षा दे राहत दिलाते।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVM मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, हमारी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम स्वास्थ्य का। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य के अंतर्गत वार्ता जिसका शीर्षक है 40 की उम्र में स्वास्थ्य की देखभाल, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

साथियों नमस्कार। स्वास्थ्य और पर्यावरण कार्यक्रम के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर आज के हमारे कार्यक्रम में हम आपको जिस स्वास्थ्य संबंधी विषय को लेकर बताने वाले हैं वो है भी उतना ही दिलचस्प। जी हाँ, आज का हमारा स्वास्थ्य और पर्यावरण कार्यक्रम केंद्रित है 40 की उम्र में स्वास्थ्य की देखभाल को लेकर। देखा आपने, आपके परिवार में जितने भी व्यक्ति 40 के पार हैं या फिर 40 के होने वाले हैं या बिल्कुल 40 के हैं, उन सभी के चेहरे कैसे खिल गए। जी हाँ साथियों, इस उम्र को प्रौढ़ावस्था की शुरुआत भी कहा जाता है और इस उम्र में बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल को लेकर बहुत ज्यादा सजग रहें, बहुत ज्यादा जागरूक रहें। साथियों, वैसे देखा जाए तो स्वास्थ्य को लेकर हम सभी को जागरूक तो पूरे जीवन भर रहना ही चाहिए, लेकिन यदि बात 40वीं वर्षगांठ की हो तब हम सभी के लिए ये एक बहुत ज्यादा जागरूक हो जाने वाला विषय हो जाता है, होता है ना? तो साथियों, इसकी वजह भी ये होती है कि यदि हम युवावस्था में हैं तब सबसे ज्यादा अपने करियर और गृहस्थी को लेकर के, अपने जीवन में सेटल होने की बात को लेकर हम बहुत व्यस्त रहते हैं और यही वो समय होता है जब व्यक्ति अपनी इच्छा से बहुत ज्यादा, व्यक्ति अपनी क्षमता से बहुत ज्यादा जाकर काम करता है और सबसे ज्यादा उपेक्षित होती है उसकी सेहत। यही वजह होती है साथियों कि 40 की उम्र लगते लगते व्यक्ति को बीमारियां घेरने लगती हैं। 40 का होने पर काम का दबाव बहुत ज्यादा होता है, आपके परिवार में, गृहस्थी में आपको बच्चों के भविष्य की चिंता बहुत ज्यादा होती है। इसके साथ ही जीवन में स्थायित्व लाने का तनाव आपके ऊपर होता है। स्थायित्व लाने का तनाव यानी अब आपकी कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अब आपके पास में कोई बैंक बैलेंस होना चाहिए, अब आपके जीवन में आप उन्नति की नहीं धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर की सीढ़ियों की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोई एक ऐसा साधन भी होना चाहिए जिससे बुढ़ापे की व्यवस्था अच्छी हो सके, है ना? तो साथियों, ऐसे में उनकी हेल्थ के लिए स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, तनाव बहुत ज्यादा होता है। साथ में ही शरीर, युवावस्था की जो सक्रियता होती है, युवावस्था में जो आपके पास ऊर्जा होती है, उससे भी वंचित होने लगता है। तो साथियों, इस प्रकार से 40 की उम्र में चौतरफा हमला आपके शरीर पर होता है और उससे बचाव के लिए आपको बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है, सबसे ज्यादा नियमित दिनचर्या की जरूरत है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि 40 की उम्र में शरीर में परिवर्तन क्या होते हैं। सामान्य तौर पर देखा जाए तो विभिन्न शारीरिक क्रियाएं और मांसपेशियों की मजबूती 40 की उम्र में कम होने लगती है, इसलिए इस अवस्था के आने से पहले ही आपको जागना बहुत जरूरी है। याद रखें कि यदि आपकी हेल्थ में, आपके स्वास्थ्य में यदि सेंध लग गई तब आप न केवल परिवार पर बोझ बन जाएंगे, जो परिवार आप पर निर्भर है, बल्कि आप उस आराम और उस सुकून से भी वंचित हो जाएंगे जिसे हासिल करने के लिए 40 की उम्र आने तक आपने इतनी जीतोड़ मेहनत की है। इसलिए साथियों, बहुत जरूरी है कि आप उन चेतावनी के संकेतों को, उन अलार्म सिग्नल्स को बहुत अच्छे से पहचाने और अपनी सेहत को बरकरार रखें, बहुत सारी सावधानियां बरतें और नियमित दिनचर्या व्यतीत करें। सबसे पहली बात तो यह है साथियों, सीडेंट्री लाइफस्टाइल से बचें। सबसे पहली बात है अपनी उम्र और अपनी क्षमता के हिसाब से अपने रहन सहन, अपने खान पान और अपनी दिनचर्या को ढालें। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके जीवन शैली का स्ट्रेस या दबाव, तनाव या फिर सीडेंट्री लाइफस्टाइल, या जिसे हम कह सकते हैं अपने शारीरिक श्रम से रहित जीवन शैली, इन सभी का आपस में बहुत गहरा संबंध है। इन्हीं कारणों के चलते भविष्य में ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, डायबिटीज या मधुमेह, डिप्रेशन या अवसाद, पोस्चर या फिर जोड़ों की समस्याओं से आप पीड़ित हो सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि जीवन में आप नियमित व्यायाम को सबसे अहम स्थान दें। सुबह शाम 3 से 4 किलोमीटर की पैदल सैर करें, तैरने जाएं। इसके साथ ही सबसे ज्यादा जरूरी है तनाव से दूर रहें और तनाव को उत्पन्न जितने भी साधन करते हैं उनसे भी आप दूर रहें। साथियों, यदि हमारे कुछ श्रोता योग और ध्यान भी करते हैं तो उनके लिए ये अच्छी खबर है कि ये बहुत अच्छा साधन है तनाव से दूर रहने का। तनाव को दूर करने के साथ ही आपको ध्यान उन चीजों की ओर भी देना है कि हम उन कारकों को भी पहचानें
जिनके चलते आपको तनाव होता है। सबसे पहला तनाव हमें क्यों होता है? क्योंकि हम अपने आर्थिक लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाते। हम एक सीमित अवधि में बहुत ऊंचे आर्थिक लक्ष्य यदि रखेंगे और यदि हमें पता है कि हमारी आर्थिक क्षमताएं बहुत सीमित हैं, ऐसे में हम उन्हें कैसे पा सकेंगे? सोचने की बात यह है साथियों कि आर्थिक लक्ष्य ही जीवन में सब कुछ नहीं होता। हमें यदि सही जीवन शैली के साथ एक अच्छा जीवन जीने को मिलता है, एक ऐसा जीवन की अवधि जीने को मिलती है जिसमें हमारे परिवार का सुख सर्वोपरि है, हम अपने मनपसंद काम कर पा रहे हैं और सबसे पहली बात हम खुश हैं, तब साथियों यही तो जीवन की सार्थकता है। आपको जीवन के 40वें पड़ाव पर आने के बाद सबसे पहले तो यही सोचना है कि क्या आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। हम सभी के साथ होता यही है कि हम आने वाले समय को अच्छा बनाने के लिए अपने वर्तमान समय में अपनी क्षमता से ज्यादा मेहनत करते हैं। हम ऐसे ऊंचे लक्ष्य अपने सामने रखते हैं जो कि प्रतियोगिता से प्रेरित होते हैं। यदि आपके साथियों को कुछ ऐसे अवसर मिल गए हैं जिसके चलते कम मेहनत के चलते कम अवधि में वे आपसे आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा आगे निकल गए हैं, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। सफलता का पैमाना आपके साथियों के लिए भले ही धन हो, लेकिन आपके सामने सफलता का पैमाना होना चाहिए जीवन की गुणवत्ता। प्रत्येक व्यक्ति जीवन को अलग प्रकार से परिभाषित करता है। आपको ये देखना है कि जीवन की सफलता को लेकर आपका पैमाना क्या है, जीवन की गुणवत्ता को आप किस परिप्रेक्ष्य में लेते हैं। तो चलिए साथियों, एक बार फिर हम चले 40वें पड़ाव की ओर, शारीरिक परिवर्तनों की ओर। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि युवावस्था के दौरान शरीर अनेक प्रकार के परिवर्तनों से रूबरू होता है। पुरुषों में भी कई प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होते हैं। धमनियों में जमा कोलेस्ट्रॉल और फेफड़ों में जमा सिगरेट के धुएं से निकला हुआ कार्बन हार्ट अटैक, दमा और ब्रोंकाइटिस जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है। यदि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है और आपकी शारीरिक व्यायाम रहित जीवन शैली है, तब आपको आर्थराइटिस होने की आशंका होती है। आपको कई बार पढ़ने के लिए चश्मा भी इसी उम्र में लगता है साथियों, इसलिए बहुत जरूरी है कि 40 वर्ष की आयु में पहुंचने से पहले आप कम से कम एक बार सभी जरूरी जांच और मेडिकल चेकअप जरूर करा लें। इन जांचों से जहां एक ओर यदि शरीर के भीतर अंदर ही अंदर कोई समस्या जन्म ले रही होगी, तो वो समय रहते जल्दी से पकड़ में आ जाएगी और उसे आगे बढ़ने से रोका भी जा सकता है। इसके साथ ही यदि जांच की रिपोर्ट आपने सही समय पर पा ली है, तो ये आगे के लिए आपकी बेसलाइन का काम करेगी, जिससे भविष्य में की गई जांच की रिपोर्ट की तुलना करने और निष्कर्ष निकालने के लिए आपके डॉक्टर को बहुत मदद मिलेगी। तो साथियों, यदि आप 40 की उम्र में हैं और आपको करवानी है कुछ जरूरी जांचें, तो इनमें शामिल होंगी लिपिड प्रोफाइल, ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, लीवर फंक्शन टेस्ट, ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, एब्डोमिनल सोनोग्राफी, टीएमटी, यूरिन और कंप्लीट हीमोग्राम। इसके साथ ही महिलाओं के लिए जो जांचें जरूरी हैं, उनमें है बोन मैरो डेंसिटी, सर्वाइकल पेप्समेयर और मैमोग्राफी। ये सारी जांचें सामान्यतः कम से कम एक बार करवाकर रखनी चाहिए। इसके साथ ही साथियों, यदि आपकी फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री है, इसका अर्थ है यदि आपके परिवार में किसी को भी मधुमेह है, तो वर्ष में एक बार या फिर दो वर्ष में एक बार खून में शक्कर की जांच जरूरी है। इसके साथ ही यदि परिवार में किसी को स्तन कैंसर हुआ हो, तो लड़कियों को साल में एक बार मैमोग्राफी जरूर करवानी चाहिए। यदि साल में एक बार आंखों की जांच और कानों की जांच भी करा सके तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा साल भर में एक बार अपने डॉक्टर से अपना कंप्लीट चेकअप करवाएं और जो जांचें वे जरूर समझें उन्हें बिल्कुल करवाएं। साथियों, यदि हम खान पान की बात करें, तब 40 की उम्र में पहुंचने के बाद बहुत जरूरी होता है आपका खान पान में संयम रखना। सबसे पहली बात है अपने वजन पर ध्यान दें। घी, तेल, चिकनाई युक्त और मीठे भोज्य पदार्थों से जितना हो सकता है उतना बचें। नमक और शक्कर दोनों की मात्रा अपने भोजन में सीमित रखें।
भोजन में पर्याप्त मात्रा में हरी सब्जियां, सलाद और अन्य रेशेदार पदार्थ लें। इसके साथ ही यदि आपने कर्ज लिया है तो उसे उतारने की क्षमता का ध्यान दें। साथ में ही परिवार को ध्यान दें, दोस्तों के साथ समय गुजारें और जीवन का भरपूर आनंद लें। मनोरंजन और चेंज के लिए बाहर जाएं और इस समय अपने करियर और कारोबार की चिंताओं को छोड़ दें। यदि हम संक्षेप में कहें तो 40 की उम्र में जीवन का भरपूर आनंद लें।

श्रोता साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक था 40 की उम्र में स्वास्थ्य की देखभाल, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, अब आप सभी को हमारे स्वास्थ्य के बारे में तो समझ आ ही गया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप इन बातों को अपने करीबी परिजनों को भी बताएंगे। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉयड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दे आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को, और रिकॉर्डिस्ट है आकाश जांगरा। नमस्कार।

दोस्तों, रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं आपकी दोस्त ग्लोरिया गांगले। दोस्तों, अभी की सभा 11 से 12 में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम कृषि जगत, कानूनी ज्ञान, वसुदेव कुटुम्बकम, नाटक और भक्ति गीत। तो आइए दोस्तों, हम सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: मुखिया जी, कृषि जगत कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: आपका भी स्वागत है और अपने श्रोताओं का भी स्वागत है।
0: पिछले कार्यक्रम में हम लोग बात कर रहे थे खास करके धान के खरीद के मसलों पर।
1: हाँ, हाँ।
0: राज्य में धान खरीद का सही सिलसिला कब से शुरू किया गया मुखिया जी? खासकर अगर मैं बात करूं इस वित्तीय वर्ष की, तो कब से ये शुरू किया गया है?
1: देखिए, धान की सरकारी खरीद 15 नवंबर से शुरू की जाती है।
0: अच्छा अच्छा,
1: ठीक है। पिछले वर्ष भी शुरू हुई। पंचायतों के पैक्स और प्रखंड स्तर पर राज्य खाद्य निगम के केंद्र से धान की खरीद की जानी है
0: जी।
1: सभी पैक्सों में धान खरीद के लिए सेंटर नहीं खुल सके हैं।
0: आखिर कितने सेंटरों पर धान की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और अभी तक कितने सेंटर धान की खरीद का कार्य कर रहे हैं?
1: राज्य में 6098 पैक्सों में खरीद सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया
0: जी।
1: 16 जनवरी तक मात्र 1074 केंद्र ही खुल सके
0: जी।
1: इन केंद्रों के माध्यम से अब तक मात्र 33,000 टन ही खरीदारी हुई है। SFC के प्रखंडवार खुले सेंटरों पर 27,000 टन धान की खरीदारी की जा सकी है।
0: सरकारी केंद्रों पर धान की खरीद नहीं हो पा रही है, इसके पीछे क्या और कोई दूसरा वजह भी हो सकती है मुखिया जी? कहीं सरकार की नीति तो इसके लिए उत्तरदायी नहीं है?
1: खरीदारी नहीं होने के मामले के पीछे जो कारण है उस पर गौर करना जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: पहली बात यह है कि धान खरीद की गति धीमी रहने का मूल कारण पर्याप्त संख्या में खरीद केंद्र का नहीं खुलना है
0: जी। जी,
1: हर पंचायत में एक पैक्स केंद्र है। 2 महीने बाद मात्र 1000 पैक्सों से ही धान की खरीदारी हो रही है
0: जी।
1: ऐसे में अगर कोई किसान धान बेचना चाहे तो उसे दूसरे पंचायतों में जाना होगा। इससे किसानों का ट्रांसपोर्टेशन खर्च बढ़ जाता है, यानी परिवहन का खर्चा बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अगर दूसरे पंचायत में जाकर के अपनी धान को बेचेंगे तो परिवहन खर्च बढ़ेगा।
1: हाँ।
0: क्या खरीदारी के पीछे एक कारण यह भी है मुखिया जी कि इस वर्ष धान का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से कम हुआ है?
1: हो सकता है। पिछले साल राज्य में 80 लाख टन धान का उत्पादन हुआ था, तब राज्य सरकार ने लगभग 18 लाख टन धान की खरीदारी की थी
0: जी।
1: इस साल धान का उत्पादन लगभग 50 लाख टन ही हुआ है।
0: एक शिकायत जो सुनने को मिल रही है कि वह यह है कि क्रय केंद्रों पर किसानों से नमी के नाम पर, खास करके कि धान में नमी है, ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि नमी ज्यादा है, इसीलिए यह बात बन नहीं पा रही है।
1: देखिए, वो नमी के नाम पर जो है धान ज्यादा लेते हैं वो।
0: अच्छा।
1: है ना, ये शिकायत है जिसको सुखन बोलते हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: ये सुखन चला गया, यानी जब सुखाने के बाद इसका वजन कम होगा
0: जी जी जी,
1: तो उतना ही वो उतनी गिनती का पैसा देते हैं, भुगतान करते हैं
0: जी।
1: तो बिल्कुल ये बात आप सही कह रहे हैं। क्रय केंद्रों पर किसानों से नमी के नाम पर 14 से 17% अधिक धान लिया जा रहा है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: तो यही नहीं, कभी कभी वापस करने या 1-2 दिन बाद आने की बात कह दी जाती है
0: जी।
1: तो घर पर व्यापारी से धान बेचने में किसानों को ये परेशानी नहीं होगी।
0: किसानों को धान क्रय केंद्रों पर जो मूल्य मिलते हैं उनका हिसाब किताब क्या है?
1: बाजार में धान का रेट 1200 से 1250 रुपए प्रति क्विंटल है। क्रय केंद्र पर सरकार ने सामान्य किस्म के धान की कीमत 1310 रुपए और उन्नत किस्म के धान के लिए 1350 रुपए निर्धारित किए हैं
0: जी।
1: जबकि व्यापारी को बेचने पर उन्हें 1200 से 1250 रुपए प्रति क्विंटल मिल जाते हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: इसमें परिवहन का खर्च नहीं आता और न नमी के नाम पर अधिक धान देना पड़ता है।
0: अच्छा।
1: यानी अब जब वो घर पे व्यापारियों को बेचते हैं तब
0: जी जी,
1: इसलिए किसान व्यापारी के हाथों धान बेचने को प्राथमिकता देते हैं
0: जी।
1: अधिक दाम मिलने के कारण उत्तर बिहार के कुछ जिलों से नेपाल में भी धान बेचने की खबरें आती हैं।
0: धान का तो ये हाल है मुखिया जी, गेहूं की खेती को मौसम की बड़ी चुनौती झेलनी पड़ रही है, इसका किस तरह का असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा?
1: वीरेंद्र भाई, मौसम के बदलते मिजाज ने कृषि वैज्ञानिकों के सामने बड़ी चुनौती पेश कर दी है
0: जी।
1: देश में उपलब्ध गेहूं के मौजूदा बीज बदलते मौसम में पूर्वी भारत में अच्छी पैदावार दे पाने में कामयाब नहीं है। सर्दी में तापमान ऐसे ही चढ़ता रहा तो इस क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन कम पड़ जाएगा।
0: आखिर इसके पीछे मूल वजह क्या है मुखिया जी? क्या ये सब कुछ तापमान का ही असर है?
1: इस बार भी गेहूं की बुआई के समय 45 दिनों तक न्यूनतम तापमान लगातार अधिक रहने से अंकुरण बहुत अच्छा नहीं हो पाया।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: अब सारा दारोमदार फरवरी में फसल में फूल लगने के समय के न्यूनतम तापमान पर है
0: जी।
1: उस समय न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक गया तो पैदावार 30% तक प्रभावित हो जाएगी।
0: वैज्ञानिकों का इस मसले पर क्या कहना है? क्या इस वर्ष गेहूं के उत्पादन पर विशेष असर पड़ने की संभावना है?
1: भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों का मानना है कि अब तक के मौसम को देखते हुए क्षेत्र में इस बार गेहूं का उत्पादन 15% तक घटेगा।
0: अच्छा, यह असर किन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा मुखिया जी? क्या इसका प्रभाव पूरे भारत में देखने को मिलेगा या फिर कुछ विशेष क्षेत्रों में?
1: पूर्वी भारत के राज्यों यानी बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम, पूर्वी उत्तर प्रदेश के 27 जनपद जिनको हम पूर्वांचल पुकारते हैं
0: जी जी,
1: में से मुख्यतः बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही गेहूं की खेती बड़े रकबे में की जाती है।
0: वैसे तो गेहूं की खेती का प्रमुख केंद्र तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार ही है मुखिया।
1: हाँ,
0: पिछले 2 साल से इस क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन 10-15% तक कम हुआ है। इस क्षेत्र को देखते हुए उन्नत बीज तैयार करने की भी जरूरत महसूस की जाती है।
1: देखिए, ये ऐसी बात है कि बारिश के बाद कड़कड़ाती ठंड से सूबे के
0: वो तो बात है मुखिया जी, मौसम की जहां तक बात है तो उसी से एक फसल पर बहुत ज्यादा मार पड़ने वाली है और इसकी आशंका अभी से ही व्यक्त की जा रही है।
1: हाँ।
0: और वह फसल है आलू की फसल। तो कड़कड़ाती ठंड की मार आलू की फसल पर क्या असर दिखाएगी?
1: बारिश के बाद कड़कड़ाती ठंड से सूबे के आलू किसानों को बड़ा झटका लगा है।
0: अच्छा,
1: खेतों में लगे आलू की 30% फसल बर्बाद होने की आशंका है।
0: ये असर किन किन क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं मुखिया जी?
1: ये असर वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर में 80% आलू की फसल पिछैता झुलसा की चपेट में आ गई है।
0: अच्छा,
1: 10 जनवरी के आसपास हुई बरसात ने आलू को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया था
0: जी।
1: उसी समय केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र ने तो हॉर्टिकल्चर को आलू की फसल पर फफूंदनाशी रसायन का छिड़काव कराने के लिए पत्र लिखा था, वहां के डायरेक्टरेट को लिखा था हॉर्टिकल्चर के
0: जी। तो क्या यह खतरा अभी पूरी तरह से टल चुका है?
1: वो खतरा ठीक से टला भी नहीं था कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह से 3 जनवरी तक पड़ी कड़कड़ाती ठंड के साथ धूप नहीं निकलने से आलू को भारी नुकसान की आशंका जताई गई।
0: अच्छा,
1: केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र के पदाधिकारियों ने बताया है कि वैशाली, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले में फसल पिछैता झुलसा की चपेट में है।
0: अगर यही दशा अन्य क्षेत्रों में रहा तो उसका किस तरह का असर देखने को मिलेगा?
1: ऐसा अन्य क्षेत्रों में भी रहा तो इस आलू की भारी कमी सूबे को झेलनी पड़ेगी
0: जी जी,
1: है ना। पिछैता झुलसा से 10% तक नुकसान हुआ है।
0: तो इससे बचाव के लिए किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं?
1: अभी 10 दिन या उससे अधिक खेतों में आलू छोड़ने वाले किसान साइमोक्सालिन मैनकोजब रसायन युक्त फफूंदनाशी का छिड़काव करें।
0: अच्छा,
1: साइमोक्सालिन और मैनकोजब, ये 2 रसायन हैं जो फफूंदनाशी हैं
0: जी जी,
1: इनका छिड़काव करना होगा। प्रति हेक्टेयर 2.5 किलोग्राम ये रसायन 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें
0: जी।
1: इस छिड़काव में पूरे पौधे को भिगोने के साथ ही पत्ती के निचले हिस्से को भी भिगोना जरूरी है।
0: ये तो हो गई आलू की फसल की बात मुखिया जी, अब थोड़ा सा धान की फसल का भी जायजा दिया जाए। सरकार ने दावा किया है कि दिसंबर के पहले हफ्ते से ही धान की खरीद का जो मामला है वो शुरू किया जाएगा।
1: दिसंबर के पहले सप्ताह से धान की विधिवत खरीद शुरू होने की बात थी, ऐसा सरकार का दावा था
0: जी।
1: इसके पूर्व 23 नवंबर को खरीद की प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाने की बाबत मुख्य सचिव के साथ एक बैठक भी हुई थी
0: जी।
1: एसएफसी के पैक्सों के बकाया भुगतान का भी निर्देश दिया गया था।
0: एक बात ये बताइए मुखिया जी कि धान की खरीद में ऐसा सुनने में बार बार आ रहा है कि बहुत बाधा आ रही है, उसको दूर करने की ये जिम्मेवारी आखिर किसकी है?
1: सहकारिता विभाग धान की खरीद में आ रही बाधाओं को दूर करेगा। इसके लिए सभी पैक्स अध्यक्षों से विचार विमर्श शुरू किया गया है, उनकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। धान की खरीद में प्रदत्त पूंजी राशि में अब कम से कम 45 दिनों का सूद उन्हें मिलेगा, पहले 15 दिनों का ही मिलता था।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी इस जानकारी के लिए। अगले कार्यक्रम में फिर हम लोग खेती किसानी से संबंधित बातें करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।
1: नमस्कार।

दोस्तों अभी आपने सुना कार्यक्रम कृषि जगत और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। दोस्तों आइए सुनते हैं कार्यक्रम कानूनी ज्ञान और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: कपूर साहब और श्याम जी, कम्युनिस्ट कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी आपका भी
2: और अपने श्रोताओं का भी।
0: सुनने में आ रहा है कपूर जी की गृहिणियों को सैलरी देने का प्रस्ताव जो है वह जोर पकड़ता जा रहा है। पति के वेतन का एक हिस्सा देने के कानून बनाने के संकेत भी अब मिलने लगे हैं।
1: देखिए वीरेंद्र जी, पिछले दिनों देश की राजधानी में महिलाओं के सशक्तिकरण पर चर्चा के मुख्य विषय कन्या भ्रूण हत्या, दहेज और बलात्कार जैसे मुद्दे थे
0: जी।
1: लेकिन बैठक में गृहिणियों को वेतन दिए जाने के प्रस्ताव ने बहस की दिशा बदल दी।
0: ऐसा पेशकश जो है किस ओर से किया गया था श्याम जी? क्या भारत सरकार के प्रतिनिधियों की ओर से ये बात उठाई गई थी?
2: हाँ देखिए, पहले केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री थी कृष्णा तीरथ
0: जी। जी
2: तो उन्होंने एक नया कानून लाने की घोषणा की थी जिसके तहत हर घरेलू महिला को उसके पति द्वारा वेतन का 15-20% हिस्सा देना अनिवार्य था।
0: यह जो कानून आने वाला है या अभी बनने वाला है, क्या वह सभी व्यक्तियों पर एक समान से लागू किया जाएगा? कपूर जी,
1: एक दिहाड़ी मजदूर से लेकर एक बड़ी कंपनी का मैनेजर सभी इस कानून के दायरे में रखे जाएंगे। पुरुष को अपनी पत्नी के नाम बैंकों में खाता खुलवाना होगा और हर महीने तय रकम जमा कराने होंगे। इस प्रस्ताव के कानून बनते ही हर पति को अपनी पत्नी को प्रतिमाह एक तय सैलरी देना कानूनन अनिवार्य हो जाएगा।
0: बैंक खाते का प्रावधान क्या किसी तरह का घालमेल रोकने के मकसद से किया गया है या फिर कोई इसकी दूसरी वजह भी है?
2: देखिए, बैंक खाते का प्रावधान किसी तरह के घालमेल रोकने के लिए ही किया गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मंत्रालय का ये प्रस्ताव बड़ा लुभावना और सीधा साधा सा लगता है, लेकिन इसमें भी कई पेच हैं जिसकी वजह से ये उलझ भी गया है। और आप जानते हैं कि फिलहाल सरकार भी बदल गई है केंद्र में
0: जी। जी
2: लेकिन फिर भी इस कानून का अपना महत्व है।
0: इस प्रस्ताव को कानून बन जाने पर किस तरह की समस्याएं उभरने की नौबत आ सकती है या क्या कुछ होने की संभावना नजर आती है?
1: देखिए, घर दफ्तर और स्त्राओं में इन दिनों सरकार द्वारा पतियों को प्रताड़ित करने के लिए इस नए शिकंजे पर बहस छिड़ गई है। पुरुषों का तर्क है कि यदि पति हर महीने पत्नी को वेतन का एक हिस्सा देगा तो घर चलाना कठिन हो जाएगा। तर्क ये भी दिया जा रहा है कि सैलरी दिए जाने से पति पत्नी के संबंध मालिक मजदूर में तब्दील हो जाएंगे। ऐसे हालात में क्या सरकार पत्नी को काम से बर्खास्त करने का अधिकार भी देगी?
0: ये तो पुरुषों के द्वारा दिया गया तर्क है। इस मामले में महिलाओं का क्या कहना है, उनका क्या तर्क है, वह इसे किस तरह से जायज मानती हैं, जायज ठहराती हैं?
2: महिलाओं का तर्क है कि इस तरह का कानून लागू हो गया तो गृहिणियों को पैसों के लिए मोहताज रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी
0: जी।
2: लंबे समय से महिला सशक्तिकरण आंदोलन से जुड़ी रंजना कुमारी का कहना है कि देश में अधिकांश महिलाएं शादी के बाद घर गृहस्थी संभालने में लग जाती हैं, जिससे उनका कोई निश्चित उनकी आय नहीं होती।
0: बिल्कुल,
2: इसलिए इस प्रस्ताव का स्वागत किया जाना चाहिए। दरअसल दुनिया भर के पुरुष, भारतीय मर्द भी इसका अपवाद नहीं है। ये सोच मौजूद है कि घरेलू काम तो कोई काम ही नहीं है, घर की साफ सफाई, बच्चों की देखभाल, खाना बनाना, होमवर्क करवाना, ये सब काम आसानी से हो जाते हैं। औरतें तो बस दोपहर में गप्पे लड़ाया करती हैं। ये सोच है।
0: हकीकत तो यह है कपूर जी कि ये एक घरेलू महिला 10-12 घंटे घर के कामों में व्यस्त रहती है। पुरुष एक दिन घर का काम संभाले तो उन्हें आटे दाल का भाव पता चल जाएगा।
1: आप सही कह रहे हैं वीरेंद्र जी, उसके बावजूद उन्हें तरह तरह की हिंसा का शिकार होना पड़ता है, कभी यौन हिंसा तो कभी घरेलू हिंसा का कहर जारी रहता है।
0: एक बात ये बताइए कि ये बलात्कार से संबंधित जो सख्त कानून बना है
1: जी,
0: उसमें किस तरह की सख्ती का प्रावधान लाया गया है और कैसा है ये कानून श्याम जी?
2: देखिए, इस संबंध में सभी लोगों की राय अलग अलग है
0: जी।
2: तमिलनाडु की स्वर्गीय मुख्यमंत्री जयललिता ने बलात्कार की सजा के मद्देनजर अपने 13 सूत्री कार्ययोजना का ऐलान किया था
0: जी।
2: उन्होंने दोषियों को मृत्युदंड और रसायन के इस्तेमाल से नपुंसक बनाने की वकालत की थी
0: जी।
2: ऐसे लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत मामला दर्ज कराने की भी वकालत की थी। साथ ही उन्होंने केंद्र से कानून में बदलाव लाने का आग्रह किया था
0: जी।
2: या कहा था कि ऐसा करूंगा। इन प्रयासों से तमिलनाडु महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाने की पहल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
0: इस तरह की घटनाएं जहां कहीं भी होती है तो एक मांग काफी गंभीरता से उठाया जाता है कि त्वरित कार्रवाई के लिए महिला अदालत की व्यवस्था की जाए। क्या इस तरह की बातें उनके द्वारा भी उठाई गई थी?
1: दिल्ली में बलात्कार की शिकार लड़की की मौत पर संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। ऐसे मामलों को गैर जमानती बनाने के साथ आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाए, मामलों की सुनवाई के लिए त्वरित महिला अदालत स्थापित करने के लिए कदम उठाए जाएं।
0: अपने राज्य में इस तरह के अपराध को रोकने के लिए किस तरह की कदम उठाई गई है या किस तरह के कदम उठाने का उन्होंने ऐलान किया है?
2: उन्होंने कहा है कि सरकारी इमारतों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि महिलाओं को परेशान करने वालों की पहचान हो सके। यौन उत्पीड़न को गंभीर अपराध मानते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसे मामलों की जांच क्राइम ब्रांच से कराई जाएगी और जांच अधिकारी भी एक महिला ही होगी।
0: जी,
2: पीड़िता को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया जाएगा।
0: एक बात ये बताइए कि ये प्रश्नों को थोड़ा दूसरी तरफ मोड़ते हैं। आजकल एक बात काफी गंभीरता से चर्चा का विषय बना हुआ है कि दरअसल कृषि आय क्या है और किस अधिनियम के द्वारा इसे परिभाषित किया गया है। श्याम जी,
2: साथ ही साथ इस कार्यक्रम में ये चर्चा करना जरूरी होगा
0: जी
2: कि कृषि आय के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को रखा गया है।
0: अच्छा,
2: कपूर जी, इस बारे में आपका की क्या राय है? क्या
1: देखिए श्याम भाई, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(1)(a) में कृषि आय को परिभाषित किया गया है। धारा 2(1)(a) में कृषि आय का अभिप्राय है कि ऐसी भूमि जो भारत में स्थित है और कृषि के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाती है से प्राप्त कोई लगान या राजस्व
0: इसके अंतर्गत उसे शामिल किया गया है।
1: जी,
0: तो इस प्रकार की जो भूमि है वो किस प्रकार की भूमि इससे संबंधित हो सकती है, किस तरह की भूमि को इसके अंतर्गत रखा गया है? श्याम जी,
2: कोई ऐसी आय जो ऐसी भूमि से कृषि द्वारा प्राप्त हो या खेतिहर द्वारा वस्तु रूप में लगान के प्राप्तकर्ता द्वारा ऐसी प्रक्रिया करने से जो खेतिहर किसी खेतिहर या वस्तु रूप में लगान के प्राप्तकर्ता द्वारा उगाई या प्राप्त की गई उपज को बाजार ले जाने योग्य बनाने में उसके द्वारा आम तौर पर प्रयोग में लाई जाती है।
0: अच्छा, तो क्या किसी खेतिहर द्वारा उपज को बेचने पर भी इस तरह का कर लगाया जाता है? कपूर जी,
1: खेतिहर या वस्तु रूप में लगान के प्राप्तकर्ता द्वारा उगाई या प्राप्त की गई किसी ऐसी उपज के बेचने से जिसकी बाबत इस उपखंड के पैरा 2 में वर्णित प्रक्रिया से भिन्न कोई प्रक्रिया नहीं की गई है ऐसा ही प्राप्त हुआ है।
0: आयकर अधिनियम के द्वारा कृषि से होने वाली आय को क्या कर के दायरे में रखा गया है? समझे,
2: देखिए आयकर अधिनियम के अंतर्गत कृषि से प्राप्त होने वाली आय को पूर्णतया करमुक्त किया गया है।
0: जी,
2: इसलिए कृषि आय को लेकर विभिन्न विवाद समय समय पर होते रहे हैं जिनका निराकरण विभिन्न न्यायालय निर्णयों द्वारा होता रहा है।
0: जी,
2: कृषि आय को लेकर विभिन्न प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते रहे हैं, इसलिए ये विषय इतना महत्वपूर्ण है कि जरा सी चूक से करदाता पर भारी कर दायित्व आ सकता है।
0: एक प्रश्न यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है कपूर जी कि कृषि आय पर कर लगाने की शक्ति किसके पास होती है?
1: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246(1) के अनुसार संसद को कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर कर लगाने का अधिकार है और इसी अनुच्छेद की उपधारा 3 के अंतर्गत कृषि आय पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार को है।
0: इस अधिनियम के अनुसार कृषि आय पर कर लगाने की क्या परिभाषा दी गई है? श्याम जी,
2: देखिए वीरेंद्र जी, अधिनियम में कृषि आय की जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार कृषि भूमि से प्राप्त होने वाली आय को कृषि आय माना गया है।
0: अच्छा,
2: और जिसमें कृषि भूमि से प्राप्त होने वाला किराया भी शामिल किया गया है, चाहे वो नगद हो या वस्तु के रूप में हो, परंतु कृषि भूमि बेचने से होने वाली आय को कृषि आय नहीं माना गया है।
0: तो फिर कृषि आय होने की अनिवार्य शर्त क्या है? किस आधार पर किसी भूमि से होने वाली आय को कृषि आय नहीं माना जाएगा।
1: कृषि आय होने के लिए अनिवार्य है कि कृषि भूमि अस्तित्व में हो, और बिना कृषि भूमि के होने वाली आय को कर मुक्त माना जाता है वो कृषि भूमि भारत में हो। यही अच्छी या यही कुछ अनिवार्य शर्तें हैं।
0: अगर मान लिया जाए कि वह भूमि भारत में नहीं कहीं विदेश में हो
1: जी,
0: तो उस पर किस तरह की शर्तें लागू होती है श्याम जी?
2: देखिए, अगर कृषि भूमि भारत में नहीं हो, अगर विदेश में हो, तो ऐसी भूमि से होने वाली आय आयकर मुक्त नहीं होगी
0: जी जी,
2: बल्कि वो कर योग्य होगी। ये भी आवश्यक है कि कृषि भूमि का प्रयोग व उपयोग कृषि कार्य करने से ही आय उत्पन्न होगी, तभी आयकर मुक्त होगी, अन्यथा नहीं।
0: एक बात ये बताइए कपूर जी कि यहाँ पर कृषि कार्य का क्या तात्पर्य है?
1: यहाँ कृषि का कार्य का अर्थ है भूमि जोतना, बोना, पानी देना, फसल को काटना, उसको बेचने योग्य बनाना आदि। साधारण शब्दों में ये कहा जा सकता है कि वही कृषि आय कर मुक्त होगी जो कृषि से संबंधित है, परंतु ये कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है, ये कोई नियम नहीं है, और इस मामले में आय कृषि से संबंधित होने के बावजूद उसे आयकर से मुक्त नहीं माना गया है।
0: इस अधिनियम की परिभाषा के आधार पर किस तरह की भूमि पर आयकर लगाया जा सकता है?
2: देखिए, धारा 2(1)(a) के अनुसार कृषि आय की प्रथम व पूर्व शर्त है कि जिस भूमि से किराया या आय प्राप्त की जा रही है वो भारत में स्थित हो, तथा उसका उपयोग व उपभोग कृषि के उद्देश्य से किया जा रहा है, अर्थात किराया या आय भूमि से उत्पन्न होनी चाहिए। दूसरा, जिस भूमि से किराया या आय प्राप्त की जा रही है उसका भारत में स्थित होना अनिवार्य है
0: जी,
2: तथा उस भूमि का प्रयोग कृषि भूमि के रूप में किया जाना चाहिए।
0: कपूर साहब और श्याम जी, इस सुंदर जानकारी के लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में फिर कानून से संबंधित चर्चा होगी, अभी हम रुक सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। आपको भी
2: नमस्कार, धन्यवाद।

साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम कानूनी ज्ञान और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं भक्ति गीत।

अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वास मुंबई की। दोस्तों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एंड्रॉयड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rvasatyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआं पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। आइए साथियों, अब सुनते हैं कार्यक्रम वसुधैव कुटुम्बकम, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं वंदना तिवारी जी, और वह आज हमें संत नामदेव जी के बारे में बताएंगी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं यह वार्ता, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

साथियों नमस्कार। व्यक्ति विशिष्ट कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे संत नामदेव के विषय में। साथियों, संत नामदेव महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत हो गए हैं। इनके समय में नाथ और महानुभाव पंथों का महाराष्ट्र में प्रचार था। संत नामदेव का जन्म सन 1269 या संवत 1327 में महाराष्ट्र के कसारा जिले में कृष्णा नदी के किनारे बसे नरसी बामणी नामक गांव में एक दर्जी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम दामा शेट्टी और माता का नाम गुणाई देवी था। इनका परिवार भगवान विट्ठल का परम भक्त था। नामदेव का विवाह राधाबाई के साथ हुआ था और इनके पुत्र का नाम था नारायण। संत नामदेव ने विसोबा खेचर को गुरु के रूप में स्वीकार किया था। ये संत ज्ञानेश्वर के समकालीन थे और उम्र में उनसे 5 साल बड़े थे। संत नामदेव संत ज्ञानेश्वर के साथ पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण किए, भक्ति गीत रचे और जनता जनार्दन को समता और प्रभु भक्ति का पाठ पढ़ाया। संत ज्ञानेश्वर के परलोक गमन के बाद इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। इन्होंने मराठी के साथ ही साथ हिंदी में भी रचनाएं लिखी। इन्होंने 18 वर्षों तक पंजाब में भगवान नाम का प्रचार किया। आज भी इनकी कुछ रचनाएं सिखों की धार्मिक पुस्तकों में मिलती हैं। मुखबानी नामक पुस्तक में इनकी रचनाएं संग्रहित हैं। आज भी इनके रचित गीत पूरे महाराष्ट्र में भक्ति और प्रेम के साथ गाए जाते हैं। संवत 1407 में आप समाधि में लीन हो गए। साथियों, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत नामदेव, इनके समय में महानुभाव पंथों का महाराष्ट्र में प्रचार था, साथ ही नाथ पंथ भी प्रचार में था। नाथ पंथ अलख निरंजन की योग परक साधना का समर्थक था और बाह्य आडंबरों का विरोधी था, और महानुभाव पंथ वैदिक कर्मकांड और बहुदेव उपासना का विरोधी होते हुए भी मूर्ति पूजा को सर्वथा निषिद्ध नहीं मानता था। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में पंढरपुर के विठोबा की उपासना भी प्रचलित थी। सामान्य जनता प्रतिवर्ष आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी को उनके दर्शनों के लिए पंढरपुर की यात्रा या वारी किया करती थी। ये प्रथा आज भी प्रचलित है। इस प्रकार की वारी या यात्रा करने वाले को वारकरी कहते हैं। साथियों, विट्ठल उपासना का ये पंथ वारकरी संप्रदाय कहलाता है और नामदेव इसी संप्रदाय के प्रमुख संत माने जाते हैं। वारकरी संत नामदेव के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं। मतभेद का कारण ये है कि महाराष्ट्र में नामदेव नामक 5 संत हो गए हैं और उन सभी ने थोड़ी बहुत अभंग और पद रचना की है। आवटे की सकल संत गाथा में नामदेव के नाम पर 2500 अभंग मिलते हैं। लगभग 600 अभंगों में केवल नामदेव या नामा इनकी छाप है और शेष में विष्णुदास नामा की। कुछ विद्वानों के मतों से दोनों नामा एक ही हैं। विठोबा के दास होने से नामदेव ने ही संभवतः अपने को विष्णुदास कहना प्रारंभ कर दिया हो। विष्णुदास नामा का समय शके 1517 है। ये एकनाथ के समकालीन थे। दरअसल बहुत से इतिहासकारों का कहना ये है कि दोनों व्यक्ति भिन्न हैं और अलग अलग समय में हुए हैं। अनेक महानुभावों ने नेमदेव को भी वारकरी नामदेव के साथ जोड़ दिया है, लेकिन अनेक इतिहासकारों में उनके मतों को लेकर भिन्नता है। विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न जातियों का होने के कारण कुछ नामदेव नामक व्यक्तियों का वारकरी नामदेव से कोई संबंध नहीं है। साथियों, नामदेव के समसामयिक विष्णुदास नामा कवि का और पता चला है और ये महानुभाव संप्रदाय के हैं। इन्होंने महाभारत पर ओविबद्ध ग्रंथ लिखा है, लेकिन इनका वारकरी नामदेव से कोई संबंध नहीं है। साथियों, महाराष्ट्रियन विद्वान वारकरी नामदेव को ज्ञानेश्वर के समसामयिक मानते हैं और ज्ञानेश्वर का समय उनके ग्रंथ ज्ञानेश्वरी से प्रमाणित हो जाता है।
इस समय के साथ ही यदि हम देखें तो नामदेव का जन्म शके 1192 में प्रथम संवत्सर कार्तिक शुक्ल एकादशी को नरसी ब्राह्मण गांव में दामा शेठ शिम्पी के यहां हुआ था। यदि हम इनके जीवन वृत्त को देखें तो इनका मन अपने पैतृक व्यवसाय में कभी भी नहीं लगा। प्रारंभ में लूटमार, हत्या ऐसे समाज विरोधी काम किया करते थे, लेकिन एक दिन जब ये अपने उपास्य आवढ़िया के नागनाथ के दर्शन के लिए गए तब इन्होंने मंदिर के पास एक स्त्री को अपने रोते हुए बच्चे को बुरी तरह से मारते हुए देखा। उन्होंने जब उस स्त्री से पूछा कि अपने बच्चे को क्यों मार रही हो, तब उसने उत्तर दिया कि इसके बाप को तो डाकू नामदेव ने मार डाला, अब मैं कहां से इसके पेट में अन्न डालूं। नामदेव के मन पर इस घटना का गहरा प्रभाव पड़ा। उसी समय उनके मन में विरक्ति हो गई और उस विरक्ति के वश वे पंढरपुर में जाकर विठोबा के भक्त हो गए। यहीं पर इनकी भेंट ज्ञानेश्वर परिवार से हुई और उन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने नाथपंथी विसोबा खेचर से दीक्षा ली, जो नामदेव पंढरपुर के विट्ठल की प्रतिमा में ही भगवान को देखते थे। वे खेचर के संपर्क में आने के बाद उसे सर्वत्र अनुभव करने लगे। उनकी प्रेम भक्ति में ज्ञान का भी समावेश हो गया। साथियों, ज्ञानेश्वर और नामदेव उन्होंने उत्तर भारत की यात्रा साथ साथ की थी। ज्ञानेश्वर मारवाड़ में कोल दर्जी नामक स्थान तक ही नामदेव के साथ गए। वहां से लौटकर उन्होंने आळंदी में शके 1218 में समाधि ले ली। ज्ञानेश्वर के वियोग से नामदेव का मन महाराष्ट्र से उचट गया और ये पंजाब की ओर चल पड़े। गुरदासपुर जिले के घोबान नामक स्थान पर आज भी नामदेव जी का मंदिर विद्यमान है। वहां सीमित क्षेत्र में इनका पंथ भी चल रहा है। संतों के जीवन के साथ हमेशा कुछ चमत्कारी घटनाएं जुड़ी ही रहती हैं। नामदेव के चरित्र में भी सुल्तान की आज्ञा से इनके द्वारा मृत गाय को जिंदा करना, पूर्वाभिमुख आवढ़िया नागनाथ मंदिर के सामने कीर्तन करने पर पुजारी के आपत्ति उठाने के उपरांत इनके पश्चिम की ओर जाते ही उसके द्वार का पश्चिम दिशा में हो जाना, विट्ठल की मूर्ति का इनके हाथ से दुग्धपान करना, ये सारी घटनाएं समाविष्ट हैं। महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक विट्ठल मंदिर के महाद्वार पर शके 1272 में इन्होंने समाधि ले ली। कुछ विद्वान इनका समाधि स्थान गोमान मानते हैं, परंतु बहुमत पंढरपुर के ही पक्ष में है। विसोबा खेचर से दीक्षा लेने से पूर्व तक आप सगुण उपासक थे, पंढरपुर के विट्ठल की उपासना किया करते थे। दीक्षा के उपरांत इनकी विट्ठल भक्ति सर्वव्यापक हो गई। महाराष्ट्रीय संत परंपरा के अनुसार इनकी निर्गुण भक्ति थी, जिसमें सगुण निर्गुण का कोई भेदभाव नहीं था। इन्होंने मराठी में कई 100 अभंग और हिंदी में 100 के लगभग पद रचे हैं। इनके पदों में हठ योग और कुंडलिनी योग साधना और प्रेमा भक्ति की तालाबेली यानी विहल भावना दोनों मौजूद हैं। निर्गुणी कबीर के समान नामदेव ने भी व्रत, तीर्थ, इस प्रकार के बाह्य आडंबरों के प्रति उपेक्षा और भगवान नाम और सद्गुरु के प्रति आदर भाव

दोस्तों, अभी आपने सुना कार्यक्रम वसुदेव कुटुम्बकम, जिसे प्रस्तुत कर रही थी वंदना तिवारी जी। और इन्होंने अभी हमें बताया संत नामदेव जी के बारे में, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, आइए सुनते हैं नाटक, जिसके लेखक हैं कृष्णकांत दुबे, और इसका शीर्षक है फिर धूप खिली, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: प्रस्तुत है नाटक फिर धूप खिली। लेखक हैं कृष्णकांत दुबे।
1: मैं लगातार उन्हें कुछ वर्षों से खोज रही हूं, पर वे कहां हैं नहीं मालूम। हां, वे हैं और मैं उन्हें खोज लूंगी, इसका मुझे विश्वास है। आज भी मुझे याद है, वे हमेशा ही मुझसे कहा करते थे, तुम्हें एक श्रेष्ठ चित्रकार बनना है, और आज मैं जो कुछ भी हूं उन्हीं के दिए आशीर्वाद हैं, उन्हीं का दिया वरदान है। आज जब लोग यह कहते हैं कुमारी नेहा गर्ग एक विलक्षण चित्रकार है, पत्र पत्रिकाएं जब मेरी चित्रकला के विषय में लिखते हैं, नेहा ऐसी चित्रकार है जिनके चित्रों की सशक्त रेखाएं गाती सी लगती हैं, उनकी रंग रेखाएं ध्वनियां देती हैं, कहीं उनमें आर्तनाद सा लगता है, तब मुझे हमेशा स्मरण आता है अपने चित्रकार गुरु जयंत सर का, जिन्होंने मुझे आर्ट कॉलेज में वह सब कुछ सिखाया जो कि आज मेरे पास है। आज भी मुझे याद है, वे हमेशा मुझसे कहा करते थे,
0: देखो नेहा, तुम अपने चित्रों में सुंदर और सार्थक रेखाओं का प्रयोग करो, अपने चित्रों को वो आकृति दो कि उनमें उल्लास नजर आए, वे मनोरम भी हों, उनमें जीवन के अनुभव भी हों। याद रखो नेहा, तुम शिल्प की दुहाई देकर चित्रों की रचना कभी मत करना, तुम ऐसे ही चित्र बनाना जिनमें जीवन की धूप छां हो, उनमें आवेग हो, उनमें कविता भी हो, समझी?
1: हां, जयंत सर के ये शब्द, उनकी दी सीख सदैव मेरे साथ रही है और मैं उन्हें खोज रही हूं, पर वे मिले तो, वे जहां भी होंगे मैं उन्हें वहां से ले आऊंगी। विगत 5 वर्षों से मेरी यही इच्छा कामना रही है, जानती हूं प्रभु मेरी इस कामना को पूर्णता देंगे, यानी फिर मेरे साथ एक नया प्रकाश होगा, फिर धूप खिलेगी।
2: ओ नेहा, आओ आओ कुमारी नेहा गर्ग, सुप्रसिद्ध चित्रकार, तुम तो बहुत दिनों बाद यहाँ इस आर्ट गैलरी में आई हो। लगता है तुम अपनी जगह को, अपनी साधना भूमि को भूल गई, और साथ ही मुझे ये भी लगा कि तुम अपनी सहेली विभा को भी भूल गई।
1: अरे नहीं विभा दी, भला यह कैसे हो सकता है, यहाँ तो मुझे आपका स्नेह मिला, जहाँ मेरी चित्रकला सौरी, भला मैं उसे कैसे।
2: तो फिर क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ भाई कि यहाँ पूरे 2 महीने बाद आई हो।
1: विभा दी, शायद आपने सुना हो, पिछले दिनों दिल्ली में मेरे चित्रों की प्रदर्शनी लगी थी।
2: हाँ हाँ, मुझे मालूम भी है और खुशी भी है नेहा, मैंने अखबारों में पढ़ा था प्रदर्शनी का विवरण और प्रशंसा भी, और ये भी जाना और अच्छा लगा कि तुम्हारी कई पेंटिंग्स अच्छे दामों पर बिके, लेकिन उसकी अवधि तो सिर्फ 1 सप्ताह थी, बाकी समय।
1: हाँ हाँ, 15 दिन दिल्ली में बीते और बाकी अवधि जयंत सर को खोजती रही। विभा दी, आप जानती ही हैं, मैंने जो कुछ पाया यह उन्हीं की कृपा तो है, मैं उन महामानों को भला कैसे भूल सकती हूँ।
2: लेकिन ये कितना अजीब संयोग है नेहा, कि कोई 6 बरस पहले तुमने हमने अपनी इस आर्ट गैलरी में उनके चित्रों की प्रदर्शनी लगाई थी, जिसके अधिकांश चित्र बिक गए थे, बाकी बचे ये 3 चित्र जिन्हें वे इस गैलरी को भेंट कर गए थे।
1: वे भी तो यहाँ लगे हैं।
2: हाँ, पर कुछ समय पहले एक कला प्रेमी दंपत्ति यहाँ आए थे, उन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव रखा था कि वे जयंत सर के 3 चित्र 10 लाख में खरीदना चाहते हैं, लेकिन मैं उन्हें कैसे दे सकती थी, जब तक कि निर्माता की स्वीकृति न मिले, इसी नाते मैंने भी उनकी खोज की।
1: तो क्या वे मिले?
2: नहीं नेहा, वे जिस घर में रहा करते थे वहां मैंने तलाश की। शायद उन्हें उनका कुछ पता हो कि वो कहां गए, लेकिन वो मकान भी औरों के हाथ बिक गया। उनके पड़ोसी भी अब वहां नहीं है और मुझे निराश हो वहां से लौटना पड़ा।
1: और मैं भी उन्हें ढूंढ रही हूँ विभादी,
2: पर मुझे एक आशा की किरण सी दिखी है नेहा।
1: जरा बतलाइए विभादी, वह क्या है?
2: नेहा, अभी कुछ समय पहले की बात है। हाँ, तुम चित्रकार विमल को जानती हो ना?
1: बहुत अच्छी तरह। फिर क्या हुआ?
2: यहाँ से कोई 15 किलोमीटर दूर जहाँ पहाड़ियाँ हैं, तालाब है, वहाँ थोड़ी ऊंची टेकरी पर बगीचे से घिरा एक वृद्धाश्रम है।
1: हाँ हाँ, मैंने भी उसके बारे में लोगों से सुना तो है।
2: विमल वहाँ गए थे एक लैंडस्केप बनाने के लिए। वहाँ उन्होंने जैन सर जैसे किसी इंसान को देखा था एक झलक भर, पर संकोचवश विमल कुछ पूछ न पाए।
1: तो क्यों नहीं विभादी, हम दोनों उनकी खोज में वहाँ चलें? प्रभु कृपा हुई तो हम उन्हें वहाँ पा लेंगे।
2: हाँ ठीक है नेहा, बिल्कुल ठीक है, हम वहाँ चलेंगे।
1: दीदी मुझे विश्वास हो रहा है, अब जो कुछ भी होगा वह ठीक ही होगा।
2: अरे भाई नेहा, देखो तो ये सारा इलाका कितना सुंदर, कितना अपरूप है। आसपास छोटी छोटी पहाड़ियाँ कितनी हरी भरी, कितनी सुहानी।
1: लगता है विभादी, इस अंचल को खुद प्रकृति ने अपने हाथों से सवारा है।
2: अच्छा अच्छा, तो ये सामने थोड़ी ऊंचाई पर बगीचे से घिरा लगता है यही वृद्धाश्रम है?
1: यही तो हम जैन सर की खोज में आए हैं।
2: हाँ,
1: वे अगर यहाँ होंगे तो वे जरूर हमें मिल जाएंगे। विभादी मैं यही कल्पना कर रोमांचित हो रही हूँ।
2: हम विश्वास करें नेहा कि वे हमें यहाँ जरूर मिलेंगे।
1: लीजिए विभादी, हम आश्रम के गेट तक आ गए।
2: अरे अरे देखो तो सही, वहाँ उस बोर्ड पर कुछ विशेष लिखा है, कुछ लिखा इंस्ट्रक्शंस हैं। पढ़ो तो उसे।
1: हाँ हाँ हाँ विभादी सुनिए, आश्रम में प्रवेश करने के पहले अतिथि गार्ड रूम में द्वार पार से मिलेंगे, वाहन पार्किंग स्थल पर रखें, गार्ड रूम से परमिशन के बाद आश्रम में प्रवेश करें।
2: अच्छा तो ठीक है नेहा, जहाँ कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, मैं कार वहाँ खड़ी करती हूँ, तुम गार्ड महोदय से आश्रम में प्रवेश की अनुमति ले आओ, है ना? ठीक रहेगा?
1: हाँ हाँ यही ठीक रहेगा विभादी, मैं यही करती हूँ। विभादी हाँ, जैन सर यही इस वृद्धा आश्रम में हैं।
2: क्या
1: हमें? हाँ हाँ, हमें यहाँ के व्यवस्थापक महोदय से उनसे मिलने की स्वीकृति भी मिल चुकी है, तो आओ चले विभादी, जल्दी करें।
2: हाँ नेहा, हमें चित्रकार विमल का बहुत बहुत आभारी होना चाहिए उस सूचना के लिए, है ना?
1: हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है विभादी कि हम कुछ क्षणों में सर के दर्शन कर पाएंगे। मैं अपनी प्रसन्नता को समेट नहीं पा रही।
2: अरे तो देर क्यों कर रही हो, चलो जल्दी चलो।
1: जयंत सर।
0: कौन?
1: सर मैं आपकी शिष्या नेहा गर्ग, आपको प्रणाम करती हूँ।
0: प्रणाम।
1: और ये है नगर की आर्ट गैलरी की संरक्षिका।
2: मैं विभा कौशल, मेरे भी प्रणाम स्वीकार करें सर।
0: प्रणाम, लेकिन मैं कुछ स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ। तुम नेहा, तुम विभा?
2: जी
1: जैन सर, मैं वही नेहा गर्ग, आपने ही मुझे चित्रकला की दीक्षा दी थी। पूरे 6 वर्ष। आपने ही मुझे इस योग्य बनाया कि मैं आपकी योग्य शिष्या के रूप में हर तरफ जानी जाऊं।
2: और सर, मैं विभा कौशल, मैं वही कि जिसकी आर्ट गैलरी को ये सौभाग्य मिलता रहा कि वहाँ आपके चित्रों की प्रदर्शनी लगती रही और हमारी आर्ट गैलरी ने हर बार प्रशंसा पाई।
0: हाँ, अच्छा, विभा नेहा, हाँ, अब मैं स्मरण कर पा रहा हूँ।
2: याद आया सर?
0: देखो ना, मुझे इस वृद्धाश्रम में आए 5 वर्ष से अधिक हो गए हैं मुझे।
1: आप सर, आप यहाँ आए और आपने किसी को बताया तक नहीं, क्यों सर, आखिर क्यों?
0: तुम नेहा, तुम ही बोल रही हो ना?
2: हाँ सर।
0: सुनो नेहा, जब मैंने अपना सब कुछ त्याग कर यहाँ आश्रम में प्रवेश किया तो याद रखो, मैंने अपने सारे अतीत को भुला दिया ताकि मैं पूरी तरह यहाँ का होकर रह सकूं। और मैंने उस सब का वर्णन कर लिया जो यहाँ का है। मैं सिर्फ यहाँ एक वृद्ध हूँ, बस इस वृद्धाश्रम का निवासी केवल।
1: पर जयंत सर, आप हमारा यह विनम्र निवेदन सुने, मात्र एक शिष्या का नहीं बल्कि एक बेटी का जो आपको यहाँ से लेने आई है। सर, मैंने और विभादी ने आपको बहुत खोजा, बहुत ढूंढा आपको, बस आज हमने आपको पा ही लिया।
2: जयंत सर, मैं विभा आपको बता दूं, ये नेहा आज देश की श्रेष्ठ चित्रकारों की श्रेणी में है। ईश्वर ने इसे बहुत कुछ दे दिया, हर तरह संपन्न बना दिया।
1: और सर, यह आपकी कृपा है, आपके मार्गदर्शन से ही यह सब संभव हो पाया
2: और
1: है।
2: हाँ सर, मैं आपको बता दूं, जब आपने हमारी आर्ट गैलरी में अपनी अंतिम चित्र प्रदर्शनी लगाई थी, उसके शेष 3 चित्र आज भी वहाँ हैं। पिछले दिनों आर्ट गैलरी देखने एक दंपत्ति आए थे, उन्हें आपके चित्रों को देख बहुत खुशी हुई।
0: अच्छा।
2: और बोले, हम इन चित्रों को ले जाना चाहते हैं। हम जानते हैं इनका कोई मूल्य आका नहीं जा सकता, फिर भी हम 10 लाख दे सकते हैं। लेकिन सर, हम आपकी बिना आज्ञा ऐसा नहीं कर सकते थे और न ही हमने ऐसा किया।
1: सर, हम दोनों नहीं चाहती कि आप यहाँ इस वृद्ध आश्रम में रहें, बस और कुछ नहीं। आप मेरे पास अपनी शिष्या, अपनी बेटी नेहा के पास रहेंगे। मैं आपको एक क्षण कष्ट नहीं होने दूंगी। आप जिस तरह चाहेंगे वैसे रहेंगे, बस आप कह दें कि आप मेरे पास ही रहेंगे।
0: नहीं नहीं नहीं नेहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे अच्छा लगता है अपने मन का एकांत, ये सोचना कि मेरा अपना कोई नहीं, मैं इस वृद्धाश्रम में अपना जीवन जी रहा हूँ। अब अच्छा लगता है अपनी गुमनामी का ये अंधेरा।
2: नहीं, नहीं सर, नहीं, अब भी आप कई लोगों की स्मृति में जस की तस हैं।
0: हाँ विभा, कभी कभी बहुत कुछ सोचता हूँ मैं। कभी सोचा था कि मेरे रचे चित्र दुनिया को बहुत कुछ दे देंगे, लेकिन नहीं नहीं, वो सब कुछ भ्रम था।
2: ये क्या कह रहे हैं आप? आखिर ये भाव विचार क्यों सर?
0: नेहा, मेरी ये पलायनवादी विचारधारा नहीं बल्कि मेरा आज का यथार्थ है। मैं इन्हीं सबको देखकर इस अपरिचय वाली दुनिया में आ गया हूँ। यहाँ कम से कम एक वृद्ध सामान्य सा जीवन जी तो लेता है। नेहा, न यहाँ दंभ है, न दावे, न घमंड, एक दूसरे के लिए हस्तक्षेप भी नहीं है। अपनी थालियां उठाकर रोटियां खा लेना और अपने मन की कल्पनाओं के बीच जीवन जी लेना, बस। और क्या चाहिए एक इंसान को?
1: नहीं सर, नहीं, आपने ही तो मुझे कहा था जीवन वही जो शानदार तरीके से जिया जाए।
0: ठीक है नेहा, फिर मुझे इस विषय में निर्णय करने के लिए कुछ समय दो। जो कुछ होगा मैं तुम लोगों को सूचित कर दूंगा।
2: पर सर,
1: निर्णय हाँ में ही हो।
2: हाँ
1: बस। अब जयंत सर हमारे साथ हैं, वे यहाँ एकदम प्रसन्न हैं। उनकी प्रसन्नता हमारे लिए खिली धूप है, जो हमारे लिए भी एक सांत्वना है।
0: फिर धूप खिली। अभी आपने ये नाटक सुना। लेखक थे कृष्णकांत दुबे और कलाकार इंदु संतोष, संतोष जोशी,

साथियों, अभी आपने सुना नाटक जिसका शीर्षक था फिर धूप खिली, और इसके लेखक थे कृष्णकांत दुबे, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, इसी के साथ आज्ञा दीजिए, ग्लोरिया गांगले को धन्यवाद।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोताओं को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी की समय सारणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम एक मुलाकात, युवा विकास और अंत में योग संचार। तो दोस्तों, अब हम अपनी समय सारणी के अनुसार हमारा यह कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम एक मुलाकात से, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं स्वतंत्र कुमार ओझा और उनके साथ हैं अजमेर से आए श्री मुकेश व्यास। तो आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम एक मुलाकात स्वतंत्र कुमार ओझा के साथ।

0: रेडियो वेरिटास के हमारे सभी सुनने वाले साथियों को स्वतंत्र कुमार ओझा का नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवा रहे हैं अजमेर से आए श्री मुकेश व्यास। आप विगत 30 वर्षों से राजस्थान में रह रहे हैं, तो इनसे हम बातचीत करेंगे और इनके बारे में और कई सारी जानकारी हमें जानने को मिलेगी। व्यास जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ?
1: मेरा जन्म रतलाम में हुआ था, मध्य प्रदेश के अंदर।
0: तो फिर राजस्थान कैसे पहुंच गए आप?
1: राजस्थान मेरे पिताजी जो हैं वो प्रमुख थे बिजली घर के, जो एक निजी संस्था हुआ करती थी, कंपनी हुआ करती थी। उसमें 9 या ब्रांचेस थी अलग अलग जगह पे, उनके वो प्रमुख थे और राजस्थान में अजमेर में ही निवास करते थे।
0: तो उन दिनों में मतलब शासकीय बिजली नहीं होती थी क्या?
1: जी नहीं, उस टाइम पे निजी ही कंपनी थी अजमेर के अंदर।
0: कितने वर्ष पुरानी बात है ये?
1: ये कम से कम 71 तक जो है निजी ही रही।
0: 1971 तक निजी बिजली कंपनियां चलती थी।
1: जी।
0: तो उसमें आपके पिताजी चीफ इंजीनियर थे।
1: जी।
0: तो इस तरह से आप राजस्थान?
1: राजस्थान।
0: अच्छा, शिक्षण कहाँ हुआ आपका?
1: शिक्षण मेरा स्कूल में तो जो शिक्षा हुई है वह तो अजमेर से ही हुई है।
0: कहाँ तक हुई?
1: 11वीं तक।
0: अच्छा।
1: और सैंड असलम स्कूल का नाम था। उसके बाद मैं इंदौर से ही पढ़ा हूँ। मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस में यहाँ इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज से ही किया था।
0: तो स्कूल या कॉलेज के जमाने की कोई खास रोमांचक याद रखने वाली बात याद है आपको?
1: जी, हमारे टीचर्स को खास करके याद करते हैं। जी,
0: उस युग में बहुत अच्छे शिक्षक होते थे।
1: उस युग में काफी अच्छे शिक्षक थे और मतलब जो है ज्ञान उनका जो था, तो उससे काफी हम लोगों को आगे के लिए काफी मार्गदर्शन मिलता था।
0: राजनीति शास्त्र में आपने मतलब स्नातकोत्तर शिक्षण लिया, एमए तक किया आपने।
1: जी।
0: तो राजनीति में कोई रुचि है आपकी?
1: जी नहीं, मेरी राजनीति में कभी रुचि नहीं रही।
0: तो जैसे ही आपका ये शिक्षण सत्र समाप्त हुआ, उसके बाद जाहिर है कि व्यक्ति को एक जॉब ढूंढने की, नौकरी पाने की एक तीव्र लालसा रहती है कि भाई अब जल्दी से नौकरी मिल जाए। तो आपको भी ऐसा कुछ हुआ होगा, वो बताइए।
1: जी, मैंने फिर यहां से एमए करने के बाद अजमेर में मतलब मेरे एक दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे लॉ भी करने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्होंने ही मेरा फॉर्म वगैरह भरा।
0: अच्छा।
1: और साथ के साथ मुझे एक नौकरी तो निजी कंपनी थी अजमेर के अंदर, तोशनीवाला इंडस्ट्रीज करके, जो एक फैक्ट्रियों के लिए उपक्रम बना दी थी, वो उनमें मतलब मुझे सेल्स प्रमोटर के तौर से, बिक्री प्रतिनिधि के तौर से एक जॉब मिल गई थी।
0: अच्छा अच्छा। लॉ भी किया आपने?
1: लॉ भी किया मैंने, एमबीए भी किया सेल्स और मार्केटिंग में।
0: अरे वाह। तो फिर आपने वकालत शुरू क्यों नहीं की जबकि आप एमएलएलबी थे?
1: जी, मुझे निजी कंपनी में काम करने का थोड़ा शौक था।
0: मतलब आपको शासकीय सेवा में कोई रुचि नहीं थी?
1: जी नहीं, मतलब मेरे फादर को देखते हुए वो प्रेरणा थी कि निजी कंपनी में काफी कुछ किया जा सकता है और ज्यादा सीखने को मिलता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके बाद ये जो उपकरण वाली बात, जो आपने उपक्रम वाली बात जो बताई थी एक कंपनी में आप, उसके बाद कितने दिन रहे आप वहां?
1: मैं उसमें करीब साल भर काम किया और उसी दरमियान मैंने सोच लिया था कि यहाँ पे मतलब जो है मेरा आगे उन्नति नहीं हो सकती है, तो मुझे सिंगर कंपनी जो सिलाई और बुनाई मशीन उस वक्त बनाती थी, तो उसमें नौकरी का एक चांस मिला था और वो मैंने पूरा उसका फायदा उठाया।
0: क्या काम करते थे आप उसमें, क्या देखते थे?
1: मैं जो है सिलाई और बुनाई मशीन का राजस्थान और मध्य प्रदेश का सेल्स का जो है प्रबंधक था।
0: अच्छा, बिक्री वहाँ?
1: बिक्री का।
0: तो राजस्थान की कढ़ाई सिलाई के बारे में क्या बात कहना चाहेंगे आप?
1: बुनाई में जो है नीचे सरकार ने उस टाइम पे काफी प्रोत्साहित किया था और लोग बागों को भी काफी प्रोत्साहन था कि बुनाई में काम करने से पैसा मिलता है, तो उस वक्त सिलाई और बुनाई का एक दौर था जब लोगों को इतना फैशन का तो नहीं था, पर मतलब जो है घर में अपने सिलाई और बुनाई मशीन होनी जरूरी होती थी, तो वो घर के उपयोग में मतलब और एक नया कंसेप्ट था, तो उसमें लोग।
0: अच्छा, ये क्योंकि वस्त्रों की बात चली है, कपड़ों की, तो राजस्थान की वो बंधेज की साड़ियां और लहरिया और ये सब काफी आज भी इनकी लोकप्रियता है। बंधेज साड़ी क्या होती है?
1: बंधेज जो है वो हाथ से गांठ लगा के और फिर उसको रंग में उतारते हैं।
0: अच्छा।
1: और रंग में उतारने से वो जो है उसकी डिजाइन आ जाती है।
0: हाँ,
1: तो उस डिजाइन से आने के बाद उस साड़ी का जो है जो रूप है वो बहुत सुहावना और सुनहरा होता है।
0: अच्छा, तो बंधेज क्यों कहते हैं इसको, बांध के रखते हैं क्या?
1: जी, वो बांध के मतलब जो है हर जगह से बनती है और फिर उसको रंग में उतारते हैं।
0: अच्छा।
1: तो वो कलर जो है रंग जो है उसके
0: बहुरंगी हो जाए,
1: बहुरंगी हो जाए,
0: इंद्रधनुष रंग हो जाए।
1: जी,
0: इसलिए इसका नाम बंधेज। और क्या क्या खास बात है राजस्थान की? आप तो लगभग 30 वर्षों से वहां रह रहे हैं, तो
1: देखिए खाने वगैरह में भी मतलब जो है काफी वहां की हर तरह से रिच खाना है, मतलब जो है बहुत
0: अच्छा खाना है। क्या क्या खाना अच्छा है
1: वहां की? जो बाटी है, गट्टे की सब्जी है।
0: अच्छा।
1: और दाल वगैरह है।
0: अच्छा।
1: ये काफी मतलब वहां की फेमस है।
0: और मीठे में?
1: मीठे में जो है सोन हलवा, जैसे अजमेर का तो सोन हलवा बहुत लोग पसंद करते हैं,
0: पूरे भारत में प्रसिद्ध है वो।
1: प्रसिद्ध है।
0: हाँ। और राजस्थान में हमने सुना है कि चूरमा करके भी बहुत ज्यादा चलन में। ये चूरमा क्या होता है?
1: चूरमा एक तरह से जो अपन शक्कर का लड्डू रहते हैं, तो वो मतलब उसको आटे के रूप में वो शक्कर वगैरह मिला के जो लड्डू का रूप है वो मतलब आटे के रूप में होता है।
0: चलिए आगे चलते हैं। आपने ये सिलाई मशीन के बाद भी कोई और जॉब की क्या?
1: जी, मैं उसमें सिलाई मशीन में काफी अनुभव लेने के बाद मुझे कैल्विनेटर जो रेफ्रिजरेटर कंपनी थी उसके अंदर यूपी के अंदर मुख्य प्रबंधक के रूप में जाना, मतलब मेरे को नौकरी का अनुभव हुआ।
0: यूपी में कहाँ? उत्तर प्रदेश में है?
1: उत्तर प्रदेश में मेरा कानपुर जगह
0: पोस्टिंग हुई। हाँ। कानपुर में कब तक रहे आप?
1: मैं करीब 2.5 साल रहा, उसके बाद मुझे ट्रांसफर जयपुर हुआ।
0: कैसा लगा कानपुर आपको?
1: कानपुर बहुत बढ़िया जगह है।
0: अच्छा, और क्या खास बात है वहाँ की?
1: कानपुर की खास बात तो मतलब क्रिकेट के मैदान वगैरह अच्छे हैं, तो क्रिकेट के हिसाब से हमें क्रिकेट में भी रुचि है।
0: कानपुर में आप 2.5 बरस रहे, उसके बाद?
1: उसके बाद मैं जयपुर आ गया राजस्थान वापस।
0: क्यों, वहां से आपने छोड़ दी थी वो नौकरी?
1: नहीं, छोड़ी नहीं थी, मुझे ट्रांसफर मिला था। अच्छा, जयपुर आने का।
0: और फिर जयपुर में ही फिर आप रहे कि वहां से भी कहीं और?
1: जयपुर से फिर मुझे दिल्ली और भी प्रमोशन देके और तरक्की मिलके इसी कंपनी के अंदर।
0: तो इसमें आप क्या मुख्य प्रबंधक थे आप?
1: जी।
0: तो दिल्ली में रहे आप?
1: दिल्ली रहा मैं।
0: कब तक रहे?
1: मैं दिल्ली 1990 तक रहा।
0: अच्छा, उसके बाद आपने छोड़ी क्यों वो नौकरी, या आपका कार्यकाल पूरा हो गया था क्या?
1: मेरा कार्यकाल पूरा होने के बाद मुझे उससे और भी अच्छी जॉब मिली थी एल्कोबैक्स मेटल्स के अंदर, जोधपुर बेस्ड था, और वो ये कॉपर और ब्रास के आइटम्स बनाते थे।
0: अब इस समय आप लगभग 60 को छू रहे हैं आप।
1: जी।
0: तो अब इस समय आप क्या कर रहे हैं?
1: मैं अस्पताल का जनसंपर्क अधिकारी और मुख्य प्रबंधक हूँ वहाँ पे।
0: अस्पताल में आप काम करते हैं?
1: जी।
0: अच्छा, क्या काम करते हैं आप वहाँ
1: अस्पताल में? मैं एक तो सारा प्रबंधन से जो और प्रशासनिक जो भी कार्य हैं।
0: अच्छा।
1: वो सारे मैं देखता हूँ।
0: अच्छा।
1: और वहाँ के साफ सफाई वगैरह का और इन हाइजीनिक पेशेंट के तौर पे सेवाएं जो मिलनी चाहिए अस्पताल से।
0: अच्छा।
1: वो सारी चीजों का सुपरविजन रखते।
0: ये आज तो मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की की है।
1: जी।
0: तो उस हिसाब से आपके अस्पताल में वो सारे इक्विपमेंट्स यानी उपकरण हैं जो आज बहुत जरूरी माने जाते हैं?
1: जी, जैसे आईसीयू होना चाहिए, इंटेंसिव केयर यूनिट जो कहते हैं, वो एक जरूरी सेवाओं में से आता है। डायलिसिस आज के जमाने में जरूरी उपकरणों में से है, और सर्जरी के जितने भी इक्विपमेंट्स होने चाहिए, और वो लेटेस्ट जो है दूरबीन पद्धति से जो ऑपरेशन किए जाते हैं, वो सारी सुविधाएं हमारे हॉस्पिटल में है।
0: आपके हॉस्पिटल में है,
1: जी
0: आपके अस्पताल में जो मरीज आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते और मान लीजिए कि किसी कारणवश उनको आना पड़ता है, तो उनकी देखभाल, उनकी आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए क्या अस्पताल उसका ध्यान रखता है क्या?
1: कुछ मरीजों के लिए हम
0: हाँ
1: लोग उसमें बीपीएल कार्ड जिनके पास होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के कार्ड बनते हैं,
0: गरीबी रेखा के नीचे
1: गरीबी
0: के
1: के
0: कार्ड।
1: कार्ड जो है, उन लोगों को उसमें काफी मतलब लाभान्वित करते हैं। और इसी तरह से कुछ सेवा समिति भी जुड़ी हुई हैं, वो मरीजों के लिए मतलब अपने सेवाएं देते हैं, और आर्थिक रूप से भी
0: जो
1: उनको।
0: सामाजिक संस्थाएं हैं वो।
1: जी
0: अच्छा, तो आपका ये अस्पताल शासकीय नहीं है?
1: नहीं, ये निजी अस्पताल है।
0: निजी अस्पताल है। तो कैसा लग रहा है इसमें काम करके अब आपको, क्योंकि आप तो कई तरह की नौकरियां करके आए हैं,
1: जी
0: हैं? कहां आप कढ़ाई बुनाई के काम में थे और कहां मरीजों की देखभाल ही एक तरह से भी प्रबंधक का मतलब ये होता है कि अस्पताल का सब काम सुचारू रूप से चलता रहे।
1: सुचारू रूप से चलता रहे, और जितने भी मरीज हैं उनको कोई असुविधा ना हो।
0: हाँ, तो आप इस कार्य को अच्छा मानते हैं अपने जीवन में, क्योंकि ये एक ऐसा अवसर है जिसमें आप एक तरह से सेवा करते हैं मरीजों की। आपको
1: अभी
0: कैसा लगता है वहाँ?
1: बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे आपने अभी कहा कि 60 वर्ष के आसपास मेरी उम्र हो रही है, तो वो 60 वर्ष की उम्र के आसपास अगर सेवा का मौका मिले तो उससे बढ़िया और कोई नौकरी नहीं हो सकती।
0: तो आपके यहाँ अस्पताल में तो हर तरह के मरीज आते होंगे,
1: जी
0: कोई अचानक से दुर्घटनावश किसी को चोट लग जाए या और किसी बीमारी से, जिसको हम आपातकालीन बीमारी कहते हैं,
1: जी
0: अचानक से कोई बीमारी, तो उस समय सब सारी व्यवस्थाएं देखना पड़ती होंगी।
1: हाँ, उसको सारी व्यवस्थाएं भी देखनी पड़ती है, और उसको एक प्रोत्साहित भी करना पड़ता है पेशेंट को, ताकि उसको ये अनुभव हो कि उसका हिम्मत पूरी रहे, तो वो सहयोग देता है डॉक्टर को भी कि मरीज को और अच्छी तरह से उसका ट्रीटमेंट हो सके।
0: तो एक सवाल अब मैं आपसे थोड़ा सा अपने बारे में, आपके स्वयं के बारे में पूछना चाहूंगा कि आज के समाज में स्थितियां काफी बदल गई हैं। जब आप युवा थे, जब आप पढ़ते थे, उसके बाद जब आपने इतनी सारी नौकरियां की, और आज जो स्थिति है कि भाई पहले तो ये था कि आप मास्टर बन जाइए, वकील बन जाइए, इंजीनियरिंग और एमबीबीएस ने डॉक्टर की पढ़ाई तो मुश्किल होती थी, तो बहुत कम लड़के लड़कियां होते थे, लेकिन आजकल तो ये है कि इतने सारे विकल्प हैं, इतनी सारी नौकरियां हैं कि एक भ्रम सी स्थिति पैदा हो जाती कि क्या करें। तो आज के जो विद्यार्थी हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह, किस दिशा में जाएं? कई बार वो स्वयं तय नहीं कर पाते, कई बार तो ये होता है कि माता पिता चाहते हैं कि नहीं तुम यही करो, और कई बार वो खुद कुछ और करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए आपकी राय में?
1: सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माता पिता को उसकी रुचि देखनी चाहिए, माता पिता को उसके विचारों को जानकर उसके ऊपर कोई थोपना नहीं चाहिए। अगर थोपते हैं तो वो मतलब उसकी रुचि के बिना अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में उसको काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है।
0: अच्छी बात कही आपने। और एक तरह से तो आप चूंकि अब अस्पताल में काम कर रहे हैं, इसलिए ये तो एक तरह की बहुत बड़ी समाज सेवा है, और हम चाहेंगे कि आप इसी तरह समाज की सेवा करते रहें, क्योंकि अस्पताल एक ऐसा स्थान है जिसके नाम से ही लोग डरते हैं, और वहां पर अगर अच्छे विचार वाले, दयावान और सहायता करने वाले व्यक्ति होंगे तो मरीज को एक बड़ी सांत्वना मिलती है। क्या ख्याल है आपका?
1: बिल्कुल आपने सही कहा, सांत्वना भी मिलती है और उसको ये महसूस होना चाहिए कि वो इस ऐसी जगह पे आ गया है जहां पे वो जल्दी से जल्दी अच्छा
0: होकर के जाए,
1: जो कर जाए।
0: अच्छा, अब अंत में आप दो शब्दों में क्या कहना चाहेंगे अपने जीवन के बारे में, अपनी अंतरात्मा के बारे में, क्या विचार है आप? आपका जीवन, जीवन को किस रूप में आपने देखा?
1: जो अस्पताल से जुड़ने के बाद यही मैं कहना चाहूंगा कि जितनी भी हम लोग सेवा कर सकें मनुष्य की और उस रूप में, कि वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे सुनने वाले साथियों को वो सब बातें बताई जो कि बहुत उपयोगी हैं, और खास करके अस्पताल की जो बातें हैं आपकी उससे आप जुड़े हैं। हम यही चाहेंगे कि आप अपने आगामी जीवन में भी इसी तरह समाज की सेवा करते रहें।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक मुलाकात, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे स्वतंत्र कुमार ओझा जी और उनके साथ थे अजमेर से आए श्री मुकेश व्यास। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या आईओएस मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्य स्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्य स्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। साथियों, अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम युवा विकास के अंतर्गत वार्ता का, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं स्वतंत्र कुमार ओझा जी और उनके साथ हैं सरदार पुनीत सिंह।

0: हमारे सभी युवा साथियों को स्वतंत्र कुमार ओझा का नमस्कार। युवा साथियों, आज के हमारे युवा विकास कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में आए हैं सरदार पुनीत सिंह। इनके जीवन की, हालांकि ये भी युवा हैं, लेकिन इनके जीवन की जो कहानी है, आज जो ये कुछ कर रहे हैं, उसके बारे में हम इन्हीं के मुंह से ये सब बातें जानेंगे। तो पुनीत जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: धन्यवाद सर।
0: सबसे पहले ये बताइए कि आपकी शिक्षा कहाँ कहाँ हुई?
1: मेरी जो प्राथमिक शिक्षा थी, प्राथमिक शिक्षा मैंने इंदौर से ग्रहण की। तत्पश्चात मैं मेरी जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई मैंने की है, वो 4 साल मैंने भोपाल में रहकर मेरी पढ़ाई की है इंजीनियरिंग की।
0: क्या सब्जेक्ट क्या था? क्योंकि इंजीनियरिंग कई तरह की होती है, तो आपका विषय क्या था?
1: मेरा विषय कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग था।
0: कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। भोपाल में 4 साल रहे आप?
1: जी सर, भोपाल में मैं 4 साल रहा हूँ।
0: हाँ, कैसे रहते थे? हॉस्टल में रहते थे?
1: जी, जब मेरा प्रथम वर्ष था, जो मेरा पहला साल था, पहले साल में मैं हॉस्टल में रहा। उसके बाद फिर एक कर्नल आर्मीज की आर्मी को बिलोंग करने वाली फैमिली थी, तो उनके साथ 3 साल मेरे वहाँ पे व्यतीत हुए। बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर था, पढ़ाई का मुझे बहुत अच्छा वातावरण मिला और बिल्कुल मेरा ऐसा लगता था वहाँ कि मैं माता पिता के साथ ही हूँ।
0: और आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का माहौल कैसा लगा?
1: कॉलेज का माहौल, एक हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ लड़का एकदम इंजीनियरिंग में जाए, तो शुरू में तो मुझे पहले 2-3 महीने बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं उस माहौल में ढलता गया, कई नए दोस्त मिले, अलग अलग हिंदुस्तान

0: झील है, भोपाल जिस तरीके से जाना जाता है झीलों का शहर,
1: हाँ
0: तो बड़ी झील हुई, इस तरीके से हम लोग वहां पे मनोरंजन के लिए भी जाया करते थे।
1: हाँ
0: साथ ही हमारा पढ़ाई का भी हम लोग वहां पर एक वातावरण बनाकर हम लोग पढ़ा भी करते थे।
1: आपके परिवार माता पिता ये तो इंदौर में रहते
0: जी हाँ,
1: होंगे।
0: माता पिता उस समय इंदौर में थे, मेरा आना जाना लगा रहता था।
1: हाँ
0: 15 दिन 20 दिन में मैं एक बार माता पिता के पास मेरे इंदौर आकर मैं वापस भोपाल पढ़ाई के लिए जाया करता था।
1: अच्छा, तो ये पढ़ाई पूरी करने के बाद आपका क्या सपना था, क्या बनना चाहते थे आप?
0: मेरा सपना जो था, मुझे मेरा खुद का इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना, ये मेरा सपना है। बट उसके लिए बहुत ही अमाउंट की, पैसों की जरूरत है, तो मैं धीरे धीरे मेरे सपनों की ओर अग्रसर हो रहा हूँ। और मेरा जो रिजल्ट था इंजीनियरिंग का, वो 6 जुलाई 2006 को डिक्लेयर हुआ था। तत्पश्चात अगले ही 15 दिनों में मैंने सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में पहली जॉब की। वहां मैंने बहुत ही एक्सपीरियंस मैंने गेन किया।
1: क्या किस किस्म का काम था वहाँ?
0: वहां पर जो मेरा काम था पूरा, मुझे वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, बच्चों से लेकर काउंसलिंग तक, वो पूरा मुझे संभालना होता था। फीस वगैरह का डिपार्टमेंट है, मतलब वो जो जितना भी था वो मेरे ही अंडर में था।
1: हाँ, चूंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन देखते
0: जी
1: थे वहाँ।
0: जी
1: अच्छा, वहाँ कितने दिन रहे आप?
0: सर, मैं वहां 7 महीने रहा।
1: 7 महीने।
0: जी हाँ, 5 मार्च को मैंने 5 मार्च 2007 को मैंने वो जॉब छोड़ दी थी।
1: अच्छा, उसके बाद?
0: उसके बाद मैंने रुचि ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, जो कि एशिया का जाना माना नाम है, वहां उसके आईटी डिवीजन में मैंने एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन किया।
1: सॉफ्टवेयर इंजीनियर।
0: सॉफ्टवेयर इंजीनियर,
1: अच्छा, अभी भी आप उसी में
0: जी
1: काम
0: हाँ,
1: करते
0: अभी
1: हैं?
0: मैं रुचि सोया ग्रुप का जो आईटी डिवीजन है, रुचि इन्फोटेक लिमिटेड, वहीं पर कार्यरत हूँ।
1: तो आपने ये जो दो जॉब बताए अपने, जो
0: जी
1: दो काम आपने शुरू किए अपनी पढ़ाई के बाद,
0: जी
1: उससे आपको ऐसा लगा कि ये संतोषप्रद हैं आपके लिए, आपके सपने को पूरा करेंगे आगे जाकर के, ऐसा लगा आपको?
0: देखिए, सपनों को पूरा करने वाली जहां तक बात है, सपने देखना सभी का हक है। सपने पूरे होना या नहीं होना ये एक अलग बात है। मैं मेरे सपनों को पूरा करने की ओर अपने पूरे तन मन से मैं उस चीज की ओर लगा हुआ हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं मेरा सपना एक दिन जरूर पूरा करूंगा।
1: अच्छा, ये इसके अलावा भी कोई आप काम करते हैं?
0: जी हाँ, इसके अलावा मैं मेरे समाज के लिए, समाज सेवा के रूप में जो पुलिस विभाग है इंदौर का, उसको मैंने साइबर कैफे कंट्रोल .com नामक एक वेब पोर्टल बनाकर दिया है।
1: अच्छा,
0: जी,
1: हाँ
0: इस वेब पोर्टल की सहायता से इंदौर में जितने भी साइबर कैफेज हैं, इनको अपना रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से क्राइम ब्रांच में आकर करवाना होता है। वहां पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद इन्हें जो भी इनके यहाँ कस्टमर्स जो आते हैं, वहां पर आके इनको एंट्री करना होती है। तो इसके माध्यम से, इसके द्वारा, इस साइबर कैफे कंट्रोल .com पोर्टल के माध्यम से इंदौर में कितने बज के कितने मिनट पे कौन सा व्यक्ति किस साइबर कैफे पर उपस्थित है, इसकी पूरी जानकारी कंट्रोल रूम पुलिस डिपार्टमेंट में, एसपी ऑफिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिस में मौजूद रहती है।
1: अच्छा, तो उसमें भी आपका योगदान रहा
0: जी हाँ,
1: है?
0: ये जो मैंने ही इस चीज के बारे में सोचा था,
1: हाँ,
0: इसको सोचने के बाद मैंने यहाँ के तत्कालीन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से मैंने चर्चा की। उन्होंने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया और मुझे और इसके लिए उत्साहित किया, और मैंने बहुत ही कम समय में, 1 से 1.5 महीने, 1.5 महीने के समय में मैंने इस चीज को पूरा करके और इस चीज को मैंने लाइव कर दिया, जागरूक कर दिया, और यह आज सफलतापूर्वक इंदौर क्राइम ब्रांच के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। उन्हें सारी जो जानकारी होती है, अब उन्हें किसी साइबर कैफे पर जाकर जानकारी इकट्ठी करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो वहीं अपने एसपी ऑफिस में बैठकर, अपने ऑफिस में बैठकर इसकी पूरी जानकारी वो एक कंप्यूटर पे क्लिक के माध्यम से वो प्राप्त कर सकते हैं।
1: हाँ, पुनीत जी, आपने ये साइबर कैफे की बात कही,
0: जी
1: और ये जो एक शुरुआत आपने आपके माध्यम से हुई,
0: जी
1: ये एक बहुत ही शुभ कार्य है, ऐसा ही माना जाना चाहिए। तो अब हम इस साइबर कैफे के बारे में जानना चाहते हैं
0: जी
1: कि आज तो कंप्यूटर और साइबर कैफे और ईमेल और ये सब .com और
0: जी
1: ये सब इस तरह से चलते हैं जैसे हमारे जमाने में, जिसको कहते हैं कि गुल्ली डंडा
0: जी जी बिल्कुल
1: और खो खो, और ये
0: जी
1: हमारे
0: जी
1: जो राष्ट्रीय खेल हैं
0: जी जी
1: बचपन में, तो या पतंग उड़ाना, इस
0: हाँ
1: तरह
0: जी
1: के, तो आजकल तो ये नाम ज्यादा चलते हैं।
0: सर, जिस तरीके से देखिए, पानी, हवा, ये हमारे जीवन की जरूरत है। आज के जो युग है, युवा पीढ़ी जो आ गई है, उसके लिए एक कंप्यूटर जो नाम है, ये नया जुड़ गया है लाइफ में। आज बिना कंप्यूटर के एक युवा जो एक इंजीनियरिंग

0: बात करें या हम लोग छात्रवृत्ति की बात करें, तो मध्य प्रदेश में जो छात्रवृत्ति दी जा रही है वो भी आजकल ऑनलाइन हो गई है, कंप्यूटर के माध्यम से हो गई है। तो कंप्यूटर भी आज के आम आदमी की एक जरूरत बन गया है।
1: तो साइबर कैफे के बारे में बताइए कि इसके क्या गुण हैं और क्या इसके दोष हैं।
0: साइबर कैफे कंट्रोल .com जो पोर्टल है, इसकी मैं विस्तार में आपको जानकारी देता हूँ। सबसे पहले जो साइबर कैफे का मालिक होता है, साइबर कैफे का मालिक जो कि साइबर कैफे संचालित कर रहा है, जहाँ कंप्यूटर रखे हैं, इंटरनेट के माध्यम से वो सुविधा लोगों को प्रदान कर रहा है, तो उसे अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाना होता है। अब हम लोग साइबर कैफे के हम लोग अगर ड्रॉबैक्स की बात करें, अब जो उसके दोष की बात करें, तो आज की जो युवा पीढ़ी अगर कंप्यूटर को एक अच्छे रूप में ले, इंटरनेट के कई दुरुपयोग ना करें, कोई ईमेल जो है वो गलत ना भेजें, अश्लील जो वेबसाइट्स होती हैं वो ना खोलें, तो ये हमारे समाज के लिए बहुत ही आगे बढ़ाने वाली चीज साबित होगी। वहीं अगर हम इस चीज का मिसयूज करें, अगर दुरुपयोग करें, तो ये हमारे समाज के लिए हानिकारक भी हो सकती है। जिस तरीके से सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से इंटरनेट के भी दो पहलू हैं। तो मैं हमारे युवा साथियों से यही गुजारिश करूंगा कि इसको हमारे समाज को बढ़ाने में आगे योगदान करें, इस चीज का सदुपयोग करें, दुरुपयोग से बचें,
1: अन्यथा
0: विनाश
1: भी हुए हैं।
0: जी जी बिल्कुल हुए हैं,
1: एक राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी।
0: बिल्कुल,
1: इसके दुरुपयोग के भयानक परिणाम
0: बिल्कुल
1: हमें देखने सुनने को मिले हैं। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही
0: जी,
1: कि आज जितने भी आधुनिकतम, जिसको कि हम लेटेस्ट कहते हैं, जो भी उपकरण हमें मिले हैं, वो मनुष्य की खुशी के लिए, मनुष्य की सेवा के लिए, मनुष्य का जीवन बेहतर बनाने के लिए है, मनुष्य को दुखी करने के लिए नहीं।
0: बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं और युवा साथियों से भी ये गुजारिश करूंगा कि वो इस चीज का सदुपयोग करें।
1: तो आपका अपना भी, आपने कोई साइबर कैफे खोल रखा है?
0: जी हाँ, मेरे पिताजी के लिए मैंने एक साइबर कैफे खोल रखा है। मेरे पिताजी वो साइबर कैफे संभालते हैं।
1: अच्छा।
0: और जी हाँ, शाम के समय मैं उनके साथ समय व्यतीत करता हूँ, वो साइबर कैफे मैं जाके संभालता हूँ, और आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे माता पिता के आशीर्वाद से हूँ, बहुत ही उन्होंने मेहनत की है। इसके साथ ही साथ मेरा जो मेरी दोस्त, मेरी बड़ी, मेरी मासी जो मेरे लिए भगवान का दर्जा रखती हैं, बबली गंभीर, उनके सहायता, उनकी दोस्ती, उनके आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा के बिना पुनीत सिंह नाम हो ही नहीं सकता था। तो मैं बहुत ही आभारी, बहुत ही धन्यवाद दूंगा मेरे माता पिता को और मेरे मासी, मेरी बबली गंभीर को, जिन्हें की मैं बबली दीदी कहता हूँ।
1: और आपके परिवार में माता पिता के अलावा कौन है?
0: एक मेरी छोटी बहन है।
1: वो क्या करती हैं?
0: वो 12वीं कक्षा में सेंट रेफेल्स स्कूल है, इंदौर का जाना माना स्कूल है, वहाँ वो पढ़ रही है।
1: हाँ।
0: जी, उसका जो विषय है उसने कॉमर्स लिया है।
1: अच्छा अच्छा।
0: जी,
1: तो अब अंत में ये बताइए कि हमारे हर युवा साथी के, जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है, तब उसके मन में अपने करियर को लेकर के चिंता भी होती है।
0: बिल्कुल।
1: और कुछ सपने भी होते हैं जो वो देखता है।
0: जी,
1: अब मान लीजिए कि कोई, चलिए हम बात करें फिल्म लाइन की।
0: जी,
1: किसी को अचानक से लगे कि नहीं, मुझे तो जाकर के हीरो ही बनना है, तो वो बगैर सोचे विचारे चल पड़ता है।
0: जी,
1: है किसी भी तरह से पहुंच गया वहां, और मान लो अगर उसका सपना पूरा नहीं होता है, तो क्या ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई सपना देखते हैं और वो पूरा नहीं होता है
0: जी,
1: तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है जीवन में, कोई विकल्प नहीं है क्या? आप क्या सोचते हैं?
0: सर, विकल्प तो हर चीज का होता है, और विकल्प जो है वो होना ही चाहिए। अगर वो किसी कारणवश किसी स्थिति कोई ऐसी बन जाती है जिसके कारण वो अपना सपना पूरा नहीं कर सकता, तो उसके साथ जो उसके सामने जो विकल्प है, उस चीज को वो फॉलो करे, उस विकल्प के ऊपर चले, और बिल्कुल अगर उस विकल्प के माध्यम से वो अब उस ऊंचाई तक पहुंच सकता है। हम लोग अगर एक एग्जांपल ले लें, एक उदाहरण ले लें, कि अगर बंदा एक्टर, जैसा आपने फिल्म लाइन का बोला, वो एक्टर बनने गया है, एक्टर ना बन पाने के कारण हो सकता है कि वो उसी फील्ड में कुछ और बन जाए, वो एडिटिंग की फील्ड में चले जाए, वो सिंगिंग में चले जाए, तो जरूरी नहीं है कि एक्टर बनना, वो अगर एडिटिंग में चले जाए तो वो और ऊंचाई पे पहुंच सकता है। तो सभी अपनी अपनी हर चीज की एक इम्पोर्टेंस होती है, चाहे वो फिल्म लाइन हो, चाहे वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो या कोई और इंजीनियरिंग हो, वो आईपीएस की प्रिपरेशन करना चाहता है, वो आईएएस की प्रिपरेशन करना चाहता है, उसके विकल्प हमेशा खुले होने चाहिए कि अगर ये नहीं तो ये, मुझे मेरा सपने तक पहुंचना है चाहे इधर से या उधर से। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि कभी भी शॉर्टकट यूज ना करें, लाइफ में शॉर्टकट नहीं होना चाहिए।
2: क्या आप, बात है?
0: जी हाँ, आप उस चीज को अपने गोल तक पहुंचने के लिए हार्ड वर्किंग जरूर, एक जो बात होती है वो जरूर होना चाहिए, शॉर्टकट का रास्ता कभी नहीं अपनाना चाहिए।
1: आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसा आज का जो दौर है
0: जी,
1: उसको विज्ञापन युग कहा जा रहा है? मतलब
0: हाँ,
1: विज्ञापनों की इतनी भरमार है, ब्रांड की, प्रोडक्ट की, और कुछ कहें कि कुछ अनुपयोगी किस्म के जो विज्ञापन आते
0: जी,
1: हैं
0: जी,
1: या इस तरह के विज्ञापन जिनको कि आप परिवार के साथ बैठ के देख
0: नहीं,
1: भी नहीं सकते
0: जी, बिल्कुल।
1: तो ये सब क्या है, इससे क्या भविष्य है हमारा?
0: सर, भविष्य इस चीज से अंधकार में ही जाएगा। इस चीज के लिए हमारे जैसे युवा साथियों को आगे आना पड़ेगा, हमारे द्वारा चुने गए जो जनप्रतिनिधि है इस चीज के लिए उन्हें आगे स्टेप्स लेना पड़ेंगी, उन्हें कदम बढ़ाने होंगे, तभी इस चीज का कुछ सॉल्यूशन, कुछ हल निकल पाएगा। तो हमारे जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि ऐसे विज्ञापनों पर वो रोक लगाएं। हमारे युवा साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि कुछ इस चीज के लिए वो आगे आकर इस चीज को रोकने का प्रयास करें, तो जरूर हमारे समाज का विकास होगा, समाज का सुधार होगा और हमारा हिंदुस्तान ऊंचाई पर पहुंचेगा।
1: समाज सेवा भी आप कर रहे हैं, साइबर कैफे भी चला रहे हैं और नौकरी भी कर रहे हैं एक तरह।
0: जी हाँ, बिल्कुल।
1: तो आपको लगता है कि आर्थिक रूप से आज जो आर्थिक बढ़ोतरियां हो गई हैं,
0: जी जी जी,
1: उसको देखते हुए आप संतुष्ट हैं?
0: जी हाँ, आज की तारीख में जो आर्थिक मामलों की बात करेंगे तो मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। आज के जो जिस युग के साथ मैं चल रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल मेरे परिवार को और अच्छे लेवल से, और सेविंग भी मैं कर सकता हूँ आज की हालत में।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद, और इस कामना के साथ हम विदा लेते हैं कि आपका जो सपना है कि आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलें, तो अब देखते हैं ये सपना कब पूरा होता है, और अगर पूरा हो तो हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को एक बार फिर से आकर के ये बात बताएं, भले इसमें कितना भी समय लग जाए।
0: जी जी,
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
0: धन्यवाद सर आपको मुझे यहाँ पर बुलाने का, इनवाइट करने का।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा विकास के अंतर्गत वार्ता, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे स्वतंत्र कुमार ओझा जी और उनके साथ थे सरदार पुनीत सिंह। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, अब समय हो गया है हमारे अगले कार्यक्रम का, तो साथियों सुनते हैं कार्यक्रम युग संचार के तहत वार्ता जिसका शीर्षक है सुगंध का संचार, और इस वार्ता के प्रस्तुत करता है स्वतंत्र कुमार ओझा जी।
1: हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्र कुमार ओझा का नमस्कार। युग संचार, आज के हमारे युग संचार में जो वार्ता आप सुनेंगे उसका शीर्षक हमने रखा है सुगंध का संचार। श्रोता मित्रों, जब इठलाती झूमती हवाएं वन उपवन की ओर बहती हैं, तो बगिया के फूल सर उठाकर गुनगुनाने लगते हैं। चंपा, चमेली, जूही, मोगरा और गुलाब की फूलों की सुगंध वातावरण में एक आत्मिक भक्ति आराधना के क्षण उपस्थित कर देती है, और यही संचारी भाव हमें भाव विभोर कर देता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, इन्हीं फूलों से बनता है इत्र, जो विश्व के किसी भी कोने में आप जाइए, अपनी सुगंध, अपनी मादक खुशबू, अपनी महक से हम सबको एक सूत्र में बांध देता है। यही सुगंध संचार इत्र के द्वारा सदियों से अनवरत बिना रुके चल रहा है। तो आइए सुनते हैं देश विदेश में व्याप्त इस सुगंध की कहानी। शुरुआत करते हैं जाने माने गीतकार, फिल्म लेखक और निर्देशक गुलजार की लिखी इन दो पंक्तियों से। वो कहते हैं, जब भी ख्यालों में तू आए, जब भी ख्यालों में तू आए, तेरे बदन से खुशबू आए। ये ख्याल और खुशबू हमारी यादों और भावनाओं का संचार ही तो है, जो कई यादों को लेकर आती है, कभी कड़वी कभी मीठी, या फिर पहली बारिश की सौंधी खुशबू, या फिर बचपन में कागज की नाव चलाते हुए। ये सब एक मीठी गंध से हमें महका देते हैं। इन यादों की सुगंध कभी भूली नहीं जाती। तो दोस्तों, सुगंध और इत्र का भी चोली दामन की तरह का ही साथ होता है। और इत्र ही क्यों, ये जितने भी परफ्यूम्स हैं, लोशंस हैं, क्रीम हैं, यहां तक कि नहाने के साबुन में भी जो सुगंध ताजगी हमें मिलती है, इन सब में भी इत्र या कहें सेंट का पुट रहता ही है, एसेंस जिसको कहते हैं। तो मूल बात है सुगंध की, जिसका सीधा और प्रत्यक्ष संबंध और संचार इंसान और उसकी भावनाओं से है। इस सत्य को मनुष्य ने सदियों पहले जान लिया था, और हां, वो इसे अध्यात्म और भक्ति आराधन के लिए भी बहुत बहुत बहुत उपयोगी मानता था। तब से इस युग के आज तक इसका चलन चल रहा है, जारी है। अगर सुगंध के इतिहास के बारे में जानना चाहें तो माना जाता है कि लगभग 4000 साल पहले मेसोपोटामिया में लोबान की खोज की गई। लोबान हम सभी जानते हैं, आज भी पूजा हवन आदि में अग्नि के साथ जलाया जाता है। कुछ इतिहासकार इसकी खोज का श्रेय मिस्र को भी देते हैं, और भारत में तो वैदिक काल से ही यज्ञ जो होते थे, तो यज्ञों में धूप लोबान आदि को जलाने का चलन तो था ही। ऐसी मान्यता थी और है भी कि इनकी सुगंध आराधन और अध्यात्म के वातावरण का संचार इतना प्रभावशाली होता है कि चारों ओर वातावरण सुगंधित हो जाता है, भक्तिमय हो जाता है और भक्त को प्रभु के समीप होने का एहसास कराता है। इन सभी सुगंधित पदार्थों का चिकित्सीय महत्व भी माना जाता है। प्राचीन मिस्र के लोग शरीर पर तरह तरह के सुगंधित तेल मलते थे जो उस युग की भीषण गर्मी से उनकी त्वचा की रक्षा करके उसे आकर्षक बनाए रखती थी। यहां तक कि मृत्यु के बाद भी कब्र में शव के साथ तरह तरह के इत्र, सुगंधित जड़ी बूटियां ये सब रखी जाती थीं ताकि मृतात्मा की परलोक गमन तक की यात्रा सुगंधमय हो, सुगम हो। हमारे यहां भी शव को जलाने से पूर्व घी, इत्र आदि लगाने की परंपरा है ही। इनका भी अर्थ और महत्व सुगंध से ही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्राचीन रोम के इतिहास को जानते हैं। वहां भी खुशबू का बेहद महत्व था। कहां? रोम में। उस जमाने में लोग खुद के शरीर पर दिन भर में तीन तीन बार तो इत्र लगाते ही थे और इसके साथ ही अपने पालतू कुत्तों और घोड़ों को भी इत्र लगाते थे। अब यूनान की बात करें तो वहां तो हर चार पांच दुकान छोड़कर इत्र की दुकानें होती ही थीं और जिन पर भयंकर भीड़ बनी रहती थी। हमारे भारत के कन्नौज शहर में भी इत्र की दुकानों और वहां के तरह तरह के विशेष इत्रों के सुगंध का चलन आज भी हो रहा है, ये सभी जानते हैं। तो सुगंध के संचार और उसकी विशेषताओं का शताब्दियों से प्रयोग मानव समाज करता चला आया है। सुगंध का व्यक्तिगत प्रयोग तो है ही, लेकिन जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, सुगंध का समस्त धर्मों में प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि अमूमन सभी धर्मों में धूप, चंदन की लकड़ियां, जौ, घी, तिल और लोबान आदि को प्रज्वलित करके वातावरण में अध्यात्म का संचार किया जाता रहा है। इनके साथ ही सुगंधित तेलों और जड़ी बूटियों का भी विशेष स्थान है। ऐसी मान्यता भी है कि इन्हें तैयार करने की विधि स्वयं ईश्वर ने हजरत मूसा को बताई थी। प्रभु यीशु के जन्म पर वे उन्हें देखने आए। विशिष्ट जनों ने उन्हें सुगंधित जड़ी बूटियां भेंट की थी, ऐसा भी कहा गया है। मध्ययुग में माना जाता था कि जिस प्रकार फूलों से उनका रस, पराग या उसको आसव भी कहते हैं, ये निकाला जाता है ना, और सुगंधित इत्र आदि बनाए जाते हैं, तो उसका एक विशेष महत्व होता था और होता है। उसी प्रकार पदार्थ में से भी दिव्यता का सत्व निकाला जा सकता है, पदार्थ में से भी, और इसके तरीके निकालने के भी वैसे ही होते हैं या होते थे जैसे इत्र बनाने वाले करते थे पदार्थ में से। इस दिव्यता से मन को अपार शांति की अनुभूति और आध्यात्मिकता का संचार होता है। और श्रोता मित्रों, ये संचार ही तो है जो हमें एक दूसरे के बहुत बहुत बहुत करीब लेकर के आता है। जब हम ईश्वर की शरण में शांत चित्त से जाते हैं तो धर्म तो कोई भी हो, लक्ष्य और उद्देश्य एक जैसा हो जाता है, समान हो जाता है। यही भावना हमें परस्पर सद्भाव और प्रेम का आभास कराती है कि हम सब एक हैं, ईश्वर एक है, उसी तरह हम भी सब एक हैं। हमारे धर्म, हमारी जाति अलग हो सकती है, लेकिन ईश्वर तो एक ही है। अब ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि हम ईश्वर के पास रहने के लिए कैसा आचरण करते हैं। तो अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि सुगंध एक माध्यम है स्वयं को भी सुवासित बनाए रखने का और ईश्वर के दर्शन करने का, क्योंकि सुगंध भी एक एहसास ही तो है और उसकी अनुभूति को केवल महसूस किया जा सकता है। कामना करें कि समस्त मानव समुदाय में दिव्य सुगंध का संचार ऐसे ही होता रहे जैसा शताब्दियों से होता चला रहा है। नमस्कार।
0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम योग संचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था सुगंध का संचार, और इस वार्ता के प्रस्तुतकर्ता थे स्वतंत्र कुमार ओझा जी। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉयड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दे आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को। रिकॉर्डिस्ट है आकाश जांगरा। नमस्कार।

रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं आपकी दोस्त ग्लोरिया गांगले और आज की एक से दो की सभा में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार, नारी सशक्तिकरण, मंदर्पण, पर्यावरण और भक्ति गीत। तो आइए दोस्तों, आप सुनते हैं कार्यक्रम सर्वधर्म विचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं फादर हेरमन बंडोर और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

मित्रों, फादर हरमन बंडोड एसवीडी का प्यार भरा नमस्कार। आज सर्वधर्म विचार के तहत लीजिए सुनते हैं वार्ता, जिसका शीर्षक है क्या धर्म और संस्कृति बलात्कार की जिम्मेदार है। मित्रों, पिछले साल 16 दिसंबर की दिल्ली में चलती हुई बस में हुए गैंगरेप की तरह एक अमानवीय घटना बिहार में भी सामने आई थी। मुजफ्फरपुर जिले के मंडई खुर्द की एक महिला 27 मार्च को अपने पति के साथ पास ही के सकरा फरीदपुर गांव से लौट रही थी। रास्ते में कुछ दरिंदों ने उसे पकड़ लिया। दरिंदों ने पहले उसके पति को बांध दिया, पति के सामने ही महिला के साथ गैंगरेप किया। महिला ने विरोध करने की कोशिश की तो उसके पूरे शरीर को दांत से काटा। इसके बाद दरिंदों ने हैवानियत की सारी सीमाएं लांघ दी। उन्होंने महिला के गुप्तांग में कपड़े के साथ पत्थर और मिट्टी भर दी और उसे तड़पता छोड़कर भाग गए। परिवार वाले इलाज के लिए महिला को समस्तीपुर अस्पताल ले जा रहे थे कि रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। अभी दिल्ली में 5 साल की उस मासूम बच्ची के साथ जो कुछ हुआ उसे हैवानियत कहना भी हैवान को जलील करने जैसा होगा। पहले महिलाएं और अब बच्चे, इतना तो तय है कि समाज का कमजोर तबका निशाने पर है। कल तक हम महिला सुरक्षा बिल के लिए लड़ रहे थे, लेकिन क्या अब बाल सुरक्षा कानून को रिव्यू करने पर भी बहस छेड़ेंगे? सदियों से यही सब होता चला आ रहा है। दिल्ली गैंगरेप के बाद जो माहौल बना था उससे लगा था कि शायद कुछ बदलाव आएगा, लेकिन यह उम्मीद बेमानी साबित हुई। बच्चे हमेशा से आसान टारगेट रहे हैं, लेकिन अब जब महिलाओं ने भी अत्याचारों और शोषण के खिलाफ आवाज उठा दी है, वे अपने हक के लिए खड़ी होने लगी है, तो बच्चों पर आ गए। आखिर यह कैसी कुंठा है? जब भी हम इस तरह की ज्यादतियों पर बात करते हैं तो बात सिर्फ और सिर्फ सेक्स पर आकर टिक जाती है, लेकिन हवस क्या किसी बच्ची के शरीर में शीशे या खिलौने घुसा देने का फितूर चढ़ा सकती है? दोष दरअसल मानसिकता में है। सेक्स करना, काटना, नोचना, खसोटना हवस का नतीजा हो सकता है, लेकिन निर्भया के पेट में रात डाल देना, 5 साल की मासूम बच्ची को बोतल से बींध देना, मैं इसे सेक्स का भूत नहीं समझता। दूसरों को परेशान करने में मिलने वाली खुशी ही इसकी वजह है। यह सब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स करवाता है। खुद को बड़ा, ताकतवर, माचो और मर्द साबित करने की मूर्खतापूर्ण कोशिश इन सब चीजों का कारण है। मित्रों, फांसी देने से क्या इसका इलाज हो जाएगा? हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पहले राम सिंह के लिए फांसी मांगी, अब इस दरिंदे के लिए फांसी मांग रहे हैं, लेकिन क्या इन्हें फांसी मिलने से समाज को सही दिशा मिल जाएगी? क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्यों आज हमारे बीच इतने फासले हो गए हैं कि हमें पड़ोसी का बच्चा बच्चा नहीं दिखाई देता? क्यों हम खुद में इतने खो गए हैं कि अपने अपनी इच्छाओं के और अपनी जरूरतों के अलावा सब चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं? निसंदेह मृत्यु का भय, सजा का भय अपराधी को अपराध करने से रोकता है, लेकिन समाज यह भी तो तय करे कि नारी का अपमान अपराध है। विवाह में दहेज की मांग करना, जबरी लेना और मजबूरी में देना दोनों अपराध है। क्या हम सभ्य कहलाने वाले लोग किसी न किसी बहाने से रोज इस कानून को नहीं तोड़ते? ईश्वर से प्रार्थना करते हैं बेटा ही पैदा हो, सामर्थ्यवान हुए तो पैदा ही नहीं होने देते। न चाहने पर भी पैदा हो गई तो मन ही मन भाग्य को कोसते हुए झूठा राग अलापते फिरते हैं कि लक्ष्मी आई, लक्ष्मी आई। विवाह के लिए जन्म के बाद से ही दहेज जुटाना प्रारंभ कर देते हैं। बार बार इनके कारण इज्जत खतरे में पड़ जाती है। मित्रों, मैं आप लोगों को यहाँ यह याद दिलाना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के एक बीजेपी के मंत्री ने बलात्कार की घटना के संदर्भ में बयान दिया था कि पूरे भारत में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए और यह सब विदेशी संस्कृति के प्रभाव से ऐसा हो रहा है। कांग्रेस के एक नेता ने भी लड़कियों को रात में न निकलने देने की वकालत करते सुने गए। इसके अलावा भी धर्म और संस्कृति के झंडा बरदारों ने लड़कियों को रात में बाहर निकलने और उनके पहनावे इत्यादि को बलात्कार का जिम्मेदार ठहराया था। स्त्री की स्वतंत्रता का पूर्ण रूपेण हनन कर देने वाले एक धर्म के अनुयायी तो कहने लगे कि ईश्वर ने औरत को कमजोर बनाया है। इसके संदर्भ में एक महिला लेखक कहती है, धर्म और संस्कृति के पैरकारों को शर्म आनी चाहिए।
क्योंकि उनके हिसाब से औरत कमजोर है, तारण की अधिकारी है, नरक का द्वार है, पराया धन है और दान करने योग्य वस्तु है। मित्रों, स्वामी बालेंदु कहते हैं कि बलात्कार दरअसल एक धार्मिक समस्या है, क्योंकि धर्म ने ही औरत को भोग्या, वस्तु, अपवित्र, आज्ञाकारिणी, पर्दे वाली, कमजोर और दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया है। कुछ धर्म तो साफ साफ उसे पीटने की भी वकालत करते हैं। यहाँ समस्या की जड़ में जाओ, जरा सोचो कि औरत के प्रति इस प्रकार की धारणा का निर्माण धर्म ने ही किया है। फांसी की सजा से बलात्कार नहीं रुकने वाले, औरत के प्रति दृष्टिकोण को बदलना होगा। जहाँ स्त्री होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। इस तरह के छलने वाले और दोगले वक्तव्य देने वाले शास्त्र ही यह भी कहते हैं कि स्त्री नर्क का द्वार होती है। और कहीं कहीं तो कुछ तथाकथित साधु संन्यासी कहते हैं कि स्त्री की शक्ल देखना भी पाप है, और दिख भी जाए तो वो प्रायश्चित भी करते हैं, और उसी संप्रदाय के संन्यासिनियों की सेक्स फिल्में भी बाजार में आ जाती है। देखो कितने दोगले हैं ये धार्मिक लोग और इनके ग्रंथ। स्वामी आगे कहते हैं, मैं तो उन्हीं शास्त्रों में यह भी लिख दूंगा कि भारत में जहां अकेली स्त्री होती है वहां वह सी बलात्कारियों का वास होता है। यहां उन्हें शर्म आनी चाहिए जो कि स्त्री की स्वतंत्रता और पहनावे को बलात्कार का जिम्मेदार ठहराते हैं, और लड़कियों से कहते हैं कि ये मत करो, वो मत पहनो, वहां मत जाओ, ऐसे रहो और वैसा करो। खुद को मर्द कहने वाले अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते और औरतों को उपदेश देते हैं। बताओ अपने चरित्र को देखकर कौन हुआ कमजोर, मर्द या औरत? ये तर्क देते हैं कि अगर औरत ऐसे पहनेगी और बाहर निकलेगी तो और क्या होगा। इसी मानसिकता के लोग ही हैं वो जो मौका मिलने पर अपनी माँ, बहन और बेटी का बलात्कार करने में भी नहीं चूकते, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो यह स्वाभाविक है, जहाँ औरत की चमड़ी दिखी और ये बेकाबू हुए। मित्रों, आपको पता है कि एक रिपोर्ट के अनुसार 93% बलात्कार घर वालों, नाते रिश्तेदारों, परिचितों के द्वारा ही होते हैं। अब बताइए यहाँ कौन सा पहनावा, मोबाइल और रात में निकलना कारण है बलात्कार का? सब कुछ घर में ही होता है और औरत को उसके औरत होने की कीमत चुकानी पड़ती है। इस प्रकार की पुरुषवादी मानसिकता और प्रवृत्तियों से ही औरत को बचाने के लिए ही परिवार तक के मर्दों से पर्दा करना औरतों को सिखाया गया। अक्सर ही आजकल आप अखबार में पढ़ सकते हैं कि पिता, ससुर, जेठ, भाई, चाचा इत्यादि के द्वारा औरतों का ही नहीं बल्कि नाबालिग बच्चियों का भी बलात्कार होता है। मित्रों, यहाँ स्वामी बालेंदु पूछते हैं कि पहनावे और औरत की आजादी को बलात्कार का कारण मानने वाले धार्मिक और सांस्कृतिक लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि जब लगभग रोज ही हम अखबारों में पढ़ते हैं कि 2 अथवा 3 साल की बच्ची से लेकर 10 साल तक की बच्चियों से बलात्कार हो रहे हैं, तो कृपया बताइए कि इस उम्र की बच्चियां कैसा कपड़ा पहनकर और किस प्रकार का अंग प्रदर्शन करके इन पुरुषों को इतना कामोत्तेजित कर देती है कि वो उनका बलात्कार करने पर विवश हो जाता है। क्या आप सच में यह समझते हैं कि बलात्कार कानून व्यवस्था की समस्या है, या फिर यह सोचते हैं कि कड़ी सजा देने से आप इसे रोक सकेंगे? सत्य तो यह है कि बलात्कार एक सामाजिक और सांस्कृतिक समस्या है। वह धर्म जो कि स्त्री को 2वें दर्जे का नागरिक बनाता है, जो कि स्त्री को पिता, पति और पुत्र के संरक्षण में रहने की वकालत करते हुए उसे कमजोर बनाता है, वह समाज और संस्कृति जिसमें स्त्री के चेहरे को देखकर योनि की कल्पना से उत्तेजित हो जाने वाले पुरुष की कुदृष्टि से बचने के लिए औरत को घूंघट, पर्दा और बुर्का पहनना पड़ता है, वहां आप बलात्कार को कैसे रोक पाएंगे? याद रखिए, जिस समाज में इस प्रकार की पुरुषवादी मानसिकता रहेगी उसे आप बलात्कार जैसे अपराध से किसी भी कानून और सजा के द्वारा मुक्त नहीं कर पाएंगे। स्वामी बालेंदु आगे कहते हैं कि धर्म और संस्कृति के झूठे गर्व में मदहोश लोगों को आजकल यदि कुछ भी हो जाए तो पाश्चात्य संस्कृति को दोष देने का फैशन चल पड़ा है, जबकि सत्य यह है कि यहाँ पश्चिम से बहुत ज्यादा व्यभिचार हो रहा है। स्वामी कहते हैं कि ये बात मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि दोनों संस्कृतियों को जी रहा हूँ, पैदा पला बड़ा यहाँ हूँ और पिछले 12 साल से वहाँ रह और काम कर रहा हूँ। जितने अपराध, बलात्कार, बेईमानी यहाँ होती है वहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ के महानगर हो या गांव,
आपकी माँ बहन बेटी अंधेरा होने पर बाहर निकलने में असुरक्षित महसूस करती है, 2 साल की बच्ची से लेकर 80 साल तक की बुढ़िया तक से बलात्कार की घटनाएं प्रायः सुनने में आती है, परंतु वहाँ सामान्यतः ऐसा नहीं है। एक जवान लड़की भी अकेले रात को बस अथवा ट्रेन में सुरक्षित यात्रा कर सकती है। आखिर हम वहाँ की संस्कृति के गुणों को क्यों नहीं देखते और आयात करते हैं? क्या दशा है हमारे धर्म के प्रमुखता वाले देश की, जहाँ राजनीति हो, नौकरशाही हो, धार्मिक जगत हो, सब तरफ दुराचार और भ्रष्टाचार नजर आता है। मैं धर्म और संस्कृति की दुहाई देने वाले लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इन समस्याओं का हल पाश्चात्य सभ्यताओं को दोष देने से नहीं मिलेगा, बल्कि इसकी जड़ में देखना होगा कि समस्या आखिर उत्पन्न कहाँ से होती है। मित्रों, जब तक हम समाज की मानसिकता नहीं बदलेंगे, भारत को बलात्कार से मुक्त नहीं कर पाएंगे। नमस्कार।

अभी आपने सुना कार्यक्रम सर्वधर्म विचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे फादर हेरमन बंडोड, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए साथियों, आप सुनते हैं भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वाज मुंबई की।

अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वाज मुंबई की। साथियों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं नुपुर दीक्षित, और इनकी वार्ता का शीर्षक है तबादला और महिलाएं, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत आज प्रस्तुत है विषय तबादला और महिलाएं। बहनों, आज के नारी सशक्तिकरण के अंक में हम बात करेंगे तबादलों की। जी हाँ, तबादलों के मौसम में जैसे किसी कार्यालय का माहौल गर्म होता है, वैसी ही कुछ हलचल होती है घर की महिला के मन में भी। पता नहीं नए लोग कैसे होंगे, घर कैसा मिलेगा, काम करने के लिए नौकर मिल पाएंगे या नहीं, या फिर बच्चों के स्कूल की ही बात ले, एक ना दो हजार मसले होते हैं तबादलों के साथ। आज हम भले ही सभी साधन संपन्न हो गए हैं, नारी मुक्ति, स्वावलंबन और शिक्षा के साथ तकनीक की बातें करते हैं, लेकिन कुछ बातें आज भी नहीं बदली। मेरी सहेली पूजा ने जब दिल्ली से बैंगलोर तबादला होने के बाद अपने सजे सजाए फ्लैट में कदम रखा तो लगा जैसे किसी होटल में आ गई हो। उसे तो महानगर में भाषा की भी समस्या थी। उसके पतिदेव घर आने के घंटे भर के भीतर ही अपने काम पर निकल गए। पूजा को बड़ा आश्चर्य हुआ जब थोड़ी ही देर बाद उसकी ही उम्र की एक महिला ने उसका दरवाजा खटखटाया। उसने बड़े प्रेम से अपना परिचय दिया। वो नाश्ते का सूखा सामान और पीने का पानी साथ लाई थी। साथ में थी काम वाली बाइयों के मोबाइल नंबरों की लिस्ट और शहर के अच्छे स्कूलों के नाम और पते। वाकई पूजा को उसका साथ बहुत भाया और लगा कि इस महानगर में भी उसके लिए सोचने वाला कोई है। कितनी आसानी से उसकी पड़ोसन ने ये समझ लिया था कि नए शहर में आने के बाद किसी भी स्त्री के लिए क्या क्या जरूरतें अहम हो सकती हैं। अपनी भली पड़ोसन के साथ मिलकर पूजा ने न केवल बड़ी जल्दी अपने आप को नए शहर में सेट कर लिया, उसी के साथ घूम घूम कर आस पास का बाजार भी देख आई और बहुत जल्दी स्वावलंबी हो जाने पर अपने पति से तारीफें भी पाई। क्या होता यदि उसे कोई भी मदद करने नहीं आता? ये तो तय था कि वो हाथ पर हाथ धरे बैठी नहीं रहती, लेकिन अपने आप सब काम करने में उसे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। उसके मन में उस शहर के प्रति, वहां के लोगों के प्रति एक नकारात्मक छवि बन जाती। तबादला होने पर एक साथ आपके जीवन में कई बदलाव होते हैं। आपके पुराने संगी साथियों का बिछड़ना, अपने घर से बिछोह, नई जगह जाने का डर, वहां के वातावरण को लेकर की जाने वाली बातें, एक साथ कितने ही विचार हम सभी के मन में आने लगते हैं। महिलाओं को अक्सर ये दुख होता है कि वे नई जगह से अपना तालमेल कैसे बैठा पाएंगी। बच्चों को जहां अपने स्कूल छोड़ने का दुख होता है, वहीं नया घर, नया स्कूल और नए संगी साथियों के मिलने की खुशी भी। यदि आप तबादलों की स्थिति से गुजरने वाली हैं, तब आपके लिए कुछ खास बातें। बहनों, जिस स्थान पर आपका तबादला होने वाला है, वहां की संस्कृति, रहन सहन और परंपराओं को लेकर जितनी जानकारी ले सकती हैं ले लें। खासकर भारत जैसे देश में ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है आप किसी ऐसे स्थान पर जा रही हो जहां पर मेहमान नवाजी को बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। आप यदि अपनी ओर से परिचय दे तो उसे बुरा माना जाता है। आपके द्वारा अपने बच्चों को किसी के भरोसे छोड़ना उसके प्रति विश्वास का प्रतीक माना जाता है, या फिर किसी को अपने घर की चाबियां सौंप देना बुरा भी माना जा सकता है। तो यदि आपको पता है कि किस स्थान पर आपका तबादला होने वाला है, तब उस स्थान को लेकर, वहां की परंपराओं, मान्यताओं और विचारों को लेकर जितनी हो सकती है उतनी जानकारी जरूर एकत्र कर लें। अब यदि आपके परिवार में नवजात शिशु है, तब तबादलों के दौरान के थकान भरे कामों के लिए निसंकोच नौकरों की अतिरिक्त मदद जरूर लें। इसके स्थान पर आप ये भी कर सकती हैं कि परिवार के ही किसी सदस्य को बुलाकर नवजात की जिम्मेदारी दे दें और स्वयं अपनी देखरेख में अपने तबादले का सामान पैक करवाती रहें। अब यदि आपके परिवार में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, तब भी सभी का ख्याल करते हुए काम करना मुश्किल हो जाता है।
इस दौरान उन्हें काम से थोड़ा अलग रखें और रसोई या बच्चों की ओर ध्यान रखने जैसे काम उन्हें दिए जा सकते हैं। बहनों, तबादलों के दौरान आप जब भी पुराने स्थान को छोड़ें, तब हो सके तब सभी संबंधितों से भेंट जरूर करें। सामान्यतः ये होता है कि आपके जाने के दिन नजदीक आते हैं, घर पर काम पड़ा होता है और आपके भले पड़ोसी आपको चाय का निमंत्रण देने लगते हैं। अब ऐसे में मना भी नहीं किया जाता और मन लगाकर जाया भी नहीं जाता। बेहतर यही होगा कि आपके तबादले की सूचना और शहर छोड़कर जाने की तारीख पहले से ही पड़ोसियों को बता दें। और यदि इस समस्या से बचना चाहते हैं तो बेहतर उपाय यही है कि यदि आपका तबादला जब भी होना है उसके 15 दिन पहले एक छोटा सा आयोजन अपने घर में ही रख लें और आपके जितने भी पड़ोसी हैं, सगे संबंधी हैं या फिर उस शहर में आपके जितने भी परिचित हैं, उन सभी को एक साथ एक आयोजन में अपने पास बुला लें। ऐसे में आपका बहुत सारा समय आसानी से बच जाएगा। अब चले उस जगह पर जहाँ हुआ है आपका तबादला। जी हाँ बहनों, नए स्थान पर जाकर आपको जिन बातों का ध्यान रखना है उसमें सबसे पहली, सबसे जरूरी, सबसे अहम बात है नजदीकी डॉक्टर को ढूंढकर उनसे परिचय करना। अब ऐसा क्यों? बहनों, अक्सर तबादले होते हैं बारिश के मौसम में, पहले ही मौसम खराब, उस पर काम का बोझ और नई जगह। ऐसे में यदि साथ में बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं तो खतरा और भी बढ़ जाता है। इसलिए रात बेरात किसी पड़ोसी को परेशान करने के स्थान पर कितना अच्छा होगा यदि आप ही के पास सारी जानकारी होगी, है ना? तो बहनों, नई जगह आने के बाद सबसे पहली बात ये भी करें कि इस बात की राह न देखें कि कोई आपसे मिलने आएगा। यदि कोई भला पड़ोसी आपको चाय नाश्ता पेश कर देता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन एक बात बताऊं कि एक शोध में भी यही कहा गया है कि वे ही नए पड़ोसी सबसे ज्यादा पसंद किए गए हैं जिन्होंने आगे रहकर अपना परिचय दिया हो। अब अपने सामान को लगा लेने के बाद कम से कम 2 दिनों तक खाने की व्यवस्था को हल्का फुल्का रखें। अब एक बार जब अपने नए घर में अच्छे से जम गए हैं, नए पड़ोसियों का साथ मिल गया है, तब एक फोन अपने पुराने पड़ोसियों को घुमा लें। उन्हें भी बता दें कि आप उन्हें याद करते हैं और ऐसा पड़ोस आपको कभी नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा नियोजन और थकान को भुलाकर किए जाने वाले छोटे छोटे व्यवहारिक काम आपके तबादले को एक सुखद अनुभव बना देंगे।

दोस्तों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण, जिसे प्रस्तुत कर रही थी नुपुर दीक्षित, और इनकी वार्ता का शीर्षक था तबादला और महिलाएं, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए साथियों, आप सुनते हैं भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वाज मुंबई की।

अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वाज मुंबई की। दोस्तों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्य स्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्य स्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva@satyaswar.yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। साथियों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मन दर्पण, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं वंदना तिवारी, और इनकी वार्ता का शीर्षक है नव विवाहिता के मन में झांके, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

श्रोताओं, मन दर्पण कार्यक्रम में प्रस्तुत है आज का विषय नव विवाहिता के मन में झांके। साथियों, मन दर्पण कार्यक्रम में हमेशा से ही मन में उठने वाली तरंगों, हिलोरों और विचारों का ये कार्यक्रम रहा है। हमेशा से ही विभिन्न परिस्थितियां मन पर अपना प्रभाव डालती आई हैं। सिर्फ परिस्थितियां ही क्यों, बारिश की एक फुहार और माटी से निकलती सम्मोहक सुगंध ही काफी होती है। मन में कितने ही ज्वार उमड़ते हैं और कल्पनाएं आकार लेती हैं। मन की यही गति उस समय द्रुत हो जाती है जब आपके जीवन की कोई चिर प्रतीक्षित और महत्वपूर्ण घटना होने वाली हो। और साथियों, ऐसे में यदि विवाह संस्कार की बात आती है तब मन प्रसन्न हो उठता है।

और वाकई जीवन में किसी नए साथी का आना, नए सपनों का खिलना कितना आनंद देता है। लेकिन आनंद के साथ ही विवाह नाम है बदलाव का। आपकी सोच में बदलाव, दिनचर्या में बदलाव और नजरिए में भी बदलाव। तो साथियों, इस कोण से देखेंगे तो पाएंगे कि विवाह के कारण किसी स्त्री के जीवन में सबसे ज्यादा बदलाव आते हैं। न केवल अपना घर, अपना नाम, उसे तो अपना पूरा वजूद ही बदल देना होता है। इस बदलाव से वो सही तरीके से अपना निभा भी नहीं कर पाती है कि उस पर लाद दिया जाता है अपेक्षाओं का बोझ। साथियों, हम हमारे आसपास ही देखें तो पाएंगे कि सबसे ज्यादा अपेक्षाएं टीका टिप्पणी और छींटाकशी नववधुओं पर ही तो की जाती है। किसी के भी घर जाने पर यही देखा जाता है कि नई दुल्हन सबके चरण स्पर्श करती है या नहीं, सभी को आदर देती है या नहीं, उसे काम काज का सलीका है या नहीं। लेकिन क्या कभी हम में से कोई ये सोचने की कोशिश करता है कि वो लड़की जो अपना जन्म स्थान, अपना परिवार, अपना नाम और पूरा अस्तित्व ही छोड़कर यहाँ आई है, क्या हम सभी उसकी अपेक्षाओं को पूरा कर पा रहे हैं? श्रोताओं, जब भी बात की जाती है किसी नवविवाहिता स्त्री की, तब हमेशा ये सोचा जाता है कि उसने घर के सभी सदस्यों के प्रति अपनी अपेक्षाएं पूरी करनी चाहिए। एक नवविवाहिता को हमेशा ही एक साधन संपन्न स्त्री समझा जाता है जिसकी समस्त इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। लेकिन श्रोताओं, एक नवविवाहिता का मन बड़ी कातर स्थिति से गुजरता है। जिस जीवन साथी के भरोसे उसने इस नए घर में कदम रखा है, उससे भी उसका पूरा परिचय नहीं होता। उसे स्वाभाविक ही हर क्षण अपने मायके की याद सताती है। वहाँ के सदस्यों की बातें, वहाँ का भोजन, बातचीत का तरीका और खुद उसे मिली हुई स्वतंत्रता, ये सब कुछ मिलकर उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहाँ वो बार बार तुलना करती है। यदि शहर नया हो, गलियां अनजानी हो, तो उसकी तकलीफ और भी बढ़ जाती है। जबकि हम सभी की हमेशा से ये सोच होती है कि एक नवविवाहिता स्त्री हमेशा से ही प्रसन्न, उत्फुल्ल और आनंद से भरपूर ही होगी। आखिर उसे अपने जीवन में नया साथी जो मिल गया है, एक नया परिवार, एक नया घर जो मिल गया है, जिसे वो सिर्फ अपना कह सकती है। लेकिन ये तो सोचे कि जब भी कोई पौधा किसी एक आंगन से उखाड़कर दूसरे आंगन में लगाया जाता है, तब उसे नए आंगन में अपनी जड़ें जमाने में थोड़ा समय तो लगता है। इसके अलावा नववधु के प्रत्येक कार्य को बड़ी बारीक नजर से देखा जाता है। उसका पहनावा, खान पान, बातचीत का तरीका, इन सभी को ससुराल की तर्ज पर ढालने का प्रयत्न किया जाता है। उसकी उपलब्धियां, उसके गुण तो जैसे गौण हो जाते हैं। वो जितना सामंजस्य बैठाए उतनी अच्छी। अपने मायके के बारे में बातें करे तो सभी को तकलीफ। उसकी सारी बातें उसके पति से शुरू होनी चाहिए और परिवार वालों की पसंद नापसंद का ख्याल भी उसे ही रखना है। भले ही उसकी पसंद नापसंद से किसी को कोई लेना देना ही ना हो। अब ऐसी स्थिति में एक नवविवाहिता स्त्री का मन सभी संबंधों की पड़ताल करता है। वो सभी स्थितियों की, सभी संबंधों की तुलना करती है। अपनी सास की तुलना अपनी माँ से, देवर की तुलना अपने भाई से और इस घर की तुलना उस घर से। उसे वाकई आश्चर्य होता है इस सोच से कि जिन व्यक्तियों को उसने आज से महीना भर पहले तक कभी देखा भी नहीं था, अचानक वो अपने मन में इन सभी के प्रति आदर सम्मान का भाव कैसे ले आए। यदि हम कभी नवविवाहिता के मन में झांक कर देखेंगे तो अनेक प्रश्न पाएंगे। इनमें से कई प्रश्न तो समय के साथ ही अपने उत्तर पाते हैं और कई के उत्तर न मिलने की स्थिति में स्त्री उसे अपनी नियति मान लेती है। क्या परिस्थितियों से समझौता करना ही परिपक्वता है?
आज कोई स्त्री अपने दमन को चुपचाप सह ले तो उसे सहनशील और स्त्रीयोचित कहा जाता है। वहीं अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाली स्त्री को आज भी समाज स्वीकार नहीं करता। श्रोताओं, नवविवाहिता का मन एक शिशु के मन की भांति होता है। ससुराल में पहले कुछ महीनों में उसे मिलने वाला व्यवहार जीवन पर्यंत उसके मन में अंकित होता है। खासकर इसी समय जब भी जो व्यवहार उसके साथ होता है, जिस प्रकार का वातावरण उसे मिलता है, उसी आधार पर वो अपने ससुराल पक्ष के लोगों के व्यक्तित्व को लेकर अपने मन में एक बात बना लेती है। और दूसरी खास बात यह है कि वो अपने प्रति ससुराल के अच्छे व्यवहार को लेकर उतनी प्रसन्न नहीं होती जितना कि अपने मायके के प्रति उनके व्यवहार से। कहा भी जाता है कि आप यदि अपनी पत्नी को बनारसी साड़ी भी लाकर देंगे तो वो मुस्कुराएगी, लेकिन अपनी सास को कॉटन की साड़ी भर दे देने से आपकी पत्नी खिलखिलाएगी। खैर श्रोताओं, इन बातों को मजाक में न लेते हुए हम ये सोचें कि एक नवविवाहिता जिस तरीके से अपना सारा जीवन एक परिवार के लिए समर्पित कर देती है, उसी से ये सिद्ध होता है कि नारी की क्षमताएं असीम हैं। उनकी संवेदनाओं को यदि आप प्रेम और विश्वास से अपनाएंगे तो प्रत्येक परिवार खुशहाल हो सकेगा। और यदि हम इन बातों को प्रायोगिक तरीके से ले श्रोताओं, तो हम हमेशा ये पाएंगे कि ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। इन बातों को सिद्धांतों के तौर पर लेना हमें बहुत भाता है। हम सहमत भी होते हैं कि हाँ, हमें नारी का सम्मान करना है, हाँ हमें उससे उसके हक दिलवाने हैं, हाँ हमें नवविवाहिता को एक बहुत अच्छे व्यवहार के लिए तैयार करना है, लेकिन क्या आपने कभी मुड़कर अपने घर की ओर देखा? क्या आपके घर में कोई ऐसी स्त्री है जो नवविवाहिता है? क्या आपकी बहन है? क्या आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई अन्याय तो उस पर नहीं हो रहा? आप अपने गरिमा में झांकिए, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर सहज मिलेंगे। नारी के आत्मसम्मान को बनाए रखना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जैसे पुरुष के हृदय का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, वैसे ही स्त्री के हृदय का रास्ता उसके मन से होकर जाता है। उसके मन में झांक कर देखेंगे तो असंख्य सपनों की तितलियां और कल्पनाओं के ज्वार नजर आएंगे। जरूरत है इन्हें अपनाने की और उसे अपना वजूद बनाने के लिए स्थान देने की। आशा करते हैं आने वाले समय में आप भी जब भी परिवार में किसी नवविवाहिता को देखेंगे, उसके मन में जरूर झांकेंगे।

साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम मन दर्पण, जिसे प्रस्तुत कर रही थी वंदना तिवारी, और इनकी वार्ता का शीर्षक था नवविवाहिता के मन में झांके, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आइए सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वाज मुंबई की।

दोस्तों अभी आपने सुना एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वाज मुंबई की। तो आइए दोस्तों अब सुनते हैं कार्यक्रम पर्यावरण, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं माइकल होजेस और इनकी वार्ता का शीर्षक है मानव जीवन के लिए अभिशाप बेकार प्लास्टिक और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

पर्यावरण के अंतर्गत प्रस्तुत है वार्ता मानव जीवन के लिए अभिशाप बेकार प्लास्टिक। इसके लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं माइकल हॉजिस। श्रोता साथियों, मानव द्वारा स्वयं की सुविधा के लिए किया गया प्लास्टिक का आविष्कार आज उसके जीवन के लिए अभिशाप भी बन गया है। आज पर्यावरण को सबसे अधिक दूषित करने वाला यदि कोई पदार्थ है तो वह बेकार प्लास्टिक ही है। एक जमाना था जब मानव जीवन में ग्लास, प्लेट, जूते, चप्पल जैसी वस्तुओं तक एक सीमित उपयोग ही था प्लास्टिक का। किंतु समय के साथ साथ भार में हल्का होने, मौसम से अप्रभावित रहने और टिकाऊ क्षमता के कारण आज प्लास्टिक मानव जीवन का एक मुख्य भाग बन गया है। लेकिन प्लास्टिक के साथ एक विडंबना भी जुड़ी हुई है। प्लास्टिक जब मानव के काम आ रहा होता है तो लगता है कि इससे अच्छा काम में आने वाला पदार्थ और कोई नहीं है। लेकिन जब यही पदार्थ मानव जीवन में अपने कार्य की उम्र पूरी कर लेता है तो फिर प्लास्टिक से बेकार पदार्थ और कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आज समय की मांग के अनुसार पॉलिथीन से लेकर बड़ी बड़ी टंकियों और आकाश में उड़ने वाले वायुयान तथा पानी में चलने वाले जहाज और सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियों के निर्माण में भी प्लास्टिक का उपयोग आम बात हो गई है। आज मानव जीवन में प्लास्टिक की इतनी पैठ हो गई है कि कोई भी वैवाहिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो बिना प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुओं के संपन्न ही नहीं होता है। अब मानव जीवन में प्लास्टिक का इतना अधिक दखल हो गया है कि प्लास्टिक के बिना आज मानव जीवन और उसकी सुविधाओं की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। श्रोता साथियों, यह बात इस उदाहरण से भी स्पष्ट हो जाती है कि पहले व्यक्ति जब कभी बाजार जाता था तो अपने साथ कपड़े का थैला या थैली जरूर लेकर जाया करता था। लेकिन आज का व्यक्ति ऑफिस से, पिकनिक से या कहीं से और कभी भी बाजार से सामान ले आता है, क्योंकि अब बाजार में पॉलिथीन की थैली में सामान देने का प्रचलन आम हो गया है। अब व्यक्ति को बाजार जाते समय न तो कपड़े की थैली लेकर जाने की जरूरत है और न ही रुपये लेकर जाने की। अब व्यक्ति थैली दुकानदार से ले लेता है और रुपये एटीएम से। आजकल के बड़े दुकानदारों ने भी प्लास्टिक की थैली पर अपनी दुकान का नाम छपवाकर प्रचार का नया तरीका निकाला है और प्लास्टिक के उपयोग को और भी बढ़ावा दिया है। व्यक्ति की प्लास्टिक के प्राय बढ़ती मानसिकता के कारण ही आज कई छोटी बड़ी कंपनियां न केवल आवश्यक घरेलू वस्तुओं को बल्कि कई खाद्य पदार्थों को भी वायुदाब के प्लास्टिक के पैकेट्स में बिकने के लिए प्रस्तुत करती हैं। प्लास्टिक निर्माताओं ने भी मांग और मांग की आपूर्ति को देखते हुए ही अपना माल बाजार में उतारा है। लोगों ने प्लास्टिक के इस माल को हाथों हाथ भी लिया है। प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माताओं ने जब देखा कि वन संपदा संरक्षण कानून लागू होने से वन में से लकड़ियों की प्राप्ति सहज और सुलभ नहीं रही है तो उन्होंने लकड़ी के विकल्प के रूप में बाजार में प्लास्टिक को उतार दिया। उन्होंने प्लास्टिक से उन सारी वस्तुओं का निर्माण शुरू कर दिया जो अब तक केवल लकड़ियों से ही बनाई जाती थी। इसके बाद लकड़ियों और बांस की अप्राप्ति की वजह से जब कागज के दाम आसमान छूने लगे तो इन्हीं प्लास्टिक निर्माताओं ने प्लास्टिक को भी कागज के विकल्प के रूप में लोगों के हाथ में थमा दिया। परिणाम स्वरूप आज बाजार में प्लास्टिक के विजिटिंग कार्ड्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, कैलेंडर्स और फाइल्स आदि देखने को मिलती हैं। एक समय था जब किसी वैवाहिक कार्यक्रम में या अन्य किसी कार्यक्रम में टीन के पाइप पर प्लास्टिक के तार की बुनी हुई कुर्सियों का प्रचलन अधिक था, किंतु वर्तमान में पूरी तरह से प्लास्टिक से बनी हुई कुर्सियों ने उक्त पुरानी कुर्सियों को प्रचलन से बाहर कर दिया है। यहां भी प्लास्टिक को उसकी मजबूती, टिकाऊ और मौसम से अप्रभावित उसके गुणों के कारण ही लोगों द्वारा अपनाया गया। ऐसा भी नहीं है कि प्लास्टिक की क्रांति केवल वयस्कों के जीवन में ही आई है। प्लास्टिक पदार्थों ने बच्चों के संसार में भी समान रूप से घुसपैठ की है। पूर्व की अपेक्षा आज बच्चों के खिलौने और उनकी अन्य सुविधाओं के साधन भी प्लास्टिक से बनाने का चलन जोरों पर है। वहां यह भी एक वास्तविकता ही है कि प्लास्टिक निर्मित वस्तुएं पतरे की अपेक्षा
बच्चों के लिए बेहद सुरक्षात्मक ही है। इस कारण बच्चों को चोट लगने और हानि पहुंचने के अवसर बहुत कम न के बराबर हो जाते हैं। प्लास्टिक को ढालकर मनचाहे आकार में बनाना भी प्लास्टिक का एक मुख्य गुण ही कहा जा सकता है। श्रोता साथियों, यदि हम चिकित्सा के क्षेत्र में प्लास्टिक के उपयोग की बात करें तो वहां पर भी प्लास्टिक का बहुआयामी और बहु उपयोग किसी से छिपा नहीं है। यदि किसी भी अस्पताल, नर्सिंग होम्स अथवा क्लिनिक पर एक नजर डाली जाए तो बोतल, पीने की दवाएं, मलहम, सिरिंज से लेकर ड्रिप और ऑपरेशन से लेकर उपचार तक में हमें प्लास्टिक के सहज ही दर्शन हो जाते हैं। इसलिए निसंकोच रूप से यह कहा जा सकता है कि समाज का कोई भी वर्ग आज प्लास्टिक से अछूता नहीं है। यहाँ तक कि सेना भी आज प्लास्टिक के उपयोग से वंचित नहीं है। आज सेना में उसके साजो सामान के साथ साथ बंदूकों के हत्थे, जो कभी लकड़ी से बनाए जाते थे, आज प्लास्टिक से बनाए जाने लगे हैं। क्योंकि प्लास्टिक हर हाल में लकड़ी से हल्का ही होता है, इसलिए उसको लकड़ी और अन्य पदार्थों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाने लगी है। निसंकोच रूप से यह कहा जा सकता है कि आज समाज का कोई भी वर्ग प्लास्टिक से अछूता नहीं है। आज प्लास्टिक ने घर घर में प्रवेश कर लिया है। जहां उच्च, मध्यम और निम्न वर्ग प्लास्टिक पर आधारित जीवन जी रहा है, वहीं समाज के सबसे निचले तबके, झोपड़पट्टी में भी प्लास्टिक को बहुतायत में उपयोग करते हुए देखा जा सकता है। जहां वे पीने और खर्च के पानी को प्लास्टिक के बर्तनों में रखते हैं, वहीं वे प्लास्टिक को बिछौने, दीवार और छत के रूप में भी उपयोग करते हैं। जमीन पर बैठने और सोने के लिए वे प्लास्टिक को सबसे अच्छा साधन मानते हैं। रही प्लास्टिक की छत की बात, तो ये गरीब तबका प्लास्टिक की छत के नीचे ही वर्षा ऋतु के पूरे 4 माह बिताकर गर्मी और ठंड में भी इसी प्लास्टिक का सहारा लेता है। प्लास्टिक निर्मित अपनी झोपड़ी में मौसम की सारी ऋतुएं बिताना उसे सहज लगता है, क्योंकि प्लास्टिक सस्ता, मजबूत और टिकाऊ होता है। उपयोग पश्चात यहाँ वहाँ फेंकी गई प्लास्टिक की थैलियों को खाकर जाने अनजाने में पशु पक्षी भी असम ही कालकल्वित होते रहते हैं। पॉलिथीन और प्लास्टिक की प्रवृत्ति अस्थायी न होने के कारण ये मिट्टी में दबकर उसकी उर्वरता को भी नष्ट किए दे रहे हैं। यह प्लास्टिक का गुण है या अवगुण, वह मिट्टी में दबने के बाद भी नष्ट नहीं होता है। इस प्रकार से प्लास्टिक मिट्टी में न रहकर केवल उसकी उर्वरता को ही नष्ट नहीं कर रहा है, बल्कि मिट्टी की जल संग्रहण क्षमता को भी नष्ट कर रहा है अथवा कम कर रहा है। क्योंकि मिट्टी में दबे प्लास्टिक के कारण ही धरती पर गिरा वर्षा जनित जल मिट्टी की अनंत तहों में नहीं पहुंच पाता है, इसलिए वह संग्रहित नहीं हो पाता है। क्योंकि ऊपर पड़ा दबा प्लास्टिक उसे मिट्टी की सतह में जाने नहीं देता है। श्रोता साथियों, प्लास्टिक के इन तमाम अवगुणों के कारण अब व्यक्ति को प्लास्टिक और प्लास्टिक के अंधाधुंध उपयोग या प्रयोग के प्रति सचेत हो जाना चाहिए। क्योंकि प्लास्टिक के कचरे की समस्या दिनों दिन एक गंभीर समस्या का रूप धारण करती जा रही है। क्योंकि प्लास्टिक न तो पड़े पड़े स्वयं ही नष्ट होता है और न ही जलाने पर पर्यावरण को नुकसान से बचा पाता है। श्रोता साथियों, यदि विशेष परिस्थितियों में प्लास्टिक उपयोग किया भी जाए तो प्रयोग के पश्चात प्लास्टिक के कचरे को सामान्य कचरे के साथ मिलाकर न रखें, बल्कि उसे एक अलग बास्केट या एक कोठी में रखें और प्लास्टिक बीनने वालों के हाथों में दे दें। इसलिए प्लास्टिक के उपयोग के प्रति अत्यंत सावधानी रखें, यह आपके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है।

अभी आपने सुना कार्यक्रम पर्यावरण, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे माइकल होजेस, और इनकी वार्ता का शीर्षक था मानव जीवन के लिए अभिशाप, बेकार प्लास्टिक, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, इसी के साथ आज्ञा दीजिए ग्लोरिया कांगले को। अगली मुलाकात में आपसे बात करेंगे विवेक पीटर रॉबर्ट।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोताओं को आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी की समय सारिणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक स्वास्थ्य और बाल जगत। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बाल जगत से, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं हमारी बाल कलाकार मल्लिन जेकब, और उनकी कहानी का शीर्षक है अकल भड़ी या भैंस।

बाल मित्रों, आपकी बहन मर्लिन का नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है अक्कल बड़ी या भैंस। तो आइए यह कहानी सुनते हैं। बुद्धि तथा अबुद्धि दो भाई थे। इनमें से बुद्धि बड़ा भाई था, जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था। छोटा भाई संस्कृत ही जानता था, इस पर भी उसके पास बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं थी। मोटी अकल का होने के कारण जो भी बात उससे कही जाती वह उसे मान लेता। दोनों भाइयों में अति प्रेम था। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसका गौना होना शेष रह गया था। यह भी एक विचित्र बात थी कि गौने के लिए जिस दिन वह जाने वाला था, उस दिन बुद्धि के कारोबार के विषय में बहुत जरूरी काम से जाना पड़ गया था। धन का लोभ कभी कभी इंसान को मजबूर कर देता है। यही हाल हुआ था बुद्धि का। एक और गौना तो दूसरी ओर हजारों रुपयों का लाभ। अब इन दोनों में से किसे छोड़े? यही सोचकर बुद्धि ने अपने विवेक पर जोर डाला और अंत में वह इस निर्णय पर पहुंचा कि गौना तो उसका भाई भी करा के ले आएगा, इसीलिए अच्छा यही होगा कि अबुद्धि को गौना कराने के लिए भेज दिया जाए और वह स्वयं धन कमाने चला जाए। इस प्रकार से एक पंथ दो काज हो जाएंगे। यही फैसला करके बुद्धि अपने छोटे भाई अबुद्धि को अपने पास बुलाया और अपनी सारी योजना उसे बताते हुए कहा, देखो भाई अबुद्धि, तुम मेरी ससुराल जाकर अपनी भाभी को लिवा लाओ। मैं उस व्यापारी से धन कमाकर लाता हूँ, परंतु इस बात का ध्यान रहे कि ससुराल वालों के घर जाकर अधिक बोलना अच्छा नहीं होता। वहाँ जैसे ही तुमसे कोई प्रश्न करे तो बस हाँ या ना में उत्तर दे देना। ठीक है भैया, जैसे आपकी आज्ञा होगी वैसे ही मैं करूँगा। हाँ और नहीं से अधिक और कुछ नहीं कहूँगा। यह कहकर अबुद्धि वहाँ से उठ खड़ा हुआ। अब दोनों भाई अपने अपने कामों में चल पड़े। अबुद्धि अपने भाई की ससुराल जा पहुँचा तो ससुराल के लोगों ने उसे घेर लिया। गांव के लोग घर आए मेहमान के स्वागत के लिए इकट्ठे हो गए और उससे पूछने लगे कि भाई, तुम्हारे गांव वाले तथा घर के लोग तो कुशलतापूर्वक हैं। अबुद्धि को अपने भाई का यही आदेश मिला था कि उसने हर प्रश्न का उत्तर हाँ और नहीं में ही देना है, इसीलिए उसने झट से कहा, हाँ हाँ सब कुशल से हैं। फिर लोगों ने पूछा, क्या घर में कोई बीमारी है? क्या तुम्हारा भाई बीमार है? जी हाँ, अबुद्धि बोला। क्या उसको दवाई दारू दे रहे हो? जी हाँ। क्या अधिक बीमार है? हाँ हाँ। अबुद्धि का यह उत्तर सुनकर सब लोग निराश हो गए। उन्होंने अबुद्धि की ओर निराशा भरी दृष्टि डालते हुए फिर पूछा कि उसके बचने की उम्मीद है या नहीं। नहीं, फिर क्या था? अबुद्धि के मुख से तो यह शब्द सुनकर सब लोग जोर जोर से रोने लगे। उन्हें रोते देखकर अबुद्धि भी रोने लगा। अबुद्धि को रोते देखकर तो उन्हें इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि बुद्धि वास्तव में ही बहुत बीमार है, उसके बचने की कोई आशा नहीं है। सारा दिन इसी तरह रोते पीटते गुजर गया। दूसरे दिन सुबह उठते ही अबुद्धि जैसे ही अपनी भाभी को ले जाने को तैयार हुआ तो लड़की वालों ने उसे साफ कह दिया कि हम तो अपनी लड़की को विदा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि इसका पति इसके जाने तक जीवित नहीं रहेगा। अब तो यह विधवा जैसे ही चुकी है। ससुराल वालों का यह जवाब सुनकर अबुद्धि वहाँ से वापस चल पड़ा। जैसे ही वह अकेला घर वापस आया तो बड़े भाई बुद्धि ने उससे पूछा, क्यों भाई अपनी भाभी को नहीं लाए? भैया, वह तो विधवा हो गई, उन्हें भला कैसे लेकर आता? यह तुम क्या कह रहे हो अबुद्धि? जब मैं जीवित हूँ तो वह कैसे विधवा हो सकती है? मुझे क्या पता भैया, मैं तो उनकी हर बात का आपकी आज्ञा के अनुसार हाँ न में उत्तर दे रहा हूँ।
उन्होंने कहा, तुम बीमार हो? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा, अधिक बीमार हो? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा, बचने की कोई आशा नहीं? मैंने कहा नहीं। बस बस अबुद्धि, बस। बुद्धि अपने माथे पर हाथ मारते हुए अपना सिर पीट लिया और उसी समय घोड़े पर सवार होकर अपने ससुराल जा पहुंचा और उन्हें सारी बात समझाई। उसके छोटे भाई अबुद्धि के कारण सबको जो कष्ट हुआ, उसके लिए बुद्धि ने सबसे माफी मांगी। उसे जीवित देखकर सब लोग बहुत प्रसन्न थे। घर के बड़े बूढ़ों ने कहा, बेटा अक्कल भरी या भैंस? इस बात को सुनकर सब जोर जोर से हंस पड़े।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल जगत के अंतर्गत एक कहानी, जिसे प्रस्तुत कर रही थी हमारी बाल कलाकार मदलिन जेकब, और उनकी कहानी का शीर्षक था अकल बड़ी या भैंस। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं एक बाल गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक बाल गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए साथियों, अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल जगत के अंतर्गत एक कहानी जिसे प्रस्तुत कर रही हैं हमारी बाल कलाकार मल्ली जेकब, और उनकी कहानी का शीर्षक है मदद।

मदद। निकिता ने अभी अभी सातवीं क्लास में एडमिशन लिया था। वह क्लास में चुपचाप बैठी रहती थी। वह न किसी से कुछ बोलती थी, न किसी के साथ खेलती थी। वह इस शहर में नई नई आई थी। क्लास के सभी लड़कियां सोचती थी कि निकिता घमंडी है, इसीलिए वह किसी से बोलती नहीं है। निकिता के बगल वाली सीट पर राधा बैठती थी। एक दिन राधा बहुत परेशान थी। निकिता राधा को देखकर समझ गई थी कि वह परेशान है, पर वह उससे कुछ पूछने की हिम्मत न जुटा सकी। तभी जूही ने राधा से उसकी परेशानी का कारण पूछा। राधा रोने लगी तो जूही ने उसे चुप कराते हुए कहा, राधा बताओ तो बात क्या है। रोने से काम नहीं चलने वाला है, राधा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। मेरी माँ बीमार है, वह सिलाई का काम करती है, तब जाकर हमें पैसे मिलते हैं और मैं स्कूल की फीस भर पाती हूँ। लेकिन अब माँ ग्राहकों के कपड़े सही समय पर नहीं सिल पाएगी और मैं स्कूल की फीस नहीं भर पाऊंगी। तो तुम वे कपड़े सिल दो। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिलाई नहीं सिखाई, जूही ने कहा। उन्होंने तो कई बार सिखाने की कोशिश की, पर मैंने ही आलस के कारण नहीं सीखी। हर दिन मैं कल पर बात टाल देती थी, राधा ने बताया। तुम कहो तो मैं तुम्हारी फीस भर देती हूँ, मैं अपने पापा से कह दूंगी, जूही ने राधा के सामने प्रस्ताव रखा। नहीं नहीं, हरगिज नहीं, राधा ने कहा। निकिता ने जूही और राधा के बीच हुई पूरी बात सुन ली थी। वह राधा की परेशानी का कारण समझ गई थी। शाम को छुट्टी के बाद जब राधा घर पहुंची, तो उसने देखा कि निकिता पहले से ही उसके घर पहुंची हुई है और उसकी माँ के सिराहने बैठकर उनका सिर दबा रही है। राधा चौंक कर बोली, तुम यहाँ? वह जब मुझे पता लगा कि तुम्हारी माँ बीमार है तो मैं उन्हें देखने चली आई। यह कहते कहते निकिता का गला रुंध गया और आंख से आंसू बह निकले। राधा ने अपना बैग रखकर निकिता को चुप कराया। निकिता बोली, दरअसल मेरी माँ नहीं है, उन्हें मरे एक साल हो गए हैं। पिताजी अक्सर ऑफिस के काम से घर से बाहर ही रहते हैं, इसीलिए मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। साथ ही मुझे किसी से भी जुड़ने में बहुत डर लगता है कि कहीं उससे अलग ना होना पड़े। बस इसी डर के कारण मैं किसी से दोस्ती नहीं करती। राधा की माँ निकिता को पुचकारते हुए बोली, बेटी जब भी तेरा मन करे तू तो यहाँ चली आया कर, मैं हूँ ना तेरी माँ, आज से अपने को अकेला मत समझना और मैं तुम्हारी दोस्त, मेरे रहते तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा, मैं स्कूल में हर समय तुम्हारे साथ रहूंगी, राधा ने निकिता के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा। राधा और निकिता दोनों अब दोस्त बन गई थी। निकिता धीरे धीरे राधा की मदद से क्लास में भी घुल मिल गई थी। एक दिन प्रिंसिपल ने राधा को बुलाकर कहा, राधा तुम्हारी फीस भर दी गई है, अब तुम अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हो। कैसे, किसने भरी मेरी फीस, राधा ने चौंकते हुए पूछा। प्रिंसिपल ने बताया, निकिता ने तुम्हारी फीस भर दी है, उसने कपड़े सिलने में तुम्हारी माँ की सहायता की, जिस कारण वे सही समय पर ग्राहकों को उनके कपड़े दे सकी। राधा यह सुनकर चकित रह गई। वह दौड़कर निकिता के पास गई और उसे धन्यवाद देते हुए बोली, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, सबसे अच्छी। निकिता बस मुस्कुरा दी।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल जगत के अंतर्गत एक कहानी, जिसे प्रस्तुत कर रही थी हमारी बाल कलाकार मल्लिन जेकब, और उनकी कहानी का शीर्षक था मदद। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, अब हम अपनी समय सारणी के अनुसार हमारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक से, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: इधर हेरोद अब तक उन ज्योतियों का रास्ता देख रहा था, मगर जब वे ना पहुंचे तो क्रोध में हेरोद सोचने लगा,
1: लगता है इन राजाओं ने मुझे धोखा दिया है। हो ना हो ये मुझसे अधिकार और मेरा राज्य छीनने का कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, मगर मुझे खामोश नहीं बैठना है। कुछ ना कुछ युक्ति जरूर सोच निकालनी है, पर कैसी युक्ति? हत्या। प्यादों, बेथलहम और उसके आसपास के सभी क्षेत्रों में जाकर 2 बरस तथा उससे छोटे सभी बच्चों को मरवा डालो। और याद रहे, एक ही बालक न बचने पाए, यहूदियों का राजा।
0: यहाँ हेरोदेस का सत्ता अभिमान सर चढ़कर बोल रहा था, तो वहीं विनम्र और धार्मिक दंपति मरियम और यूसुफ प्रार्थना में मगन थे। तभी
2: यूसुफ, उठो, बालक और उसकी माता को लेकर मिश्र देश चले जाओ, क्योंकि हेरोद बच्चे को मार डालना चाहता है, और तब तक मिस्र में रहो जब तक मैं न कहूं।
3: मरियम, मरियम, हमें तुरंत यहां से बाहर निकलना है, क्योंकि स्वर्गदूत ने मुझसे कहा कि हेरोद बच्चे की जान लेना चाहता है। मेरी प्रिय पत्नी, तैयारी करो कि तुम इस यात्रा का कष्ट सहन कर सको, और मुझे बताओ कि मैं उन्हें कम करने में कैसे मदद करूं।
4: मेरे स्वामी, यदि हमें ईश्वर से इतने वरदान और कृपाएं मिली हैं, तो हमें थोड़ी बहुत कठिनाई खुशी से झेलनी होगी। हम जहां भी जाएंगे, हम अपने ईश्वर के साथ जाएंगे। वे ही हमारे रक्षक, वही हमारा शरण स्थल है। चलो हम उनकी पवित्र इच्छा पूरी करें।
3: हाँ मरियम।
0: राजा हेरोदेस की क्रूरता से बच ये दंपत्ति भाग निकले। उन्हें चिंता नहीं थी कि सफर कितना कठिन होगा, उन्हें फिक्र थी तो मात्र प्रभु के बेटे के अमूल्य जीवन की। राजा हेरोद उन कई सरकारी अधिकारियों व शासकों के मात्र उदाहरण थे, जिन्हें अपने अधिकार को लेकर हमेशा भय बना रहता है। वे ये नहीं सोचते कि उनके अधिकार व सत्ता की ये भूख कितने मासूम, कितने निर्दोषों का रक्त पी रही है। लेकिन फिर भी उनका ये अन्याय, ये रक्तपात ईश्वर की योजना पूरी होने से कैसे रोक सकता है? बेथलहम में माताओं का करुण क्रंदन सुनाई पड़ रहा था। राजा के सैनिक इन निर्दोष बच्चों को उनकी गोद से छीन छीन कर मौत के घाट उतार रहे थे। ओह, कितना करुण दृश्य था ये। अपनी ही संतान का बिना किसी अपराध के ये वध, किससे विनय करें, कौन पुकार सुने? जब सबके सिर पर राजा के क्रोध और ईर्ष्या की तलवार लटकी हो, माताओं के इस क्रंदन ने नबी यरमाया की ये भविष्यवाणी पूरी कर दी। रामा में रुदन और विलाप सुनाई दिया, राखेल अपने बच्चों के लिए रो रही है और किसी को अपने आंसू पोंछने नहीं देती, क्योंकि वे अब नहीं रहे। उधर मरियम और यूसुफ बच तो निकले, मगर वे उन बच्चों को नहीं भूले जिन्हें उनके बेटे के कारण अपनी आहुति देनी पड़ी थी। मरियम व यूसुफ ने उन मासूम बच्चों की आत्माओं के लिए प्रार्थना की।
3: मरियम, बढ़ई का काम तो मैं कर ही रहा हूं, मगर मुझे दुख है कि तुम दोनों को हर तरह की सुविधा नहीं दे पा रहा हूं। यहां जो काम करवाने आते हैं उनका व्यवहार भी मेरे प्रति ठीक नहीं रहता है। मेरे साथ विदेशी और एक शरणार्थी का सा व्यवहार करते हैं,
4: निराश न हो यूसुफ, हम इस गरीबी में भी संतुष्टि और खुशी से जी लेंगे। और हाँ, अब मैं भी आपके काम में हाथ बटाया करूंगी। मुझे सिलाई कढ़ाई का ज्ञान है, मैं यहाँ आसपास की महिलाओं के लिए काम किया करूंगी।
3: लेकिन मरियम।
4: अरे तुम चिंता मत करो यूसुफ,
0: कड़ी मेहनत करने के बाद जब वे नन्हे ईसा की ओर देखते या उसे गोद में उठाते तो उनकी थकान व दर्द पल भर में दूर हो जाते और वे उसी के प्यार के लिए सारी कठिनाई हंसते मुस्कुराते झेल लेते। बाल ईसा

0: नम्र व्यवहार तथा बालक की अद्भुत क्षमता ने शीघ्र ही मिस्रियों के बीच अपनी जान पहचान बना ली। लोग उनसे शिक्षा ग्रहण करते और बुरे कर्म त्याग अच्छा जीवन जीने का प्रण कर लेते। मगर कुछ ही वर्षों बाद एक रोज
1: यूसुफ, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल देश चले जाइए।
2: इज़राइल?
1: क्योंकि वे जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर चुके हैं।
2: ओह, मरियम, मरियम, ईसा, चलो हमें अपने देश इज़राइल चलना होगा, क्योंकि हेरोद की मृत्यु हो गई है और अब हमें कोई खतरा नहीं है। प्रभु के दूत ने मुझसे कहा है कि मैं तुम दोनों को इज़राइल ले जाऊं।
3: हमें ईश्वर की इच्छा पूरी करने में देरी नहीं करनी चाहिए।
0: बिना देरी किए वे तीनों इज़राइल अपने पूर्वजों के देश की ओर रवाना हो गए। उनके आसपास के यहूदी व मिस्री मित्र उनके विछोह से दुखी थे, मगर ईश्वर की इच्छा वे कैसे टाल सकती थी। यूसुफ अपने वफादार गधे पर मरियम और बालक ईसा को बैठाकर अपने पूर्वजों के देश चल पड़े। जब वे फिलिस्तीन पहुंचे तो उन्हें पता चला कि नया राजा आर्खेलोस राज्य कर रहा है और वो बहुत क्रूर है। तो यूसुफ वहां ठहरने से भयभीत था, मगर स्वर्गदूत की प्रेरणा से वो अपने पुराने घर नाजरेत में आ गए। यूसुफ की चचेरी बहन उनकी उपस्थिति में उस घर की देखरेख कर रही थी। जब उसने इन तीनों को सुरक्षित देखा तो जमीन पर सर टेक कर प्रभु को धन्यवाद दिया। जीवन एक बार फिर अपने पुराने तरीके से चलने लगा। यूसुफ बढ़ाईगिरी में व्यस्त तो मरियम घरेलू कामकाज के साथ साथ प्रार्थना में, और बाल ईसा न सिर्फ माता पिता के काम में मदद करते मगर अपने मित्रों के साथ भी समय बिताते। उनके आसपास के बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे। खेलकूद के साथ ही वे बच्चों के साथ प्रार्थना भी करते और बच्चों को माता पिता का आज्ञाकारी बनने की सलाह देते।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉयड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्य स्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्य स्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हम

संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भंवर कुआं पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, हमारी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का, कार्यक्रम स्वास्थ्य का। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक है बदलते मौसम में जरूरी है सावधानी, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

साथियों नमस्कार, स्वास्थ्य और पर्यावरण कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, जरूरी है हम सभी सावधानी बरतें, और यही कारण है कि आज के हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण कार्यक्रम का विषय है बदलते मौसम में जरूरी है सावधानी। साथियों, स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी कहते हैं कि जो लोग मौसम बदलने के साथ खाने पीने की आदतों में सुधार नहीं लाते, उनकी पाचन प्रणाली पर बुरा असर पड़ता है। अब मौसम बदलने के साथ खाने पीने और कपड़े पहनने की आदतों को आप नहीं सुधारेंगे तो जाहिर है आप पर प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो साथियों, सर्दियां शुरू हो चुकी होती हैं, लेकिन आपको दिखाना होता है कि हम पर तो सर्दियों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, हम तो गर्मियों के ही वस्त्र पहनेंगे। या फिर बारिश शुरू हो चुकी है, भीगने में बहुत मजा आता है, चाहे हम कितने भी गीले हो जाएं, हमारे स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ता, हमारी त्वचा तो बिल्कुल अच्छी रहती है। ये आदतें आगे चलकर आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती हैं। साथियों, यदि मौसम बदल रहा है तो आपको भी बदलना ही चाहिए। आपकी शारीरिक स्वास्थ्य की प्रणाली बदलते मौसम के हिसाब से आपको ढाल जरूर देती है, लेकिन आपकी आदतों को लेकर वो कुछ नहीं कर सकती। साथियों, पेट के रोग साधारणतः इन्हीं कारणों के चलते होते हैं। निमोनिया या फिर दूसरे पाचन तंत्र के रोग होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि व्यक्ति बारिश के मौसम में उचित खान पान नहीं रखते, ठंड के मौसम में उचित वस्त्र नहीं पहनते, गर्मियों के मौसम में पसीने को निकल जाने के लिए सही राह नहीं देते। साथियों, आधुनिक जीवन शैली के चलते प्रत्येक के घर में वातानुकूलन यंत्र है, लेकिन यदि बाहर 45 डिग्री का तापमान है और आप 20 डिग्री वातानुकूलन के यंत्र के तापमान से एकदम बाहर जाएंगे, तब वाकई जो असर आपकी त्वचा पर पड़ना है, आपके शारीरिक तापमान पर पड़ना है, वो हम सभी को ज्ञात है। हम सभी बचपन से ये सुनते आए हैं कि बाहर से अचानक दौड़कर यदि आप घर में आए हैं तब आपको सीधे पानी नहीं पीना है, शांति से बैठिए, थोड़ी देर आराम कीजिए, उसके बाद पानी पीजिए। लेकिन इन दिनों ये सारे नुस्खे सिर्फ सुने जाते हैं और सुनाए जाते हैं, उनका पालन नहीं किया जाता। साथियों, प्रदूषित वातावरण, शुद्ध पानी नहीं होना, वर्षा नहीं होना, उड़ने वाली धूल और धुआं, ये सारी चीजें मनुष्य के शरीर पर विपरीत प्रभाव डालती हैं। हम सभी जानते हैं मौसम के बदलने के साथ ही तापमान बदलता है, हमारे आसपास की स्थितियां बदलती हैं, धूल उड़ना और धूल उड़ने के साथ ही उसके विभिन्न बीमारियों के कणों के साथ उसका हमारे आसपास होना, ये सारी चीजें खासकर बारिश के दिनों में बहुत ज्यादा सामने आती हैं। साथियों, बारिश के दिनों में त्वचा पर किसी भी प्रकार का संक्रमण होना बहुत आम बात है। हम ये भी देखते हैं कि बारिश के दिनों में पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां बहुत होती हैं। इसके साथ ही बुखार होना, सिरदर्द, चक्कर आना, ये सारी चीजें बदलते मौसम में बहुत आम होती हैं। बारिश में ऐसा होने का कारण सबसे ज्यादा ये होता है कि हवा में धूल के साथ ही पानी के कण यानी नमी, ये बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के त्वचा रोग और विभिन्न प्रकार के संक्रमण होते हैं। चलिए अब बात करते हैं त्वचा की। यदि ठंड बढ़ जाती है तो हम सभी की त्वचा अचानक खुश्क होने लगती है। उस समय बहुत सारे विज्ञापन आने लगते हैं क्रीम और लोशन के, उन्हें देखने में बड़ा मजा आता है, लेकिन उनका उपयोग सही तरीके से कौन करता है? सिर्फ युवा पीढ़ी? जी नहीं साथियों, इन सभी का उपयोग सही तरीके से सभी व्यक्तियों को करने की जरूरत है, खासकर प्रौढ़ व्यक्तियों को और बच्चों को सबसे ज्यादा। प्रौढ़ों को हमेशा यही लगता है कि हमारे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, हम अपने ऊपर जितना कम खर्च कर सके उतना अच्छा है, लेकिन आप उम्र के ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब आपको अपने आप में अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना, अपने प्रतिरक्षा तंत्र की रक्षा करना सबसे ज्यादा जरूरी है, और मनुष्य के शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र हमेशा बदलते मौसम में कमजोर पड़ता है। हम सभी सामान्य सर्दी खांसी को मौसम का मिजाज कहकर बदल देते हैं या फिर टाल देते हैं। कई बार साथियों, इस प्रकार की चीजें एलर्जिक भी होती हैं। हम सभी जानते हैं आसपास बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आपको मिल जाएंगे, जरा से धूल में गए नहीं कि उन्हें छींकें आने लगती हैं।
धूप में जाने पर उनकी त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ने लगते हैं, बारिश में भीगने पर उन्हें पैरों में फंगल इन्फेक्शन होने लगता है। लेकिन इन सभी चीजों को हम बहुत सामान्य मानते हैं, लेकिन मौसम बदलने के साथ ही यदि आप अपने खान पान को बदले, आप अपने पहनावे को बदले और आप अपने जीने के ढंग को बदलेंगे तो ये सारी परेशानियां आपको बिल्कुल नहीं सताएंगी। त्वचा की बात करें तो त्वचा रोग विशेषज्ञ का कहना यह है कि जिस प्रकार शरीर में गर्म हवाएं त्वचा को हानि पहुंचाती हैं, उसी प्रकार सर्द हवाएं भी त्वचा को हानि बिल्कुल पहुंचाती हैं। सर्द हवाएं त्वचा में खुश्की पैदा करती हैं और उसे खुरदरा कर देती हैं। इसके साथ ही सिर में सीकरी और शरीर में खुश्की का होना बिल्कुल आम बात है। और साथियों, इस रोग से महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। और अब बात करें हमारे पाचन तंत्र की, यानी हमारे पेट की। साथियों, मौसम बदला नहीं कि उल्टी दस्त होना आम बात है। छोटे बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं और हम उन पर दोष भी मढ़ देते हैं कि वो हाथ धोकर खाना नहीं खाते या फिर बाजार जाकर उल्टी सीधी चीजें खा लेते हैं। लेकिन हम यदि आयुर्वेद की बात करें साथियों, तो जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं उनका कहना है कि जिस प्रकार ऋतुएं प्रकृति का नियम है, उसी प्रकार हमारे खान पान को बदलना भी हमें प्राकृतिक रूप से एक नियम के अनुसार लेना ही चाहिए। यदि इस चीज को लोग गंभीरता से ले लें तो कई बीमारियों से हम बच सकते हैं। साथियों, हमारे संस्कारों की ही ये देन है कि मौसम बदलते ही पाचन प्रणाली पर असर पड़ता है, लेकिन लोग खाने पीने की आदतें नहीं बदलते और यही कारण है कि हर बीमारी पेट से शुरू होती है। सबसे अधिक मौसम बदलते समय ही लोग गले और पेट के रोगों से ग्रस्त होते हैं और इन सभी रोगों का इलाज विभिन्न आयुर्वेदिक प्रणालियों से भी संभव है। अब इसका हम एक उदाहरण लें। बारिश शुरू होते ही हम सभी को ऐसा लगता है कि गरम गरम पकौड़े की खुशबू घर में तैरनी चाहिए, अलग अलग सब्जियों के पकौड़े बनने चाहिए और पेट भर कर तली हुई चीजें खानी चाहिए। ठीक है, मौसम का तकाजा है, लेकिन ये चीजें यदि आप नवंबर की ठंड में भी करेंगे तब आपको नुकसान ही पहुंचाएंगी। मान लिया कि बारिश जाने वाली है, मान लिया कि अब ऐसी ऋतु आपको अगले साल ही देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे ऋतु बदलती है उसी प्रकार आपका पाचन तंत्र अपने आप को बदलने की कवायद शुरू कर चुका होता है। इसलिए कहा जाता है कि जब ऋतु का संध्याकाल हो, ऐसे में आपको अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपने आप पर संयम रखना चाहिए। साथियों, प्रत्येक धर्म में ये कहा गया है कि जब किसी भी प्रहर का सांध्य काल हो, जैसे दिन का ढलना या फिर सूर्योदय होना, ये दोनों समय हम ईश्वर की आराधना में बिताना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों ही समय तापमान के घटने या बढ़ने से संबंधित हैं। जब आप सुबह उठते हैं तब तापमान न्यूनतम से अधिकतम की ओर बढ़ता होता है, जब शाम होती है ऐसे में तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। इस दौरान यदि आप असंयमित होकर अपने खान पान को जारी रखेंगे जैसा कि आप दिन भर किया करते हैं, तब आपके पाचन तंत्र पर विपरीत प्रभाव तो पड़ेगा ही। शायद इसीलिए प्रत्येक धर्म में मनुष्य को संयमित रहने के लिए प्रातःकाल की प्रार्थना और सायंकाल की प्रार्थना ये जरूरी कर दी गई होगी। लेकिन हम यदि इन नियमों को माने तब न, इन नियमों के पीछे वैज्ञानिक कारण भी छिपे होते हैं। और वैसे भी कहा यही जाता है कि उपचार से सावधानी बेहतर है। साथियों, मौसम बदलने के समय इतनी सारी परेशानियां हम सभी को होती हैं, तब इसका निदान क्या है? निदान ये है कि मौसम का बदलाव सामने आते ही आपको लेना है संतुलित भोजन। हरी सब्जियां और ताजे फलों का सेवन करें और अपने आसपास जितनी हो सके उतनी सफाई रखें। मच्छर पैदा ना हो सके इसलिए घर के बाहर बनी नालियों को साफ सुथरा रखें। धूल और मिट्टी से बचने के लिए मुंह ढककर रखें या फिर बढ़िया किस्म का मास्क पहनें। सांस के रोगी धूल धुआं और शोर शराबे से जितना दूर रह सके उतना रहें। बहुत सारी दवाएं इन दिनों चर्चा में आती हैं साथियों। हम अपने आसपास सर्दी जुकाम के बहुत सारे मरीज देखते हैं, कंजक्टिवाइटिस यानी आंखों में संक्रमण की बीमारी के भी बहुत सारे मरीज देखते हैं।
जरा सा बुखार आने और सिरदर्द के मरीज देखते हैं और प्रत्येक का कहना यही होता है कि हमने ये विशेष दवाई ली और हमें बहुत आराम आया। लेकिन क्या आपको पता है कि जो बीमारी उन्हें हुई थी वही बीमारी आपको हुई है? साथियों, बिना डॉक्टर को दिखाए बदलते मौसम में चर्चित दवाएं बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और जैसे बच्चों में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उनसे बचने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों के लिए खुश्की दूर करने के लिए उन्हें नारियल का तेल लगाया जाना चाहिए। बहुत पहले से हमारे सभी धर्मों में कहा गया है कि बच्चों को बहुत जतन से रखा जाना चाहिए और उनकी तेल से मालिश की जानी बहुत जरूरी है। इन सभी के पीछे वैज्ञानिक कारण है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, घर के प्रत्येक सदस्य का यदि बदलते मौसम में ख्याल रखा जाए तो बीमारियां हमसे बहुत दूर भागेंगी।

श्रोता साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक था बदलते मौसम में जरूरी है सावधानी। दोस्तों, अब आप सभी को हमारे स्वास्थ्य के बारे में इतना तो समझ आ ही गया होगा और मैं आशा करता हूँ कि आप इन सब बातों को अपने करीबी परिजनों को भी बताएंगे। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो विविधता एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्यस्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या आईओएस मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्यस्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दे आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को और रिकॉर्डिस्ट है आकाश चांगरा। नमस्कार।

रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं आपकी दोस्त ग्लोरिया गांगले। आज की सभा 3 से 4 में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम कृषि जगत, कानूनी ज्ञान, वसुदेव कुटुम्बकम, नाटक और भक्ति गीत। तो आइए दोस्तों सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: मुखिया जी, कृषि जगत कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: आपका भी स्वागत है और अपने श्रोताओं का भी स्वागत है।
0: एक बात ये बताइए मुखिया जी, ऐसा सुनने में आ रहा है कि हाँ। मखाना की खेती बढ़ाने के लिए सरकार ने शायद कोई नई योजना बनाई है।
1: आप बिल्कुल सही कह रहे हैं वीरेंद्र जी, सरकार ने मखाना की पैदावार को दोगुनी करने के लिए स्वर्ण वैदेही योजना की शुरुआत की है।
0: यह है किस तरह की योजना है मुखिया जी, और इसके तहत किसानों को किस तरह से सहूलियतें दी जाएंगी?
1: देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बिहार की सबसे अधिक डिमांड वाली फसल मखाना से जुड़े किसानों के लिए अच्छी खबर है।
0: जी जी,
1: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूर्वी क्षेत्र पटना के वैज्ञानिकों ने मखाना की पहली उन्नत प्रजाति के बीज स्वर्ण वैदेही को विकसित किया है।
0: जिस बीज की आप बात कर रहे हैं, स्वर्ण वैदेही बीज, इस बीज की क्या खासियत है और क्या यह बीज किसानों के बीच वितरित किया जाएगा?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, ये बीज इस बार मखाना किसानों को मुहैया कराई जा रही है। दावा है कि इस बीज से मखाना की उपज सीधे दोगुनी हो जाएगी।
0: अच्छा अच्छा।
1: उत्तर बिहार के मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार आदि जिलों में मखाना की खेती बहुतायत में होती है। यह क्षेत्र पूरे भारत का इकलौता ऐसा क्षेत्र है जहां पर इसकी व्यावसायिक खेती की जाती है।
0: आप बता रहे हैं कि इन क्षेत्रों में बहुतायत मात्रा में मखाना की खेती होती है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या मखाना यहां से निर्यात भी किया जाता है?
1: देश के अन्य राज्यों के साथ ही खाड़ी देशों में यहां का मखाना जाता है।
0: जी,
1: इस क्षेत्र के 13,000 हेक्टेयर जलाशयों में किसान और मल्लाह मखाना की खेती करते हैं।
0: अगर उपज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अभी मखाना की उपज इन क्षेत्रों में कितनी है?
1: अभी इन क्षेत्रों में 9500 टन मखाना तैयार किया जाता है।
0: अच्छा।
1: ये उत्पादन उस स्थिति में है जब जलाशयों में प्रति हेक्टेयर महज 1.4 से 1.6 टन तक मखाना होता है।
0: ऐसा भी कहा जाता है मुखिया जी कि ये मखाना किसानों को सरकार की ओर से एक ड्राइविंग सूट भी उपलब्ध करवाया जाएगा, क्या यह बात सही है मुखिया जी?
1: हाँ बिल्कुल सही है। जान जोखिम में डालकर गहरे पानी में घुस के मखाना निकालने वाले किसानों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है।
0: अच्छा।
1: केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल और भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र पूर्वी क्षेत्र पटना के वैज्ञानिकों ने मखाना खेती से जुड़े किसानों के लिए डाइविंग सूट तैयार की है, यानी तैराकी वाली सूट।
0: जी जी, इस सूट के प्रयोग से किसानों को किस तरह का फायदा होने वाला है, क्या इससे उन्हें खतरा कम मूल्य लेना पड़ेगा?
1: इस सूट के प्रयोग से किसानों का समय तो बचेगा ही
0: जी,
1: काम के दौरान कोई खतरा भी नहीं रहेगा।
0: अच्छा।
1: उत्तर बिहार के किसान, खासकर मखाना की खेती करने वाले किसान, मखाना बीज तैयार हो जाने के बाद गहरे पानी में गोता लगाकर उसे धीरे धीरे निकालते हैं।
0: जी जी।
1: लगातार कोशिश के बाद भी वो ठीक से मखाना नहीं निकाल पाते हैं।
0: जो मखाना किसानों को ड्राइविंग सूट दिया जाएगा मुखिया जी, उस सूट की खासियत क्या होगी? क्या इसमें ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर भी लगा होगा ताकि उनको पानी के अंदर किसी तरह की परेशानी न हो?
1: सबसे पहली बात ये है कि जो सूट है ये वो सिंथेटिक कपड़े से तैयार किया जाएगा।
0: अच्छा।
1: और इसमें 14 किलो का ऑक्सीजन सिलेंडर लगा होगा।
0: अच्छा।
1: इसके अलावा पानी के अंदर ठीक से देख सकने वाला चश्मा भी लगा रहेगा।
0: एक बात ये बताइए मुखिया जी कि इस सूट की लागत की अगर बात की जाए तो यह तो काफी महंगी होगी, फिर भी एक सूट पर कितना खर्च आने का अनुमान लगाया जा रहा है?
1: देखिए, गोताखोरी की सूट की लागत करीब 25,000 रुपए आ रही है।
0: अच्छा।
1: बताया जा रहा है कि सूट पहनने के बाद किसान पहले घंटे में 12 किलो और दूसरे घंटे में 8 किलो तक मखाना बीज बाहर निकाल सकेंगे। इसके सहयोग से पानी में बहुत अधिक बीज छूटेगा भी नहीं।
0: बिना सूट के प्रयोग से किसान कितनी मात्रा में बीज पानी से बाहर निकाल पाते थे?
1: परंपरागत तरीके से किसान पहले घंटे में 4 किलो और दूसरे घंटे में महज 2.5 किलो तक ही बीज निकाल पाते थे।
0: ऐसा भी कहा जाता है कि पिछले साल सरकार मखाना की खेती पर 25,00,000 रुपए खर्च की थी, लेकिन कोई उसका सार्थक परिणाम देखने को नहीं मिला।
1: देखिए वीरेंद्र भाई, उत्तर बिहार के मखाना किसानों को समेकित खेती के गुर सिखाने के लिए पिछले साल यानी कि पिछले 4 साल से
0: जी जी
1: सरकार कृषि अनुसंधान केंद्र में 25 लाख रुपए किसानों पर खर्च कर दिए।
0: अच्छा अच्छा।
1: इस कोशिश में महज 23 हेक्टेयर जल क्षेत्र में समेकित खेती कराने में सफलता मिली।
0: समेकित खेती के तहत किसानों को मखाना के साथ साथ और किन किन चीजों की खेती के लिए प्रेरित किया गया है मुखिया जी?
1: वैज्ञानिकों का दावा है कि सभी किसान मखाना के साथ साथ सिंघाड़ा आप समझते होंगे
0: पानी फल जिसको बोलते हैं,
1: हाँ पानी फल, और मछली की समेकित खेती करें तो उनकी आमदनी सीधे दोगुनी हो सकती है।
0: जी जी।
1: ICAR यानी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च के पटना केंद्र और दरभंगा स्थित मखाना अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों के शोध में ये बात सामने आई कि एक हेक्टेयर के तालाब या पोखर में यदि किसान सिर्फ मखाना की खेती करते हैं तो प्रति हेक्टेयर महज 40,000 रूपये की शुद्ध आय होती है।
0: जी।
1: यदि इतने ही रकबे में किसान मखाना के साथ ही मछली और सिंघाड़े की खेती करते हैं तो उनकी आमदनी 80,000 रूपये तक हो जाती है,
0: यानी सीधे दुगनी हो जाती है।
1: हाँ।
0: जिस आमदनी की ये आप बात कर रहे हैं मुखिया जी, क्या वह लागत घटाने के बाद है या फिर लागत को जोड़ करके है?
1: जी हाँ, ये आमदनी लागत घटाने के बाद है, यानी शुद्ध आय है।
0: जी जी।
1: इतने रकबे में सिंघाड़ा की खेती करने पर 17,000 रूपये और मछली पालन में कुल 11,000 रूपये का अतिरिक्त खर्च आता है।
0: अभी वर्तमान में कितने क्षेत्रों में इस तरह की समेकित खेती की जा रही है?
1: वैसे दरभंगा के आसपास के 23 हेक्टेयर जल क्षेत्र में मखाना, सिंघाड़ा और मछली की समेकित खेती हो रही है।
0: जी।
1: उत्तर बिहार के 13,000 हेक्टेयर में विस्तारित मखाना खेती वाले तालाब और पोखरों को इस समेकित खेती के तहत लाने की कोशिश की जा रही है। क्षेत्र में लगातार किसानों को जागरूक किया जा रहा है।
0: तो आशा की जानी चाहिए मुखिया जी कि सरकार की यह पहल कारगर सिद्ध हो ताकि किसानों की आमदनी बढ़े और साथ ही साथ मखाना का निर्यात भी हो ताकि राज्य का कोष बढ़े, कोष में वृद्धि हो। मुखिया जी, एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा कि ये
1: हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए,
0: ये जो सरकार लगातार
1: हाँ,
0: किसानों को सुविधा मुहैया कराई जा रही है, ऐसी हाँ, तमाम तरह की घोषणाएं होती
1: हाँ,
0: हैं
1: हाँ, हाँ, हाँ,
0: जैसे अभी आप बात किए मखाना की खेती के बारे में, लेकिन वास्तविकता की धरातल पर कुछ खास हो नहीं पाता है।
1: आपका कहना सही है, लेकिन आपका इशारा किस ओर है वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। जरा खुलकर अपनी बात को आप रखें तो मैं उस पर विचार प्रकट कर सकता।
0: अब धान खरीद का ही मामला दे दीजिए मुखिया जी, जो अभी तक 2 माह गुजरने के बाद भी मात्र 2% ही धान की खरीद हो सकी है, जबकि लक्ष्य और कुछ निर्धारित किया गया था।
1: हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है वीरेंद्र भाई कि धान खरीद की गति धीमी है। राज्य सरकार ने इस वर्ष 24 लाख टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा, 2 महीने हो गए पर मात्र 60,000 टन ही धान की खरीद हो सकी। सरकार के लक्ष्य का मात्र 1.5-2%।
0: जी जी बिल्कुल। तो आखिर इस लक्ष्य को कैसे पूरा किया जाए, ये यह भी एक विकराल प्रश्न है मुखिया जी।
1: देखिए, अगर देखा जाए तो 15 अप्रैल तक लक्ष्य पूरा करने के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को लगभग 23.5 लाख टन धान खरीदने होंगे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर दिन औसतन 25,000 टन धान खरीदना होगा।
0: मुखिया जी, इसके बारे में और बहुत सारी जानकारी आपसे प्राप्त करेंगे, लेकिन अगले कार्यक्रम में अभी हम लोग चलते हैं। इस जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपको भी धन्यवाद।

दोस्तों अभी आपने सुना कार्यक्रम कृषि जगत और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। आइए साथियों अब सुनते हैं कार्यक्रम कानूनी ज्ञान और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: कपूर साहब और श्याम जी, कानूनी सलाह कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी आपका भी
2: और अपने श्रोताओं का भी स्वागत है।
0: यौन हिंसा की घटना घटने की बजाय लगातार बढ़ती ही जा रही है। पिछले दिनों में जो घटनाएं हुई उसने पूरे मानवता को झकझोर कर रख दिया। क्या आदमी इतना विकृत रूप धारण कर सकता है, ऐसा कोई सोच भी सकता है?
2: देखिए, सोचने वाली बात तो ये है कि उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं आए दिन घटित हो रही हैं।
0: जी बिल्कुल,
2: ये पूरे भारतीय समाज के लिए चिंता की बात है। पिछले दिनों बिहार के दनियावा में जिस तरह की घटना हुई, या फिर ब्रह्मपुत्र मेल में सैनिकों द्वारा जो घिनौनी हरकत की गई, बिहार की ही एक लड़की 107 दिनों से गायब है और पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है। ये सारी घटनाएं इस बात को दर्शाती हैं कि आज हमारा समाज कितने गर्त में जा रहा है।
0: बिल्कुल
1: सही बात है। इन सारी घटनाओं से एक बात तो साफ तौर पर निकलकर सामने आ रहा है कि लोगों के दिलों में कानून का खौफ है ही नहीं। आप जिस दिल्ली की घटना का जिक्र कर रहे हैं, इस घटना ने पूरे समाज को आंदोलित कर दिया है। पुलिस जिस सक्रियता के साथ इस पूरे घटना के तह तक पहुंचने की कोशिश की है, वो भी सराहनीय योग्य बात है। सजा के तौर पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी।
0: कपूर साहब, दिल्ली की ये जो गैंग रेप की घटना हुई थी, कुछ इसी तरह की घटना कुछ दिन पहले पटना में भी एक छात्रा के साथ हुई है, जिसमें चार्जशीट तो दाखिल किया गया है लेकिन अभी तक सजा नहीं सुनाया गया।
1: जी,
0: मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि दिल्ली में जो घटना हुई थी उसमें किन किन अपराधों को चार्जशीट में शामिल किया गया, क्योंकि सजा तो चार्जशीट के आधार पर ही तय की जाती है ना?
1: देखिए वीरेंद्र जी, गैंग रेप मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सामूहिक दुष्कर्म की घटना एक सुनियोजित घटना थी।
0: जी,
1: इसमें किशोर आरोपी की भूमिका का भी जिक्र किया है। अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि इस वारदात को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया।
0: आरोप पत्र में सबूत के तौर पर किन किन साक्ष्यों का हवाला दिया गया था श्याम जी, खास करके दिल्ली की घटना का अगर जिक्र करते हैं तो?
2: आरोप पत्र में सबूत के तौर पर सीसीटीवी कैमरे में कैद बस के फुटेज, पीड़िता और उसके दोस्त की मॉल से निकलते हुए समय की फुटेज, मोबाइल लोकेशन, बस से बरामद फोरेंसिक लैब उसके सैंपल का जिक्र किया गया है। अभियोजन पक्ष ने कहा है कि वारदात को अंजाम देने में प्रत्येक आरोपी ने एक खास भूमिका निभाई है।
0: लेकिन आरोप पत्र दाखिल करने में इतना देर क्यों हुआ, इस पर काफी सवालिया निशान उस समय लगा था, किस कारण से देरी हुई, क्या इस बात का खुलासा उस समय किया गया था?
1: न्यायाधीश ने लोक अभियोजक से देर से आरोप पत्र दाखिल करने का कारण पूछा तो लोक अभियोजक ने बताया कि जांचकर्ताओं को अधिक संख्या में दस्तावेज और आरोप पत्र के क्रम में लगने में जो देरी हुई है उसके पीछे का जो मौलिक कारण है वो फॉरेंसिक रिपोर्टों को भी ये सिद्ध करता है, उसी के खिलाफ जो लगाए गए हैं वो सिद्ध करता है, आरोपों की पुष्टि होने का दावा किया गया है वो करता है, इसमें भी देरी हुई है और कुछ एक कारण जो बताए गए हैं जिसकी वजह से और देरी हुई है।
0: कानूनविदों की राय है
1: कि
0: हमारे यहाँ जो बलात्कार के खिलाफ सजा का जो प्रावधान है वो काफी ढीला ढाला है, कानून में उतनी सख्ती नहीं बरती गई है। प्रश्न आकर फिर वहीं पर ठहर जाता है श्याम जी कि क्या बलात्कारियों को फांसी की सजा देनी चाहिए?
1: सभी पक्षों का अपना अपना नजरिया है, कुछ लोग इसके पक्ष में हैं तो कुछ लोग इसके विपक्ष में, लेकिन एक बात मैं आपको साफ बता दूं कि मानवाधिकार कानून के तहत आज पूरी दुनिया में फांसी की सजा कुछ चुनिंदा मामलों में ही दी जाती है। एक बात यह भी है कि फांसी की सजा इस समस्या का समाधान नहीं है, वैसे और भी तरीके हैं जिससे बलात्कारियों को जिंदगी भर एहसास कराया जा सकता है।
0: वामदलों का एक स्टेटमेंट आया था उस समय कि बलात्कार के मामलों में फांसी की सजा न दी जाए,
1: जी
0: क्या कहना था उनका?
1: देखिए, वाम फ्रंट से जुड़े महिला संगठन बलात्कार के दोषियों को फांसी देने के हक में नहीं है। उनकी मांग है कि मौजूदा कानून में संशोधन करके बलात्कार के बर्बर मामलों में दोषियों को मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास की सजा दी जाए। वाम दलों से जुड़े महिला संगठनों ने जस्टिस जेएस वर्मा समिति को अपने सुझाव भेजे हैं। इनमें प्रमुख सुझाव बलात्कार के गंभीर और विभत्स मामलों में मौत तक जेल में रखने का है। इसके अलावा बलात्कार के मामलों का निपटारा तय समय सीमा में फास्ट ट्रैक अदालतों के अंतर्गत करने की मांग शामिल है।
0: ये तो बहुत पहले की बात है कपूर साहब, करीब करीब उस घटना को हुए 4 या 5 साल हो गया है। सुनने में यह भी आ रहा है कि सरकार इन घटनाओं से बहुत आहत है और एक ऐसा कानून लाना चाहती है जिससे बलात्कार के दरिंदों में खौफ घर कर जाए और ऐसे कुकृत्य करने की हिम्मत ही न जुटा सके। श्याम भाई, इस पर आप क्या कहना?
2: अगर सचमुच सरकार की ऐसी मंशा है तो उसे दक्षिण कोरिया के कानून से सीखने की जरूरत है।
0: जी जी,
2: हम ये भी मानते हैं कि हमारे यहाँ की परिस्थितियाँ कुछ अलग हैं, फिर भी अगर सख्त कानून बनाना है तो दक्षिण कोरिया के जैसा ही कानून बनना चाहिए।
0: दक्षिण कोरिया की आप बात कर रहे हैं तो दक्षिण कोरिया में बलात्कार या यौन उत्पीड़न से संबंधित किस तरह के कानून हैं और वहां किस परिप्रेक्ष्य में इतने सख्त कानून बनाने की जरूरत आन पड़ी, इस बात का थोड़ा सा जिक्र करना चाहेंगे कपूर साहब।
1: दक्षिण कोरिया की अदालत ने बाल यौन शोषण के दोषी व्यक्ति को नपुंसक बनाने के आदेश दिए हैं। 15 साल की सजा के साथ ही उसे जेल में दवाओं के जरिए नपुंसक बनाया जाएगा। किसी एशियाई देश में इस तरह की सजा सुनाए जाने का ये पहला मामला है।
0: किस परिप्रेक्ष्य में दक्षिण कोरिया की अदालत को इतना सख्त कानून बनाने पर बाध्य होना पड़ा, किस तरह की घटना घटी थी?
2: देखिए, समाचार एजेंसी चीन की शिन्हुआ के अनुसार सियोल दक्षिणी जिला अदालत ने 31 वर्षीय पायो को 15 साल कैद की सजा सुनाई है।
0: अच्छा अच्छा,
2: जेल में ही उसे ऐसी दवाएं दी जाएंगी जिससे उसकी यौन इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। न्यायालय ने कहा कि पायो स्वयं पर नियंत्रण रखने में अक्षम है। उसे नवंबर 2011 से मई 2012 के बीच 5 किशोरों के साथ दुष्कर्म करने का दोषी ठहराया गया है। उसने यौन वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित करने की धमकी भी दी थी।
0: इस कानून के बनने के बाद क्या इस पर पहल की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है कपूर साहब?
1: दक्षिण कोरिया में 2011 में इस प्रकार का कानून बनाया गया था जिसमें बाल यौन शोषण के दोषी अपराधियों को हार्मोनल उपचार या रसायनों के जरिए नपुंसक बनाने का प्रावधान किया गया था। कानून बनाए जाने के बाद से पहली बार इसका प्रयोग किया जा रहा है। दक्षिण कोरिया की योनहैप न्यूज एजेंसी के मुताबिक पायो स्मार्टफोन चैट के जरिए किशोरों से दोस्ती गाढ़ता था जिसके बाद वह उन्हें दुष्कर्म का शिकार बना लेता था।
0: कुछ इसी तरह का कानून बनाने की जरूरत शायद हमारे देश में भी महसूस की जा रही है।
1: जी।
0: जब तक ऐसे कानून नहीं बनेंगे तो इस तरह की घटनाएं रुकने की बजाय बढ़ती जाएगी, लेकिन फिर भी ऐसा मानना है खास करके सामाजिक कार्यकर्ताओं का कि ये दक्षिण कोरिया का जो कानून है वो काफी सख्त है। श्याम जी, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे?
2: अब देखिए, नया कानून जो आने वाला है
0: जी,
2: उसमें किस तरह का प्रावधान किया गया है। दंड की भयावहता अवश्य होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि सामाजिक चेतना और विश्वास का वातावरण बनाने की भी जरूरत है।
0: जी बिल्कुल, बिल्कुल।
2: इसका थोड़ा अंश यूपी में अवश्य देखने को मिल रहा है। हालांकि सबसे ज्यादा यौन उत्पीड़न के मामले उत्तर प्रदेश में ही सामने आ रहे हैं।
0: पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार विगत वर्षों से प्रदर्शन होते आ रहे हैं कपूर साहब
1: जी।
0: ठोस और सख्त कानून बनाए जाने की बात भी की जा रही है और इसकी पहल भी सरकार के द्वारा की गई थी जेएस वर्मा कमेटी बनाने के बाद
1: जी।
0: ऐसे में सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि उनकी मांगों को स्वीकार करते हुए एक मजबूत कानून बनाया जाए जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाएं घटित न हो सके।
1: इस तरह के आरोपियों के खिलाफ कानून बनाने का, यूं कहें कि सख्त कानून बनाने का भी काम भी हुआ है। इसी को ध्यान में रखकर जस्टिस जेएस वर्मा समिति बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है और कानून में बदलाव भी किया गया है। हालांकि इसे और सख्त बनाने की आवश्यकता है।
0: श्याम जी, महिलाओं पर हो रही यौन हिंसा के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग लगातार उठ रही है। उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक छोटी सी पहल की है ताकि यौन हिंसा और घरेलू हिंसा को कम किया जा सके। इस पहल को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं?
2: देखिए, इसे उत्तर प्रदेश की महिलाओं को दिया गया सशक्तिकरण का एक तोहफा माना जा रहा है।
0: जी जी,
2: प्रदेश सरकार ने एक महिला पावर लाइन की शुरुआत की है। इसके तहत 1090 पर शिकायत करने पर महिला पुलिस खुद पीड़िता के पास पहुंचेगी। उसको थाने में नहीं आना पड़ेगा और समस्याओं को सुलझाने की कोशिश के साथ ही उसकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
0: क्या इस नंबर पर फ्री कॉल करने की सुविधा होगी या फिर इसके लिए कोई शुल्क वगैरह भी अदा करना होगा?
1: देखिए, ये नंबर टोल फ्री होगा और जब तक पीड़िता की समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा, पुलिस उसके संपर्क में रहेगी। माना जा रहा है कि इससे न केवल अपराधों और छेड़छाड़ पर अंकुश लगेगा बल्कि प्रशासन के प्रति आम जनता में विश्वास भी पैदा होगा।
0: जिन लोगों के विरुद्ध शिकायतें सही पाई जाएगी तो कार्रवाई के तौर पर किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी? श्याम जी,
2: जिन लोगों के विरुद्ध शिकायतें सही पाई जाएंगी उनका ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बन पाएगा।
0: अच्छा अच्छा,
2: इतना ही नहीं, उनके लिए नौकरी पाना भी आसान नहीं होगा। देश में जिस तरह से यौन अपराधों की बाढ़ आई है उससे निपटने की राह में इस पहल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
0: इस तरह है कि छेड़छाड़ की ज्यादातर शिकायतें जो होती है और ज्यादातर जो शिकार होती हैं वह हमारे गरीब महिलाएं ही होती हैं। शायद इस पहल से उनको न्याय मिले।
1: आपका कहना बिल्कुल सही है। ये माना जाता है कि इस तरह की छेड़छाड़ और शोषण की सबसे ज्यादा शिकायत दलित और आदिवासी तबकों की महिलाएं ज्यादा होती हैं।
0: जी,
1: इस लिहाज से इसे इन तबकों के सशक्तिकरण की कवायद भी कहा जा रहा है कि जो महिलाएं या लड़कियां थाने आने से डरती हैं उन्हें इससे काफी मदद मिलेगी।
0: इस फोन लाइन को शुरू करने के बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं महिलाओं में देखने को मिल रही है? श्याम जी,
2: देखिए वीरेंद्र जी, इस फोन लाइन को शुरू किया गया तो पहले दिन ही इस नंबर पर 2000 से ज्यादा कॉल आई।
0: अच्छा,
2: लेकिन प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसके जो नतीजे निकले वैसी उम्मीद क्या पूरे उत्तर प्रदेश के मामले में की जा सकती है? यह लाइन टोल फ्री जरूर है लेकिन उत्तर प्रदेश में आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां बिजली ही नहीं पहुंची है और मोबाइल फोन के सिग्नल भी नहीं पहुंचते हैं।
0: जी जी,
2: जबकि वे ये इलाके हैं जहां के लोगों को ऐसी कोशिशों की सबसे ज्यादा जरूरत है।
0: पुलिस से किस तरह की उम्मीद की जा रही है खास करके ऐसे मामलों में? कपूर साहब,
1: देखिए वीरेंद्र जी, ऐसे मामलों में हम पुलिस से कोई उम्मीद उसी सूरत में कर सकते हैं जब सामान्य पुलिस वाले महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता से लैस हों।
0: जी,
1: जो पुलिस उपलब्ध है वे भी खुद जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से जूझ रही हैं। ऐसे में उससे ये उम्मीद कैसे की जा सकती है कि जरूरत पड़ने पर वो तुरंत मौके वारदात पर पहुंच जाएगी?
0: इस तरह के कई तरह के पहल पहले भी किए जा चुके हैं लेकिन कभी भी सार्थक नतीजा देखने को नहीं मिला। कभी नंबर ही फेल हो जाता है तो कभी वो हमेशा इंगेज ही मिलता है।
2: हाँ, ये बात सही है। अभी तक जो टोल फ्री नंबर उपलब्ध हैं ये ज्यादा भरोसेमंद नहीं माने जाते। इसके कई कारण हो सकते हैं लेकिन 100 नंबर के असंवेदनशील हो जाने की खबरें अक्सर आती ही रहती हैं।
0: जी जी,
2: ऐसा 1090 नंबर के साथ भी हो सकता है। फिर दहेज विरोधी कानून की तरह ही इसके दुरुपयोग का भी डर बना हुआ है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की इस व्यवस्था के बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने भी इसे अपनाया है। यकीनन औरतों के हक में ये एक सराहनीय पहल है जिसे अन्य प्रदेश भी अपना सकते हैं।
0: इस जानकारी के लिए कपूर साहब और श्याम जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले बार मिलेंगे तो कानून से संबंधित कुछ और जानकारी आपसे प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। आपको भी धन्यवाद।

अभी आपने सुना कार्यक्रम कानूनी ज्ञान और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। आइए साथियों अब सुनते हैं भक्ति और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वाज मुंबई की।

भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वाज मुंबई की। दोस्तों इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं। दोस्तों अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से RVM मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्य स्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्य स्वर वेरितास। दोस्तों अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। और हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम वसुधैव कुटुंबकम, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं समता बोरेकर। और इस कार्यक्रम का शीर्षक है मैया कब ही बढ़ेगी चोटी।

व्यक्ति विशिष्ट के अंतर्गत लीजिए प्रस्तुत है मैया कभी बढ़ेगी चोटी। इसकी लेखिका और प्रस्तुतकर्ता है समता बोरेकर। श्रोता साथियों, बाल गोपाल की चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई है। उनके मुंह पर माखन लगा है और हाथ भी माखन से सने हुए हैं, मगर फिर भी बड़ी मासूमियत से अपनी माता यशोदा को वे कह रहे हैं कि मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ते सखा सबे मिल मेरे मुख लपटायो। मतलब मैया मैंने माखन नहीं खाया, वो तो इन सभी सखाओं ने मेरे मुख पर माखन लगा दिया है। दोस्तों कैसी भोली बात है, कैसा मीठा बहाना। बाल कन्हैया दूध नहीं पी रहे, माता यशोदा उन्हें मना मना कर थक गई। फिर बोली कान्हा चलो जल्दी दूध पियो, दूध पीने से तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। बस कन्हैया ने झट से दूध पी लिया और फिर अपने बाल देखने लगे, मगर चोटी तो बड़ी ही नहीं। वे मैया को बोले, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, किती बार मोही दूध पीवत भैया अजहू है छोटी। श्रोताओं, और ऐसी कितनी ही मनोहर कलाएं और लीलाएं बाल गोपाल की हैं, जो बस बरबस ही मन को मोह लेती है। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण का यह जादुई माया संसार किसने रचा है? ये वो रचनाकार थे दोस्तों जिनकी कल्पना संसार अनूठा था, और इस संसार का केंद्र था भगवान कृष्ण की भक्ति और संवेदना इतनी सूक्ष्म कि उनके जीवन की कोई हरकत कोई क्रीड़ा नहीं छूटी। उनका प्रभाव इतना गहरा था साथियों कि उस काल का जीवन दर्शन ही कृष्णमय हो गया था। यह उन्हीं का प्रभाव था जिसने 16वीं शताब्दी को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग बनाया था। मुझे लगता है कि आप में से कई उन्हें पहचान गए होंगे। जी हाँ श्रोता साथियों, मैं महाकवि सूरदास की ही बात कर रही हूँ। सूर ने बाल गोपाल की बाल लीलाओं का बड़ा ही विस्तृत वर्णन किया है, और उनके वर्णन में इतना गहरा निरीक्षण था कि उस काल के साहित्यकारों को साहित्य के 9 रसों के अतिरिक्त वात्सल्य रस को भी 10वें रस के रूप में मान्यता देनी पड़ी थी। साथियों, उस समय के कवि अपने आप के विषय में बहुत कम लिखा करते थे, इसलिए इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि महाकवि सूरदास के जीवन काल के बारे में निश्चित ठोस सबूत नहीं है। सूर जी ने स्वयं के विषय में जो कुछ थोड़ा बहुत लिखा और उस दौरान उनके समकालीन कवियों ने उनके विषय में जो लिखा, उससे पता चलता है कि सूर जी का जन्म आगरा के निकट गोपाचल नाम के स्थान पर हुआ। कुछ लोग उनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नाम के ग्राम को भी मानते हैं। सूर जी के जन्म की तिथि 1535 वैशाख शुक्ल में मानी जाती है। श्रोताओं कहते हैं कि सूरदास जन्म से ही अंधे थे, उनके अंधत्व के कारण

उनके गरीब माता पिता बड़े दुखी रहते थे और इसी कारण उन्होंने गृह त्याग कर दिया और मथुरा के पास किसी क्षेत्र में कुटी बनाकर रहने लगे। दोस्तों कहते हैं उन्हें ज्योतिष शास्त्र का भी बड़ा अच्छा ज्ञान था और वे खोई हुई वस्तुओं का पता बता देते थे। एक ज्योतिष के रूप में शीघ्र ही उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। उनके पास दूर दूर से लोग आने लगे और इससे उनके पास बहुत सा धन भी इकट्ठा हो गया। दोस्तों सुर जन्म से ही नेत्रहीन थे या बाद में उन्हें नेत्र हानि हुई, यह भी विवाद का विषय रहा। दोस्तों यह विवाद उचित भी है, क्योंकि सोचने की बात है कि कोई जन्म से अंधा कृष्ण की लीलाओं का इतना सूक्ष्म और गहन वर्णन कैसे कर सकता है। एक किंवदंती यह भी है कि सुर एक बार किसी वैश्या के प्रति आसक्त हो गए थे। इस पर उनके मन में घोर अपराध बोध हुआ और उसके बाद वैराग्य और पश्चाताप के स्वरूप उन्होंने अपनी आंखें सुइयों से फोड़ ली थी। यह बात तो निश्चित है श्रोताओं कि सुर आजीवन अविवाहित थे, परंतु उनके नेत्रहीनता की कथाएं प्रमाणिक नहीं है। हर महान व्यक्ति की भांति सुर के उत्थान की कथा तब शुरू होती है जब वे मथुरा होते हुए गऊ घाट आए। गऊ घाट पर सुर की भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई। उन्होंने आचार्य को दो पद गाकर सुनाए। मौसम कौन कुटिल खल कामी, प्रभु हैं सब पतितन को टीको। यह पद सुनकर आचार्य वल्लभाचार्य प्रभावित तो हुए, परंतु सूर की आत्महीनता और दीन भाव देखकर बोले, सूर है के ऐसो काहे को घिघियात है, कुछ भागवत लीला वर्णन करी। बस यहीं से सूर को दिशा मिल गई। वल्लभाचार्य ने सूर को अपना शिष्य बनाकर वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित कर लिया। सूर ने वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग में कृष्ण लीला का सुंदर वर्णन किया है। श्री वल्लभाचार्य के बाद जब उनके पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ जब गद्दी पर बैठे, तो पुष्टि मार्गी कवियों में से सर्वोत्तम आठ को चुनकर उन्होंने अष्ट छाप की प्रतिष्ठा की। इन अष्ट छाप कवियों के सिरमौर सूर थे। इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। दोस्तों 84 वैष्णव वार्ता साहित्य के अनुसार सूर ने अपने जीवन काल में सहस्रावधि पद बनाए। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में सूर की 25 से अधिक रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें से उनकी तीन कृतियां सुरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी सर्वाधिक चर्चित रचनाएं हैं। ये तीनों रचनाएं ही श्री कृष्ण की जीवनी पर आधारित ब्रज भाषा में लिखी गई है। सूर का कृष्ण बाल लीला वर्णन, रास वर्णन, भ्रमर गीत आदि इतने सजीव और सादृश्य हैं कि आज भी हम जो टीवी और फिल्मों में देखते हैं, यह सूर्य के काव्य पर ही आधारित है। दोस्तों सूर का साहित्य में जो योगदान है वह इसलिए भी महत्वपूर्ण है श्रोताओं, क्योंकि उस काल में दिशा विहीन देश और समाज को जीवन आध्यात्म से जोड़ने का कार्य उन्हीं के द्वारा संपन्न हुआ। दोस्तों आज हम जिस धार्मिक परिवेश और संस्कार में व्यवस्थित है ना, वो एक लंबे और सतत प्रयासों का प्रतिफल है। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश ने सालों युद्ध और आक्रमण का सामना किया है। 14वीं शताब्दी तक भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हो चुका था। हिंदू राजे युद्ध करते करते थक गए थे। राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा के चलते वे आपस में ही लड़ते ही रहते थे और इस कारण वे विदेशी आक्रमणकारी लुटेरों के विरुद्ध संगठित मोर्चा उपस्थित नहीं कर पाते थे। ऐसे कठिन समय में अपने पुरुषत्व से हताश जनता को भक्तिकालीन कवियों ने भगवान की शरण का मार्ग सुझाया और इसमें निसंदेह सूर सबसे अव्वल थे। उनका काव्य मानो शहद की चाशनी में डूबा हुआ था, जिसने पूरे समाज को बाल कृष्ण की किलकारियों से गुंजायमान कर दिया था। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया और एक आध्यात्मिक वातावरण निर्मित कर दिया। कहते हैं दोस्तों 1623 में मथुरा में बादशाह अकबर सूर से भेंट करने के लिए आए थे। वहां अकबर ने सूर को खुद की तारीफ में कुछ कहने को कहा। इस पर सूर ने उन्हें दोहे में कहा कि उनका मन तो भगवान में लगा है, फिर किसी इंसान की तारीफ कैसे कर सकता है। बादशाह अकबर मुस्कुरा के रह गए। उन्होंने बुरा नहीं माना और आगे चल दिए। ऐसे महान महाकवि सूरदास अपने अंतिम दिनों में पारसोली में रहे। जन्म तिथि की तरह ही उनकी मृत्यु का समय भी प्रमाणिक नहीं है, परंतु माना जाता है कि संवत 1640 में सूर ने देह त्याग दी थी।
तो दोस्तों, ऐसे थे सूर और ऐसा था उनका कृष्ण लीला संसार। आज कृष्ण के जितनी भी लीलाओं कलाओं के बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनकी जो भव्य झांकी हमारे मन में बैठी है, वो सारी रचना सूर की कल्पना का साकार रूप है। तो दोस्तों, ऐसे थे सूर और ये था हमारा भारतीय साहित्य। दोस्तों, सूर ने भगवान भक्ति के अलावा सगुण भक्ति शाखा की भी जो छाप हमारे मन में डाली है, वो भी आज तक यथावत बनी है। उन्होंने निर्गुण भक्ति शाखा को नकारते हुए भगवान की सगुण भक्ति का एक भव्य रूप, एक भव्य झांकी हमारे सामने प्रस्तुत की। तो दोस्तों, ऐसे थे सूर जिन्होंने भक्ति साहित्य की सगुण भक्ति शाखा में कृष्ण भक्ति मार्गी कवियों के लिए राहें खोली। उनके समकालीन कई कवियों ने उनका अनुकरण करते हुए कृष्ण जीवन पर आधारित रचनाएं लिखी, परंतु दोस्तों, सूर ने कृष्ण बाल रूप, उनके रास रूप और कर्म रूप का वर्णन जिस संतुलन से किया, उसकी बराबरी आज तक कोई नहीं कर पाया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।

दोस्तों, अभी आपने सुना कार्यक्रम वसुदेव कुटुंबकम, जिसका शीर्षक था मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, जिसे प्रस्तुत कर रही थी समता बोरेकर और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए साथियों, सुनते हैं नाटक जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं माइकल होजेस और इस नाटक का शीर्षक है टूटी हुई आस्था।

0: आओ रमा, आओ ना।
1: और क्या हो रहा है?
0: देख लो, बस वही रोज का काम है। और तुम कहाँ निकल पड़ी आज?
1: अरे आज मैं तुलसी की सास को देखने जा रही थी तो सोचा तुमसे भी मिलते चलूं।
0: क्यों, तुलसी की सास को क्या हुआ?
1: सुना है चार एक दिन से उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था।
0: ओहो, मुझे तो खबर ही नहीं हुई।
1: फिर? अभी तो ठीक है, इसलिए डॉक्टर ने घर भेज दिया है।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो मैंने सोचा अस्पताल नहीं तो घर पर ही जाकर देखा हूँ।
0: हाँ ये तुमने अच्छा सोचा। अरे वैसे उनको हुआ क्या है?
1: होना क्या है, बुढ़ापा अपने आप में खुद एक बीमारी है। जरा सा ब्लड प्रेशर बढ़ा नहीं कि बुखार आने पर बीमारी और बढ़ जाती है, फिर बुढ़ापे में संभलना और संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
0: सच बोलती हो तुम, सचमुच में बुढ़ापा भी अपने आप में एक बीमारी ही है। अच्छा आप कैसी हैं?
1: अब तो ठीक है वो, तभी तो डॉक्टर ने घर भेज दिया है।
0: एक बात है रमा, कुछ भी बोलो, तुलसी भी अपनी सास की खूब सेवा करती है, वरना आजकल के जमाने में कौन बहू अपने सास की इतनी सेवा करती है भला।
1: सच में तुलसी को अपनी सास की सेवा करने का खूब आशीर्वाद मिलेगा, देखना।
0: और एक मैं हूँ जिसकी किस्मत में अपनी सास की सेवा करना ही नहीं लिखा है।
1: अरे तो तुम भी अपनी सास को अपने पास यहाँ रखकर उनकी सेवा कर सकती हो?
0: मैंने इस बात से कब इनकार किया है, यहाँ रख तो मैं भी लूँ, मगर अम्मा यहाँ रहे तब ना, उन्हें तो वहीं अपने गाँव में ही रहना अच्छा लगता है, इसलिए वो गाँव छोड़कर यहाँ आने को तैयार ही नहीं होती।
1: फिर खेती बाड़ी भी तो होगी ना?
0: हाँ देवर और देवरानी संभालते हैं। इन्होंने कितनी बार कहा कि अम्मा यहाँ आकर कस्बे में हमारे साथ रहो, मगर वो माने तब ना।
1: बुजुर्गों के साथ यही एक मुश्किल है किरण, उन्हें अपने अतीत अपनी पुरानी चीजों से बहुत प्यार होता है। शायद तुम्हारी सास भी ऐसी ही है।
0: क्या करें, अब जब भी गांव जाना होता है तो वहाँ अपनी सास की खूब सेवा कर लेती हूँ, क्योंकि मैं तो किसी भी तरह से बस अपना फर्ज निभाना चाहती हूँ। तुम इसे यूं भी कह सकती हो कि इसी बहाने मैं भी उनका आशीर्वाद पाना चाहती हूँ।
1: काश आज की सारी बहुएं तुम्हारी तरह से सोचने लग जाए किरण, तो असंयुक्त परिवार टूटने का ये सिलसिला थम जाए।
0: हाँ अब हमारे साथ गांव की संस्कृति भी तो जुड़ी है जो हमें भीतर से इस चीज के लिए बांधे रखती है, वरना तुम तो जानती ही हो कि इनकी वन विभाग की नौकरी की वजह से हम आज यहाँ पड़े हैं कल कहीं और, अब बदली हो जाएगी तो वहाँ जाकर भी तो रहना पड़ेगा।
1: सही है, तभी तो अम्मा और देवर देवरानी गांव में और तुम लोग यहाँ पर हो।
0: क्या करें मजबूरी है रमा।
1: और मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही किरण, तुम तो खैर मजबूरी में अपनी सास से इतनी दूर हो, फिर भी तुम्हारे मन में अम्मा के लिए इतना अपनापन, इज्जत, प्यार और मान सम्मान तो है, और मौका मिलने पर तुम उनकी सेवा भी करती हो। मगर आजकल की बहुत सारी बहुओं को तो देखो, शादी करते ही अपना अलग घर बसाना चाहती हैं और बसा भी लेती हैं।
0: अरे अब ये तो इंसान की अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी समझ होती है।
1: मेरी भी कितनी इच्छा होती है कि अपनी सास की सेवा करूं, मगर क्या करूं, मेरी सास ही नहीं है।
0: और जिनकी है वो सेवा नहीं कर पाती है।
1: अब तुलसी को ही देख लो, अपनी सास की कितनी सेवा करती है, तो उस पर सास की कितनी आशीष है, उसे किसी बात की कमी नहीं है, धन धान्य से भरपूर है वो।
0: सचमुच उसे किसी बात की कमी नहीं है, न रुपए पैसे की और न ही औलाद के सुख की। और एक मैं हूँ जो शादी के 5 साल बाद भी एक बच्चे के लिए तरस रही हूँ।
1: तुम किसी बड़े शहर में किसी अच्छे डॉक्टर से अपने और अपने पति का इलाज क्यों नहीं करवाती?
0: हमने इंदौर भोपाल जैसे बड़े शहरों में अपनी जांच करवा ली है।
1: फिर डॉक्टर का क्या कहना है?
0: क्या कहते, उन्होंने भी कह दिया मैं कभी माँ नहीं बन सकती।
1: तो इसमें निराश क्यों होती हो तुम, भगवान पर भरोसा रखो, वो सबका सब अच्छा ही करता है।
0: जब वो सबका सब अच्छा ही करता है तो फिर मेरा ही बुरा करने पर क्यों तुला है, मुझसे आखिर क्या दुश्मनी है उसकी?
1: भगवान के लिए ऐसा नहीं कहते किरण।
0: तो फिर और क्या कहूँ, मेरी जगह अगर तुम भी होती तो तुम भी यही कहती रमा।
1: तो क्या भगवान पर सिर्फ तुम्हारी इतनी ही आस्था है?
0: भगवान पर मेरी बहुत आस्था थी रमा, मगर अब वो आस्था टूटने लगी है।
1: यानी अगर भगवान तुम्हें सब कुछ देता रहे, तुम्हारी मनोकामना पूरी करता रहे, तभी तक तुम उसमें अपनी आस्था बनाए रखोगी, वरना नहीं।
0: वो तो उनको भी खूब और सब कुछ देता है जो उसमें आस्था ही नहीं रखते।
1: तुम तो जानती ही हो किरण कि जब हम किसी व्यक्ति की सोच को ही नहीं सोच सकते तो फिर वो तो भगवान है, उसकी सोच को हम कैसे सोच सकते हैं कि वो किसे क्या और क्यों दे रहा है?
0: तो फिर तुम ही बताओ वो किसी के साथ इंसाफ और किसी के साथ नाइंसाफी क्यों करता है?
1: मैंने अभी भी कहा ना कि हम भगवान की सोच को सोच नहीं सकते, फिर भी हम एक छोटा सा अंदाजा ये लगा सकते हैं कि इस तरह से शायद वो हमारी परीक्षा लेता हो।
0: जब भगवान सब कुछ जानता है तो वो ये नहीं जानता कि कौन उसकी परीक्षा में पास होगा और कौन फेल हो जाएगा।
1: बिल्कुल, वो ये सब जानता ही होगा। स्कूल में भी तुमने देखा होगा कि टीचर इस बात को जानते हैं कि कौन परीक्षा में पास होगा और कौन फेल होगा, फिर भी वो परीक्षा लेते हैं इस बात की कि फेल होने वाले भी पास होने की कोशिश करते हैं या नहीं।
0: तुम्हारा मतलब अपनी परीक्षा में वो हर एक को पास होने का मौका देता है और देना चाहता है।
1: बिल्कुल, मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ।
0: मगर मैं तो अब ये परीक्षा देते देते थक गई हूँ रमा, मैं ये परीक्षा की घड़ी में अब और नहीं जी सकती।
1: किसी भी घड़ी में जीना और मरना हमारे हाथ में नहीं होता किरण, ये तो सब उसी भगवान के हाथ में होता है। इसलिए हम मरना चाहें भी तो हमें जीना ही होता है, ये ईश्वरीय देन है और इसी का नाम जिंदगी है।
0: तुम कुछ भी कहो रमा, मेरी तो अब भगवान पर से आस्था टूटती जा रही है।
1: शायद इसलिए अब तुम तांत्रिकों और बाबाओं के चक्कर लगा रही हो।
0: तो इसमें बुरा क्या है, मैं तो इसमें कोई बुराई नहीं समझती।
1: लेकिन उसके बनाए इंसानों पर अब तुम विश्वास करने लगी हो।
0: हाँ, क्योंकि जब इंसान को एक डॉक्टर की दवाई से फायदा नहीं होता तो वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है क्योंकि उसे ठीक होना होता है।
1: मगर तुम ये भूल रही हो कि इंसान कितने भी डॉक्टर बदल ले, भगवान चाहेगा तो ही वो ठीक होगा, वरना एक ना एक दिन मरना तो सभी को है।
0: अब जब भगवान पर इतनी आस्था रखने और विश्वास करने के बाद भी कुछ नहीं मिला तो अब इंसानों पर भी विश्वास करके देख ले, कुछ पाने के लिए इंसान को हाथ पैर तो मारना ही पड़ता है ना रमा।
1: मगर हाथ पैर भी तो सही जगह मारना चाहिए ना, वरना भारी निराशा का सामना करना पड़ता है।
0: निराश तो हम पहले ही बहुत हो चुके हैं, अब और क्या निराश होंगे हम।
1: भले ही निराश ना हो लेकिन धोखा खाओगे तो और भी गहरी ही निराशा हाथ लगेगी।
0: तब की तब देखी जाएगी, कई बाबाओं के पास जाने से कई औरतें तो माँ बन चुकी हैं।
1: ये तुम्हारी गलत फहमी है किरण, वो भी भगवान की इच्छा से ही माँ बनी होंगी, वरना तो सभी जानते हैं कि तांत्रिक और बाबा लोग किस तरह से नासमझ औरतों की इज्जत से खेलकर उन्हें माँ बना देते हैं।
0: अब सभी बाबा एक जैसे तो नहीं होते हैं, कुछ तो वास्तव में पहुँचे हुए बाबा और महात्मा होते होंगे ना।
1: तो क्या तुम्हें पहुँचे हुए और ढोंगी बाबा में फर्क मालूम है? फिर सच्चे बाबा किसी बेऔलाद औरत को माँ बना देने का ना तो दावा ही करते हैं और ना ही ऐसी कोई कोशिश ही करते हैं।
0: फिर भी रमा, इतनी औरतें बाबाओं का आशीर्वाद लेने जाती हैं, क्या वे सभी नासमझ हैं?
1: अगर नासमझ ना होती तो बाबाओं के चक्कर में पड़ती ही क्यों, और बाबा लोग ऐसे ही नासमझ औरतों का फायदा उठाते हैं, समझी तुम?
0: अब इतनी भी नासमझ नहीं हूँ मैं।
1: नासमझों की यही तो निशानी है कि वे अपने आप को नासमझ मानते ही नहीं, अपनी नासमझी का एहसास तो उन्हें धोखा खाने के बाद ही होता है।
0: अब बाबाओं के पास मैं अकेले तो जाती नहीं हूँ, ये भी साथ में रहते हैं मेरे।
1: अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें समझा नहीं सकती
0: क्योंकि समझदार तो मैं भी हूँ।
1: अच्छा छोड़ो, तुम चल रही हो क्या तुलसी की सास को देखने?
0: अभी तो तुम हो आओ, मुझे ये कुछ काम निपटाने हैं, मैं शाम को हो आऊंगी।
1: ठीक।

0: क्यों आज तारीख क्या है?
1: आज 20 तारीख है, क्यों?
0: लो, ये भी भूल गए तुम।
1: अरे तो जब तक याद नहीं दिलाओगी तो कुछ याद आएगा कैसे? वैसे ही 10 तरह की चिंता रहती है।
0: तुम्हें याद नहीं, पिछले महीने हम उस बबूल वाले बाबा के पास गए थे?
1: हाँ याद आया, वो बरगद वाला बाबा।
0: फिर
1: उसका आश्रम और उसके वो चेले और भक्त।
0: मगर उसने क्या दिया था और क्या कहा था, वो सभी याद आया या नहीं आया?
1: अरे हाँ याद आया, याद आया। उसने कुछ जड़ और कुछ भभूत दी थी तुझे और कहा था जड़ को पानी में घिसकर उसमें भभूत मिलाकर 7 दिन तक रोज पीना और 1.25 महीने बाद देखना तेरी गोदरी हो जाएगी।
0: मगर ऐसा नहीं हुआ।
1: 1.25 महीना हो गया है क्या?
0: तभी तो कह रही हूँ, तुम्हें तो कुछ होश रहता ही नहीं है।
1: तो क्या कुछ भी नहीं हुआ?
0: अगर ऐसा हो जाता तो क्या बात थी, जड़ घिसकर भभूत मिलाकर पीते पीते 1.25 महीना भी गुजर गया, मगर न जड़ी बूटी ने कोई कमाल दिखाया ना भभूत ने।
1: मगर बबूल वाला बाबा तो बड़ी बड़ी बातें बना रहा था।
0: सही कहते हो तुम, ये बबूल वाला बाबा भी पिछले सभी फकीर और बाबाओं की तरह झूठा निकला। ये भी अपने ही मुंह अपनी कितनी तारीफ कर रहा था, ना मुराद कहीं का।
1: हाँ और ऊपर से हमको लूट भी लिया उस ठग ने। हमारे यहाँ बच्चा हो और हमारी मनोकामना पूरी होने के बदले में उसने हवन और अनुष्ठान के नाम पर पूरे 2000 रुपए ले लिए लुटेरे ने।
0: उसने हमें लूटा भी तो कितने तरीके से लूटा। 2 मंगलवार तो साधारण पूजा पाठ के नाम पर हमें ऐसे ही बुलवा लिया और फिर कहा अगले गुरुवार फिर आना, बड़ी पूजा और अनुष्ठान करना है।
1: और उसका खर्च भी बता दिया था, पूरे 2000। और क्या कहा था उसने कि रुपए पैसे के पूरे इंतजाम के साथ ही आना, वरना पूजा पाठ और अनुष्ठान में भी कमी रह जाएगी।
0: बस यही डर दिखाकर तो उसने हमसे 2000 रुपए ले लिए थे।
1: मगर हम लूट गए, ये तो अब हमें लूटने के बाद ही पता चला है ना।
0: और क्या, अगर हमें पहले ही पता चल जाता कि बाबा हमें लूट रहा है तो क्या हम यूँ लूटते?
1: बात तो सही है, मगर अब हम कर भी क्या सकते हैं? पुलिस में भी रिपोर्ट नहीं लिखा सकते। हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है कि बाबा ने हमसे 2000 रुपए लिए हैं और हमने उसे दिए हैं, कौन मानेगा इसे?
0: हम भी क्या करें, औलाद की आस ही हमें फकीर और बाबाओं के दर पर ले जाती है हमेशा।
1: तू सही कहती है किरण, और अब भी तेरी गोद खाली है।
0: और औलाद के लिए हमने बाबाओं ही क्या, हमने तो तांत्रिकों तक के दरबार में अपनी हाजिरी दी है, मगर हमारी आस अधूरी ही रह गई।
1: तुझे याद है इस बबूल वाले बाबा के पास जाने से पहले हम वो तांत्रिक कंकालनाथ के पास भी गए।
0: अरे उस कंकालनाथ का तो नाम भी मत लो तुम, क्या मैं उस भेड़िए को भूल सकती हूँ? तुम भले ही उसे भूल जाओ मगर मैं उसे कभी नहीं भूल सकती हूँ। उस हैवान ने तो संसार का कल्याण करने के नाम पर मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी उसने।
1: मगर तेरी हिम्मत और दिलेरी के आगे उस पापी की एक न चली, और फिर वहाँ कमरे में तेरी चीख सुनकर मेरे आ जाने से उसकी एक न चली, वरना मैं उसको वहीं ठंडा कर देता।
0: गलती भी तो हमारी ही थी जो हम उस पाखंडी के पास गए थे, और फिर हम उस पर हाथ भी नहीं डाल सकते थे क्योंकि वो तांत्रिक क्रिया करने का बहाना करने लगा था। फिर उसके दरबार में उसके चेले और भगत के रूप में कितने गुंडे बैठे थे वहाँ, याद है मुझे अब भी।
1: हाँ और फिर हम उस तांत्रिक पर इल्जाम भी नहीं लगा सकते थे क्योंकि हमारी बात पर विश्वास ही कौन करता, वहाँ सभी तो उसके भक्त बने बैठे थे। जब हमारी तरह धोखा खाएंगे ना तब उन्हें पता चलेगा कि वो क्या है।
0: मगर इतने जतन के बाद भी हमें औलाद क्यों नहीं हो पा रही है? लगता है रमा ठीक ही कह रही थी।
1: क्या ठीक कह रही थी?
0: यही कि भगवान में आस्था बनाए रख और उसी में विश्वास रख।
1: भगवान में इतना विश्वास किया, इतना उससे अपने लिए औलाद मांगी, क्या मिला? क्या मिला उससे सिवा निराशा और तरसने के?
0: यही मैंने भी उससे कहा था, 5 साल हो गए हैं हमें औलाद के लिए यूं तरसते तरसते।
1: ऐसी निराशा में कोई भी इंसान बाबाओं के चक्कर तो लगाएगा ही।
0: रमा से यही कहा था मैंने, तो बोली थी जब भगवान ही औलाद नहीं दे रहा है तो इंसान कहाँ से दे देगा औलाद।
1: सुनने में तो उसकी बात ठीक भी लगती है, लेकिन क्या पता किसी सच्चे बाबा के आशीर्वाद से हमें औलाद मिली जाए।
0: लेकिन उसने एक बात तो बिल्कुल सच ही कही थी।
1: क्या?
0: कि बाबाओं से तुम्हें औलाद मिले ना मिले मगर धोखा जरूर मिल जाएगा, और वो बबूल वाले बाबा ने हमें लूट कर धोखा ही तो दिया है। मैं ये कैसे मान लूं कि हमारी ये आस कभी पूरी नहीं होगी, कोशिश करने में हर्ज क्या है?
1: अब ये तो कोई सच्चा महात्मा ही बता सकता है।
0: अब ये कैसे पता चले कि इस दुनिया में सच्चा महात्मा कौन है और कहाँ है?
1: तूने भी खूब याद दिलाया है किरण, आजकल अपने इस कस्बे के बाहर सुनसान में एक बाबा आकर ठहरा है।
0: अच्छा,
1: वहीं उसने फूस की एक छोटी सी झोपड़ी बनाई है। हो सकता है वही सच्चा महात्मा और बाबा हो।
0: कहीं ऐसा न हो कि वो भी औरों की तरह ढोंगी और ठग निकल जाए? फिर
1: देखने में तो वो सीधा साधा लगता है, अगर वो भी ठग होता तो उसके भी चेले और भक्त होते। क्या
0: तो फिर कल चल के देख लें उसको।
1: ठीक है।

0: बाबा हम हर फकीर बाबा और तांत्रिक के पास हो आए हैं, निराश हुए हैं, लुट गए हैं हम, मगर अब तक बेऔलाद हैं। अब आपके पास आए हैं बाबा हम।
1: तो ये बात है बेटी, औलाद की आश है। किशोर बेटा, तुम दोनों को लूटूंगा मैं, साफ कहता हूँ। हाँ, मगर ना तुम्हारा रुपया, ना तुम्हारी इज्जत और ना ही तुम्हारी आस्था लूटूंगा। मैं लूटूंगा बाबाओं और तांत्रिकों के पास जाने की तुम्हारी आदत, भावना, आस्था और विश्वास को।
0: ये आप क्या कह रहे हैं बाबा?
1: मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ बेटी। जो बाबा तांत्रिक और फकीर खुद ईश्वर के सामने भिखारी है, तुम उन भिखारियों से क्यों औलाद की भीख मांगने जाते हो?
2: क्या कह रहे हैं बाबा?
1: मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। उस ईश्वर के सामने सब भिखारी हैं, इसलिए मांगना ही है तो उस ईश्वर से सीधे मांगो
0: बाबा।
1: और हाँ, अगर मांगने पर भी वो ना दे तो उस पर अपनी आस्था कम ना करना। अपना विश्वास हटाने के बजाय ईश्वर की योजनाओं को समझो, उसके संकेत को जानो।
2: मतलब
1: वो तुम्हें औलाद ना देकर तुमसे एक अनूठा काम करवाना चाहता है।
0: साफ साफ कहिए ना बाबा।
1: मतलब वो चाहता है कि तुम किसी अनाथ बिन माँ बाप के सरपरस्ती बच्चे को गोद ले लो, तुम्हें बच्चा मिल जाएगा और बच्चे को उसके माँ बाप मिल जाएंगे।
0: ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था बाबा, आपने तो हमारी आंखें खोल दी।
2: बाबा, अगर आप हमें पहले मिल गए होते तो हम इतना ठगे ना गए होते।
1: तो अब ठगे जाने से पहले अब किसी और बच्चे को गोद ले लो, जाओ। और याद रखना, धन्य तो वही एकमात्र ईश्वर है जो किसी न किसी रूप में प्रत्येक को भटकने से बचाता है, वह सबका कल्याण करता है।
0: मैं आपको धन्यवाद कैसे अदा करूं बाबा, आपने भगवान पर मेरी टूटती हुई आस्था को बचा लिया है।

अभी आपने सुना नाटक टूटती हुई आस्था। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे अपर्णा सिंह, मैरी बाबा, अरुण

साथियों, अभी आपने सुना नाटक जिसे प्रस्तुत कर रहे थे माइकल होजेस, और इस नाटक का शीर्षक था टूटी हुई आशा, और यह प्रस्तुति थी सब प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, इसी के साथ आज्ञा दीजिए ग्लोरिया गांगले को। अगली मुलाकात में आपसे बात करेंगे विवेक पीटर रॉबर्ट। धन्यवाद।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोताओं को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी की समय सारिणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम एक मुलाकात, युवा विकास और अंत में युग संचार। तो दोस्तों, अब हम अपनी समय सारिणी के अनुसार हमारा यह कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम एक मुलाकात से, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं संतोष जोशी और उनके साथ है श्री नरेंद्र मंडलोई। तो आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम एक मुलाकात संतोष जोशी के साथ।

0: श्रोताओं, एक मुलाकात कार्यक्रम में हमने समय समय पर अलग अलग व्यक्तियों को आमंत्रित किया है और उनसे आपकी मुलाकात करवाई है। आज इस कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं श्री नरेंद्र मंडोई, हम उनसे आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। नरेंद्र जी नमस्कार।
1: नमस्कार
0: नरेंद्र जी, सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि आप क्या करते हैं।
1: वैसे श्रोताओं को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं गांव से शहर में आया हूँ अभी, और यहाँ पे मैं जॉब भी करता हूँ, और जॉब के साथ साथ मेरा एजुकेशन भी आगे चल रहा है, पढ़ाई भी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे।
0: अच्छा, गांव से आप कब आए शहर?
1: 5 साल पहले आया हूँ।
0: अच्छा, कहाँ, किस गांव के आप रहने वाले हैं?
1: वैसे मैं इंदौर से करीब 150 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण अंचल है, बहुत दूर है यहाँ से, 150 किलोमीटर के लगभग है, उस गांव का नाम है हरण गांव, वहाँ से मैं यहाँ शहर आया।
0: इंदौर से इतनी दूरी पर है ये, तो क्या बहुत ही अंदर की तरफ है ये गांव?
1: हाँ, बहुत अंदर है।
0: वहाँ आवागमन की सुविधा?
1: वैसे वर्तमान समय में तो हो गई है, पर इसके पहले कोई सुविधा नहीं थी आने जाने की।
0: तो आप वहीं बड़े हुए, वहाँ स्कूल कॉलेज वगैरह कुछ है?
1: नहीं, वहाँ पे सिर्फ प्राइमरी तक स्कूल है, इसके बाद वहाँ पे कोई एजुकेशन का
0: कोई आगे नहीं,
1: आगे कोई रास्ता नहीं।
0: तो ये स्कूल भी सरकारी स्कूल होगा?
1: सरकारी स्कूल।
0: आप यहाँ किस उद्देश्य को लेकर आए थे?
1: वैसे मेरा गांव से शहर आने का उद्देश्य ये है कि एक तो अपना एजुकेशन हो जाएगा, वातावरण अच्छा मिलेगा, और मेरे एजुकेशन के साथ साथ जो परिवार के जो भाई बहन है उनका एजुकेशन हो जाएगा, इस उद्देश्य को लेकर मैं शहर में आया।
0: स्वाभाविक है कि जब एक छोटे से गांव से, जो कि इतना अंदर की तरफ है कि जहां सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल है, वहां से जब कोई शहर की तरफ 150 किलोमीटर दूर कोई व्यक्ति आता है, तो उसके जो अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं, वो जरूर ये सोचते हैं कि बेटा बहुत दूर जा रहा है। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने आपको रोका हो कि नहीं तुम तो यहीं रहो, कहाँ जाओगे?
1: हुआ ना, ऐसे हुआ मेरे साथ, ऐसे हुआ। मेरे से माता पिता शहर आने के लिए एकदम तैयार नहीं थे, वो तो मैं मेरी इच्छा से ही शहर की ओर आया, तो मना कर रहे थे, मतलब एग्री नहीं थे आने के लिए कि हमारा बच्चा शहर की ओर जाए, क्योंकि शहर से गांव के लोग बहुत डरे हुए रहते हैं कि वहाँ पे तो दंगा फसाद होते रहते हैं, और वहाँ पे तो बहुत
0: एक तेज लाइफ है,
1: तेज लाइफ,
0: तेज जिंदगी,
1: ना बच्चा बिगड़ भी सकता है, वहाँ पे सुधर भी सकता है, दोनों मतलब उनके विचार नेगेटिव पॉजिटिव थे उनके।
0: तो बहरहाल आप यहाँ आए, आपने पढ़ाई शुरू की।
1: हाँ।
0: और फिर आपने ये बताया कुछ देर, वैसे जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी जीवन जिसका है, वो पढ़ाई के साथ साथ ये भी सोचता है कि मैं कुछ, मुझे साथ साथ कोई एक कोई जरिया हो जिसमें कमाई का, जिसमें कोई पैसा कमा सकूं, तो अपने पढ़ाई में लगा सकूं, तो माता पिता पर कम बोझ पड़े।
1: हाँ।
0: ये सोचकर तो आपने कोई, आपने बताया कि आपने नौकरी आपने की?
1: हाँ, वैसे मैं अभी नौकरी भी करता हूँ यहाँ पे, एक हॉस्पिटल है सुयस हॉस्पिटल में, वहाँ पे जॉब भी करता हूँ मैं भी।
0: अस्पताल में आप जॉब करते हैं?
1: हाँ।
0: अस्पताल में क्या क्या काम करते हैं?
1: वैसा वहाँ पे मेरा नर्सिंग जॉब है।
0: नर्सिंग का जॉब?
1: हाँ।
0: मतलब आप पुरुष हैं और आप नर्सिंग जॉब, कुछ श्रोताओं को बताएं आप, कि अभी तक तो यही हम सुनते आ रहे हैं कि ज्यादातर कि नर्सिंग यानी नर्स शब्द से यही बोध होता है कि वो स्त्री है और वही ये काम कर सकती है।
1: वैसे जो है मतलब अधिकतर तो महिला ही मतलब नर्सिंग वर्क करती आ रही है और करती है, पर पुरुष भी ये नर्सिंग वर्क कर सकता है, इसके लिए भी कुछ ट्रेनिंग होती है, मेल नर्स की जिसको अपन बोल सकते हैं, तो वो भी नर्सिंग वर्क कर सकता है।
0: तो इस ट्रेनिंग में भी वही बातें होती है, वही सब कुछ सिखाया जाता है जो आमतौर पर नर्सिंग में सिखाया जाता है?
1: हाँ, सेम, दोनों में महिला और मतलब पुरुष दोनों में सेम इसकी ट्रेनिंग होती है, उसमें दोनों को सिखाया जाता है।
0: जी, तो ये ट्रेनिंग लेने के बाद आप लोग क्या कहलाते हैं?
1: मेल नर्स।
0: मेल नर्स कहलाते हैं।
1: वैसे प्रेजेंट टाइम जो बोलचाल की भाषा में ब्रदर भी बोल सकते हैं, ब्रदर और सिस्टर जो।
0: हाँ, जब सिस्टर कहा जाता है तो पुरुष को ब्रदर कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। और भूमिका भी उसकी वही होती है,
1: सेम रहती है,
0: जो एक सिस्टर की भूमिका होती है, जो बहन कहा जाता है जिसे, और अगर ब्रदर कहा जाता है तो एक भाई की जो भूमिका होती है, वाकई में बहुत अच्छी बात है। तो आपने वाकई जॉब, आपने कार्य बहुत अच्छा चुना, जिसमें कि आपको, आप सेवा कार्य भी कर रहे हैं, एक मरीज की सेवा करते हैं आप, तो आपको काफी अच्छा लगता होगा?
1: नहीं, बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है कि एक दुखी इंसान की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है इस वर्क से, बहुत खुश हूँ मैं कि वास्तव में एक दुखी इंसान की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है।
0: मन को संतोष है आपके, और मतलब तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप साथ साथ आपने आपको आपने नौकरी तो की है, आप आगे और कुछ पढ़ाई भी कर रहे हैं क्या?
1: हाँ आगे मैं पढ़ाई भी मेरी,
0: क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कम से कम कुछ ये हो कि आप अपने आप को आगे बढ़ाएं।
1: हाँ आगे मेरी पढ़ाई भी चल रही है, मैं अभी एमएससी भी कर रहा हूँ केमिस्ट्री से।
0: केमिस्ट्री में? हाँ हाँ तो देखिए अब आप एमएससी कर रहे हैं, एमएससी आपका फाइनल ईयर है?
1: प्रीवियस
0: पहला साल है,
1: पहला साल है।
0: तो अब जब केमिस्ट्री में एमएससी कर रहे हैं आप, तो आपका जो अभी आप नौकरी जो कर रहे हैं, तो ये तो फिर शायद आप उसे छोड़कर आगे बढ़ेंगे।
1: हाँ मेरा मतलब उद्देश्य आगे बढ़ने का ही है, ये तो अपना मतलब पार्ट टाइम जिसको अपन बोल सकते हैं, ताकि
0: हाँ आप आगे बढ़ सकें। यानी आप एमएससी अगर करते हैं तो आप शायद शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहेंगे?
1: हाँ मेरा उद्देश्य वही आगे कि कुछ पीएचडी करके डॉक्टर डिग्री लेकर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हूँ मैं।
0: आपने स्वयं तो पढ़ाई आप कर ही रहे हैं, और
1: हाँ।
0: आपने बताया कि आप इंदौर शहर में आकर के आपने यहाँ पर आप कमरा लेकर किराए से और आप रह रहे हैं, तो आपके आपके भाई भाई बहन हैं?
1: इससे पहले मैं यहाँ अकेला रहता था, बाद में फिर जो मेरे तीन छोटे भाई हैं उनको भी मैं मेरे पास ले आया हूँ गांव से शहर में।
0: अच्छा।
1: वो भी पढ़ाई कर रहे हैं आगे, पूरा देख रेख उन्हीं का सब मैं देख रहा हूँ उनको, क्योंकि गांव में तो शिक्षा है नहीं, गांव में तो वो
0: हाँ वो आपने बताया
1: प्राइमरी
0: है, शिक्षा ही है वहाँ।
1: हाँ तो मेरा उद्देश्य यही रहा कि मतलब मेरे भी शिक्षा आगे बढ़ती रहे और मेरे परिवार में जो भाई बहन है उनको भी आगे मैं लाना चाहता हूँ कि वो भी पढ़े लिखे अच्छे से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, इसलिए उनको भी मैं लेके आया और मेरे पास ही हम रह रहे हैं हम लोग मिलके सब।
0: आपका विवाह नहीं हुआ अभी?
1: अभी नहीं हुआ।
0: अच्छा। भाई आज सब छोटे हैं आपसे?
1: हाँ छोटे हैं।
0: तो आप जो नौकरी कर रहे हैं
1: हाँ, हाँ।
0: और कमा रहे हैं, तो आप भाइयों का खर्चा भी उठा रहे हैं, खुद का खर्चा भी उठा रहे हैं, तो आप अभिभावकों से कोई मदद लेते हैं आर्थिक
1: हाँ,
0: रूप से?
1: देते ना
0: जी।
1: माता पिता भी मतलब शुरू में तो बहुत मतलब मना ही करते थे, उन्होंने जब हमारी प्रोग्रेस देखी कि हमारे बच्चे तो शहर में जाके अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे मतलब पढ़ लिख कर मतलब उच्च स्तर पर जाना चाहते हैं, तो उनको बहुत खुशी हुई, तो वो भी हमारी मदद करते हैं और हम भी हमारा कर लेते हैं थोड़ा सा।
0: वहाँ माता पिता गांव में उनकी कमाई का क्या जरिया क्या करते हैं?
1: खेती करते हैं।
0: खेती है उनकी?
1: हाँ।
0: नरेंद्र जी एक संघर्षमय जीवन आप बिता रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि आप खुद पढ़ भी रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, आगे बढ़ने की ललक भी है आपको, इसीलिए आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, और न केवल खुद पढ़ाई कर रहे हैं बल्कि अपने भाइयों को भी पढ़ा रहे हैं, उनको पढ़ाई में भी उनको आप उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। आपके और व्यक्तिगत शौक क्या है, आपको क्या आप अपना समय बिताते हैं, आप मनोरंजन के लिए क्या करते हैं?
1: वैसे मेरे खुद के व्यक्तिगत शौक ये है कि एक तो पढ़ाई तो मैं कर ही रहा हूँ, इसके बाद मुझे पौधे लगाना प्लांटिंग बहुत मुझे अच्छी लगती है।
0: अच्छा।
1: उसके साथ साथ मुझे थोड़ा सा संगीत में भी थोड़ा मुझे शौक है, संगीत में भी शौक रखता हूँ मैं,
0: संगीत
1: गाने का बजाने का,
0: गाने का शौक रखता हूँ। तो पौधे वगैरह आप लगाते हैं जा रहे थे वहाँ?
1: मेरा उद्देश्य मैं हर साल एक पौधा लगाता हूँ गांव में घर पे।
0: अच्छा। बहुत अच्छी
1: बात
0: है।
1: बहुत मुझे शौक है घर पे मतलब फूलों के पौधे लगाना और फल फ्रूट जो रहते हैं फलों के पौधे लगाना। मैंने गांव पे जो घर पे आम जाम नींबू के पौधे लगा रखे हैं, एक अच्छा सा छोटा सा गार्डन बना रखा है, मतलब बहुत शौक है मुझे पौधे लगाने का।
0: बड़ी अच्छी बात है, आपने कहा हर साल आप एक पौधा जरूर लगाते हैं, और ये पौधे अभी लग रहे हैं, ये जब धीरे धीरे बड़े होंगे और एक विशाल रूप ले लेंगे अपने सामने, तो एक प्रेरणा बन के रहेंगे वो कि पेड़ लगाना चाहिए, हरियाली बढ़ाना चाहिए। अगर हर इंसान ये सोच ले कि मैं पेड़ लगाऊंगा, न केवल लगाऊंगा, लगाने के बाद मैं उसकी रक्षा करूंगा, उसे पनपने में बढ़ने में उसकी मदद करूंगा, तो ये एक बहुत बड़ा योगदान होगा हमारे देश के लिए। नरेंद्र जी आपने अपने लीक से हटकर मतलब
1: हाँ, हाँ।
0: जो कर रहे हैं
1: हाँ।
0: उससे हटकर आपने कभी कुछ करने का सोचा, कोई कोई आपकी इच्छा थी दिल में पहले, या जब आप गांव से निकले या शहर में जब पढ़ने लगे थोड़ा सा होश संभाला आपने, तो तब आप कुछ करना चाहते थे, आपके मन में कोई सपना था कि मैं जीवन में ये करूंगा?
1: हाँ सपना तो था ना मेरा,
0: कुछ बताएं उसके बारे में।
1: मतलब सपना ये था कि मैं आगे अच्छे से कॉलेज तक पढ़ लिख कर अच्छे से कोई प्रोफेसर बनूं, कोई अच्छे से डिग्री प्राप्त करूं, क्योंकि गांव में तो जो है गाइडलाइन सही मिल नहीं सकती थी, तो मैं उस हिसाब से शहर की ओर आया और एकदम लगातार मेहनत करता रहा, आगे बढ़ता रहा और अभी मैं मेरा जो उद्देश्य है उसके करीब मैं पहुंच गया हूँ। मेरा यही उद्देश्य है कि अच्छे से पढ़ के और कुछ डिग्री प्राप्त करके अच्छे से इंसान बनना चाहता हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। थोड़ा अपने नर्सिंग के जॉब के बारे में बताएं आप, क्योंकि अस्पताल का जीवन ऐसा होता है कि अगर किसी ने अस्पताल देखा भी है तो उसी सीमा तक देखा है कि बीमार पड़ा है या उसे जाना पड़ा है अस्पताल, तो अगर उसे भर्ती होना पड़ा है तो उसने वही सब माहौल देख लिया है। थोड़ी देर के लिए कोई आया उसे इंजेक्शन लगा के चला गया, कोई आया उसे और कुछ दवाई देके चला गया, तो थोड़ा सा उस लाइफ स्टाइल के बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे आप काम करते हैं वहां पर। दिक्कतें तो बहुत आती होंगी।
1: नहीं, वैसे दिक्कतें हमको कुछ नहीं आती है वहाँ पे हॉस्पिटल में, क्योंकि तो हमारा डेली का जो वर्क रहता है उसमें कोई दिक्कतें नहीं आती है।
0: एक अस्पताल की तरफ से नहीं, मरीज की तरफ से दिक्कतें क्या क्या आती हैं थोड़ा बताएं।
1: नहीं, दिक्कतें कुछ ऐसी नहीं आती।
0: कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनमें धैर्य नहीं होता, थोड़ा
1: हाँ,
0: परेशान हो
1: कुछ
0: जाते हैं।
1: तो जो वैसे मरीज तो अपनी जगह ठीक रहता है, कुछ अटेंडर लोग ज्यादा परेशान करने लगते हैं कभी कभी।
0: अच्छा, वही मैं जानना चाहता था कि वहां किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको।
1: बस इस टाइप की दिक्कत है, तो जल्दी से इलाज कीजिए हमारा, मतलब इस टाइप की थोड़ी आती है दिक्कत है। पर हम लोग बहुत धैर्य से उनको एकदम प्यार से समझाते हैं, क्योंकि वो लोग जानते नहीं है ना इतना ज्यादा।
0: और कई लोग जो वहां पर मरीज के साथ होते हैं तो उनका व्यवहार भी मरीज के साथ जो होना चाहिए वैसा पाते हैं क्या?
1: नहीं, वैसा नहीं पाता। जो जो साथ में मरीज के जो साथ रहते हैं वो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते कभी कभी। वो अपना एंजॉय के रूप में रहते हैं कुछ लोग, कुछ लोग सेवा भी करते हैं।
0: जैसे बताएं आप, कोई खास घटना देखी हो आपने?
1: नहीं, घटना तो वैसे बहुत सारी होती रहती है हॉस्पिटल के अंदर। जो मरीज रहता है उसके साथ जो साथ में रहते हैं अटेंडर लोग, वो पूर्ण रूप से कभी ध्यान भी नहीं देते ज्यादातर।
0: या मरीज को कभी मान लीजिए जैसे खाने की मनाही होती है, उसका खाना सीमित होता है।
1: हाँ हाँ।
0: तो कई लोग हमने ये भी देखा है कि वो बहुत सारा खाना लेकर वहां जाते हैं और स्वादिष्ट व्यंजन उसके सामने जो है वो खाते हैं, तो उस एक मनोवैज्ञानिक रूप से उसके दिमाग पर अच्छा असर नहीं पड़ता। दूसरा, शोर बहुत होता है, हमने खासकर देखा है कि अस्पतालों में शोर बहुत होता है, तो ये आप ये कैसा पाते हैं इसको, कुछ उसके लिए कुछ किया जाता है?
1: हाँ, किया जाता है उसके लिए कुछ, मतलब अटेंडर जो लोगों को कम आने दिया जाता, पास दे दिया जाता उनको कि एक मरीज के साथ एक या दो रह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रह सकते हैं, उसी से असुविधा हो पाती है इस कारण।
0: आप वैसे आप ही बेहतर यह बात बता सकते हैं क्योंकि आप लगातार एक डॉक्टर से ज्यादा आप मरीज के पास रहते हैं, क्योंकि डॉक्टर मरीज को देखते हैं उसके क्या हालात हैं और उसको अब क्या देना है और अब आगे क्या करना है, ये आपको बता के वो जाते हैं।
1: हाँ।
0: लेकिन लगातार रहते आप हैं तो आप उसकी मानसिक स्थिति और वहां का जो वातावरण है उससे आप ज्यादा वाकिफ होते हैं, तो थोड़ा बताएं कि एक मरीज के साथ एक उसके जो उसका जो अटेंडेंट है जो उसके साथ सेवा करने के लिए रुका हुआ है।
1: हाँ हाँ।
0: उसका कैसा व्यवहार होना चाहिए मरीज के प्रति?
1: वैसे मरीज के प्रति उनका व्यवहार अच्छे से होना चाहिए, कोलाइट बोलना चाहिए और उनको जिन चीजों की आवश्यकता है वो उपलब्ध कराना चाहिए, नर्सिंग स्टाफ से अच्छे से बातें करना चाहिए, ये बातें होना चाहिए साथ में अटेंडर के।
0: बिल्कुल सही बात है। हम देखते हैं कई बार कि जो एक हॉस्पिटल मैनर्स नाम की जो चीज होती है।
1: हाँ हाँ।
0: वो अक्सर मरीज तो मजबूर है, वो तो बिस्तर पे लेटा हुआ है, वो तो ठीक होना चाह रहा है, लेकिन जो साथ में जो लोग हैं उनका व्यवहार हॉस्पिटल के हिसाब से, अस्पताल के हिसाब से उस की सीमाओं में होना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को तकलीफ भी ना हो और उसके मरीज को ना हो। आपने बातें बहुत बताई हमें अच्छी अच्छी और आपसे जो बातें हुई वो काफी प्रेरक भी हैं, क्योंकि हमारे जो युवा हैं, उन जो युवा लोग जो हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, जो छोटी छोटी जगहों पर रहते हैं, छोटे गांव में
1: छोटे गांव में रहते हैं, वो तो
0: ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां बहुत ही सीमित साधन है, तो वो भी सुन रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को, हमारे युवा श्रोताओं के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे।
1: नहीं, मतलब आज के युवा श्रोता से मेरा यही संदेश है कि अपना जो उद्देश्य है उसको उसके ओर आगे लगातार बढ़ते रहें, कड़ी मेहनत करें, कुछ रुकावट आए तो सहन करें उस चीजों को और अपने लक्ष्य को बढ़ते रहें, मतलब जो उद्देश्य है उसके ओर बढ़ते रहें, बीच में जो परेशानी आती है, दिक्कत आती है,
0: उनसे घबराएं
1: घबराएं नहीं और
0: उन परेशानियों को दूर करने का प्रयास हिम्मत से करें, यही आप
1: मैं यही कहना चाहता हूँ श्रोताओं से।
0: तो नरेंद्र जी, एक बहुत ही छोटी जगह से, एक छोटे से गांव से उठकर अपना जीवन जिस तरह से बनाया है, अपने कैरियर निर्माण जिस तरह से करने में आप लगे हैं, ये वाकई बहुत ही तारीफ की बात है। और ये आपने नहीं सोचा कि मैं छोटी जगह में हूं तो यहीं रहूं? आप रह सकते थे, आप
1: हाँ, रह
0: वहीं रह
1: सकता था
0: सकते थे,
1: मैं।
0: और आपने बताया कि आपके यहाँ
1: हाँ
0: खेती बाड़ी है आपके माता पिता, तो आप उनमें मदद कर सकते थे, रह सकते थे, लेकिन आपने कुछ अलग हटके करना चाहा। और कई बार हिम्मत टूटी भी होगी, कई बार आपको लगा होगा कि, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी।
1: नहीं, हिम्मत नहीं आ रही। मैं जितनी भी बड़ी से बड़ी कठिनाई उनको सहन करता हुआ, मतलब
0: आप
1: आगे बढ़ता
0: आगे
1: रहा मैं।
0: बढ़ते रहे। तो नरेंद्र जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमसे इतनी अच्छी अच्छी बातें की, इसके लिए आपको बहुत बहुत

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक मुलाकात, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संतोष जोशी और उनके साथ थे श्री नरेंद्र मंडलोई। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआं पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्यस्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। साथियों, अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम युवा विकास के अंतर्गत वार्ता का, जिसके लेखक हैं माइकल हॉजेस और प्रस्तुतकर्ता है माइकल हॉजेस एवं अमृता मोतीवाले। और वार्ता का शीर्षक है विवाह पूर्व शिक्षा और आत्मनिर्भरता।

0: युवा और विकास के अंतर्गत प्रस्तुत है बातचीत विवाह पूर्व शिक्षा और आत्मनिर्भरता। इसके लेखक हैं माइकल हॉजिस और बातचीत में भाग ले रहे हैं अमृता मोतीवाले और माइकल हॉजिस।
1: युवा और विकास सुनने वाले सभी युवा साथियों को अमृता और
0: माइकल का
1: नमस्कार। साथियों, युवा मन उत्साह, उमंग और जोश से भरा होता है। उसके मन में भविष्य के लिए नए नए सपने भी होते हैं।
0: जी हाँ अमृता जी, जिन्हें पूरा कर एक सुखी जीवन बिताने की उसकी आशा भी होती है।
1: और माइकल जी, इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए वह निरंतर प्रयास भी करता रहता है।
0: जी हाँ, और मानवीय गुणों से भरपूर और भावनाओं से लबरेज होने के कारण ही उसके मन में अपनी युवावस्था में कभी न कभी अपने जीवन साथी और विवाह की भावना भी उठती है और ख्याल भी आता है।
1: जी बिल्कुल माइकल जी, यहाँ मैं इस बात का जिक्र भी करती चलूं
0: जी
1: कि कुछ पढ़ाई करते हुए युवाओं के मन में यह विचार उठता है तो कुछ बेरोजगार युवाओं के मन में विचार उठता है
0: जी,
1: जिनमें युवक और युवतियां दोनों ही होते हैं।
0: जी अमृता जी, इसमें भी कुछ युवा पढ़े लिखे होते हैं, कुछ अपनी पढ़ाई किसी कारण से बीच में ही छोड़ देते हैं
1: जी,
0: तो कुछ मात्र केवल इतने पढ़े लिखे ही होते हैं जिन्हें अनपढ़ की श्रेणी में रखा जा सकता है।
1: जी बिल्कुल, कहने का मतलब यही है श्रोता साथियों कि विवाह की कामना और अपने जीवन साथी की कामना और उसे जीवन भर के लिए पाने की कामना प्रत्येक युवा हृदय में कभी न कभी तो उठती रहती है।
0: और अमृता जी, इस तरह की भावना के उठने को कोई गलत या अनैतिकता की संज्ञा नहीं दे सकता है।
1: जी नहीं,
0: क्योंकि यह एक प्राकृतिक और मानवीय गुण अथवा कृत्य है।
1: बिल्कुल माइकल जी, इसलिए इस बात को या इस कामना को हम या कोई भी बिल्कुल भी गलत नहीं ठहरा सकता। लेकिन गलत समय पर ऐसी कामना को बिल्कुल गलत कहा और गलत ठहराया जा सकता है।
0: तो अमृता जी, हमारे युवा श्रोता साथियों को हम यह भी बताते चलें कि गलत समय पर इस कामना को क्यों और कैसे गलत ठहराया जा सकता है।
1: जी हाँ माइकल जी, जरूर, इस कामना को गलत तब कहा जा सकता है जब युवक या युवती पढ़ाई कर रहे हों,
0: बिल्कुल,
1: उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी हो या फिर वे बेरोजगार हो और विशेषकर लड़के।
0: आपने बिल्कुल सही कहा अमृता जी, जो युवक या युवती पढ़ाई कर रहे हों, जिन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी है, या फिर वो युवक जो बेरोजगार हों, तो उन्हें तो बिल्कुल भी अपने विवाह की कामना नहीं करना चाहिए
1: जी।
0: इसे गलत समय पर सही कामना कह सकते हैं हम।
1: जी बिल्कुल, यहाँ हम यह भी स्पष्ट करते चले माइकल जी,
0: जी,
1: कि ये बात हम केवल निम्न और मध्यम वर्ग के बारे में ही कह रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि आर्थिक समस्या और सुखी भविष्य की कामना की समस्या इन्हीं दो वर्गों के समक्ष हमेशा मुंह बाय खड़ी रहती है।
0: बिल्कुल अमृता जी, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। कहने का तात्पर्य यही है कि युवा अपना भविष्य तय कर लें, अपने भविष्य की मंजिल को पा लें, हर तरह से विवाह के पूर्व आत्मनिर्भर बन जाएं, तभी अपने विवाह के बारे में सोचें या प्रयास करें।
1: जी बिल्कुल, वरना अपने उज्जवल भविष्य की कामना करने वाले युवाओं का भविष्य घोर अंधकार में डूब सकता है।
0: जी जी,
1: और उन्हें जीवन भर गलत समय पर सही निर्णय लेने का कारण पछताना पड़ सकता है।
0: जी, तो अमृता जी, आइए इस समस्या पर हम विस्तार से बातचीत करते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: सबसे पहले हम बात करते हैं उन युवाओं की जो पढ़ाई करते करते अपने साथ पढ़ने वाले या अन्य किसी विपरीत लिंग के युवा के साथ प्रेम में पड़ जाते हैं।
1: जी,
0: फिर इसी प्रेम को वह विवाह में बदल देना चाहते हैं और वो भी पढ़ाई के दौरान ही।
1: जी हाँ माइकल जी, और प्रेम के चलते ही वह अपने प्रेम को उसकी मंजिल तक पहुंचाने की चाहत भी रखते हैं। कभी कभी अपनी जिद के कारण वह अपनी मंजिल को पा भी लेते हैं।
0: लेकिन अमृता जी, वह अपने विवाह के जोश में इस बात को बिल्कुल ही भुला देते हैं कि वे स्वयं तो आत्मनिर्भर हैं नहीं।
1: बिल्कुल,
0: तो अपनी गृहस्थी कैसे चलाएंगे?
1: जी जी,
0: पढ़ाई के दौरान ही शादी करने का भूत उन पर ऐसा सवार रहता है कि वे सब कुछ भूल जाते हैं और माता पिता तथा समाज की परवाह न करते हुए वे अपने घर से भागकर यानी पलायन करके शादी कर लेते हैं।
1: जी बिल्कुल, और ऐसे ही युवा जोश में शादी करने के बाद पछताते भी हैं।
0: पछताते जी,
1: जब तब उन पर शादी का खुमार उतरता है और उन्हें चिंता होती है अपने गृहस्थी चलाने की।
0: बिल्कुल अमृता जी, क्योंकि उन्हें कोई नौकरी या काम एकदम से मिलता नहीं। यदि घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति ठीक हुई तो ठीक है, और अगर नौकरी की बात हुई और नहीं मिली तो कारण ये कि उन्हें किसी काम का कोई अनुभव तो रहता नहीं है।
1: जी बिल्कुल,
0: और अपनी पढ़ाई भी पूरी न करने के कारण उनके पास कोई डिग्री वगैरह भी नहीं होती।
1: आपने बिल्कुल ठीक कहा माइकल जी, यदि उनके पास डिग्री होती तो उन्हें कोई अच्छी नौकरी भी मिल जाती।
0: जी,
1: इसलिए उन युवाओं को मजबूरी में कोई छोटा मोटा काम करना पड़ता है।
0: जी हाँ, जैसे कि लड़का कहीं किसी फैक्ट्री में कोई मामूली सा क्लर्क हो जाता है
1: जी।
0: और लड़की महज कुछ रुपये कमाने के लिए किसी प्राइवेट स्कूल में कम से कम तनख्वाह पर पढ़ाने को राजी हो जाती है।
1: बिल्कुल माइकल जी, क्योंकि वो भी न तो ट्रेंड होती है और न ही उसके पास कोई टीचिंग का अनुभव होता है। इस तरह से उन्हें बड़े ही सीमित बजट में अपना गुजारा करना पड़ता है।
0: और कभी कभी तो उन्हें इससे भी बुरी हालत में अपना गुजारा करना पड़ता है अमृता जी।
1: कैसे?
0: जब उन्हें किसी भी प्रकार का काम नहीं मिलता है, जब उनके पास अपने

0: यह बात यानी कि प्रेम विवाह करना अब कोई अनहोनी या बड़ी बात नहीं रह गई है,
1: नहीं
0: आज प्रेम विवाह करना एक सामान्य सी बात रह गई है।
1: बिल्कुल, पहले जहां प्रेम विवाह का शोर हफ्तों से लेकर महीनों तक चला करता था, वहीं किसी भी प्रेम विवाह की चर्चा घंटे दो घंटे या दिन भर की सुनाई पड़ती है और लोग अपने अपने कामों में अपने आप में व्यस्त हो जाते हैं।
0: और मेरे ख्याल से अमृता जी, माता पिता अपने बच्चों के प्रेम विवाह का यदि विरोध करते भी हैं
1: जी
0: तो ही मैं समझता हूं कि उसका कारण दो तरह की परिस्थितियां ही होती
1: चलिए, वे दो परिस्थितियां क्या होती है मैं बताती हूँ।
0: जी।
1: देखिए, एक तो वो परिस्थिति होती है जो प्रत्येक माता पिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है,
0: बिल्कुल
1: विशेषकर लड़की के माता पिता के लिए,
0: जी।
1: और वो परिस्थिति होती है अन्य समाज या धर्म का लड़का या लड़की का होना।
0: जी बिल्कुल अमृता जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। और दूसरी परिस्थिति जो विरोध का कारण होती है
1: जी
0: वह होती है लड़के का शिक्षित या पूर्ण शिक्षित न होना
1: जी
0: तथा
1: बिल्कुल
0: आत्मनिर्भर न होना। आत्मनिर्भर न होना मतलब उसके पास कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है,
1: जी जी
0: मतलब उसकी गृहस्थी का कोई आधार नहीं है।
1: जी
0: यदि पहले कारण को हम नजरअंदाज भी कर लें
1: जी
0: तो दूसरे कारण को तो हम नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है माइकल जी कि इस दुनिया में सिर्फ प्यार के सहारे ही जीवन नहीं गुजारा जा
0: जी
1: सकता। जीवन गुजारने के लिए बहुत सी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी होती है
0: बिल्कुल,
1: और वे सभी आवश्यकताएं पैसों के बिना पूरी नहीं हो पाती।
0: इसीलिए अमृता जी प्रत्येक लड़की के माता पिता चाहे वे अपनी बेटी की अरेंज मैरिज के पक्ष में हो या
1: जी
0: फिर लव मैरिज के पक्ष में हो, वे पहले लड़के की आत्मनिर्भरता के बारे में निश्चित हो जाना चाहते हैं। वे ये जानना चाहते हैं कि लड़का काम क्या करता है या
1: बिल्कुल
0: उसका आर्थिक वो आर्थिक रूप से कितना संपन्न है या उसका भविष्य क्या है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ताकि उनकी बेटी को आगे जाकर किसी भी अभाव का सामना न करना पड़े,
0: जी
1: क्योंकि हर माता पिता अपनी बेटी का भविष्य सुखी ही देखना चाहते हैं।
0: किसी मामले में माता जी, किसी मामले में विशेषकर लड़के की माली हालत के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में
1: जी
0: यह भी देखा गया है कि उसके प्रेम विवाह से नाराज माता पिता जब नाराजी छोड़कर उसे अपना लेते हैं तो फिर वह काम धंधे की फिक्र करना एकदम से छोड़ देता है,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि उसे ये लगता है कि अब मुझे क्या जरूरत है, अब मेरे घर वालों ने मेरी शादी अपना ली, मुझे अपना लिया तो अब मेरा खर्चा वगैरह भी यही उठाएंगे। और वह अपनी गृहस्थी का पूरा भार भी अपने पिता के कंधों पर ही डालकर एक तरह से निश्चित हो जाता है,
1: बिल्कुल
0: निश्चिंत हो जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल माइकल जी, क्योंकि उसको पता होता है
0: जी
1: कि उसके घर की माली हालत बहुत अच्छी है
0: बिल्कुल,
1: और उसके पिता के पास बहुत पैसा है, इसलिए तो वो खुद कमाने में जरा भी रुचि नहीं दिखाता।
0: और अमृता जी ऐसे लोग ये भी भूल जाते हैं कि समाज में केवल उसकी इज्जत मान मर्यादा और आदर होता है
1: जी
0: जो खुद कमाई करता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जो खुद कमाता है समाज में केवल उसी की इज्जत है, और रुपए कमाने के लिए मेहनत करता है उसकी भी इज्जत है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसी तरह के कुछ युवाओं को घर जमाई भी बनते और रहते देखा गया है।
0: जी
1: वे अपना सब कुछ खोकर, यानी अपना आत्मसम्मान और अपनी इज्जत खोकर, अपने माता पिता को छोड़कर घर जमाई बनकर पड़े रहते हैं।
0: जी हाँ, और पूरे समय अपनी पत्नी और उसके माँ बाप की जी हुजूरी में लगे रहते हैं,
1: और क्या,
0: केवल इसलिए कि उन्हें कोई काम ना करना पड़े। लेकिन अमृता जी मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ऐसे घर जमाई ये भूल जाते हैं कि दिन भर अपने ससुराल वालों का हुक्म बजाने से तो अच्छा होता कि वे कहीं नौकरी कर लेते।
1: जी बिल्कुल माइकल जी, देखा तो यहाँ तक गया है कि कुछ नौकरी करने वाले युवा भी अपने माँ बाप को छोड़कर ससुराल में ही अपनी पत्नी के पल्लू से बंधे घूमते रहते हैं।
0: जी
1: वे अच्छी नौकरी करते हैं लेकिन फिर भी न जाने किस लालच में अपना आत्मसम्मान गवाकर अपने ससुराल में ही पड़े रहते हैं।
0: सचमुच अमृता जी, ससुराल में पड़े जवाई की और अपने बगीचे में लगे फूलों की कोई परवाह नहीं करता
1: जी।
0: उन्हें लगता है कि फूल अपने ही बगीचे में तो लग रहा है, जब चाहेंगे हाथ बढ़ाकर तोड़ लेंगे।
1: जी बिल्कुल,
0: उसी तरह से जवाई घर में ही तो है, जब किसी चीज की जरूरत होगी मन करेगा तो बाजार से लाने के लिए दौड़ा देंगे।
1: जी बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि यदि कोई अनाथ युवा घर जवाई बनता है तो इसमें कोई किसी प्रकार की बुराई नहीं है, आप क्या कहते हैं?
0: मेरा भी वही कहना है अमृता जी जो आपका कहना है। मैं भी इस बारे में कोई बुराई नहीं करता या बुराई नहीं समझता कि कोई घर जवाई है, लेकिन क्योंकि इसमें अपनेपन से भरे सुखद रिश्ते होते हैं।
1: जैसे
0: जैसे देखिए क्या होता है।

0: अमृता जी, लड़का अगर इस दुनिया में अकेला और अनाथ है,
1: जी
0: उसके माँ बाप नहीं है, उस दुनिया में अकेला है पूरा, और अगर वह घर जमाई बन जाता है
1: जी जी
0: तो उसे सास ससुर के रूप में एक माँ बाप मिल जाते हैं,
1: बिल्कुल
0: और सास ससुर को जमाई के रूप में एक बेटा मिल जाता है। यानी यहाँ पर घर जमाई के को खोने के लिए कुछ नहीं है, पाना ही पाना है, और जो सास ससुर हैं उसके उनके लिए भी पाना ही पाना है, एक बेटा मिल जाता है उनको, और बेटी भी खोनी नहीं पड़ती, यानी कि बेटी कहीं दूर नहीं जाती, घर में दिन रात आंखों के सामने ही रहती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल माइकल जी, आपने बहुत ही बढ़िया बात कही है।
0: जी
1: मेरा भी यही विचार है। वाकई में एक को माँ बाप और दूसरे को बेटा मिल जाता है।
0: बिल्कुल
1: लेकिन यहाँ पर भी एक बात यह भी होनी चाहिए कि उस अनाथ घर जवाई की नियत ससुराल के पैसे पर ना हो,
0: बिल्कुल
1: उसकी नियत बिल्कुल साफ होनी चाहिए।
0: साफ होनी चाहिए। अमृता जी, ये तो हमने बात कही है विवाह से पूर्व लड़कों के आत्मनिर्भर और शिक्षित होने की,
1: जी
0: तो आइए अब श्रोताओं से विदा लेने के पहले हम थोड़ी सी बात इस विषय पर भी करते चलें कि लड़कियों को भी विवाह पूर्व आत्मनिर्भर या शिक्षित होना क्यों जरूरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल माइकल जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। वैसे तो आजकल अधिकतर लड़कियां जागरूक हो गई हैं
0: जी
1: और अपने भविष्य में कुछ करना चाहती हैं,
0: बिल्कुल,
1: इसलिए वे पढ़ रही हैं, नौकरी कर रही हैं।
0: और कुछ हैं जो कुछ न करने के पक्ष में ये कहती भी पाई जाती हैं कि क्या करना कुछ करके,
1: जी
0: अपने को तो
1: बिल्कुल
0: वही चूल्हा फूंकना है।
1: जी जी
0: अमृता जी, सचमुच ऐसी लड़कियां किसी बड़े भ्रम का शिकार हैं या किसी भ्रम में जी रही हैं।
1: जी बिल्कुल। और शायद उन्हें पता नहीं है माइकल जी कि ये पढ़ाई लिखाई और आत्मनिर्भरता ही भविष्य में चूल्हे पर पकने वाले खाद्य पदार्थ का जुगाड़ भी करती हैं।
0: जी बिल्कुल अमृता जी, समय कभी कहकर नहीं बदलता या आता है,
1: ये सही
0: कौन
1: बात
0: जाने कब किसी कारण किसी पति की नौकरी छूट जाए, या कुछ की तनख्वाह में घर न चलने के कारण पति पत्नी को भी नौकरी करना पड़े,
1: जी
0: या फिर अपने रहन सहन के स्तर को उठाने के लिए, या फिर पति की अचानक मौत के कारण उसे भी काम करने की नौबत आ जाए।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। जीवन में कभी भी कैसी भी परिस्थिति आ सकती है, इसलिए हमेशा अपने आप को प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रखना चाहिए उस
0: जी
1: वक्त।
0: जी हाँ
1: और इसके लिए जरूरी है कि लड़की शिक्षित और आत्मनिर्भर हो, तभी तो वह उन परिस्थितियों का सामना कर पाएगी माइकल जी।
0: शिक्षित और आत्मनिर्भर होने के कारण युवा पति पत्नी दोनों ही
1: जी
0: अपने घर को संवारने और चलाने में एक दूसरे का हाथ बटा पाएंगे। अमृता जी,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: इसके अलावा उनके घर में सुख और शांति भी बनी रहेगी।
1: बिल्कुल माइकल जी, क्योंकि अधिकांश युवा पति पत्नियों के बीच में किसी चीज के अभाव में पैसों को लेकर ही ज्यादा चिकचिक होती रहती है,
0: जी
1: आपने देखा होगा,
0: जी जरूर देखा।
1: क्योंकि अभाव से उनका पहला पहला सामना हुआ रहता है।
0: जी हाँ अमृता जी, इसलिए हम तो युवाओं से यही कहना चाहेंगे कि अपने विवाह से पहले वे अपनी पढ़ाई पूरी कर लें
1: बिल्कुल
0: और आत्मनिर्भर बन जाएं,
1: जी
0: तभी अपने विवाह के बारे में विचार करें और तभी वे सुखी विवाहित जीवन बिता पाएंगे।
1: जी बिल्कुल माइकल जी। तो इसी आशा के साथ हम अपने युवा श्रोता साथियों से आज्ञा चाहेंगे और चाहेंगे कि आपका कल आज से अच्छा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।
0: नमस्कार।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा विकास के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक था विवाह पूर्व शिक्षा और आत्मनिर्भरता। इस वार्ता के लेखक थे माइकल होजस और प्रस्तुतकर्ता थे माइकल होजस एवं अमृता मोतीवाले। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, अब समय हो गया है हमारे अगले कार्यक्रम का, तो साथियों सुनते हैं कार्यक्रम युग संचार के तहत वार्ता जिसका शीर्षक है टीवी से बच्चों का बिगड़ता भविष्य और जिसके प्रस्तुतकर्ता हैं भवानी कौल।
1: युग संचार वार्ता सुनिए टीवी से बच्चों का बिगड़ता भविष्य। साथियों, आधुनिकता के इस दौर में संचार सुविधाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा माना जाता है आधुनिकता एवं संचार क्षेत्र में जो क्रांति आई है वह पूरी दुनिया को बदलकर रखती है। टीवी, मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर अनेक महत्वपूर्ण साधन हैं संचार के, जो पुरुष, स्त्री, बूढ़े, जवान, बच्चे सबकी मानसिकता पर असर डाल रहे हैं। संचार का मुख्य साधन आजकल बना हुआ है टीवी। बड़ा शौक है लोगों को टीवी देखने का। टीवी संचार का ही नहीं वरन मनोरंजन का भी मुख्य साधन बना हुआ है। अब साथियों, टीवी संचार का या कहें मनोरंजन का ऐसा साधन बन चुका है जिसके बिना जीने की कल्पना परे है। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बूढ़े, क्या जवान, यहां तक के बच्चे बच्चे भी इससे चिपके रहते हैं। इन सब लोगों में सबसे अधिक बच्चे टीवी के दीवाने हैं। टीवी का अच्छा बुरा प्रभाव भी बच्चों पर अधिक होता है। बच्चों के कोमल मन पर टीवी पर दिखाए जा रहे सीरियल, गाने, फिल्म, कार्टून आदि का बेहद असर पड़ रहा है। इनसे बच्चों का मनोरंजन तो होता है साथियों, पर उनके मस्तिष्क पर इसकी गहरी पैठ है। बच्चे हमेशा बच्चे बने रहें ऐसा नहीं है, टीवी ने इनके दिमाग पर गहरा प्रभाव डाला है। आधुनिकता के इस रफ्तार में बच्चे कुछ अलग तरह के आधुनिक और चतुर बनते जा रहे हैं। बच्चों का भोलापन क्रमशः खत्म होता सा नजर आ रहा है। तो साथियों, संचार के जितने साधन हैं उनमें टीवी बच्चों के लिए सर्वसुलभ और सुविधाजनक है। इसे चलाना, बंद करना, बटन दबाना, बदलना, ऑपरेट करना सब कुछ बेहद आसान है। इसका फायदा बच्चे भरपूर उठा रहे हैं। उनके लिए टीवी बहुत मनोरंजक साधन है। बच्चे इससे चिपके रहते हैं। एक तरफ टीवी से उनका मनोरंजन तो हो रहा है, पर इससे इसका उन पर गलत असर भी पड़ता जा रहा है। टीवी पर जिस तरह की वस्तुएं, कथाएं, कहानियां, गाने, फिल्म आदि दिखाई जा रही हैं, उन सब का बुरा प्रभाव उनके मन मस्तिष्क पर घर करता जा रहा है। लोग कहते हैं आजकल बच्चे उम्र से पहले ही बड़े हो गए हैं। वे बड़ों जैसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ों जैसी हरकतें करते हैं। उनकी बातें, चाल ढाल, पहनावे ओढ़ावे एवं हरकतों से यही लगता है कि उनका बचपन कहीं खो सा गया है। बच्चे अब बच्चे रहे ही नहीं। हर माता पिता अपने बच्चों के इस बदलाव से हैरान परेशान हैं। उन्हें लगता है बच्चों की भोली अदाएं पहले मन को लुभाती थीं, गुदगुदाती थीं, पर अब बात वो नहीं रही। माता पिता बच्चों की भोली अदाओं और मासूम हरकतों को देख देख कर खुश होते थे, निहाल हो जाते थे, लेकिन जब से टीवी आई है बच्चे कहीं खो गए हैं। बच्चों के साथ रहते हुए भी बच्चों का एहसास नहीं हो पाता है। टीवी पर बच्चों के लिए जो कार्टून, सीरियल और फिल्में बनी हैं, वह भी बच्चों के लायक नहीं होता। उसमें जो डायलॉग बोले जाते हैं, जिस तरह की भाषा का उपयोग होता है, वह भी बच्चों के लायक नहीं होता। कार्टून के सारे पात्र कार्टून बनकर बच्चों को हंसाते हैं, रुलाते हैं, पर कार्टूनों के सारे व्यवहार, उनकी भाषा, उनकी हरकतें बच्चों की तरह नहीं होते, बल्कि उनमें बड़ों जैसी परिपक्वता है। शायद यही सब देख देख कर हमारे बच्चे कुछ ज्यादा ही समझदार और परिपक्व हो चले हैं। टीवी में जो दिखाया जा रहा है, जो परोसा जा रहा है बच्चों के नाम पर या कार्टून के नाम पर, वह बच्चों जैसा नहीं है, न ही बच्चों के स्तर का है। इसलिए दोस्तों, शायद हर घर में बच्चे की कमी परिवार को खल रही है। घर के बच्चे के साथ खुश होने के बजाय माता पिता इनकी हरकतों और गलत आदतों से परेशान होते नजर आ रहे हैं। एक घर में प्रायः माता पिता को अपने बच्चों से यही शिकायत है कि बच्चे उनका कहना नहीं मानते, मनमानी करते हैं, जिद्दी इतने कि अपनी बात मनवा कर ही दम लेते हैं। टीवी पर शिनचैन नामक चीनी सीरियल आता है, उसमें शिनचैन नाम का बच्चा है जो बच्चों जैसा व्यवहार कम करता है, बड़ों जैसा व्यवहार ज्यादा करता है। वह अपनी माँ का कहना बिल्कुल सुनने से इनकार करता है। घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगह वह सामानों को तोड़ने फोड़ने का काम करता है। बड़ों की तरह उसकी शारीरिक इशारेबाजी भी चलती है। कभी किसी महिला को पटाने की कोशिश करता है तो कभी उन्हें छेड़ने से बाज नहीं आता। शिनचैन से उसकी माँ सबसे अधिक परेशान होती है। इस तरह के सीरियल, कथा कहानियां, चाहे वो देशी हों या विदेशी, इन सब का बच्चों के दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शिनचैन बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। उसकी उल्टी सीधी हरकतों से बच्चे खुश तो होते हैं, पर कई बच्चे शिनचैन की बुरी आदतों को अपनाते भी हैं, उसी तरह बनना चाहते हैं। अभी ऐसे टीवी कार्यक्रमों को भारत में बंद कराने की मांग चल रही है। 10-12 साल के बच्चों का शारीरिक विकास होता है, शरीर के साथ उसका मानसिक विकास भी होता है। काफी सारे परिवर्तन इन बच्चों के स्वभाव में होता है। टीवी पर प्रेम कहानियां जिस तरह से दिखाई जाती है, प्रेम प्रसंग पर आधारित इन कार्यक्रमों का इन बच्चों के मन पर जिस तरह से विकृत असर पड़ता जा रहा है, वह आगे इनके भविष्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आजकल के बच्चे वैसे भी पढ़ाई लिखाई और खेल कूद में कम ध्यान देने लगे हैं। उनकी रुचि टीवी कार्यक्रमों में अधिक हो चली है। इस तरह इन किशोरवय बच्चों के बौद्धिक विकास पर विपरीत असर पड़ता जा रहा है। इन बच्चों की बौद्धिक क्षमता कुछ कम होती नजर आ रही है। आजकल आधुनिक कहे जाने वाले बच्चों में एक खामी और दिखाई देती है दोस्तों, और वो है मिलनसार न होना। समाज से ये बच्चे कटते जा रहे हैं। माता पिता भी असमंजस में हैं। अक्सर माता पिता से कहते सुना जाता है कि हमारी बच्ची या बच्चा घर में आए मेहमान से बातें करते नहीं हैं, न अभिवादन करते हैं, न उनके स्वागत में आतुर दिखाई देते हैं। जब कभी कोई अतिथि घर आते हैं तो बच्चे बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टीवी में आ रहे उनके प्रिय प्रोग्राम छूट जाने का, न देख पाने का उन्हें डर लगा रहता है। घर में मेहमान आने की बात होती ही वे खींचने लगते हैं। उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है टीवी और बस टीवी देखना। इस तरह से किशोर अवस्था वाले बच्चे इसका अधिक शिकार हो रहे हैं। अनेक माताएं अपनी किशोरवय बच्चों से तंग आ चुकी हैं, खासकर 8 से 11-12 साल के बच्चे। इनकी समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। माताएं तो डॉक्टर और सलाहकारों से सलाह तक ले रही हैं, क्योंकि इनके बच्चे अपना सबसे अमूल्य समय टेलीविजन देखने में बिताते हैं। दिन के कई घंटे सिर्फ टीवी देखने में व्यतीत करते हैं। बच्चों के महत्वपूर्ण घंटे टीवी के लिए होते हैं। माओं को अब बच्चों की यह समस्या खलने लगी है। डांटने फटकारने के बाद भी उनका टीवी से लगाव कम नहीं हो पा रहा है। ऐसे ऐसे आकर्षक कार्यक्रम दिखाए जाते हैं साथियों टीवी पर कि बच्चे उसके माया जाल में फंसते जा रहे हैं। माताएं डॉक्टर के पास यही पूछने जा रही हैं कि उसके लाडले को टीवी से कैसे मुक्त किया जाए, ऐसा कौन सा उपाय किया जाए ताकि उनके बच्चे टीवी देखना कम कर दें, क्योंकि वे सारी तरकीबें अपनाकर थक चुकी हैं। लगातार टीवी देखने से बच्चों के बौद्धिक एवं क्रमिक विकास पर भी बहुत सी कमियां आने लगी हैं। दोस्तों, बहुत से बच्चे बैठे बैठे टीवी के सामने खाते हैं। वे खाते हुए टीवी देखना पसंद करते हैं। वे उसमें इतने मशगूल हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं रहता कि उन्हें क्या परोसा गया है खाने में। बस मुंह चलता है और ध्यान कहीं और होता है, जबकि डॉक्टरों एवं बड़े बुजुर्गों का कहना है कि भोजन को पूरे ध्यान से स्वाद लेते हुए खाना चाहिए, तभी वह सेहत के लिए अच्छा है। पर आज के बच्चों को स्वाद का तो पता नहीं और न भोजन चबाकर खाते हैं। एकाग्रचित होकर खाया भोजन ही शरीर को पूर्णता देता है। फिर एक जगह लगातार बैठे रहने से मोटापा जैसी समस्या भी बढ़ती जा रही है। बच्चे पौष्टिक चीज कम खाते हैं, जो खाते हैं उससे वे फूलते जा रहे हैं, इसलिए ज्यादातर बच्चे हमें मोटे दिखाई देते हैं। बच्चों में बढ़ता मोटापा बीमारी का रूप लेता जा रहा है। मोटापे के कारण बच्चों में और भी अनेक बीमारियां उत्पन्न होने लगी हैं। यह सब सिर्फ टीवी के कारण हो रहा है। बच्चों में चश्मा भी छोटी उम्र में लगने लगा है। लगातार एवं काफी नजदीक से टीवी देखने के कारण उनकी आंखें कमजोर होने लगी हैं। इसी वजह से कई बच्चों में लगातार सिर दर्द बना रहता है। अब इसका समाधान यही हो कि बच्चों को कम टीवी देखने दिया जाए, उतना ही देखें जितना जरूरी है, और यही कार्यक्रम देखें जो उनके मानसिक एवं शारीरिक विकास के अनुकूल हो। माता पिता भी चेत जाएं, बच्चों को शुरू से अनुशासित रखें, वे कौन सा प्रोग्राम देखते हैं, कौन सा कार्यक्रम देखते हैं, उस पर भी निगरानी रखें।
0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग संचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था टीवी से बच्चों का बिगड़ता भविष्य। इस वार्ता के प्रस्तुतकर्ता थी भवानी कौल। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रम को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दें आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को, और रिकॉर्डिस्ट है आकाश जांगरा। नमस्कार।

सत्य स्वर सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को ग्लोरिया गांगले का प्यार भरा नमस्कार। आज की इस 5 से 6 की सभा में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार, नारी सशक्तिकरण, मन दर्पण, पर्यावरण और भक्ति गीत। तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम सर्वधर्म विचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं फादर हेरमन बंडोर SVD और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

श्रोताओं, फादर हेरमन बेंडोर एसपीडी का प्यार भरा नमस्कार। सर्वधर्म विचार के तहत आइए सुनते हैं एक वार्ता जिसका शीर्षक है दंगे के बीच भरोसे का गांव। श्रोता मित्रों, इस वार्ता में मैं बीबीसी के संवाददाता दिलनबाज पाशा की एक रिपोर्ट आपके सम्मुख रख रहा हूं। वे लिखते हैं, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के कवाल गांव में 27 अगस्त को 3 युवकों की हत्या हुई थी। हिंसक घटना को सांप्रदायिक रंग दे दिया गया और तभी से यहां सन्नाटा पसरा है। राजधानी दिल्ली से करीब 125 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव में हुई हिंसा से पूरे जिले में तनाव व्याप्त है। हिंदू और मुसलमान समुदाय के इन युवकों के परिजनों ने शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस के अनुसार 6 सितंबर 2013 को धार्मिक स्थलों और घरों में तोड़फोड़, वाहनों में आगजनी और लोगों के साथ मारपीट, एक यात्री को ट्रेन से फेंकने जैसी घटनाओं ने तनाव को और बढ़ा दिया। पड़ोसी जिले शामली में भी हुई हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हुई। रिपोर्ट के अनुसार एक युवक ने अपने सस्ते चाइनीज मोबाइल पर एक वीडियो दिखाते हुए कहा कि देखिए कितनी बेरहमी से दोनों युवकों को मारा गया है। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के जरिए शेयर किया गया ये वीडियो लोगों के मोबाइल में पहुंच गया और इसे शेयर किया जाने लगा। पुलिस जांच में फर्जी पाए गए इस वीडियो को शेयर करने के लिए एक भारतीय जनता पार्टी विधायक सहित कई लोगों पर मामला दर्ज किया गया। कमाल गांव की मस्जिद के इमाम कारी मोहम्मद औसाब कासमी ने आरोप लगाया कि युवकों का अंतिम संस्कार करके लौट रही भीड़ ने 28 अगस्त को धार्मिक स्थलों और घरों में तोड़फोड़ की। खौफ में आए मुसलमान अपना घर बार छोड़कर जाने लगे। पुलिस ने इस हिंसा के मामले में गांव के पूर्व प्रधान को गिरफ्तार किया। अपना पूरा जीवन कवाल गांव में ही बिताने वाले 72 साल के निसार अहमद ने भी पहली बार अपने गांव में इस तरह का तनाव देखा। वे कहते हैं, दो लोगों के बीच की इस निजी लड़ाई को बाहरी लोगों के कारण सांप्रदायिक रूप दे दिया गया। युवकों के अंतिम संस्कार के बाद भीड़ शांतिपूर्वक तरीके से गुजर रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। वे मेरे घर की खिड़की तोड़ रहे थे, तब हिंदू समाज के लोगों ने ही उन्हें रोका। घासीपुरा भी मुजफ्फरनगर जिले का ही एक गांव है, मगर पूरे जिले से एकदम जुदा। पूरे मुजफ्फरनगर में जहां सांप्रदायिकता की आग फैली हुई थी, वहीं इस गांव ने इसकी आज को अपनी सरहदों तक न आने देने का फैसला किया। गांव की गलियों और नुक्कड़ पर खड़े लोगों के बीच चर्चा हो रही थी। एक दूसरे से फुसफुसाहट भरे लहजे में लोग बातें कर रहे थे, मगर इस चर्चा में षड्यंत्र नहीं चिंता घुली थी कि कैसे फिजा में घुली नफरत से लड़ा जाए, कैसे अपने नौजवानों को इस आग से दूर रखा जाए। रविवार रात जब इलाका हिंसा की आग में जल रहा था, तो गांव के 80 वर्षीय बुजुर्ग देवराज सिंह ने अपने घर पर गांव के लोगों को बुलाया। उनकी बात सभी गांव वाले मानते हैं। पंचायत में फैसला हुआ कि अगर गांव का कोई शख्स किसी तरह की हिंसा में शामिल पाया गया तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा और गांव का कोई आदमी उसकी जमानत नहीं कराएगा। पाशा आगे कहते हैं, मुजफ्फरनगर के शिव चौक, खालापुर, मीनाक्षी चौक और दूसरे इलाकों का दौरा करने के बाद जब मैं दिल्ली की ओर निकला तो नेशनल हाईवे पर भी सन्नाटा पसरा था। मेरठ की ओर करीब 11 किलोमीटर चलने के बाद हम घासीपुरा गांव में थे। यहां कुछ दुकानें खुली देखकर करीब 14 घंटे बाद चाय नाश्ता नसीब होने की उम्मीद बंधी। मेरी उम्मीद गलत भी नहीं थी। मुजफ्फरनगर में कर्फ्यू के सन्नाटे और तनाव के बाद घासीपुरा में शांति मिली। करीब 4,500 की आबादी वाले इस गांव में सभी धर्मों जातियों के लोग रहते हैं। कुछ गिने चुने घर मुसलमानों के भी हैं। हमने देखा कि यहां के हिंदू मुसलमानों को ढारस बंधा रहे थे। 62 साल के नेत्रपाल ने कहा कि घासीपुरा गांव में कुछ नहीं हो सकता क्योंकि यहां के बच्चे अब भी बुजुर्गों की सुनते हैं। नेत्रपाल की बात में दम था। अब तक मुजफ्फरनगर में मैंने जितने भी चेहरे देखे थे उन सब पर खौफ हावी था, पर यहां के लोगों के चेहरों पर हमने सुकून और भरोसा देखा। हल्की बारिश के बीच लोग एक गुमटी के बाहर टीन के शेड के नीचे बैठे थे। 26 साल के राकेश ने कहा, हम सब गरीब लोग हैं और हम जानते हैं कि अगर दंगा हुआ और हमारे गांव में पीएससी आ गई तो काम धंधे बंद हो जाएंगे, हमें मजदूरी नहीं मिलेगी और 2 दिन में ही हमारे घर का चूल्हा बंद हो जाएगा। पास खड़े 49 वर्षीय अफजाल कहते हैं,
मैं बचपन से इस गांव में रह रहा हूं। यहां के लोगों में मोहब्बत है। यही वजह है कि यहां से मात्र 4-5 किलोमीटर दूर पूर बालियान गांव में फायरिंग हो रही है, लेकिन फिर भी हमें कोई डर नहीं। हमें अपने गांव के लोगों की मोहब्बत पर पूरा भरोसा है। पाशा आगे कहते हैं कि हम बातें कर ही रहे थे कि गांव के युवाओं ने कहा कि वे अपने गांव के नाम वाले बोर्ड के पास खड़े होकर फोटो खिंचवाना चाहते हैं ताकि दुनिया को इस मोहब्बत का संदेश दे सके। एक और युवा प्रवीण सिंह ने नेत्रपाल की बात की तस्दीक की। उन्होंने भी बताया कि गांव में लोगों के मिलनसार होने की वजह यह है कि सभी बुजुर्गों की बात मानते हैं। तभी किसी ने बताया कि पास के पूर्व बालियान गांव में सेना पहुंच गई है। पूर्व बालियान और घासीपुरा के बीच करीब 4.5 किलोमीटर की दूरी है। यही वो गांव है जहां महापंचायत से लौट रहे लोगों पर हमला हुआ था और जिसकी खबर के बाद मुजफ्फरनगर के ग्रामीण इलाकों में तनाव पैदा हो गया था। हिंसा का शिकार हुआ मंसूरपुर गांव भी घासीपुरा से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। जिस वक्त मैं गांव वालों से बात कर रहा था उसी वक्त मोबाइल की घंटियों की शक्ल में मंसूरपुर से हिंसा की खबरें आ रही थी, लेकिन इन खबरों को लेकर 50 वर्षीय मंसूर हुसैन बेचैन नहीं थे। उन्होंने कहा, हमने अपना पूरा जीवन इसी गांव में बिताया है और हम यहां के लोगों को जानते हैं। हमें इस गांव में कोई खतरा नहीं। आशा को डर है कि अगर बाहरी लोगों ने माहौल खराब किया तो क्या होगा। हम बात करते हुए गांव की मस्जिद तक पहुंचे। मस्जिद के सामने एक सैनी परिवार का घर है। यहां मौजूद लोगों के चेहरे देखकर यह कह पाना मुश्किल था कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। चेहरा ढके एक महिला वहां से गुजरी। हमारी बातचीत सुनकर वो रुकी और बोली, घासीपुरा के लोग तो कभी नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो बाहरी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, अगर वो गांव में आ गए तो क्या होगा। 35 वर्षीय आशा की चिंता हमें जायज लगी। मुजफ्फरनगर और आसपास हिंसा की असल वजह अब तक अफवाह और भड़काव बयानबाजी रही। जिस वीडियो ने पूरे इलाके की फिजा में जहर घोला उसका भी यहां के लोगों पर असर नहीं था। घासीपुरा मुजफ्फरनगर का शायद अकेला ऐसा गांव नहीं जहां गांव वाले नफरत से लड़ रहे हैं। हो सकता है कि ऐसे और भी गांव हो। देखना यह है कि अफवाहों और नफरत की इस जंग में प्रशासन इनका साथ दे पाता है या नहीं। मित्रों, मुजफ्फरनगर की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उस समय पैदा हुई जब यह धारणा बनने लगी थी कि पिछले 2 दशकों में भारत ने सांप्रदायिक दंगे के अवांछित इतिहास को पीछे छोड़ दिया है। अगर सचमुच उत्तर प्रदेश की ताजा स्थिति का कारण 2014 के आम चुनाव से पहले कुछ राजनीतिक दलों द्वारा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश है तो यह और भी चिंताजनक बात है। आधुनिक दौर में भी अगर पार्टियां मानव और सामाजिक विकास के मुद्दों पर जोर देने के बजाय सामुदायिक फूट को बढ़ावा देते हुए वोट पाने की होड़ में उतरती है तो देश हित के खिलाफ इससे ज्यादा खराब कोई और बात नहीं हो सकती। यहां उत्तर प्रदेश सरकार को गंभीरता से पूरे राज्य के हालात का जायजा लेना चाहिए और भरोसा बहाल करने के लिए अगर जरूरी हो तो केंद्र से उचित मदद लेनी चाहिए। देश एक बार फिर से सांप्रदायिक जख्मों को नासूर बनने देने का जोखिम नहीं उठा सकता। नमस्कार।

दोस्तों अभी आपने सुना कार्यक्रम सर्वधर्म विचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे फादर हेरमन बनडोर SVD और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों आइए सुनते हैं भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वाज मुंबई।

दोस्तों, अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वाज मुंबई की। दोस्तों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं अर्पणा सिंह, और इनकी वार्ता का शीर्षक है ममताहीन माएं, जिसके लेखक हैं माइकल होजेस और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत प्रस्तुत है ममताहीन माए, लेखक माइकल होजिस, प्रस्तुतकर्ता अपर्णा सिंह। श्रोता साथियों, पृथ्वी पर समस्त प्राणियों में मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और मानव जाति में स्त्री लिंग को श्रेष्ठ माना गया है। यूं तो मानव उत्पत्ति में पुरुष भी सहयोगी होता है, लेकिन ये नारी ही होती है जो संतान को 9 माह अपनी कोख में रखकर जन्म देती है और माँ बनती है। कहा भी गया है कि जब तक नारी माँ नहीं बन जाती, तब तक वह अपने नारित्व को पूर्ण नहीं करती। इस तरह से ईश्वर ने नारी को माँ बनने का वरदान दिया है, इसलिए प्रत्येक माँ बनने वाली नारियाँ माँ बनकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हैं, क्योंकि माँ बनने से उनका गौरव बढ़ जाता है। श्रोता साथियों, माँ बनकर कुछ युवतियाँ और महिलाएं जहाँ अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सम्मानित होती हैं, तो वहीं कुछ युवतियाँ और महिलाएं अवैध या नाजायज शिशु को जन्म देकर अपने माँ होने को कलंकित करती हैं और अपने समाज तथा ईश्वर की निगाह में पाप की भागीदार बनकर पापिन कहलाती हैं। आखिर क्यों? पूर्व की उपेक्षा आज नाजायज शिशुओं की एक तरह से हमारे समाज में हमारे आसपास बाढ़ सी आई हुई है। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम अपने इस समाज और इस समाज में रहने वालों पर एक नजर डालें। जैसा कि सभी जानते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, ठीक इसी तरह से वर्तमान संदर्भ में जहां पाश्चात्य देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर हमने उनके साथ चलकर अपना विकास करने का प्रयास किया है और कुछ हद तक हम अपना विकास करने में सफल भी हुए हैं, वहीं हमने अपने उस विकास की कीमत भी चुकाई है। पाश्चात्य देशों में अंधानुकरण में हमें किसी और विषय में नुकसान उठाना पड़ा या नहीं पड़ा है, लेकिन अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता के विषय में हमें हानि उठानी पड़ी है। युवक युवती और स्त्री पुरुष की निर्लज्ज और खुलेआम की दोस्ती और प्यार मोहब्बत तथा संबंधों ने आज हमारे समाज पर अत्यंत ही गहरा प्रभाव डाला है। पूर्व में जहां स्त्री पुरुष और युवक युवती जहां एक सीमा में रहकर ही बात कर सकते थे और अपने आप में समाज और बुजुर्गों के प्रति अपने संबंधों में एक आदर सम्मान रखते थे, वहीं युग परिवर्तन के साथ साथ समाज में भी इस संदर्भ में एक सामाजिक बदलाव आया है। आज युवक युवती और स्त्री पुरुष के संबंधों में पूर्व की उपेक्षा बहुत ही ज्यादा खुलापन आया है। अब समाज में इनके संबंधों को लेकर कोई चर्चा या आलोचना नहीं की जाती है। अब समाज में इनके परस्पर संबंधों को जैसे अपनी मूक सहमति प्रदान कर दी गई है, इसलिए हमारे समाज में आज ये हालत है कि कोई भी परिवार अपने बेटे या बेटी के किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ से जुड़ने या जुड़ा होने की आलोचना और विरोध तो करता ही नहीं है, लेकिन बेटे या बेटी के गर्लफ्रेंड अपना बॉयफ्रेंड के साथ जुड़ने या जुड़ा होने का विरोध या आलोचना भी नहीं करता है। उनकी नजर में आज अपने बेटे या बेटी के सिगरेट, शराब या किसी भी प्रकार के नशा करने को बुरा माना जाता है, लेकिन किसी लड़के या किसी लड़की के साथ उनका घूमना फिरना या अविवाहित रूप में रहना न तो बुरा माना जाता है और न ही बुरा समझा जाता है। श्रोता साथियों, अपने संबंधों के प्रति समाज की इसी मूक स्वीकृति का आज के युवा और कुछ स्त्री पुरुष अपने अवैध संबंधों का भरपूर लाभ उठा रहे हैं तथा बाइबल के नए व्यवस्थान में येसु ख्रीस्त यानी कि प्रभु ईसा मसीह की शिक्षा के सिद्धांतों के नियमों में से नियम की खुलेआम अवहेलना करके पापों की गर्त में समा रहे हैं और पाप के भागीदार बन रहे हैं। अवैध शिशु को जन्म देकर उसे कूड़े में, नाले या नाली में अथवा कहीं भी फेंक देने वाली ममताहीन माँ और निर्दयी माँ जितनी अधिक दोषी होती है, उतना ही अधिक दोषी उस अवैध शिशु का पिता भी होता है, क्योंकि उस पाप के भागीदार दोनों ही होते हैं। पुरुष होने के नाते ऐसी संतान के पिता को बख्शा नहीं जा सकता, बल्कि ऐसे पाप में पड़ने के लिए उसका उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है एक पुरुष होने के नाते। अवैध संतान को जन्म देने की बात तो तब होती है जब बात बस से बाहर हो जाती है, वरना तो अपने किए पाप को छिपाने के लिए इस तरह के पाप कर्म करने वाले अवैध गर्भपात का भी सहारा लेते हैं। यदि कोई ये कहता है कि पूर्व की अपेक्षा आज अवैध संतानों को यहाँ वहाँ फेंकने की घटनाओं में कमी आई है, तो इसका कारण भी अवैध गर्भपात की दिनों दिन बढ़ती हुई संख्या है। दुख तो तब होता है जब इस तरह के असामाजिक कार्यों में भी युवती और महिलाएं लिप्त रहती हैं। ऐसा ही एक उदाहरण है सपना। सपना
पिछले कुछ सालों से विभिन्न नर्सिंग होम्स में एक अनट्रेन नर्स के रूप में काम करती रही है। फिर न जाने उसने बैठे ठाले किसी के कहने पर कौन सा कोर्स किया कि अब उसने नर्सिंग होम से नर्स का काम छोड़कर शहर से बाहर शहर और गांव की सीमा पर अपना एक क्लिनिक यानी कि दवाखाना खोल लिया है और अब वह अपने आप को डॉक्टर कहलवाना पसंद करती है। खास बात यह है कि उसके दवाखाने में मरीज तो कोई भूला भटका हुआ ही आता है, लेकिन कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां और अन्य युवतियां और महिलाएं उसके पास गर्भपात कराने के लिए श्रृंखलाबद्ध रहती है। सपना भी उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनसे अपनी फीस वसूलती है। उसकी फीस 2000 से लेकर 6 से 7 हजार रुपए तक होती है। कितनी भी युवतियां और महिलाएं उससे अपना गर्भपात करवाती रहें, उसे इन बातों से कुछ लेना देना नहीं होता है। उसे तो मतलब होता है सिर्फ अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने से। फिर चाहे वैध काम से भर रहा हो या चाहे अवैध काम से भर रहा हो, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं होता है। दुनिया भर के देश आज गर्भपात जैसी अनुचित और अवैध कार्यों की समस्या से जूझ रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक पिछले साल यूरोप में करीब 2 लाख गर्भपात हुए हैं। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि इनमें कुछ युवतियां या महिलाएं ऐसी थीं जिन्होंने साल में 8 या इससे अधिक बार गर्भपात कराया है। खास बात यह है कि कम उम्र की लड़कियों द्वारा गर्भपात कराने की घटना में 10% का इजाफा हुआ है। गर्भपात के 2 लाख मामलों में 64,000 लड़कियां ऐसी थीं जिन्होंने दोबारा गर्भपात कराया। कहा जा सकता है कि 1/3 लड़कियां ऐसी हैं जो साल में 2 बार गर्भपात करा रही हैं। 14,746 लड़कियां ऐसी थीं जिन्होंने 3 बार गर्भपात कराया, जबकि 1,000 लड़कियों ने 5 बार गर्भपात कराया। इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि आज की युवतियां और महिलाएं कहां जा रही हैं और उनमें कितनी नैतिकता बची है। इसके दोषी उनका साथ देने वाले युवक और पुरुष भी हैं। श्रोता साथियों, अवैध गर्भपात और अवैध संतान को जन्म देकर यहाँ वहाँ फेंकने जैसे कार्यों अथवा पापों को युवतियां और महिलाएं केवल अपने पाप को छिपाने के लिए करते हुए एक और पाप करती हैं। उन्हें ये सोचना और विचारना चाहिए कि उन्हें ऐसे काम ही नहीं करना चाहिए कि उन्हें अपनी इज्जत बचाने के लिए इस तरह के काम करना पड़ जाए। इसके अलावा उन्हें इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि युवती अथवा महिलाओं का हमारे समाज में एक विशिष्ट और सम्मानीय स्थान है। उनकी अपनी एक गरिमा है, तो वे उसे या तो बनाए रखें या नारी की गरिमा को बनाए रखने में अपना उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करें। साथ ही नारी का ममतामयी रूप ही श्रेष्ठ लगता है, तो नारी के उस ममतामयी रूप को खंडित कर उसे हृदयहीन, ममताहीन, निष्ठुर और निर्दयी माँ के रूप में स्थापित न करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत।

साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण, जिसे प्रस्तुत कर रही थी अर्पणा सिंह, और इनकी वार्ता का शीर्षक था ममताहीन माएं, जिसके लेखक थे माइकल होजेस और यह प्रस्तुति थी सब प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए साथियों, सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वाज मुंबई की।

दोस्तों अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वाज मुंबई की। दोस्तों इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं। दोस्तों अगर आप एंड्रॉयड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्य स्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्य स्वर वेरितास। दोस्तों आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rvasatyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, बावरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। और हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। साथियों आइए सुनते हैं कार्यक्रम मन दर्पण, जिसका शीर्षक है हम में हो सबके लिए प्रेम भाईचारा, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं आस्था उपमन्यु, लेखक हैं कृष्णकांत दुबे और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

मंदार्पण के अंतर्गत लीजिए प्रस्तुत है वार्ता हम में हो सबके लिए प्रेम भाईचारा। इसके लेखक हैं श्री कृष्णकांत दुबे और प्रस्तुत करता है आस्था उपमन्यु। साथियों, बात वर्षों पुरानी है। विश्व कवि गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने एक बहुत ही सुंदर कविता की रचना की थी, जिसमें शांतिपूर्ण विश्व की सुखद मानवता की सबके लिए प्रेम और बंधुत्व के भाव से भरी एक व्यवहारिक कल्पना थी। वो कविता रचना निश्चित आज भी महानता की सीमा छूती है, जिसमें उन्होंने विश्व मानवता की एकता का स्वप्न देखा था। गुरुदेव ने अपनी उस रचना में लिखा था, सब जगह मेरा अपना घर है, मैं उसी घर को खोज रहा हूं। हर देश मेरा अपना देश है, मैं उसे अपनाऊंगा। परदेसी के रूप में जिस द्वार के भीतर झांक कर देखता हूं, मैं उसे अपना ही पाता हूं। भीतर जाने के मार्ग का मैं पता लगा ही लूंगा। हर घर में मेरे अपने ही बंधु हैं, उन्हीं को तो मैं खोज रहा हूं। साथियों, यही भाव विचार हमें विश्व भाईचारे की दिशा में प्रेरित करते हैं, जिनका कि हमें हर ओर अभाव नजर आता है। अगर हम गुरुदेव की भांति ये स्वीकार कर लें कि इस धरती पर बसे हर घर में मेरे अपने बंधुओं का ही निवास है, अगर हम अपने अंतर मन में इस भाव को जागृत कर लें, तब क्या हर दूर शांति का विस्तार नहीं होगा? पर इसके लिए हमें अपने मन में एक गहरी संवेदना जागृत करनी होगी, तभी हम इस भाव प्रकाश को अपने अंतर मन में जागृत कर सकेंगे। स्मरण आता है कि इस संदर्भ में सुप्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक श्री जे कृष्णमूर्ति ने अपने एक महत्वपूर्ण प्रवचन में कहा था कि संवेदनशीलता का अर्थ है अपने आसपास की समस्त चीजों के प्रति संवेदनशील होना, पौधों, प्राणियों और वृक्षों के प्रति, आकाश और नदी जल और उड़ते पंछियों के प्रति, और अपने आसपास के आदमियों के प्रति, राह चलते अजनबी के प्रति भी। संवेदनशील होने का अर्थ है प्रेम।

प्रेम शब्द का अर्थ मात्र प्रेम नहीं होता। प्रेम को ईश्वर का प्रेम और मनुष्य का प्रेम इस तरह बांटा नहीं जा सकता, और न उसे एक का प्रेम और अनेक के प्रेम के रूप में मापा जा सकता है। प्रेम उन्मुक्त होकर अपने आप को दे डालना है, जैसे फूल अपनी सुगंध देता है। जैसे कि श्री जे कृष्णमूर्ति ने कहा, ये संवेदनशीलता, ये प्रेम भाव हमें सबके प्रति प्रेम में बदल देता है। यहां हम विश्व भाईचारा, विश्व बंधुत्व भाव को ही तो पाते हैं। साथियों, यहां हम विश्व की महान लेखिका श्रीमती पर्ल बक की संवेदनशीलता, उनके मानवतावादी विचारों के संदर्भ में जाने तो हमें उनमें यही भाव विचार देखने को मिलेंगे। श्रीमती पर्ल बक अमेरिका में जन्मी, लेकिन वर्षों चीन की भूमि पर रही, वहीं निवास किया। उन्होंने वहां के मनुष्यों को अपनापन दिया, उनमें स्वयं अपनापन खोजा, उसी के अनुरूप अपने विचार संवारे। यही नहीं, वहां के मानव विचारों का अध्ययन ही नहीं किया, बल्कि उन्हीं के भाव विचारों को लेकर संपूर्ण अध्ययन करके एक अद्भुत साहित्य की रचना की। उन्होंने वहां के जनजीवन को सीधे खुली आंखों देखा। हम इस बात को भूले नहीं कि ये सब इसलिए संभव हुआ कि वे मानवता के प्रति पूरी तरह समर्पित थीं, और उन्हें अपने इसी मानवतावादी विचारों और उसी से पूरी तरह जुड़े लेखन से उन्हें विश्व के प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, उन्हें विश्व के कई अन्य श्रेष्ठ पुरस्कारों से नवाजा गया था। जब तक उनके महत्व विचारों को जानने का प्रयत्न हम करते हैं, उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो लगता है कि उनके सुंदर भाव विचारों में मानवता के लिए असीम प्यार, उसके प्रति संपूर्ण समर्पण, उसी सब के प्रति असीम नेह की अभिव्यक्ति, उसी को तो पाते हैं। एक दार्शनिक हुए हैं खलील जिब्रान। उन्होंने अपने लेखन, अपने प्रवचनों से मानवता का बड़े ही सुंदर ढंग से प्रतिपादन किया है। उनका ये वाक्य ही हमें एक दीप शिखा की तरह मानो प्रकाश देता सा लगता है। उन्होंने अपने उस वाक्य में ये कहा था कि परमात्मा के निकट होना है तो मनुष्य के निकट हो जाओ। श्री खलील जिब्रान का कहा गया वाक्य यही तो अर्थ देता है कि हमें यही दिशा देता है कि मनुष्य के निकट होने पर हम अपने में मानवता का सही प्रकाश पा सकेंगे, उससे हम में प्रेम और बंधुत्व भावों का विस्तार कर सकेंगे। तब कहीं कोई भेद नहीं होगा, कहीं विग्रह नहीं होगा, और हर ओर स्नेह और प्रेम का निरंतर विस्तार होता चला जाएगा। तब विषमता नहीं होगी, असहायता नहीं होगी, तब सब एक के लिए होंगे और एक सबके लिए होगा, तब विश्व में शांति होगी, सुख होगा। इसी तरह का एक सुंदर मनोकामना वाली बड़ी ही महत्वपूर्ण रचा है। उसमें जो भाव विचार हैं, वो इस संपूर्ण धरती पर निवास करने वाली मानवता के रूप स्वरूप उसके सुख की समृद्धि की कामना से ही भरा पूरा है। उसका यही भाव है कि हमारी ये धरा, हमारी ये पृथ्वी, जो विविध भाषा भाषियों को, विविध धर्मावलंबियों को इस प्रकार धारण करती है जैसे वे एक ही परिवार के सदस्य हों, हमारे लिए दुग्धवती धेनु की भांति निरंतर सहस्त्रों अर्थात हजारों हजार ऐश्वर्यों की धाराएं प्रवाहित करे, हमारे लिए मंगलकारी हो। ये समग्र मानवता के लिए सुख की सुंदरतम कामना है, ये सही है, लेकिन हमें भी इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हमारे अपने भाव विचार सुंदर हों, हमारी सोच भी उत्तम हो, लेकिन अगर वो हमारे व्यवहार में नहीं है तो फिर उसका कहीं कोई उपयोग नहीं। जरूरी है कि ये भाव विचार हमारे अंतर में हो। जो आदर्श हमें दिए गए हैं, उन्हें व्यवहार रूप देना ही होगा, उनके प्रति मन में प्रतिबद्धता उत्पन्न करनी ही होगी। हाँ, वर्तमान समाज में कई कई वैचारिक नवीनताएं पैदा हुई हैं, जिनके तहत व्यक्ति को स्वकेंद्रित किया जा रहा है, यानी वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचे। आज के मनुष्य को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यही पाठ पढ़ाया जा रहा है। अगर आज की मनुष्य जाति इस पाठ को पढ़कर आचरण करने लगी,
तब निश्चित ही समझिए कि सब उलट पुलट हो जाएगा। मनुष्य जाति के आसपास संतरास की कटीली झाड़ियां खड़ी हो जाएंगी। आज कई जगह यही कुछ होता जा रहा है। अब हम सबको ये स्पष्ट समझना होगा कि आज तक मनुष्य जाति ने जो भी विकास पाया है, उन्नति की है, उपलब्धियां पाई हैं, वो केवल एक व्यक्ति, एक समाज, एक देश की ही अपनी उपलब्धि नहीं है, बल्कि सारी मनुष्य जाति ने उसमें योगदान दिया है। ये सब कुछ मिलकर हुआ है, समवेत हुआ है। ये विकास, ये विराट ज्ञान क्षेत्र का विस्तार, ये महान और वैज्ञानिक चमत्कार मानव जाति ने मिलकर संपन्न किए हैं। आज भी समग्र मनुष्य जाति इन सबका लाभ ले रही है। इन सबको हम विश्व धरोहर ही तो कहेंगे। इन सबके बीच हम सब एक बात देख रहे हैं, संचार साधनों के जबरदस्त विकास ने इस धरती को एक ग्राम आंगन का सा रूप दे दिया है। कहां गई वे दूरियां जिनको पार करने में वर्षों व्यतीत हो जाया करते थे, आज आप उन्हें एक दो दिन में नाप सकते हैं। आज संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं का अस्तित्व है जो विश्व बंधुत्व को ही चरितार्थ करती है। आज एक देश दूसरे देश की मदद करता है। हाँ, ये सब विश्व मानवता को समर्पित आयोजन ही तो है। अगर ये मानवता प्रेम विकसित नहीं होता तो क्या इस दिशा में मनुष्य जाति को सफलता के दर्शन होते? साथियों, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत।

दोस्तों, अभी आपने सुना कार्यक्रम मन दर्पण, जिसका शीर्षक था हमें हो सबके लिए प्रेम भाईचारा, जिसके लेखक थे कृष्णकांत दुबे और जिसे प्रस्तुत कर रही थी आस्था उपमन्यु, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आइए सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वाज मुंबई की।

दोस्तों अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वाज मुंबई की। तो साथियों आइए सुनते हैं कार्यक्रम पर्यावरण, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं माइकल होजेस और इनकी वार्ता का शीर्षक है प्राकृतिक संसाधन और जीवन और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

पर्यावरण के अंतर्गत प्रस्तुत है वार्ता प्राकृतिक संसाधन और जीवन। लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं माइकल हॉजेस। श्रोता साथियों, मानव द्वारा नित नए आविष्कार अपनी जिंदगी को आरामदायक बनाने और सुविधा के लिए किए गए हैं। इन आविष्कारों से मानव जीवन सहज और सुलभ तो हुआ है, लेकिन इससे प्रकृति में मानव हस्तक्षेप भी बढ़ा है, जिससे सीधा प्रभाव पड़ा है पर्यावरण पर। प्रकृति में मानव हस्तक्षेप के कारण ही प्रदूषण बढ़ा है और जिसने जलवायु परिवर्तन में भी अपना योगदान दिया है। सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो मानव द्वारा प्रकृति में दखल देने के कारण प्राकृतिक संसाधनों का मनमाना और गैर टिकाऊ ढंग से उपयोग हुआ है, और यही उपयोग प्राकृतिक संसाधनों के विनाश का कारण भी बना हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों का विनाश इसलिए हो रहा है क्योंकि हम प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल बड़ी बेरहमी और लापरवाही से कर रहे हैं। श्रोता साथियों, पर्यावरण प्रदूषण से केवल पर्यावरण को ही नुकसान नहीं पहुंचता है, बल्कि उन सभी लोगों को भी भारी नुकसान पहुंचता है जो अपनी आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। जी हाँ, घने जंगलों के आसपास बसे गांवों में रहने वाले अधिकतर लोग प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहकर ही अपनी आजीविका कमाते हैं। वे पहाड़ों और जंगलों में उगने वाली जड़ी बूटियों को खोजकर उनका संग्रह करके बिचौलियों के माध्यम से कंपनी और कारखानों तक पहुंचाते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि इस काम के लिए उन्हें सुबह से शाम तक पहाड़ों, जंगलों, नालों और नदी के तट पर भटकना पड़ता है, यानी कि इस काम में अत्यधिक श्रम और समय लगता है। लेकिन अब हालात कुछ ऐसे हो चले हैं कि इनका श्रम और समय लगने के बाद भी कभी कभी इन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। यह सब क्यों होता है? क्योंकि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ चुका है, पर्यावरण का प्रदूषण जारी है। जी हां श्रोता साथियों, पर्यावरण के असंतुलन का प्रभाव उन पेड़ पौधों पर भी पड़ता है जिनसे यह गरीब ग्रामवासी जड़ी बूटियां प्राप्त करते हैं। इसी पर्यावरण प्रदूषण के कारण बहुत से पौधे लुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। यह बात इस तथ्य से भी प्रमाणित होती है, जब आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति को किसी जड़ी बूटी के बारे में यह कहते हुए सुनते हैं कि फलां जड़ी या बूटी पहले मिल जाया करती थी, अब तो देखने में ही नहीं आती है। इसका सीधा अर्थ यही है कि अब वह जड़ी बूटी लुप्त हो चुकी है। यह विचार करने वाली बात है कि जो गरीब और जानकार लोग इस जड़ी बूटी के काम से जुड़े हुए हैं, यदि पेड़ पौधे इसी गति से साफ होते रहे, इसी गति से नष्ट होते रहे, तो फिर इन लोगों की आजीविका का क्या होगा? आयुर्वेदिक वैद्य और औषधि विक्रेताओं का क्या होगा? जो लोग जड़ी बूटी की दवाओं का सेवन करते हैं, उन रोगियों का क्या होगा? बाजार में आजकल हर्बल का जमाना फिर लौट आया है। लोग हर्बल के उत्पादनों की मांग करने लगे हैं। वे उस वस्तु को अपने लिए भरोसेमंद और फायदेमंद मानने लगे हैं जो हर्बल उत्पादक हैं। जो प्राकृतिक संसाधनों से बनी औषधियां या क्रीम अथवा हेयर डाई हैं, लोग प्राकृतिक संसाधन की वस्तुओं की मांग इसलिए करते हैं क्योंकि ये वस्तुएं अगर फायदा नहीं करती तो किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं करती हैं। लेकिन हाल ही में विभिन्न विशेषज्ञों अथवा आयुर्वेद के डॉक्टर की जानकारी के बिना उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने मन से या किसी की देखा देखी करके औषधि लेने वाले को यह पता नहीं होता कि किस बीमारी के लिए उसे कौन सी और कितनी मात्रा में तथा कितने दिनों तक दवा लेनी है। यदि वह बिना पूरी जानकारी के ऐसा करेगा तो लाभ के बजाय उसे नुकसान ही उठाना पड़ेगा। क्या आजकल के एलोपैथी के इस जमाने में भी अधिकतर लोग हर्बल प्रोडक्ट की मांग करते हैं? यही कारण है कि आजकल हर सौंदर्य प्रसाधन निर्माता और
देशी दवा निर्माता अपनी वस्तु के विज्ञापन में सबसे पहले जो चीज लिखते हैं वह है हर्बल प्रोडक्ट। पर्यावरण प्रदूषण के कारण आज प्राकृतिक संसाधन के स्रोत पेड़ पौधे और फूलों में कमी आई है। कई प्रजातियां नष्ट हो गई हैं और कई विनाश के कगार पर खड़ी हैं। इसलिए कई निर्माता रसायनों का प्रयोग करके हर्बल के नाम पर रासायनिक पदार्थ बेच रहे हैं। परिणाम स्वरूप लोगों को लाभ के स्थान पर हानि उठाना पड़ रही है और वे हर्बल के नाम पर ठगे भी जा रहे हैं, क्योंकि जब वास्तविक प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध ही नहीं होंगे तो निर्माता उसे लाएंगे कहां से, और यदि उपलब्ध भी हुए तो उनकी ऊंची कीमत के कारण निर्माता उनके स्थान पर नकली वस्तु से ही काम चलाएगा। हर्बल के स्थान पर फिर वह रासायनिक उत्पाद ही बेचता है। बाजार में हर्बल उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को देखकर आजकल कुछ कंपनियों ने अपने खेत और जमीन पर जड़ी बूटियों के नाम पर कुछ प्राकृतिक संसाधनों की खेती करना भी शुरू कर दिया है। वे अपनी जमीन पर उन जड़ी बूटियों की खेती करने लगे हैं जो विभिन्न तरह की दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के बनाने में काम आती हैं। लेकिन उनके उत्पादों को लेकर दो प्रश्न खड़े होते हैं। क्या उनके द्वारा उत्पादित संसाधन उनके उत्पादनों के लिए पर्याप्त होते हैं? दूसरा कि क्या पहाड़ों और जंगलों से दूर की शहरी हवाओं में उनके संसाधन उतने ही समर्थ होते हैं जितने कि पहाड़ों और जंगलों के प्राकृतिक संसाधन होते हैं? श्रोता साथियों, इसलिए बेहतर यही है कि हम अपने आने वाले कल और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करें और उन्हें बचाए रखने के लिए उनका लापरवाही से न तो स्वयं दुरुपयोग करें और न ही किसी अन्य को दुरुपयोग करने दें। श्रोता साथियों, दोनों ही प्रश्न के उत्तर नहीं में होंगे, क्योंकि पहले उत्तर में यह कहा जा सकता है कि उनके द्वारा यानी हर्बल निर्माताओं द्वारा कुछ जमीन के क्षेत्रों में कुछ एकड़ या कुछ बीघा तक ही वे खेती करते होंगे, जबकि उनका उत्पादन उससे कहीं अधिक होता है। इसलिए उनके द्वारा की जाने वाली खेती को किसी भी सूरत में पर्याप्त नहीं माना और कहा जा सकता है। दूसरी बात, उनके द्वारा उत्पादित संसाधनों में वह बात नहीं होती जो पहाड़ों और जंगलों में उत्पन्न होने वाले प्राकृतिक संसाधनों में होती है। भले ही खेती करने वाले कितना भी खाद और पानी क्यों न दे दें, लेकिन क्या वे पहाड़ों की मिट्टी, जंगलों की मिट्टी और वहां का वातावरण और आबोहवा ला पाते हैं? जिन मिट्टी और वातावरण तथा आबोहवा में प्राकृतिक संसाधन पनपते और बढ़ते हैं, इनके अंतर को ठीक गांव के निवासी और शहर के निवासी में अंतर की तरह समझा जा सकता है। जैसे गांव का निवासी शुद्ध मिट्टी और आबोहवा में पला बड़ा शक्तिशाली होता है, वहीं शहर की आबोहवा में पला बड़ा एक सामान्य व्यक्ति कमजोर किस्म का इंसान होता है। श्रोता साथियों, आइए अब जरा कुछ बातें अन्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और दुरुपयोग की भी कर ली जाए। प्राकृतिक संसाधन के रूप में हवा, पानी और मिट्टी को प्राथमिकता के साथ रखा जा सकता है।

साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम पर्यावरण, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे माइकल होजेस, और इनकी वार्ता का शीर्षक था प्राकृतिक संसाधन और जीवन, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आइए सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वाज मुंबई की। दोस्तों, अभी आपने सुना भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वाज मुंबई की। साथियों, इसी के साथ आज्ञा दीजिए ग्लोरिया गांगले को। अगली मुलाकात में आपसे बात करेंगे विवेक पीटर रॉबर्ट। धन्यवाद।

रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को प्रवीण परमार का प्यार भरा नमस्कार तथा आज की इस प्यारी से सभा में हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज के समय सारणी के अनुसार आप सुन पाएंगे आज का बाइबल पाठ, प्रभु वचन, कार्यक्रम मन दर्पण और भक्ति गीत। तो आइए दोस्तों, हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के पहले पाठ से, जो लिया गया है संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 22 से अध्याय 4 वाक्य संख्या 6 तक, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: हम उससे जो कुछ मांगेंगे वो हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे अच्छा लगता है। और उसकी आज्ञा ये है कि हम उसके पुत्र ईसा मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें, जैसा कि मसीह ने हमें आदेश दिया। जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वो ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें, और हम जानते हैं कि वो हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है।
1: प्रिय भाइयों, प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत करो। आत्माओं की परीक्षा करके देखो कि वे ईश्वर के हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी संसार में आए हैं। ईश्वर के आत्मा की पहचान इसमें है। प्रत्येक आत्मा जो ये स्वीकार करता है कि ईसा मसीह सचमुच मनुष्य बन गए हैं, ईश्वर का है, और प्रत्येक आत्मा जो इस प्रकार ईसा को स्वीकार नहीं करता ईश्वर का नहीं है और वो ईश्वर विरोधी है। तुमने सुना है कि वो संसार में आने वाला है और अब तो वो संसार में आ चुका है। बच्चों, तुम ईश्वर के हो और तुमने उन लोगों पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे महान है जो संसार में है। वे संसार के हैं और इसीलिए वे संसार की बातें करते हैं और संसार उनकी सुनता है, किंतु हम ईश्वर के हैं और जो ईश्वर को पहचानता है वो हमारी सुनता है। जो ईश्वर का नहीं है वो हमारी बात सुनना नहीं चाहता। हम इसके द्वारा सत्य के आत्मा और भ्रांति की आत्मा की पहचान कर सकते हैं।

दोस्तों, अभी आपने सुना आज का पहला पाठ, जो लिया गया था संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 22 से अध्याय 4 वाक्य संख्या 6 तक, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं आज का पवित्र सुसमाचार जो लिया गया है संत मत्ती के अनुसार। पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य संख्या 12 से 17 एवं 23 से 25 तक, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

ईसा ने जब यह सुना कि यूहन्ना गिरफ्तार हो गया है तो वे गलीलिया चले गए। वे नाजरेत नगर छोड़कर जबुलोन और नफ्ताली के प्रांत में समुद्र के किनारे बसे हुए कफरनाहूम नगर में रहने लगे। इस तरह नबी इसायस का यह कथन पूरा हुआ, जबुलोन प्रांत, नफ्ताली प्रांत, समुद्र के पथ पर यर्दन के उस पार गैर यहूदियों की गलीलिया। अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी। मृत्यु के अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ। उस समय से ईसा उपदेश देने और यह कहने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ईसा उनके सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी और निर्बलता दूर करते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। उनका नाम सारी सीरिया में फैल गया। लोग मिर्गी, लकवा आदि नाना प्रकार की बीमारियों और कष्टों से पीड़ित सब रोगियों को और अपदूतग्रस्तों को ईसा के पास ले आते और वे उन्हें चंगा करते थे। गलीलिया, देकापोलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यर्दन के उस पार से आया हुआ एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे चलता था।

दोस्तों, अभी आपने सुना आज का पवित्र सुसमाचार जो लिया गया था संत मत्ती के अनुसार। पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य संख्या 12 से 17 एवं 23 से 25 तक, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर।

दोस्तों, अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rvasia.org पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप स्टोर से RV मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है RVA हिंदी। हमारा ट्विटर हैंडल है @RVAHindi। हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है रेडियो वेरितास एशिया हिंदी। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन, 10 खंडवा रोड, भवरकुवा पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मन दर्पण, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

मन दर्पण के अंतर्गत लीजिए प्रस्तुत है खुश रहना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। श्रोता साथियों, स्वीकार्य समता का प्यार भरा, खुशी से भरा, खुलूस से भरा नमस्कार। साथियों, इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है एक खुश मिजाज प्राणी होने की। खुश रहना जीवन का चरम पहलू नहीं है, बल्कि जीवन का बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं, तो फिर आखिर आपने जीवन में हासिल ही क्या किया? यदि एक बार आप खुश रहेंगे ना, तभी तो दूसरी महान संभावनाओं के लिए रास्ते खुल सकेंगे। दोस्तों, चाहे आप जो भी करें, आप अपने अंदरूनी गुणों को ही विस्तार देते हैं। चाहे आप इस बात को पसंद करें या नहीं, लेकिन सत्य तो यही है। जब तक कि कोई अति महत्वपूर्ण चीज आपके भीतर घटित नहीं होती, आप दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण कुछ नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं कहती हूं कि अगर आप दुनिया के बारे में चिंतित है, समाज के प्रति चिंतित है, अपने घर परिवार रिश्तेदारों के प्रति चिंतित है, तो जो सबसे पहली चीज आपको करनी चाहिए वो ये कि खुद को एक खुश मिजाज प्राणी के रूप में रूपांतरित करें। दोस्तों, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। आप बिजनेस में हैं, सत्ता में हैं, शिक्षा में हैं, सेवा में हैं, या जो भी कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भीतर कहीं गहराई में एक भावना है। इससे आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो कुछ भी करते हैं ना, वो खुश रहने की इच्छा से करते हैं, क्योंकि यही हमारी मूल प्रकृति है। जब आप बच्चे थे तो आप यूं ही खुश थे बिना वजह, क्योंकि उस समय वो आपकी प्रकृति थी। खुशी का स्रोत आपके भीतर है, आप उसे हमेशा के लिए एक जीवंत अनुभव बना सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि भला कैसे, तो आइए मैं आपको बताती हूं। सबसे पहले चीजों के महत्व को पहचानें। आज सुबह जब आप जागे तो क्या आपने देखा कि सूर्य बड़े अद्भुत तरीके से उगा, फूल खिले, कोई सितारा नीचे नहीं गिरा। ये तारामंडल बहुत अच्छे से काम कर रहा है, सब कुछ व्यवस्थित। आज समूचा ब्रह्मांड बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। मगर आपके दिमाग में आया किसी विचार का एक कीड़ा आपको ये मानने पर मजबूर कर देता है कि आज बुरा दिन है। कष्ट इसीलिए होता है क्योंकि ज्यादातर इंसान इस जीवन के प्रति सही नजरिया खो बैठे हैं। इसकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अस्तित्व की प्रक्रिया से कहीं बड़ी हो गई है, या सीधे सीधे कहें तो आपने अपनी रचना को सृष्टा की सृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया है, और यही पीड़ा का बुनियादी स्रोत है। हम इस बात को पूरी समझ खो बैठे हैं कि यहां जीवित रहने के आखिर मायने हैं क्या। आपके दिमाग में आया कोई विचार या आपके मन की कोई भावना फिलहाल आपके अनुभव की प्रकृति को तय करती है, और ये भी हो सकता है कि आपके विचार और भावना आपके जीवन की सीमित हकीकत से कोई लेना देना ही नहीं रखती। अब देखिए ना, पूरी सृष्टि बहुत बढ़िया तरीके से घटित हो रही है, मगर हमारा सिर्फ एक विचार या भावना कि आज का दिन बुरा है, क्या इन्हें नष्ट कर सकती है? आप कहते हैं कि मेरा मन कहता है, मेरा मन कहता है कि आज का दिन बुरा है। दोस्तों, असल में ये जो आपका मन है ना, वो असल में आपका है ही नहीं। आपका अपना कोई मन नहीं, इस बात पर ध्यान दें। जिसे आप मेरा मन कहते हैं, वो बस समाज का कूड़ेदान है। कोई भी और हर कोई जो आपके पास से गुजरता है, वो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ डाल जाता है। आप वाकई ये चुन नहीं सकते कि किससे आपको चीजें ग्रहण करनी है और किससे आपको चीजें ग्रहण नहीं करनी। आप कहते हैं कि मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं, और अगर आपने ये बात कहा कि ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं, तो यकीन मानिए किसी भी और व्यक्ति से ज्यादा उस व्यक्ति को आपने ग्रहण कर लिया है। आपके पास और कोई चारा ही नहीं। अगर आपको इस बात की जानकारी हो कि उसे ठीक करके कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये कूड़ेदान उपयोगी बन सकता है।
असर और जानकारी का ये ढेर जो आपने जमा किया है वो सिर्फ दुनिया में जीवित रहने के लिए उपयोगी है। आप कौन हैं? इसका उसे कोई संबंध नहीं है। देखिए दोस्तों, आज हम इतने जोर शोर से खुशी की तलाश कर रहे हैं कि धरती का जीवन ही खतरे में पड़ गया है। खुशी की तलाश में ना रहें, दुनिया में अपनी खुशी को अभिव्यक्त करना जाने। अगर आप मुड़कर अपने जीवन को देखें तो आपके जीवन के सबसे खूबसूरत पल वे थे जब आप अपनी खुशी को अभिव्यक्ति दे रहे थे, न कि वो जब आप उसकी तलाश कर रहे थे। जो आप बचाते हैं वो कभी आपका गुण नहीं होगा, जो आप फैलाते हैं, जो आप बिखेरते हैं वो आपका गुण होगा। अगर आप अपनी खुशी को बचा बचा कर रखेंगे ना, तो जीवन के अंत में कोई ऐसा नहीं कहेगा कि उसने आपके अंदर खुशी का एक अंश बचा कर रखा है, वो खुशी के साथ मरा। वो ये कहेंगे कि ये बड़ा भयानक प्राणी अपनी जिंदगी में कभी न मुस्काया। इसीलिए अगर आप हर दिन खुशी के साथ जीना चाहते हैं तो अपनी खुशी और प्यार को फैलाएं। हाँ, तब लोग जरूर कहेंगे कि अरे वो तो बड़ा खुश मिजाज और प्यार करने वाला व्यक्ति था। तो दोस्तों, सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि आप मुस्कुराएं। किस पर? अरे किसी पर नहीं, क्योंकि आप जागे ये कोई छोटी बात नहीं है। लाखों लोग जो कल रात सोए थे आज नहीं जागे, मगर आप और मैं जाग गए। क्या ये बहुत बढ़िया बात नहीं है दोस्तों? तो इसीलिए अपने जागने पर मुस्कुराइए, फिर इसके बाद अपने आसपास देखिए और अगर कोई है तो उन्हें देखकर मुस्कुराइए। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उनका कोई प्रियजन सुबह नहीं जागा। आपको जो भी लोग प्यारे हैं वो सुबह जाग उठे, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा दिन है ना? और फिर बाहर जाइए, पेड़ों को देखिए, वो भी पिछली रात को नष्ट नहीं हुए थे। बहुत से लोगों को यह अजीब लगता है, मगर आपको इसका महत्व तब पता चलेगा जब आपका कोई प्रियजन सुबह नहीं जागेगा। इसलिए इस बात को जानिए, इस बात के महत्व को समझिए कि हमें सबसे पहले मुस्कुराना सीखना है, दूसरों को प्यार से देखना सीखना है। जब हम ये बात सीख जाएंगे तभी हम अपने मुस्कुराहटे, अपनी खुशियां दूसरों को बांट सकेंगे। दूसरों को ये याद दिलाइए और खुद को भी कि मैं जीवित हूं, तुम जीवित हो, फिर और क्या चाहिए। दोस्तों, वर्तमान में आपके जीवन की गुणवत्ता उन कपड़ों से तय नहीं होती जो आप पहनते हैं। वो आपकी शैक्षणिक योग्यताओं, आपके परिवार की स्थिति, आपके बैंक बैलेंस से तय होती है। आपके जीवन की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि आप अपने भीतर कितने शांत और खुश हैं। देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें दो वक्त का भोजन नहीं मिलता। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें जीवित रहने के लिए जरूरी बुनियादी चीजें भी नहीं मिलती। बहुत से ऐसे हैं जिन्हें शारीरिक रूप से कष्ट है। यहां आप ध्यान दीजिए कि आपके पास ऐसा कोई अभाव नहीं है। क्या ये खुश रहने की वजह नहीं है? हम में से ज्यादातर लोग इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि दूसरे के पास हमसे ज्यादा है। ये सोचिए कि क्या आपके पास जो है वो कम है। दूसरों से तुलना करना छोड़ दीजिए। जब आप इन सभी बातों पर गौर करेंगे तब आप महसूस करेंगे कि आपके पास असल में खुश रहने की बहुत सी भरपूर वजहें हैं। तो श्रोता साथियों, मेरा आपसे यही कहना है कि खुश रहिए, मुस्कुराइए। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे अनिसमता को दे इजाजत। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आपने सुना कार्यक्रम मन दर्पण और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, अगर आप यह कार्यक्रम पुनः सुनना चाहते हैं तो अपने मोबाइल में आरवी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर आर्काइव में यह कार्यक्रम पुनः सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज्ञा दीजिए अपने मित्र प्रवीण परमार को। धन्यवाद।

रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को प्रवीण परमार का प्यार भरा नमस्कार तथा आज की इस प्यारी से सभा में हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज के समय सारणी के अनुसार आप सुन पाएंगे आज का बाइबल पाठ, प्रभु वचन, कार्यक्रम मन दर्पण और भक्ति गीत। तो आइए दोस्तों, हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के पहले पाठ से, जो लिया गया है संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 22 से अध्याय 4 वाक्य संख्या 6 तक, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

हम उससे जो कुछ मांगेंगे वो हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे अच्छा लगता है।

क्योंकि बहुत से झूठे नबी संसार में आए हैं। ईश्वर के आत्मा की पहचान इसमें है। प्रत्येक आत्मा जो ये स्वीकार करता है कि ईसा मसीह सचमुच मनुष्य बन गए हैं, ईश्वर का है, और प्रत्येक आत्मा जो इस प्रकार ईसा को स्वीकार नहीं करता, ईश्वर का नहीं है और वो ईश्वर विरोधी है। तुमने सुना है कि वो संसार में आने वाला है और अब तो वो संसार में आ चुका है। बच्चों, तुम ईश्वर के हो और तुमने उन लोगों पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे महान है जो संसार में है। वे संसार के हैं और इसीलिए वे संसार की बातें करते हैं और संसार उनकी सुनता है, किंतु हम ईश्वर के हैं और जो ईश्वर को पहचानता है वो हमारी सुनता है। जो ईश्वर का नहीं है वो हमारी बात सुनना नहीं चाहता। हम इसके द्वारा सत्य के आत्मा और भ्रांति की आत्मा की पहचान कर सकते हैं।

दोस्तों, अभी आपने सुना आज का पहला पाठ, जो लिया गया था संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 22 से अध्याय 4 वाक्य संख्या 6 तक, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं आज का पवित्र सुसमाचार जो लिया गया है संत मत्ती के अनुसार। पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य संख्या 12 से 17 एवं 23 से 25 तक, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

ईसा ने जब यह सुना कि यूहन गिरफ्तार हो गया है तो वे गलीलिया चले गए। वे नाजरेत नगर छोड़कर जबुलोन और नफ्ताली के प्रांत में समुद्र के किनारे बसे हुए कफरनाहूम नगर में रहने लगे। इस तरह नबी इसायस का यह कथन पूरा हुआ, जबुलोन प्रांत, नफ्ताली प्रांत, समुद्र के पथ पर यर्दन के उस पार गैर यहूदियों की गलीलिया। अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी। मृत्यु के अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ। उस समय से ईसा उपदेश देने और यह कहने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ईसा उनके सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी और निर्बलता दूर करते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। उनका नाम सारी सीरिया में फैल गया। लोग मिर्गी, लकवा आदि नाना प्रकार की बीमारियों और कष्टों से पीड़ित सब रोगियों को और अपदूतग्रस्तों को ईसा के पास ले आते और वे उन्हें चंगा करते थे। गलीलिया, देकापोलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यर्दन के उस पार से आया हुआ एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे चलता था।

दोस्तों, अभी आपने सुना आज का पवित्र सुसमाचार जो लिया गया था संत मत्ती के अनुसार। पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य संख्या 12 से 17 एवं 23 से 25 तक, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर।

दोस्तों, अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rvasia.org पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप स्टोर से RV मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है RVA हिंदी। हमारा ट्विटर हैंडल है @RVAHindi। हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है रेडियो वेरितास एशिया हिंदी। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन, 10 खंडवा रोड, भवरकुवा पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मन दर्पण, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

मन दर्पण के अंतर्गत लीजिए प्रस्तुत है। खुश रहना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। श्रोता साथियों, स्वीकार्य समता का प्यार भरा, खुशी से भरा, खुलूस से भरा नमस्कार। साथियों, इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है एक खुश मिजाज प्राणी होने की। खुश रहना जीवन का चरम पहलू नहीं है, बल्कि जीवन का बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं, तो फिर आखिर आपने जीवन में हासिल ही क्या किया? यदि एक बार आप खुश रहेंगे ना, तभी तो दूसरी महान संभावनाओं के लिए रास्ते खुल सकेंगे। दोस्तों, चाहे आप जो भी करें, आप अपने अंदरूनी गुणों को ही विस्तार देते हैं। चाहे आप इस बात को पसंद करें या नहीं, लेकिन सत्य तो यही है। जब तक कि कोई अति महत्वपूर्ण चीज आपके भीतर घटित नहीं होती, आप दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण कुछ नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं कहती हूं कि अगर आप दुनिया के बारे में चिंतित है, समाज के प्रति चिंतित है, अपने घर परिवार रिश्तेदारों के प्रति चिंतित है, तो जो सबसे पहली चीज आपको करनी चाहिए वो ये कि खुद को एक खुश मिजाज प्राणी के रूप में रूपांतरित करें। दोस्तों, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। आप बिजनेस में हैं, सत्ता में हैं, शिक्षा में हैं, सेवा में हैं, या जो भी कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भीतर कहीं गहराई में एक भावना है। इससे आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो कुछ भी करते हैं ना, वो खुश रहने की इच्छा से करते हैं, क्योंकि यही हमारी मूल प्रकृति है। जब आप बच्चे थे तो आप यूं ही खुश थे बिना वजह, क्योंकि उस समय वो आपकी प्रकृति थी। खुशी का स्रोत आपके भीतर है। आप उसे हमेशा के लिए एक जीवंत अनुभव बना सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि भला कैसे, तो आइए मैं आपको बताती हूं। सबसे पहले चीजों के महत्व को पहचानें। आज सुबह जब आप जागे, तो क्या आपने देखा कि सूर्य बड़े अद्भुत तरीके से उगा, फूल खिले, कोई सितारा नीचे नहीं गिरा? ये तारामंडल बहुत अच्छे से काम कर रहा है, सब कुछ व्यवस्थित। आज समूचा ब्रह्मांड बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। मगर आपके दिमाग में आया किसी विचार का एक कीड़ा आपको ये मानने पर मजबूर कर देता है कि आज बुरा दिन है। कष्ट इसीलिए होता है क्योंकि ज्यादातर इंसान इस जीवन के प्रति सही नजरिया खो बैठे हैं। इसकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अस्तित्व की प्रक्रिया से कहीं बड़ी हो गई है, या सीधे सीधे कहें तो आपने अपनी रचना को सृष्टा की सृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया है, और यही पीड़ा का बुनियादी स्रोत है। हम इस बात को पूरी समझ खो बैठे हैं कि यहां जीवित रहने के आखिर मायने हैं क्या। आपके दिमाग में आया कोई विचार या आपके मन की कोई भावना फिलहाल आपके अनुभव की प्रकृति को तय करती है, और ये भी हो सकता है कि आपके विचार और भावना आपके जीवन की सीमित हकीकत से कोई लेना देना ही नहीं रखती। अब देखिए ना, पूरी सृष्टि बहुत बढ़िया तरीके से घटित हो रही है, मगर हमारा सिर्फ एक विचार या भावना कि आज का दिन बुरा है, क्या इन्हें नष्ट कर सकती है? आप कहते हैं कि मेरा मन कहता है, मेरा मन कहता है कि आज का दिन बुरा है। दोस्तों, असल में ये जो आपका मन है ना, वो असल में आपका है ही नहीं। आपका अपना कोई मन नहीं, इस बात पर ध्यान दें। जिसे आप मेरा मन कहते हैं, वो बस समाज का कूड़ेदान है। कोई भी और हर कोई जो आपके पास से गुजरता है, वो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ डाल जाता है। आप वाकई ये चुन नहीं सकते कि किससे आपको चीजें ग्रहण करनी है और किससे आपको चीजें ग्रहण नहीं करनी। आप कहते हैं कि मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं, और अगर आपने ये बात कहा कि ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं, तो यकीन मानिए किसी भी और व्यक्ति से ज्यादा उस व्यक्ति को आपने ग्रहण कर लिया है। आपके पास और कोई चारा ही नहीं। अगर आपको इस बात की जानकारी हो कि उसे ठीक करके कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये कूड़ेदान उपयोगी बन सकता है।
असर और जानकारी का ये ढेर जो आपने जमा किया है वो सिर्फ दुनिया में जीवित रहने के लिए उपयोगी है। आप कौन हैं? इसका उसे कोई संबंध नहीं है। देखिए दोस्तों, आज हम इतने जोर शोर से खुशी की तलाश कर रहे हैं कि धरती का जीवन ही खतरे में पड़ गया है। खुशी की तलाश में ना रहें, दुनिया में अपनी खुशी को अभिव्यक्त करना जानें। अगर आप मुड़कर अपने जीवन को देखें तो आपके जीवन के सबसे खूबसूरत पल वे थे जब आप अपनी खुशी को अभिव्यक्ति दे रहे थे, न कि वो जब आप उसकी तलाश कर रहे थे। जो आप बचाते हैं वो कभी आपका गुण नहीं होगा, जो आप फैलाते हैं, जो आप बिखेरते हैं वो आपका गुण होगा। अगर आप अपनी खुशी को बचा बचा कर रखेंगे ना, तो जीवन के अंत में कोई ऐसा नहीं कहेगा कि उसने आपके अंदर खुशी का एक अंश बचा कर रखा है, वो खुशी के साथ मरा। वो ये कहेंगे कि ये बड़ा भयानक प्राणी अपनी जिंदगी में कभी न मुस्काया। इसीलिए अगर आप हर दिन खुशी के साथ जीना चाहते हैं तो अपनी खुशी और प्यार को फैलाएं। हाँ, तब लोग जरूर कहेंगे कि अरे वो तो बड़ा खुश मिजाज और प्यार करने वाला व्यक्ति था। तो दोस्तों, सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि आप मुस्कुराएं। किस पर? अरे किसी पर नहीं, क्योंकि आप जागे ये कोई छोटी बात नहीं है। लाखों लोग जो कल रात सोए थे आज नहीं जागे, मगर आप और मैं जाग गए। क्या ये बहुत बढ़िया बात नहीं है दोस्तों? तो इसीलिए अपने जागने पर मुस्कुराइए, फिर इसके बाद अपने आसपास देखिए और अगर कोई है तो उन्हें देखकर मुस्कुराइए। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उनका कोई प्रियजन सुबह नहीं जागा। आपको जो भी लोग प्यारे हैं वो सुबह जाग उठे, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा दिन है ना? और फिर बाहर जाइए, पेड़ों को देखिए, वो भी पिछली रात को नष्ट नहीं हुए थे। बहुत से लोगों को यह अजीब लगता है, मगर आपको इसका महत्व तब पता चलेगा जब आपका कोई प्रियजन सुबह नहीं जागेगा। इसलिए इस बात को जानिए, इस बात के महत्व को समझिए कि हमें सबसे पहले मुस्कुराना सीखना है, दूसरों को प्यार से देखना सीखना है। जब हम ये बात सीख जाएंगे तभी हम अपने मुस्कुराहटे, अपनी खुशियां दूसरों को बांट सकेंगे। दूसरों को ये याद दिलाइए और खुद को भी कि मैं जीवित हूं, तुम जीवित हो, फिर और क्या चाहिए। दोस्तों, वर्तमान में आपके जीवन की गुणवत्ता उन कपड़ों से तय नहीं होती जो आप पहनते हैं। वो आपकी शैक्षणिक योग्यताओं, आपके परिवार की स्थिति, आपके बैंक बैलेंस से तय होती है। आपके जीवन की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि आप अपने भीतर कितने शांत और खुश हैं। देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें दो वक्त का भोजन नहीं मिलता। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें जीवित रहने के लिए जरूरी बुनियादी चीजें भी नहीं मिलती। बहुत से ऐसे हैं जिन्हें शारीरिक रूप से कष्ट है। यहां आप ध्यान दीजिए कि आपके पास ऐसा कोई अभाव नहीं है। क्या ये खुश रहने की वजह नहीं है? हम में से ज्यादातर लोग इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि दूसरे के पास हमसे ज्यादा है। ये सोचिए कि क्या आपके पास जो है वो कम है। दूसरों से तुलना करना छोड़ दीजिए। जब आप इन सभी बातों पर गौर करेंगे तब आप महसूस करेंगे कि आपके पास असल में खुश रहने की बहुत सी भरपूर वजहें हैं। तो श्रोता साथियों, मेरा आपसे यही कहना है कि खुश रहिए, मुस्कुराइए। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे अनिसमता को दे इजाजत। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आपने सुना कार्यक्रम मन दर्पण और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, अगर आप यह कार्यक्रम पुनः सुनना चाहते हैं तो अपने

सत्य स्वर सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को ग्लोरिया गांगले का प्यार भरा नमस्कार तथा आज की इस सभा में हार्दिक स्वागत। दोस्तों, अभी की सभा 7 से 8 में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम कृषि जगत, कानूनी ज्ञान, वसुदेव कुटुम्बकम, नाटक और भक्ति गीत। तो आइए दोस्तों, हम सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: मुखिया जी, कृषि जगत कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: आपका भी स्वागत है, अपने श्रोताओं का भी स्वागत है।
0: रवि का मौसम चल रहा है मुखिया जी, ऐसे में हमारे किसान भाइयों को ये जानना जरूरी हो जाता है कि रवि के किन फसलों की बुआई और उसकी देखभाल, प्रभेदों का चयन, खाद एवं उर्वरक का प्रयोग कितनी मात्रा में और कब करें।
1: हाँ भाई, ये तो हरेक किसान भाई को जानना जरूरी है कि सबसे पहले कि आप ही बताइए कि किस फसल से इसकी शुरुआत की जाए।
0: सबसे पहले अगर सरसों की बात की जाए मुखिया जी, तो इसके लिए कौन सा प्रभेद का चयन करना ज्यादा अच्छा रहेगा जिससे किसान अच्छी उपज प्राप्त कर सके।
1: देखिए, सरसों का उन्नत प्रभेद 66/197/3 है
0: जी।
1: इसकी औसत उपज 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और तैयार होने की अवधि 120 से 125 दिन है। तेल की मात्रा 43% से बीज दर 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है
0: जी।
1: एक किस्म है जिसे राजेंद्र 1 और 2 के नाम से जानते हैं। इसकी क्षमता 13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। तैयार होने की अवधि 110 से 120 दिन है। इसमें तेल की मात्रा 46%। एक किस्म और है, उसके बारे में भी बता देता हूँ, वो है स्वर्णा
0: जी।
1: इसकी औसत उपज 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और तैयार होने की अवधि वही 110 से 120 दिन और इसमें तेल की मात्रा 47% है।
0: इसकी बुआई की विधि और खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग प्रति हेक्टेयर कितनी मात्रा में करेंगे यह भी बता दीजिए मुखिया जी।
1: इसकी बुआई का समय 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक है। बुआई की दूरी 30x10 सेंटीमीटर रखें। जहां तक खाद एवं उर्वरक की बात है तो 100 क्विंटल कंपोस्ट बुआई के 20-30 दिन पहले खेत में डालें। 60 किलोग्राम नेत्रजन, 40 किलोग्राम स्फुर, 40 किलोग्राम पोटाश का प्रयोग करें।
0: सरसों फसल में सिंचाई की बहुत आवश्यकता पड़ती है मुखिया जी।
1: हाँ,
0: तो कितनी बार और कब सिंचाई करनी चाहिए।
1: देखिए, दो सिंचाई की जरूरत पड़ती है
0: जी।
1: पहली सिंचाई फूल लगने के समय और दूसरी सिंचाई फलियों के लगने के समय की जाती है।
0: राई के लिए समयकालीन खेती के लिए इसके उन्नत प्रभेद कौन कौन से हैं मुखिया जी।
1: इसके कई उन्नत प्रभेद हैं, जिनमें एक है वरुणा। इसकी औसत उपज 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। तैयार होने की अवधि 135 से 140 दिन। तेल की मात्रा 43% है। पूसा बोल्ड दियारा क्षेत्र के लिए एक उत्तम किस्म है। इसकी औसत उपज क्षमता 19 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। तैयार होने की अवधि 120 से 145 दिन और इसमें तेल की मात्रा 42% है। एक है क्रांति राई
0: जी।
1: सिंचित खेती हेतु ये प्रभेद अच्छा है। इसकी उपज क्षमता 21 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और तैयार होने की अवधि 125 से 130 दिन
0: जी। जी,
1: तेल की मात्रा 40%। राई पिछात धान की फसल कटने के बाद खेती के लिए राजेंद्र राई पिछौती है, पिछैती
0: जी।
1: रोग सहिष्णुता 2073, ये एक नई किस्म है, है ना
0: जी।
1: 2073 रोग सहिष्णु
0: जी,
1: नाम के अनुरूप है। इसकी औसत उपज 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। तैयार होने की अवधि 106 से 116 दिन है। तेल की मात्रा 41% है। ये सब प्रभेद हुए आपको और मैंने बता दिया। हाँ
0: जी, जी। क्या इसकी बुआई के लिए किसी खास क्षेत्र को अनुशंसित किया गया है या फिर इसकी बुआई पूरे बिहार में की जा सकती है।
1: इसकी बुआई पूरे बिहार में की जा सकती है। पिछात राई की बुआई धान कटने के बाद 15 नवंबर से दिसंबर के पहले सप्ताह तक की जा सकती है। राजेंद्र अनुकूल ये भी एक नई किस्म है। इसकी औसत उपज 13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और तैयार होने की अवधि 105 से 110 दिन। इसमें तेल की मात्रा 40% है। इसकी बुआई पूरे बिहार में की जा सकती है
0: जी।
1: पिछात की बुआई धान कटने के बाद 15 नवंबर से दिसंबर के पहले सप्ताह तक की जा सकती है।
0: राजेंद्र सुखनाम एक प्रभेद सुनने को आया था मुखिया जी, यह किस प्रकार का प्रभेद है और इसकी खास विशेषता क्या है।
1: राजेंद्र सुखनाम मोटे दाने वाली रोग सहिष्णु नई किस्म है। इसकी औसत उपज 16.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। तैयार होने की अवधि 107 से 116 दिन है और तेल की मात्रा 39.7% यानी लगभग 40%।
0: जी जी।
1: इसके लिए उपयुक्त क्षेत्र पूरा बिहार है। तिछात राई की बुआई धान कटने के बाद 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक की जाती है।
0: इसकी बुआई की क्या कुछ खास विधि है मुखिया जी, और उर्वरक का प्रयोग प्रति हेक्टेयर कितना करना पड़ता है इसमें?
1: देखिए, बीज दर प्रति हेक्टेयर 5 किलोग्राम, बुआई की दूरी 30x15 सेंटीमीटर, 100 किलो कंपोस्ट, बुआई के 20 से 30 दिन पहले खेत में छींटकर जुताई कर दें और उसके बाद खेत में डालें
0: जी।
1: 80 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम स्फुर, 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। इसके लिए भी मात्र 2 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई फूल लगते समय और दूसरी सिंचाई फल लगते समय करते हैं।
0: रवि के मौसम में ही आलू की खेती भी की जाती है मुखिया जी,
1: हाँ।
0: तो इसके लिए कौन सा उन्नत प्रभेद होगा और कितने दिनों में तैयार होंगे, और साथ ही साथ उनकी उपज क्षमता क्या होगी?
1: आलू के कई उन्नत प्रभेद हैं, जिसमें कुफरी चंद्रमुखी सफेद है जो 80 से 90 दिनों में पकने वाला है
0: जी।
1: अगात तथा मुख्य दोनों फसलों के लिए उपयुक्त उत्पादन क्षमता 225 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।
0: अच्छा,
1: इसी प्रकार एक किस्म कुफरी अशोका सफेद है जो 80 से 90 दिनों में पकने वाली है। झुलसा से प्रभावित होते हुए भी अगात फसल के लिए गंगा के मैदानी भाग के लिए उपयुक्त है। इसकी उत्पादन क्षमता 230 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राजेंद्र आलू एक लाल रंग का कंद है जो 110 से 120 दिनों में पकने वाला है
0: जी।
1: झुलसा प्रतिरोधी मुख्य फसल के लिए उपयुक्त है। उत्पादन क्षमता 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ये क्षारीय भूमि में भी उगाया जा सकता है।
0: राजेंद्र आलू 2 और राजेंद्र आलू 3, ये दोनों किस प्रकार के किस्म है मुखिया जी, इनकी खास विशेषता क्या है और उपज क्षमता क्या है?
1: राजेंद्र आलू 2 लाल रंग के कंद 100 से 110 दिनों में पकने वाले हैं। पिछात झुलसा प्रतिरोधी है। ये आलू यानी राजेंद्र आलू 1 की तरह ही है
0: जी,
1: लेकिन गुदा मुलायम। उत्पादन क्षमता 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और ये क्षारीय भूमि के लिए अनुकूल है। राजेंद्र आलू 3 ये बड़े आकार का पीले रंग का कंद 70 से 80 दिनों में पकने वाला, गुदा पीले रंग लिए हुए, मुलायम और उत्पादन क्षमता 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।
0: अच्छा अच्छा,
1: पिछात झुलसा रोग से कुछ हद तक सहिष्णु है।
0: मुखिया जी, हम लोग आलू के प्रभेदों की बात कर रहे हैं और कौन सा प्रभेद कितने दिनों में तैयार हो जाता है और कौन से प्रभेद से कितनी उपज क्षमता प्राप्त की जा सकती है?
1: हाँ, मुझे याद है हम लोग राजेंद्र आलू 3 तक की चर्चा कर चुके हैं
0: जी जी।
1: तो
0: वैसे तो बाजार में बहुत सारे प्रभेद हैं,
1: हाँ,
0: जिसका हमारे किसान भाई लाभ उठा सकते हैं मुखिया जी।
1: एक
0: प्रभेद कुफरी बादशाह ऐसा सुनने में आया है,
1: हाँ,
0: जो सफेद रंग का है और यह 100 से 110 दिनों में पकने वाली मुख्य फसल के लिए उपयुक्त है,
1: हाँ।
0: साथ ही साथ पिछात झुलसा रोग का प्रतिरोधी है और जहां तक उत्पादन क्षमता की बात है तो शायद 350
1: प्रति हेक्टेयर, हाँ, क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।
0: यह तो काफी अच्छा प्रभेद है ना मुखिया जी।
1: हाँ बिल्कुल, बिल्कुल
0: हमारे
1: बिल्कुल।
0: किसान भाई इस प्रभेद की खेती कर लाभ कमा सकते हैं,
1: हाँ।
0: एक प्रभेद कुफरी सिंदूरी, यह किस प्रकार का प्रभेद है?
1: देखिए, कुफरी सिंदूरी लाल 120 दिनों में पकने वाला प्रभेद है जो मुख्य फसल के लिए उपयुक्त है
0: जी।
1: भंडारण क्षमता उत्तम है, झुलसा रोग का प्रतिरोधी है। इसकी उत्पादन क्षमता 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, खास करके आलू के इतने सारे प्रभेदों की जानकारी हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए। अगली बार आपसे मुलाकात होगी तो फिर हम लोग खेती किसानी से संबंधित कुछ और बात करेंगे, आलू के उन्नत प्रभेदों के बारे में जानेंगे। अभी हम लोग चलते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: नमस्कार।

साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम कृषि जगत और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। आइए साथियों, अब सुनते हैं कार्यक्रम कानूनी ज्ञान और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: श्याम जी और कपूर साहब, कानूनी सलाह कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: आपका भी स्वागत है, अपने श्रोताओं का भी स्वागत
2: जी, आपका भी।
0: कृषि से होने वाली आय आय नहीं मानी जाती, क्योंकि भूमि आय प्राप्त करने का अप्रत्यक्ष या वैकल्पिक तरीका है। कृपया इसको एक उदाहरण के द्वारा हमारे श्रोताओं को समझाने का कष्ट करें कपूर साहब
2: जी। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी अपनी कृषि आय से डिविडेंड का भुगतान करती है, तो ऐसी स्थिति में उस आय को कृषि भूमि से प्राप्त आय नहीं माना जाएगा, क्योंकि इन परिस्थितियों में आय प्राप्त करने का सीधा और प्रभावी स्रोत अंश धारण करना है, न कि भूमि।
0: जहां सरकार कृषि भूमि मालिक को उसे कृषि भूमि से बेकब्जा कर दिया गया है
2: जी,
0: उस परिस्थिति में क्या हो गया?
1: देखिए, जहां सरकार ने किसी कृषि भूमि मालिक को उसकी कृषि भूमि से बेकब्जा करने के लिए विधिक उत्तरदायित्व के तहत मालिकाना भत्ते का भुगतान किया है, तो ऐसी प्राप्ति को भूमि से प्राप्त आय नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऐसे मामले में आय का सीधा स्रोत सरकार का विधिक उत्तरदायित्व है
0: जी,
1: जिसके तहत भूमि के प्रतिकर मुआवजे का भुगतान किया गया और कृषि भूमि का नहीं। इसी प्रकार धारा 2(1)(a) के साथ जुड़े स्पष्टीकरण के अनुसार, अगर कृषि भूमि के हस्तांतरण से कोई आय प्राप्त होती है, तो उसे कृषि भूमि से प्राप्त आय नहीं माना जाएगा।
0: कृषि आय को कृषि आय बनने के लिए क्या कोई और शर्त है कपूर जी?
2: किसी आय को कृषि आय बनने के लिए दूसरी शर्त यह है कि वो आय कृषि भूमि पर कृषि कार्य करने से, जिसमें कृषि उत्पाद को तैयार करना, वस्तु के रूप में किराया प्राप्त करना, जिससे वो बाजार में बिकने योग्य बने, या ऐसे उत्पाद की बिक्री आदि शामिल है। उदाहरण के लिए गन्ने से गुड़ बनाना, जूट के पौधे से रेशे अलग करना, तंबाकू को सुखाना आदि शामिल है।
0: कृषि भूमि का भारत में स्थित होना आवश्यक है श्याम जी?
1: देखिए, कृषि आय के लिए आवश्यक है कि किराया या आय कृषि भूमि से प्राप्त की जाए, और इस शर्त की पूर्ति के साथ ये भी आवश्यक है कि जिस कृषि भूमि से आय प्राप्त की जा रही है वो भारत में स्थित होनी चाहिए
0: जी।
1: ये शर्त मात्र धारा 2(1)(a)(a) की आवश्यकता पूर्ति के लिए ही नहीं, बल्कि धारा 2(1)(a)(b)(c) की आवश्यकता पूर्ति के लिए भी अनिवार्य है। अगर कृषि भूमि भारत से बाहर स्थित है, तो अधिनियम की धारा 10(1) में कोई छूट आयकर से नहीं मिलेगी, और ऐसी आय प्राप्तकर्ता की निवास स्थिति के अनुसार कर योग्य होगी।
0: कृषि आय के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त करने के लिए किन बातों का होना आवश्यक है कपूर जी?
2: देखिए, सबसे पहली बात यह है कि धारा 2(1)(a) की किसी भी उपधारा यानी ए, बी और सी के तहत कृषि आय के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि कृषि भूमि का उपयोग या उपभोग कृषि कार्यों के लिए किया जाए। हालांकि कृषि एवं कृषि उद्देश्यों को इस अधिनियम में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है।
0: ये तो हो गया कृषि आय से संबंधित अधिनियम के बारे में श्याम जी। अब थोड़ा सा आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये अभी खास करके कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं,
1: हाँ।
0: तो यह जो कानून हमारे यहाँ कुछ साल पहले लागू किया गया था, राइट टू रिजेक्ट, उसके बारे में हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, ये जो अधिकार आम जनता को मिला है
0: जी,
1: वो काफी लंबी लड़ाई के बाद मिला है।
0: बिल्कुल,
1: इसके बारे में लोगों का जानना बहुत जरूरी है। इससे चुनाव प्रक्रिया में भारी सुधार होगा और जनता को यह अधिकार मिल जाएगा कि वो तमाम दागी प्रत्याशियों को खारिज कर सके
0: जी। जी,
1: जयप्रकाश नारायण का आंदोलन जब शुरू हुआ, तब उसमें एक प्रमुख मांग थी कि जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार मिले, यानी राइट टू रिकॉल
0: जी।
1: तभी ये बहस चली थी कि जब लोकसभा विधानसभा के चुनाव हो तो उसमें कॉलम हो इनमें से कोई नहीं
0: जी,
1: जिसे अब हम नोटा कहते हैं, आप देखते हैं ना
0: जी, जी।
1: और वो मिल चुका है ये अधिकार
0: जी।
1: लेकिन इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई। इसके लिए जयप्रकाश नारायण ने इमरजेंसी से पहले ही एक संगठन बनाया था, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज
0: जी,
1: इमरजेंसी खत्म होने के बाद पीयूसीएल ने राइट टू रिजेक्ट की भी मांग जोर शोर से उठाई, जो मांग आज भी जारी है।
0: जी, राइट टू रिजेक्ट मांग उठाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या रहा कपूर जी? क्या उस समय भी भ्रष्टाचार या भ्रष्ट प्रतिनिधियों का बोलबाला था?
2: इस मांग को उठाने का कारण ये था कि लोकसभा और राज्यसभा में दागी चरित्र के लोग, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार, हत्या, लूट, बलात्कार जैसे तमाम मुकदमे हैं, संसदीय लोकतंत्र में प्रत्याशी हो जाया करते हैं, उन पर रोक लगाई जाए। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि संसदीय लोकतंत्र में ऐसे जन प्रतिनिधियों को लेकर खुद सरकार की भूमिका जन चेतना के बिल्कुल विपरीत रही है।
0: ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि यह जनहित याचिका का ही परिणाम है कि हम लोगों को राइट टू रिजेक्ट का अधिकार मिला है।
1: देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। ये जनहित याचिका के फलस्वरूप ही सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देना पड़ा। अगर हम जनहित याचिकाओं पर जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को देखें
0: जो,
1: तो अब तक की सरकारों की मंशा के खिलाफ फैसले आए हैं।
0: जी जी,
1: मसलन 2 वर्ष तक की सजा होने पर किसी भी जन प्रतिनिधि की सदस्यता लोकसभा से या विधानसभा से जा सकती है, और दागी लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने का प्रावधान।
0: पीयूसीएल जिसकी आप चर्चा कर रहे थे श्याम जी, तो पीयूसीएल ने तो शुरू से ही यह मांग सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाती रही है कपूर साहब।
2: जी हाँ, पीयूसीएल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के माध्यम से ये मांग की थी कि चुनाव में हिस्सेदारी करने वाले प्रत्याशियों को चुनाव आयोग से निर्देशित कराया जाए कि वे अपनी संपत्ति का विवरण सहित आपराधिक रिकॉर्ड का विवरण नामांकन करते समय घोषित करें।
0: सरकार की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया जताई गई थी?
1: देखिए, सरकार ने इसका पुरजोर विरोध सुप्रीम कोर्ट में किया था।
0: अच्छा अच्छा।
1: बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने पीयूसीएल की जनहित याचिका स्वीकार कर चुनाव आयोग को निर्देशित किया कि प्रत्याशियों को बाध्य किया जाए कि वे अपनी संपत्ति का विवरण और आपराधिक धाराओं के मुकदमों का विवरण नामांकन करते समय दर्ज करें।
0: जी,
1: ये पीयूसीएल याचिका का ही परिणाम है कि प्रत्याशियों के पास कितनी धन संपत्ति है और आपराधिक धाराओं के तहत कितने मुकदमे चल रहे हैं, इसका विवरण जनता को मालूम हो पा रहा है।
0: अभी ताजा तरीन जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, वह तो सचमुच भारतीय लोकतंत्र के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है।
2: सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से जो जन प्रतिनिधियों को खारिज करने के अधिकार के रूप में मतदाताओं को मिला है, जनता को ये अधिकार मिल जाएगा कि वो आपराधिक चरित्र के प्रत्याशियों व धन बल के आधार पर मतदाताओं को प्रभावित कर चुनाव में विजय हासिल करने का ख्वाब देख रहे उम्मीदवारों को खारिज कर दें।
0: सुप्रीम कोर्ट का यह जो महत्वपूर्ण निर्णय है श्याम जी,
1: हाँ,
0: उसका आप कैसे आकलन करते हैं?
1: देखिए, अब ईवीएम में जनता को यह अधिकार मिल जाएगा कि वो उन सभी प्रत्याशियों को खारिज कर सकती है जिन्हें वो जन प्रतिनिधि के योग्य नहीं मानती।
0: जी,
1: जब संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने का एक मंच जनता की ओर से बन जाएगा जो ऐसे प्रत्याशियों को खारिज करने का अभियान चला सकती है।
0: जी,
1: सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक सराहनीय कदम होगा। काफी लंबी लड़ाई के बाद हमें यह अधिकार मिला है।
0: क्या अब ऐसा माना जाए कि जन दबाव की चिंता अब सरकार पर भी होगी?
2: देखिए वीरेंद्र जी, जन दबाव की चिंता सरकार को अब तक नहीं थी। यही कारण है कि राइट टू रिजेक्ट संबंधी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसको सरकार लंबे समय से नकारती रही है। हमें विश्वास है कि बदले माहौल में इससे चुनाव प्रक्रिया में भारी सुधार होगा और जनता को ये अधिकार मिल जाएगा कि वो तमाम दागी प्रत्याशियों को खारिज कर सके।
0: जनतांत्रिक के शक्तियों और मानवाधिकार के लिए संघर्ष करने वाले संगठनों में इसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है श्याम जी?
1: पूरे देश में इसको लेकर जनतांत्रिक शक्तियों और मानवाधिकार के लिए संघर्ष करने वाले संगठनों के भीतर भारी उत्साह का संचार हुआ है।
0: जी,
1: जो आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में जनता के बीच ऐसे प्रत्याशियों को खारिज करने का अभियान चला रहे हैं जिनकी जगह जेल में होनी चाहिए।
0: सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से किस तरह के व्यवहारिक परिवर्तन अब देखने को मिल रहा है।
2: इस फैसले के बाद अब लोग धन और बाहुबल के बूते पर जन प्रतिनिधि बनने का सपना देख रहे दागियों के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक दशक पहले PUCL की तरफ से जब ये याचिका दाखिल की गई थी, तब केंद्र सरकार का रुख नकारात्मक ही था। केंद्र सरकार बार बार इसको नकारती रही है।
0: इस अभियान को सफल बनाने के लिए सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा?
1: देखिए, मानवाधिकार के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति जस्टिस राजेंद्र सच्चर, वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारिख ने अभियान चलाकर लोगों को प्रोत्साहित किया कि पूरे देश में इसको लेकर अभियान चलाया जाए।
0: जी जी,
1: संसदीय लोकतंत्र जिस तरह से आज विवादों में घिर गया है, जनता के बीच ये साफ संदेश जा रहा है कि सत्ताधारी नेतागण किसी भी तरह से दागी नेताओं को बचाने के लिए हर तरह का संवैधानिक नुस्खा तलाश करेंगे। आने वाले दिनों में जो आगे और चुनौतियां आएंगी, जनता के पक्ष में खड़ी होने वाली शक्तियों को, संसदीय लोकतंत्र को कलंकित करने वाली इन पार्टियों के खिलाफ भी अभियान चलाना होगा, तभी जाकर संसदीय लोकतंत्र मजबूत होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, किसी को न चुनना, क्या इसे लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी माना जाए? आप क्या समझते हैं कपूर जी?
2: सुप्रीम कोर्ट का आया नया ऐतिहासिक फैसला रोज विकसित होते लोकतंत्र और मतदाता के अधिकार से जुड़ा है, जिससे लोकतंत्र को जीवन मिलेगा और अच्छा प्रशासन आएगा। एक समान सोच के लोग जो हमेशा ये सोचकर परेशान रहते थे कि वोट देते समय उन्हें अपना मत प्रकट करने का मौका नहीं मिलता, वास्तव में हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं था। यदि कुछ उम्मीदवार है जिसकी दागी और आपराधिक पृष्ठभूमि मालूम है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को या तो उनमें से कम दागी का विकल्प चुनना पड़ता था, या फिर उनके पास मतदान केंद्र से बिना मतदान किए खाली हाथ लौटने का ही रास्ता बचता था।
0: इस फैसले के आने के बाद सबसे ज्यादा फायदा क्या देखने को मिला श्याम जी?
1: देखिए, इस फैसले के बाद सबसे बड़ी बात यह होगी कि राजनीतिक दल सही उम्मीदवार खड़ा करने के लिए मजबूर होंगे।
0: जी,
1: मतदान में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। दूसरी बात यह है कि नकारात्मक बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन होने से बचाया जा सकेगा।
0: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को यह अधिकार किस तरह से प्रभावित करता है कपूर जी?
2: मतदाता के लिए मजबूरी में किसी प्रत्याशी को चुनने की बाध्यता नहीं होगी और नेताओं के लिए राह मुश्किल हो जाएगी। निर्वाचन आयोग ने कहा, किसी को न चुनने वाला बटन लगाने में कोई अतिरिक्त खर्च या प्रयास जरूरी नहीं है।
0: वही मैं फिर श्याम जी आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को यह अधिकार किस तरह से प्रभावित करता है?
1: लोकतंत्र का मौलिक सिद्धांत है वोटर के पास विकल्प का होना।
0: जी बिल्कुल,
1: ये विकल्प ही लोकतंत्र की प्रकृति और गुणवत्ता को निर्धारित करने का मानक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में यही स्पष्ट किया है कि यद्यपि मत देने का अधिकार कानूनी अधिकार है, लेकिन जब वोटर उसे किसी उम्मीदवार के पक्ष में देने या न देने का फैसला करता है, तो यह उसकी अभिव्यक्ति का अधिकार है जो उसे संविधान से मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जब इस आजादी के अधिकार का प्रयोग करने का मामला आता है, तो वोट देने और वोट न देने के अधिकार एक समान हो जाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अब तो ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उसको यह अधिकार किस तरह से प्रभावित कर रहा है?
1: देखिए, अब तक होता ये था कि यदि वोटर किसी उम्मीदवार के पक्ष में वोट दे रहा है, तो उसकी पहचान गोपनीय रखी जाती थी, पर यदि वो वोट नहीं देता है, तो नियम 49O के तहत उसकी गोपनीयता का उल्लंघन होता है।

अभी आपने सुना कार्यक्रम कानूनी ज्ञान और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। आइए साथियों, अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

अभी आपने सुना एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सब प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए साथियों, अब सुनते हैं वसुदेव कुटुम्बकम, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं भवानी कौल, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

उनका रुचि का विषय था। इसके अलावा उनकी कई विषयों में जिज्ञासा थी और उन विषयों का ज्ञान भी रखते थे। अज्ञेय काफी भाषा सजग लेखक थे। उनकी भाषा हमेशा सजी संवरी होती थी। उनमें शिल्पगत कुशलता जैसे कूट कूट कर भरी थी। उनके काव्य शास्त्र में नपा तुला आग्रह है, जो उनकी खासियत थी। एक बात और है दोस्तों, और दिलचस्प बात यह है कि अज्ञेय के बारे में उनकी प्रारंभिक छवि परंपरा के मूर्ति भंजक की थी। उनमें आधुनिकता का बोलबाला था, जो परंपरा के विरुद्ध दिखाई देता था। वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे। बाद में उनमें आत्मबोध जागा और संवाद सृजनात्मक हो चले। जापान यात्रा के पश्चात उनकी कविता में लौकिकता का विस्तार हुआ। असाध्य वीणा अज्ञेय की लौकिकता प्रधान क्लासिक कविता है। वैसे तो शुरुआती दिनों से ही वे उनकी कथा कहानियों में प्रकृति के सूक्ष्म अवलोकन थे। बाद में अज्ञेय प्रकृति के प्रति विशेष आभार व्यक्त करते नजर आते हैं। दोस्तों, लोग अज्ञेय को लेकर अलग अलग मत से जुड़े हैं। कुछ लोग उन्हें मूलतः लेखक मानते हैं तो कुछ लोग कवि के रूप में देखते हैं। कई लोग उनके उपन्यास शेखर एक जीवनी को क्लासिक मानते हैं, पर कविता में उन्हें बड़ा नहीं समझते। खैर दोस्तों, ये तो अपना अपना मत है, लेखकों और कवियों का अपना विचार है। लेकिन इस बात में इतनी सच्चाई जरूर है दोस्तों कि वे समय के साथ आधुनिक एवं उजले मान तेजस्वी साहित्यकार थे। 4 अप्रैल 1987 को 76 वर्ष की आयु में दिल्ली में उनका देहांत हो गया। यह तो कभी नहीं भूलना चाहिए पूरे हिंदी जगत को, पूरी हिंदी भाषा को, कि अज्ञेय हिंदी के स्वाभिमान लेखक रहे हैं और हमेशा रहेंगे। युग युगांतर तक उनकी साहित्यिक छटा बरकरार रहेगी। दोस्तों, अज्ञेय जैसे बुद्धिमान एवं प्रतिभाशाली लेखक बहुत कम देखने को मिलते हैं। उनकी साहित्यिक प्रतिष्ठा हिंदी जगत में हमेशा बनी रहेगी।

अभी आपने सुना कार्यक्रम वसुदेव कुटुम्बकम, जिसे प्रस्तुत कर रही थी भवानी कौल और प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए साथियों सुनते हैं नाटक मेरी नौकरी, जिसकी लेखिका और प्रस्तुतकर्ता हैं अंतरा करवड़े और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: हेलो।
1: अरे वसीम भाई, ये आपके शादाब का वादा है, कभी टूटा है इससे पहले?
0: अरे भाई, मेरी नौकरी ही ऐसी है कि सभी को काम करना पड़ता ही है। अब पत्रकार है भाई, क्या है?
1: अरे सभी डरते हैं और इज्जत भी अलग मिलती है।
0: हाँ
1: जी जी जी, इसी का तो खाते हैं हम सभी पत्रकार। अच्छा चलो भाई, फोन रखता हूँ, ठीक है, बाय बाय।
2: अरे शादाब, या अल्लाह, ये लड़का भी, बेटे खाना तो खा लिया होता, वो राबिया आती होगी थोड़ी देर में, मेरी बहू सोचेगी कि मैंने उसके शौहर को खाना तक नहीं दिया अभी तक।
1: क्या अम्मी, आप भी खाना और राबिया, इसके अलावा और कुछ है भी आपकी जिंदगी में?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, अरे मेरा इकलौता पुत्र शादाब।

0: जो हैं?
1: बस भी है अम्मी, लगता है खन्ना आंटी के साथ जरा ज्यादा ही जमने लगी आपकी। आजकल कर क्या रही है वो बुढ़िया?
0: या अल्लाह, तू तो उसे ऐसे बुढ़िया कह रहा है शदाब, जैसे 80-85 की हो गई। अरे पिछले महीने ही 58 की हुई है वो।
1: अरे जन्मदिन पर कुछ खिलाती पिलाती तो है नहीं कि हम याद कर लिया करें। अरे बताना उसे कि तेरा बेटा भी पत्रकार है, पत्रकार, दुनिया जहान की खबरें रहती है उसके पास। अच्छा जरा मिस्सी रोटी तो दे देना, बड़ी कवाल की बनी है मम्मी।
0: राबिया भी कह रही थी उसे ऐसी मिस्सी रोटी बनानी सीखनी है, लेकिन उस लड़की को अपनी नौकरी से फुर्सत मिले तब तो।
1: अरे राबिया की नौकरी भी कोई नौकरी है, है? बस दिन भर वो कंप्यूटर पर बैठी बैठी साइट सर्च करती रहती है, उसे तो खाली समय है, खाली समय, इसलिए शुरू कर दी नौकरी। वरना काम तो हम जैसों का होता है।
0: अच्छा।
1: फील्ड में जाकर दिखाइए।
2: कोई जरूरत नहीं है मुझे फील्ड में जाने की, मैं तो मेरे कंप्यूटर पर ही खुश हूँ। और आज आपको निकलने में बड़ी देर हो गई।
1: अरे अब उस कलाकार ने इंटरव्यू का समय ही रात 9 बजे का दिया तो मैं क्या करूँ, तुम्हारे जैसा तो है नहीं, बस 6-7 घंटे नौकरी की और आ गए बैग लटका कर।
2: इनसे तो बात करना ही मुश्किल है, अपनी नौकरी को लेकर जाने कितने पजेसिव है।
1: हाँ हूँ पजेसिव अपनी नौकरी को लेकर, तभी तो इतनी तनख्वाह मिल रही है मिसेज राबिया शादाब, आपसे पूरी दोगुनी कीमत है मेरी, समझी?
2: मैं तो अल्लाह से दुआ करूँ कि मुझसे 1000 गुना की कीमत दे आपको, बस ये गुरूर मन से निकाल दीजिए।
1: बस हो गई ना तुम फिर शुरू। अरे भाई अब नहीं होती किसी किसी की किस्मत कि इतनी ऊंची कमाई कर ले या फिर इतनी ओहदेदार नौकरी मिल जाए। खैर आप हमारी शरीके हयात हैं, आपको माफ किया, अब हम चलते हैं।
0: जरा संभल कर जाना बेटे, इन दिनों शहर के हालात ठीक नहीं लगते। अरे राबिया बेटी बता कैसा रहा दिन तुम्हारा, थकी हुई लगती हो, चाय बनाओ या फिर सीधे खाना ही खाओगी?
2: बस फ्रेश होकर आ जाओ फिर साथ ही खाना खाते हैं, आप भी तो रुकी होंगी ना। फिर खाने के बाद मैं गर्मा गर्म कॉफी बनाऊंगी।
0: ठीक है, अच्छी बात है बेटी, तो तैयार होकर आ जा। ठीक है शादाब और राबिया, दिन पर दिन एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। कितनी ही बातें सोची थी मैंने इनकी शादी से पहले, मुझे मौलवी साहब ने बताया भी तो था, बेटा पत्रकार है, बड़ी जल्दी गुरूर पकड़ेगा, इसकी लगाम कसकर रखना, नहीं तो एक दिन औंधे मुंह गिरेगा। वाकई शादाब को गुरूर तो काफी हो गया है अपने गौधे का। खैर अब अल्लाह मियाँ जो दिखाए।
2: अम्मी आज मिस्सी रोटी बनी है ना?
0: हाँ
2: मुझे भी सीखनी है।
0: हाँ बिल्कुल, शादाब से भी कहा था मैंने, वो मुझसे कहने लगा कि
2: जानती हूँ उन्होंने क्या कहा होगा, उन्हें मेरा काम करना तो फूटी आंख नहीं सुहाता।
0: अरे
2: उनका बस चले तो बस घर में बिठा कर ही दम ले। मुझे तो आने वाला समय बड़ा मुश्किल लग रहा है अम्मी।
0: ऐसा क्या हो गया बेटी, सब कुछ खैरियत से तो है ना?
2: सब कुछ ठीक है अम्मी, लेकिन शादाब के बारे में सोचकर मन खराब होने लगता है।
0: राबिया बेटी मैं जानती हूँ तूने बचपन से अपनी सारी मंजिलें खुद पाई है, बिन माँ की बेटी होकर भी हर मुकाम पर तुम आज अव्वल हो। मैं तुम्हारी अम्मी की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन अपने शौहर की अम्मी के ही हक से मुझसे अपने मन की बात नहीं कहोगी बेटी?
2: मैंने आपको कब पराया समझा है अम्मी, डर लगता है, डर लगता है तो अपने शौहर से, उनके ख्यालातों से, वे अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं है।
0: सच कहूँ राबिया तो चंद मिनट पहले बेटे मेरे मन में भी यही ख्यालात थे, उसका गुरूर वाकई बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
2: अम्मी मैंने कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ी न्यूज चैनल में टीम हेड की पोस्ट के लिए इंटरव्यू दिया था, और आज मुझे उनका अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है।
0: क्या राबिया, राबिया मेरी बच्ची, अरे इतनी उम्दा बात और तू इस अंदाज से सुना रही है जैसे कोई गमी की बात है। मैं तो कल ही चादर चढ़ाऊंगी परली वाली मजार पर, या अल्लाह मेरी बेटी के दामन को खुशियों से भर दे।
2: नहीं अम्मी, अल्लाह मियाँ की यह सौगात मुझे मंजूर नहीं है।
0: कैसी बहकी हुई सी बातें करती है बेटी।
2: ठीक कहती हूँ अम्मी, आज जब मैं शादाब से ओहदे में पैसे में कम हूँ तो उनका गुरूर आसमान पर है। कल को जब उन्हें मालूम होगा कि मैं उनसे ज्यादा कमाने लगी हूँ, उनसे ऊंचे ओहदे पर हूँ, तब उनकी सोच जाने क्या क्या गुल खिलाएगी। हो सकता है कि मुझसे जलते हुए वो मुझे नौकरी छोड़कर घर बैठने को ही मजबूर कर दे।
0: देखो बेटी, कामयाबी तो हर किसी को अपनी मेहनत से मिलती है। अब शादाब को तुम्हारी कामयाबी पर जलन होगी, इस वजह से तुम हाथ आया हुआ मौका गंवा दो? नहीं नहीं, ये मुझे मंजूर नहीं होगा।
2: लेकिन अम्मी।
0: लेकिन बेटी कुछ नहीं, तुम इस कंपनी के ऑफर को हाँ कहने वाली हो राबिया। आने वाले समय में शादाब को भी तो ये सोचना चाहिए कि उसे भी आगे बढ़ना है। राबिया, हो सकता है तुम्हें आगे बढ़ता हुआ देखकर वो भी आगे जाने की सोचे।
2: ऐसा हो तो कितना अच्छा होगा।
0: वाकई।

0: आदत हो गई बेटे। शादाब, शादाब, हम आपसे मुखातिब हैं।
1: हाँ हो गई अम्मी जान, और वैसे भी अब अल्लाह के अलावा और है कौन हमारी बातें सुनने के लिए।
0: इतनी कड़वाहट, क्या बात है, हम जान सकते हैं?
1: क्यों नहीं जान सकती आप, क्योंकि जानकर भी अनजान बनी रहती हैं। जब देखो तब राबिया राबिया, जैसे और कोई है ही नहीं इस जमाने में आपके लिए।
0: शादाब, राबिया आपकी बीवी है, हमारी बहू है वो, और हम किसी भी तरीके से उस बिन माँ की बच्ची के साथ पत्थर दिल होकर पेश नहीं आ सकते। तुम्हारा खुद का गुरूर क्या कम सालता है उसे?
1: मेरा गुरूर उसे क्यों सालने लगा अम्मी, इतने ऊंचे ओहदे पर जाने से पहले एक दफा नहीं सोचा कि मुझसे कुछ पूछ ले? अरे इंटरव्यू के बारे में ही बता देती तो इसको छोड़कर मैं ही आज उस पोजीशन पर बैठा होता।
0: चुप कीजिए शादाब, चुप कीजिए। हमें शर्म आती है कि हम आज आपके मुंह से इस तरीके की बातें सुन रहे हैं। एक शौहर अपनी बीवी की कामयाबी पर ही जलने लगे, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है?
1: और एक बीवी अपने शौहर को कुछ समझे ही नहीं, उससे पूछे बिना ही ऊंची नौकरी पर जाकर बैठे, उससे ज्यादा पैसा कमाए, इससे ज्यादा बेगैरत कोई और बात हो सकती?
0: बिल्कुल हो सकती है शादाब, इससे ज्यादा बेगैरत बात ये हो सकती है कि अपनी काबिलियत के सहारे ऊंचाई की सीढ़ियां चढ़ती हुई एक औरत की राह में आज उसका खाविंद ही रोड़े अटकाने लगा हुआ है।
1: अम्मी
0: चिल्लाओ मत। अरे अपनी नौकरी की इतनी ही फिक्र होती, आगे बढ़ने की इतनी ही तमन्ना होती तुम्हें, तो क्या इस तरीके से राबिया जैसी लड़की को लेकर अपने मन में खराब ख्यालात रखते तुम? जब वो तुमसे कम पैसा पाती थी तब बड़ी डींगे हाँकते थे तुम अपनी नौकरी की, आज भी तुम्हारी नौकरी तो वही है। बस राबिया तुमसे आगे क्या बढ़ गई, उसके इरादों में खोट नजर आने लगा तुम्हें।
1: लेकिन अम्मी काबिलियत हम में नहीं है क्या? क्या हम आज इतने गए गुजरे हो गए कि हमारी बीबी हमसे ज्यादा कमाए और हम उसके लिए सुरमे की डिबिया तक नहीं लाकर दे सकते?
0: शराब बेटे, राबिया जरा नहीं चाहती कि आप उसके लिए आसमान से तारे तोड़कर लाए या उसे रोजाना कुछ न कुछ देखकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया करे। उसे तो आपसे दो मीठे बोल सुनने हैं।
1: लेकिन कुछ कहने जाओ तो तरीके से जवाब भी नहीं देती, जाने क्या गुरूर आ गया है उसे।
0: कभी ये गौर किया है तुमने
1: क्या
0: कि तुम उससे किस तरीके से बात करते हो? आज से कुछ दिनों पहले तक जब राबिया आपसे कम पैसा कमाती थी तब आपने हर किसी तरीके से उसे अपनी ऊंची नौकरी की बातें सुना सुना कर छलनी किया है या नहीं? आज आपको लगता है कि वो काबिल है, लेकिन वो भी आप ही थे जिन्होंने उसे किसी काबिल न मानते हुए घर में बैठकर चौका चूल्हा तक संभालने की नसीहतें दे डाली थी। बोलिए।
1: लेकिन अम्मी मैं अपनी बीवी से कम कमाता हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है?
0: तो फिर राबिया यदि अपने खाविंद से ज्यादा कमाती है तो उसमें उसका कोई कसूर है?
1: आप तो बात से बात बढ़ाती जा रही है अम्मी।
0: हम आपको आपकी ही बातों का मतलब समझा रहे हैं बेटा। क्या हमें अच्छा लगता है जो आप घर में किसी से बात नहीं करते? क्या राबिया को पसंद है कि उसका शौहर उसी से कटा कटा फिरे?
1: हमसे नहीं सहा जाता ये सब कुछ अम्मी, हमसे नहीं सहा जाता।
0: या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे बेटे ने अपने गुरूर को कबूल तो किया।
1: अम्मी हमने कितने ख्वाब सजाकर राबिया से ब्याह किया था, सोचा था कि इसके खूबसूरत चेहरे पर से नजर नहीं हटाएंगे, उसे दुनिया जहान की खुशियां देंगे, लेकिन हम नहीं सह पाए उसका हमसे आगे जाना।
0: शादाब बेटे, तुमने क्या ये सोचा कि सारी खुशियां पैसे से ही खरीदी जा सकती हैं? आज की तारीख में राबिया के लिए सबसे बड़ी खुशी ये होगी कि तुम उसकी कामयाबी को कबूल कर लो, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहो और कहो कि जिंदगी के हर खुश और मुश्किल मुकाम में तुम्हारा साथ उसके साथ हमेशा रहेगा।
1: वो मुझे ऐसा करने देगी अम्मी?
0: बेटा सोच लो तो चांद भी मुट्ठी में है, ये लड़ाई तुम्हारी और तुम्हारे गुरूर की है, इसमें न तो मैं बीच में आ सकती हूँ न राबिया। तुम्हें अपनी सोच बदलनी है, अपने गुरूर के साथ रहोगे तो हालात और बिगड़ेंगे, दूसरों की खुशियों में अपने अक्स ढूंढोगे तो खुशियों का पैमाना ही बदल जाएगा।
1: अम्मी मैं कोशिश करूंगा।

0: अम्मी मैं आ गई हूँ।
1: वाह क्या महक है, शायद बिरयानी बनी हुई है।
0: अम्मी अम्मी हाय अल्लाह, कैसे छुपे हुए थे पर्दे के पीछे, और अम्मी कहाँ है?
2: खन्ना आंटी की यहाँ गई है।
0: इस वक्त क्यों?
2: क्योंकि जब मैं अपने गुरूर को तोड़ते हुए तुम्हें तुम्हारी कामयाबी पर बधाई दूं, तब उनके सामने मुझे शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, इसलिए।
0: क्या?
2: कांग्रेचुलेशन राबिया, तुम्हारी पसंद के फूल हैं। क्या हुआ, पसंद नहीं आए?
0: नहीं ऐसी बात नहीं है।
2: फिर?
0: मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप और...
2: यकीन मुझे भी नहीं हो रहा था राबिया, कि तुम वाकई इतनी ऊंचाई पर कैसे जा सकती हो। लेकिन तुमने कभी गुरूर नहीं पाला, हमेशा अपने पांव जमीन पर रखे, और आज वाकई कामयाब हो।
0: मुझे आज कितनी खुशी मिली है आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अरसे बाद ये खुशनुमा फूल, आपकी ये बातें, वाकई ये कहीं सपना तो नहीं है?
2: और ये अगर सपना भी है तो कभी ना टूटे, मैं हमेशा तुम्हें इन्हीं बुलंदियों पर देखता रहूं।
0: वाकई शादाब, मुझे लगा ही नहीं था कि आप भी अपनी सोच को बदल सकते हैं।
2: राबिया, मेरी सोच को बदला है मेरी अम्मी ने। उन्होंने नहीं समझाया होता तो मैं आज भी वैसा ही बिखरा हुआ होता।
0: आज के दिन को मैं अपनी डायरी में सुनहरे हरफों में लिखूंगी। आज न केवल मेरे खाविंद मुझे वापस मिल गए, मेरी सास के रूप में मेरी अम्मी भी मुझे मिल गई। या अल्लाह अपनी रहमत हमेशा हम

मेरी नौकरी। अभी आपने सुना यह नाटक। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे अंतरा करवणे, संदीप दुबे और नूपुर दीक्षित।

अभी आपने सुना नाटक मेरी नौकरी, जिसकी लेखिका और प्रस्तुतकर्ता थी अंतरा करवड़े और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। तो इसी के साथ दोस्तों आज्ञा दीजिए ग्लोरिया गांगले को, अगली मुलाकात में आपसे बात करेंगे विवेक पीटर रॉबर्ट।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोताओं को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी की समय सारणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम एक मुलाकात, युवा विकास और अंत में युग संचार। तो दोस्तों, अब हम अपनी समय सारणी के अनुसार हमारा यह कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम एक मुलाकात से, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं नुपुर दीक्षित और उनके साथ है सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ लेखक श्री चिन्मय मिश्र साहब। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं कार्यक्रम एक मुलाकात नुपुर दीक्षित के साथ।

0: मुलाकात कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नूपुर का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, घर से निकलते हुए, दफ्तर पहुंचते समय, दफ्तर से लौटते समय या बच्चों को स्कूल छोड़ते समय ढेर सारी समस्याएं, कई सारे सवाल हमारे मन में पैदा कर देती है। समस्या चाहे पर्यावरण से संबंधित हो, सड़कों के ट्रैफिक से संबंधित हो, हमारे सांस्कृतिक प्रदूषण से संबंधित हो या देश की नीतियों से संबंधित हो, हर समस्या हमें उद्वेलित करती है, परेशान करती है, मन में कुछ सवाल उठाती है और फिर कहीं न कहीं गुम हो जाती है। पर कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर ये समस्याएं वो ताकत पैदा करती हैं कि ये लोग उन समस्याओं को खत्म कर सकें, उनसे लड़ सकें, उन्हें दूर भगा सकें। और ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे बीच मौजूद है। हमारे साथ एक मुलाकात कार्यक्रम में हम आज बात करेंगे सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ लेखक श्री चिन्मय मिश्र साहब से। मिश्र साहब, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: सर। आपका काम कई सारे क्षेत्रों में फैला हुआ है जिसके ढेर सारे आयाम हैं, तो क्यों न हम सबसे पहले शुरुआत करें इसके आधार से, सामाजिक मुद्दों के प्रति ये रुझान आपके मन में कब और कैसे जागृत हुआ?
1: दरअसल इसके लिए कोई अलग से आपको प्रयास नहीं करना पड़ता। जब आप अपने आसपास का समाज देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उनकी दिक्कतों के बारे में महसूस करते हैं, तो आपके अंदर अपने आप एक भावना पैदा होती है और आप उन सारी समस्याओं से स्वयं को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
0: और ये जुड़ाव आप लोगों को प्रेरित करता है कि आगे बढ़कर इन समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जाए?
1: हाँ, कहीं ना कहीं मतलब कोशिश हमारी तरफ से समस्याओं को दूर करने से ज्यादा समस्याओं को समझने की और समझाने की है
0: जी।
1: क्योंकि हम जिस समय में रह रहे हैं वो इतना कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा समय है जिसमें हम ये समझ ही नहीं पाते कि कोई चीज ये भुलावे में हमें रखा जाता है कि ये चीज हमारे फायदे के लिए है और अंततः वो हमें नुकसान पहुंचाती है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त सबसे बड़ी जो चुनौती हमारे समाज के सामने है वो ये समझना पड़ेगा उसे कि अंततः उसके फायदे में क्या है
0: जी। और ये समझना ही मेरे ख्याल से सबसे पेचीदा काम है। एक बार यदि आम नागरिकों को उनके हित समझ में आ जाते हैं, उसके बाद शायद उन्हें बुलावे में रखना आसान नहीं होगा।
1: ठीक बात है।
0: लोक संस्कृति और आदिवासी जीवन में सदैव आपकी रुचि रही। एक सवाल मन में उठता है कि जिस गति से हमारे यहाँ जंगल कम हो रहे हैं, क्या 10 साल बाद भारत की आदिवासी संस्कृति का अस्तित्व जिंदा रहेगा?
1: ये बात को बहुत गंभीरता से हमें समझना पड़ेगा कि जंगल अंततः खत्म क्यों हो रहे हैं। एक तरफ सारी दुनिया इस बात पर जुटी है कि उसे कार्बन क्रेडिट चाहिए, सब कुछ चाहिए, और दूसरी तरफ जंगलों को खत्म किया जा रहा है। और जितनी तेजी से जंगल खत्म नहीं हो रहे उससे ज्यादा तेजी से आदिवासियों को उन जंगलों से बाहर किया जा रहा है। एक और हम वनाधिकार कानून बनाते हैं जिसके तहत हम ये मानते हैं कि इन आदिवासियों के साथ 175 वर्ष पहले एक ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, उस अन्याय की हम क्षतिपूर्ति करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हम लगातार नई परियोजनाएं बना के, फिर वो खनन की हो, वो जो टाइगर रिजर्व बनाने की हो, तमाम सारी योजनाएं हम बनाते हैं और धीमे धीमे उन आदिवासियों को हम उनके जंगल से बाहर कर देते हैं। अगर वो जंगल में है तो उनको जंगल से निकाल के हम पहले बफर में लाते हैं, बफर से फिर हम उनको बिल्कुल बाहर कर देते हैं, उनके सारे अधिकार हम छीनते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप जो कह रही हैं वो 10 साल का समय भी बहुत ज्यादा है। उससे पहले ही ये पूरा आदिवासी समाज जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को खो देगा और हम जो हमारी पूरा पारंपरिक जीवन शैली है उससे विमुख हो जाएंगे।
0: मेरे ख्याल से कई लोग जिन्होंने अलग अलग भारतीय क्षेत्रों में आदिवासी समाज को नजदीक से देखा होगा, वे अपने आसपास की आदिवासी संस्कृति को जीवित रखने के लिए कुछ कोशिश जरूर करना चाहते होंगे। तो यदि हमारे श्रोताओं में से कोई व्यक्ति इस किस्म की कोशिश को अंजाम देना चाहता है तो उसकी दिशा क्या होनी चाहिए और किस तरह से उसे अपनी आवाज उठानी चाहिए?
1: देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो पिछले 6 दशकों में हमारे देश के साथ सबसे ज्यादा हो रहा है वो सबसे बड़ा अन्याय यह है कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है
0: जी।
1: और वो सिर्फ हमारे लिए नहीं दोहन हो रहा, यह हमारे देश के लिए की आवश्यकताओं के हिसाब से नहीं हो रहा। हम एक बार पुनः 300 साल बाद दुनिया के सबसे बड़े रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर होते जा रहे हैं और यही जड़ में है इस पूरी व्यवस्था के
0: जी।
1: जो पूरी शोषणकारी व्यवस्था है और जो आदिवासियों के पूरी तरह से खिलाफ और जो नेटिव्स हैं उनके खिलाफ है। अब झारखंड का उदाहरण आप लें,
0: हाँ।
1: झारखंड में पूरे देश के 40% से ज्यादा खनिज हैं, पर सबसे ज्यादा शोषण वहां है।
0: बिल्कुल,
1: है ना। आप जंगलों की बात कर रही हैं, सबसे ज्यादा वनाच्छादित क्षेत्र एरिए के हिसाब से अगर हम देखें परसेंटेज में तो मध्य प्रदेश है, वैसे सबसे अधिक छत्तीसगढ़
0: जी।
1: सबसे ज्यादा अत्याचार आदिवासियों पर जो है वो छत्तीसगढ़ में।
0: बिल्कुल,
1: है ना। और अब तो एक तरह का ग्रीन हंट इस,
0: हाँ।
1: शब्द ये अपने आप में ये शब्द ही इतना घृणास्पद है कि ग्रीन हंट क्या होता है? जो आपके पक्ष में नहीं है आप उसका शिकार करेंगे क्या? आप अब मनुष्य का शिकार करेंगे? अगर इस मनोवृत्ति पर एक व्यवस्था जुटेगी तो उससे आप कैसे पार पा सकते?
0: बहुत सुनकर हैरानी होती है कि अपने ही देश में अपने ही देश के नागरिकों का हंट, हंट शब्द बहुत बहुत तकलीफ दे देता है। और कहीं ना कहीं जो काम किया जा रहा है शायद लोगों ने खुद ही उसके लिए सही शब्द चुन लिया, हंट।
1: नहीं, ये लोगों ने जो कर रहे हैं हंट वो तो ठीक है, पर हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि उस हंट के पीछे क्या मानसिकता है। हमें ये देखना पड़ेगा कि ये सारी की सारे अत्याचार उन इलाकों में क्यों हो रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर हैं। ये उनके दोहन का मामला है
0: जी।
1: ये मामला अगर आप देखेंगी तो आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा, ये मामला आपको झारखंड में मिलता है, ये आपको उड़ीसा में मिलेगा।
0: बिल्कुल।
1: तो ये जो पूरा एक षड्यंत्र है जिसमें लगातार लोगों को एक के बाद एक आपको बेदखल करने का क्या तरीका है कि आप ये डिक्लेयर कर दें कि वो असामाजिक तत्व है। अगर कोई उस अपनी संपदा को बचाना चाहता है, हिंसा किसी भी तरह की हिंसा जो है उसका समर्थन नहीं किया जा सकता।
0: बिल्कुल सही बात।
1: परंतु हिंसा सिर्फ वही हिंसा नहीं होती जो बंदूक से या गोली से या लाठी से करी जाती हो। कुछ हिंसा ऐसी भी है जो उससे ज्यादा क्रूर और अमानवीय है जो आपको दिखती नहीं है। ये लोग, ये जो नीति बनाने वाले लोग हैं, ये जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, है ना। अगर झारखंड का ही मसला आप लें कि पिछली बार ये पता लगा कि 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भ्रष्टाचार हुआ है, पर उसके समकक्ष एक दूसरी चीज पर आप गौर करें कि उसके सामने 16 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार बीपीएल परिवारों से किया गया है, जो बिलो पावर्टी लाइन है उनके राशन कार्ड बनाने के लिए बाकी चीजों के लिए 16 करोड़ रुपए उन्हें रिश्वत देना पड़ी है। तो सारे जो नीति बनाने वाले लोग हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि उन्हें क्या करना है।
0: हमारे देश में युवाओं की मानसिकता फिलहाल विकास की तरफ केंद्रित है। जैसे ही हम प्रकृति के बारे में, पर्यावरण के बारे में या प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के बारे में बात करते हैं, फौरन एक तर्क हाजिर हो जाता है कि फिर विकास कैसे करेंगे, फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो क्या विकास और प्राकृतिक संतुलन के बीच कोई मध्यम मार्ग चुना जा सकता है? कोई ऐसा मार्ग है जो हमें विकास भी करने दे लेकिन हमारी प्रकृति भी बची रहे?
1: दरअसल यहां युवाओं को उनकी अपनी जीवन शैली पर पुनर्विचार करना पड़ेगा
0: जी।
1: जिस तरीके से पूरा की पूरा नया जो परिवेश बन रहा है वो अत्यधिक उपभोग के ऊपर निर्भर है।
0: बिल्कुल।
1: आप रोज सवेरे से शाम तक हम लोग देखते हैं कि आज हमारे पास एक मोबाइल है, कल वो बदल जाता है, परसों तीसरा मोबाइल हो जाता है, हमारे कपड़े हैं, हमारे और जितनी भी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें हैं वो रोज हमारी बदल रही हैं। तो विकास का मतलब अत्यधिक उपभोग नहीं है। हम विकास का मतलब मान रहे हैं कि हम अपने जितना ज्यादा उपभोग हम करेंगे उतना ज्यादा हम विकसित होंगे, जबकि इसका उल्टा है। होना ये चाहिए कि हमारा उपभोग कम हो और वो अपने आप एक विकास को उन्नत करेगा, प्रमोट करेगा। अगर हमारे पास लाखों साल का जो फॉसिल फ्यूल था, उसको अगर हम 200 साल के अंदर खत्म करने की स्थिति में आ गए हैं तो क्या ये विकास है?
0: ये तो विनाश है,
1: है ना। ठीक वैसे ही कि अगर पूरी दुनिया कगार पर खड़ी है कि वो 10 साल 20 साल के अंदर अगर 3 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? जो नीचे के देश डूब जाएंगे और ऊपर के जो 30-35 देश हैं नॉर्थ के वो जिंदा रहेंगे। पर ये इस युवा को समझना पड़ेगा कि अंततः उसका जीवन और उसकी जीवन शैली इन दोनों के बीच एक सामंजस्य होना चाहिए जो प्रकृति के बीच में होगा। जैसे गांधी की बात अगर आप करें तो गांधी बहुत साफ कहते थे कि इस प्रकृति में प्रत्येक व्यक्ति को देने के लिए सब कुछ है, पर ये प्रकृति एक व्यक्ति के भी लालच की पूर्ति नहीं कर सकती। अगर आप माने कि नहीं दुनिया में कुछ संभव है, तो आप विनोबा को देखें कि अगर कोई एक आदमी अपने जीवन में पैदल चल करके लाखों एकड़ जमीन को भूदान में ले सकता है, तो उसमें कुछ तो बात होगी, उसके विचार में कोई बात होगी। पर हमारी पूरी व्यवस्था उस पूरी जमीन को जो उन्होंने भूदान में मिली है उसको ठीक से वितरित नहीं कर पा रही। सिर्फ बिहार में 4.25 लाख एकड़ जमीन ऐसी है जो अभी वितरित नहीं हुई है, वो पड़ी है। अगर हम 5 एकड़ प्रति परिवार भी दें तो कम से कम 80,000 परिवारों को वो जमीन मिल सकती है।
0: जी सर, मैं जरूर जानना चाहूंगी भूदान आंदोलन की पृष्ठभूमि के बारे में।
1: दरअसल गांधी जी का अपना एक सिद्धांत था ट्रस्टी
0: जी,
1: है ना, ट्रस्टीशिप, कि आपके पास जो आपकी संपत्ति है वो आप उसके मालिक नहीं है, आप उसके संरक्षक हैं।
0: जी
1: विनोबा को उन्होंने अपना पहला सत्याग्रही बनाया था। आजादी के बाद जब नई तरह की पूरी एक राजनीति बनी तो उसमें एक बात ये उठी कि क्या गांधीवादी विचारों की कोई जगह है, या व्यक्ति अपने हिस्से से अपने हिस्से की जमीन को क्या कभी दान भी कर सकता है। विनोबा ने जब ये देखा कि एक सिस्टम उस वक्त पर जो चल रहा था, जो रूस में था और जो चीन में हुआ, जिसमें जबरदस्ती जमीनें ली गईं और बांटी गईं, विनोबा का ऐसा मानना था कि नहीं, मनुष्य मूलतः एक अच्छा व्यक्ति है, उसकी अपनी मानसिकता है, और अगर उसे समझाया जाएगा तो वो अपना जो भी अतिरिक्त है वो देगा। और उन्होंने आंध्र प्रदेश में एक छोटी सी जगह है पोचमपल्ली
0: जी,
1: पोचमपल्ली से अपना भूदान यज्ञ शुरू किया। वो जगह भी अभी भूदान पोचमपल्ली कहलाती है।
0: अच्छा,
1: है ना?
0: अच्छा।
1: वो गांव का नाम ही भूदान पोचमपल्ली है, और वहां एक बुनकर ने पहली बार उसके परिवार की 100 एकड़ जमीन दान दी थी, जो उसके पूरे परिवार की थी, और बुनकरों की जगह है पोचमपल्ली।
0: और हाँ, वहां की साड़ियां
1: और बहुत प्रसिद्ध हैं,
0: लोकप्रिय हैं। हाँ।
1: और वहां से विनोबा ने अपनी एक यात्रा शुरू करी, और आप आश्चर्य करेंगे कि उनको सबसे ज्यादा अगर कहीं जमीन मिली तो वो बिहार में मिली, और 4 लाख एकड़ जमीन आज की तारीख में बिना बटी पड़ी है। और पूरे देश में अगर आप देखेंगी तो वो जो आंकड़ा है वो करीब 12 से 13 लाख एकड़ जमीन जो ली थी विनोबा ने, जो बट गई वो अलग है। 20 लाख एकड़ जमीन एक व्यक्ति पैदल चल करके ले सकता है बिना किसी जोर जबरदस्ती के, तो आप उस बात को मानिए कि एक व्यक्ति के अंदर अच्छा होने की भावना को अगर आप जगाते हैं तो आप दुनिया में को बदल सकते हैं। और हम दूसरी तरफ जो कानून अंग्रेजों ने 1894 में भूमि अधिग्रहण कानून बनाया, उसके बल पर लोगों से, आदिवासियों से खासकर जो है, हम जमीनें लगातार अधिग्रहित कर रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आजादी के बाद से इस देश में करीब 10 करोड़ लोग विस्थापित हुए हैं, जिनमें से 6 करोड़ से ज्यादा आदिवासी हैं, जो जमीन सरकार ने उद्योगों के लिए और बाकी योजनाओं के लिए अधिग्रहित की है, वो जमीनें बांग्लादेश जैसे एक बड़े राष्ट्र के बराबर की हैं, जिनमें 14 करोड़ लोग रह सकते हैं। इतनी जमीनें सरकार ने अधिग्रहित की हैं, और उसके बावजूद लगातार वनों को, खनिज के लिए पहाड़ों को काटा जा रहा है, और आदिवासियों को उनके पारंपरिक पूरे रहवास से किसी न किसी तरीके से बेदखल किया जा रहा है।
0: क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम इसे रोक सकें, या कम से कम इस पर चिंतन की शुरुआत कर सकें?
1: देखिए, चिंतन की शुरुआत तो पूरी दुनिया में हो रही है
0: जी,
1: और एक बड़ा वर्ग खड़ा है, जो हमने अभी कोपनहेगन में भी देखा
0: जी,
1: कि सारे बड़े राष्ट्रों के खिलाफ छोटे राष्ट्र खड़े हैं, छोटे राष्ट्रों के साथ पूरी दुनिया में। वो मतलब ऐसा नहीं है कि विकसित देशों के लोग नहीं है, वहां एक बड़ा वर्ग है जो कि इस बात को समझ रहा है, और उनके देशों के जो अत्याचार हैं उनको भी समझ रहा है, वो खड़े हैं। पर जो सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरी दुनिया में फैली अशिक्षा इस पूरी चीज के पीछे एक बड़ा कारण है।
0: बात अशिक्षा की निकली है तो मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि क्या हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली से आप संतुष्ट हैं?
1: शिक्षा तो वही हो सकती जो आपको आपका, आपके समाज का, आपके पर्यावरण का भला बुरा सोचने की ताकत दे, वो आपकी शिक्षा आपको नहीं दे रही।
0: हाँ।
1: साक्षरता के मायने बिल्कुल अलग हैं, शिक्षित होने के मायने बिल्कुल अलग हैं, और उस लिहाज से हम साक्षर हो रहे हैं पर शिक्षित नहीं हो रहे। मतलब गांधी जिस तरह की शिक्षा की बात करते थे उसमें तो क्लासरूम की इस तरीके से कोई गुंजाइश ही नहीं थी, बोर्ड की एग्जाम की कोई बात नहीं थी। वो कहते थे आप भाषा सीखिए, गणित सीखिए, आपको इससे आगे सीखने की कोई जरूरत नहीं है,
0: बिल्कुल सही,
1: बाकी चीजें आपको सीख जाएंगी। पर अब मुद्दा इस बात का आ गया है कि चीजों को इतना ज्यादा जटिल बना दिया गया है कि एक आम पालक को लगता है कि उसके बेटे को या बेटी को 5 साल की उम्र में दुनिया की हर जानकारी हो जाना चाहिए।
0: लेकिन मोहल्ले के पास में कौन सा मोहल्ला है उसका नाम नहीं पता होता।
1: यही तो साजिश है ना, जिस साजिश को हमें समझने की जरूरत है कि आपको आपकी स्थानीयता से जिस दिन विमुख कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, उस दिन आप आपकी जड़ों से कट जाएंगे।
0: इससे पहले कि ये मुलाकात खत्म हो, मैं चाहूंगी आप हमारे श्रोताओं को एक संदेश दें।
1: संदेश सिर्फ इतना सा है कि अपने आसपास का परिवेश देखें, उसे पहचानें और उसके हिसाब से अपने जीवन को जीने का प्रयास करें।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक मुलाकात, जिसे प्रस्तुत कर रही थी नुपुर दीक्षित और उनके साथ थे सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ लेखक श्री चिन्मय मिश्र साहब। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rvasatyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआं पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्यस्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। साथियों, अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम युवा विकास के अंतर्गत वार्ता का, जिसका शीर्षक है संकल्पशील बने युवा। लेखक है कृष्णकांत दुबे एवं प्रस्तुतकर्ता है भवानी कॉल।

युवा विकास वार्ता सुनिए। संकल्पशील बने युवा। लेखक हैं कृष्णकांत दुबे और वाचिका भवानी कौल। तब मैंने श्री भवानी प्रसाद मिश्र, जिन्हें हम लोग भवानी भाई कहकर संबोधित किया करते थे, एक समय उनकी एक कविता पढ़ी थी। वे अपने समय के एक ऐसे कवि थे जिनकी कविताएं पढ़कर सुनकर युवा सर्वाधिक प्रभावित होते थे, क्योंकि उनकी कविताओं में युग जीवन की ध्वनियां होती थीं। वे इतनी सहज सरल होती थीं कि सामान्य जन भी उन्हें सुनकर पढ़कर समझ लेता था, उसमें कहे मंतव्य को जान लेता था। वे जैसे कवि थे, ठीक वैसे ही सहज सरल इंसान भी थे। उनकी रचनाओं में मानवतावाद सीधे ध्वनित होता था। मैंने उस समय उनकी जिस कविता को बांचा था, वह कविता यूं थी। अगर हमने आज का दिन ठीक जी लिया, तो देवताओं और राक्षसों ने जितना अमृत निकाला था, सबका सब पी लिया, ऐसा समझो। कल क्या लेकर आएगा, ये क्यों सोचते हैं हम? जो अभी किसी विषय से डरे नहीं हैं, किसी भ्रम की आशंका से भरे नहीं हैं। मित्रों, भवानी भाई की इस कविता का यही तो संदेश था। हमें तो हर दिन का अमृत ग्रहण करना है। कल की चिंता छोड़ी, जिए तो शुभ्रता से जिए। इस रचना को पढ़ने के बाद कुछ माह पहले नगर के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में पढ़े विवरण का सहसा स्मरण हो आया और उस विवरण में सचमुच कुछ ऐसी ही बात थी जिसने मुझे ही नहीं कई कई लोगों को आकर्षित किया था। यह होना स्वाभाविक था। उस विवरण को शीर्षक दिया गया था, कई परिवारों को लौटाई खुशियां, और आगे कहा गया था, उनकी धमनियों में बह रहा रक्त सिर्फ उन्हें ही नहीं दूसरे लोगों को भी जीवन देता है। उनके रक्त से कई परिवारों में मुस्कान लौटती है। जरूरतमंदों को अपना रक्त देना उनका संकल्प है, उनका मिशन है। वे इस तरह मानवता को जिंदा रखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कोई भी समय पर रक्त न मिलने के कारण मृत्यु को प्राप्त न हो। मित्रों, आप सोच रहे होंगे यह सब कैसे क्यों कर घटित हुआ कि उन युवाओं को ऐसा कुछ संकल्प लेना पड़ा कि वे सदा रक्तदान के लिए संकल्पित और तैयार रहेंगे। हाँ, एक घटना हुई थी और उस युवा समूह ने यह पावन संकल्प लिया था। तब दो तीन युवा मित्र एक मित्र की दुकान पर बैठे थे। समय रात्रि का था। तभी उन युवाओं को सूचना मिली कि उनके एक निकटतम मित्र का कहीं एक्सीडेंट हो गया है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। यह सूचना पाकर वे सभी मित्र वह दुकान बंद कर तेजी से अस्पताल की ओर रवाना हुए। दुर्घटना में उनके उस मित्र के शरीर से काफी रक्त बह चुका था। वे लोग उस अस्पताल के डॉक्टर महोदय से मिले। डॉक्टर महोदय ने उन लोगों से यही कहा, अगर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को उचित समय पर रक्त नहीं दिया गया तो संदेह है उसका जीवित रह पाना मुश्किल होगा, मृत्यु भी तो हो सकती है। उनमें से किसी का भी रक्त ग्रुप दुर्घटनाग्रस्त युवा से नहीं मिल पा रहा था, लेकिन काफी दौड़ धूप के बाद तथा कुछ विशेष प्रयत्नों से उस ग्रुप का रक्त आखिर प्राप्त हो ही गया। निश्चित था उनका वह दुर्घटनाग्रस्त मित्र बाद में स्वस्थ होकर घर लौट आया। उससे उन मित्रों को प्रसन्नता हुई। एक समय वे सभी युवा मित्र एक साथ मिले, साथ में बैठे। तब उस मित्र मंडली ने सोचा कि इस तरह की दुर्घटनाएं औरों के साथ भी घटती रहती हैं, तब क्यों न मिलजुल कर ऐसा कुछ किया जाए जिससे ऐसे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को रक्त प्रदान कर उनके प्राण बचाए जाएं। और उस समय पर उन चार पांच मित्रों ने मिलकर एक संस्था का गठन किया। यह संस्था कोई चार वर्ष पूर्व यानी सन 2005 में बनी।
फिर धीरे धीरे उस संस्था को कोई 12 सदस्यों का सहयोग मिला। अब ज्ञात हुआ है आज इस परोपकारी संस्था की सदस्य संख्या कोई 65 तक पहुंच गई है। और मित्रों, इस संस्था के सभी सदस्य युवा हैं, जिनकी आयु 20 से 35 वर्ष के बीच है। इस संस्था के सभी युवा इस तरह लोगों की सेवा सहायता में सदैव तत्पर रहते हैं। इस संस्था के इन युवाओं ने कुछ विशेष नियम बनाए हैं, जिनके अंतर्गत सदस्यगण वर्ष में 3 से 4 बार रक्तदान करते ही हैं। यही नहीं, चिकित्सकों की सलाह के मुताबिक वे हर 3 माह में 1 बार रक्तदान करते ही हैं। इनमें कुछ युवा तो ऐसे हैं जो इतने संकल्पित हैं कि वे 2 माह में ही रक्तदान कराते हैं। उस विवरण में यह भी बताया गया था कि संस्था के सभी सदस्यों के पास सभी सदस्यों के फोन नंबर हैं। यही नहीं, उन्हें आपस में यह भी मालूम रहता है कौन सदस्य किस समय किस तिथि को रक्तदान करके लौटा है। लेकिन जब कभी कहीं से भी सूचना मिलती है, वे लोग रक्तदान के लिए तत्काल उस अस्पताल की ओर दौड़ पड़ते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी हैं सदस्य जिनकी अपनी दुकानें हैं, व्यापार है, व्यवसाय है, कुछ कहीं काम भी करते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी हैं दोस्तों जिनकी अपनी दुकान है और वे उसे अकेले ही संभालते हैं, वहां बैठते हैं और स्वयं कामकाज चलाते हैं। लेकिन रक्तदान आवश्यकता के समय अपनी दुकान बंद कर दूसरों की सहायता के लिए बिना हिचक दौड़ पड़ते हैं। वे दूसरों के हित, दूसरों की सहायता को सर्वोपरि मानते हैं। इसके अलावा एक बात यह भी, वे संकल्पित हुआ स्वयं तो रक्तदान के लिए और प्रतिबद्ध है ही, संकल्पित है ही, पर इसके लिए अन्य युवाओं को भी वे प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। अपने में यह भी एक अच्छी बात है, अच्छा संदेश है। इस संस्था के सदस्यों के रक्तदान से कई दुर्घटनाग्रस्त लोगों को जीवन दान प्राप्त हुआ है। कई बार तो यह भी हुआ है इन युवाओं को रक्तदान के अलावा पीड़ितों को आर्थिक मदद तक करनी पड़ी है, लेकिन इस काम में भी वे कभी चूके नहीं हैं। रक्तदान के अलावा अब यह संस्था पीड़ितों के लिए अन्य कुछ साधन जैसे दवाइयां, अन्य वस्त्र तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं से भी सहायता करने लगे हैं। अपने आप में यह भी एक बहुत ही भली बात है दोस्तों। अब इस संस्था के सदस्यों ने एक संकल्प यह भी लिया है कि वे स्वयं अपना जन्म दिवस नहीं मनाएंगे, लेकिन उस अवसर पर वे अस्पताल में भर्ती रोगियों के लिए फल, भोजन आदि की व्यवस्था कर प्रसन्नता प्राप्त करेंगे, उनके आशीष, उनकी सद्भावना प्राप्त करेंगे। शायद आप लोग यह विवरण सुनकर यह अनुमान लगा रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि यह संस्था मात्र युवाओं की ही संस्था है। ऐसा नहीं है, कुछ युवतियां भी इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर इस तरह अपना मानवीय दायित्व का निर्वाह कर रही हैं और अपनी भरपूर सेवा दे रही हैं ऐसे लोगों को जिनको सचमुच किसी सहायता की, किसी मदद की जरूरत है। सच है कि यह रचनात्मक और मानवतापूर्ण कार्य है जिसे युवाओं की यह संस्था साकारता दे रही है। युवा मित्रों, क्या आप इन युवाओं की प्रशंसा नहीं करेंगे जिन्होंने इस तरह के सेवा कार्य का संकल्प लिया है और बिना किसी बाधा, बिना किसी रुकावट के वे अपना यह सेवा कार्य कर रहे हैं? कहा भी तो जाता है, अगर युवा शक्ति संकल्प कर ले तो क्या कुछ नहीं हो सकता। हाँ दोस्तों, इस सत्य से सभी परिचित हैं कि देश के कई युवा अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी मानव हित के कई कई महत्वपूर्ण काम संपन्न कर रहे हैं बिना किसी प्रचार प्रसार के। हमने देखा है ऐसे कई युवा हैं जो कहीं कोई भी दुर्घटना हुई, उन्हें सूचना मिली कि वे या तो घटनास्थल पर या फिर अस्पताल पहुंच जाते हैं ताकि आपदाग्रस्त व्यक्ति को सहायता पहुंचाई जा सके। वे युवा इस बात से भी परिचित रहते हैं कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है या जो जीवन पद्धति बनती जा रही है,
समाज में जो बेहद गतिशीलता बढ़ती है या बढ़ी है, उसमें ऐसी घटना दुर्घटनाएं होना स्वाभाविक है। ऐसी ही स्थिति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, पर वे युवा उस कठिन स्थिति की परवाह न करते हुए पीड़ित जनों की सेवा सहायता के लिए पहुंच ही जाते हैं, चाहे उन्हें कितनी भी परेशानी हो, मगर गंतव्य तक वो अपनी पहुंच बढ़ा ही लेते हैं और समय पर वहां पहुंच जाते हैं। अब कुछ दिनों पहले कुछ युवाओं से मुलाकात हुई थी। चर्चा के दौरान उन्होंने यही बात बताई थी कि उन्होंने इस बार संकल्प लिया है कि वर्षा के दिनों में जहां जहां भी उनके अपने क्षेत्र में हरियाली विस्तार के लिए जो पौधे लगाए जाएंगे या रोपे गए हैं, वे पूरी सजगता के साथ उनका संरक्षण, उनकी देखभाल करेंगे ताकि वे जीवित रह सकें। उन्होंने इसके लिए अपने अपने क्षेत्र भी निर्धारित कर लिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे इस क्षेत्र में पौधे लगाओ अभियान प्रारंभ हुआ था। समाचार पत्रों ने जिसके समाचार दिए, चित्र छापे, वे मात्र प्रदर्शन और शोभा बनकर न रह जाएं, बल्कि वे इस धरती पर पूरी तरह साकार हो, हरियाली को विस्तार दे। साथियों, उन युवाओं से बात कर और उनकी बात सुनकर और उनकी इस संकल्पशीलता को देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। साथ ही यह भी अच्छा लगा कि वे मानव और प्रकृति हितैषी का काम कर रहे हैं और एक महत्वपूर्ण दायित्व निभाने जा रहे हैं। वरना अभी तक तो यह होता आ रहा था कि लोग जगह जगह पौधों का रोपण कराते, समाचार पत्र उनका विवरण दे देता, फोटो छाप देते और कुछ दिनों बाद वे पौधे जानवरों या बकरियों द्वारा चर लिए जाते। फिर वही बर्बादी का आलम, पौधे लगाए जाते और वे सूख जाते, मर जाते या जानवर खा जाते, तो भला किसका? किसी का भला नहीं था उसमें। इस बार उन युवाओं ने उन पौधों के संरक्षण का संकल्प लिया। हम कामना करें कि वह संकल्प पूर्णता पाए। ये ऐसे युवा हमेशा दूसरों के लिए काम करें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, हित का काम करें, जग की भलाई करें, दूसरों का कल्याण करें, ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए काम करें जिनको उनकी जरूरत है, रक्तदान करना चाहे, जो संकल्प लिया है उनको भली भांति निभाएं। इसी तरह और भी यदि कोई संकल्प लिया है इन युवाओं ने हरियाली संरक्षण का, तो ये हरियाली का काम भी अच्छी तरह से निभाएं। ईश्वर करे चहुं ओर हरियाली छाए, उनके पौधे लहलहाएं और लोग उस पेड़ के नीचे, उस छाया तले सुस्ताएं, साथ ही उन पेड़ पौधों का फल भी खाएं। तो साथियों, हरियाली संरक्षण करने वाले युवाओं ने जो बीड़ा उठाया है, जो रास्ता उन्होंने खुद अपनाया है, उसे समाज को दें और एक बड़ा परिवर्तन लाएं समाज में। युवा यदि चाहेंगे तो यह निश्चित रूप से उनके लिए संभव हो सकता है और यह संभव है कि युवा आगे आएं और समाज को नई दिशा दें, नया काम करें, नया सोचें और दूसरों को, जरूरतमंद लोगों को रास्ता दिखाएं। ऐसा कुछ होने पर साथियों, समाज सचमुच सुव्यवस्थित दिशा ले सकेगा और समाज बहुत आगे जाएगा और परिवार के लोग भी खुश होंगे तथा समाज में आज जो निरंतर उथल पुथल

युवाओं को खासकर आगे आना ही होगा, क्योंकि आज के जो हमारे युवा हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं। उनके अंदर इतनी शक्ति है, एनर्जी है, ऊर्जा है कि वो जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे उसे पा सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, राहगीर को रास्ता दिखा सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं और उनकी छाया में सबको सुकून दे सकते हैं।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा विकास के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक था संकल्पशील बने युवा। इस वार्ता के लेखक हैं श्री कृष्णकांत दुबे एवं प्रस्तुतकर्ता थी भवानी कौल। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, हमारी समय सारिणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का, कार्यक्रम युग संचार का। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं कार्यक्रम युग संचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है सूचना युग से सामंजस्य की चुनौती, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।
1: श्रोताओ नमस्कार, युग और संचार में आज हम बात करेंगे सूचना युग से सामंजस्य की चुनौती। साथियों, हम जब अपने समय में जनसंपर्क की बात करते हैं तो सवाल उठता है कि आखिर जनसंपर्क है क्या और जनसंपर्क काम क्या करता है। दरअसल इन सवालों का जवाब आसान नहीं है। जनसंपर्क एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, इसमें परिस्थिति के अनुरूप उसका स्वरूप बदलता रहता है। परिस्थिति के अनुरूप उसकी प्राथमिकता, उसके साधन और उसके माध्यम बदल जाते हैं। जनसंपर्क व्यक्ति से शुरू होकर परिवार, समूह और समुदाय के जरिए पूरी कौम तक विस्तारित होता है, और यही वजह है कि किसी भी दिए गए समय में किसी न किसी प्रक्रिया में जनसंपर्क के जरिए हर व्यक्ति, हर परिवार, हर समूह और हर समुदाय संलग्न रहता है। कहा भी तो जाता है कि किसी व्यक्ति के किसी स्थान पर पहुंचने से पहले उसकी प्रतिष्ठा संबंधी प्रतिकूल अथवा अनुकूल धारणा पहले पहुंच जाती है। और साथियों, ये बात किसी व्यक्ति से शुरू होकर हर एक संगठन तक के लिए प्रासंगिक है। एक बार ये बात हमारे ध्यान में आ जाती है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि जनसंपर्क का स्वरूप सर्वव्यापी और सार्वकालिक है। साथियों, गौर करने की बात है कि जनसंपर्क के इतिहास के जो विवरण है उनमें इतिहासकर्ताओं के जनसंपर्क का विहंगम और अति सरलीकृत विवरण दिया गया है। एक रोचक कथा के रूप में ये विवरण ज्यादा प्रचलित है। साथियों, इन विवरणों में बहुत से जनसंपर्क कर्मियों द्वारा संपादित किए गए ढेर सारे अनूठे कार्यों और उनके मनोहारी व्यक्तित्वों को प्रस्तुत किया गया है। इसलिए इन ऐतिहासिक विवरणों से जनसंपर्क का वास्तविक स्वरूप नहीं उभरता। दरअसल जनसंपर्क एक ऐसी प्रक्रिया है साथियों, जो अनंत काल से चल रही है। जी हाँ, जनसंपर्क के साधन, उसकी विशिष्टता, उसके ज्ञान के विस्तार और जनसंपर्क के लिए किए जाने वाले प्रयासों की सघनता, ये भले ही हर समय में बदलती रहती है, या फिर इसे यूं कहें कि इसमें विकासात्मक परिवर्तन होता रहता है। साथियों, चाहे ग्रीस के दर्शन शास्त्री रहे हों, जिन्होंने अपने ग्रंथों में जनता की इच्छा के महत्व को प्रतिपादित किया हो, या फिर परवर्ती नागर संस्कृति को महत्व दिया हो, हम पाते हैं साथियों कि जनमत को हर समय में, हर परिस्थिति में हमेशा ही सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। और यदि हम नए युग को देखें तो नए युग की पहचान के रूप में विकसित हो रहे बड़े बड़े व्यवसाय, ऊंचे उद्योग, बड़ी शासकीय संस्थाओं और ऊंची शिक्षा के कारण जनमत पर प्रभाव डालने वाले व्यस्त हितों के समूह भी आज बड़े विस्तृत स्वरूप में आ गए हैं। और ऐसे इस समय में मीडिया का स्वरूप और आकार काफी बड़ा हो गया है। आखिर जरूरत भी इस दिनों मीडिया की सबसे ज्यादा है। छोटे समाचार पत्र, पत्रिकाओं और छोटे संचार समूहों के अस्तित्व और महत्व पर सवालिया निशान लग रहा है। साथियों, इन दिनों हर व्यक्ति और संगठन ये चाहता है कि वो जिस पर्यावरण में काम कर रहा है उसमें सम्मिलित व्यक्तियों और अन्य संगठनों के बीच उसकी अपनी प्रतिष्ठा बनी रहे। इस प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए, या फिर यूं कहे संक्षेप में कि अपने मतों का समर्थन पाने के लिए और अपने विरुद्ध मतों को अपने अनुरूप बनाने और समान मत वालों के साथ संबंधों को निरंतर अच्छा बनाए रखने की प्रक्रिया ही जनसंपर्क का मूल है। साथियों, जनसंपर्क वास्तव में अच्छे कार्य और उत्तरदायित्वपूर्ण निष्पादन के आधार पर परस्पर संतोषजनक संचार के जरिए जनमत को प्रभावित करता है। जनसंपर्क के लिए ये जरूरी होता है साथियों कि पहला अच्छा काम किया जाए और उसके बाद श्रेय प्राप्त किया जाए। लेकिन इन दिनों यदि हम संचार की बात करें तो अच्छा काम किए बिना श्रेय प्राप्त करने की होड़ प्रत्येक स्थान पर है। काम चाहे जो भी कुछ हो, उसे रंग रूप इस प्रकार का दे दिया जाता है जिससे उसका हवा बन सके, जिससे वो किया हुआ काम भी एक खबर बन सके। आजकल यदि हम किसी बड़े प्रतिष्ठान के किसी समारोह को भी देखें, तब हमेशा ही अध्यक्ष पद पर या फिर मुख्य अतिथि के पद पर ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाता है साथियों, जिनका मीडिया के साथ जनसंपर्क बहुत अच्छा हो, जिसके चलते उस मुख्य अतिथि या अध्यक्ष के साथ साथ उस संस्था के व्यक्ति भी अपने आप को किसी न्यूज़पेपर की हेडलाइन में एडजस्ट कर सके। साथियों, ये सारी शब्दावली इन दिनों प्रत्येक प्रतिष्ठान के प्रत्येक सदस्य के जबान पर है। जनसंपर्क के लिए पहले अच्छा कार्य और फिर अच्छा शब्द जरूरी होते हैं, और फिर यहाँ आकर जनसंपर्क प्रोपेगेंडा, पब्लिसिटी, विज्ञापन इनके जैसी एकांगी विधाओं से अलग होता है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि प्रोपेगेंडा, पब्लिसिटी और विज्ञापन किस तरीके से भ्रामक हो सकते हैं, और यही तो वजह है कि विज्ञापनों पर भरोसा कम होता है, प्रोपेगेंडा पर कुछ समय के लिए होता है और पब्लिसिटी पर बड़े सीमित उद्देश्य के लिए होता है। साथियों, पब्लिसिटी वास्तव में जनसंपर्क का एक साधन है, लेकिन इस प्रकाशन या प्रचार के लिए ये जरूरी है कि ये अच्छे उद्देश्यों वाला हो या फिर जनता उसे विश्वसनीय माने। साथियों, जनमत सिर्फ शब्दों से नहीं बनता, उसके लिए वास्तविक घटना या कार्य जरूरी होते हैं। हमें प्रकाशन या प्रचार को जनसंपर्क की समग्र संचार योजना के बड़े फलक के एक हिस्से के रूप में लेना होगा। यदि हम कमजोर निष्पादन की भरपाई करने के लिए प्रचार को अपनाते हैं, तो वो प्रचार अपना उद्देश्य पूरा कर सकता है। प्रचार को अच्छे कार्यों को उभारा जाता है, कमजोरियों को दबाया जाता है। लेकिन साथियों, हमें ये मालूम है कि हमारे सामने ऐसे दूसरे लोग भी होते हैं जो हमारी कमजोरियों को ज्यादा उभारते हैं। हम सभी लोकतंत्र के एक ऐसे समय में जी रहे हैं साथियों, जहां हम सभी जानते हैं कि प्रचार में बहुत शक्ति है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान तो नहीं है। इसलिए प्रचार स्वयं किसी वस्तु, मत या अभियान को सफल नहीं बना सकता। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं साथियों, जिनमें आभासी सफलता या क्षमताओं का बहुत ढिंढोरा पीटा गया, लेकिन जनता ने उसे वास्तविक नहीं माना। इसीलिए तो जनसंपर्क की मूल धारणा के अनुरूप जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए पब्लिसिटी या प्रचार ऐसा साधन है जिसका बहुत युक्तियुक्त प्रयोग करना वांछनीय है। साथियों, सूचना युग में गोपनीयता बनाए रखना बहुत कठिन है। हमारी निजता पर टेक्नोलॉजी की कड़ी नजर है। हमारे समाज और संगठन में शिक्षा के कारण आए परिवर्तन से अब ये संभव नहीं है कि तानाशाही ढंग से चीजों को दबा दिया जाए। ऐसी परिस्थिति में उपलब्धियों से रहित संगठन या व्यक्ति के लिए प्रचार को सफल बनाना बहुत कठिन है। साथियों, हम जिन मूल्यों और आदर्शों को अपनी दृष्टि से कभी ओझल ना करें, इसे ध्यान में रखते हुए घटना के समाचार मूल्य को आंकना होगा। ये तो सही नहीं कि घटना चाहे कैसी भी हुई हो, हम उसे अपने स्वार्थ के हिसाब से, अपने प्रचलित कोण के हिसाब से जनता के सामने परोसे और उस पर स्वयं के स्वार्थ की रोटी सेके। साथियों, सभी विकसित देशों में जनसंपर्क के लिए आचार संहिता बनी हुई है। यहाँ पर उस विषय में बातचीत करने की वाकई कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये संहिता वास्तव में जनसंपर्क कर्मी के सच्चाई, यथार्थ, समता और जनता के प्रति उत्तरदायित्व के प्रति समर्पण का एक शपथ पत्र है। केवल नेट और वर्ल्ड वाइड लैब, सैटेलाइट, इन सभी ने संचार की तीव्रता और क्षमता को नए आयाम दिए हैं। इसी वजह से जनसंपर्क अब प्रयुक्त विज्ञान, परिष्कृत सामाजिक विज्ञान और परिपूर्ण प्रबंधन कला के संपूर्ण रूप में हमारे सामने है।
0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा विकास के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक था सूचना युग से सामंजस्य की चुनौती, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या आईओएस मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दें आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को, और रिकॉर्डिस्ट है आकाश जांगरा। नमस्कार।

सत्य स्वर सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को ग्लोरिया गांगले का प्यार भरा नमस्कार तथा आज की इस सभा में हार्दिक स्वागत। दोस्तों, अभी की सभा 9 से 10 में आप सुन पाएंगे सर्वधर्म विचार, नारी सशक्तिकरण, मन दर्पण, पर्यावरण और भक्ति गीत। तो आइए दोस्तों, आप सुनते हैं कार्यक्रम सर्वधर्म विचार और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

श्रोताओं, फादर हेरमन बंडोर एसवीडी का प्यार भरा नमस्कार। सर्वधर्म विचार के तहत आइए सुनते हैं एक वार्ता जिसका शीर्षक है बांग्लादेश में धर्म निरपेक्षता का अर्थ। मित्रों, विक्टर ह्यूगो कहते हैं, कानून क्या कहता है? आप किसी की हत्या नहीं करोगे। कैसे कहता है? किसी को मारकर। उसी प्रकार एमनेस्टी इंटरनेशनल कहता है, हम मौत की सजा का विरोध करते हैं, इसमें कोई अपवाद नहीं है। फिर चाहे अपराध कैसा भी हो, अपराधी का चरित्र कैसा भी हो, या अपराधी को मौत की सजा देने का तरीका कोई भी क्यों न हो। बांग्लादेश की प्रसिद्ध लेखिका तस्लीमा नसरीन लिखती है, जब से मैंने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के युद्ध अपराधी मुल्ला कादर को फांसी देने का विरोध किया है, बांग्लादेश के धर्मनिरपेक्ष लोग सोशल नेटवर्किंग साइट पर मुझे कोस रहे हैं, गरिया रहे हैं। इसकी वजह यह है कि नई पीढ़ी के कई युवक और युवतियां भ्रम में पड़े हुए लोगों में से हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि उनकी आस्था किन मूल्यों में है। बांग्लादेश की यह पीढ़ी खुद को धर्मनिरपेक्ष कहती है, लेकिन इसका मतलब नहीं जानती। इनमें से बहुत से लोग युद्ध अपराधियों के तो खिलाफ हैं, लेकिन कट्टरपंथियों के विरोध में नहीं हैं। इनमें उन्हें कोई परहेज नहीं है। उन्हें नारीवाद से भी नफरत है और ये युवा मौत की सजा के बड़े हिमायती हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि लोग मौत की सजा के खिलाफ क्यों हैं। उन्हें अपने साथी को मौत की सजा देने का विरोध कर रहे आतंकवादियों और मौत की सजा खत्म करने की मांग कर रहे कट्टरपंथ विरोधियों के बीच फर्क समझ में नहीं आता, क्योंकि दोनों ही मौत की सजा का विरोध कर रहे हैं। युद्ध अपराधियों को भी मौत की सजा देना ठीक नहीं है और इसका विरोध होना चाहिए। इस प्रवृत्ति को कोसा जाना चाहिए। सच्चाई यह है कि यदि आप दुष्ट तरीकों से समस्याएं सुलझाना चाहेंगे तो अनजाने ही आप हिंसा के खिलाफ हिंसा का ही इस्तेमाल करेंगे। हालांकि यदि आप अपने समाज को हिंसा से मुक्त करना चाहते हैं तो आप एक धर्मनिरपेक्ष, वर्ग रहित, जाति रहित, समानता पर आधारित समाज का निर्माण करना चाहेंगे। आप बच्चों को उचित शिक्षा मुहैया कराएंगे ताकि कोई धार्मिक कट्टरपंथ को अपना न सके, एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। तस्लीमा लिखती है, यदि आपको वाकई भरोसा है कि मौत की सजा अपराधियों को अपराध से दूर रखने में सहायक है तो मुझे समझ में नहीं आता कि बांग्लादेश में भी सऊदी अरब की तरह सार्वजनिक रूप से अपराधियों के सिर कलम क्यों नहीं किए जाते। क्या आपको नहीं लगता इससे मौत की सजा और अधिक कारगर सिद्ध होगी? एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक मौत की सजा से अपराधी के पुनर्वास और सुलह सफाई की सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। फिर ऐसी सजा मानव की जटिलतम समस्याओं का सरलीकृत समाधान पेश करती है। इससे हत्या का शिकार हुए परिवार की तकलीफ का दौर और बढ़ जाता है और सजा पाए व्यक्ति के परिजनों के कष्ट भी बढ़ जाते हैं। इससे वे संसाधन और ऊर्जा गलत जगह व्यय होती है जिसे हिंसा रोकने और हिंसा के शिकार लोगों को मदद पहुंचाने में लगाया जाना चाहिए। फांसी हिंसक संस्कृति का प्रतीक है, न कि कोई समाधान। यह मानवीय गरिमा के एकदम विपरीत है। मित्रों, कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता और न ही कट्टरपंथी होता है। उचित शिक्षा न मिले तो लोगों में बुराई पनपने की आशंका रहती है, वे बुरे लोग बन जाते हैं। इसके बावजूद हर व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, फिर उन्होंने कोई भी अपराध क्यों न किया हो। बांग्लादेश की नई पीढ़ी ने वयस्क होने के साथ साथ 1971 के मुक्ति संग्राम के बारे में किताबें पढ़ी है, फिल्में, नाटक देखे हैं, कविताएं और संगीत सुना है। यही वजह है कि युद्ध अपराधियों के खिलाफ उनकी भावनाएं बहुत तीव्र है। हालांकि लगभग सभी यह मानते हैं कि इस्लाम शांति का पैगाम लाने वाला मजहब है। सारे युद्ध अपराधी कट्टरपंथी हैं। उन्होंने 1971 में मजहब के नाम पर लोगों की हत्या की। वे एक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहते थे। बांग्लादेश में 1980 के दशक में कट्टरपंथ बढ़ने लगा और यही वजह है कि आज कट्टरपंथियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। ये नए कट्टरपंथी धर्मनिरपेक्षवादियों, नास्तिकों और मजहब विरोधियों की निर्मम हत्या तक कर देते हैं। ये लोग 1971 के युद्ध अपराधियों से किसी भी तरीके से कम खतरनाक नहीं है। जमात इस्लामी बांग्लादेश की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसमें ऐसे लोगों की भरमार है।
जब से 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में उसे राजनीतिक पार्टी के रूप में मान्यता मिली है, वह देश को आतंकित करने में लगी है। इन कट्टरपंथियों ने इस्लामी बैंक, इस्लामी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोली है। इनके गैर सरकारी संगठन, अस्पताल, रेडियो, टेलीविजन चैनल और अखबार तक है। जमात इस्लामी का एक एजेंडा यही है कि बच्चों में कट्टरपंथ का जहर भरा जाए। वे जमात इस्लामी के संस्थापक मैदूदी का अनुसरण करते हैं, जिनका सपना पूरी दुनिया को कट्टरपंथ के रंग में रंगना था। मिस्र का मुस्लिम ब्रदरहुड भी मैदूदी से प्रेरित है। हालांकि एक राजनीतिक पार्टी के रूप में जमात इस्लामी मुस्लिम ब्रदरहुड की तुलना में कहीं ज्यादा अलोकतांत्रिक और हिंसक है। तस्लीमा आगे लिखती है, कट्टरपंथी युद्ध अपराधी 1993 से मेरी हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उन्हें फांसी पर लटकाया जाए। मैं चाहती हूं कि वे बेहतर नागरिक बने। मौत की सजा के अलावा भी सजा देने के तरीके हैं जो उन्हें दी जा सकती है। उन्हें लंबी कैद की सजा क्यों नहीं दी जा सकती? हालांकि मुझे कारावास की व्यवस्था में भरोसा नहीं है। जेल ऐसी होनी चाहिए जहां कैदियों का पुनर्वास किया जा सके। जेल किसी यूनिवर्सिटी की तरह और कोठरियां किसी क्लासरूम की तरह होनी चाहिए। कट्टरपंथी तालीम पाकर सैकड़ों हजारों कादर मुल्ला बांग्लादेश में पैदा हो गए हैं। बांग्लादेश कितने कादर मुल्लाओं को खत्म करेगा? बेहतर होगा कि देश में फैल रहे कट्टरपंथ पर लगाम लगाई जाए। किसी देश और समाज को धर्मनिरपेक्ष बनाना हमेशा ही बेहतर विकल्प होता है। कादर मुल्ला को फांसी की सजा दिए जाने के बाद से जमात ए इस्लामी लोगों की हत्याएं करने में लगी है, इसलिए जरूरत इस कट्टरपंथी प्रवृत्ति पर लगाम लगाने की है। बांग्लादेश को एकजुट होकर तरक्की की राह पर जाने की जरूरत है। युद्ध अपराधियों को मौत की सजा देने से बदले की भावना ही बढ़ेगी। बांग्लादेश में यदि लोग आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने पर सहमत होते हैं तो उन्हें देश में जमात इस्लामी पर भी रोक लगाने का समर्थन करना चाहिए। देश की तीव्र आर्थिक वृद्धि दर भविष्य की उम्मीद बंधाती है। इस देश को आगे बढ़ने का मौका देना होगा। नमस्कार।

अभी आपने सुना कार्यक्रम सर्वधर्म विचार और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए साथियों आप सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

अभी आपने सुना एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण, जिसका शीर्षक है माँ की महिमा। लेखक माइकल होजेस और इसकी प्रस्तुतकर्ता हैं अपर्णा सिंह और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत प्रस्तुत है वार्ता माँ की महिमा। इसके लेखक हैं माइकल हॉजेस, प्रस्तुतकर्ता अपर्णा सिंह। श्रोता साथियों, एक समय था कि युवती या महिला संतान को जन्म देने के बाद ही माँ कहलाया करती थी और माँ होने का गौरव भी प्राप्त किया करती थी। लेकिन आज के संदर्भ में ये बात कुछ अलग होकर रह गई है। आज माँ का दर्जा पाने के लिए संतान को जन्म देना जरूरी नहीं रह गया है। आज कोई भी युवती या महिला किसी भी बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने के बाद उसकी माँ बनकर माँ बनने का गौरव प्राप्त कर सकती है। इसे त्रासदी या विडंबना ही कहा जाएगा कि जहाँ पराए बच्चे को गोद लेकर कुछ माएं अपनी सारी ममता उस बच्चे पर उड़ेल देती हैं, वहीं कुछ सगी माएं अपने कोख जने बच्चे को भी अपनी ममता से वंचित रखती हैं, सुमन की तरह से। सुमन को शादी के बाद संतान की बहुत चाहत थी, लेकिन जब साल भर बाद भी उसके यहाँ संतान नहीं हुई तो सुमन की माँ ने उसका बहुत इलाज कराया, क्योंकि सुमन और उसके पति की डॉक्टरी जांच में सुमन में ही कमी पाई गई थी। लेकिन जब डॉक्टरी इलाज करते रहने के बाद भी उसकी गोद हरी नहीं हुई तो फिर उसने प्रत्येक धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों के चक्कर लगाना और उपवास आदि रखना शुरू किए। अब इसे दैवीय चमत्कार कहा जाए या फिर दवाइयों का असर, आखिर संतान की कामना करने वाली सुमन की कामना पूरी हुई और बेटे की आस लगाए बैठी सुमन के यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ। देखा जाए तो अब तक बांझ कहलाने वाली सुमन के यहाँ बेटी उत्पन्न होने से भले ही वो लड़की हो उसे खुश होना चाहिए था, मगर हुआ इसका उल्टा ही। अपने माथे से बांझ का कलंक पोंछ देने वाली बेटी को देखकर सुमन ने अपना सिर पीट लिया और बस यहीं से शुरू हो गई सुमन के मन में बेटी के लिए नफरत और जलन। एक माँ द्वारा अपनी ही बेटी से नफरत और जलन की बात थोड़ी अटपटी सी लगती है, लेकिन ये घटना और बात बिल्कुल सच है। जैसे जैसे बेटी बड़ी होती गई, उसे अपने पापा के साथ साथ घर के अन्य सदस्यों का प्यार भी मिलता रहा, सिवा अपनी माँ सुमन के। सुमन जब भी अपनी बेटी से बात करती तो कभी सीधे मुंह बात नहीं करती। इसका परिणाम ये निकला कि अब सुमन की युवा होती बेटी के मन में अपनी माँ के लिए कोई आदर सम्मान नहीं है। वह भी बात बेबात अपनी माँ को मुंह चला देती है और कहना भी नहीं सुनती है। श्रोता साथियों, इन सब बातों के लिए दोषी कौन है? बिना सोच विचार ये कहा जा सकता है कि इन सब बातों के लिए दोषी सुमन और केवल सुमन ही है। यदि उसकी बेटी उसके यहाँ पैदा हो गई, वो भी पहली और अंतिम संतान के रूप में, तो इसमें बेटी का क्या कसूर है? दूसरी ओर सुमन को भी ये सोचना चाहिए कि अपने इस तरह के व्यवहार से क्या वो अपनी ही बेटी के साथ अन्याय नहीं कर रही है। खुद नारी होकर एक दूसरी नारी के लिए उसके विकास, उसके उत्थान में बाधा नहीं बन रही है वो? क्या सुमन अपने नारी होने, अपने ममतामयी माँ होने की राह में बेवजह रुकावट नहीं डाल रही है? क्या वो स्वयं एक नारी होकर दूसरी नारी के शोषण का कारण नहीं बन रही है? यदि वो स्वयं अपनी बेटी से नफरत करती है तो दूसरे क्या कहेंगे, क्या करेंगे? वो तो भला हो अन्य लोगों का जो सुमन की तरह नहीं है, वरन वे उसकी बेटी को लाड़ प्यार करते हैं। बेटे की चाह में डूबी हुई सुमन और उसकी नफरत का सामना ना जाने उसकी बेटी को कब तक करना पड़ेगा। और सोचे स्वयं स्त्री होकर किसी बालिका के जन्म लेने पर क्या उसका मुंह बनाना और उससे नफरत करना ठीक है? स्वयं नारी होकर नारी का विरोध करना उचित है? स्वयं नारी होकर नारी से नफरत करना उचित है? यहाँ इस बात का अंदाजा भी सहजता से लगाया जा सकता है कि जब वह अपनी कोख से जन्मी बेटी से ही अपने स्वार्थ के कारण इतनी नफरत कर सकती है, तो किसी और से जिससे उसका कोई रिश्ता ही न हो कितनी नफरत कर सकती है? श्रोता साथियों, आइए एक और बेटे के मुंह से ग्रस्त महिला प्रतिमा के बारे में भी जानते हैं हम। प्रतिमा के दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की हालांकि बड़ी है और लड़का छोटा, लेकिन घर में बेटी की बात कम सुनी जाती है और बेटे की बात खूब सुनी जाती है। बेटे की बात यहाँ तक सुनी जाती है कि खाने में कब और क्या क्या बनेगा, यही नहीं यहाँ तक कि बेटी कब क्या और कैसे कपड़े पहनेगी, कहाँ जाएगी और कहाँ नहीं जाएगी, वगैरह वगैरह।
इसी तरह से लाड़ प्यार में बढ़ते बेटे ने किशोर से युवावस्था में कदम रखा। अब आए दिन झगड़े और मारपीट करना उसी की दिनचर्या में शामिल हो गया। जब उसकी माँ प्रतिमा तक शिकायत आती तो उसकी माँ सुनी अनसुनी कर देती, और अगर सुनती भी तो अपने बेटे का ही पक्ष ले लेती। इसका नतीजा ये निकला कि प्रतिमा का बेटा दिन पर दिन और बिगड़ता गया। अब वह नशा भी करने लगा था। वह अपने पिता का कहना सुनकर भी अनसुना कर देता था, क्योंकि उसे उसकी माँ ने शह दे रखी थी। यही नहीं, उसकी गलत संगत दिनों दिन बिगड़ती गई। वो लड़की को छेड़ने के जुर्म में थाने में भी बंद होकर आ गया था। उसकी इस हरकत को भी उसकी माँ ने ये कहकर बड़े हल्के रूप में लिया था कि इस उम्र में तो सभी लड़के ऐसा करते हैं, अब लड़के इस उम्र में ऐसा नहीं करेंगे तो फिर किस उम्र में करेंगे। अब प्रतिमा के बेटे का ये हाल था कि वो नियमित रूप से नशा करने लगा था, और नशे का वो इस कदर आदि हो गया था कि पैसे हो ना हो उसे तो बस नशा ही चाहिए था। यही कारण था कि अब नशे की पूर्ति के लिए वो चोरी जैसे घृणित काम भी करने लगा था। ऐसे ही एक बार चोरी करने और चोरी का माल बेचने के जुर्म में वो और उसकी माँ प्रतिमा जेल होकर भी आ गए हैं। उसकी माँ इसलिए जेल होकर आई है क्योंकि चोरी का माल वो अपने ही घर में रखती थी, और चोरी के माल को बेचने वो अपने लाडले बेटे के साथ खुद ही दुकानों पर जाया करती थी। अब माँ को बेटे के किए की सजा मिली या बेटे को माँ की किए की सजा मिली, ये प्रश्न सहज ही उठता है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर सहज है, बेटे को माँ के किए की सजा मिली और माँ प्रतिमा को सजा मिली अपने किए की। यदि माँ अपने बेटे को अनावश्यक लाड़ ना करती, अपनी बेटी की उपेक्षा ना करती, तो उन लोगों को ये दिन शायद नहीं देखने पड़ते। यदि माँ अपने बेटे को सही रास्ता दिखाती तो बेटा कभी गलत राह पर जाता ही नहीं। यदि माँ अपना अनावश्यक लाड़ प्यार ना दिखाती तो बेटे का जीवन यूं बर्बाद ना होता। श्रोता साथियों, इसलिए महिलाओं को माँ की महिमा को समझना होगा। सौतेली या विमाता की बातें अभी भूली बिसरी बातें नहीं हुई हैं। सौतेली माँ पहले जहाँ अपने सौतेले बच्चों के प्रति निष्ठुर बनी रहती थी, वहीं आज भी उसकी स्थिति में बहुत हद तक बदलाव नहीं आया है। पहले की विमाता यानी सौतेली माँ खुलेआम अपने सौतेलेपन को दर्शाया करती थी, वहीं वर्तमान संदर्भ में सौतेली माँ छिप छिप कर आज भी अपना सौतेलापन दर्शाती रहती है। कुछ सौतेली माएं अपवाद स्वरूप भी हो सकती हैं। यहाँ सौतेली माँ की तुलना यदि हम एक सौतेले पिता से करें तो सौतेले पिता को सदा ही हम सहज रूप में पाते रहे हैं।

अभी आपने सुना कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण, जिसका शीर्षक था माँ की महिमा, लेखक माइकल होजेस, और इसकी प्रस्तुतकर्ता थी अपर्णा सिंह, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए साथियों, सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों आइए सुनते हैं कार्यक्रम मन दर्पण, जिसका शीर्षक है हमको मन की शक्ति देना प्रभु, और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं स्वतंत्र कुमार ओझा, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्र कुमार ओझा का नमस्कार। मन दर्पण, आज के मन दर्पण कार्यक्रम का शीर्षक हमने रखा है, हमको मन की शक्ति देना प्रभु। मित्रों, सुबह तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे कि कब श्रीमती जी आवाज लगाएं कि आ जाइए, नाश्ता तैयार है। ड्राइंग रूम में रेडियो बज ही रहा था, तभी एक गीत खत्म हुआ और अगला गीत बजना शुरू हुआ। वो एक प्रार्थना गीत था जो अनेकों बार हमने आपने सुना ही है और जिसे सुनकर एक उत्साहवर्धक ऊर्जा, शक्ति, आत्मिक शांति हृदय में प्रवाहित होने लगती है।

साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम मन दर्पण, जिसका शीर्षक था हमको मन की शक्ति देना प्रभु, और इसे प्रस्तुत कर रहे थे स्वतंत्र कुमार ओझा, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए साथियों, अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

अभी आपने सुना एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए साथियों, आप सुनते हैं कार्यक्रम पर्यावरण, जिसका शीर्षक है मृदा प्रदूषण के दुष्प्रभाव, और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं माइकल होजेस, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

पर्यावरण के अंतर्गत प्रस्तुत है वार्ता मृदा प्रदूषण के दुष्प्रभाव। इसके लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं माइकल हॉजिस। श्रोता साथियों, इसके पूर्व की वार्ता मिट्टी प्रदूषण में हमने यह जाना और माना है कि मिट्टी हम मनुष्यों के लिए कितना महत्व रखती है और मिट्टी का हमारे जीवन में कितना दखल है। तो आइए अब उसी मृदा यानी कि मिट्टी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए यह जानने का प्रयास करते हैं कि जब मृदा प्रदूषण होता है या मृदा प्रदूषण संपन्न हो जाता है तब मानव और वनस्पति आदि पर उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। मनुष्य की रोटी कपड़ा और मकान जैसी मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी से ही होती है। इसलिए यही मिट्टी जब प्रदूषित होती है तब सबसे अधिक हानि मनुष्य को ही होती है। मनुष्य को ही सबसे अधिक इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आर्थिक रूप से तो मनुष्य को हानि उठानी ही पड़ती है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मानव को अत्यधिक हानि का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मिट्टी में जमा कीटनाशकों का दुष्प्रभाव मनुष्य और उसके साथ जीव जंतु और पशु पक्षियों को भी झेलना पड़ता है। मिट्टी प्रदूषण का दुष्प्रभाव मानव, पशु पक्षी और अन्य जीव जंतुओं के साथ साथ वनस्पतियों पर भी पड़ता है, क्योंकि क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन जैसे DDT आदि का अपघटन यानी कि उपयोग के बाद विलय या समापन न होने से ये जल और खनिज के अवशोषण के साथ ये प्रदूषक पौधों आदि में भी चले जाते हैं। पौधों से ही यह खाद्य श्रृंखला यानी कि फल और सब्जियों के अवशोषण के साथ ये पौधों में चले जाते हैं। फिर पौधों से यह फल फूल और सब्जियों के भक्षण के साथ यह मानव शरीर में पहुंच जाते हैं तथा अनेक रोगों को जन्म देते हैं।

हमारे घर के आसपास के कूड़े कचरे के ढेर से या कूड़ाघर से विभिन्न रोगों के वाहक कीटाणु शीघ्रता से फैलते हैं, जैसे चूहे, मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े आदि। कीटाणु वाहक इन्हें फैलाने में मददगार होते हैं। यह सारे जीव जंतु विभिन्न रोगों के कीटाणुओं को कूड़े के ढेर से हमारे घर तक लाते हैं, क्योंकि इन सभी जीवाणु वाहक जीव जंतुओं की हमारे घर से लेकर कूड़े तक आवक जावक लगातार बनी रहती है। इसलिए विभिन्न कीटाणु जो विभिन्न बीमारियों के जनक होते हैं हमारे घर में सहजता से प्रवेश कर जाते हैं। बेकार और खाद्य झूठन के साथ अन्य चीजों के सड़ने से उत्पन्न परजीवी मानव शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश उपरांत आंत्रशोध, पेचिश, हैजा, पोलियो, टीबी, मलेरिया, खुजली और एलर्जी जैसे रोगों को फैलाते हैं। यही नहीं, कूड़े कचरे के ढेर से उठती लगातार दुर्गंध भी मानव को बीमार बनाने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ है। इनमें भी निम्न मध्यम वर्गीय और गरीबी से रहने वालों की संख्या ही अधिक है। यही लोग स्थान की कमी के कारण घनी बस्तियां बसाकर उनमें निवास करते हैं। इसलिए जाहिर सी बात है कि जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों का उपयोग कई लोग एक साथ करेंगे और पास पास एक दूसरे सटकर रहेंगे तो गंदगी भी होगी और बढ़ेगी, तो ऐसी स्थिति में बीमारी फैलाने के अवसर बहुत अधिक हो जाते हैं। श्रोता साथियों, यदि हम मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव की बात करें तो वर्तमान में एकल परिवार का जमाना है। लोग दूर दराज के क्षेत्र में जहां आवासीय व्यवस्था के लक्षण या अवसर देखते हैं वहां अपना आवास बना लेते हैं। यही कारण है कि आज दो पहिया, चार पहिया और बड़े आवागमन के भारी वाहनों की संख्या रोज बढ़ रही है। इनकी तेज ध्वनि वाले इंजन, उन इंजनों की घरघराहट, उनके तेज हॉर्न आदि से ध्वनि प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई है। इन सभी कारणों से मानव का स्वभाव और स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। स्वच्छ जल भी हरेक की पहुंच में नहीं है। भारत में लगभग 90% जल प्रदूषित है। श्रोता साथियों, मिट्टी अपने आप में कोई एक मूल पदार्थ नहीं है। डॉक्टर बेनर के अनुसार मिट्टी भूपृष्ठ पर असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों और वनस्पति के योग से बनती है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि मिट्टी मूल चट्टानों और जैव पदार्थों का मिला जुला एक रूप है। हमारे देश में मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को कॉप, दोमट, कछारी अथवा चीका मिट्टी भी कहा जाता है। इसका निर्माण पहाड़ों से नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी के कणों से हुआ है। इस मिट्टी में फास्फोरस, वनस्पति और नेत्रजन जैसे अंशों की कमी है। जहां इसमें इन तीनों अंशों की कमी है वहीं इसमें चूना और पोटाश पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। वर्गीकरण की दृष्टि से यह मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। हमारे देश भारत में जलोढ़ मिट्टी 40% भूमि के भाग पर पाई जाती है। इसका फैलाव पूरे उत्तर भारत के मैदान, डेल्टाई भाग और उसके तटीय भागों में पाया जाता है। उत्तर भारत का संपूर्ण मैदान जलोढ़ मृदा का मैदान कहलाता है। यह बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। श्रोता साथियों, हमारे देश में काली मिट्टी भी पाई जाती है। इसे रेगड़ या कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं। इसकी विशेषता की यदि हम बात करें तो इसका रंग गहरा काला, मध्यम काला होता है और कणों की बनावट बारीक एवं घनी होती है। इस मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि लंबे समय तक यह मिट्टी अपने आप में नमी बनाए रख सकती है। इस मिट्टी में लोहा, चूना, पोटाश, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम पाया जाता है। जब यह मिट्टी पानी के संपर्क में आने के कारण गीली होती है तब यह चिपचिपी वाली अवस्था में होती है और सूखने पर यह दरदरी यानी कि दरारों वाली हो जाती है। सूख कर जब यह फटती है तो इसमें अच्छी खासी दरारें दिखने लगती हैं। यह काली मिट्टी लावा से बनी बेसाल्ट की काली चट्टानों से बनती है। यह कपास और ज्वार उत्पादन के लिए एक बहुत बढ़िया मिट्टी है। श्रोता साथियों, बढ़ती जनसंख्या के कारण शहरीकरण में भी तीव्रता से बढ़ोतरी हो रही है। इसका परिणाम और प्रमाण यह है कि उतनी ही तीव्रता से हरियाली भी समाप्त हो रही है। नई बसाहट के कारण
खुले स्थान धीरे धीरे अब अतीत की बातें बनते जा रहे हैं। इन्हीं सबसे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। शहर जंगलों की ओर खिसकता जा रहा है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के आवास नष्ट होते जा रहे हैं ताकि मानव अपना आवास बना सके। पर्यावरण के साथ यह निरंतर छेड़छाड़ और हस्तक्षेप ही पर्यावरण को हानि पहुंचाना है। भूमि के उपयोग में बदलाव के कारण न केवल मिट्टी प्रदूषित हुई है बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित हुआ है। श्रोता साथियों, इसलिए भूमि हमारे लिए एक प्राकृतिक लेकिन सीमित संसाधन है और उसे औद्योगिक अपशिष्टों से बचाकर ही हम भूमि प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण रोक सकते हैं। इसके लिए हमें भूमि पर खुले में औद्योगिकरण और अपशिष्टों को पटक रखना बंद करना होगा और शुरू करना होगा एक पौधा लगाना और उसकी देखभाल करना। तभी वास्तव में हम मृदा प्रदूषण को रोकने के संदर्भ में कुछ सार्थक कर पाएंगे। तो आइए श्रोता साथियों, इस नेक काम की शुरुआत आज ही से की जाए और अपने घर आंगन में या किसी एक सुरक्षित स्थान में एक पौधारोपण किया जाए और उस पौधे को वृक्ष बनने तक उसकी देखभाल और रक्षा की जाए। तभी हम पर्यावरण के संदर्भ में कुछ सार्थक कार्य कर पाएंगे। श्रोता साथियों, मिट्टी के संरक्षण की बात करते समय हमें यह बात सदा ध्यान रखनी चाहिए कि भूमि हमारे लिए एक प्राकृतिक संसाधन है। वह जमाना बीत गया जब आदि मानव प्रकृति से पदार्थों को जमा कर उनसे अपना जीवन यापन करता था।

अभी आपने सुना कार्यक्रम पर्यावरण, जिसका शीर्षक था मृदा प्रदूषण के दुष्ट प्रभाव, और इसे प्रस्तुत कर रहे थे माइकल होजेस, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए साथियों, अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। अभी आपने सुना एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, इसी के साथ आज्ञा दीजिए ग्लोरिया गांगली को। अगली मुलाकात में आपसे बात करेंगे विवेक पीटर रॉबर्ट। धन्यवाद।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोताओं को आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी की समय सारणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक स्वास्थ्य और बाल जगत। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बाल जगत से, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे बाल कलाकार ईशान खापड़े और उनकी कहानी का शीर्षक है रीना और राजा।

0: रीना के घर के आंगन में एक आम का पेड़ था। उसे उस आम के पेड़ से बहुत लगाव था। वो स्कूल से आकर भरी दोपहर में उस पेड़ के नीचे बैठकर उससे बातें किया करती थी। वह उस पेड़ के साथ ही लड़ती झगड़ती और हंसती खेलती। रीना ने उस पेड़ का नाम राजा रखा था। उसे जब भी कोई उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम पूछता तो वह झट से कहती राजा। राजा मानो पेड़ न होकर उसके लिए सचमुच एक चलता फिरता दोस्त हो। वह जब कभी भी नाराज होती या फिर उसे किसी बात पर मम्मी पापा से डांट पड़ी होती तो वह राजा के पास जाकर ही अपना दुखड़ा रोती। आज भी किसी बात पर उसे मम्मी ने डांटा था। वह अपनी सबसे अच्छे व प्यारे दोस्त राजा के पास चली गई। वह बोली, राजा तुम बहुत अच्छे हो जो मेरी सारे बातें ध्यान से सुनते हो। मम्मी तो बात बात पर गुस्सा करती है, मुझे डांट देती है, वे बहुत गंदी है। अब मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी, तुम देख लेना सच्ची। राजा से बातें करते करते रीना को नींद आने लगी थी और जाने कब वह गहरी नींद में डूबकर सपनों की दुनिया में पहुंच गई। रीना राजा से कह रही थी, राजा आज मम्मी ने मुझे बहुत डांटा, अब मैं उनके साथ नहीं रहूंगी। तुम मुझे आकाश में ले चलो, मैं वहाँ की सैर करूंगी, वहाँ मुझे कोई नहीं डांटेगा। चलो ना मुझे आकाश की सैर कराओ। तो फिर बैठ जाओ मेरी टहनी पर, राजा ने कहा। टहनी उड़ते हुए आकाश में पहुंच गई। वहाँ पर काले काले सफेद बादल थे, कुछ राक्षस जैसे दिखते थे तो कुछ गुब्बारे जैसे, कुछ टॉफी चॉकलेट जैसे दिखते थे और कुछ आम पपीते जैसे। अरे राजा देख ये बादल कितने रंग रूप के हैं, रीना हैरानी से बोली। मैं इन्हें ढक सकता हूँ, ढक कर दिखाऊं, राजा ने पूछा। हाँ हाँ, रीना ने उत्सुकता से हामी भरकर कहा। एक तेज हवा के झोंके से राजा की टहनियाँ हिलने लगी और बादल ढकने उभरने लगा। रीना ताली बजाने लगी। वह बोली, राजा अब हम सूरज के पास जाएंगे। बस कहना भर ही था कि रीना सूरज के पास थी। सूरज तेज गर्मी बरसा रहा था। वह गुस्से में बोली, ए सूरज तुम कितने गर्म हो, तुम्हारे पास आते ही मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तुम बड़े बुरे हो। तुम्हें मेरे पास आने को किसने कहा था, मैंने तुम्हें मेरे घर आने का न्योता तो नहीं भेजा था। जाओ अपने दोस्त की छांव में जाओ, जहां तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी, सूरज कुड़ते हुए बोला। हाँ मेरा दोस्त तो मेरी मदद करेगा ही, लेकिन तुम बुरे हो, रीना ने तन कर कहा। उफ़ रीना, तुम इस गरम मिराज के सूरज के मुंह क्यों लग रही हो, उसे उलझना छोड़ो और जल्दी से मेरे पत्तियों के बीच आ जाओ, राजा ने रीना को समझाया। रीना झटपट राजा की पत्तियों की ओट में आ गई। वह बोली, राजा अब मुझे भूख लग रही है, इतनी सैर करके मैं थक गई हूँ ना, मैं क्या खाऊं? तुम मेरे फल खा लो, फल खाकर अपनी भूख मिटाओ, राजा ने कहा। रीना ने झटपट फल तोड़े और एक टहनी की आड़ में लेटकर फल खाने लगी। वह बोली, राजा ये बहुत मीठे व रसीले हैं, इन्हें खाकर मजा आ गया। भरपेट खाने के बाद वह अंगड़ाई लेते हुए बोली, राजा ज्यादा खाने के कारण मुझे आलस आ रहा है, अब क्या करूं? करूं क्या, कुछ नहीं, मुझे सब पता है तुम सोना चाहती हो, तुम बहुत आलसी हो गई हो, यूं तो तुम मेरे टहनियों की ओट में आराम से सो सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें अभी सोने नहीं दूंगा, अभी हम और सैर करेंगे, देखो सूरज जाने लगा है, चलो अब तुम्हें चांद की सैर करा लाऊं, वरना फिर कहोगी कि घुमाया नहीं, राजा बोला। अच्छा जी चलो चांद की सैर कर आते हैं, तुम्हारी बात तो माननी पड़ेगी, रीना मुस्कुरा कर बोली। दोनों चल दिए। राजा राजा तुम्हारे पत्तियों के बीच से झांकता चांद कितना सुंदर लग रहा है, मुझे पूरा चांद देखना है, आगे चलो ना, रीना उत्सुकतावश बोली। अरे जा रहे हैं ना, तुम थोड़ा सब्र तो रखो, राजा बोला। चांद पर गहरे गहरे गड्ढे हैं। वाह चांद कितना अच्छा लगता है, रीना ने कहा। हाँ रात भी होने को है, अब तुम्हारा घर जाना ठीक रहेगा, चलो घर चलते हैं, कहते हुए राजा ने अपनी बात रखी। क्यों राजा, थोड़ी और सैर करते हैं? रीना ने पूछा।
1: नहीं अब नहीं,
0: रात में मैं तुम्हें जीवन देने वाली ऑक्सीजन गैस नहीं देता हूँ ना, इसीलिए। राजा ने खींचते हुए कहा।
1: अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो, चलो घर चलते हैं,
0: रीना ने कहा और वे लौट पड़े। घर लौटते हुए रास्ते में उन्हें फिर बादल मिले।
2: हम तो बरसेंगे झम झम, धरती को भिगोएंगे झम झमा झम,
0: बादल नाच नाच कर कह रहे थे। उनकी बातें सुनकर रीना राजा से बोली, दोस्त लगता है बारिश होने वाली है, फिर तो हम भीग जाएंगे।
2: हम नहीं, मैं, सिर्फ मैं भीगूंगा, तुम मेरी आड़ में खड़ी हो जाना,
0: बारिश का पानी तुम तक पहुंचेगा ही नहीं,
1: राजा ने मुस्कुरा कर कहा।
0: राजा तुम बहुत अच्छे हो, जानते हो सच्चा दोस्त वही होता है जो दूसरे दोस्त के काम आता है,
2: और तुम तो मेरे काम आते हो, तुम मेरा बहुत ध्यान रखते हो, मुझे बारिश से बचाते हो, मुझे भूख लगने पर फल खाने को देते हो, जीवन देने वाली हवा देते हो और आराम करने के लिए छाया।
0: बस बस मेरी ज्यादा तारीफ मत करो, वरना मुझे खुद पर घमंड हो जाएगा और फिर सब मुझे घमंडी कहकर बुलाएंगे। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा जब लोग तुम्हारे दोस्त को घमंडी कहेंगे?
1: मैं उन सबकी पिटाई करूंगी और डांट लगाऊंगी जो मेरे दोस्त के लिए उल्टा सीधा कहेंगे।
0: राजा क्या अब मैं सो जाऊं? रीना ने भोलेपन से कहा।
2: हाँ हाँ, राजा ने सहमति दे दी, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, सबसे अच्छे,
0: कहकर रीना ने राजा को चूम लिया। तभी उसके ऊपर बारिश की एक बूंद पड़ी। वह बोली,
2: बारिश शुरू हो गई, वे बादल सही कह रहे थे।
0: हाँ बेटा बारिश शुरू हो गई, घर के अंदर चलो, माँ ने उसे उठाते हुए कहा।
1: माँ की आवाज सुनकर रीना आँख मीचते हुए बोली, माँ तुम?
2: हाँ मैं, तुझे लेने आई हूँ, माफी मांगती हूँ, अब नहीं डांटूंगी, अब अंदर चलो,
0: माँ ने कान पकड़ते हुए कहा। रीना समझ गई कि वह सपना देख रही थी। उसने मुस्कुराकर राजा की तरफ देखा, उसके तने को अपनी बाहों से भरकर बोली,
2: थैंक यू दोस्त, तुम सच में राजा हो, मुझे बचाकर स्वयं भीग रहे हो।
0: मम्मी उसे देखकर हैरान थी, उन्हें समझ में कुछ आया नहीं। वे बोली,
2: जल्दी अंदर चलो वरना अपने दोस्त राजा की तरह तुम भी भीगोगी।
0: रीना हंसती हुई मम्मी के साथ अंदर चली गई।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल जगत के अंतर्गत एक कहानी, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे बाल कलाकार ईशान खापड़े, और उनकी कहानी का शीर्षक था रीना और राजा। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं एक बाल गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे बाल गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं बाल जगत, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं हमारी बाल कलाकार मल्लिन जेकब, और उनकी कहानी का शीर्षक है सच्चा सौदागर।

सच्चा सौदागर। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके तीन बेटे थे, सुरेश, महेश और नरेश। सेठ ने अपने लगन और मेहनत से अपार धन संपदा कमाई थी। उसने अपने परिवार को हर ऐशआराम दिया था। उसका व्यापार काफी फल फूल रहा था, परंतु जो जो उसकी उम्र बढ़ रही थी, वह महसूस कर रहा था कि अब उससे ज्यादा दौड़ धूप नहीं हो सकती। उसके बेटे पढ़ लिख कर समझदार हो चुके थे, इसीलिए वह एक बेटे पर कारोबार की जिम्मेदारी डालकर स्वयं आराम करना चाहता था। यो तो उसके तीन बेटे थे, तीनों बुद्धिमान थे और वह अपना व्यवसाय उसी बेटे को सौंपना चाहता था जो अपने काम के प्रति सजग होने के साथ साथ ईमानदारी और मेहनती भी हो। अपना सबसे योग्य उत्तराधिकारी चुनने के लिए उसने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया। उसने कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए मैं अपना कारोबार और संपत्ति किसी एक को सौंपना चाहता हूँ। इसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। तुम तीनों जाओ और कहीं से एक रुपया चुरा लाओ, पर ध्यान रहे कि चोरी ऐसी जगह से करना जहाँ तुम्हें भगवान भी ना देख पाए। तीनों बेटे पिता की बात मानकर रुपया चुराने के विषय में सोचने लगे। सुरेश ने अपने पिता की तिजोरी से हाथ साफ किया तो महेश ने अपनी माँ के पर्स से रुपया निकाल लिया, लेकिन नरेश रुपया नहीं चुरा पाया क्योंकि उसे अपने पिता के कहे शब्द याद थे। उसके पिता ने कहा था कि रुपया ऐसी जगह से चुराना जहाँ पर भगवान भी ना देख पाए। नरेश भगवान में विश्वास रखता था, इसीलिए जानता था कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान विद्यमान नहीं है। अगले दिन तीनों बेटे पिता के सम्मुख उपस्थित हुए। बड़े दोनों बेटों ने अपना अपना रुपया अपने पिता को दिखा दिया और यह भी बता दिया कि सबसे नजर बचाकर उन्होंने किस तरह वह रुपया चुराया। अतः में पिता ने सबसे छोटे बेटे नरेश से पूछा, नरेश तुम्हारा रुपया कहाँ है? नरेश बोला, पिताजी आपने कहा था कि रुपया ऐसी जगह से चुराना है जहाँ भगवान भी ना देख पाए। पिताजी आप तो जानते ही हैं कि भगवान हर जगह हैं, फिर मैं रुपया कैसे चुराता? नरेश की बात सुनकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ और आगे बढ़कर उसने नरेश को गले लगा लिया। परीक्षा में नरेश सफल हो गया था, पर अब भी सेठ पूरी तरह आश्वासित नहीं था, इसीलिए उसने एक और परीक्षा लेने की ठानी। उसने अपने तीनों बेटों को 100-100 रुपये दिए और उनसे कहा कि इन रुपयों से कोई ऐसी वस्तु खरीद कर लाओ जिससे तुम्हारा पूरा कमरा भर जाए। तीनों बेटे रुपया लेकर वहाँ से निकल गए। उनके पास थोड़े से रुपए थे और पिताजी ने शर्त रखी थी कि इन रुपयों से कोई ऐसी वस्तु खरीद कर लाओ जिससे पूरा कमरा भर जाए। सबसे पहले सुरेश पैसे लेकर बाजार गया। रास्ते में उसे सड़क के बीचों बीच एक भिखारी बैठा दिखा। वह भूखा था और खाने को कुछ मांग रहा था। सुरेश काफी जल्दी में था, इसीलिए भिखारी को ठोकर मारकर वह आगे की ओर बढ़ गया। सुबह से शाम तक वह बाजार में भटकता रहा और उसे कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली जिससे कमरे को भरा जा सके। हार कर उसने 100 रुपयों का भूसा खरीद लिया। उसे उम्मीद थी कि इससे कमरा भर जाएगा, पर जब घर लौटकर उसने भूसे का गटर कमरे में पलटा तो उससे केवल फर्श ही ढक पाया। महेश भी रुपया लेकर बाजार को निकला और उसे भी निकलते ही सड़क पर एक बुढ़ा भिखारी मिला। उसने अपना सारा शरीर एक मैले कुचले कंबल से ढका हुआ था। उसने महेश से कहा, मैं भूखा हूँ, मुझे खाने को कुछ दो। महेश पहले से ही परेशान था कि वह इतने कम पैसों से कमरे को कैसे भरेगा। उस पर यह भिखारी आ टपका। गुस्से से उसने उसे लात मारकर एक और धकेल दिया और आगे बढ़ गया। बाजार जाकर वह सारा दिन भटकता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने से पैसों से वह क्या खरीदे जिससे कमरा पूरा भर जाए। बहुत सोच विचार कर
उसने 100 रुपयों की रुई खरीद ली और कमरे में ले आया। रुई से कमरे का एक कोना भी नहीं भर पाया। दोनों भाइयों के लौट आने पर नरेश 100 रुपये लेकर बाजार गया। उसे भी सड़क पर एक भूखा भिखारी बैठा मिला। नरेश ने भिखारी को बिठाकर पेट भर खाना खिलाया और उसके बाद बचे हुए पैसे लेकर बाजार गया। बाजार जाकर उसने एक बड़ी सी मोमबत्ती और माचिस खरीदी। मोमबत्ती लाकर जब उसने अंधेरे कमरे में जलाई तो उसकी लौ बत्ती से पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। रात को सेठ अपने तीनों बेटों के कमरे में मुआयना करने पहुंचा। सबसे पहले वह सुरेश के कमरे में गया। सुरेश के कमरे में थोड़ा सा भूसा पड़ा था। फिर वह महेश के कमरे में गया। उसने देखा कि महेश के कमरे में एक कोने में रुई पड़ी है और अधिकांश कमरा खाली है। अंत में जब सेठ अपने सबसे छोटे बेटे के कमरे में गया तो यह देखकर गदगद हो गया कि पूरा कमरा प्रकाश से भरा हुआ है। नरेश अपनी दूसरी परीक्षा में भी अव्वल आया था, इसीलिए सेठ ने तीनों बेटों को अपने कमरे में बुलाया। उसने घोषणा की कि दोनों ही परीक्षाओं में नरेश उत्तीर्ण हुआ है, इसीलिए उसने थोड़े से पैसों में सबसे अच्छा सौदा किया। उसके मन में गरीब दीन दुखियों के लिए दया की भावना भी है, क्योंकि भिखारी के रूप में सेठ ही उन्हें रास्ते में मिला था। इस प्रकार सेठ जी ने अपना सारा कारोबार अपने सबसे छोटे बेटे नरेश के नाम कर दिया।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल जगत के अंतर्गत एक कहानी, जिसे प्रस्तुत कर रही थी हमारी बाल कलाकार मदलिन जेकब, और उनकी कहानी का शीर्षक था सच्चा सौदागर। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, अब हम अपने समय सारणी के अनुसार हमारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक से, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: धार्मिक और नेक परिवार में बालक ईसा बढ़ते गए। उनमें बुद्धि और बल का विकास होता गया। ईसा का ये परिवार धन धान्य से भले ही निर्धन था, मगर ईश्वर की कृपा और उनके आशीर्वाद से भरपूर था। ईसा के पालक अन्य यहूदियों के समान पास्का पर्व मनाने यरूशलेम के मंदिर जाया करते थे। ईसा की उम्र इस समय 12 वर्ष के लगभग हो चली थी। पहली बार वे इस लंबी यात्रा पर अपनी माता मरियम व संरक्षक यूसुफ के साथ पैदल ही निकले। अपने मित्रों के साथ ईसा का परिवार 7 दिन तक यरूशलेम में रहा। इस समय अपने पालकों को बगैर बताए ईसा वहीं रुक गए, जबकि उनके माता पिता नाजरेथ लौटने लगे। ईसा वहां निर्धनों व बीमारों को देखने गए। वे कुछ शिक्षकों और पुरोहितों से भी मिले, जो ईसा की बुद्धि व ईश्वरीय ज्ञान से चकित थे। इसलिए उन्होंने मंदिर में ईसा को आम लोगों के सामने परखना चाहा। उधर मरियम और यूसुफ ईसा को अपने साथ न आया देख दंग रह गए। उनकी तलाश की गई।
1: यूसुफ, ईसा तो कहीं भी नहीं है।
2: कहीं नहीं है, फिर ईसा कहाँ रह गए? मरियम, तुमने सारे कुटुंबियों के यहाँ तलाश किया ना?
1: एक एक से पूछकर आ रही हूँ। यूसुफ, मुझे डर है, कहीं ईसा को कुछ हो तो नहीं गया?
2: नहीं नहीं, घबराओ नहीं मरियम, हम यरूशलेम वापस चलते हैं, हो सकता है वो वहीं हो।
1: ईसा के बगैर ये रास्ता भी कितना लंबा लग रहा है, काटे ही नहीं कटता। हे ईश्वर, अपने बेटे की रक्षा करना। पता नहीं कहाँ है ईसा।
2: ईसा, ईश्वर हमारे बेटे की रक्षा जरूर करेंगे मरियम। ईसा तो ईश्वर के बेटे हैं, भला वे उसे संकट में कैसे छोड़ सकते हैं?
0: यरूशलेम में ईसा को तलाशा गया। कुछ लोगों ने उस अद्भुत बालक को देखे जाने के बारे में बताया भी, मगर कोई नहीं जानता कि अब वो बालक कहाँ होगा।
1: हो सकता है ईसा मंदिर में ही हो।
2: मंदिर में?
1: हाँ।
2: आओ, वहीं चलते हैं। आओ।
1: यूसुफ।
2: हाँ?
1: वो रहा ईसा।
2: कहाँ?
1: वो।
2: अरे ये क्या, ईसा तो पुरोहितों और शास्त्रियों के बीच बैठा उनसे बातें कर रहा है।
1: आओ आओ, हम भी उसकी बातें सुनते हैं।
2: हाँ।
3: भला आपको कैसे मालूम है कि मसीह आ गए हैं? अरे मसीह तो शान शौकत के साथ आएंगे और अपने लोगों को रोमियों से छुटकारा दिलाएंगे।
4: मसीह आ चुके हैं और आप सबों के बीच उपस्थित हैं, मगर उस मसीह को अस्वीकृत कर मार डाला जाएगा। मसीह जिसने इस धरती पर जन्म ले लिया है, उसे पूर्व देश के 3 मंजूषी अपने उपहार भी सौंपा है। मसीह मानवता को परखने और उद्धार के लिए आ गए हैं।
1: आओ यूसुफ, हम ईसा के पास चले।
2: चलो।
1: ईसा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो हम तुम्हें ढूंढ कर थक गए हैं और तुम यहाँ हो।
4: मुझे ढूंढने की क्या जरूरत थी? क्या आप नहीं जानते थे कि मैं अपने पिता के घर निश्चित होऊंगा?
2: हमें माफ कर दो बेटे, और देखो अब घर चलो, तुम्हारी माँ बहुत थक गई है।
0: शास्त्री व पुरोहित अपने द्वारा हासिल ज्ञान के दर्प से इतने चूर थे कि उन्होंने ईसा को नहीं पहचाना। अपने घमंड के अंधकार ने उन्हें ईसा की शिक्षाओं व जो कुछ वे कह रहे हैं पर यकीन न करने दिया। यदि ये शास्त्री विनम्र व सत्य जानने को इच्छुक होते तो ईसा के तर्क उन्हें समझ भी आते। जबकि वही मरियम और यूसुफ, जिनसे स्वयं ईसा ने अपने को छुपा लिया था, इतने दुखी व चिंतित थे कि कैसे भी हो उन्हें पालें। लेकिन वास्तव में शास्त्री व ज्ञान के दर्प में डूबे लोग क्या ईश्वर की आशाएं भूल सत्य देखने से वंचित नहीं रह गए थे। उधर नाजरेत वापस आने के बाद ईसा घर ही अपनी माता व संरक्षक यूसुफ के साथ रहने लगे। वे घर के काम में मदद देते और अपने पालकों के साथ प्रार्थना में मग्न। उम्र के साथ साथ उनके चेहरे से ईश्वरीय महिमा का फूटता प्रकाश बढ़ने लगा, मगर वे अपने पालक के प्रति नम्र, प्रिय और आज्ञाकारी रहे। युवक ईसा अपने आसपास के निर्धनों और बीमारों को नित्य मिलते जाते। अपनी बातों से वे लोगों की आध्यात्मिक व शारीरिक रूप से मदद करते। ईसा लोगों को दुख संकट में धन धान्य से नहीं वरन धैर्य और साहस की शिक्षा दे राहत दिलाते।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVM मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआं पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, हमारी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम स्वास्थ्य का। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य के अंतर्गत वार्ता जिसका शीर्षक है 40 की उम्र में स्वास्थ्य की देखभाल, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

साथियों नमस्कार। स्वास्थ्य और पर्यावरण कार्यक्रम के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर आज के हमारे कार्यक्रम में हम आपको जिस स्वास्थ्य संबंधी विषय को लेकर बताने वाले हैं वो है भी उतना ही दिलचस्प। जी हाँ, आज का हमारा स्वास्थ्य और पर्यावरण कार्यक्रम केंद्रित है 40 की उम्र में स्वास्थ्य की देखभाल को लेकर। देखा आपने, आपके परिवार में जितने भी व्यक्ति 40 के पार हैं या फिर 40 के होने वाले हैं या बिल्कुल 40 के हैं, उन सभी के चेहरे कैसे खिल गए। जी हाँ साथियों, इस उम्र को प्रौढ़ावस्था की शुरुआत भी कहा जाता है और इस उम्र में बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल को लेकर बहुत ज्यादा सजग रहें, बहुत ज्यादा जागरूक रहें। साथियों, वैसे देखा जाए तो स्वास्थ्य को लेकर हम सभी को जागरूक तो पूरे जीवन भर रहना ही चाहिए, लेकिन यदि बात 40वीं वर्षगांठ की हो तब हम सभी के लिए ये एक बहुत ज्यादा जागरूक हो जाने वाला विषय हो जाता है, होता है ना। तो साथियों, इसकी वजह भी ये होती है कि यदि हम युवावस्था में हैं तब सबसे ज्यादा अपने करियर और गृहस्थी को लेकर के, अपने जीवन में सेटल होने की बात को लेकर हम बहुत व्यस्त रहते हैं। और यही वो समय होता है जब व्यक्ति अपनी इच्छा से बहुत ज्यादा, व्यक्ति अपनी क्षमता से बहुत ज्यादा जाकर काम करता है और सबसे ज्यादा उपेक्षित होती है उसकी सेहत। यही वजह होती है साथियों कि 40 की उम्र लगते लगते व्यक्ति को बीमारियां घेरने लगती हैं। 40 का होने पर काम का दबाव बहुत ज्यादा होता है, आपके परिवार में, गृहस्थी में आपको बच्चों के भविष्य की चिंता बहुत ज्यादा होती है। इसके साथ ही जीवन में स्थायित्व लाने का तनाव आपके ऊपर होता है। स्थायित्व लाने का तनाव यानी अब आपकी कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अब आपके पास में कोई बैंक बैलेंस होना चाहिए, अब आपके जीवन में आप उन्नति की नहीं धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर की सीढ़ियों की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोई एक ऐसा साधन भी होना चाहिए जिससे बुढ़ापे की व्यवस्था अच्छी हो सके, है ना। तो साथियों, ऐसे में उनकी हेल्थ के लिए स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, तनाव बहुत ज्यादा होता है। साथ में ही शरीर, युवावस्था की जो सक्रियता होती है, युवावस्था में जो आपके पास ऊर्जा होती है, उससे भी वंचित होने लगता है। तो साथियों, इस प्रकार से 40 की उम्र में चौतरफा हमला आपके शरीर पर होता है और उससे बचाव के लिए आपको बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा नियमित दिनचर्या की जरूरत है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि 40 की उम्र में शरीर में परिवर्तन क्या होते हैं। सामान्य तौर पर देखा जाए तो विभिन्न शारीरिक क्रियाएं और मांसपेशियों की मजबूती 40 की उम्र में कम होने लगती है, इसलिए इस अवस्था के आने से पहले ही आपको जागना बहुत जरूरी है। याद रखें कि यदि आपकी हेल्थ में, आपके स्वास्थ्य में यदि सेंध लग गई तब आप न केवल परिवार पर बोझ बन जाएंगे, जो परिवार आप पर निर्भर है, बल्कि आप उस आराम और उस सुकून से भी वंचित हो जाएंगे जिसे हासिल करने के लिए 40 की उम्र आने तक आपने इतनी जीतोड़ मेहनत की है। इसलिए साथियों, बहुत जरूरी है कि आप उन चेतावनी के संकेतों को, उन अलार्म सिग्नल्स को बहुत अच्छे से पहचाने और अपनी सेहत को बरकरार रखें, बहुत सारी सावधानियां बरतें और नियमित दिनचर्या व्यतीत करें। सबसे पहली बात तो यह है साथियों, सीडेंट्री लाइफस्टाइल से बचें। सबसे पहली बात है अपनी उम्र और अपनी क्षमता के हिसाब से अपने रहन सहन, अपने खान पान और अपनी दिनचर्या को ढालें। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके जीवन शैली का स्ट्रेस या दबाव, तनाव या फिर सीडेंट्री लाइफस्टाइल, या जिसे हम कह सकते हैं अपने शारीरिक श्रम से रहित जीवन शैली, इन सभी का आपस में बहुत गहरा संबंध है। इन्हीं कारणों के चलते भविष्य में ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, डायबिटीज या मधुमेह, डिप्रेशन या अवसाद, पोस्चर या फिर जोड़ों की समस्याओं से आप पीड़ित हो सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि जीवन में आप नियमित व्यायाम को सबसे अहम स्थान दें। सुबह शाम 3 से 4 किलोमीटर की पैदल सैर करें, तैरने जाएं। इसके साथ ही सबसे ज्यादा जरूरी है तनाव से दूर रहें और तनाव को उत्पन्न जितने भी साधन करते हैं उनसे भी आप दूर रहें। साथियों, यदि हमारे कुछ श्रोता योग और ध्यान भी करते हैं तो उनके लिए ये अच्छी खबर है कि ये बहुत अच्छा साधन है तनाव से दूर रहने का। तनाव को दूर करने के साथ ही आपको ध्यान उन चीजों की ओर भी देना है कि हम उन कारकों को भी पहचानें
जिनके चलते आपको तनाव होता है। सबसे पहला तनाव हमें क्यों होता है? क्योंकि हम अपने आर्थिक लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाते। हम एक सीमित अवधि में बहुत ऊंचे आर्थिक लक्ष्य यदि रखेंगे और यदि हमें पता है कि हमारी आर्थिक क्षमताएं बहुत सीमित हैं, ऐसे में हम उन्हें कैसे पा सकेंगे? सोचने की बात यह है साथियों कि आर्थिक लक्ष्य ही जीवन में सब कुछ नहीं होता। हमें यदि सही जीवन शैली के साथ एक अच्छा जीवन जीने को मिलता है, एक ऐसा जीवन की अवधि जीने को मिलती है जिसमें हमारे परिवार का सुख सर्वोपरि है, हम अपने मनपसंद काम कर पा रहे हैं और सबसे पहली बात हम खुश हैं, तब साथियों यही तो जीवन की सार्थकता है। आपको जीवन के 40वें पड़ाव पर आने के बाद सबसे पहले तो यही सोचना है कि क्या आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। हम सभी के साथ होता यही है कि हम आने वाले समय को अच्छा बनाने के लिए अपने वर्तमान समय में अपनी क्षमता से ज्यादा मेहनत करते हैं। हम ऐसे ऊंचे लक्ष्य अपने सामने रखते हैं जो कि प्रतियोगिता से प्रेरित होते हैं। यदि आपके साथियों को कुछ ऐसे अवसर मिल गए हैं जिसके चलते कम मेहनत के चलते कम अवधि में वे आपसे आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा आगे निकल गए हैं, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। सफलता का पैमाना आपके साथियों के लिए भले ही धन हो, लेकिन आपके सामने सफलता का पैमाना होना चाहिए जीवन की गुणवत्ता। प्रत्येक व्यक्ति जीवन को अलग प्रकार से परिभाषित करता है। आपको ये देखना है कि जीवन की सफलता को लेकर आपका पैमाना क्या है, जीवन की गुणवत्ता को आप किस परिप्रेक्ष्य में लेते हैं। तो चलिए साथियों, एक बार फिर हम चलें 40वें पड़ाव की ओर, शारीरिक परिवर्तनों की ओर। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि युवावस्था के दौरान शरीर अनेक प्रकार के परिवर्तनों से रूबरू होता है। पुरुषों में भी कई प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होते हैं। धमनियों में जमा कोलेस्ट्रॉल और फेफड़ों में जमा सिगरेट के धुएं से निकला हुआ कार्बन हार्ट अटैक, दमा और ब्रोंकाइटिस जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है। यदि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है और आपकी शारीरिक व्यायाम रहित जीवन शैली है, तब आपको आर्थराइटिस होने की आशंका होती है। आपको कई बार पढ़ने के लिए चश्मा भी इसी उम्र में लगता है साथियों, इसलिए बहुत जरूरी है कि 40 वर्ष की आयु में पहुंचने से पहले आप कम से कम एक बार सभी जरूरी जांच और मेडिकल चेकअप जरूर करा लें। इन जांचों से जहां एक ओर यदि शरीर के भीतर अंदर ही अंदर कोई समस्या जन्म ले रही होगी तो वो समय रहते जल्दी से पकड़ में आ जाएगी और उसे आगे बढ़ने से रोका भी जा सकता है। इसके साथ ही यदि जांच की रिपोर्ट आपने सही समय पर पा ली है तो ये आगे के लिए आपकी बेसलाइन का काम करेगी, जिससे भविष्य में की गई जांच की रिपोर्ट की तुलना करने और निष्कर्ष निकालने के लिए आपके डॉक्टर को बहुत मदद मिलेगी। तो साथियों, यदि आप 40 की उम्र में हैं और आपको करवानी है कुछ जरूरी जांचें, तो इनमें शामिल होंगी लिपिड प्रोफाइल, ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, लीवर फंक्शन टेस्ट, ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, एब्डोमिनल सोनोग्राफी, टीएमटी, यूरिन और कंप्लीट हीमोग्राम। इसके साथ ही महिलाओं के लिए जो जांचें जरूरी हैं उनमें है बोन मेरो डेंसिटी, सर्वाइकल पेप्समेयर और मेमोग्राफी। ये सारी जांचें सामान्यतः कम से कम एक बार करवाकर रखनी चाहिए। इसके साथ ही साथियों, यदि आपकी फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री है, इसका अर्थ है यदि आपके परिवार में किसी को भी मधुमेह है, तो वर्ष में एक बार या फिर दो वर्ष में एक बार खून में शक्कर की जांच जरूरी है। इसके साथ ही यदि परिवार में किसी को स्तन कैंसर हुआ हो तो लड़कियों को साल में एक बार मैमोग्राफी जरूर करवानी चाहिए। यदि साल में एक बार आंखों की जांच और कानों की जांच भी करा सके तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा साल भर में एक बार अपने डॉक्टर से अपना कम्प्लीट चेकअप करवाएं और जो जांचें वे जरूर समझें उन्हें बिल्कुल करवाएं। साथियों, यदि हम खान पान की बात करें तब 40 की उम्र में पहुंचने के बाद बहुत जरूरी होता है आपका खान पान में संयम रखना। सबसे पहली बात है अपने वजन पर ध्यान दें। घी, तेल, चिकनाई युक्त और मीठे भोज्य पदार्थों से जितना हो सकता है उतना बचें। नमक और शक्कर दोनों की मात्रा अपने भोजन में सीमित रखें।
भोजन में पर्याप्त मात्रा में हरी सब्जियां, सलाद और अन्य रेशेदार पदार्थ लें। इसके साथ ही यदि आपने कर्ज लिया है तो उसे उतारने की क्षमता का ध्यान दें। साथ में ही परिवार को ध्यान दें, दोस्तों के साथ समय गुजारें और जीवन का भरपूर आनंद लें। मनोरंजन और चेंज के लिए बाहर जाएं और इस समय अपने करियर और कारोबार की चिंताओं को छोड़ दें। यदि हम संक्षेप में कहें तो 40 की उम्र में जीवन का भरपूर आनंद लें।

श्रोता साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक था 40 की उम्र में स्वास्थ्य की देखभाल, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, अब आप सभी को हमारे स्वास्थ्य के बारे में तो समझ आ ही गया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप इन बातों को अपने करीबी परिजनों को भी बताएंगे। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दे आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को, और रिकॉर्डिस्ट है आकाश जांगरा। नमस्कार।

दोस्तों, रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं आपकी दोस्त ग्लोरिया गांगले। दोस्तों, अभी की सभा 11 से 12 में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम कृषि जगत, कानूनी ज्ञान, वसुदेव कुटुम्बकम, नाटक और भक्ति गीत। तो आइए दोस्तों, हम सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: मुखिया जी, कृषि जगत कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: आपका भी स्वागत है और अपने श्रोताओं का भी स्वागत है।
0: पिछले कार्यक्रम में हम लोग बात कर रहे थे खास करके धान के खरीद के मसलों पर।
1: हाँ, हाँ।
0: राज्य में धान खरीद का सिलसिला कब से शुरू किया गया मुखिया जी? खासकर अगर मैं बात करूं इस वित्तीय वर्ष की, तो कब से ये शुरू किया गया है?
1: देखिए, धान की सरकारी खरीद 15 नवंबर से शुरू की जाती है।
0: अच्छा अच्छा,
1: ठीक है। पिछले वर्ष भी शुरू हुई। पंचायतों के पैक्स और प्रखंड स्तर पर राज्य खाद्य निगम के केंद्र से धान की खरीद की जानी है
0: जी।
1: सभी पैक्सों में धान खरीद के लिए सेंटर नहीं खुल सके हैं।
0: आखिर कितने सेंटरों पर धान की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और अभी तक कितने सेंटर धान की खरीद का कार्य कर रहे हैं?
1: राज्य में 6098 पैक्सों में खरीद सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया
0: जी।
1: 16 जनवरी तक मात्र 1074 केंद्र ही खुल सके
0: जी।
1: इन केंद्रों के माध्यम से अब तक मात्र 33,000 टन ही खरीदारी हुई है। SFC के प्रखंडवार खुले सेंटरों पर 27,000 टन धान की खरीदारी की जा सकी है।
0: सरकारी केंद्रों पर धान की खरीद नहीं हो पा रही है, इसके पीछे क्या और कोई दूसरा वजह भी हो सकती है मुखिया जी? कहीं सरकार की नीति तो इसके लिए उत्तरदायी नहीं है?
1: खरीदारी नहीं होने के मामले के पीछे जो कारण है उस पर गौर करना जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: पहली बात यह है कि धान खरीद की गति धीमी रहने का मूल कारण पर्याप्त संख्या में खरीद केंद्र का नहीं खुलना है
0: जी। जी,
1: हर पंचायत में एक पैक्स केंद्र है। 2 महीने बाद मात्र 1000 पैक्सों से ही धान की खरीदारी हो रही है
0: जी।
1: ऐसे में अगर कोई किसान धान बेचना चाहे तो उसे दूसरे पंचायतों में जाना होगा। इससे किसानों का ट्रांसपोर्टेशन खर्च बढ़ जाता है, यानी परिवहन का खर्चा बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अगर दूसरे पंचायत में जाकर के अपनी धान को बेचेंगे तो परिवहन खर्च बढ़ेगा।
1: हाँ।
0: क्या खरीदारी के पीछे एक कारण यह भी है मुखिया जी कि इस वर्ष धान का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से कम हुआ है?
1: हो सकता है। पिछले साल राज्य में 80 लाख टन धान का उत्पादन हुआ था, तब राज्य सरकार ने लगभग 18 लाख टन धान की खरीदारी की थी
0: जी।
1: इस साल धान का उत्पादन लगभग 50 लाख टन ही हुआ है।
0: एक शिकायत जो सुनने को मिल रही है कि वह यह है कि क्रय केंद्रों पर किसानों से नमी के नाम पर, खास करके कि धान में नमी है, ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि नमी ज्यादा है, इसीलिए यह बात बन नहीं पा रही है।
1: देखिए, वो नमी के नाम पर जो है धान ज्यादा लेते हैं वो।
0: अच्छा,
1: है ना, ये शिकायत है जिसको सुखन बोलते हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: ये सुखन चला गया, यानी जब सुखाने के बाद इसका वजन कम होगा
0: जी जी जी,
1: तो उतना ही वो उतनी गिनती का पैसा देते हैं, भुगतान करते हैं
0: जी।
1: तो बिल्कुल ये बात आप सही कह रहे हैं। क्रय केंद्रों पर किसानों से नमी के नाम पर 14 से 17% अधिक धान लिया जा रहा है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: तो यही नहीं, कभी कभी वापस करने या 1-2 दिन बाद आने की बात कह दी जाती है
0: जी।
1: तो घर पर व्यापारी से धान बेचने में किसानों को ये परेशानी नहीं होगी।
0: किसानों को धान क्रय केंद्रों पर जो मूल्य मिलते हैं उनका हिसाब किताब क्या है?
1: बाजार में धान का रेट 1200 से 1250 रुपए प्रति क्विंटल है। क्रय केंद्र पर सरकार ने सामान्य किस्म के धान की कीमत 1310 रुपए और उन्नत किस्म के धान के लिए 1350 रुपए निर्धारित किए हैं
0: जी,
1: जबकि व्यापारी को बेचने पर उन्हें 1200 से 1250 रुपए प्रति क्विंटल मिल जाते हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: इसमें परिवहन का खर्च नहीं आता और न नमी के नाम पर अधिक धान देना पड़ता है।
0: अच्छा,
1: यानी अब जब वो घर पे व्यापारियों को बेचते हैं तब
0: जी जी,
1: इसलिए किसान व्यापारी के हाथों धान बेचने को प्राथमिकता देते हैं
0: जी।
1: अधिक दाम मिलने के कारण उत्तर बिहार के कुछ जिलों से नेपाल में भी धान बेचने की खबरें आती हैं।
0: धान का तो ये हाल है मुखिया जी, गेहूं की खेती को मौसम की बड़ी चुनौती झेलनी पड़ रही है, इसका किस तरह का असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा?
1: वीरेंद्र भाई, मौसम के बदलते मिजाज ने कृषि वैज्ञानिकों के सामने बड़ी चुनौती पेश कर दी है
0: जी।
1: देश में उपलब्ध गेहूं के मौजूदा बीज बदलते मौसम में पूर्वी भारत में अच्छी पैदावार दे पाने में कामयाब नहीं है। सर्दी में तापमान ऐसे ही चढ़ता रहा तो इस क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन कम पड़ जाएगा।
0: आखिर इसके पीछे मूल वजह क्या है मुखिया जी? क्या ये सब कुछ तापमान का ही असर है?
1: इस बार भी गेहूं की बुआई के समय 45 दिनों तक न्यूनतम तापमान लगातार अधिक रहने से अंकुरण बहुत अच्छा नहीं हो पाया।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: अब सारा दारोमदार फरवरी में फसल में फूल लगने के समय के न्यूनतम तापमान पर है
0: जी।
1: उस समय न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक गया तो पैदावार 30% तक प्रभावित हो जाएगी।
0: वैज्ञानिकों का इस मसले पर क्या कहना है? क्या इस वर्ष गेहूं के उत्पादन पर विशेष असर पड़ने की संभावना है?
1: भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों का मानना है कि अब तक के मौसम को देखते हुए क्षेत्र में इस बार गेहूं का उत्पादन 15% तक घटेगा।
0: अच्छा, यह असर किन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा मुखिया जी? क्या इसका प्रभाव पूरे भारत में देखने को मिलेगा या फिर कुछ विशेष क्षेत्रों में?
1: पूर्वी भारत के राज्यों यानी बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम, पूर्वी उत्तर प्रदेश के 27 जनपद जिनको हम पूर्वांचल पुकारते हैं
0: जी जी,
1: में से मुख्यतः बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही गेहूं की खेती बड़े रकबे में की जाती है।
0: वैसे तो गेहूं की खेती का प्रमुख केंद्र तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार ही है मुखिया।
1: हाँ,
0: पिछले 2 साल से इस क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन 10-15% तक कम हुआ है। इस क्षेत्र को देखते हुए उन्नत बीज तैयार करने की भी जरूरत महसूस की जाती है।
1: देखिए, ये ऐसी बात है कि बारिश के बाद कड़कड़ाती ठंड से सूबे के
0: वो तो बात है मुखिया जी, मौसम की जहां तक बात है तो उसी से एक फसल पर बहुत ज्यादा मार पड़ने वाली है और इसकी आशंका अभी से ही व्यक्त की जा रही है।
1: हाँ।
0: और वह फसल है आलू की फसल। तो कड़कड़ाती ठंड की मार आलू की फसल पर क्या असर दिखाएगी?
1: बारिश के बाद कड़कड़ाती ठंड से सूबे के आलू किसानों को बड़ा झटका लगा है।
0: अच्छा,
1: खेतों में लगे आलू की 30% फसल बर्बाद होने की आशंका है।
0: ये असर किन किन क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं मुखिया जी?
1: ये असर वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर में 80% आलू की फसल पिछैता झुलसा की चपेट में आ गई है।
0: अच्छा,
1: 10 जनवरी के आसपास हुई बरसात ने आलू को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया था
0: जी।
1: उसी समय केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र ने तो हॉर्टिकल्चर को आलू की फसल पर फफूंदनाशी रसायन का छिड़काव कराने के लिए पत्र लिखा था, वहां के डायरेक्टरेट को लिखा था हॉर्टिकल्चर के
0: जी। तो क्या यह खतरा अभी पूरी तरह से टल चुका है?
1: वो खतरा ठीक से टला भी नहीं था कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह से 3 जनवरी तक पड़ी कड़कड़ाती ठंड के साथ धूप नहीं निकलने से आलू को भारी नुकसान की आशंका जताई गई।
0: अच्छा,
1: केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र के पदाधिकारियों ने बताया है कि वैशाली, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले में फसल पिछैता झुलसा की चपेट में है।
0: अगर यही दशा अन्य क्षेत्रों में रहा तो उसका किस तरह का असर देखने को मिलेगा?
1: ऐसा अन्य क्षेत्रों में भी रहा तो इस आलू की भारी कमी सूबे को झेलनी पड़ेगी
0: जी जी,
1: है ना। पिछैता झुलसा से 10% तक नुकसान हुआ है।
0: तो इससे बचाव के लिए किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं?
1: अभी 10 दिन या उससे अधिक खेतों में आलू छोड़ने वाले किसान साइमोक्सालिन मैनकोजब रसायन युक्त फफूंदनाशी का छिड़काव करें।
0: अच्छा,
1: साइमोक्सालिन और मैनकोजब, ये 2 रसायन हैं जो फफूंदनाशी हैं
0: जी जी,
1: इनका छिड़काव करना होगा। प्रति हेक्टेयर 2.5 किलोग्राम ये रसायन 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें
0: जी।
1: इस छिड़काव में पूरे पौधे को भिगोने के साथ ही पत्ती के निचले हिस्से को भी भिगोना जरूरी है।
0: ये तो हो गई आलू की फसल की बात मुखिया जी, अब थोड़ा सा धान की फसल का भी जायजा दिया जाए। सरकार ने दावा किया है कि दिसंबर के पहले हफ्ते से ही धान की खरीद का जो मामला है वो शुरू किया जाएगा।
1: दिसंबर के पहले सप्ताह से धान की विधिवत खरीद शुरू होने की बात थी, ऐसा सरकार का दावा था
0: जी।
1: इसके पूर्व 23 नवंबर को खरीद की प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाने की बाबत मुख्य सचिव के साथ एक बैठक भी हुई थी
0: जी।
1: एसएफसी के पैक्सों के बकाया भुगतान का भी निर्देश दिया गया था।
0: एक बात ये बताइए मुखिया जी कि धान की खरीद में ऐसा सुनने में बार बार आ रहा है कि बहुत बाधा आ रही है, उसको दूर करने की ये जिम्मेवारी आखिर किसकी है?
1: सहकारिता विभाग धान की खरीद में आ रही बाधाओं को दूर करेगा। इसके लिए सभी पैक्स अध्यक्षों से विचार विमर्श शुरू किया गया है, उनकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। धान की खरीद में प्रदत्त पूंजी राशि में अब कम से कम 45 दिनों का सूद उन्हें मिलेगा, पहले 15 दिनों का ही मिलता था।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी इस जानकारी के लिए। अगले कार्यक्रम में फिर हम लोग खेती किसानी से संबंधित बातें करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।
1: नमस्कार।

दोस्तों अभी आपने सुना कार्यक्रम कृषि जगत और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। दोस्तों आइए सुनते हैं कार्यक्रम कानूनी ज्ञान और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: कपूर साहब और श्याम जी, कानूनी सलाह कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी आपका भी
2: और अपने श्रोताओं का भी।
0: सुनने में आ रहा है कपूर जी कि गृहिणियों को सैलरी देने का प्रस्ताव जो है वह जोर पकड़ता जा रहा है। पति के वेतन का एक हिस्सा देने के कानून बनाने के संकेत भी अब मिलने लगे हैं।
1: देखिए वीरेंद्र जी, पिछले दिनों देश की राजधानी में महिलाओं के सशक्तिकरण पर चर्चा के मुख्य विषय कन्या भ्रूण हत्या, दहेज और बलात्कार जैसे मुद्दे थे
0: जी।
1: लेकिन बैठक में गृहिणियों को वेतन दिए जाने के प्रस्ताव ने बहस की दिशा बदल दी।
0: ऐसा पेशकश जो है किस ओर से किया गया था श्याम जी? क्या भारत सरकार के प्रतिनिधियों की ओर से ये बात उठाई गई थी?
2: हाँ, देखिए पहले केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री थी कृष्णा तीरथ
0: जी। जी
2: तो उन्होंने एक नया कानून लाने की घोषणा की थी जिसके तहत हर घरेलू महिला को उसके पति द्वारा वेतन का 15-20% हिस्सा देना अनिवार्य था।
0: यह जो कानून आने वाला है या अभी बनने वाला है, क्या वह सभी व्यक्तियों पर एक समान से लागू किया जाएगा? कपूर जी,
1: एक दिहाड़ी मजदूर से लेकर एक बड़ी कंपनी का मैनेजर सभी इस कानून के दायरे में रखे जाएंगे। पुरुष को अपनी पत्नी के नाम बैंकों में खाता खुलवाना होगा और हर महीने तय रकम जमा कराने होंगे। इस प्रस्ताव के कानून बनते ही हर पति को अपनी पत्नी को प्रतिमाह एक तय सैलरी देना कानूनन अनिवार्य हो जाएगा।
0: बैंक खाते का प्रावधान क्या किसी तरह का घालमेल रोकने के मकसद से किया गया है या फिर कोई इसकी दूसरी वजह भी है?
2: देखिए, बैंक खाते का प्रावधान किसी तरह के घालमेल रोकने के लिए ही किया गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मंत्रालय का ये प्रस्ताव बड़ा लुभावना और सीधा साधा सा लगता है, लेकिन इसमें भी कई पेच हैं जिसकी वजह से ये उलझ भी गया है। और आप जानते हैं कि फिलहाल सरकार भी बदल गई है केंद्र में
0: जी। जी
2: लेकिन फिर भी इस कानून का अपना महत्व है।
0: इस प्रस्ताव को कानून बन जाने पर किस तरह की समस्याएं उभरने की नौबत आ सकती है या क्या कुछ होने की संभावना नजर आती है?
1: देखिए, घर, दफ्तर और स्त्राव में इन दिनों सरकार द्वारा पतियों को प्रताड़ित करने के लिए इस नए शिकंजे पर बहस छिड़ गई है। पुरुषों का तर्क है कि यदि पति हर महीने पत्नी को वेतन का एक हिस्सा देगा तो घर चलाना कठिन हो जाएगा। तर्क ये भी दिया जा रहा है कि सैलरी दिए जाने से पति पत्नी के संबंध मालिक मजदूर में तब्दील हो जाएंगे। ऐसे हालात में क्या सरकार पत्नी को काम से बर्खास्त करने का अधिकार भी देगी?
0: ये तो पुरुषों के द्वारा दिया गया तर्क है। इस मामले में महिलाओं का क्या कहना है, उनका क्या तर्क है, वह इसे किस तरह से जायज मानती हैं, जायज ठहराती हैं?
2: महिलाओं का तर्क है कि इस तरह का कानून लागू हो गया तो गृहिणियों को पैसों के लिए मोहताज रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी
0: जी।
2: लंबे समय से महिला सशक्तिकरण आंदोलन से जुड़ी रंजना कुमारी का कहना है कि देश में अधिकांश महिलाएं शादी के बाद घर गृहस्थी संभालने में लग जाती हैं, जिससे उनका कोई निश्चित उनकी आय नहीं होती।
0: बिल्कुल,
2: इसलिए इस प्रस्ताव का स्वागत किया जाना चाहिए। दरअसल दुनिया भर के पुरुष, भारतीय मर्द भी इसका अपवाद नहीं है। ये सोच मौजूद है कि घरेलू काम तो कोई काम ही नहीं है। घर की साफ सफाई, बच्चों की देखभाल, खाना बनाना, होमवर्क करवाना, ये सब काम आसानी से हो जाते हैं। औरतें तो बस दोपहर में गप्पे लड़ाया करती हैं। ये सोच है।
0: हकीकत तो यह है कपूर जी कि ये एक घरेलू महिला 10-12 घंटे घर के कामों में व्यस्त रहती है। पुरुष एक दिन घर का काम संभाले तो उन्हें आटे दाल का भाव पता चल जाएगा।
1: आप सही कह रहे हैं वीरेंद्र जी, उसके बावजूद उन्हें तरह तरह की हिंसा का शिकार होना पड़ता है। कभी यौन हिंसा तो कभी घरेलू हिंसा का कहर जारी रहता है।
0: एक बात ये बताइए कि ये बलात्कार से संबंधित जो सख्त कानून बना है
1: जी,
0: उसमें किस तरह की सख्ती का प्रावधान लाया गया है और कैसा है ये कानून श्याम जी?
2: देखिए, इस संबंध में सभी लोगों की राय अलग अलग है
0: जी।
2: तमिलनाडु की स्वर्गीय मुख्यमंत्री जयललिता ने बलात्कार की सजा के मद्देनजर अपने 13 सूत्री कार्ययोजना का ऐलान किया था
0: जी।
2: उन्होंने दोषियों को मृत्युदंड और रसायन के इस्तेमाल से नपुंसक बनाने की वकालत की थी
0: जी।
2: ऐसे लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत मामला दर्ज कराने की भी वकालत की थी। साथ ही उन्होंने केंद्र से कानून में बदलाव लाने का आग्रह किया था
0: जी।
2: या कहा था कि ऐसा करूंगा। इन प्रयासों से तमिलनाडु महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाने की पहल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
0: इस तरह की घटनाएं जहां कहीं भी होती है तो एक मांग काफी गंभीरता से उठाया जाता है कि त्वरित कार्रवाई के लिए महिला अदालत की व्यवस्था की जाए। क्या इस तरह की बातें उनके द्वारा भी उठाई गई थी?
1: दिल्ली में बलात्कार की शिकार लड़की की मौत पर संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। ऐसे मामलों को गैर जमानती बनाने के साथ आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाए, मामलों की सुनवाई के लिए त्वरित महिला अदालत स्थापित करने के लिए कदम उठाए जाएं।
0: अपने राज्य में इस तरह के अपराध को रोकने के लिए किस तरह की कदम उठाई गई है या किस तरह के कदम उठाने का उन्होंने ऐलान किया है?
2: उन्होंने कहा है कि सरकारी इमारतों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि महिलाओं को परेशान करने वालों की पहचान हो सके। यौन उत्पीड़न को गंभीर अपराध मानते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसे मामलों की जांच क्राइम ब्रांच से कराई जाएगी और जांच अधिकारी भी एक महिला ही होगी।
0: जी,
2: पीड़िता को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया जाएगा।
0: एक बात ये बताइए कि ये प्रश्नों को थोड़ा दूसरी तरफ मोड़ते हैं। आजकल एक बात काफी गंभीरता से चर्चा का विषय बना हुआ है कि दरअसल कृषि आय क्या है और किस अधिनियम के द्वारा इसे परिभाषित किया गया है। श्याम जी,
2: साथ ही साथ इस कार्यक्रम में ये चर्चा करना जरूरी होगा
0: जी जी
2: कि कृषि आय के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को रखा गया है।
0: अच्छा अच्छा,
2: कपूर जी, इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना है?
1: श्याम भाई, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(1)(a) में कृषि आय को परिभाषित किया गया है। धारा 2(1)(a) में कृषि आय का अभिप्राय है कि ऐसी भूमि जो भारत में स्थित है और कृषि के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाती है से प्राप्त कोई लगान या राजस्व,
0: इसके अंतर्गत उसे शामिल किया गया है।
1: जी,
0: तो इस प्रकार की जो भूमि है वो किस प्रकार की भूमि इससे संबंधित हो सकती है, किस तरह की भूमि को इसके अंतर्गत रखा गया है? श्याम जी,
2: कोई ऐसी आय जो ऐसी भूमि से कृषि द्वारा प्राप्त हो या खेतिहर द्वारा वस्तु रूप में लगान के प्राप्तकर्ता द्वारा ऐसी प्रक्रिया करने से जो किसी खेतिहर या वस्तु रूप में लगान के प्राप्तकर्ता द्वारा उगाई या प्राप्त की गई उपज को बाजार ले जाने योग्य बनाने में उसके द्वारा आम तौर पर प्रयोग में लाई जाती है।
0: अच्छा अच्छा, तो क्या किसी खेतिहर द्वारा उपज को बेचने पर भी इस तरह का कर लगाया जाता है? कपूर जी,
1: खेतिहर या वस्तु रूप में लगान के प्राप्तकर्ता द्वारा उगाई या प्राप्त की गई किसी ऐसी उपज के बेचने से जिसकी बाबत इस उपखंड के पैरा 2 में वर्णित प्रक्रिया से भिन्न कोई प्रक्रिया नहीं की गई है, ऐसा ही प्राप्त हुआ है।
0: आयकर अधिनियम के द्वारा कृषि से होने वाली आय को क्या कर के दायरे में रखा गया है? समझे,
2: देखिए, आयकर अधिनियम के अंतर्गत कृषि से प्राप्त होने वाली आय को पूर्णतया करमुक्त किया गया है।
0: जी जी,
2: इसलिए कृषि आय को लेकर विभिन्न विवाद समय समय पर होते रहे हैं जिनका निराकरण विभिन्न न्यायालय निर्णयों द्वारा होता रहा है।
0: जी,
2: कृषि आय को लेकर विभिन्न प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते रहे हैं, इसलिए ये विषय इतना महत्वपूर्ण है कि जरा सी चूक से करदाता पर भारी कर दायित्व तो आ सकता है।
0: एक प्रश्न यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है कपूर जी कि कृषि आय पर कर लगाने की शक्ति किसके पास होती है?
1: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246(1) के अनुसार संसद को कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर कर लगाने का अधिकार है और इसी अनुच्छेद की उपधारा 3 के अंतर्गत कृषि आय पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार को है।
0: इस अधिनियम के अनुसार कृषि आय पर कर लगाने की क्या परिभाषा दी गई है? श्याम जी,
2: देखिए वीरेंद्र जी, अधिनियम में कृषि आय की जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार कृषि भूमि से प्राप्त होने वाली आय को कृषि आय माना गया है।
0: अच्छा अच्छा,
2: और जिसमें कृषि भूमि से प्राप्त होने वाला किराया भी शामिल किया गया है, चाहे वो नगद हो या वस्तु के रूप में हो, परंतु कृषि भूमि बेचने से होने वाली आय को कृषि आय नहीं माना गया है।
0: तो फिर कृषि आय होने की अनिवार्य शर्त क्या है? किस आधार पर किसी भूमि से होने वाली आय को कृषि आय नहीं माना जाएगा।
1: कृषि आय होने के लिए अनिवार्य है कि कृषि भूमि अस्तित्व में हो, और बिना कृषि भूमि के होने वाली आय को कर मुक्त माना जाता है वो कृषि भूमि भारत में हो। यही अच्छी या यही कुछ अनिवार्य शर्तें हैं।
0: अगर मान लिया जाए कि वह भूमि भारत में नहीं कहीं विदेश में हो
1: जी,
0: तो उस पर किस तरह की शर्तें लागू होती है श्याम जी?
2: देखिए, अगर कृषि भूमि भारत में नहीं हो, अगर विदेश में हो, तो ऐसी भूमि से होने वाली आय आयकर मुक्त नहीं होगी
0: जी जी,
2: बल्कि वो कर योग्य होगी। ये भी आवश्यक है कि कृषि भूमि का प्रयोग व उपयोग कृषि कार्य करने से ही आय उत्पन्न होगी, तभी आयकर मुक्त होगी, अन्यथा नहीं।
0: एक बात ये बताइए कपूर जी कि यहाँ पर कृषि कार्य का क्या तात्पर्य है?
1: यहाँ कृषि का कार्य का अर्थ है भूमि जोतना, बोना, पानी देना, फसल को काटना, उसको बेचने योग्य बनाना आदि। साधारण शब्दों में ये कहा जा सकता है कि वही कृषि आय कर मुक्त होगी जो कृषि से संबंधित है, परंतु ये कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है, ये कोई नियम नहीं है, और इस मामले में आय कृषि से संबंधित होने के बावजूद उसे आयकर से मुक्त नहीं माना गया है।
0: इस अधिनियम की परिभाषा के आधार पर किस तरह की भूमि पर आयकर लगाया जा सकता है?
2: देखिए, धारा 2(1)(a) के अनुसार कृषि आय की प्रथम व पूर्व शर्त है कि जिस भूमि से किराया या आय प्राप्त की जा रही है वो भारत में स्थित हो तथा उसका उपयोग व उपभोग कृषि के उद्देश्य से किया जा रहा है, अर्थात किराया या आय भूमि से उत्पन्न होनी चाहिए। दूसरा, जिस भूमि से किराया या आय प्राप्त की जा रही है उसका भारत में स्थित होना अनिवार्य है
0: जी,
2: तथा उस भूमि का प्रयोग कृषि भूमि के रूप में किया जाना चाहिए।
0: कपूर साहब और श्याम जी, इस सुंदर जानकारी के लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में फिर कानून से संबंधित चर्चा होगी, अभी हम रुक सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। आपको भी नमस्कार, धन्यवाद।

अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वास मुंबई की। दोस्तों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एंड्रॉयड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्य स्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्य स्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rvasatyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआं पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। आइए साथियों, आप सुनते हैं कार्यक्रम वसुदेव कुटुम्बकम, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं वंदना तिवारी जी, और वह आज हमें संत नामदेव जी के बारे में बताएंगी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं यह वार्ता, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

साथियों नमस्कार। व्यक्ति विशिष्ट कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे संत नामदेव के विषय में। साथियों, संत नामदेव महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत हो गए हैं। इनके समय में नाथ और महानुभाव पंथों का महाराष्ट्र में प्रचार था। संत नामदेव का जन्म सन 1269 या संवत 1327 में महाराष्ट्र के कसारा जिले में कृष्णा नदी के किनारे बसे नरसी बामणी नामक गांव में एक दर्जी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम दामा शेट्टी और माता का नाम गुणाई देवी था। इनका परिवार भगवान विट्ठल का परम भक्त था। नामदेव का विवाह राधाबाई के साथ हुआ था और इनके पुत्र का नाम था नारायण। संत नामदेव ने विसोबा खेचर को गुरु के रूप में स्वीकार किया था। ये संत ज्ञानेश्वर के समकालीन थे और उम्र में उनसे 5 साल बड़े थे। संत नामदेव संत ज्ञानेश्वर के साथ पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण किए, भक्ति गीत रचे और जनता जनार्दन को समता और प्रभु भक्ति का पाठ पढ़ाया। संत ज्ञानेश्वर के परलोक गमन के बाद इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। इन्होंने मराठी के साथ ही साथ हिंदी में भी रचनाएं लिखी। इन्होंने 18 वर्षों तक पंजाब में भगवान नाम का प्रचार किया। आज भी इनकी कुछ रचनाएं सिखों की धार्मिक पुस्तकों में मिलती हैं। मुखबानी नामक पुस्तक में इनकी रचनाएं संग्रहित हैं। आज भी इनके रचित गीत पूरे महाराष्ट्र में भक्ति और प्रेम के साथ गाए जाते हैं। संवत 1407 में आप समाधि में लीन हो गए। साथियों, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत नामदेव, इनके समय में महानुभाव पंथों का महाराष्ट्र में प्रचार था, साथ ही नाथ पंथ भी प्रचार में था। नाथ पंथ अलख निरंजन की योग परक साधना का समर्थक था और बाह्य आडंबरों का विरोधी था, और महानुभाव पंथ वैदिक कर्मकांड और बहुदेव उपासना का विरोधी होते हुए भी मूर्ति पूजा को सर्वथा निषिद्ध नहीं मानता था। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में पंढरपुर के विठोबा की उपासना भी प्रचलित थी। सामान्य जनता प्रतिवर्ष आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी को उनके दर्शनों के लिए पंढरपुर की यात्रा या वारी किया करती थी। ये प्रथा आज भी प्रचलित है। इस प्रकार की वारी या यात्रा करने वाले को वारकरी कहते हैं। साथियों, विट्ठल उपासना का ये पंथ वारकरी संप्रदाय कहलाता है और नामदेव इसी संप्रदाय के प्रमुख संत माने जाते हैं। वारकरी संत नामदेव के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं। मतभेद का कारण ये है कि महाराष्ट्र में नामदेव नामक 5 संत हो गए हैं और उन सभी ने थोड़ी बहुत अभंग और पद रचना की है। आवटे की सकल संत गाथा में नामदेव के नाम पर 2500 अभंग मिलते हैं। लगभग 600 अभंगों में केवल नामदेव या नामा इनकी छाप है और शेष में विष्णुदास नामा की। कुछ विद्वानों के मतों से दोनों नामा एक ही हैं। विठोबा के दास होने से नामदेव ने ही संभवतः अपने को विष्णुदास कहना प्रारंभ कर दिया हो। विष्णुदास नामा का समय शके 1517 है। ये एकनाथ के समकालीन थे। दरअसल बहुत से इतिहासकारों का कहना ये है कि दोनों व्यक्ति भिन्न हैं और अलग अलग समय में हुए हैं। अनेक महानुभावों ने नेमदेव को भी वारकरी नामदेव के साथ जोड़ दिया है, लेकिन अनेक इतिहासकारों में उनके मतों को लेकर भिन्नता है। विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न जातियों का होने के कारण कुछ नामदेव नामक व्यक्तियों का वारकरी नामदेव से कोई संबंध नहीं है। साथियों, नामदेव के समसामयिक विष्णुदास नामा कवि का और पता चला है और ये महानुभाव संप्रदाय के हैं। इन्होंने महाभारत पर ओविबद्ध ग्रंथ लिखा है, लेकिन इनका वारकरी नामदेव से कोई संबंध नहीं है। साथियों, महाराष्ट्रियन विद्वान वारकरी नामदेव को ज्ञानेश्वर के समसामयिक मानते हैं और ज्ञानेश्वर का समय उनके ग्रंथ ज्ञानेश्वरी से प्रमाणित हो जाता है।
इस समय के साथ ही यदि हम देखें तो नामदेव का जन्म शके 1192 में प्रथम संवत्सर कार्तिक शुक्ल एकादशी को नरसी ब्राह्मण गांव में दामा शेठ शिम्पी के यहां हुआ था। यदि हम इनके जीवन वृत्त को देखें तो इनका मन अपने पैतृक व्यवसाय में कभी भी नहीं लगा। प्रारंभ में लूटमार, हत्या ऐसे समाज विरोधी काम किया करते थे, लेकिन एक दिन जब ये अपने उपास्य आवड़िया के नागनाथ के दर्शन के लिए गए तब इन्होंने मंदिर के पास एक स्त्री को अपने रोते हुए बच्चे को बुरी तरह से मारते हुए देखा। उन्होंने जब उस स्त्री से पूछा कि अपने बच्चे को क्यों मार रही हो, तब उसने उत्तर दिया कि इसके बाप को तो डाकू नामदेव ने मार डाला, अब मैं कहां से इसके पेट में अन्न डालूं। नामदेव के मन पर इस घटना का गहरा प्रभाव पड़ा। उसी समय उनके मन में विरक्ति हो गई और उस विरक्ति के वश वे पंढरपुर में जाकर विठोबा के भक्त हो गए। यहीं पर इनकी भेंट ज्ञानेश्वर परिवार से हुई और उन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने नाथपंथी विसोबा खेचर से दीक्षा ली, जो नामदेव पंढरपुर के विट्ठल की प्रतिमा में ही भगवान को देखते थे। वे खेचर के संपर्क में आने के बाद उसे सर्वत्र अनुभव करने लगे। उनकी प्रेम भक्ति में ज्ञान का भी समावेश हो गया। साथियों, ज्ञानेश्वर और नामदेव उन्होंने उत्तर भारत की यात्रा साथ साथ की थी। ज्ञानेश्वर मारवाड़ में कोल दर्जी नामक स्थान तक ही नामदेव के साथ गए। वहां से लौटकर उन्होंने आळंदी में शके 1218 में समाधि ले ली। ज्ञानेश्वर के वियोग से नामदेव का मन महाराष्ट्र से उचट गया और ये पंजाब की ओर चल पड़े। गुरदासपुर जिले के गोबान नामक स्थान पर आज भी नामदेव जी का मंदिर विद्यमान है। वहां सीमित क्षेत्र में इनका पंथ भी चल रहा है। संतों के जीवन के साथ हमेशा कुछ चमत्कारी घटनाएं जुड़ी ही रहती हैं। नामदेव के चरित्र में भी सुल्तान की आज्ञा से इनके द्वारा मृत गाय को जिंदा करना, पूर्वाभिमुख आवढ़िया नागनाथ मंदिर के सामने कीर्तन करने पर पुजारी के आपत्ति उठाने के उपरांत इनके पश्चिम की ओर जाते ही उसके द्वार का पश्चिम दिशा में हो जाना, विट्ठल की मूर्ति का इनके हाथ से दुग्धपान करना, ये सारी घटनाएं समाविष्ट हैं। महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक विट्ठल मंदिर के महाद्वार पर शके 1272 में इन्होंने समाधि ले ली। कुछ विद्वान इनका समाधि स्थान गोमान मानते हैं, परंतु बहुमत पंढरपुर के ही पक्ष में है। विसोबा खेचर से दीक्षा लेने से पूर्व तक आप सगुण उपासक थे, पंढरपुर के विट्ठल की उपासना किया करते थे। दीक्षा के उपरांत इनकी विट्ठल भक्ति सर्वव्यापक हो गई। महाराष्ट्रीय संत परंपरा के अनुसार इनकी निर्गुण भक्ति थी, जिसमें सगुण निर्गुण का कोई भेदभाव नहीं था। इन्होंने मराठी में कई 100 अभंग और हिंदी में 100 के लगभग पद रचे हैं। इनके पदों में हठ योग और कुंडलिनी योग साधना और प्रेमा भक्ति की तालाबेली यानी विहल भावना दोनों मौजूद हैं। निर्गुणी कबीर के समान नामदेव ने भी व्रत, तीर्थ, इस प्रकार के बाह्य आडंबरों के प्रति उपेक्षा और भगवान नाम

0: प्रस्तुत है नाटक फिर धूप खिली। लेखक हैं कृष्णकांत दुबे।
1: मैं लगातार उन्हें कुछ वर्षों से खोज रही हूं, पर वे कहां हैं नहीं मालूम। हां, वे हैं और मैं उन्हें खोज लूंगी, इसका मुझे विश्वास है। आज भी मुझे याद है वे हमेशा ही मुझसे कहा करते थे, तुम्हें एक श्रेष्ठ चित्रकार बनना है, और आज मैं जो कुछ भी हूं उन्हीं के दिए आशीर्वाद हैं, उन्हीं का दिया वरदान है। आज जब लोग यह कहते हैं कुमारी नेहा गर्ग एक विलक्षण चित्रकार है, पत्र पत्रिकाएं जब मेरी चित्रकला के विषय में लिखते हैं, नेहा ऐसी चित्रकार है जिनके चित्रों की सशक्त रेखाएं गाती सी लगती हैं, उनकी रंग रेखाएं ध्वनियां देती हैं, कहीं उनमें आर्तनाद सा लगता है, तब मुझे हमेशा स्मरण आता है अपने चित्रकार गुरु जयंत सर का, जिन्होंने मुझे आर्ट कॉलेज में वह सब कुछ सिखाया जो कि आज मेरे पास है। आज भी मुझे याद है वे हमेशा मुझसे कहा करते थे,
0: देखो नेहा, तुम अपने चित्रों में सुंदर और सार्थक रेखाओं का प्रयोग करो, अपने चित्रों को वो आकृति दो कि उनमें उल्लास नजर आए, वे मनोरम भी हों, उनमें जीवन के अनुभव भी हों। याद रखो नेहा, तुम शिल्प की दुहाई देकर चित्रों की रचना कभी मत करना, तुम ऐसे ही चित्र बनाना जिनमें जीवन की धूप छां हो, उनमें आवेग हो, उनमें कविता भी हो, समझी?
1: हां, जयंत सर के ये शब्द, उनकी दी सीख सदैव मेरे साथ रही है और मैं उन्हें खोज रही हूं, पर वे मिले तो, वे जहां भी होंगे मैं उन्हें वहां से ले आऊंगी। विगत 5 वर्षों से मेरी यही इच्छा कामना रही है, जानती हूं प्रभु मेरी इस कामना को पूर्णता देंगे, यानी फिर मेरे साथ एक नया प्रकाश होगा, फिर धूप खिलेगी।
2: ओ नेहा, आओ आओ कुमारी नेहा गर्ग, सुप्रसिद्ध चित्रकार, तुम तो बहुत दिनों बाद यहाँ इस आर्ट गैलरी में आई हो, लगता है तुम अपनी जगह को, अपनी साधना भूमि को भूल गई, और साथ ही मुझे ये भी लगा कि तुम अपनी सहेली विभा को भी भूल गई।
1: अरे नहीं विभादी, भला यह कैसे हो सकता है, यहाँ तो मुझे आपका स्नेह मिला, जहाँ मेरी चित्रकला सौरी, भला मैं उसे कैसे।
2: तो फिर क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ भाई कि यहाँ पूरे 2 महीने बाद आई हो।
1: विभादी, शायद आपने सुना हो, पिछले दिनों दिल्ली में मेरे चित्रों की प्रदर्शनी लगी थी।
2: हाँ हाँ, मुझे मालूम भी है और खुशी भी है नेहा, मैंने अखबारों में पढ़ा था प्रदर्शनी का विवरण और प्रशंसा भी, और ये भी जाना और अच्छा लगा कि तुम्हारी कई पेंटिंग्स अच्छे दामों पर बिके, लेकिन उसकी अवधि तो सिर्फ 1 सप्ताह थी, बाकी समय?
1: हाँ हाँ, 15 दिन दिल्ली में बीते और बाकी अवधि जयंत सर को खोजती रही। विभादी, आप जानती ही हैं, मैंने जो कुछ पाया यह उन्हीं की कृपा तो है, मैं उन महामानों को भला कैसे भूल सकती हूँ।
2: लेकिन ये कितना अजीब संयोग है नेहा, कि कोई 6 बरस पहले तुमने हमने अपनी इस आर्ट गैलरी में उनके चित्रों की प्रदर्शनी लगाई थी, जिसके अधिकांश चित्र बिक गए थे, बाकी बचे ये 3 चित्र।

0: जिन्हें वे इस गैलरी को भेंट कर गए थे।
1: वे भी तो यहाँ लगे हैं।
0: हाँ, पर कुछ समय पहले एक कला प्रेमी दंपत्ति यहाँ आए थे। उन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव रखा था कि वे जयंत सर के तीनों चित्र 10 लाख में खरीदना चाहते हैं, लेकिन मैं उन्हें कैसे दे सकती थी जब तक कि निर्माता की स्वीकृति न मिले। इसी नाते मैंने भी उनकी खोज की।
1: तो क्या वे मिले?
0: नहीं नेहा, वे जिस घर में रहा करते थे वहां मैंने तलाश की। शायद उन्हें उनका कुछ पता हो कि वो कहाँ गए, लेकिन वो मकान भी औरों के हाथ बिक गया। उनके पड़ोसी भी अब वहां नहीं है और मुझे निराश हो वहां से लौटना पड़ा।
1: और मैं भी उन्हें ढूंढ रही हूँ विभा दी,
0: पर मुझे एक आशा की किरण सी दिखी है नेहा।
1: जरा बतलाइए विभा दी, वह क्या है?
0: नेहा, अभी कुछ समय पहले की बात है। हाँ, तुम चित्रकार विमल को जानती हो ना?
1: बहुत अच्छी तरह। फिर क्या हुआ?
0: यहाँ से कोई 15 किलोमीटर दूर जहाँ पहाड़ियाँ हैं, तालाब है, वहाँ थोड़ी ऊंची टेकरी पर बगीचे से घिरा एक वृद्धाश्रम है।
1: हाँ हाँ, मैंने भी उसके बारे में लोगों से सुना तो है।
0: विमल वहाँ गए थे एक लैंडस्केप बनाने के लिए। वहाँ उन्होंने जयंत सर जैसे किसी इंसान को देखा था, एक झलक भर, पर संकोचवश विमल कुछ पूछ न पाए।
1: तो क्यों नहीं विभा दी, हम दोनों उनकी खोज में वहाँ चलें? प्रभु कृपा हुई तो हम उन्हें वहाँ पा लेंगे।
0: हाँ ठीक है नेहा, बिल्कुल ठीक है, हम वहाँ चलेंगे।
1: दीदी, मुझे विश्वास हो रहा है अब जो कुछ भी होगा वह ठीक ही होगा।
0: अरे भाई नेहा, देखो तो ये सारा इलाका कितना सुंदर, कितना अपरूप है। आसपास छोटी छोटी पहाड़ियाँ कितनी हरी भरी, कितनी सुहानी।
1: लगता है विभादी, इस अंचल को खुद प्रकृति ने अपने हाथों से सवारा है।
0: अच्छा अच्छा, तो ये सामने थोड़ी ऊंचाई पर बगीचे से घिरा लगता है यही वृद्धाश्रम है?
1: यही तो हम जयंत सर की खोज में आए हैं।
0: हाँ,
1: वे अगर यहाँ होंगे तो वे जरूर हमें मिल जाएंगे। विभादी, मैं यही कल्पना कर रोमांचित हो रही हूँ।
0: हम विश्वास करें नेहा कि वे हमें यहाँ जरूर मिलेंगे।
1: लीजिए विभा दी, हम आश्रम के गेट तक आ गए।
0: अरे अरे, देखो तो सही, वहाँ उस बोर्ड पर कुछ विशेष लिखा है, कुछ लिखा है, इंस्ट्रक्शंस हैं, पढ़ो तो उसे।
1: हाँ हाँ हाँ विभा दी, सुनिए। आश्रम में प्रवेश करने के पहले अतिथि गार्ड रूम में द्वार पार से मिलेंगे, वाहन पार्किंग स्थल पर रखें, गार्ड रूम से परमिशन के बाद आश्रम में प्रवेश करें।
0: अच्छा तो ठीक है नेहा, जहाँ कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, मैं कार वहाँ खड़ी करती हूँ, तुम गार्ड महोदय से आश्रम में प्रवेश की अनुमति ले आओ, है ना? ठीक रहेगा?
1: हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा विभा दी, मैं यही करती हूँ। विभा दी, हाँ जयंत सर यही इस वृद्धा आश्रम में है।
0: क्या
1: हमें? हाँ हाँ, हमें यहाँ के व्यवस्थापक महोदय से उनसे मिलने की स्वीकृति भी मिल चुकी है, तो आओ चले विभा दी, जल्दी करें।
0: हाँ नेहा, हमें चित्रकार विमल का बहुत बहुत आभारी होना चाहिए उस सूचना के लिए, है ना?
1: हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है विभा दी कि हम कुछ क्षणों में सर के दर्शन कर पाएंगे, मैं अपनी प्रसन्नता को समेट नहीं पा रही।
0: अरे तो देर क्यों कर रही हो, चलो जल्दी चलो।
1: जयंत सर।
2: कौन?
1: सर, मैं आपकी शिष्या नेहा गर्ग आपको प्रणाम करती हूँ।
2: प्रणाम।
1: और ये है नगर की आर्ट गैलरी की अंगरक्षिका।
0: मैं विभा कौशल, मेरे भी प्रणाम स्वीकार करें सर।
2: प्रणाम, लेकिन मैं कुछ स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ। तुम नेहा, तुम विभा?
0: जी
1: जैन सर, मैं वही नेहा, नेहा गर्ग। आपने ही मुझे चित्रकला की दीक्षा दी थी, पूरे 6 वर्ष आपने ही मुझे इस योग्य बनाया कि मैं आपकी योग्य शिष्या के रूप में हर तरफ जानी जाऊं।
0: और सर, मैं विभा कौशल, मैं वही कि जिसकी आर्ट गैलरी को ये सौभाग्य मिलता रहा कि वहाँ आपके चित्रों की प्रदर्शनी लगती रही और हमारी आर्ट गैलरी ने हर बार प्रशंसा पाई।
2: हाँ, अच्छा, विभा, नेहा, हाँ, अब मैं स्मरण कर पा रहा हूँ।
0: याद आया सर?
2: देखो ना, मुझे इस वृद्धाश्रम में आए 5 वर्ष से अधिक हो गए हैं मुझे।
1: आप सर, आप यहाँ आए और आपने किसी को बताया तक नहीं, क्यों सर, आखिर क्यों?
2: तुम नेहा, तुम ही बोल रही हो ना?
1: हाँ सर।
2: सुनो नेहा, जब मैंने अपना सब कुछ त्याग कर यहाँ आश्रम में प्रवेश किया तो याद रखो, मैंने अपने सारे अतीत को भुला दिया ताकि मैं पूरी तरह यहाँ का होकर रह सकूं। और मैंने उस सब का वर्णन कर लिया जो यहाँ का है। मैं सिर्फ यहाँ एक वृद्ध हूँ, बस इस वृद्धाश्रम का निवासी केवल।
1: पर जैन सर, आप हमारा यह विनम्र निवेदन सुने, मात्र एक शिष्या का नहीं बल्कि एक बेटी का जो आपको यहाँ से लेने आई है। सर, मैंने और विभादी ने आपको बहुत खोजा, बहुत ढूंढा आपको, बस आज हमने आपको पा ही लिया।
0: जैन सर, मैं विभा, आपको बता दूं, ये नेहा आज देश की श्रेष्ठ चित्रकारों की श्रेणी में है। ईश्वर ने इसे बहुत कुछ दे दिया, हर तरह संपन्न बना दिया।
1: और सर, यह आपकी कृपा है, आपके मार्गदर्शन से ही यह सब संभव हो पाया
0: और
1: है।
0: हाँ सर, मैं आपको बता दूं, जब आपने हमारी आर्ट गैलरी में अपनी अंतिम चित्र प्रदर्शनी लगाई थी, उसके शेष 3 चित्र आज भी वहाँ हैं। पिछले दिनों आर्ट गैलरी देखने एक दंपत्ति आए थे, उन्हें आपके चित्रों को देख बहुत खुशी हुई।
2: अच्छा।
0: और बोले, हम इन चित्रों को ले जाना चाहते हैं। हम जानते हैं इनका कोई मूल्य आका नहीं जा सकता, फिर भी हम 10 लाख दे सकते हैं। लेकिन सर, हम आपकी बिना आज्ञा ऐसा नहीं कर सकते थे और न ही हमने ऐसा किया।
1: सर, हम दोनों नहीं चाहती कि आप यहाँ इस वृद्ध आश्रम में रहें, बस और कुछ नहीं। आप मेरे पास अपनी शिष्या, अपनी बेटी नेहा के पास रहेंगे। मैं आपको एक क्षण कष्ट नहीं होने दूंगी। आप जिस तरह चाहेंगे वैसे रहेंगे, बस आप कह दें कि आप मेरे पास ही रहेंगे।
2: नहीं नहीं नहीं नेहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे अच्छा लगता है अपने मन का एकांत, ये सोचना कि मेरा अपना कोई नहीं, मैं इस वृद्धाश्रम में अपना जीवन जी रहा हूँ। अब अच्छा लगता है अपनी गुमनामी का ये अंधेरा।
0: नहीं, नहीं सर, नहीं, अब भी आप कई लोगों की स्मृति में जस की तस हैं।
2: हाँ विभा, कभी कभी बहुत कुछ सोचता हूँ मैं। कभी सोचा था कि मेरे रचे चित्र दुनिया को बहुत कुछ दे देंगे, लेकिन नहीं नहीं, वो सब कुछ भ्रम था।
0: ये क्या कह रहे हैं आप? आखिर ये भाव विचार क्यों सर?
2: नेहा, मेरी ये पलायनवादी विचारधारा नहीं, कि मेरा आज का यथार्थ है। मैं इन्हीं सबको देखकर इस अपरिचय वाली दुनिया में आ गया हूं। यहां कम से कम एक वृद्ध सामान्य सा जीवन जी तो लेता है। न यहां दंभ है, न दावे, न घमंड, एक दूसरे के लिए हस्तक्षेप भी नहीं है। अपनी थालियां उठाकर रोटियां खा लेना और अपने मन की कल्पनाओं के बीच जीवन जी लेना, बस। और क्या चाहिए एक इंसान को?
3: नहीं सर, नहीं। आपने ही तो मुझे कहा था, जीवन वही जो शानदार तरीके से जिया जाए।
2: ठीक है नेहा, फिर मुझे इस विषय में निर्णय करने के लिए कुछ समय दो। जो कुछ होगा मैं तुम लोगों को सूचित कर दूंगा।
0: पर सर,
3: निर्णय हामी ही हो।
0: हाँ
3: बस। अब जयंत सर हमारे साथ हैं, वे यहाँ एकदम प्रसन्न हैं। उनकी प्रसन्नता हमारे लिए खिली धूप है, जो हमारे लिए भी एक सांत्वना है।
4: फिर धूप खिली। अभी आपने ये नाटक सुना। लेखक थे कृष्णकांत दुबे और कलाकार इंदु संतोष, संतोष जोशी।

साथियों, अभी आपने सुना नाटक जिसका शीर्षक था फिर धूप खिली और इसके लेखक थे कृष्णकांत दुबे और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, इसी के साथ आज्ञा दीजिए ग्लोरिया गांगले को। धन्यवाद।

सत्य स्वर सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को ग्लोरिया गांगले का प्यार भरा नमस्कार। आज के इस 12 से 1 की सभा में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम एक मुलाकात, युवा विकास, युग संचार और भक्ति गीत। तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम एक मुलाकात, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं स्वर्गीय स्वतंत्र कुमार ओझा और इनके साथ हैं श्री छोटेलाल भारती जी।

0: तो वहाँ जो बच्चे सीखे पढ़े वो उनके कुछ काम आया आगे जा करके?
1: हाँ बिल्कुल काम आया। वो बच्चे आज भी मिलते हैं तो कहते हैं कि सर हम मैं पांचवी में हूँ, कोई कहता मैं सातवीं में हूँ, और कोई कहता कि मैंने ये गैरेज पे जाना शुरू कर दिया सर। तो ऐसी स्थिति में है आज वो बच्चे।
0: तो आपको अच्छा लगता है ये सुन के?
1: ये तो बहुत खुशी होती है जीवन की सबसे बड़ी। हमने तो सोचा कि पीएमटी नहीं भी हुई तो ये हमें खुशी देती है।
0: नहीं, वो देना भी चाहिए क्योंकि ये एक इतना महत्वपूर्ण कार्य आपने किया, इतना शुभ कार्य किया। क्योंकि आज हमारे देश में ये जो निरक्षरता है, जो शिक्षा का अभाव है, उसके कारण जो गरीबी का माहौल है, उसे दूर करने में आपने अपना समय दिया, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इससे हमारे ऐसे ही साथियों को कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। तो इसके बाद फिर आपके जीवन में क्या हुआ, मतलब अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं आप अभी?
1: इसके बाद वहां से हम आके वो स्कूल उन बच्चों वहां के जो स्थायी समिति को सौंप के, और हमने फिर मूसाखेड़ी के भील पलटन जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पर बच्चों का एक्टिविटी सेंटर खोला। और वहां के बच्चे भी आज कुछ बच्चे तो इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, कुछ बच्चे बी फार्मा डी फार्मा कर रहे हैं। और वो पढ़ना तो उनका जारी था, स्कूल में एडमिशन तो था ही, लेकिन हमने उनको थोड़ा सा मोटिवेट किया शिक्षा के प्रति, उनको सही उद्देश्य और सही जागरूकता उनको दी। तो आज वो बच्चे अच्छे मुकाम पर है। वहां पर कबीर की भजन मंडली शुरू करी। मूलतः मेरी संस्था का नाम भी कबीर जन विकास समूह है और कबीर की विचारधारा से काफी प्रभावित हूँ। और वही है कि जो जाने पर पीर, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर।
0: कुछ गा करके सुनाइए ना हमारे सुनने वालों को।
1: देखिए, एक तो गला अच्छा नहीं है, लेकिन जब भी समय मिलता है कि कबीर की कुछ वाणियों को गुनगुना लेते हैं।
0: हाँ जरूर, कबीर तो संपूर्ण कवि माने जाते हैं हमारे साहित्य में।
1: कुछ पदों को गुनगुना लेते हैं, लेकिन गुनगुनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ कि उनकी हर एक एक पद में जो संदेश है, उस संदेश को अपने जीवन में धारण करना। तो मुझे ज्यादा पद याद भी नहीं है, ज्यादा गाता भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे कुछ पद है वो मेरे जीवन में है। जैसे मैं प्रेम की दोषाखी सुनाता हूँ।

0: ये इसको बोल के बताइए, क्योंकि प्रेम परस्पर सद्भाव, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना, यही सब धर्मों का संदेश है और कबीर ने इसको साक्षात इस संसार को दिया है। तो इसको जरा बोल के बताइए कि लोटे और डोर का जो संबंध है वही प्रेम और मनुष्य का संबंध है।
1: वैसे कबीर ने सच्चे धर्म की परिभाषा यूं की है कि सच्चा धर्म वही है जिस तरह से मनुष्य के अंदर पांच तत्व का मनुष्य बना है, उसी तरह से धर्म भी पांच तत्व है और वो पांच तत्वों के धर्म में है प्रेम, दया, सत्य, अहिंसा, करुणा।
0: प्रेम, दया, सत्य, अहिंसा और करुणा,
1: इन पांच तत्वों को लेकर धर्म बना है और उसमें सबसे ज्यादा मेरा मानना है कि प्रेम जो चीज है, प्रेम ही सबसे बड़ा तत्व है,
0: सर्वोच्च तत्व है,
1: सर्वोच्च तत्व है।
0: अच्छा भारती जी, आप कुछ अपने फिलहाल के अपने आपका अपना स्वयं का परिवार है?
1: हाँ, मेरा परिवार है।
0: हाँ।
1: और जिस तरह से मेरे जीवन में, मेरे जीवन की जो कड़ियां बनी है उसमें मेरी पत्नी कस्तूरा ग्राम में पढ़ी।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, कस्तूरा ग्राम में उसने नर्सिंग कोर्स किया और मैं कस्तूरा ग्राम जाता आता रहा और वहीं से मुझे समझ में आया कि मैं, ये मेरी जीवन यात्रा में ये मेरी सहभागी बनेगी और मेरी कमजोरी नहीं, मेरी शक्ति बनेगी। और इसलिए मैंने उससे प्रेम विवाह किया और ऐसी जगह पे किया कि जहां पर गांधी जी का एक विचार था कि मैं उस विवाह में जाऊंगा, उनका एक संकल्प था कि मैं ऐसे कोई विवाह में नहीं जाऊंगा जो अंतरजातीय विवाह नहीं होगा। तो मैंने हिंदी साहित्य समिति में अपना प्रेम विवाह किया और जहां पर गांधी जी की जो प्रेरणा थी, और मेरा अंतरजातीय विवाह है, मेरी पत्नी ब्राह्मण समाज की है और कबीर पद्धति से किया।
0: कबीर पद्धति से,
1: जिसमें कोई खर्च नहीं, जिसमें ज्यादा जो पाखंड जिस तरह से शादी में होता है उस तरह का पाखंड नहीं। शादी का मतलब होता शादी, तो मेरी बिल्कुल शादी थी। मेरी पत्नी ने सूत की माला बना के लाई थी कस्तूरा ग्राम में, चरखा चला के उस माला से हमने शादी की।
0: वाह, क्या बात है। और भी परिवार में कोई हैं, बच्चे हैं आपके?
1: हाँ, मेरी एक बेटी है।
0: अच्छा। उसको भी आप डॉक्टर बनाना चाहेंगे क्या?
1: बिल्कुल, मेरी तमन्ना तो है कि मैं जो काम नहीं, और मेरी तमन्ना थी कि मैं मेडिकल लाइन में, इसलिए मैंने पत्नी को भी इसीलिए चुना कि हम लोग किसी की तकलीफ को कैसे दूर कर सकते हैं।
0: और अब आखिरी सवाल मेरा ये है कि अब आगे आप समाज सेवा के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या क्या विचार हैं आपके मन में?
1: आगे समाज सेवा के लिए बच्चों का एक्टिविटी सेंटर, जहां से बच्चों को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले, बच्चों को अपने जो अंदर कुशलता है, उंगलियों की कुशलता, आंखों की कुशलता, बोलने की क्षमता, इनके विकास के लिए केंद्र खोलूंगा।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे स्टूडियो में आए और सार्थक जानकारी दी, जिससे निश्चय ही हमारे सुनने वालों को प्रेरणा मिलेगी, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार।

साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम एक मुलाकात, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे स्वर्गीय स्वतंत्र कुमार ओझा और इनके साथ थे श्री छोटेलाल भारती जी और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। तो आइए साथियों सुनते हैं भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वास मुंबई की।

साथियों, अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वाज मुंबई की। साथियों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवा विकास, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं स्वतंत्र कुमार ओझा, और इनके साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री कृष्णकांत दुबे। और ये बात करेंगे कि देश में युवा साथियों की स्थिति क्या है, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: हमारे सभी श्रोता साथियों को स्वतंत्र कुमार ओझा का नमस्कार। हम प्रस्तुत हैं युवा विकास कार्यक्रम लेकर के, और आज के हमारे इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं हमारे सत प्रकाशन संस्थान के ही वरिष्ठ लेखक कृष्णकांत जी दुबे। तो एक बार फिर हम दोनों मिलकर के इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आज हमारे देश में हमारे युवा साथियों की स्थिति क्या है। दुबे जी, मैं सबसे पहले तो एक खास बात जो इन दिनों में बहुत ज्यादा प्रचलन में है वो ये है कि हमारे युवा जो हैं वो विदेशों में आगे पढ़ाई के लिए, शिक्षण के लिए जाते हैं
1: जी।
0: अब इसमें ऐसा है कि अगर वे प्रतिभावान हैं तो वे जरूर ही लाभान्वित होंगे, कुछ कर सकेंगे, अपने लिए भी अपने देश के लिए भी कुछ नया कर सकेंगे
1: जी,
0: अच्छी नौकरी पा सकेंगे और उनका लाभ ही होगा। लेकिन ये एक बात भी देखने में आ रही है कि कुछ जो संपन्न थोड़े से परिवार हैं या जो संपन्न नहीं भी हैं, वो कैसे भी जुगाड़ करके 8-10 लाख रुपए इकट्ठे कर लेते हैं और फिर अपने लड़के या लड़की को विदेश भेज देते हैं आगे पढ़ने के लिए, भले ही वे उतने प्रतिभावान ना रहे हों अपने पिछले विद्यार्थी जीवन में, लेकिन स्थिति यह है कि वे सफल होंगे या नहीं आगे जाके जीवन में, उनको सब कुछ मिलेगा ये तो भविष्य बता देगा। लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि परिवारजन ये देखा देखी करके या खुद को कुछ खास साबित करने के लिए दूसरे लोगों के सामने ऐसा भी कुछ कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है, देखने में भी आया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
1: ओझा जी, मैं इस संदर्भ में एक ही बात कहना चाहूंगा, एक जमाने में भी भारत की प्रतिभाएं विदेशों में गई हैं, पढ़ने के लिए भी गई हैं और कुछ देश की सेवा करने की भावना को लेकर के वहां से ज्ञान अर्जित करके लौटे हैं। हां, जिनके पास साधन नहीं थे, जिनके पास वो समझ रहे थे कि हमारे देश में उनकी जो प्रतिभा है वो पूरी तरह विकसित नहीं होगी, लेकिन जो बहुत ही ज्ञानवान थे और उन्हें यह एहसास था कि हमारे देश में हम वो सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं जिनसे हम कुछ अचीव कर सकें, हम उससे कुछ दे सकें, देश को दे सकें, समाज को दे सकें। अब आप जानते हैं कि सर सीवी रमन बहुत बड़े वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, लेकिन उन्होंने भारत में रहकर के ही सारे अनुसंधान किए। ये भावना पहली होनी चाहिए कि हमारी जो प्रतिभा है या हमारी जो बातें हैं
0: वो अपने ही देश में विकास करे,
1: विकास करे और उसका लाभ हमारे समाज को मिल सके, हमारे देश को मिल सके। ये भावना जब तक नहीं होगी, केवल इसलिए कि हमारे बच्चे वहां जाकर के विदेशों में गए हैं और वो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, केवल इस आकांक्षा को लेकर के अगर कोई काम किया जाता है तो उससे देश का नुकसान है, लाभ कहीं नहीं है। ओझा जी, मैं इस बात को मानता हूं। और एक बात ये भी है कि केवल लोगों की प्रशंसा अर्जित करने के लिए अगर आप ये काम कर रहे हैं कि लोग कहें कि हमारे इनके बेटे बेटी जो है वो अमेरिका में है या ब्रिटेन में है या जर्मनी में है या जापान में है या चीन में है, रूस में है, कहीं भी है, तो इससे कोई बात बनने वाली नहीं है। आप ये देखिए कि अगर वो बालक भारत में रहकर के वो ज्ञान अर्जित कर सकता है और अपने देश को लाभ पहुंचा सकता है तो आपको उसे यहीं रखना चाहिए ताकि देश उसका तत्काल लाभ उठा सके। मेरी तो ये अपनी मान्यता है ओझा जी।
0: नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने ये बात इस सिलसिले में भी उठाई थी कि हमारे ही परिचित एक खुद जो डॉक्टर थे, अब उनका स्वर्गवास हो गया, उनके बड़े लड़के को मेडिकल कॉलेज में यहां भर्ती कराया और यहां वो कुछ पढ़ने में उसकी रुचि थी नहीं तो यहां फेल हो गया वो
1: जी।
0: अब पिता चूंकि डॉक्टर थे, संपन्नता भी थी, डॉक्टरी अच्छी चलती थी
1: जी,
0: तो उन्होंने अपने बेटे को किसी भी तरह इंतजाम करके रूस भेज दिया
1: जी।
0: और अब ये सुनने में आया है कि भाई वो रूस में मेडिकल की 2 साल की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। सवाल ये नहीं है, वो डॉक्टर भी बन जाएंगे, सवाल ये है कि अगर वो डॉक्टर बन भी गए और इस विषय में उनकी अगर कोई रुचि नहीं है तो हो सकता है वो इलाज करने से ज्यादा कुछ ऐसी बातें करें जो आर्थिकता से जुड़ी हुई हो।
1: जी
0: क्या सोचते हैं?
1: हाँ, इस तरह की बातें हो सकती हैं, इसे कोई इनकार नहीं करता। लेकिन मैं एक बात ये भी कहूंगा ओझा जी कि हर देश की अपनी स्थिति होती है, हर देश का एक मौसम होता है। अब जैसे मैं आपसे बताऊं, जैसे आपने रूस की बात कही है, रूस की अपने
0: मापदंड है,
1: मापदंड हैं, अपने तरीके से पढ़ाने की और शिक्षा देने की व्यवस्था है। वो व्यवस्था क्या भारत में रह करके अगर आप प्राप्त कर सकते हो तो आप करिए, लेकिन अगर आप वहां भी असफल हो जाते हैं तो एक तरीके से मैंने जीवन की असफलता भी है और साथ ही वहां का जो ज्ञान है वो यहां किसी तरह से आप अप्लाई नहीं कर सकते, किसी तरह से उसको प्रसार नहीं कर सकते,
0: क्योंकि वहां ऐसा है कि गंभीर से गंभीर अगर बीमारी है तो कुछ ऐसी जीवन रक्षक औषधियां या दवाइयां तुरंत उपलब्ध हो जाती है, जबकि भारत में ये स्थिति नहीं है।
1: वही तो कह रहा हूं मैं,
0: बहुत बहुत ही संपन्न बड़ा भारी कोई चिकित्सालय हो वहां ये सुविधा अवश्य मिल सकती है, उसमें भी समय लगता है, लेकिन वहां तो ये सुविधा तत्काल उपलब्ध है दूसरे देशों में। अगर आप वहां पढ़ने जाते हैं तो खैर आपने वहां का सारा ज्ञान तो ले लिया, लेकिन आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि भाई हमारे देश में क्या स्थिति है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना हम हमारे देश में ही रह करके अपने विषय में थोड़ी सी रुचि पैदा करें और अपने देश की स्थितियों के हिसाब से अपने कार्य का संचालन करें।
1: बिल्कुल सही बात है, तभी जाकर के जनता को लाभ होगा। अच्छा, यही नहीं, कई ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के कई माता पिता और वो स्वयं युवा विभ्रांत हो जाते हैं और एक दूसरी दिशा ग्रहण कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि शायद हम विदेशों में जाएंगे तो कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कई ऐसे परिवारों को भी मैंने देखा है जिनके बच्चे विदेशों में जाते हैं, वहां से भले थोड़ा बहुत कमा के ले आए, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा अर्जन कर पाते हो ऐसा मुझे नहीं लगा ओझा जी। अब मुझे ये लगा कि शायद ये वही हैं जो कल तक यहां पर थे, तो क्या परिवर्तन हुआ उसका और उस परिवर्तन का माने क्या हुआ? मैं तो ऐसा मानता हूं।
0: और देखिए, ये अभी वर्तमान में जो अभी इन दिनों में खास करके जो ये अचानक से आर्थिक वैश्विक मंदी का संकट खड़ा हो गया है, उसके तहत आपने भी शायद समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा होगा कि कई कंपनियां अपने कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं, अपने योग्य कर्मचारी मतलब, और उनकी संख्या सैकड़ों में नहीं हजारों में,
1: हजारों में है। बिल्कुल,
0: तो अब ऐसी स्थिति में युवा क्या करेगा? एक नौकरी करने वाला नौजवान है, प्रतिभावान भी है, नौकरी भी ठीक कर रहा है, लेकिन ये जो एक बाजारी मंदी जो शुरू हो गई है, ये जो भाव चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, ऐसी स्थितियां हर जन को प्रभावित करती है, महंगाई बढ़ती है। गरीब तबके की तो बात अपन बाद में करेंगे, लेकिन ये जो अपन मध्यम वर्ग की भी अगर बात करें, अति निम्न मध्यम वर्ग की भी बात करें, तो हर एक इससे प्रभावित है।
1: बिल्कुल,
0: तो ऐसे में मेरी अपनी मान्यता ये है कि भाई युवाओं को निराश नहीं होना चाहिए। अगर किसी वजह से उनकी एक लगी लगाई नौकरी छूट जाती, क्योंकि आज अब सरकारी नौकरियों का दौर रहा नहीं,
1: बिल्कुल,
0: कि आप आराम से 33 बरस काटो नौकरी के, मनमानी करो और फिर रिटायर हो और फिर पेंशन लो, ऐसा तो है नहीं। अब तो सरकारी नौकरियां भी एडहॉक यानी अस्थायी तौर पर दी जा रही, कि भाई पहले साल भर के लिए रखा फिर 2 साल के, है ना। तो ऐसी स्थिति में एक तो ये कि एक बहुआयामी प्रयास होने चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने
0: कि वो एक ही क्षेत्र से बंध कर नहीं रहे,
1: जी हाँ,
0: बहुआयामी क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करें, ताकि एक से अगर वो संतुष्ट नहीं है तो दूसरे विषय की ओर जाएं।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि आज आपके और हमारे समय का तो माहौल है नहीं
1: बिल्कुल,
0: कि भाई मास्टरी कर लो, क्लर्की कर लो, उसमें बड़ा सुख था, बड़ा आनंद था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज तो इतनी सारे रोजगार के विकल्प हैं कि आप भ्रमित हो जाते हैं कि इधर जाएं कि इधर जाएं। लेकिन आप क्या सोचते हैं? मैंने भ्रम नहीं होना चाहिए।
1: नहीं, कहने का मतलब यही है कि जैसे आपने कहा कि बहुआयामी होना चाहिए, ये आज की बहुत बड़ी जरूरत है। अगर इस आयाम को हम ध्यान में नहीं रखेंगे, और युवा को खास करके इस जमाने के युवा को देखना चाहिए कि वे ज्ञान को किस तरीके से अर्जित कर रहे हैं, कितने विभिन्न क्षेत्रों में वो अपने ज्ञान को जिसे कहना चाहिए कि विभाजित कर रहे हैं और फिर उन्हें ग्रहण कर रहे हैं, तो ये जो भावना जब उनमें जागृत होगी और एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम एक काम में अगर नहीं वो कर पाए हैं तो हम दूसरे किसी काम में जा सकते हैं, हमें वो प्रतिभा होनी चाहिए। तो एक जमाने के अंदर ये कहा जाता था कि आप एक विषय में मास्टरी कर लेंगे, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन अब जमाना जो है वो ये कह रहा है कि आप विभिन्न विषयों में अपनी मास्टरी हासिल करें, और जिस विषय में आपकी विशेष रुचि है उसमें भले चले जाएं, और उसमें भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो किसी दूसरे विषय में जा सकते हैं। क्योंकि आज जैसा आपने कहा कि आप बहुत विस्तार हो चुका है हर चीज का, इतने क्षेत्र बढ़ गए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है।
0: आज आप देखिए कि जो हमारा फिल्म उद्योग है
1: जी हाँ,
0: उसमें जो फिल्म में जो पैसा लगाता है वो तो निर्माता है
1: जी हाँ,
0: लेकिन जो निर्देशक होता है फिल्म
1: जी हाँ,
0: का
1: बिल्कुल
0: वो निर्देशन ही नहीं कर रहा है, आज वो गाना भी गा रहा है
1: जी हाँ,
0: उस फिल्म में अभिनय भी कर रहा है
1: बिल्कुल,
0: उस फिल्म की एडिटिंग में रात-रात बैठ भी रहा है
1: बिल्कुल।
0: तो ये बहुआयामी प्रतिभा आज आपको और आज खास करके हमारे युवा को विकसित करनी ही होगी। अब मैं आता हूं उस तबके की ओर जो कि निर्धन है, हमारा श्रमिक तबका है,
1: जो
0: हमारे ग्रामीण अंचलों का तबका है, वहां की स्थिति क्या है आपके हिसाब से? आपने तो कई युवाओं का साक्षात्कार भी लिया है, ग्रामीण युवकों का, तो आप बताइए।
1: मैं कई गांवों में घूमा हूं ओझा जी, और वहां के युवकों की स्थिति भी से परिचित हूं। अभी भी मैं अपने गांव जाता हूं, उसके आसपास के गांव में जाता हूं, वहां की स्थिति देखता हूं, तो वहां के युवकों में एक खास तरह की निराशा है ओझा जी, क्योंकि वहां रोजगार की वो स्थितियां नहीं हैं। वैसे आप जानते हैं कि शासन ने कई योजनाएं बनाई हैं ग्रामीण युवकों के लिए, उनके रोजगार के लिए, लेकिन जो अमला तंत्र है भारत का वो क्या कर रहा है इसे सभी जानते हैं।
0: हाँ, और मतलब वो केवल ऐसा नहीं है कि वो बस वो कागजी घोषणाएं बन के रह जाएं और जरूरतमंद तक वो चीज पहुंचे ही नहीं
1: जी,
0: जो सहायता मिलनी चाहिए। तो इसके लिए ये है कि भाई प्रशासनिक दर्रे की तरफ से तो अगर मदद करने का या रोजगार देने का या धन देने का कोई ऐलान हुआ है, कोई घोषणा हुई है, तो उसके साथ कुछ समाज सेवी संस्थाओं को
1: हाँ,
0: भी पीछे लगना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं तो जैसा कि अभी आपने कहा कि वो अमला जो है तंत्र जो है उसमें और प्रशासन के बीच में उलझ के कहीं रह जाएगा और बेरोजगारी बैठा रहेगा, उसको खाने की रोटी भी नहीं मिलेगी।
1: लेकिन मैं आपको एक बात कहूं कि जो गांव की पंचायतें हैं उनके जो ईमानदार सरपंच हैं या पंच हैं उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। और भी इसके अलावा गांव के जो बहुत अच्छे लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, ज्ञानवान लोग हैं, अगर वे इस दिशा में ध्यान दें तो निश्चित रूप से जो ग्रामीण इलाके में जो युवा जिनके पास कोई रोजगार नहीं है उन्हें रोजगार भी मिलेगा, काम भी मिलेगा, देश का विकास भी होगा, ग्राम का विकास भी होगा। लेकिन अफसोस कभी कभी ये होता है वहां जाकर के जब हम देखते हैं तो लगता है कि क्या है ये सब, बहुत अफसोस होता है, अंदर से दिल दुखने लगता है, क्योंकि विकास की जो धाराएं हैं वे अगर अवरुद्ध हो जाएंगी और युवा बेरोजगार रहेंगे तो सोचिए कि फिर होगा क्या।
0: तो दुबे जी, मैं समझता हूं कि हमारा ये वार्तालाप आज के हमारे युवा विकास कार्यक्रम में हमारे खास करके युवा साथियों को कुछ रुचिकर लगा होगा।
1: जी।

साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम युवा विकास, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे स्वतंत्र कुमार ओझा, और इनके साथ स्टूडियो में मौजूद थे श्री कृष्ण कांत दुबे, और ये बात कर रहे थे कि देश में युवा साथियों की स्थिति क्या है, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए साथियों, सुनते हैं भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वाज मुंबई की।

0: दोस्तों अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वाज मुंबई की। साथियों आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग संचार जिसका शीर्षक है हर युग के अपने संचार साधन और इसके लेखक हैं श्री कृष्णकांत दुबे और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।
1: युग संचार के अंतर्गत लीजिए प्रस्तुत है वार्ता हर युग के अपने अपने संचार साधन। इसके लेखक हैं श्री कृष्णकांत दुबे और प्रस्तुतकर्ता हैं आस्था उपमन्यु। मित्रों युग बदलते हैं, समय परिवर्तन होता है। हर युग अपने साथ कुछ नई विधाएं लेकर आता है और वे भी युग परिवर्तन के साथ जुड़ते जाते हैं। विगत 25-30 वर्षों के बीच विश्व ने बहुत कुछ नया पाया और बहुत कुछ नया दिया है। इस समय अवधि में विज्ञान ने जिस गति से विकास पाया वो सचमुच अद्भुत है, लेकिन विज्ञान ने जिस क्षेत्र में सर्वाधिक तरक्की की और सर्वाधिक विकास पाया वो क्षेत्र संचार का ही क्षेत्र रहा है। उसने अपने में कई कई ऊंचाइयां छुई, कई नए शिखर छुए और कई आयाम रचे। भला इसे कौन भूलेगा कि इस वर्तमान संचार क्रांति ने विश्व को एक आंगन सा बना देने की भूमिका रची, वो सचमुच अपने में अद्भुत है। इस संदर्भ में किसी ने सच ही कहा है कि वर्तमान संचार क्रांति ने इस धरती पर वसुधैव कुटुंबकम को जिस रूप में साकार किया आज हर कंठ उसकी प्रशंसा कर रहा है और उसके गीत गा रहा है। हाँ ये भी सच है कि पहले संचार माध्यम उतने विकसित नहीं थे जितने कि आज हैं। वे अपने जमाने अपने युग के अनुसार काम करते थे, लेकिन वे वर्तमान में हैं, आज हैं। भूले नहीं कि उसके पीछे भी उन प्राचीन विधाओं का भी कुछ मानों में योगदान रहा है। उन्होंने ही प्रेरित किया नई खोज के लिए, इसे भी नहीं भूला जा सकता। हमारे पूर्वजों ने, पूर्व पुरुषों ने अपने युग के मुताबिक अपने अपने कुछ संचार माध्यम निर्मित कर लिए थे, ये उनके अपने युग की आवश्यकता भी थी। मित्रों आइए आज इसी पर थोड़ा विचार किया जाए। शायद आपको ये जानकर निश्चित ही आश्चर्य होगा कि जब मनुष्य जाति के पास भाषा भी नहीं थी तब भी संचार माध्यम थे जो मात्र आवाज और ध्वनियों के माध्यम पर आधारित थे। लगता है संभवतः मनुष्यों ने पशु पक्षियों से ही उसे सीखा था। पशु पक्षियों में एक दूसरे को पुकारने की प्रकृति, खतरे के समय एक दूसरे को ध्वनियों के माध्यम से चेतावनी देने का भय और प्रसन्नता की भिन्न भिन्न ध्वनियां, साथ ही इसके अपने भावों की अभिव्यक्ति, ये सब कुछ मनुष्य जाति ने उन्हीं से पाया था। प्रभु ने मनुष्य को ज्ञान की रश्मियां तो दी ही थी, उसने उसे विकसित अवश्य किया था। हाँ एक बात ये भी कि ध्वनियों के माध्यम से दूर तक अपनी बात पहुंचाना थी, संचार का ही एक रूप माना जा सकता है। आज भी दूर दराज के गांवों में इस विधि का मजे से उपयोग किया जाता है। जो बातें, जो संचार माध्यम मनुष्य ने पशु पक्षियों से सीखे उन्हीं को माध्यम बना सदियों सदियों उन्होंने अपनी संचार सेवाएं बनाए रखी। साथियों पुराने जमाने में संचार माध्यम के रूप में कबूतरों का, प्रशिक्षित हंसों और बाज पक्षियों का उपयोग किया जाता था। इसके ऐतिहासिक प्रमाण आज भी मिलते हैं और इसी तरह पशुओं में प्रशिक्षित कुत्तों, वानरों और लोमड़ियों तक का उपयोग किया जाता रहा है। वनवासी अंचलों में आज भी ढोल नगाड़ों, मादक थाली, टिकारी, मुंह से निकाली गई विविध ध्वनियां भी संचार माध्यमों के रूप में प्रयुक्त की जाती रही हैं। शीघ्रगामी और सुव्यवस्थित डाक व्यवस्था के लिए सदियों सदियों से घोड़ों, ऊंटों, पर्वतीय अंचलों में याक आदि पशुओं का प्रयोग किया जाता रहा है। नदी तटों, समुद्री क्षेत्रों में नावों, जहाजों का इस्तेमाल

से वो भूभाग दिन रात गूंजा करता था। वे अपनी तेज गति से प्रतिदिन कई कई किलोमीटर धरती नाप लिया करते थे। सुप्रसिद्ध विद्वान और महान लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का अभिमत रहा है कि उस प्राचीन युग में भारत में घोड़ों की दो प्रसिद्ध जातियां थीं, एक थी शाली और दूसरी थी होत्र। दक्षिणापथ में शाली जाति के घोड़े जितने उपयोगी सिद्ध हुए उतने ही उत्तरापथ के मैदानों में नहीं, उत्तरापथ में होत्र जाति के घोड़े अधिक उपयोगी सिद्ध हुए। उत्तरापथ में युद्ध के समय होत्र जाति के घोड़े काम में लिए जाते थे और शाली जाति के घोड़े दूर दूर तक समाचार पहुंचाने के काम आते थे। गुप्त सम्राटों के युग में संचार व्यवस्था के लिए इन घोड़ों की उपयोगिता पर पूरा पूरा भरोसा किया जाता था। आचार्य द्विवेदी ने एक स्थान पर यह भी लिखा है कि कुषाण और शक नरपतियों ने रेगिस्तानी भूमि में संवाद संचार व्यवस्था के लिए ऊंटों का प्रयोग किया था। वे वहां घोड़ों से अधिक तेजी से संवाद ढोते थे और मरुभूमि की यात्रा में थकते नहीं थे। गुप्त सम्राटों ने भी मरुभूमि अंचलों के लिए कम्मेलकों यानी ऊंटों की अनिकिनी यानी संवाद वाहिनी तैयार की थी। बाद के युग में भी सांडनी सवार यानी विशेष रूप से तैयार किए गए ऊंट संदेश वाहक के रूप में काम करते रहे। साथियों, इन प्राचीन वर्णनों से ज्ञात होता है कि उस युग में अश्वारोही और सांदनी सवार संवाद संचार व्यवस्था में अपनी विशेष भूमिकाएं निभाते थे। राज्य की संवाद संचार व्यवस्था में तो वे मुख्य आधार थे ही, लेकिन उस जमाने की जो व्यापारिक पीढ़ियां थीं, उनके संवाद, उनकी हुंडियां आदि वे ही लाया ले जाया करते थे। उस जमाने के राजपथों पर इसके लिए सरायों की व्यवस्था की जाती थी। तब ये निर्धारित था कि कितना रास्ता तय करने के बाद घोड़ा, ऊंट या गाड़ियां आदि बदली जाएंगी। संवाद वाहकों के भोजन और आराम की सुचारू व्यवस्था हो, इसकी भी व्यवस्था की जाती थी। आज भी कई जगह उन सरायों के अवशेष प्राप्त हो जाते हैं। ये व्यवस्था प्राचीन युग की थी। साथियों, भारत में अंग्रेजों की शासन व्यवस्था में इस संदर्भ में कुछ विशेष परिवर्तन कर डाक बंगलों की प्रणाली को विकसित किया था। आज राजमार्गों पर जगह जगह हमें व्यवस्थित डाक बंगले नजर आते हैं। उनके माध्यम से उस जमाने में संवाद संचार व्यवस्था को सुचारू रूप देना ही विशेष उद्देश्य रहा था। तब वहां अश्वारोही ही नहीं बल्कि घोड़ा गाड़ियों की भी व्यवस्था रहा करती थी। इसके उल्लेख न केवल इतिहास के पन्नों में बल्कि उस युग में रची कहानियों और उपन्यासों तक में मिलते हैं। अब इन डाक बंगलों का रूप, उनकी कार्य व्यवस्था, सब कुछ बदल गई है। जब एक नया युग इस धरती पर अवतरित हुआ, जब इस धरती पर डाकघर, तार घरों की स्थापना हुई, रेल, बस और आगे चलकर हवाई सेवाएं शुरू हुई, तो संचार संवाद प्रेषण में भी गति आई। साथियों, लोगों को संवाद आदि तथा चिट्ठी पत्रियां जल्द मिलने लगी और गीत गाए जाने लगे, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। तब टेलीग्राम, टेलीफोन व्यवस्था ने विस्तार पाया तो जैसे हवा ही बदल गई। और तब गर्व से कहा जाने लगा कि भारत की डाक तार व्यवस्था, उसका महक क्या, विश्व में सबसे विशाल है। फिर भी उस युग में ये कुछ भी था कि दूर दराज के गांवों में चिट्ठी पत्री भेजने का काम डाक ले जाने वाले हरकारे संपन्न किया करते थे। तब हमने भी देखा था ये हरकारे भाला लगी लाठी में डाक का थैला लटकाए हुए कुछ तेज कदम दौड़ते हुए एक से दूसरी जगह डाक ले जाया करते थे। और आज भी कई जगह ये व्यवस्था देखने को मिल जाएगी। आज भी कुछ अंचलों में डाक लाते ले जाते ऊंट सवार या अश्वारोही या दोपहिया वाहन, रेल, बसें ये भूमिका संपन्न करते नजर आएंगे। अब युग बदला, जमाना बदला, आज संवाद संचार के अधिकांश माध्यम भी बदलते जा रहे हैं। अब करीब करीब अधिकांश हाथों में मोबाइल है, दोनों ओर ऊंट बोलते हैं, कान सुन लेते हैं, चिट्ठी पत्री करे कौन, इंटरनेट है और भी बहुत कुछ है। आज स्थिति यह है कि हर 15

0: पीस रोज में मोबाइल अपने एक नए रूप दर्शन में हमारे सामने आ जाता है। साथियों, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत।
1: दोस्तों, अभी आपने सुना कार्यक्रम युग संचार, जिसका शीर्षक था हर युग के अपने अपने संचार साधन, जिसके लेखक थे श्री कृष्णकांत दुबे और इसके प्रस्तुतकर्ता थी आस्था उपमन्यु और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आइए सुनते हैं भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वाज मुंबई की।

दोस्तों, अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वाज मुंबई की। दोस्तों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एंड्रॉयड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से RVM मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्य स्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्य स्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं हमें भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, बवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। और हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर क्षण हर पल आपके साथ।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोता मित्रों को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अभी की समय सारिणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार, नारी सशक्तिकरण, मन दर्पण और अंत में पर्यावरण। कहिए साथियों, समय का सदुपयोग करते हुए हम अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम सर्वधर्म विचार से। तो आइए मित्रों, सुनते हैं कार्यक्रम सर्वधर्म विचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है सर्वधर्म संभाव का संदेश। प्रस्तुत करता है फादर हरमन मंडोड SVD।

सर्वधर्म विचार के तहत लीजिए सुनते हैं वार्ता जिसका शीर्षक है सर्वधर्म संभाव का संदेश। मित्रों, आज भारत जहां खड़ा है वह इस बात का प्रमाण है कि हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी प्रांत का हो या किसी भी मजहब से संबंध रखता हो या किसी भी भाषा को बोलता हो, वह अपनी भरपूर मेहनत से इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहा है। भारत एक मिश्रित आबादी का देश है जहां विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग, विभिन्न जातियों और भाषाओं को बोलने वाले लोग और विभिन्न पहनावा और खान पान वाले लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। यहां की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इसकी सीमाओं के पार से अलग अलग समय में बड़े बड़े साम्राज्य, कबीले, धार्मिक गुरु अपनी अपनी सभ्यताओं, जनसंख्या और अकीमों के साथ यहां आकर और फिर यहीं के हो लिए, और इस तरह से यहां की सभ्यता एक मिश्रित सभ्यता बनी, जैसे कि एक बगीचे में तरह तरह के फूल अपनी खुशबू महकाते हैं। मित्रों, संभाव में ही धर्म है और विषमता में हमेशा अधर्म होता है। मानव कभी खेत में पैदा नहीं होता है, वह तो मानव की आत्मा में पैदा होता है। हमें यह विश्व बंधुता व मानव से आपस में प्यार करना सिखाता है। धर्म हमें कभी लड़ना, भिड़ना, झगड़ना, आपस में किसी प्रकार के हिंसा करना नहीं सिखाता है। मानव हर समय माला जाप, मंदिरों में घंटे बजाकर व नारे लगाकर अपने को धार्मिक दिखाता है। सही मायने में वह धर्म नहीं है। आज धर्म को संप्रदाय में बांट दिया गया है। भगवान के नाम पर लड़ना, मजहब के नाम पर लड़ना इंसान की प्रवृत्ति बन गई है। धर्म के नाम पर हमारे विचारों में भेद तो हो सकते हैं, लेकिन हमारे मनों के अंदर भेद नहीं होना चाहिए। धर्म हमारे घरों के अंदर क्लेश नहीं सिखाता, हमें भाई भाई को अलग होना नहीं सिखाता। आज हम भगवान को ही बांट रहे हैं। यह मेरा भगवान है, यह तेरा भगवान है, ऐसी बातें हमें रोज सुनने को मिलती हैं। मित्रों, अहमदनगर जिले का शिरडी गांव अरसा पहले केवल पोस्टल पहचान रखता था, वही गांव आज साईं बाबा की शिरडी के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है। बाबा की शिरडी में भक्तों का मेला हमेशा लगा रहता है। यहां आने वालों की तादाद प्रतिदिन 30 से 35 हजार के करीब होती है। वहीं गुरुवार एवं रविवार को यह संख्या दुगुनी हो जाती है। इसी तरह रामनवमी, गुरु पूर्णिमा और विजयादशमी के अवसर पर यहां 2 से 3 लाख लोग दर्शन को आते हैं। वहीं साल भर में लगभग 1 करोड़ से अधिक भक्त यहां हाजिरी लगा जाते हैं। लगभग 150 साल पहले एक युवा फकीर शिरडी की एक खंडरनुमा मस्जिद में डेरा डालकर 4 घरों की भिक्षा से गुजर बसर करने लगा। लोगों ने उसे साईं बाबा के नाम से पुकारा। उसके द्वारा दी जाने वाली जड़ी बूटियों और अंगारे से लोग भले चंगे होने लगे। इससे लोगों का विश्वास बढ़ता गया और साईं बाबा का यश आहिस्ता आहिस्ता दुनिया भर में फैल गया। साईं बाबा ने अपनी जिंदगी में समाज को 2 अहम संदेश दिए। पहला संदेश है सबका मालिक एक, और दूसरा श्रद्धा और सबूरी। साईं बाबा के इर्द गिर्द के तमाम चमत्कारों से परे केवल उनके संदेशों पर ही गौर करें तो पाएंगे कि बाबा के कार्य और संदेश जन कल्याणकारी साबित हुए हैं। इन संदेशों में केवल कथनी से ही नहीं बल्कि सीधे कार्य व व्यवहार से सारे समाज को अपना कायल बनाया। फकीर के वेश में मस्जिद में रहने वाले साई की बोली भी उर्दू मिश्रित थी। मित्रों, वे हमेशा अल्लाह मालिक सबका भला करेगा कहते थे, लेकिन जिस मस्जिद में उनका निवास था उसे वह द्वारका माई कहकर पुकारते थे। साई बाबा का आचार धर्म हिंदू पद्धति का था, बावजूद इसके बाबा ने अपनी जाति व धर्म की तह कभी किसी को लगने नहीं दी। हिंदू मुस्लिम दोनों ने ही बाबा को अपना माना। उन्होंने सर्वधर्म संभाव
और सह अस्तित्व का मार्ग पूरी दुनिया के सामने रखा। सबका मालिक एक, यह संदेश उनके व्यवहार का ही प्रतीक कहा जा सकता है। बाबा के भक्तों में सभी जाति, धर्म एवं पंथ के लोग शामिल हैं। हिंदू बाबा के चरणों में हार फूल चढ़ाते और समाधि पर धूप रखकर अभिषेक करते हैं, वही मुस्लिम बाबा की समाधि पर चादर चढ़ाते हैं। कुल मिलाकर शिरडी सर्वधर्म संभाव के धार्मिक सह अस्तित्व का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन यहाँ आने वाले भक्त इन सब के परे केवल मन में बाबा के प्रति श्रद्धा और विश्वास के चलते खींचे चले आते हैं। उनके मन में आध्यात्मिक शांति की चाह के साथ सुख की कामना नजर आती है। इंसान अपनी श्रद्धा को हमेशा निजी सुख दुख से जोड़कर देखता आया है। मित्रों, आज के बदलते आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संक्रमण के दौर में अपने इर्द गिर्द की अस्थिरता, अनिश्चितता के बीच भक्त कभी कभी कुछ हकबकाहट में साईं बाबा के प्रति श्रद्धा की महिंदोर थामे शिरडी चला आता है। वे मानते हैं कि वहां उनके तमाम सवालों के जवाब मिल जाते हैं। साईं बाबा द्वारा बताए श्रद्धा और सबूरी शब्दों का इस्तेमाल कई भक्त उनका आशीर्वाद पाने के लिए भी करते हैं। जैसे किसी को कोई नया काम हाथ में लेना हो तो वह श्रद्धा, सबूरी, हाँ या नहीं जैसी चार चिट्ठियां तैयार कर साईं बाबा के सम्मुख रखता है और श्रद्धापूर्वक उनमें से एक चिट्ठी खोलता है। यदि उसमें हाँ है तो बाबा का आशीर्वाद मान लेता है, और यदि जवाब नहीं में मिलता है तो बाबा का इनकार मानकर नए काम का इरादा छोड़ देता है। यदि चिट्ठी का जवाब श्रद्धा है तो बाबा में श्रद्धा रखकर काम आगे शुरू किया जाता है, लेकिन यदि जवाब सबूरी हो तो थोड़ा संयम रखे, ऐसा अर्थ निकाला जाता है। बाबा का आशीर्वाद पाने वाले ऐसे कई भक्त शिरडी में मिल जाएंगे। गत 2.5-3 दशकों में साईं बाबा के प्रति लोगों की आस्था में निरंतर इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि साईं बाबा के उत्सव में शामिल होने अमीर, गरीब और सभी जाति धर्म के भक्त बड़ी तादाद में आते हैं। मित्रों, जैसे संतरा बाहर से एक दिखाई देता है, अंदर से अलग अलग होता है, उसी प्रकार हमें भी बनना है। हमें कैंची की तरह नहीं, जो हमेशा काटने का काम करती है, सुई की तरह बनना है, जो हमेशा दूर हुए को मिलाती है। धर्मगुरु हमारे अंदर से अंधकार को दूर करते हैं। विनोबा जी ने कहा था कि अगर इंसान अपने धर्म में दृढ़ हो, वह दूसरों के धर्म में सम्मान की भावना हो और अधर्म से घृणा करता हो, वह सही मायने में धार्मिक है। कोई भी धर्म हमें किसी का दिल तोड़ना नहीं, जोड़ना सिखाता है। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था सर्वधर्म संभाव का संदेश। प्रस्तुतकर्ता थे फादर हरमन मंडोट SVD। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों अब हम सुनते हैं सभी नारियों के लिए विशेष कार्यक्रम। दोस्तों आप सभी सही समझ रहे हैं कि मैं कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के बारे में ही कह रहा हूँ। तो आइए सहेलियों प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के तहत वार्ता जिसका शीर्षक है परिवार से बिछड़ते हुए और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

बहनों नमस्कार। आज के नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम में हम जो विषय लेने जा रहे हैं उसका शीर्षक है परिवार से बिछड़ते हुए। परिवार से बिछड़ते हुए, लेकिन इसका अर्थ आप अपने विवाह के समय होने वाली विदाई से बिल्कुल न लगाइए। बहनों, दरअसल किसी भी स्त्री का मन विदाई की बात सुनते ही कोमल हो उठता है ना? अपने बीते हुए दिन और खुशियों से भरे पल अनायास ही उसे याद आने लगते हैं। लेकिन बहनों, आज हम बात करेंगे उस पारिवारिक बिछोह की जिसमें अपने संयुक्त परिवार के साथ एक अच्छा खासा समय बिता लेने के बाद आपको अपने काम के सिलसिले में घर से दूर जाकर फिर से अपना नीड बसाना पड़ता है। कई बार बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में भी अपना परिवार छोड़ना पड़ता है। और वाकई ऐसे में अचानक से असहाय हो जाने की सोच मन में आने लगती है, और ये स्वाभाविक तो है। आज भले ही हम देखें कि सभी स्थानों पर एकल परिवार अपना स्थान लेते जा रहे हैं, लेकिन जो लोग संयुक्त परिवारों में रह रहे हैं उन्हें मिलने वाली सहूलियतें, उन्हें मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, उन्हें देखते हुए वे स्वयं अपनी ओर से कभी भी एकल परिवार के रूप में बस जाना नहीं चाहते। और क्यों न हो, आखिर चलिए देखें कि यदि आप संयुक्त परिवार में रहती हैं तो आपको कितनी सारी सहूलियतें मिलती हैं। सबसे पहली बात तो आप अकेली नहीं पड़ती। अब आप ही सोचिए, आपके इस बढ़ते संसार में आपने किसी न किसी उपलब्धि को हासिल किया, अब उस उपलब्धि के ऊपर आपका अपना आशीष देने वाला हाथ ही घर में ना हो तो उस उपलब्धि का क्या किया जाए। उसी तरीके से बहनों, घर में नन्हे बच्चों का आगमन, संसार में बढ़ने वाली जिम्मेदारियां और ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिनके चलते आपको शिद्दत से ये महसूस होता है कि अकेलापन संसार के लिए काफी नहीं है। आपको चाहिए संयुक्त परिवार का वरदहस्त, आपको चाहिए घर में रिश्ते नातेदारों की चहल पहल, आपके हर एक कदम पर, आपकी हर एक बात पर क्रिया प्रतिक्रिया देने वाले आपके आसपास के परिवारजन। और ये सारी चहल पहल होते हुए संयुक्त परिवार की कोई स्त्री भला अकेली कैसे रह सकती है? उसे खुशी का कोई मौका हो या फिर दुख की कोई बात, बांटने वाले साथी तो हमेशा ही मिलते हैं। और इसके आगे बच्चों के संस्कारों का कोई भी चिंता, किसी भी प्रकार की खराब बात आपके मन में आ ही नहीं सकती। अब आप ही सोचिए ना, घर में जब बुजुर्ग पीढ़ी मौजूद हो, उन्हें तो अपने मूलधन से ब्याज गहरा है ना? आपके बच्चों ने खाना खाया हो या नहीं खाया हो, वे समय पर दवाई ले रहे हैं या नहीं, समय पर सोए हैं या नहीं, उन्होंने पूजा पाठ संबंधी कुछ नियम कानून सीखे हैं या नहीं, पारिवारिक परंपराओं से उनका नाता जुड़ रहा है या नहीं, इन सारी चीजों को लेकर आपको सोचने की या फिर चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बच्चों के दादा दादी जितने प्यार से बच्चों की देखभाल करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उतने प्यार से तो मेरे ख्याल से माता पिता भी नहीं रख सकते। ऐसे में आप निश्चिंत हो जाती हैं कि आपके बच्चे बहुत सही संगत में आगे बढ़ रहे हैं। तीसरी बात जो आपको संयुक्त परिवार में रहते हुए बहुत अच्छे से वर्तमान समय में जिसकी बहुत जरूरत है, वो सुविधा आपको मिलती है, वो है बच्चों को छोड़कर अपना काम कर पाना। बहनों सोचिए ना, शहरों में जिस तरीके से एकल परिवार बढ़ रहे हैं और फिर नारी का स्वावलंबी होना, आजकल स्त्रियां भी धड़ल्ले से नौकरी करती हैं और फिर नौकरी के बीच में वो समय आता है जब वो मां बनती हैं। ऐसे में उस नन्ही सी जान को किसी के पास छोड़कर जाने का मन भी नहीं होता और तरीके से संवारे गए अपने करियर पर विराम देने का मन तो बिल्कुल भी नहीं होता। और इस बीच इसी उहापोह में स्त्री के 5-6 वे वर्ष गुजर जाते हैं जिसमें उसने अपने आप को बहुत आगे बढ़ा लिया होता, लेकिन हमारी संयुक्त परिवार की स्त्री, जी नहीं, ऐसी कोई तकलीफ उसके पास नहीं है। वो बड़े जतन से अपने नाती पोतों को बहुत अच्छे से संभालते हैं और संस्कार भी देते हैं। इसके आगे किसी भी संकट में बड़ों का हाथ आपके सिर पर होता है, चाहे आपके साथ कैसी भी दुर्घटना घट जाए, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप अकेले हैं। आप मार्गदर्शन के लिए मांग सकते हैं अपने बड़े बूढ़ों से मार्गदर्शन के साथ साथ उनके आशीष। उनके पास होंगे अनुभवों के खजाने जिसमें से आपको मिलेंगे मार्गदर्शन के ऐसे मोती जिससे आप संवार सकते हैं अपनी जिंदगी को। और साथ ही बहनों, यदि आप रहती हैं संयुक्त परिवार में
तो ये बहुत अच्छे से आपके सामाजिक ओहदे को भी बढ़ाता है। चाहे आप अपने कर्तव्यों की पूर्ति करने में कितने भी प्रतिशत आगे हों या फिर नहीं हों, लेकिन संयुक्त परिवार की बहू को आज भी समाज में उच्च स्तर पर देखा जाता है। यदि आपको भी किसी न किसी कारण से अपने बसे बसाए संयुक्त परिवार से अलग होकर अपना घर बसाना ही पड़ रहा है, तो आपको अपने आप को असहाय नहीं मानना है। आखिर जिस परिवार के साथ आपने इतने अपनेपन से समय बिताया है, वो ही तो इस घड़ी में आपका साथ भी देगा। बहनों, इस समय जब आप अपने संयुक्त परिवार के साथ एक लंबा अरसा गुजार चुकी हैं, परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ आपका किसी न किसी प्रकार का नाता जुड़ चुका है, ऐसे में किसी प्राथमिक कारण के चलते आपको यदि अपना नीड फिर से बनाना पड़ता है, तब आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो सभी को ये एहसास दिलाएं कि उनसे दूर जाकर आपको भी कष्ट हो रहा है, लेकिन प्राथमिकताओं के चलते ऐसा करना पड़ रहा है। आपको प्रत्येक सदस्य को ये एहसास दिलाना चाहिए कि इतने दिनों परिवार के साथ रहकर आपने भी उनसे बहुत कुछ अर्जित किया है और दूर होते हुए आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन अपनी प्राथमिकताएं तो हैं। इसके आगे आपको अपने सामान की पैकिंग, उनसे जमाना, नए स्थान पर घर देखना, बच्चों की देखभाल आदि के लिए घर के सदस्यों की मदद जरूर जरूर लेनी चाहिए। आपको अपने किसी भी व्यवहार से ऐसा उन्हें महसूस न होने देना चाहिए कि वे आपके लिए अब उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे। आप स्वावलंबी तो जरूर हो जाएंगे, लेकिन यदि इन छोटी छोटी जिम्मेदारियों को, इन छोटे छोटे कामों को अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर उसकी जिम्मेदारी डालेंगे ना, तो उन्हें भी आपसे जुड़ाव महसूस होगा। और बहनों, अपने साथ प्रारंभिक कुछ दिनों के लिए घर की किसी महिला सदस्य को जरूर साथ चलने को कहें, उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वे आपके साथ चलकर अपनापन महसूस करेंगी। बहनों, नए स्थान पर जाने के बाद समय समय पर फोन करना, प्रत्यक्ष आना जाना और पत्र लिखकर आपको जीवंत संपर्क बनाए रखना होगा। अपने नए घर के पड़ोसियों, मिलने जुलने वालों से अपने संयुक्त परिवार की चर्चा जरूर करें। ऐसे में नई जगह पर जब आपके पुराने संयुक्त परिवार के सदस्य आएंगे ना, तो अपने आसपास उन्हें जानने वालों की भीड़ देखकर उन्हें भी एक जुड़ाव महसूस होगा। नई जगह पर जाने का आपका फैसला चाहे किसी भी प्राथमिकता के चलते लिया गया हो, लेकिन किसी भी तरीके से परिवार के सदस्यों को ये नहीं लगना चाहिए कि आपने जानबूझकर स्वतंत्र रहने की सुविधा के चलते ये कदम उठाया है। बड़ी मुश्किल से अपनों का साथ मिलता है, इसे तोड़ना बड़ा आसान है, लेकिन जीवन पर्यंत जोड़े रखना बहुत मुश्किल। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपना नया नीड जरूर बनाएं, लेकिन अपने मुख्य घोंसले से रिश्ता जरूर बनाए रखें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था परिवार से बिछड़ते हुए, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्य स्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल है सत्य स्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। साथियों, हमारी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम मन दर्पण। तो आइए मित्रों, सुनते हैं कार्यक्रम मन दर्पण के तहत वार्ता जिसका शीर्षक है मुक्त हो अहंकार से मन। इस वार्ता के लेखक श्री कृष्णकांत दुबे एवं प्रस्तुत करता है दिव्या देवस्या।

मन दर्पण के अंतर्गत प्रस्तुत है मुक्त हो अहंकार से मन। लेखक है कृष्णकांत दुबे, प्रस्तुतकर्ता दिव्या देवस्या। एक पुरानी सुक्ति है, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार कई दुर्गुणों को जन्म देता है। अहंकारी का मन हमेशा कुलश भरा रहता है। अहंकारी किसी का दुख दूर नहीं करता, बल्कि वह दूसरों के कष्टों में वृद्धि करता है। उसकी वजह से कई मन आहत होते हैं। इसीलिए अहंकार से मुक्ति पाओ, स्वयं सुखी बनो, दूसरों को भी सुखी बनाओ। मित्रों, हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए और उसे आचरण में भी उतारना चाहिए। निरअहंकारी होना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अपने में वे गुण जागृत करो जो अहंकार से मुक्ति दे, विनम्रता दे। विनम्रता से ही मनुष्य में शिष्टता का महत्व गुण विस्तार पाता है। शिष्टता अपने में एक भला गुण ही है। इस संदर्भ में स्मरण आता है, कभी महान चिंतक और लेखक वोल्टेयर ने कहा था, दूसरों का उपकार करना हमारे लिए सदैव संभव नहीं है, लेकिन हम उनसे हमेशा शिष्टता पूर्वक जरूर पेश आ सकते हैं। अगर आप थोड़ा चिंतन करें तो आप पाएंगे आज समाज से शिष्टाचार कम सा होता जा रहा है। खासकर आज की नई पीढ़ी पर कुछ अजीब सा अशिष्ट रंग व्यापता जा रहा है। ऐसा भी नहीं कि पुरानी पीढ़ी में भी यह दोष नहीं था, लेकिन उतना नहीं जितना कि आज है। कुछ को देखा तो लगा कि वे अशिष्ट होने को आज की आवश्यकता मानते हैं। उनमें कुछ ऐसे भी मिल जाएंगे जो अशिष्टता की सीमा को भी अतिक्रमित कर जाते हैं, उसे भी लांघ जाते हैं। उनमें अधिकांश वे हैं जो नवधनाढ्यों के नेताओं के, समाज में दबदबा रखने वालों के पुत्र पोत्र हैं। अगर गौर से देखा जाए तो उनके द्वारा क्या कुछ नहीं किया जाता, क्योंकि उन्हें ऊपरी संरक्षण प्राप्त होता है। उनमें अशिष्टता रोपी जाती है, क्योंकि वो इसी में अपना हित पाते हैं। अगर आप आज वृद्धजनों से जाकर पूछें कि नई पीढ़ी के लोग आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो उनका यही उत्तर होगा, उनमें अशिष्टता बढ़ती जा रही है, वे अपने से बड़ों का आदर करना तक भूल गए हैं। यही नहीं, कई तो शिष्ट भाषा तक का प्रयोग नहीं करते। अब आपको कई जगह ऐसा ही कुछ मिलेगा, दिखाई देगा। अगर आप बाजार में हैं, तो वहां भी आप यही कुछ दृश्य देखेंगे। यह मेरा ही अपना एक अनुभव है। एक सांझ मैं यूं ही बाजार से गुजर रहा था, मुझे कोई खरीदारी नहीं करनी थी। उस समय मैंने एक दृश्य देखा और चकित रह गया। वे रिटायर्ड प्रोफेसर थे, माने हुए विद्वान और लेखक। वे सांझ जब भी घूमने जाते, लौटते सब्जी बाजार जाते, वहां ताजी सब्जियां खरीदते, तब कहीं घर लौटते। यह उनका अपना नियम था। वे सदैव सादी वेशभूषा में ही रहते थे। उस दिन उन्हें सब्जी तथा कुछ अन्य फलों के साथ सेब फल भी खरीदना था। एक फल वाले की दुकान पर जाकर उन्होंने सेब फल के विषय में पूछा। वह उस बाजार में फल की एक बड़ी और जगमग दुकान थी। उन्हें देख उस युवा दुकानदार ने कहा, बाबा, आपकी हैसियत नहीं कि आप इन सेब फलों को खरीद सके। आप जानते हैं इन दिनों इन सेब फलों का भाव 75 रुपए किलो है, आप आगे जाएं। वे वृद्ध प्रोफेसर तम तमाए आगे बढ़ गए। वे स्तब्ध थे फल दुकान के मालिक पर, उसकी अशिष्टता और अहंकार पर। मैंने जब उस फल वाले से कहा, तुमने जिन वृद्ध को अपनी दुकान से अभी लौटाया, जानते हो वे कौन थे? वे यहाँ के सबसे बड़े कॉलेज के प्रोफेसर रहे हैं, जिनके दिए ज्ञान ने तुम जैसे कईयों को जीवन में ऊंचाई प्रदान की है, और यूं किसी भी वृद्ध का तुम्हें सम्मान करना चाहिए। मेरे इस कहे के जवाब में उसने उसी अहंकार में भरकर मुझसे कहा, ऐसे कई लोग रोज मेरी दुकान पर आते हैं, मैं किस किस का लिहाज करूं, परवाह करूं। उसकी इस जवाब से मैं भी समझ गया था, फलों के मनमाने दाम लगाकर इस दुकानदार ने निश्चित कुछ धन कमा लिया होगा। उसी धन की गर्मी ने उसे अहंकारी और अशिष्ट बना दिया है। अब आप इसे क्या कहेंगे, मानसिक विकृति के अलावा? किसी भी समाज के लिए अशिष्टता और अहंकार जहां विकास में बाधक होता है, वहीं वह उसके सीधे पतन का कारण भी बनता है।
आज भारतीय समाज के एक विशेष वर्ग में यही कुछ देखा जा रहा है। अब दौलत, वैभव, बहुमंजिली इमारतों, बंगलों और महलों में रहने वाले जिनके पास भ्रष्टाचार का धन सिमट कर आ रहा है, उनमें अधिकांश को हम इसी श्रेणी में पाते हैं। उनमें अहंकार तो दिखता ही है, साथ ही शिष्टता की कमी भी सीधी सीधी नजर आती है। ये सब देश के विकास का चित्र प्रस्तुत नहीं करते। याद रखें, किसी देश के सही विकास का चित्र इस आधार पर अंकित होता है कि उस देश के लोग कैसे हैं, उनका चरित्र कैसा है और लोगों के साथ उनका व्यवहार किस तरह का है। वे लोग आपस में किस तरह से व्यवहार करते हैं, समाज में एकता तथा भाईचारा भी है या नहीं, इन्हीं सब से किसी समाज, किसी देश की पहचान होती है। हमेशा ऐसे ही व्यक्ति, ऐसे ही समाज का उदाहरण दिया जाता है। स्मरण आता है उस महान व्यक्तित्व का जिन्होंने शिष्टता, मानवता तथा अहंकार मुक्ति का विश्व में मानव कीर्तिमान स्थापित किया था। सब जानते हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को। उन्हें विश्व में इतिहास पुरुष की संज्ञा प्राप्त है। शिष्ट व्यवहार के लिए उन्हें सदैव याद किया जाता है, उदाहरण दिए जाते हैं उनके। अपनी उत्कृष्ट कार्य प्रणाली के साथ, अपने सरल स्वभाव और शिष्टता के तो वे जीवंत प्रतीक माने जाते हैं। इस संदर्भ में उनका यही कहना था, मैं नहीं चाहता कि कोई अन्य शिष्टता में मुझसे बाजी ले जाए। राष्ट्रपति लिंकन का एक ऐसा ही प्रेरणादायी प्रसंग है जो अपने आप में अद्भुत है। तब लिंकन अपना पहला राजनीतिक भाषण दे रहे थे। मंच पर उस युग के कई महान नेता विराजमान थे। जैसे ही लिंकन ने अपने भाषण का प्रारंभ किया, एक बहुत सामान्य सा व्यक्ति मंच के निकट पहुंचकर उनसे बोला, सुनाओ एप, क्या हाल है? वह व्यक्ति लिंकन का पुराना परिचित था और उन्हीं से मिलने वहां आया था। उसका नाम था जिमी पेंटियर। लिंकन ने भाषण रोका, उन्होंने झुककर पेंटियर से हाथ मिलाया और बोले, ओह चाचा जिमी, कब आए? फिर जिमी का हाथ पकड़कर उसे मंच पर चढ़ाया और अपनी खाली कुर्सी पर बिठा दिया। उसके बाद लिंकन फिर भाषण देने लगे। उसी बीच फिर पेंटियर ने लिंकन से पूछा, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? लिंकन ने फिर भाषण रोककर पूरी आत्मीयता से कहा, सब राजी खुशी हैं। यह लिंकन की मानवीयता, शिष्टता तथा अहंकार मुक्ति थी। मित्रों, आज आवश्यकता है हमें ऐसे ही भाव विचारों को जागृत करना होगा। जहां शिष्टता हो, सभ्यतापूर्ण व्यवहार हो, आपस में स्नेह भाव हो तथा अहंकार से पूरी तरह मुक्ति हो, सभी को अपने मन दर्पण को यही उज्ज्वलता देनी होगी ताकि समाज में व्याप्त विकृतियां समाप्त हों। इसी से हिंसा, आतंक, द्वेष, भेदभाव से समाज मुक्ति पा सकेगा। हमारे समाज को आगे बढ़ाने और हमारी नई पीढ़ी में सभ्यता, शिष्टता का संचार आज हम में से प्रत्येक की जिम्मेदारी है। स्वयं से बदलाव की शुरुआत करें तथा एक शिष्ट समाज के निर्माण में अपना योगदान करें। कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है, सच्ची तो है। अगर प्रत्येक अपनी जिम्मेदारी को समझे और स्वयं में शिष्टता का बीज रोपकर उसकी छाया अपने समाज को दे, तो आने वाली नस्ल भी उसी का प्रमाण देगी और समाज उज्जवल होगा। मन अहंकार से मुक्त हो, जीवन सुंदर हो। बस इसी कामना के साथ नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, हमारी समय सारिणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का, जो है कार्यक्रम पर्यावरण। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं कार्यक्रम पर्यावरण में, जिसका शीर्षक है प्राकृतिक संसाधन और जीवन। इस वार्ता के लेखक और प्रस्तुतकर्ता है माइकल हॉजेस।

पर्यावरण के अंतर्गत प्रस्तुत है वार्ता प्राकृतिक संसाधन और जीवन। लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं माइकल हॉजेस। श्रोता साथियों, मानव द्वारा नित नए आविष्कार अपनी जिंदगी को आरामदायक बनाने और सुविधा के लिए किए गए हैं। इन आविष्कारों से मानव जीवन

सहज और सुलभ तो हुआ है, लेकिन इससे प्रकृति में मानव हस्तक्षेप भी बढ़ा है, जिससे सीधा प्रभाव पड़ा है पर्यावरण पर। प्रकृति में मानव हस्तक्षेप के कारण ही प्रदूषण बढ़ा है और जिसने जलवायु परिवर्तन में भी अपना योगदान दिया है। सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो मानव द्वारा प्रकृति में दखल देने के कारण प्राकृतिक संसाधनों का मनमाना और गैर टिकाऊ ढंग से उपयोग हुआ है, और यही उपयोग प्राकृतिक संसाधनों के विनाश का कारण भी बना हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों का विनाश इसलिए हो रहा है क्योंकि हम प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल बड़ी बेरहमी और लापरवाही से कर रहे हैं। श्रोता साथियों, पर्यावरण प्रदूषण से केवल पर्यावरण को ही नुकसान नहीं पहुंचता है, बल्कि उन सभी लोगों को भी भारी नुकसान पहुंचता है जो अपनी आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। जी हाँ, घने जंगलों के आसपास बसे गांवों में रहने वाले अधिकतर लोग प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहकर ही अपनी आजीविका कमाते हैं। वे पहाड़ों और जंगलों में उगने वाली जड़ी बूटियों को खोजकर उनका संग्रह करके बिचौलियों के माध्यम से कंपनी और कारखानों तक पहुंचाते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि इस काम के लिए उन्हें सुबह से शाम तक पहाड़ों, जंगलों, नालों और नदी के तट पर भटकना पड़ता है, यानी कि इस काम में अत्यधिक श्रम और समय लगता है। लेकिन अब हालात कुछ ऐसे हो चले हैं कि इनका श्रम और समय लगने के बाद भी कभी कभी इन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। यह सब क्यों होता है? क्योंकि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ चुका है, पर्यावरण का प्रदूषण जारी है। जी हां श्रोता साथियों, पर्यावरण के असंतुलन का प्रभाव उन पेड़ पौधों पर भी पड़ता है जिनसे यह गरीब ग्रामवासी जड़ी बूटियां प्राप्त करते हैं। इसी पर्यावरण प्रदूषण के कारण बहुत से पौधे लुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। यह बात इस तथ्य से भी प्रमाणित होती है, जब आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति को किसी जड़ी बूटी के बारे में यह कहते हुए सुनते हैं कि फलां जड़ी या बूटी पहले मिल जाया करती थी, अब तो देखने में ही नहीं आती है। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि अब वह जड़ी बूटी लुप्त हो चुकी है। यह विचार करने वाली बात है कि जो गरीब और जानकार लोग इस जड़ी बूटी के काम से जुड़े हुए हैं, यदि पेड़ पौधे इसी गति से साफ होते रहे, इसी गति से नष्ट होते रहे, तो फिर इन लोगों की आजीविका का क्या होगा? आयुर्वेदिक वैद्य और औषधि विक्रेताओं का क्या होगा? जो लोग जड़ी बूटी की दवाओं का सेवन करते हैं, उन रोगियों का क्या होगा? बाजार में आजकल हर्बल का जमाना फिर लौट आया है। लोग हर्बल के उत्पादनों की मांग करने लगे हैं। वे उस वस्तु को अपने लिए भरोसेमंद और फायदेमंद मानने लगे हैं जो हर्बल उत्पादक हैं। जो प्राकृतिक संसाधनों से बनी औषधियां या क्रीम अथवा हेयर डाई हैं, लोग प्राकृतिक संसाधन की वस्तुओं की मांग इसलिए करते हैं क्योंकि ये वस्तुएं अगर फायदा नहीं करती तो किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं करती हैं। लेकिन हाल ही में विभिन्न विशेषज्ञों अथवा आयुर्वेद के डॉक्टर की जानकारी के बिना उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने मन से या किसी की देखा देखी करके औषधि लेने वाले को यह पता नहीं होता कि किस बीमारी के लिए उसे कौन सी और कितनी मात्रा में तथा कितने दिनों तक दवा लेनी है। यदि वह बिना पूरी जानकारी के ऐसा करेगा तो लाभ के बजाय उसे नुकसान ही उठाना पड़ेगा। क्या आजकल के एलोपैथी के इस जमाने में भी अधिकतर लोग हर्बल प्रोडक्ट की मांग करते हैं? यही कारण है कि आजकल हर सौंदर्य प्रसाधन निर्माता और देशी दवा निर्माता अपनी वस्तु के विज्ञापन में सबसे पहले जो चीज लिखते हैं वह है हर्बल प्रोडक्ट। पर्यावरण प्रदूषण के कारण आज प्राकृतिक संसाधन के स्रोत पेड़ पौधे और फूलों में कमी आई है। कई प्रजातियां नष्ट हो गई हैं और कई विनाश के कगार पर खड़ी हैं।
इसलिए कई निर्माता रसायनों का प्रयोग करके हर्बल के नाम पर रासायनिक पदार्थ बेच रहे हैं। परिणाम स्वरूप लोगों को लाभ के स्थान पर हानि उठाना पड़ रही है और वे हर्बल के नाम पर ठगे भी जा रहे हैं, क्योंकि जब वास्तविक प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध ही नहीं होंगे तो निर्माता उसे लाएंगे कहां से, और यदि उपलब्ध भी हुए तो उनकी ऊंची कीमत के कारण निर्माता उनके स्थान पर नकली वस्तु से ही काम चलाएगा। हर्बल के स्थान पर फिर वह रासायनिक उत्पाद ही बेचता है। बाजार में हर्बल उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को देखकर आजकल कुछ कंपनियों ने अपने खेत और जमीन पर जड़ी बूटियों के नाम पर कुछ प्राकृतिक संसाधनों की खेती करना भी शुरू कर दिया है। वे अपनी जमीन पर उन जड़ी बूटियों की खेती करने लगे हैं जो विभिन्न तरह की दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के बनाने में काम आती हैं। लेकिन उनके उत्पादों को लेकर दो प्रश्न खड़े होते हैं। क्या उनके द्वारा उत्पादित संसाधन उनके उत्पादनों के लिए पर्याप्त होते हैं? दूसरा कि क्या पहाड़ों और जंगलों से दूर की शहरी हवाओं में उनके संसाधन उतने ही समर्थ होते हैं जितने कि पहाड़ों और जंगलों के प्राकृतिक संसाधन होते हैं? श्रोता साथियों, इसलिए बेहतर यही है कि हम अपने आने वाले कल और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करें और उन्हें बचाए रखने के लिए उनका लापरवाही से न तो स्वयं दुरुपयोग करें और न ही किसी अन्य को दुरुपयोग करने दें। श्रोता साथियों, दोनों ही प्रश्न के उत्तर नहीं में होंगे, क्योंकि पहले उत्तर में यह कहा जा सकता है कि उनके द्वारा यानी हर्बल निर्माताओं द्वारा कुछ जमीन के क्षेत्रों में कुछ एकड़ या कुछ बीघा तक ही वे खेती करते होंगे, जबकि उनका उत्पादन उससे कहीं अधिक होता है। इसलिए उनके द्वारा की जाने वाली खेती को किसी भी सूरत में पर्याप्त नहीं माना और कहा जा सकता है। दूसरी बात, उनके द्वारा उत्पादित संसाधनों में वह बात नहीं होती जो पहाड़ों और जंगलों में उत्पन्न होने वाले प्राकृतिक संसाधनों में होती है। भले ही खेती करने वाले कितना भी खाद और पानी क्यों न दे दें, लेकिन क्या वे पहाड़ों की मिट्टी, जंगलों की मिट्टी और वहां का वातावरण और आबोहवा ला पाते हैं? जिन मिट्टी और वातावरण तथा आबोहवा में प्राकृतिक संसाधन पनपते और बढ़ते हैं, इनके अंतर को ठीक गांव के निवासी और शहर के निवासी में अंतर की तरह समझा जा सकता है। जैसे गांव का निवासी शुद्ध मिट्टी और आबोहवा में पला बड़ा शक्तिशाली होता है, वहीं शहर की आबोहवा में पला बड़ा एक सामान्य व्यक्ति कमजोर किस्म का इंसान होता है। श्रोता साथियों, आइए अब जरा कुछ बातें अन्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और दुरुपयोग की भी कर ली जाए। प्राकृतिक संसाधन के रूप में हवा, पानी और मिट्टी को प्राथमिकता के साथ रखा जा सकता है, क्योंकि तीनों ही संसाधन हमारे प्राणों को जीवन देने वाले जीवनदायी प्राकृतिक संसाधन हैं।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पर्यावरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था प्राकृतिक संसाधन और जीवन। इस वार्ता के लेखक और प्रस्तुतकर्ता थे माइकल हजेस। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को। लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत और ये प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो विविधता एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य सर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दे आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को और रिकॉर्डिस्ट है आकाश जांगरा। नमस्कार।

साथियों, रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी अनुष्ठान सत्यस्वर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त सिस्टर गंगा रावत, SSPS। दोस्तों, अभी की सभा 10 से 11 में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक स्वास्थ्य, बाल विकास, बाल जगत और भक्ति गीत। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक, और यह प्रस्तुति है सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: आओ मरियम।
1: आओ बहन, यहाँ ठहरो।
2: तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन। ईश्वर तुम्हारा भला करे।
1: आप आराम करें, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। धीरज रखो बहन, ईश्वर से दुआ करो, प्रसव ठीक तरह से हो जाएगा। ओह, कितना सुंदर बच्चा है।
2: प्रणाम स्वामी। मेरे ईश्वर और मेरे बेटे, तुम्हारा स्वागत है।
0: कितना प्यारा बच्चा है, कितना सुंदर बच्चा है मरियम। ईश्वर के पुत्र का रूप कितना शांत और कितना सौम्य है। वास्तव में ये शांति का राजकुमार है। मरियम, मरियम, तुमने तो संपूर्ण नारी जाति को धन्य बना दिया। तुम धन्य हो, धन्य हो मरियम।
2: धन्य तो आप ही हैं यूसुफ। आपने ईश्वर की कृपा से मुझे हर पल सहारा दिया। देखो देखो, हमारे मिले जुले प्रयास से ही हमारे बेटे ने जन्म लिया, जो वास्तव में तो सृष्टिकर्ता ईश्वर का ही पुत्र है।
3: निर्धनों के लिए इस भौतिक जगत में कोई जगह नहीं। मरियम ने अपने बेटे को न सिर्फ निर्धनता वरन पशुओं के निवास स्थान में जन्म दिया। उसे रेशम के झूले में नहीं, घास फूस पर कपड़ा डाल लिटाया गया। यही है निर्धनों का संघर्ष, जीवन का संघर्ष। इसी स्थिति में ईश्वर का पुत्र जन्मा। मरियम, यूसुफ और ईसा किसी सुनहरे सुखद व संपन्न विश्व के नहीं, वरन हमारे कठोर और खोखले विश्व का एक हिस्सा थे, जिन्हें वो सब कुछ झेलना पड़ा जो एक निर्धन परिवार को झेलना पड़ता है। उसी पवित्र रात जब कुछ चरवाहे ठंड में सिकुड़ते अपने पशुओं के लिए पहरा दे रहे थे, तो प्रभु का दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। उसके चारों ओर ईश्वर का प्रकाश चमक उठा था।
4: ये इतनी तेज रोशनी,
5: हाँ हाँ, इतना उजाला, इतनी तेज रोशनी कि आंखें ही चौंधिया उठी। ये सब क्या हो रहा है?
3: डरिए नहीं, देखिए, मैं प्रभु का दूत हूँ, आपको बड़े आनंद का समाचार सुनाने आया हूँ। आज दाऊद के नगर बेथलहम में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। आप उस बालक को कपड़ों में लपेटा और चरनी में लेटा पाएंगे। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति।
4: मुक्तिदाता, और वो भी नन्ना सा बालक, पर वो चन्नी में क्यों जन्मा?
6: चलो हम बेथलहम चलकर देखें, लगता है वो कोई अनोखा बालक है।
5: मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं ये बात सच भी है या नहीं। अरे, वो उन्हें प्रभु कह रहे थे, क्योंकि प्रभु राजा के महल में नहीं जन्म लेंगे। रहने दो, पता नहीं क्या बात है।
6: इसमें डरने जैसी क्या बात है, उन्होंने कहा है कि डरिए नहीं। चलो चलो, हम अपने मुक्तिदाता को देखने चलते हैं।
4: हाँ हाँ, चलो
6: चलो, हम चलो, हम देखने चलते हैं।
3: प्रभु का दूत इन चरवाहों पर प्रकट हुआ जो गरीब थे, आरामदायक शहरों से दूर रहते थे, अमीरों द्वारा नीची नजरों से देखे जाने वाले निर्धन चरवाहे, मगर ईश्वर की दृष्टि में इतने अमीर कि ईश्वर का संदेश पहले उन्हीं को मिला। ईसा के जन्म के साथ ईश्वर ने अपनी शक्ति व प्यार दोनों प्रकट किया था। प्राचीन समय में ईश्वर की महिमा निर्गमन के शक्तिशाली नेता मूसा पर प्रकट हुई थी, जिसने लोगों को उनकी यात्रा के समय मार्ग दिखाया था। आगे चलकर इस महिमा ने सुलेमान के मंदिर को अपनी शक्ति से भर दिया था, मगर किसे आशा थी कि ईश्वर की महिमा गडेरियों की निर्धन दुनिया पर प्रकट होगी। प्रभु के दूत सभी लोगों तक ये संदेश ले गए, और वो भी सर्वप्रथम उपेक्षितों व निसहाय निर्धनों के पास। चरनी में लेटा बालक शक्ति नहीं, नम्रता का संकेत है। वो भयभीत करने वाला नहीं, वरन आमंत्रण देने वाला है। उसका जीवन धन संपत्ति या शक्ति पर नहीं, मगर स्वयं पिता ईश्वर पर निर्भर है। ये बालक किसी पर अधिकार करने नहीं, मगर भ्रातृत्व, मेल मिलाप और मानवता की ओर आने का खुला निमंत्रण देने आया है। प्रभु के जन्म का संदेश पूर्वी देशों के तीन राजाओं को भी मिला। जब उन तीन राजाओं ने यरूशलेम जाते वक्त एक अद्भुत तारा देखा, तब
0: अरे वो देखो, ये तो अद्भुत तारा है, पहले तो ऐसा कभी नहीं दिखाई दिया।
4: मुझे तो इस तारे में एक कुमारी और सूली लिए एक बालक नजर आ रहा है।
6: और तो और, हमारे ही साथ साथ ये तारा भी चल रहा है।
4: वास्तव में ये तो चमत्कार ही है।
3: राजा का जन्म तो राजमहल में ही होना चाहिए, किसी पशुशाला में राजकुमार का जन्म थोड़े ही हो सकता है। यही सोचते हुए वे तीन राजा अपने अपने उपहार सहित इज़राइली राजा हेरोद के महल पहुंचे।
4: महाराज की जय हो। महाराज, कुछ राजा आपसे मिलना चाहते हैं।
7: राजा? और मुझसे भला क्या काम हो सकता है उन्हें? खैर, उन्हें भीतर आने दिया जाए।
4: महाराज को पूर्व से आए राजाओं का नमस्कार।
7: नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। कहिए, क्या समाचार है?
4: महाराज, हम यहूदियों के नवजात राजा से कहाँ मिल सकते हैं?
7: यहूदियों के नवजात राजा? क्या बक रहे हो तुम? किसने कहा तुमसे ये सब? और तुम्हें कैसे पता चला कि यहूदियों के नवजात राजा जन्म ले चुके हैं?
4: महाराज, हमने उनका तारा उदित होते देखा। हम तो उन्हें दंडवत करने आए हैं।
7: तारा उदित होते देखा? सिपाही हो, राजा हेरोद का हुक्म है कि महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की एक सभा बुलाई जाए। हाँ, और आप भी चाहिए, हम इस बात का अभी पता लगाते हैं।

इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे दिलीप बोस, पीटर, जॉर्ज माइकल, संतोष कुमार, इंदु संतोष और स्वाति बूटे।

साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। प्यारे साथियों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है फादर चार्ल्स वास मुंबई की।

श्रोताओं, अभी आपने सुना एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी फादर चार्ल्स वास मुंबई की। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य और यह प्रस्तुति है सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

साथियों नमस्कार, स्वास्थ्य कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज हम बात करेंगे जीवन शैली परिवर्तन इस विषय को लेकर। साथियों स्वास्थ्य और जीवन शैली वाकई इन दोनों का काफी गहरा साथ है। यदि हम जीवन शैली को लेकर बात करें तो पिछले कुछ समय में काफी लंबा समय हम लोगों ने देखा है कि जीवन शैली एक नकारात्मक स्वरूप में हमारे सामने आती जा रही है। हम सभी यही कोशिश करते हैं कि हमें सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा मिले, हम सभी को मेहनत कम से कम करनी पड़े और हमारा ज्यादा से ज्यादा काम कम से कम शारीरिक मेहनत से हो सके। जी हाँ, दरअसल प्रत्येक मनुष्य की ये वृत्ति होती है कि उसे कम से कम मेहनत करनी पड़े और वो उस कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा काम कर ले और ज्यादा से ज्यादा कर्तव्यों की पूर्ति भी कर ले। लेकिन वृत्ति यही कहती है कि मेहनत कम हो, और शायद इसी मेहनत को कम करने की प्रयत्नों के चलते हम एक ऐसी जीवन शैली के आदि हो चले हैं जिसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने लगा है। तो साथियों आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे नुस्खों की भी, कुछ ऐसी आदतों की भी, और जीवन शैली में हम किस प्रकार से कुछ परिवर्तनों को ला सकते हैं जिसके चलते हम स्वास्थ्य को बनाए रख सकें, या फिर आने वाले समय में यदि कुछ प्रकार की बीमारियां हमें हो सकने की आशंका है हमारी आदतों के चलते, तो उससे भी हम बच सकें। तो विशेष तरीके से किसी बीमारी पर केंद्रित आज का हमारा कार्यक्रम नहीं है, न ही किसी अवस्था को लेकर है, बल्कि हमारे जीने के तरीके को लेकर है कि उसे हम कैसे बेहतर बनाएं, हम किस प्रकार से स्वयं को योजनाबद्ध करें जिससे हम एक स्वस्थ जीवन शैली को जी सकें और सही और स्वस्थ जीवन को हम पा सकें। यदि हम भोजन की बात करें सबसे पहले, तो भोजन में आलू, चावल, तेल, घी, शक्कर और नमक, इसकी मात्रा जितनी कम होगी उतना ही भोजन संतुलित माना जाएगा। ये बात बिल्कुल अलग है कि ये ही चीजें कई बार हमारे लिए स्वाद का पैमाना बन जाती हैं। आलू हो गया, चावल है, ज्यादा तेल, ज्यादा घी, ज्यादा शक्कर और ज्यादा नमक, कई बार हमें ये एक सही स्वाद की अनुभूति करवाते हैं और इसी से हमें अपना भोजन पूरा लगता है, संपूर्ण लगता है। लेकिन खासकर 40 वर्ष की आयु के बाद विशेष रूप से इन चीजों पर यदि नियंत्रण करें तो ये हमें एक सही स्वास्थ्य दे सकते हैं। रोजाना आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम यदि हम घूम सकें, हल्का व्यायाम कर सकें, संभव हो तो बगीचे में घूमें और लंबी लंबी सांस लेकर उसे रोकें और धीरे धीरे छोड़ें, जिसे आजकल हम प्राणायाम कहते हैं, और ये आपको बहुत आसानी से किसी भी पत्र पत्रिका में या फिर टेलीविजन के कार्यक्रमों में विविध प्रकार के प्राणायाम आप सीख सकते हैं। जितना हो सके हम यदि पैदल चलें तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा, हमारे शरीर के रक्त संचरण के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। साथियों जब भी पैदल चलने का अवसर मिले उसे जरूर भुनाएं। यदि घर के पास ही कहीं जाना है तो आप पैदल जरूर जाएं। यदि आपको आपकी कोई सहेली घर पर आकर बैठी है और बातें करना चाहती है तो आप उसे ये प्रस्ताव दें कि चलो हम थोड़ी देर पैदल जाकर घूम आते हैं, कोई काम कराते हैं, हमारी बातचीत भी हो जाएगी, काम भी हो जाएगा और थोड़ा सा स्वास्थ्य भी सुधर जाएगा। साथियों इस प्रकार से यदि हम स्वयं को ही स्वस्थ होने के प्रति प्रतिबद्ध कर लें तो वाकई हम स्वस्थ रह भी सकते हैं। इसके साथ ही यदि हमें हृदय रोग से बचना है तो हंसने का कोई अवसर हमें नहीं गंवाना चाहिए। बिल्कुल, यदि आप खूब हंसते हैं तब आपके हृदय की मांसपेशियों की बहुत अच्छे से व्यायाम हो जाता है और आपका हृदय स्वस्थ रहता है। इसके साथ में ही एक और अध्ययन बताता है कि जो लोग नियमित साइकिल चलाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए या फिर घर पर रखी हुई एक्सरसाइज साइकिल, उन्हें हृदय रोग कम होते हैं या हृदयाघात बिल्कुल नहीं होता। इसके साथ ही यदि कसरत की बात करें, और हम बात कर रहे हैं इन गर्मियों में, तो तैराकी एक बहुत अच्छी कसरत है जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। साथियों नमक की मात्रा वाकई हमें कम करनी चाहिए जिसके ऊपर हम बहुत कम ध्यान देते हैं। 40 वर्ष की उम्र के बाद में हम में से कुछ व्यक्ति शक्कर की मात्रा जरूर कम कर देते हैं या घी या तेल की मात्रा कम कर देते हैं, लेकिन यदि नमक के ऊपर भी हम ध्यान दें तो ये भी उतना ही असर करता है जितना कि शक्कर और नमक। यदि हम शरीर को हर उम्र में, बढ़ती हुई उम्र में भी स्वस्थ और फुर्तीला बनाना चाहते हैं तो भोजन में जई या फिर ओटमील, इसका समावेश जरूर करना चाहिए, और इसके साथ ही केवल गेहूं की रोटी ही खाने के स्थान पर जई के साथ बेसन, मक्का और बाजरा,
इसका समावेश भी उतने ही सही प्रकार से करना चाहिए जितना महत्व आप गेहूं को देते हैं। इसके साथ ही साथियों, यदि संतुलित मात्रा में लिया जाए तो शक्कर और उतनी ही संतुलित मात्रा में गुड़, ये भी लाभप्रद होते हैं। यदि हम रोजाना की जरूरत की बात करें तो व्यक्ति को रोजाना 200 से 300 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है, और जितना संभव हो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों से उसे प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि मांसाहारी भोजन में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। हम ये भी देख सकते हैं कि मनुष्य के हृदय के सच्चे दोस्त होते हैं काजू, बादाम और सूखे मेवे, और यदि हमें हृदय का दुश्मन बनना है तो उसमें जहर का काम कर सकती है तंबाकू। इसके बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है साथियों, आप सभी समझदार हैं। साथियों, काजू और बादाम में जो वसा होते हैं उसके कारण कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। बादाम में 30% कैल्शियम होता है और सोयाबीन में मछली से भी ज्यादा प्रोटीन होता है, जो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। साथियों, इन दिनों हम देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति में उसकी उम्र, उसकी ऊंचाई, उससे कुछ ज्यादा ही चर्बी होती है, यानी व्यक्ति मोटा होता है। वाकई मोटापा मनुष्य का बहुत बड़ा दुश्मन है। लगभग सभी बीमारियों की जड़ मोटापा ही होता है। इसके कारण आपको उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदयाघात, स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस, इस प्रकार की बीमारियां होती हैं। फास्ट फूड खाना, तली हुई चीजें खाना, बहुत ज्यादा देर तक टीवी देखना, बहुत ज्यादा मांसाहारी भोजन करना और सुबह देर से उठना, ये कुछ कारण हैं जिनके चलते शर्तियां मोटापा बढ़ता ही है। और कभी कभी इस प्रकार का आचरण न करने के बावजूद व्यक्ति में यदि मोटापा है तो हम कह सकते हैं कि ये वंशानुगत होता है। इस प्रकार की सभी चीजों को यदि त्याग दिया जाए तो मोटापे से हम बच सकते हैं। यदि आप रात को 10 बजे सोकर सुबह 6 बजे उठे तो आपको पर्याप्त नींद भी मिलेगी, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। सूर्य के दर्शन करें। यदि आप किसी बहुमंजिला इमारत में रहते हैं तो जितना हो सके लिफ्ट का प्रयोग ना करें। यदि हम महिलाओं की बात करें तो वे नृत्य को अपना सकती हैं, रस्सी कूद सकती हैं। यदि व्यायाम करना है तो जॉगिंग करें या सुबह शाम अपनी सहेलियों के साथ मिलकर टेनिस या बैडमिंटन खेलें। इसके साथ एक और प्रकार प्रचलन में है इन दिनों, जिसे हम योगाभ्यास भी कह सकते हैं। हमने प्राणायाम की बात अभी इस कार्यक्रम के प्रारंभ में की ही थी। प्राणायाम के साथ ही कुछ और आसन भी कर सकते हैं, जैसे प्राणायाम में अनुलोम विलोम होता है, कपालभाति प्राणायाम होते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर, मधुमेह और हृदयाघात जैसी बीमारियों से आप बचे रह सकते हैं। इसके साथ ही कुछ विविध प्रकार के आसन यदि आप करें, जैसे पश्चिमोत्तानासन है या फिर शशांकासन है। भोजन के बाद यदि थोड़ी देर के लिए आप वज्रासन में बैठ सकें तो आपका पाचन तंत्र बिल्कुल सही होता है। इसके साथ ही साथियों, यदि सूर्योदय के समय आप जल्दी उठकर सूर्य के दर्शन करें, हरी हरी घास पर, दूब पर आप यदि चलें, तो इसका सीधा असर आपकी आंखों की ज्योति पर पड़ता है। साथियों, इन दिनों जो एक प्रकार चल रहा है चिकित्सा के भी क्षेत्र में, वो वाकई बड़ा अजीब हम कह सकते हैं, या फिर जो खटकने वाला है वो ये है कि जितनी भी बीमारियों के विशेषज्ञ हमें दिखते हैं, वे मरीज को किसी प्रकार का परहेज नहीं बताते और न ही वे मरीज से किसी भी प्रकार के परहेज को पूछते हैं। उनके द्वारा सिर्फ बीमारी का निदान करके और महंगी महंगी दवाइयों को लिखना, विविध प्रकार की जांच करना, इसे ही चिकित्सा का प्रकार समझ लिया जाता है। जबकि यदि रोग को प्रारंभिक अवस्था में ही हम पहचान ले, उसके लिए कुछ विविध प्रकार के भोजन संबंधी या आचार विचार व्यवहार संबंधी परहेज करने के लिए मरीज को कहा जाए, तब ये कहा जा सकता है कि वो बीमारी होने से पहले ही आपसे दूर चली जाएगी। लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में ध्यान देने के लायक ये बात है कि परहेज के ऊपर ध्यान कम दिया जाता है और चिकित्सा पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। साथियों, यदि हम खान पान की आदतें बदलें और जीवन शैली में परिवर्तन करें तो वाकई 75% बीमारियां ठीक हो सकती हैं, या फिर आपका शरीर इतना प्रतिरोधक हो सकता है किसी भी रोग को लेकर कि आपको वे बीमारियां हो ही ना। वाकई जैसे नमक का उपयोग कम करना, मधुमेह में मीठा कम करना, नियमित व्यायाम करना, वसा कम हो ऐसा भोजन करना, जल्दी सोना और जल्दी उठना, प्रसन्न रहना और हरी घास पर सुबह सुबह घूमना, ये जीवन शैली में लाए जा सकने वाले कुछ ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं साथियों, जिनसे आप
स्वस्थ रह सकते हैं। आने वाले समय में भी आपका शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है। इसके साथ ही समय पर भोजन करना, दो आहारों के बीच में कम से कम 4 घंटे का समय रखना, भूख से कम भोजन करना और ढेर सारा पानी पीना, इससे आपके किडनी रोग होने की आशंका बिल्कुल कम हो सकती है। इसके साथ ही साथियों, यदि हम वर्तमान जीवन शैली को देखें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमें घेरे रहते हैं, जिसमें मोबाइल फोन, लैपटॉप और इसके साथ ही कंप्यूटर्स और आईफोन, आईपॉड, इस प्रकार की चीजें न केवल युवा बल्कि हमारे प्रौढ़ हो चुके साथियों तक भी, उनको सभी को घेरे रहती है। इन सभी से निकलने वाले रेडिएशन या विकिरण, इसका प्रभाव आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार से पड़ता ही है। तो जीवन शैली में परिवर्तन यानी सिर्फ समय पर खाना, संतुलित भोजन, व्यायाम करना ये ही नहीं होता, वरन आपको अपने लिए एक स्वस्थ जीवन शैली की सोच विकसित करना भी जरूरी होता है।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम स्वास्थ्य और यह प्रस्तुति थी सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। प्यारे श्रोता साथियों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है फादर चार्ल्स वास मुंबई की।

साथियों, अभी आपने सुना एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी फादर चार्ल्स वास मुंबई की। साथियों, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल जगत और यह प्रस्तुति है सब प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

क्या रे बाल मित्रों, आपके भाई ईशान खापरडे का नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है विचित्र चोरी। तो आइए यह कहानी सुनते हैं। राजा कृष्णदेव राय के निजी बाग में बढ़िया किस्म के बैंगन के कुछ पौधे थे। एक बार राजा ने दरबारियों को दावत दी जिसमें बैंगन की सब्जी भी परोसी गई। तेनाली राम को बैंगन बड़े स्वादिष्ट लगे। घर आकर उसने अपनी पत्नी से उन बैंगनों की बड़ी प्रशंसा की। पत्नी ने तेनाली राम से कहा, इतने स्वादिष्ट बैंगन कम से कम एक बार तो मुझे भी खिलाओ। राजा अपने बाग के पौधों के बारे में बड़े सावधान रहते हैं। उनके बाग में चोरी करने वालों का सिर काट लिया जाता है। ना बाबा ना, मैं बैंगन की चोरी करके नहीं ला सकता, तेनालीराम ने कहा। देखो, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, कम से कम एक बार तो मेरी इच्छा पूरी कर दो, पत्नी बोली। तेनालीराम को अपनी पत्नी के आगे हार माननी पड़ी। एक रात वह चुपके से राजा के बाग में कूद गया और 10-12 बढ़िया बैंगन तोड़ के ले आया। उसकी पत्नी ने बड़े परिश्रम और लगन से उन्हें बनाया। वाह वाह, क्या बढ़िया बैंगन है, तेनाली राम की पत्नी ने चखते हुए कहा। अपने बेटे को भी कम से कम चखा तो देने चाहिए, ऐसा गजब ना कर देना, 6 साल का बच्चा है, अचानक कभी मुंह से बात निकल गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तेनालीराम बोला। यह कैसे हो सकता है, ये बढ़िया बैंगन हम दोनों अकेले बैठकर खा ले और बेटे को चखाएं भी नहीं। कुछ ऐसा सोचो कि वह बैंगन खा भी ले और चोरी भी साबित ना हो, तेनालीराम की पत्नी बोली। बहुत अच्छा, तेनालीराम ने कहा। उसने एक बाल्टी में पानी भरा और खुली छत पर जहाँ बच्चा सोया हुआ था खूब सारा पानी उस पर छिड़क दिया। फिर उसे उठाकर कहा, वर्षा हो रही है, चलो अंदर चलो। अंदर ले जाकर उसने बच्चे के कपड़े बदलवाए। उसके बाद उसे बैंगन की तरकारी खाने को दी। फिर यह कहकर कि वर्षा हो रही है उसे अंदर ही सुला दिया। अगले दिन राजा को बैंगनों की चोरी का पता चल गया। नगर में इस बात को लेकर बड़ा शोर मचा। राजा ने चोर पकड़ने वाले का काफी बड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री अप्पाजी को तेनालीराम पर शक था। उसने राजा को अपना विचार बताया। मैं जानता हूँ कि वह बहुत चतुर है, वह किसी न किसी बहाने बच निकलेगा। उसके बेटे को बुलवाओ, अभी सच्चाई पता चल जाएगी, राजा ने कहा। तेनालीराम के बेटे को बुलवाया गया। उससे पूछा गया, कल रात को तुमने कौन सी सब्जी खाई थी? बैंगन की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट थी, बच्चे ने कहा। प्रधानमंत्री अप्पाजी ने तेनालीराम से कहा, अब तो तुम्हें अपना अपराध स्वीकार करना ही पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, तेनालीराम ने कहा, ये तो कल रात बहुत ही जल्दी सो गया था, यो ही उठपटांग बातें कर रहा है, अवश्य इसे सपना देखा होगा। मैं अभी सारी बात साफ किए देता हूँ, इससे पूछिए कि कल रात मौसम कैसा था। अप्पा जी ने बच्चे से पूछा, कल रात कैसा मौसम था, आकाश साफ था या बारिश हुई थी? कल रात तो बड़ी मूसलाधार वर्षा हुई थी प्रधानमंत्री जी, मेरे सारे कपड़े भींग गए थे, बच्चे ने कहा। रात को एक बूंद भी पानी नहीं पड़ा था, अप्पा जी ने सोचा, यह बच्चा यूं ही कल्पनाएं कर रहा है, जैसे वर्षा की कल्पना की है वैसे ही बैंगन की सब्जी की बात भी सोच ही ली होगी। तब अप्पा जी ने तेनालीराम से अपने शक के लिए क्षमा मांग ली।

साथियों, अभी आपने सुना बाल जगत। साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम बाल जगत और यह प्रस्तुति थी सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। प्यारे श्रोता साथियों, अब सुनते हैं एक बाल गीत और यह प्रस्तुति है सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आपने सुना बाल गीत और यह प्रस्तुति थी सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम बाल जगत और यह प्रस्तुति है सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

प्राचीन काल में एक गांव में एक सेठ रहता था। वह इतना कंजूस था कि अपने नौकरों को काम करने के बाद मजदूरी तक नहीं देता था। इसीलिए उसके यहाँ कोई भी नौकर काम करने को तैयार नहीं होता था। उसके खेतों पर काम करने वाले मजदूरों ने भी उसका खेत जोतने से मना कर दिया। इस तरह उसके खेत बंजर पड़े थे और सिंचाई के लिए काम आने वाले पोखर और कुएं भी सूख गए। खेती और व्यापार ठप हो जाने से सेठ दिनों दिन गरीब होता गया। इतना सब हो जाने पर भी उसका व्यवहार जस का तस रहा। वह भी बहुत ही घटिया और जिद्दी इंसान था। उसे भूखों मरना गवारा था, पर अपनी तिजोरी खोलना नहीं। एक दिन गांव में एक बहुत ही नामी गिरामी महात्मा जी आए। सेठ ने सुना कि महात्मा जी के पास अपार सिद्धियां हैं और वह हर समस्या का हल निकाल देते हैं। साहस करके सेठ महात्मा जी के पास गया और बोला, महात्मन, मैं आजकल बड़ी मुसीबत से घिरा हूँ। मेरे खेत बंजर पड़े हैं और खलियानों में अनाज का एक दाना नहीं बचा है। नदी तालाब और कुएं सूख गए हैं। मेरे यहाँ कोई भी नौकर मजदूर काम करने को तैयार नहीं है। इसलिए वह दिन दूर नहीं जब भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। महात्मन, मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ, कृपा करके मुझे इस घोर संकट से बचाइए। महात्मा बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ। तुम 3 महीनों तक यदि सुबह शाम इस मंत्र का जाप करोगे तो 4वें महीने के पहले दिन तुम्हारे सम्मुख एक ब्रह्म राक्षस प्रकट होगा। वह एक दास की तरह तुम्हारी सेवा करेगा। तुम जो भी आदेश दोगे उसे पूरा करेगा, क्योंकि वह अकेला ही 100 मजदूरों के बराबर काम कर सकता है। खुश होकर सेठ महात्मा के चरणों में गिर गया और उनसे मंत्र और जाप की सारी विधि बताने के लिए कहा। महात्मा जी ने उसे मंत्र देकर और भली बात भी समझा बुझाकर विदा किया। सेठ ने 3 महीनों तक लगातार मंत्र का जाप किया और महात्मा जी के कहे अनुसार 4वें महीने में ब्रह्म राक्षस उसके सम्मुख प्रकट हुआ। सेठ के समक्ष प्रकट होते ही वह बोला, भगवान, आपने मुझे क्यों याद किया है? आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना होगा?

सेठ अपने सामने ब्रह्म राक्षस को देखकर पहले तो डर गया, फिर वह साहस जुटाकर बोला, तुम मेरे सेवक हो, इसलिए तुम्हें मेरे भी आदेशों को मानना होगा। ब्रह्म राक्षस बोला, ठीक है भगवान, मैं आपकी सारी आज्ञाओं का पालन करूंगा, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। किंतु आपको भी मेरी एक शर्त माननी होगी। बोलो, तुम्हारी क्या शर्त है? सेठ ने पूछा। ब्रह्म राक्षस बोला, मेरी शर्त है कि आपको मुझे हमेशा किसी न किसी काम में लगाए रखना होगा, वरना मैं आपको और आपके परिवार को मार दूंगा। सेठ यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ कि उसे इतना अच्छा नौकर मिला है जो हमेशा सेवा में लगा रहना चाहता है। इसके बाद सेठ ने ब्रह्म राक्षस को एक सूखा हुआ कुआं दिखाते हुए कहा, इस कुएं को 2 किलोमीटर लंबा और खोदो। जो आज्ञा भगवान, आपकी हर आज्ञा का पालन होगा। सेवक ने नम्रता से कहा और काम शुरू कर दिया। सेठ ने सोचा कि ब्रह्म राक्षस को इतना बड़ा कुआं खोदने में कई महीने लग जाएंगे, पर उसने घर जाकर खाना ही खाया था कि ब्रह्म राक्षस काम खत्म करके वहां पहुंच गया। सेठ हैरान होकर पत्नी से बोला, यदि यह इसी रफ्तार से काम करता रहा तो हम इसे कब तक काम दे पाएंगे? इस तरह तो एक दिन खाली होकर यह हम सबको मार डालेगा। पत्नी सेठ को दिलासा देते हुए बोली, स्वामी आप चिंता न करें, आप जब तक उसे काम दे सकते हैं दें, उसके बाद में मैं उसे ऐसा काम दूंगी जिसमें वह लंबे समय तक लगा रहेगा। सेठ ने उसे कई काम करने को दिए, पर उन कामों को उसने मिनटों में निपटा दिया। फिर ब्रह्म राक्षस ने गरज कर कहा, कोई और काम बचा है तो बताएं। वह सोच रहा था कि अब मालिक के पास कोई काम नहीं बचा है, इसलिए वह शर्त के मुताबिक उनको मारकर खा लेगा। सेठ बोला, मेरी पत्नी का एक काम तुम्हें करना होगा। मुझे लगता है कि इस काम को पूरा करने में तुम्हें वर्षों लग जाएंगे। इसके बाद सेठ की पत्नी ने अपने सिर से एक बाल तोड़कर ब्रह्म राक्षस को देते हुए कहा, इस बाल को सीधा करके मुझे दो। ब्रह्म राक्षस ने बाल लेकर उसे सीधा करने का बहुत प्रयास किया, पर वह उसे सीधा नहीं कर पाया। तब ब्रह्म राक्षस ने सोचा, सुनार सोने के तार को आग में गर्म करके सीधा करता है, क्यों न मैं भी उसी उपाय को अपना कर देखूं? यह सोचकर उसने जैसे ही आग के सामने बाल को किया, बाल जल गया। ब्रह्म राक्षस डर गया कि उसका मालिक काम पूरा न होने पर उसे दंडित करेगा, इसलिए वह वहां से कहीं दूर भाग गया।

साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम बाल जगत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। प्यारे श्रोता साथियों, अब सुनते हैं हम एक और भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आपने सुना एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। प्यारे श्रोता साथियों, अब मैं अगली सभा का निर्देशन के लिए आमंत्रित करती हूँ विवेक पीटर रॉबर्ट को। धन्यवाद।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोता मित्रों को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी की समय सारिणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम कृषि जगत, कानूनी ज्ञान, वसुधैव कुटुम्बकम और अंत में नाटक। तो दोस्तों, अब हम अपनी समय सारिणी के अनुसार हमारा यह कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम कृषि जगत की वार्ता से। तो आइए मित्रों, सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति है कवि भारती पटना की।

0: मुखिया जी, कृषि जगत कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मुखिया जी, सुना है कि राज्य को हरा भरा बनाने के लिए हरियाली मिशन योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें कई किस्म के पौधे लगाने की योजना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही सुना है कि ये राज्य सरकार की ओर से यह पहल की गई है एक योजना के तहत, जिसको हरियाली मिशन योजना के नाम से जानते हैं। हरियाली मिशन में पौधों की विभिन्न प्रजातियों पर खास ध्यान होगा। यह योजना पर्यावरण एवं वन विभाग की ओर से बनाई गई है। हरियाली मिशन के तहत पौधों की वैरायटी का भी खास ख्याल रखा जाएगा, या यूं कहें कि खास ध्यान रखा जा रहा है अभी से ही।
0: तो इसके लिए भूमि का चुनाव भी कर लिया गया है क्या मुखिया जी? किस तरह की भूमि में इस योजना को अंजाम दिया जाएगा, यह तय किया गया है कि नहीं?
1: 5 वर्षों में अवकृष्ट वन भूमि और वनों से बाहर की भूमि पर करीब 21 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सभी प्रजातियों के पौधों को शामिल करने के लिए पर्यावरण एवं वन विभाग ने कार्य योजना तैयार की है।
0: किस तरह के वृक्षों को लगाने का प्रावधान बनाया गया है इस योजना के तहत?
1: लकड़ी और व्यावसायिक उपयोग वाले पौधों के अलावा जो पौधे लगाए जाएंगे उनमें फलदार वृक्ष भी होंगे, सौंदर्य प्रसाधन को बनाने वाले पौधे होंगे, औषधीय दवा दारू के पौधे होंगे। इस तरह के ये तमाम पौधों को इस योजना के तहत महत्व दिया गया है और इसके तहत इन तमाम महत्व के पौधों को भी शामिल किया गया है।
0: तो क्या मुखिया जी, अलग अलग महत्व के प्रजातियों का भी वर्गीकरण किया जाएगा?
1: जी हाँ, ऐसा लगता है कि अलग अलग महत्व के प्रजातियों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। पौधों की बांटी गई इस श्रेणी के आधार पर ही पौधरोपण किया जाएगा और निजी पौधशालाओं को भी विकसित किया जाएगा। मसलन शहर के सड़कों के किनारे या अन्य खास स्थानों पर सौंदर्य प्रधान प्रजाति वाले पौधे लगाए जाएंगे।
0: इस योजना के तहत किस तरह के पौधों को काफी प्रमुखता के तौर पर शामिल किए जाने की योजना है?
1: इस योजना के तहत, जिसे कृषि वानिकी योजना भी कहा गया है, इसमें पॉपुलर जैसे व्यावसायिक पौधों को प्रमुखता से शामिल किया जा रहा है।
0: तो फिर इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किस तरह के पौधों का चयन किया गया है?
1: ग्रामीण क्षेत्रों में फलदार पौधों को लगाने की योजना है। इसके अलावा क्षेत्रों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए या विशेषताओं के हिसाब से भी प्रजातियों का चयन किया जाएगा। अगर बात करें कि जल जमाव वाले क्षेत्रों की, तो जल जमाव वाले क्षेत्रों के लिए भी कुछ खास प्रजातियों के पौधों का चयन किया गया है।
0: पॉपुलर पौधों में किस तरह की विशेषताएं पाई जाती है जिससे सरकार इस ओर काफी ध्यान दे रही है?
1: पॉपुलर पौधों को विशेष व्यावसायिक महत्व वाला माना गया है। इसे छोड़कर अन्य सभी प्रजातियों के करीब 9.5 करोड़ पौधों को लगाने की योजना है।
0: इस विभिन्न प्रकार के पौधों की प्रजातियों को विकसित करने के लिए सरकार की किस तरह से पहलकदमी की गई है?
1: सरकार की तरफ से जो पहलकदमी की गई है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि इन विभिन्न प्रजातियों वाले पौधों को विकसित करने के लिए निजी पौधशालाओं को स्थापित किया गया है या स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। विभिन्न प्रजातियों में श्रेणीवार पौधशालाएं स्थापित किए जाएंगे ताकि विभिन्न प्रकार के प्रजातियों के पौधों की आपूर्ति कम नहीं पड़े।
0: ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि सूबे में सोसाइटी करेगी कृषि बाजारों का संचालन।
1: जिले में खुलने वाले निजी बाजारों के संचालन के लिए सरकार सोसाइटी बनाएगी, ऐसा मुझे भी सुनने में आया है। बाजारों के प्रोजेक्ट पास करने के लिए उनके विकास और संचालन तक की जिम्मेवारी अब इसी सोसाइटी के हाथ में होगी। साथ ही साथ यह किसानों को प्रशिक्षित भी करेगी ताकि राज्य सरकार ने भंग कृषि बाजार का विकल्प ढूंढ लिया है, इसकी प्रक्रिया अभी चल रही है।
0: हमारे यहाँ पहले तो बाजार समितियाँ थीं, क्या उसे भी भंग कर दिया गया मुखिया जी?
1: राज्य में 95 बाजार समितियों को वर्ष 2006 से ही सरकार ने भंग कर दिया था। कृषि उत्पादों की अच्छी कीमत दिलाने के लिए हर जिले में बाजार खोलने का फैसला भी पहले हो चुका है, लेकिन इसके संचालन की जिम्मेवारी अभी तक तय नहीं हो सकी थी।
0: तो क्या अब सरकार ने जिम्मेदारी तय कर दी है या अब इस समस्या को दूर कर लिया गया है?
1: अब सरकार की नई पहल से यह समस्या दूर होने वाली है। विभाग में प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सोसाइटी अस्तित्व में आ जाएगी, फिर बाजार खोलने की प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी।
0: बाजार खोलने का जो काम है, क्या वह चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा? इस बाबत सरकार के पास क्या मसौदा है?
1: सरकार ने पहले चरण में 11 जिलों में कृषि उत्पादों का आधुनिक बाजार खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दूरी अधिक होने पर गांव में भी इन बाजारों की छोटी इकाइयां खोलने की योजना है।
0: क्या इस बाजार को खोलने के लिए सरकार को किसी प्रकार का कोई टैक्स भी देना पड़ेगा?
1: किसी भी बाजार के लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा। सुविधाओं का उपयोग करने के लिए या सुविधाओं का उपयोग करने पर सिर्फ उसका किराया देना पड़ेगा। पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, बेगूसराय, समस्तीपुर, गया, भोजपुर, रोहतास जिले में मार्केट हब बनेंगे। सभी बाजारों को एग्री बिजनेस सेंटर के नाम से विकसित करने का प्लान है। कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। जल्द ही इन सेंटरों के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जमीन की व्यवस्था निजी पार्टनर को करनी होगी।
0: इस पूरी प्रक्रिया को जो पैसे खर्च होंगे उसका अनुमान क्या है और वह राशि कहाँ से आएगी?
1: इस पर कुल 374.74 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें अधिकतम 35% की मदद सरकार करेगी। टेंडर उन्हीं प्लॉट किया जाएगा जो सरकार से कम सहयोग मांगेंगे। इन बाजारों की सुविधाएं इलाके की मुख्य फसलों के अनुसार होगी। हालांकि पैक हाउस, बेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, छटनी और ग्रेडिंग जैसी जरूरी सुविधाएं सभी बाजारों में होगी। मार्केट हबों के निकट के किसानों को अपने उत्पादों को लेकर सीधे बाजार पहुंचना होगा या वे बाजार पहुंच जाएंगे, लेकिन दूर के किसानों के लिए उनके गांवों के आसपास ही संग्रहण केंद्र बनाने की योजना इस हरियाली मिशन के तहत है। आशा है कि हमारे किसान भाई इस योजना का भरपूर फायदा उठाएंगे और साथ ही साथ सरकार भी इस ओर ज्यादा ध्यान देगी। अगली बार जब आपसे मुलाकात होगी तो खेती की स्थिति से संबंधित हम कुछ और विशेष बात करेंगे। अभी हम चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद
0: जी। धन्यवाद मुखिया जी।

अभी आप सभी सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। दोस्तों, इस वार्ता में हमें काफी सारी महत्वपूर्ण और रोचक बातें बताई गई हैं और मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी किसान श्रोताओं को इन बातों से लाभ हुआ होगा। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉयड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआं पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब हम अपने अगले कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं जो हमें कानून के बारे में बताएंगे। जी हाँ साथियों, मैं अपने अगले कार्यक्रम कानूनी ज्ञान के बारे में ही कह रहा हूँ। तो आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम कानूनी ज्ञान और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: कपूर साहब और रितेश जी, कानूनी सलाह कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी आपका भी धन्यवाद।
0: कपूर साहब, आपको शायद याद होगा कि पिछले कानूनी परिचर्चा में हम बात कर रहे थे खास करके स्त्रियों के मानवाधिकारों की जो हत्या हो रही है
1: जी।
0: और किस तरह से पारिवारिक के प्रति सत्ता ढीली हो जाती है तो सामाजिक के प्रति सत्ता हावी हो जाती है, इसका चर्चा आप काफी विस्तार पूर्वक कर रहे थे और इसके बारे में और बहुत सारी जानकारी आपसे चाहिए।
1: जी बिल्कुल, मैं आपको उदाहरण दर उदाहरण बताकर समझाता चलूंगा। देखिए वीरेंद्र जी, असल में मामला यहाँ ये है कि मिसाल के तौर पर एक गांव के मुखिया की लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की थी।
0: अच्छा।
1: शादी असफल रही, तलाक की नौबत आई, परिवार ने अपनी बेटी को नौकरी, संपत्ति का अधिकार, अपने लिए श्रम जीवन साथी चुनने का अधिकार दे दिया था और तलाक की स्थिति आई तो न केवल उसे हर तरह का सहयोग और संरक्षण दिया बल्कि उसे दूसरी शादी तक के लिए प्रोत्साहित किया। गांव के समाज ने लड़की की मर्जी से शादी तक को उसके पिता के प्रभाव के कारण दबे स्वर में स्वीकार किया, लेकिन तलाक की स्थिति आते ही उसने न केवल खुला विरोध किया बल्कि अन्य परिवारों की लड़कियों को उससे मिसाल देकर अपनी मर्जी से शादी या रोजगार के अधिकार के मामले में हतोत्साहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये घटना पूर्णिया जिले के एक अपेक्षाकृत शिक्षित सुसंस्कृत गांव की है। जाहिर है सामाजिक पितृसत्ता ऐसे मामलों में पारिवारिक पितृसत्ता से ज्यादा कठोर भूमिका अदा करती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल कपूर साहब,
2: तब तो ऐसा लगता है कपूर साहब कि जब सामाजिक पितृसत्ता इतना भयावह है तो राज्य पितृसत्ता की त्रासदी और भी गंभीर होगी।
1: जी हाँ, राज्य पितृसत्ता सामाजिक पितृसत्ता से भी ज्यादा त्रासद माहौल देती है। जब स्त्री के अधिकार का प्रश्न आता है तो राजसत्ता अपने आप में दमन शोषण का सबसे बड़ा संस्थागत रूप है। उसके औजार चाहे नौकरशाही हो, चाहे प्रशासन का विभिन्न स्तर, पुलिस हो या न्यायपालिका, जनप्रतिनिधि कहे जाने वाले राजनीतिक हो या नीति निर्देशक, बुनियादी बात यह है कि राजसत्ता आखिर प्रतिनिधित्व तो उसी समाज का, समाज के उन्हीं मूल्यों का करती है जिन पर समाज की संरचना टिकी रहती है।
0: जी जी,
1: शासक वर्ग और शासित जन के राजनीतिक अर्थशास्त्र की भाषा छोड़ दें और सामाजिक सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक नजरिए से चीजों को देखें तो यह समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है कि किसी कटोरी देवी को इस व्यवस्था में न्याय मिलने में 14 साल का यंत्रणा वास क्यों भुगतना पड़ता है और किसी भौरी देवी को कोई न्यायालय न्याय देना तो दूर, उन्हें ज्यादा अपराधी क्यों प्रमाणित कर देने से नहीं चूकता।
0: बिल्कुल, जो तस्वीर की ओर आप इशारा कर रहे हैं कपूर साहब, वो काफी भयावह है
1: जी।
0: आप जो भयावह तस्वीर हम लोगों के सामने पेश कर रहे हैं वो सचमुच मानवाधिकार हनन का एक नंगा सच है।
1: बिल्कुल,
0: इसे कोई झुठला नहीं सकता। आज भी पुलिस बर्बरता और जन प्रतिनिधियों द्वारा स्त्रियों के साथ बलात्कार की घटनाएं क्यों होती है और राजनीतिक पावर ऐसी घटनाओं को सफलतापूर्वक दबा देने में कैसे सक्षम होता है, ये बात तो शायद अब किसी से छिपी नहीं है। आखिर कैसे स्त्रियों के मानवाधिकार की रक्षा की जाए, यह प्रश्न जो है वो आज के दौर में एक विकराल प्रश्न है और इस पर मैं आपका नजरिया जानना चाहता हूँ।
1: देखिए वीरेंद्र जी, स्त्रियों के मानवाधिकार की रक्षा के लिए संघर्षशील ताकतों को कदम कदम पर राज्य सत्ता की राज्य पितृसत्ता से भी टकराना होगा। ये टकराव किसी आदिवासी दलित महिला के साथ दुर्व्यवहार से लेकर किसी कोयल कारों परियोजनाओं में हजारों की संख्या में विस्थापित होने वाले परिवारों के लिए पुनर्वास तक के क्षितिज को समेटना है। स्त्रियों के दहेज रहित विवाह से लेकर रोजगार के अधिकार और विकास के मौके से पर्यावरण बचाव आंदोलन तक पसर जाता है। मानवाधिकार का ये संघर्ष किसी नवविवाहिता की दहेज हत्या से लेकर सामूहिक बलात्कार की शिकार कोई औरत जिसकी सामाजिक पारिवारिक राज्य पितृसत्ता संरक्षण के बजाय व्यवस्था से निष्कासन का माहौल देती है
0: जी,
1: तक अपने मानव होने के अधिकार से वंचित नजर आती है तो इसके लिए संघर्ष जरूरी हो जाता है।
2: ऐसे में अगर देखा जाए कपूर साहब, तो स्त्रियों के मानवाधिकार घर से समाज, समाज से राज्य, राज्य से राष्ट्र तक के हर कहीं चुनौती झेलते नजर आते हैं। पितृसत्ता का मतलब आखिर क्या समझा जाए समाज में? पुरुषों की सत्ता, चाहे पिता के रूप में हो या पुरुष के रूप में।
1: देखिए रितेश जी, बिल्कुल इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए, लेकिन ये आसान सी व्याख्या का मौजूदा रूप सिर्फ जेंडर सुप्रीमेसी नहीं है।
2: जी जी,
1: जब हम पितृसत्ता कहते हैं तो उसका अर्थ एक के पक्ष में जाता है और दूसरे के खिलाफ, इसलिए हमारी सामाजिक संरचना पावर को जीरो सेम गेम के रूप में देखती है। जब स्त्रियां अपने अधिकारों की बात करती हैं तो पुरुष के मुकाबले स्त्री के अधिकारों की जब बात होगी तो वो ये अधिकार का दावा एक व्यक्ति के मुकाबले दूसरे व्यक्ति का होता है, न कि पुरुष के मुकाबले स्त्री का।
0: लेकिन एक बात यह भी है कपूर साहब कि हमारे समाज में ऐसे परिवारों की भी कमी नहीं है जहां औरतें घर की वास्तविक शासक होती हैं और मर्द की हैसियत महज एक जेब की सी रह जाती है। दूसरी बात है कि ऐसे पारिवारिक प्रारूप कम ही देखने को मिलते हैं और जो होते हैं वहां भी डिफेक्टो शासन भले ही स्त्रियों का चले, डिजोन स्टेटस पुरुषों को ही प्राप्त होता है। समाज के स्तर पर यही बात लागू होती है, जब स्त्रियों के अधिकारों के खिलाफ पुरुषों को भी साथ साथ अक्सर स्त्रियों को भी स्वर मिलाते पाया जाता है।
1: जी हाँ,
0: यह बात तथ्य से अलग हटकर कह रहे होंगे शायद कपूर साहब, आपको समझ में?
1: आप सही कह रहे हैं वीरेंद्र जी,
0: सामाजिक व्यवस्था स्त्रियों को पुरुषों के सुर में ही बोलना सिखाती है।
1: एकदम सही बात है, सत्ता जब जब जहाँ स्त्रियों के हाथ में होती है वहाँ उन्हें पितृसत्ता के कट्टर प्रतिनिधि के रूप में व्यवहार करने या करते पाया गया है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वही बात मैं कहना चाह रहा था।
1: स्वर्गीय इंदिरा गांधी की मिसाल सामने है, जिन्होंने बागपत कांड के बाद माया त्यागी से मुलाकात के लिए बड़ी मुश्किल से समय निकाला था और चंद मिनटों की मुलाकात में सिर्फ ये पूछा था उसे किसने मिलने भेजा था, उनका मतलब विपक्षी राजनीतिक दलों से था, और उसको कितना आर्थिक घाटा हुआ, तथा अंत में ये नसीहत दी गई कि माहौल जब ठीक नहीं है तो इतने जेवर पहनकर घर से निकलने की क्या जरूरत थी। एक महिला प्रधानमंत्री का एक बलात्कार पीड़ित महिला से ऐसे सवाल साफ बताते हैं कि स्त्री परक संवेदनशीलता शासक वर्ग में नहीं होती, चाहे वह पुरुष हो या महिला।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: इसी संदर्भ में एक बात मैं और आपको याद दिलाना चाहता हूँ कपूर साहब, कि हमारे देश में प्रोफेसर धर्म कुमार जैसी प्रख्यात महिला अर्थशास्त्रियों का भी अभाव नहीं है, जो आधुनिक तकनीकी औजार अस्थिनियो सिंथेसिस पर हुए नारीवादी आंदोलन के संदर्भ में यह बयान जारी करने से भी नहीं चुकती कि स्त्री शिशुओं की हत्या से समाज के स्त्री पुरुष अनुपात में फर्क होगा, जिसका अर्थ होगा महिलाओं की समाज में कम आपूर्ति और पुरुषों की मांग में सापेक्षिक कमी। जब महिलाएं कम होंगी तो बाजार के नियम के अनुसार उनकी मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो उनके जीवन दशा में सुधार होगा।
1: बिल्कुल सही बात है, जाहिर सी बात है, इंदिरा गांधी या धर्म कुमार जैसी स्त्रियां पितृसत्तात्मकता का प्रतिनिधित्व करती हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल कपूर साहब,
1: और जब पिता की सत्ता का अर्थ एक जेंडर विशेष की सत्ता नहीं रह जाता, पितृसत्ता तभी अपनी उपस्थिति दर्शाती है जब जन आंदोलनों में स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी को मौके की जरूरत मानकर स्वीकारा जाता है, लेकिन शांति कायम होते ही उन्हें घर के भीतर धकेलकर ये कहा जाता है कि मर्दों की बातों में दखल न दे। सीपीआई के नेतृत्व में हुए तिलांगना आंदोलन और मध्य बिहार के क्रांतिकारी नक्सलवादी आंदोलन तक स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी का इतिहास तक लिखने की जरूरत नहीं की जाती। सीपीआई एमएल लिबरेशन तक महिला कामरेडों की भूमिका की तो चर्चा करता है, लेकिन जब दस्तावेज लिखता है तो महिला को केंद्र में रखकर एक अलग महिला पक्षी दस्तावेज तैयार नहीं कर पाता।
0: बिल्कुल कपूर साहब, ये काफी हास्यास्पद बात है जो प्रतिसत्तात्मक के पहलू से जुड़ा हुआ है और जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। चिपको आंदोलन का भी तो वही हाल है कपूर साहब
1: जी,
0: चिपको आंदोलन की वास्तविक नायिकाएं कहीं पृष्ठभूमि में नहीं रह जाती, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भाषण देते हैं श्री सुंदर लाल बहुगुणा और देते रहे थे, जिनको इस योग बनाने का दायित्व वहन किया उनकी पत्नी बिमला बहुगुणा ने। मिसालें ज्यादा उत्तेजित करें लेकिन ये तथ्य है और उनकी अवहेलना करना उसी प्रतिसत्तात्मक व्यवस्था को पुष्ट करना हो, जिसको कमजोर किए बगैर स्त्री को उसके अधिकार, मानव होने के अधिकार नहीं मिल सकते, तो पितृसत्ता के पोषक सिर्फ पुरुष नहीं है और नारीवादी सोच सिर्फ स्त्रियों की बपौती नहीं, जो स्त्री को एक मनुष्य समझने, उसके अनुरूप आचरण करने की परिपक्व समझदारी का परिचय दे, जो स्त्री के कुदरती, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सर्वपक्षी अधिकारों के प्रति जागरूक हो या लड़े, वो स्त्री हो या पुरुष, परिवार हो या कोई अन्य संस्था, समाज हो या राज्य हो या फिर राष्ट्र हो, वही सही नारीवादी है। आज नारीवाद का अर्थ यही है, शायद जो मैं समझता हूं।
1: आपका कहना वीरेंद्र जी सही है, बिल्कुल सही है। सोच के इस बिंदु पर पहुंचकर सवाल ये भी पैदा होता है कि पितृसत्तात्मकता की परंपरागत परिभाषा की आज बदलने की जरूरत तो नहीं है।
2: चूंकि नागरिक अधिकारों के संरक्षण के लिए न्याय व्यवस्था और पुलिस की राज्य सत्ता मुख्य रूप से सक्रिय जिम्मेदारी देती है कि इसलिए पुलिसिया अत्याचार या न्यायिक अन्यायों के खिलाफ संघर्ष जारी रहा है। उस सिलसिले में स्त्रियों के खिलाफ पुलिस और कानून के व्यवहार की चर्चा जरूरी है।
1: बिल्कुल जरूरी है रितेश जी। मैं आपको बता दूं कि राज्य सत्ता ने सामाजिक कानूनों के अंतर और सामाजिक कानूनों के आधार पर जो भी कानून बनाया है, उनकी त्रासदी ये है कि या तो ये कानून पितृसत्तात्मकता को ही मजबूत करते हैं, या नहीं तो जो गिने चुने प्रगतिशील कहे जाने वाले कानून हैं, उनका स्वरूप ऐसा है कि उनका इस्तेमाल स्त्रियों के पक्ष में इस व्यवस्था के तहत हो ही नहीं पाता। पहली श्रेणी के कानूनों की एक मिसाल संपत्ति का अधिकार हो सकता है, तो दूसरी तलाक के मामलों में बच्चों पर मां का सीमित अधिकार हो सकता है। तलाक से संबंधित कानून 5 वर्ष की उम्र तक बच्चे की परवरिश का हक मां को देता है और 5 वर्ष से 14 वर्ष तक उम्र तक के पिता को, उसके बाद बच्चे की मर्जी को।
0: कपूर साहब, इसके बारे में और बहुत सारी जानकारी आपसे प्राप्त करेंगे, लेकिन अगले कार्यक्रम में अभी हम लोग चलते हैं, फिर मिलेंगे तो बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानूनी ज्ञान के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

भी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, हमारी समय सारिणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जो है वसुधैव कुटुम्बकम। तो आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम वसुधैव कुटुम्बकम के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है गौतम बुद्ध और उनकी जीवन यात्रा, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

व्यक्ति विशिष्ट वार्ता सुनी, गौतम बुद्ध और उनकी जीवन यात्रा। दोस्तों, गौतम बुद्ध महान पुरुषों में गिने जाते हैं। वे ज्ञानी एवं हितैषी पुरुष थे। उनके बचपन का नाम गौतम या सिद्धार्थ था। उन्हें बुद्ध का नाम तब दिया गया जब वे 35 वर्ष पार कर चुके थे। वे कपिल वस्तु के योद्धा शाक्य वंश से ताल्लुक रखते थे। वैसे तो दोस्तों, युवा सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम भी कहा जाता था, के बचपन का उल्लेख बुद्ध के मर्म स्पर्शी उद्धरण में मिलता है। बात उस वक्त की है जब वे सन्यासी के रूप में घोर तपस्या कर रहे थे। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और मां का नाम था माया। कहा जाता है दोस्तों, गौतम के शैशव काल में ही उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। ऐसी स्थिति में गौतम का लालन पालन गौतमी नाम की एक स्त्री ने किया था। गौतम का जन्म शाक्य वंश में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि उनका जन्म ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष पहले हुआ था। दोस्तों, भगवान बुद्ध जब 29 वर्ष के थे, उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया, एक बड़ा बदलाव आया। एक दिन अचानक वे राजपाट भोग विलास की वस्तु त्याग कर घर से निकल पड़े। वे घुमक्कड़ सन्यासी बन गए। उनके मन में यह विचार कैसे आया, उसके पीछे भी एक रोचक कथा है। कहा जाता है, शानो शौकत में डूबे गौतम को बुढ़ापा, मृत्यु, जन्म, बड़ बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वे भोग विलास में इतने लिप्त थे कि बाहरी दुनिया के बारे में उन्हें तनिक भी जानकारी न थी। दोस्तों, एक दिन अपने रथ में जाते हुए बुद्ध ने अपने सारथी से पूछा, यह कैसा आदमी है जिसका शरीर झुका हुआ है और कांप रहा है? इसके बाल सफेद हैं, दांत टूटे हुए हैं और वह छड़ी के सहारे चल रहा है। सारथी ने बताया कि बुढ़ापे में हर आदमी ऐसा ही हो जाता है। कुछ दिन बाद गौतम ने अपने रथ से एक बीमार आदमी को देखा। गौतम बुद्ध रोग से पीड़ित व्यक्ति को देख द्रवित हो उठे। उनके दुख का ठिकाना नहीं रहा। एक दिन गौतम बुद्ध का रथ एक शव यात्रा से होकर गुजरा। फिर उन्हें ज्ञात हुआ कि हर आदमी एक न एक दिन मर जाता है। अब उन्हें पूरी तरह से पता चल चुका था कि मनुष्य का जीवन दुख तकलीफों से भरा पड़ा है। तभी एक दिन उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो पीताम्बरी वस्त्र धारण किया हुआ था। उसका सिर मुंडा हुआ था और मुखाकृति शांत थी। उस सन्यासी को देखते ही बुद्ध ने तय कर लिया कि मुझे भी इसी सन्यासी की तरह बनना है, क्योंकि जीवन में सुख नहीं है। परेशानी, पीड़ा, दुख के अलावा गृहस्थ जीवन में कुछ नहीं है। क्या सन्यासी दुनिया की सारी सुख सुविधाओं से दूर है? फिर क्या था, गौतम बुद्ध ने अपना सिर मुंडवा लिया और भगवा वस्त्र धारण कर लिया। बुद्ध का यह रूप देखकर उनके माता पिता की आंखें नम हो गईं, पर कुछ किया नहीं जा सकता था, क्योंकि बुद्ध निर्णय ले चुके थे। दोस्तों, गृहस्थ से यायावरी का जीवन बुद्ध को रास आने लगा। भारत के पूर्व और उत्तर में वे जगह जगह घूमते रहे। एक घुमंतु सन्यासी के रूप में बुद्ध सन्यासी एवं उपदेशक की तरह कौशल और उसकी राजधानी श्रीवस्ती गए, जो उनके जीवन के अंतिम चरण में उनका मुख्यालय बन गया था। भारत के कई कई हिस्सों में बुद्ध को सुना और देखा गया। पूरे एशिया में गौतम बुद्ध घूम घूमकर उपदेश देते रहे। ऐसा कहा जाता है कि यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस बुद्ध से कुछ बड़े थे। ये भी कहा जाता है कि इटली में रोम साम्राज्य की स्थापना बुद्ध से 200 साल पहले हो चुकी थी। यूरोप में इत्रुस्कन का प्रभाव फैल रहा था और इधर भारत में बुद्ध की प्रसिद्धि कौशल और मगध में बढ़ रही थी। दोस्तों, बुद्ध का बुद्धत्व धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। उन्होंने मानव सभ्यता पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ने के बाद बुद्ध ने अपना पहला सफर तय किया। वे सिद्धार्थ से
गौतम के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। 35 की उम्र तक गौतम सन्यासी की तरह भटकते रहे, एक ऐसी पीड़ा का संसार ढूंढते रहे जिससे जीवन पीड़ा समाप्त हो जाए, मानव की पीड़ा समाप्त हो जाए। यह गौतम के जीवन का दूसरा चरण था। अपने जीवन के तीसरे चरण तक गौतम 35 से 80 वर्ष तक लोगों को घूम घूमकर उपदेश देते रहे। दोस्तों, गौतम स्वयं ही बताते हैं कि घर छोड़ने के बाद वे पहले अनेक सन्यासियों की शरण में गए। इसके बाद इन सन्यासियों ने उन्हें ध्यान, योग, ज्ञान, विद्या के बारे में बताया, जीवन की पवित्रता की शिक्षा दी। पर गौतम की जिज्ञासा को वे सन्यासीगण पूरी नहीं कर पाए। उनके मन की उलझनों, सवालों को पूरी तरह से सुलझाने में असमर्थ रहे। गौतम के प्रश्नों, खासकर दुख पीड़ा से संबंधित सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसलिए गौतम उन्हें छोड़कर मगध में आम लोगों के बीच भटकने लगे। उन्हें एक सुंदर उपवन मिला जहां निर्मल जल वाली नदी बह रही थी। बुद्ध ने यहीं ध्यान शुरू किया, वो भी बिना गुरु या सन्यासी के। इसका विवरण द नोबल सर्च नामक ग्रंथ में मिलता है। इस दौरान साथियों, बिना खाना पानी के ध्यान से उनका शरीर अशक्त एवं कमजोर पड़ गया। तब उन्हें पता चला कि अशक्त कमजोर शरीर लेकर कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। ज्ञान की चरम स्थिति तक पहुंच पाना लगभग मुश्किल है। तब शारीरिक शक्ति वापस पाने के लिए उन्होंने फिर से ध्यान शुरू किया, वो भी कुछ खा पीकर। एक रात अंतिम पहर को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ जिनकी उन्हें तलाश थी। उन्हीं के शब्दों में, मुझ में वह प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ। गौतम को यह अनुभव, यह ज्ञान गया के निकट एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठे हुए प्राप्त हुआ। यह वृक्ष निरांजना नदी के किनारे था। इसके बाद तो उन्हें बुद्ध या प्रबुद्ध और ज्ञान संपन्न कहा जाने लगा। दोस्तों, ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध शंका में पड़ गए कि यह सत्य केवल बुद्धिमानों के लिए है, आम स्त्री पुरुष की समझ से यह परे है। फिर उन्होंने विचार किया कि ऐसा नहीं है कि आम लोग सत्य को जानना नहीं चाहते, पहचानना नहीं चाहते, परंतु सत्य के बारे में किसी ने उन्हें बताया ही नहीं। इसके बाद बुद्ध की करुणा और संवेदना ने उनके संदेह पर विजय प्राप्त की। इसके बाद बुद्ध ने संसार में प्रवेश कर शिक्षा देने का फैसला किया। यायावर गौतम इसी के साथ शिक्षक बुद्ध हो गए। पहली बार बुद्ध ने लोगों को बनारस के निकट इसी पाटन के हिरण्य उद्यान में शिक्षा और ज्ञान दिया। इसी पाटन को अब सारनाथ कहा जाता है। बुद्ध ने इच्छाओं से मुक्ति और त्याग की तत्परता पर जोर दिया। इसके बाद उन्होंने सम्यक दृष्टि का मार्ग अपनाया। सांसारिक मोह माया को छोड़ना और इच्छाओं का परित्याग ही सम्यक संकल्प है। इसी के माध्यम से मानव पीड़ा दूर हो सकती है। सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प से ही जीवन में व्यक्ति आत्मविमुक्ति के लिए तैयार होता है। इसके पश्चात आचार संहिता एवं आदर्श सिद्धांत आए। सम्यक वाणी में यह व्यवस्था दी गई कि व्यक्ति को झूठ बोलने से बचना चाहिए, भद्दी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और पीठ पीछे निंदा एवं अनर्गल प्रलाप से दूर रहना चाहिए।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वसुधैव कुटुम्बकम के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था गौतम बुद्ध और उनकी जीवन यात्रा, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, हमारी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जो है नाटक, जिसका शीर्षक है हमने जैसा बोया। इस नाटक की लेखिका एवं निर्देशिका है अंतरा करवड़े। तो आइए दोस्तों सुनते हैं नाटक।

0: ओ सल्लो आपा।
1: अरे क्यों सुबह सुबह तकलीफें बढ़ाने पर तुली हो? जानती नहीं कि आज इंस्पेक्शन होने वाला है? कोई नेताजी आएंगे वृद्धाश्रम में। इतनी देर तक सोई रहोगी तो वार्डन अभी आकर चिल्लाएगी सब पर। फिर कोसते रहना अपनी नन्ही सी जान को और खैरात में मिली इस जिंदगी को।
2: अरे क्यों उस बेचारी पर चिल्लाती हो? सोने दो ना उसे, देर रात तक पढ़ती रही है वो।
0: अब इस उम्र में खाक पढ़ना है इन्हें। छोटी थी तब मास्टर जी के कदम घर में पड़ते ही इन्हें पेट दर्द होने लगता था, और अब बड़ी आई है पढ़ने का दिखावा करने। कुछ नहीं, ये अपनी औलाद के पहले पहल लिखे खत पढ़ा करती है और खुद को तसल्ली देती रहती है।
2: अरे तो और क्या करेगी बिचारी, यहाँ हम भी इससे क्या अलग करते हैं बोलो तो। किसी ने नाती पोतों के नन्हे मुन्ने मुखड़े कमरे में लगा रखे हैं, तो किसी ने इकलौते बेटे का। अरे यहाँ किसी की कहानी किसी से ज्यादा अलग कहाँ है नसरीन?
0: विद्या बहन, मैंने कब कहा कि अपनी औलाद की याद में टेस हुए ना बहाय? लेकिन इस वार्डन को तो यहाँ का काम करने दो। बेचारी दिन रात काम करती है अपना परिवार चलाने के लिए, उसे क्यों जानबूझकर परेशान करती है ये? मैं जरा कुछ कहूंगी तो कहने लगेगी कि वार्डन तेरी सगी बहन लगती है क्या?
2: अरे अब ये सल्लो आपा की तो छोड़, कल विनीता के घर से भी चिट्ठी आई है।
0: अच्छा,
2: उसके बहू के पास खुशखबरी है।
0: अरे वाह,
2: बड़ा मीठा सा खत था उसके बेटे का।
0: वैसे इस खत की मिठास को समझने की कोशिश किया करो बड़ी बहन।
2: बेटे ने अपने घर नन्हे बच्चे की आहट की बात माँ को खत में लिखकर

0: और कहेगा, माँ तुम दादी बनने वाली हो, तुम्हारी याद आती है। ऐसी खोटी खरी सुनाएगा और हमारी विनीता दीदी पल्लू से आंखें पोंछती हुई पहुंच जाएगी बेटी के घर।
1: लेकिन इसके अलावा वो कर भी क्या सकती है भला? अरे नहीं जाएगी तो यहाँ भला कौन बैठा है उसका?
0: अरे तो हमारा यहाँ कौन बैठा है विद्या दीदी? यहाँ पर किसी का भी आना अपनी मर्जी से हुआ है भला? वृद्धाश्रम है ये वृद्धाश्रम। हर एक की अपनी कहानी है, साथ मिलकर नई पीढ़ी को कोसने का स्कूल है ये, बस समझिए आप।
1: पता नहीं नसरीन, मुझे ही क्या खाक पता था कि मेरा ऐसा हाल होगा। मेरा बेटा समझदारी का बहाना बनाकर यहाँ रख गया, अब खूब इच्छा होने के बावजूद मुंह नहीं खोल सकती।
0: अब सुबह सुबह वो सारी तकलीफें याद ना करो विद्या बहन। वो देखो त्रिपाठी दादा कैसे चक्कर लगा रहे हैं।
1: अरे हाँ,
0: कितना करते थे। मैंने कभी जिंदगी में पैदल चलने की जरूरत नहीं समझी। हाँ। और अब देखो,
1: और एक दिल का दौरा क्या पड़ा, आ गए पांव जमीन पर। लेकिन बेचारे, उन्हें कितना लगा था ना नसरीन कि दोनों बेटे देखने तो आएंगे, बस इलाज का खर्चा बांट लेने की बात सामने आ गई। अरे लेकिन मैं कहती हूँ, एक बेटा आ ही जाता तो कितना अच्छा होता।
0: आपकी भी ना सपने देखने की आदत गई नहीं विद्या दीदी। मेरी मानो तो एक दफ्तर खोल लो यहाँ पर, मुफ्त का सलाह केंद्र। किसके लड़के ने कब आना चाहिए, जायदाद में से कितना हिस्सा मिलना चाहिए और वगैरह वगैरह।
1: तुझसे तो जरा कुछ कहो तो कहाँ की कहाँ जा पहुँचती है। ये नहीं बताओगी तुम्हारे चार बेटों के क्या हाल हैं?
0: अब आपको सब मालूम है विद्या दीदी। है ये नसरीन तो जिंदगी भर अल्लाह से दुआ मांगती रही कि औलादे पढ़ लिख जाए, अपने दम पर कुछ बन जाए। बस एक दुआ नहीं मांग पाई थी कि इन पढ़ी लिखी कामयाब औलादों के घर में इस बदनसीब माँ को भी एक कोना नसीब हो जाए।
1: सरफराज और उसकी बहू तो आया करते थे पिछले दिनों तक।
0: अब सरफराज कहूं कि इदरीस, जुबैर हो या जफर, सभी की एक ही कहानी है। कुछ दिनों को आते हैं तब मेरी ईद हो जाती है। अल्लाह का दिया सब कुछ है दीदी, नए कपड़े बन जाते हैं, दवाइयों के बिल चुका दिए जाते हैं, लेकिन लेकिन सच कहूं विद्या दीदी, सब कुछ सही होता तो मुझे इस मुकाम की तस्वीर देखनी ही क्यों पड़ती भला?
1: बात तो सही है नसरीन तेरी, हम सभी के बीच कोई खुशनसीब है तो वो हमारी वार्डन। देखा तूने, पूरे 65 की है, एक अकेली बहू है घर में, कैसे बेटी जैसी रखती है उसे।
0: और दीदी बहू भी तो बिल्कुल हीरा है हीरा, सास को माँ से भी बढ़कर रखती है। अरे पिछले दिनों याद है बहू की माँ आई थी? अरे यानी हमारी वार्डन की समधन।
1: हाँ हाँ याद है, तो फिर हुआ क्या?
0: अरे हुआ कुछ नहीं, वो बहू की माँ उसके कान भरने लगी और उसे समझाने लगी कि तेरी सास है, तब तक जायदाद का बंटवारा करवा ले, जो कुछ भी है ज्यादा से ज्यादा अपने नाम करवा ले।
1: हाय राम, ये बहू की माँ कह रही थी?
0: और नहीं तो क्या, वो तो भला हो उस गुणी बहू का जिसने न माँ की बात पर कान धरे न ही उसका अपमान किया। काश ऐसा मैं खुद कर पाती तो आज यहाँ किसी और की कहानी तो न सुनाना पड़ती।
1: क्यों बार बार किसी और के बहाने अपने जख्मों को कुरेदती हो नसरीन? दिखाती हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के आने जाने से, लेकिन तुम्हारी डायरी किसी से छुपी तो नहीं है ना? यहाँ हर किसी की कहानी में पात्र बस अलग है, लेकिन सबका यहाँ आ जाना ही सब कुछ कह देता है।
0: विद्या दीदी क्या करूँ मैं अपनी जुबान का, कितनी बार सोचा कि बस अपने आप में ही रहा करूं, लेकिन यहाँ आकर जो इन बुजुर्गों की बेवकूफियां देखती हूँ तो मन बस में नहीं रहता।
1: अब अपने मन को मना ले नसरीन, जानती है ना आज विनीता का जन्मदिन है, सुबह से नहा धोकर गजरा लगाकर तैयार बैठी है। अरे बेचारे ठाकुर जी को भी इतनी ठंड में सुबह 8 बजे नहला दिया है उसने।
0: जानती हूँ दीदी, फिर सुबह के खाने तक उनका मन बड़ा खुश खुश रहेगा, फिर जब शाम के 6 बजेंगे वे बच्चों जैसी हो जाएंगी, 8 बजे तक दरवाजे को ही अपनी आंखें बनाए हुए उसकी हर आहट पर कान धरे रखेगी, और आखिरकार कोई नहीं आने वाला उन्हें न उन्हें लेने और न ही उन्हें जन्मदिन की बधाई देने।

0: हाँ नसरीन, फिर 9 बजे रात को उसका पुराना गठिया दर्द देना शुरू करेगा।
1: झूठ मूठ में ही है ना?
0: हाँ रे, हम सब जानती नहीं क्या, जब भी यहाँ किसी के पीठ, कमर या घुटनों में दर्द होता है, 70% झूठा होता है। सब उसी बहाने अपने पुराने दिनों को याद कर करके रोना चाहते हैं।
1: लेकिन दीदी, ये सब हमारे ही साथ क्यों होना था?
0: सब उस ऊपर वाले की मर्जी है रे।
1: उस दिन वार्डन की बहू आकर बात कर रही
0: थी। चल,
1: अब
0: बहुत हुई तेरी वार्डन की और उसकी बहू की बातें। वो विनीता हमें बुला रही है, लड्डू मंगवाए हैं उसने कल ही चौकीदार भैया से कहकर।
1: शुगर की बीमारी तो है उन्हें, फिर लड्डू।
0: अरे अब जन्मदिन पर टोकना नहीं उसे, समझी? वैसे भी मीठा खाने से टोकने पर उसका क्या जवाब होता है ये तो तुझे मालूम है ना?
1: तो उनका जवाब हम सभी के मन से मिलता भी तो है, अब परहेज करके लंबी उम्र जी के करना क्या है, है ना?
0: कम से कम अभी तो विनीता का जन्मदिन मनाना है। वो पिछले हफ्ते लाई हुई गुलाबी माहेश्वरी ठीक से रखी है ना? अरे इस बार तो विनीता के पास दोहरी खुशी मनाने का बहाना है।
1: अच्छा है, उसकी बहू को भी लड़का ही होना चाहिए, उसने भी बड़ा होकर अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देना चाहिए, तब जाकर समझ में आएगा इन औलादों को।
0: अरे अब चल भी, वो वार्डन आ रही है, देख।
1: अरे हाँ देखो तो, उसके साथ में उसकी बहू की छोटी बहन भी है।
0: सुना है, सुंदर सी लड़की को अपनी वार्डन अपने छोटे बेटे के लिए घर में लाना चाह रही है, इसीलिए तो देखना कितने चाव से सारा वृद्धाश्रम दिखा रही है।
1: चलो दीदी, इन लोगों को आपसी प्यार देखकर तो मुझे आप बस रोना आने लगता है, ऐसे हम सब के परिवार क्यों न हुए दीदी।
0: अब तुझे मैं क्या कहकर दिलासा दूं?

0: तो विनीता दीदी, हमने सुना है आप दादी बनने वाली हैं। जन्मदिन के दिन बड़ा खूबसूरत तोहफा दिया है आपके लाडले ने।
1: कहे का तोहफा रे, कितने अरमानों से घर में बहू लाई थी। कितनी चाहती कि उसे बेटी की तरह रखूं, लेकिन समय ही नहीं मिला कभी। अपना काम करते हुए मैं उससे कभी मन ही नहीं मिला पाई। आज यदि उसके पास मेरे लिए समय नहीं है तो कौन आश्चर्य की बात है।
0: अरे विनीता दीदी, हमने तो आपको बस बधाई दी थी। ये आपकी राम कहानी तो हम सभी कितनी ही बार आपके मुंह से सुन चुके हैं।
1: अरे नसरीन, क्यों दिल दुखाती हो उसका? आज जन्मदिन है हमारी विनीता का।
0: अरे ये तो जन्मदिन है तो कहाँ छिपा कर रखे हैं लड्डू, वो तो खिलाती नहीं, बस सीधे अपने दुखड़े पर आ जाती है।
1: लेकिन लड्डू खाने से पहले मेरा गिफ्ट तो लाओ, पिछले हफ्ते दोनों चुपचाप कहीं गई तो थी।
0: अरे विद्या दीदी, देखो तो इनकी नजर, सब कुछ याद रहता है और गिफ्ट तो ऐसे मांग रही है जैसे इंसेंटिव।
1: अरे ये तो इसका हक है, ला जल्दी से वो पैकेट निकाल।
0: जन्मदिन मुबारक हो।
2: अरे कितनी खूबसूरत है गुलाबी माहेश्वरी साड़ी, मुझे कितने दिनों से चाहती है इसकी।
0: बस अब ज्यादा तारीफें मत करो, सीधे से वो लड्डू का डिब्बा निकालो।
2: ये नसरीन को जरा धीरज नहीं है, ये लो। हाँ ये लो।
0: देखा विद्या दीदी, पूरा लड्डू मुंह में है। ऐसे में विनीता दीदी का फोटो खींच लूंगी और शनिवार को आने वाले डॉक्टर को दिखाऊंगी ना, तो मजा आ जाएगा।
2: हाय राम, कैसी खुराफाती है ये।
1: वाकई हम कितने दिनों के बाद ऐसा मजाक हंसी ठिठोली कर रहे हैं, नहीं तो सारे सारे दिन ऐसे ही सूखे से बीत जाते हैं, जीवन में कोई हलचल ही नहीं होती।
2: तुम्हारी बात सही है विद्या, ज्यादा से ज्यादा हम बैठकर अपनी नई पीढ़ी को कोस भर लेते हैं, लेकिन आज तो ऐसे लगता है जैसे हम स्वयं ही कटघरे में खड़े हैं।
0: क्या हो गया विनीता दीदी, कोई कड़वी बात कह दी क्या किसी ने?
2: अरे कड़वी बात कोई क्या कहेगा, वो बेटे का खत आया है ना।
0: तो उसकी बात का इतना क्या बुरा मान लेना?
2: बुरा मानने की बात ही है नसरीन, बेटे ने वही सब कुछ लिखा है जो कभी मैंने उसे समझाया था।
1: क्या मतलब?
2: मैंने अपने जीवन में कितनी ही सफलताएं देखी, ऊंचे पद की नौकरी की, खूब पैसा बनाया, लेकिन रिश्ते नहीं बना पाई। जब बेटा हुआ उसे संभालने के लिए आया रख दी, वो 8 साल का हुआ तब उसे हॉस्टल में रख दिया। तब मैं उसे पत्र लिखा करती थी, उसमें यही होता था कि बेटा मुझे ट्रेनिंग के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है, इसलिए तुम्हारे जन्मदिन पर नहीं आ सकती, आशा है तुम मुझे समझ पाओगे। और कल उसका पत्र आया, उसमें भी उसने यही लिखा है, मेरी ट्रेनिंग है मुंबई में, इसलिए इस बार तुम्हारे जन्मदिन पर मैं नहीं आ सकूंगा, आशा है तुम समझ पाओगे। ये सब कुछ मेरा ही तो बोया हुआ है, अब और क्या कहूं, किसे दोष दूं?
1: सच ही तो है, यदि तुमने उसे तब हॉस्टल में डाल दिया जब उसे माँ चाहिए, तब उसने तुम्हें तब वृद्धाश्रम में डाल दिया जब तुम्हें उसकी जरूरत है। ये सब कुछ बच्चे अपने माता पिता से ही तो सीखते हैं। मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आज चाहकर भी बेटे के पास नहीं रह सकती।
0: बात तो आपकी सही है विनीता दीदी, सब कुछ बच्चे अपने माता पिता से ही सीखते हैं। अब विद्या दीदी के घर में भी तो ऐसा ही हुआ है।
1: हाँ नसरीन, तुमने बिल्कुल सच कहा, मैंने अपनी माँ के कहने पर घर में गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया, पता नहीं क्यों उनकी बात मान ली मैंने।
0: सच दीदी, मेरी खुद की भी कहानी बस कुछ ऐसी ही है। जन्म लेने से पहले 3 बेटियों को मार दिया मैंने, क्योंकि जब बेटी आने को हुई तो मुझे लगा कि दहेज का इंतजाम करना होगा और आखिरकार पाल पोस कर किसी और ही के घर तो देना होगा, और ये सोचकर मैंने 4-4 बेटे पैदा कर लिए। 4 बेटे और शोहर, घर तो जैसे अखाड़ा बन गया था। एक भी बेटी घर में होती तो शायद इनके मन में दया और प्रेम पनपता, लेकिन सब के सब स्वार्थी हो गए, मुझे अलग कर दिया, या फिर कहो कि मुझे अल्लाह ने इन 3 कलियों को कुचल देने की बस सजा भर दी है। दीदी,
1: हम सभी यहाँ पर अपने बोए बीजों की ही तो फसल काट रहे हैं। बार बार नई पीढ़ी को कोसने की बजाय हम ये भी तो देखें कि हमारी अपनी गलतियां कितनी हैं। सचमुच हमें घर से बाहर निकालने वाले बेटे उनकी नसों में हमारा ही खून है और सोच में हमारे ही संस्कार।
0: यदि किसी को भी अपने बुढ़ापे को सही बनाना है तो नई पीढ़ी की बजाय पहले खुद को गौर से देखें।
1: सचमुच सभी को अपने कर्मों के फल तो

अभी आप सुन रहे थे नाटक जिसका शीर्षक था हमने जैसा बोया। इस नाटक की लेखिका एवं निर्देशिका थी अंतरा करवड़े। साथियों, आप कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आपकी दोस्त ज्योति गुजुर को। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दे आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को और रिकॉर्डिस्ट है आकाश जांगरा। नमस्कार।

सत्य स्वर सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को ग्लोरिया गांगले का प्यार भरा नमस्कार तथा आज की इस 4 से 5 की सभा में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम एक मुलाकात, युवा विकास, युग संचार और भक्ति गीत। तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम एक मुलाकात, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं नुपुर दीक्षित और उनके साथ हैं डॉक्टर गणेश करवड़िया और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: एक मुलाकात कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नूपुर का नमस्कार। दोस्तों, कहते हैं रुपया बोलता है, पैसा बोलता है, पैसा चलता है और पैसा दूसरों को भी नचाता है। लेकिन ये पैसा सिर्फ आपकी जेब तक नहीं सीमित होता, इसी पैसे के सहारे देश, समाज, परिवार और पूरी दुनिया चलती है। इन दिनों आर्थिक मंदी से जुड़ी हुई कई खबरें आपको हो सकता है परेशान किए हुए हों। तो आइए, आज के इस कार्यक्रम में मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर गणेश कावड़िया जी से। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं जैसे मरीज अगर बीमार होता है तो डॉक्टर उसका इलाज कर देते हैं, ऐसे ही आज हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी बीमार है। सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि इन दिनों ये जो हम आर्थिक मंदी की खबरें सुन रहे हैं, असल में ये आर्थिक मंदी क्या है?
1: बाजारवाद या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी और आर्थिक तेजी दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
0: जी,
1: कभी भी कोई अर्थव्यवस्था पूर्णतः तेजी की अवस्था में नहीं रह सकती और कभी भी कोई मंदी की अवस्था में नहीं रहती है। बाजारवाद में बड़े बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, कीन्स आए हैं बाद में, और उन्होंने कहा है कि पूंजीवाद की एक सीमा है और जब आप विकास तेजी से कर रहे हो तो आपको पीक से एक बार गिरना पड़ेगा। और ऐसे कई उदाहरण हैं विश्व में, 1929 और 30 की विश्वव्यापी मंदी जिसमें कई लोग बेरोजगार हो गए थे, उसके बाद 71-72 में हमने मंदी देखी, फिर 91-92 में देखी, और ये मंदी शायद इन सब मंदियों से बहुत अलग प्रकार की है और बहुत गहरी है। तो मंदी और तेजी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं और इसीलिए कार्ल मार्क्स ने और बाकी दूसरे समाजवादी अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि हम सरकार की इतनी भूमिका इसके अंदर ला लें कि हमेशा अर्थव्यवस्था इस तेजी और मंदी के जो जाल है उससे बच सके।
0: जी,
1: तब प्रश्न ये आता है कि मंदी होती क्या है।
0: हाँ जी,
1: मंदी को वैसे तो हम सरकार या अर्थशास्त्र की निगाह में सीधे रूप से डिफाइन करते हैं कि किसी भी दो क्वार्टर में अगर उत्पादन की वृद्धि दर ऋणात्मक हो जाए, यानी उत्पादन बढ़ने की बजाय उत्पादन गिरने लग जाए, राष्ट्रीय उत्पादन कम हो जाए, तो ऐसी स्थिति को मंदी की स्थिति कहते हैं। तो आपका उत्पादन जैसे पहले 3% के बढ़ रहा था या 5% वार्षिक की दर से बढ़ रहा था, बढ़ रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन जो ही उत्पादन की दर गिरावट हो जाए, -2.3 हो जाए, यानी उत्पादन बढ़ने के बजाय उत्पादन के स्तर से भी और कम हो जाए, ऐसी स्थिति को मंदी कहते हैं। तो उत्पादन कम हो गया, तो अगर उत्पादन कम होगा तो रोजगार कम हो जाएगा, रोजगार कम होगा तो छटनी होने लगेगी, छटनी होने लगेगी तो लोगों के पास इनकम नहीं आएगी, इनकम नहीं आएगी तो बाजार में पैसे का प्रचलन नहीं आएगा, खर्चा नहीं आएगा, लोगों के माल नहीं बिकेंगे, और छटनी आएगी और एक ऐसा चक्र चल जाएगा कि उस चक्र को कंट्रोल करना कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में अब ये जो परिस्थितियां आती है तो ऐसा क्या करें? तो ये पूंजीवाद का लक्षण है, छुपा हुआ नहीं है। 76 में जब एडम स्मिथ ने किताब लिखी या उसके बाद जो क्लासिकल के अर्थशास्त्री आए, सबने कहा है कि ये पूंजीवाद के अंदर निहित गुण है। अवगुण को हो, निहित गुण हो, तो कैसे रोकें? तो कीन्स ने एक बहुत अच्छी बात कही कि सरकार हस्तक्षेप करके इस प्रकार की जो मंदी या तेजी के अप्स एंड डाउन्स आती है उसको रोक सकती है। तो सरकार को कैसे हस्तक्षेप करना चाहिए? दो तरीके हैं कि हम बाजार में खर्चे करते रहें।
0: जी,
1: कौन खर्चा करे? या तो फर्म, प्राइवेट सेक्टर खर्चा करे या
0: सरकारी क्षेत्र।
1: तो जब वृद्धि होती है, तेजी आती है, तब तो सरकार को कोई ज्यादा चिंता नहीं रहती है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर खर्चा करता रहता है। लेकिन जब मंदी आती है तो प्राइवेट सेक्टर डर जाता है कि मेरे मुनाफे नहीं होंगे, मेरा माल नहीं बिकेगा। तो ऐसे में सरकार की ड्यूटी है कि वो खर्चा करे। कैसे खर्चा करे? सड़कें बनाए, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, ब्रिजेस बनाए, रेल लाइन बनाए, और एक एक्सपेंडिचर का फ्लो इकोनॉमी में करे तो लोगों को इनकम मिलेगी
0: और काम भी मिलेगा,
1: काम मिलेगा, आय मिलेगी, बाजार में जाएंगे, वस्तुएं बिकेगी, उद्योग चल निकलेंगे, उद्योगपति को प्रॉफिट होगा और फिर
0: धीरे धीरे चक्र जो है वो सामान्य हो जाएगा।
1: तो क्या चाहिए? पूंजीवाद के साथ साथ किसकी आवश्यकता है? सरकारी हस्तक्षेप।
0: बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात कही कि सरकारी हस्तक्षेप बहुत जरूरी है। एक सवाल और थोड़ा सा मेरे समेत कई लोगों को परेशान करता है कि हम लोग कह रहे हैं कि ये जो आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है इसकी जड़ कहीं ना कहीं अमेरिका से है, यानी कि अमेरिका में जो आर्थिक मंदी आई उसका असर अब भारत पर भी पड़ रहा है और समूचे विश्व बाजार पर पड़ रहा है। तो यहाँ मैं आपसे ये बात जानना चाहूंगी कि अगर अमेरिका में मंदी आती है तो किस तरह से वो मंदी पूरे विश्व को या भारत जैसे देशों को प्रभावित करती है।
1: एक तो सबसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की बाकी अर्थव्यवस्थाओं से बहुत बड़ी है।
0: जी।
1: इतनी बड़ी है कि अगर उसके अंदर 10 या 20% हलचल होती है तो पूरे विश्व में हलचल आ जाती है।
0: बिल्कुल।
1: हमारी पर कैपिटा इनकम की तुलना में अमेरिका की पर कैपिटा इनकम बहुत अधिक है।
0: जी।
1: तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ कुछ होगा तो अमेरिका में असर नहीं आएगा, लेकिन अमेरिका में कुछ छोटी सी भी घटना हुई तो उसका असर हमारे यहाँ आएगा।
0: बिल्कुल।
1: कारण क्या है कि हम ग्लोबलाइज हो गए हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था हो गई हमारी, और हमारी इनकम का लगभग आज 18-20% एक्सपोर्ट इनकम है, यानी हम अपनी वस्तुओं का निर्यात करते हैं।
0: जी।
1: किसको निर्यात करते हैं? बाकी डेवलप्ड कंट्रीज को, अमेरिका को भी जाता है, यूरोप को भी जाता है। अगर इन देशों ने हमारा माल खरीदना कम कर दिया तो हमारे एक्सपोर्टर्स क्या करेंगे? नुकसान होगा।
0: बिल्कुल।
1: वो अपना सामान नहीं बेच पाएंगे, और नहीं बेच पाए इसका मतलब उनके माध्यम से हमारे यहाँ क्या आ जाएगी? मंदी आ जाएगी।
0: जी।
1: दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका अपनी पूंजी को बाहर के देशों में बहुत लगाता है।
0: हाँ हाँ।
1: है ना, बड़ी अर्थव्यवस्था है तो उसने अमेरिका में मतलब अमेरिका के लोगों ने भारत में पैसा लगा रखा है, चीन में पैसा लगा रखा है, जापान में पैसा लगाने रखा है, और जब वो संकट में आते हैं तो इस पैसे को क्या करते हैं? वापस निकालने की कोशिश करते
0: जी,
1: हैं।
0: मतलब जो उन्होंने निवेश किया था उसको वापस लेना चाहते हैं।
1: जो वापस लेने लगेंगे इसका मतलब हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? पूंजी का संकट आ जाएगा।
0: जी।
1: और उस पूंजी के संकट में हमारा शेयर मार्केट धराधर नीचे आने लगेगा, बैंकों के पास लिक्विडिटी नहीं आएगी, डॉलर बाहर जाने लगेंगे, और जब डॉलर बाहर जाने लगेंगे तो हमें भय रहेगा कि अगर ये खजाना खाली हो गया तो जो सन 1991 में हमने सोने को गिरवी रखा कहीं वो स्थिति वापस नहीं आ जाए, पेट्रोल कैसे खरीदेंगे। तो ऐसी कई सारी चिंता से पूरा सेंटिमेंट कमजोर हो जाता है, और सेंटिमेंट कमजोर हो जाता है तो सरकार छोटे मोटे हस्तक्षेप करती है तो भी उसका कोई असर नहीं आता है, क्योंकि आर्थिक जो चिंतन है ये एक सेंटिमेंटल है।
0: अब यहाँ मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगी, एक आम आदमी जिसके पास किसी कंपनी के शेयर नहीं है, जिसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, जिसके पास डेबिट कार्ड नहीं है, जिसकी बहुत ज्यादा बचत नहीं है, जो बसों में रेलों में सफर करता है, खेतों में काम करता है, वो आदमी इस आर्थिक मंदी से किस हद तक प्रभावित होता है?
1: देखिए, ऐसे लोगों को आर्थिक मंदी से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जो दैनिक डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं या रूरल एरियाज में हैं, कृषि में काम कर रहे हैं, उनको आर्थिक मंदी से कोई बहुत अंतर नहीं आएगा, क्योंकि आर्थिक मंदी में किसको अंतर आया कि जिन लोगों के पास शेयर थे तो उन शेयर की पूंजी कम हो गई, वैल्यू कम हो गई, जिनके पास बहुत मकान थे तो मकान की पूंजी कम हो गई, तो उन पर कोई असर नहीं आएगा। लेकिन असर क्यों आएगा कि अगर बाजार में तरलता या लिक्विडिटी का फ्लो नहीं है, डिमांड नहीं है, और धीरे धीरे उद्योगों में अगर छटनी होने लगी तो ये लोग भी इस डर से काम करेंगे, यार हमारे साथ भी ये हो जाएगा, तो ये एक चिंता है, उस चिंता के कारण असर आएगा, अदरवाइज उन पे कोई असर नहीं।
0: मतलब एक आम आदमी थोड़ा सा इस मंदी के असर से सुरक्षित है।
1: हाँ, बहुत सुरक्षित है। भारत जैसी अर्थव्यवस्था में इतनी बड़ी घटना अमेरिका में हो गई, यूरोप जापान में जितना प्रभाव आया हमारे यहाँ प्रभाव नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि हमारे यहाँ 40% जनसंख्या तो गरीबी रेखा से नीचे है, जिनको बाजार एक्सेस क्या होता है यही पता नहीं है, जिनके पास कुछ साधन ही नहीं है, और जिनको रोज काम करना है, रोज भोजन करना है, उनके लिए तो कोई अर्थ नहीं रखता है।
0: बिल्कुल। सर, यहाँ मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी नौकरियां एमएनसी कंपनियों से चलती थी, जैसे कॉल सेंटर में जॉब करने वाले लोग हुए, या हाल ही में हमने एक एयरलाइन कंपनी का उदाहरण देखा जहां छटनी हो गई, और भी छटनी का एक दौर थोड़ा सा अभी देखने में आ रहा है। तो छटनी के चलते, आर्थिक मंदी की वजह से हुई छटनी के चलते जिन लोगों की नौकरियां हाथ से चली जाएंगी, उनके पास कौन कौन से विकल्प बचेंगे? क्योंकि आदमी बिना काम किए नहीं रह सकता ना, तो एक अर्थशास्त्री होने के नाते आप कौन से विकल्प उन्हें सुझाना चाहेंगे?
1: ये बहुत बड़ी समस्या है कि अगर आर्थिक तेजी आ रही थी, विकास हो रहा था, भारत की अर्थव्यवस्था 9% की दर से बढ़ रही थी, तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां नहीं थी उन्होंने अपना खूब विस्तार किया।
0: जी।
1: ये सोचा था कि 10 के बाद 12 हो जाएगी, 12 के बाद 15 हो जाएगा, और आज जो लड़का हमें मिल रहा है ये कल लड़का नहीं मिलेगा। तो सब लोगों ने जितनी अपनी आवश्यकता थी, जितना काम था, उससे ज्यादा लोगों को नौकरी
0: दे दिया,
1: ये सोचते हुए कि कल ये लड़के हमें नहीं मिलेंगे, अच्छे से अच्छे टैलेंटेड लड़कों को ले लो। अगर आज इन लोगों को नौकरियों से निकालते हैं तो दो असर होता है कि जिनको, जो टॉप कंपनियों से निकले हैं, वे स्किल्ड पर्सन अब किसको मिल जाएंगे? जो नीचे की छोटी कंपनियां हैं जिनकी इतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं, तो जो एक ऊंची तनख्वाह पे जिनको निकाल दिया वो दूसरी तरफ जाएंगे। और अब आप देखिए कि एक तरफ जो मल्टीनेशनल बैंक हैं उनको अलग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्टेट बैंक ने कहा कि मैं 10,000 लोगों को नौकरी दे रहा हूं, जो नेशनलाइज बैंक है उन्होंने कहा। तो उनके सामने ये मौका है कि अच्छा जो ट्रेंड व्यक्ति हैं उनको आज कैप्चर कर लें और उनको पकड़ लें, जिससे इनका विकास हो जाएगा। तो एक तरफ जो नुकसान हो रहा है वो दूसरी तरफ से
0: भर जाएगा।
1: अल्टीमेटली अगर एक बाजार में वेज डिस्टोर्शन आ गया कि कुछ कंपनियों में बहुत ऊंची तनख्वाह है और दूसरे में नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो करेक्शन आना चाहिए, आना पड़ेगा, नहीं तो ये असंतुलन ज्यादा नहीं तो टिकेगा नहीं। तो ये मौका है कि जो हमारे यहाँ डिस्टोर्शंस आ गई थी, विकृतियां आ गई थी, ये इस मंदी के कारण ये विकृतियां एडजस्ट हो जाएगी और अर्थव्यवस्था अपने धरातल बिंदु पर या अपने सम बिंदु पर वापस आ जाएगी।
0: सर, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसे हमेशा से ये कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था जो है कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। हमारा सबसे ज्यादा व्यापार जो है वो कृषि उत्पादों से चलता है, लेकिन क्या वजह है कि आज जब हम अगर 100 बच्चों से पूछते हैं कि वो क्या करियर बनाना चाहता है, किस जगह पर भविष्य बनाना चाहता है, तो 100 में से शायद 10 ही बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं कृषि क्षेत्र में जाना चाहता हूँ। इसके पीछे क्या वजह?
1: देखिए, मतलब भारत कृषि प्रधान था, आज उसको कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहना बहुत तर्कसंगत नहीं है
0: जी।
1: अगर हम जीडीपी में कृषि का हिस्सा देखें तो लगभग 20% है। हमारी 80% इनकम कहाँ से आती है? नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर से
0: जी।
1: तो 20% के आधार पर आज भी इसको कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहना ठीक नहीं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि एक तरफ तो 20% इनकम है, लेकिन आज भी लगभग 60% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। तो अगर हम वर्कफोर्स के आधार पर देखें तो आज भी भारत कृषि प्रधान देश है। तो इसका मतलब 20% इनकम के लिए कितने प्रतिशत लोग संघर्ष कर रहे हैं?
0: 60%।
1: ये भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है कि 20% इनकम तो 60% लोगों की झोली में बांटी जा रही है और बाकी जो 80% इनकम है उस पर 40% लोग इंजॉय कर रहे हैं या उसका उपभोग कर रहे हैं। ये जो अंतर है, ये अंतर भारत के लिए सबसे चिंता के कारण है। होना क्या चाहिए था कि जो जो हमने विकास किया और कृषि का हिस्सा कम हुआ, उस कृषि में रोजगार की जो संभावना थी वो भी कम करते और इस बचे हुए रोजगार को कहाँ डाइवर्ट करते? उद्योगों में, सेवा क्षेत्र में। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जो उद्योगों को और सेवा को जो स्किल चाहिए थी, वो स्किल एजुकेशन के माध्यम से हम ग्रामीण क्षेत्र में डेवलप नहीं कर पाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति है वो कृषि में तो सरप्लस हो गया और उद्योग उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। वो बेरोजगार है और वो बेरोजगारी न तो मंदी से प्रभावित हो रही है, न तेजी से प्रभावित हो रही है, उसकी झोली में आज भी रोटी नहीं है। ये भारत सरकार की भी चिंता है और बाकी जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनकी भी चिंता है।
0: सर, आप अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ माने जाते हैं, आपकी बहुत अच्छी पकड़ है अर्थशास्त्र पर, तो मैं आप ही से चाहूंगी कि आप एक समाधान तो सुझाएं कि इस खाई को पाटा कैसे जाए।
1: देखिए, इस खाई को बांटने के लिए है कि हम अपना एक मॉडल डेवलप करें। भारत कई संस्कृतियों का देश है, भारत की सांस्कृतिक विरासत में बहुत मजबूत आर्थिक तथ्य है। हम बाजारवाद को खुला इनवाइट नहीं कर सकते हैं, बाजारवाद पर कंप्लीट निर्भर नहीं रह सकते हैं। बाजारवाद के साथ साथ हम सरकारी हस्तक्षेप इतना स्ट्रांग रखें, इतने अच्छे रेगुलेटर्स रखें कि बाजार को नियंत्रित रखें
0: जी।
1: और बाजार और सरकार दोनों का केंद्र बिंदु उपभोक्ता हो, परिवार हो। हमें उद्योगों के लिए उत्पादन नहीं करना है, सरकार के लिए उत्पादन नहीं करना है, बाजार के लिए क्रियाएं नहीं करना है। किसके लिए क्रियाएं करनी है?
0: परिवार, उपभोक्ता के लिए, हमारे परिवार के लिए।
1: और जिस दिन ये सोच आ जाएगी
0: जी,
1: उस दिन भारत अपने आप एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा। इतने सब संकट के बावजूद भी भारत का उपभोक्ता इतना परेशान नहीं है। क्यों नहीं है? कि भारत का उपभोक्ता आज भी सोचता है कम खाओ गम खाओ सबसे बड़ा त्याग है, कि जिसके अंदर बचत करने की क्षमता है, जो अपनी चद्दर को देखकर पांव पसारता है, उस अर्थव्यवस्था को, उस उपभोक्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। भारत ने इतने युद्ध देखे, इतनी अर्थव्यवस्थाओं के संकट देखे, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को धराशायी होते देखा, लेकिन उन सब संकट से भारत और मजबूत होकर निकला है, कमजोर नहीं हुआ है। इसलिए निश्चित रूप से भारत की सांस्कृतिक विरासत के अनुसार अगर हम आर्थिक मॉडल और आर्थिक विकास करेंगे तो भारत एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में।
0: बहुत खूब कहा सर आपने, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो शब्द आपने कहे कि इतने युद्ध, इतनी तमाम विसंगतियां देखने के बाद हम हमेशा मजबूत होकर उभरते हैं, तो पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि हम दोबारा उसी मजबूती के साथ उभरेंगे। यहाँ मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी। मैंने एक बहुत बड़े किसी विशेषज्ञ की टिप्पणी पढ़ी थी कि वेल्थ जो है, पैसा और समृद्धि जो है, वो किसी से छीनी नहीं जा सकती, वो किसी से लूटी नहीं जा सकती, इसे क्रिएट किया जाता है, इसे बनाया जाता है। तो मैं चाहूंगी कि आप ये जो क्रिएटिंग वेल्थ वाला कंसेप्ट है, इसे थोड़ा सा हमारे युवा श्रोताओं के लिए समझाएं।
1: देखिए, वेल्थ और क्रिएटिंग, जो टेक्नोलॉजी के समय में ज्ञान हमारा है, ज्ञान सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर है
0: जी।
1: और ज्ञान अगर वेल्थ क्रिएटर है तो ज्ञान को कौन छीन सकता है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो चारों तरफ बांट सकते हैं, उसका गुणा कर सकते हैं। कभी किसी ने सोचा था, हम जब भी पुराने समय में पूछते कि कौन बड़े बड़े उद्योगपति हैं, तो टाटा, बिरला और ये नाम लिए जाते थे। लेकिन तकनीकी ज्ञान ने कितनी नई नई क्रोप पैदा कर दी। आज एक लड़का सीधा MBA करके निकलता है या BTEC करके निकलता है और 18 लाख 20 लाख की सैलरी लेता है, तो इसका मतलब संपत्ति तो ज्ञान से अर्जित हो रही है। और इसलिए डट कर एजुकेशन, जितना पढ़ सकें, जितना सीख सकें, जहां से सीख सकें उसको सीखें और उस सीखे हुए को जीवन में उतारें, तो निश्चित रूप से समृद्धि आपकी चारों ओर दिखेगी।
0: डॉक्टर साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम एक मुलाकात, जिसे प्रस्तुत कर रही थी नुपुर दीक्षित और उनके साथ थे डॉक्टर गणेश करवड़िया और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, आइए सुनते हैं भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वाज मुंबई की।

दोस्तों अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वाज मुंबई की। आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम युवा विकास, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं स्वर्गीय श्री स्वतंत्र कुमार ओझा और इसका शीर्षक है पांडुलिपियों का इतिहास और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्र कुमार ओझा का नमस्कार। आज के युग संचार कार्यक्रम का विषय है पांडुलिपियों का इतिहास। श्रोताओं, पांडुलिपियों को अंग्रेजी में स्क्रिप्ट्स कहते हैं, तो आज इसी के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आप सबको देने जा रहे हैं। जब भी हमारे मन मस्तिष्क में कोई अच्छी बात या कहें कि ख्याल आता है तो हम सोचते हैं कि इसे मूर्त स्वरूप दे दें। लेखक भी यही करते हैं, अच्छी बात को शब्दों में पिरोकर एक रचना का निर्माण करते हैं। अब जिस पर ये लिखा जाता है उसे पांडुलिपि कहते हैं। ये नाम प्राचीन युग का है। पांडुलिपि का अर्थ है लिपियों, बोलियों या भाषाओं को लिखकर उन्हें सहेज कर संभाल कर रखना, और ये एक बेहद महत्वपूर्ण कार्य होता है। इन्हीं के द्वारा हमारी पुरातन संस्कृति और परंपरा का ज्ञान हमें मिलता है, और इस प्रकार पांडुलिपियां अतीत, वर्तमान और भविष्य के संचार के झरोखे के रूप में सुरक्षित रहती हैं। लिपियों का जन्म और संरक्षण उन्हें लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से ही हुआ। शताब्दियों पहले चित्र लिपि के द्वारा उस समय की घटनाओं से संबंधित चित्र जमीन, पत्थरों और दीवारों पर अंकित किए गए। जैसे खाना खाते हुए, शिकार करते हुए या आपस में लड़ते हुए योद्धाओं के चित्र बने, जो सभी प्राचीन विश्वभर की सभ्यताओं में हमें देखने को मिलते हैं। इन सब के पश्चात लिखित रूप में लिपि बनकर पांडुलिपियों का चलन शुरू हुआ। छापा खाना यानी कि प्रेस के आविष्कार और विकास से भी बहुत पहले घटनाओं को हाथ से ही लिखा जाता था। इसी तरह कागज के जन्म और चलन से पहले चर्मपत्र, ताड़पत्र, पपीरस, ताम्रपत्र और रेशम पर लिखा जाता था। हमारे बहुमूल्य प्राचीन ग्रंथ शास्त्र इन्हीं पर लिखे गए और वे आज भी सुरक्षित हैं। अरब में ऊंट की हड्डी के कलम से लिखा जाता था, जबकि भारत और यूनान में हाथी दांत से लिखा जाता था। 2500 साल पहले मिस्र में पपीरस पर लिखना शुरू हुआ। कहा जा सकता है कि इस तरह पांडुलिपि लेखन का इतिहास 5000 साल प्राचीन है। धार्मिक ग्रंथ भी प्राचीनतम पांडुलिपियां ही हैं, और मान्यता है कि तोरा नामक पांडुलिपि विश्व की सबसे पुरानी प्राप्त पांडुलिपि है, जो ईसा पूर्व 15वीं शताब्दी में लिखी गई थी। तोरा एक धर्म ग्रंथ है जो हजरत मूसा को दिया गया था। इसे पत्थर की पट्टिका पर लिखा गया था। इसी श्रृंखला में ऋग्वेद भारत का पहला ग्रंथ माना गया है, जिसमें धार्मिक और मनुष्यों के अनुभवों पर आधारित प्रारंभिक चिंतन का उल्लेख है। इसके बाद मौर्य काल में अन्य विषयों पर पांडुलिपियां लिखी गईं, और ये क्रम गुप्त काल तक चला। भारत में ही कुरान का एक अपूर्ण भाग 7वीं सदी में चर्म पत्र पर लिखा पाया गया। इस अमूल्य धरोहर को इस्लाम के चौथे खलीफा ने लिखा, जो बाद में 16वीं सदी में कागज पर लिखा गया था। तो साथियों, अतीत के झरोखे में झांकने पर हमें संचार की इस प्रमुख शैली के दर्शन हो सकते हैं। अमूमन 7वीं से 19वीं सदी की अनेक पांडुलिपियां चर्मपत्र, ताम्रपत्र और भोजपत्र पर लिखी गई हैं, जिनमें दर्शन शास्त्र, साहित्य और विज्ञान के बारे में हैरतअंगेज, आश्चर्यजनक जानकारियां हमें मिलती हैं, और ज्ञान की जानकारी संचार से ही तो फैलती है ना। 12वीं सदी में
आदि बांग्ला भाषा में बौद्ध धर्म से संबंधित ताड़पत्र की पांडुलिपि का भी विशेष महत्व माना गया। और फिर बाद में तो जैसा कि सभी जानते हैं कि कागज का जब आविष्कार हुआ तो कागज के आविष्कार ने इस क्षेत्र में एक क्रांति ला दी। कागज बनाने की कला और तकनीक तेजी से, बड़ी तेजी से पूरे संसार में फैलने लगी। इस दौर में कागज खुरासानी, मेसोपोटामियाई और खुरदरे किस्म के होते थे, लेकिन कागज के आगमन ने चारों ओर एक नयापन शुरू किया। लेकिन इससे ताड़पत्र पर लिखने की परंपरा वो समाप्त नहीं हुई है, वो तो आज भी जीवित है, आज भी ताड़पत्र पर लिखने की परंपरा है। तो अगर अतीत की ओर फिर से एक बार झांकें तो संसार के अधिकतर भागों में केवल धार्मिक ग्रंथों की अधिक एवं अन्य विषयक पांडुलिपियां ही अब सुरक्षित बची हैं। इनके धार्मिक महत्व के कारण ही इनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है, जबकि अन्य अनेक लंबे समय की जलवायु में बदलाव के कारण नष्ट हो गई हैं। जैन धर्म के कल्प सूत्र 15वीं शताब्दी में लिखे गए, इनमें महावीर स्वामी और अन्य तीर्थंकरों के उपदेश हैं। इनकी भाषा प्राकृत और लिपि देवनागरी है। कागज पर लिखी गई इन पांडुलिपियों पर स्वर्ण से मीनाकारी की गई है। तो साथियों, अतीत के झरोखे के पट दर पट खोलते हुए अब हम मध्यकाल में प्रवेश कर रहे हैं। इस काल की श्रेष्ठ पांडुलिपियां फारसी भाषा में लिखी गई हैं। इनमें बाबरनामा, सिकंदरनामा, अकबरनामा आदि अनेक ग्रंथों की रचना हुई है। कुछ पांडुलिपियां जो अरबी में लिखी गई हैं, उनमें अधिकतर कुरान की आयतें लिखी गई हैं। कपड़े और कागज पर इन्हें लिखकर और कई रंगों से सजाकर इनके पन्नों पर स्वर्ण परत चढ़ाई गई है। हैरत होती है, अपने बुजुर्गों, अपने पूर्वजों द्वारा किए गए ऐसे अनेकानेक महत्वपूर्ण कामों को देख सुनकर। अगर भारत की बात करें तो हमारे यहां तो संस्कृत की प्राचीनतम परंपरा है, संस्कृति प्राचीनतम भाषा है, इसलिए इसकी सैकड़ों दुर्लभ और अति महत्वपूर्ण पांडुलिपियां आज भी सुरक्षित हैं। प्रामाणिक संस्कृत कृतियों का फारसी में अनुवाद भी हुआ है। इनमें रामायण, महाभारत, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत, ये अनेक इस तरह के प्रमुख हमारे धार्मिक ग्रंथ माने गए हैं। अब थोड़ा आगे जाएं तो खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह का ग्रंथ भी एक महत्वपूर्ण पांडुलिपि है, जो गत्ते नुमा कागज पर लिखी गई है। तो श्रोता मित्रों, आज हमने अतीत के इस झरोके से प्राचीनतम समय की लिखी पांडुलिपियों की जानकारी प्राप्त की। वास्तव में युग संचार के इस अतीत ने हमें बताया कि आज के समय की अनेकानेक सुविधाएं पहले नहीं थीं, लेकिन फिर भी जिन पदार्थों पर विश्व की श्रेष्ठतम रचनाएं रची गईं, वो कार्य कितना अधिक कठिन रहा होगा, इसकी कल्पना करें। और वो काम हुआ और आज भी उपलब्ध है, सुरक्षित है। अब वैसे आज तो हमारे पास कंप्यूटर है, सीडी है, जिस पर पूरी एक किताब डाउनलोड करके अल्प से अल्प समय में छपवाई जा सकती है। कभी कभी तो आश्चर्य होता है कि संचार क्रांति ने महीनों सालों का काम मिनटों और घंटों में पूरा करके दिखा दिया है। तो ये परिवर्तन का दौर है और परिवर्तन हर बार कुछ न कुछ नया लेकर के आता है। आज तो पांडुलिपियों की एक विशाल धारा तीव्र गति से प्रवाहित हो रही है, लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो हमारी प्राचीन धरोहर है वो सुरक्षित है, उसे भी हमें संभालना है।

साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम युवा विकास, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे स्वर्गीय श्री स्वतंत्र कुमार ओझा, और इसका शीर्षक था पांडुलिपियों का इतिहास, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए साथियों, सुनते हैं भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वाज मुंबई की।

0: साथियों, अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वाज मुंबई की। दोस्तों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एंड्रॉयड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्य स्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्य स्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत्य प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, बावरकुआं पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। और हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम युग संचार, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं अंतरा करवड़े और आस्था उपमन्यु, और इसका शीर्षक है जीवन का रियलिटी शो, और यह प्रस्तुति है सत्य प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।
1: नमस्कार युवा साथियों, आज के युवा और विकास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अंतरा करवड़े।
2: और मैं हूं आस्था उपमन्यु।
1: साथियों, आज हम जिस विषय पर बातचीत करने वाले हैं वो थोड़ा सा अजीब है। उसका शीर्षक है जीवन का रियलिटी शो। जी हां साथियों, जीवन और रियलिटी शो जो कि आजकल विभिन्न टीवी चैनलों पर दिखाई देते हैं, इनमें बहुत सारी समानताएं हैं। आस्था, यदि हम हमारे युवा साथियों की बात करें तो इन दिनों ये देखने में आता है कि वे रातों रात अमीर बनना चाहते हैं या फिर प्रसिद्धि की चाह रखना चाहते हैं, तो इस विषय में आप क्या कहेंगी?
2: बिल्कुल अंतरा जी, यहां मैं ये जोड़ना चाहूंगी कि एक तरह से युवाओं का स्वप्न बन गया है रातों रात प्रसिद्धि पाना। और बिल्कुल जैसा कि आपने कहा, आज के समय में युवा मेहनत पे विश्वास, यूं कहा जाए कि शायद उठता जा रहा है युवाओं का मेहनत से विश्वास।
1: बिल्कुल, मेहनत पर से और संघर्ष पर से भी। यदि हम देखें हमारे आसपास, तो जो रियलिटी चैनल्स में दिखाया जाता है कि कोई भी व्यक्ति बड़ा रातों रात एक सितारा बन जाता है, उसे प्रसिद्धि भी मिल जाती है, उसे बहुत सारा पैसा भी मिल जाता है। और पहले के जमाने में ये हुआ करता था आस्था कि हमारे जो युवा थे उनके सामने जीवंत आदर्श थे, कुछ ऐसे आदर्श थे जो अपनी मेहनत के बल पर, अपने संघर्ष के बल पर और अपने नवीन विचारों के बल पर एक बहुत अच्छे आदर्श साबित हुए, जिन्हें देखकर हम युवा साथी आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा पाते थे, ऊर्जा पाते थे।
2: बिल्कुल, यहां पर एक चीज मैं ये कहना चाहूंगी अंतरा जी कि पहले के समय में जो युवा थे वो, उनके लिए अगर कोई प्रेरणा स्रोत होता था तो वो उसको उसका अनुसरण करते थे
1: जी।
2: लेकिन आज के समय में ऐसे प्रेरणा स्रोत, ऐसा नहीं है कि मौजूद नहीं है, मौजूद आज भी है, लेकिन युवा जो है वो शायद उस तरफ इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या वो उस चीज को अपनी प्रेरणा के रूप में अपना नहीं पा रहे हैं। आपको क्या लगता है?
1: जी बिल्कुल, कहा जाता है ना कि शॉर्टकट सभी को लुभाता है।
2: बिल्कुल,
1: तो जो शॉर्टकट इन दिनों सफलता का, साथियों, हम सभी को देखने को मिलता है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी खुद की पहले से न कोई पहचान थी, न किसी प्रकार की नींव थी, न किसी प्रकार की तैयारी थी, रातों रात अचानक उठता है, किसी टीवी चैनल का एक सितारा बन जाता है, उसे करोड़ों रुपए के इनाम उस पर न्यौछावर कर दिए जाते हैं और एक तरीके से उसका भविष्य बन जाता है। किसी भी क्षेत्र में, चाहे गायन का हो, चाहे नृत्य का हो, चाहे फिल्म का हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, आप किसी भी बड़े इनाम को जीतकर अचानक करोड़पति बन जाते हैं। और ऐसे में अवसाद आना स्वाभाविक है उन युवाओं के मन में जो एक एक कक्षा कर आगे बढ़े हैं, एक एक दिन नौकरी करके मेहनत कर रहे हैं और बचत करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
2: वो बात बिल्कुल सही है। और एक चीज ये भी है अंतरा जी कि किसी एक का आगे बढ़ जाना, उसके साथ उस वक्त जो लोग प्रतियोगिता में शामिल होते हैं उन लोगों को भी अवसाद में डाल देता है।
1: बिल्कुल, आता पहले ये हुआ करता था। दरअसल मैं ये बार बार पहले और बाद में की बातें कह करके अपने आप को गुजरे जमाने का और युवा पीढ़ी को आने वाले जमाने का नहीं कहना चाहती, लेकिन एक बहुत बारीक फर्क हो गया है इन दिनों। यदि हम पीढ़ियों की भी बात करें तो हर पीढ़ी 3-4 साल में बदल जाती है।
2: बिल्कुल,
1: तो पीढ़ियों का अंतर भी बहुत कम हो गया है। और जो बात मैं कहना चाह रही थी वो कुछ इस तरीके की थी कि पहले के जमाने में भी इस तरीके की तुलनाएं होती थी। यदि व्यावसायिक पाठ्यक्रम MBA करने वाले कुछ समूह के लोग हैं तो उनमें से कुछ समूह के लोग ऐसे हुआ करते थे जिनका खुद का बिजनेस एम्पायर होता था। उन्हें ये चिंता कभी नहीं सताती थी कि उन्हें अपना कोर्स पूरा करने के बाद प्लेसमेंट में किस तरीके की नौकरी मिलेगी, वे साक्षात्कार में सफल होंगे या नहीं, उन्हें सबसे पहला सैलरी क्या मिलेगा क्या नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें सिर्फ MBA की डिग्री करनी है, उसके बाद में उनके पिताजी की या फिर उनकी खानदानी कंपनी में उनके लिए एक बहुत अच्छा ऊंचा और बहुत अच्छा पद रहता था। तो ये अवसर तो पहले के युवाओं में भी आया कि उनके कुछ साथी बहुत ऊंचे आ जाएंगे।
2: ये बात आपने बिल्कुल सही की, लेकिन ये भी था कि पहले के समय में शायद युवा उस चीज से बहुत जल्दी उभर जाते थे, अवसर आता था। लेकिन आज के समय में वो चीज जो प्रतियोगिता आज के समय में हम कहते हैं कि बढ़ गई है, तो उसने इस अवसर को इतना गहरा रूप दे दिया है अंदाजी की MBA के बाद प्लेसमेंट, मतलब एक तरह से युवा MBA करते ही इसलिए है कि बस फटाफट उनका प्लेसमेंट हो जाए।
1: जी बिल्कुल, और इसमें एक चीज मुझे जो लगती है कि यदि हम किसी बात की जड़ में जाएं तो कुछ एक नवीन विचार हमें जरूर मिलता है। तो यदि हम हमारे माता पिता की जो पीढ़ी है उनको देखें तो वो अक्सर 3-4-5 भाई बहन हुआ किए, लेकिन इस समय जो युवा पीढ़ी है वो 1 या 2, ज्यादा से ज्यादा 3 भाई बहन है। और ऐसे में होता यह है कि 4 या 5 भाई बहनों के बीच

0: पहले ये था कि लोग काफी मतलब दूर तक का सोच के और फिर किसी चीज को आगे बढ़ाते थे या उसमें लग जाते थे, लेकिन आज के समय में सिर्फ अपना सोचा और फिर अपने भविष्य का सोचा और बस फटाफट कुछ न कुछ चाहिए हाथ में।
1: बिल्कुल सही कहा आस्था आपने। और जो सोच का अंतर आपने कहा है उसमें एक उदाहरण मुझे भी समझ में आता है, वो ये है कि पहले ये कहा जाता था कि फला व्यक्ति खाक से पलक तक पहुंचा है, उसने स्वयं पहले ये कहा जाता था, बहुत कम से पैसों में शुरुआत की है, या फिर वो पहले साइकिल पर था, आज वो देखिए चमचमाती गाड़ियों में है, यानी उसने कितना संघर्ष किया है, ये चीज एक सकारात्मक तरीके से ली जाती थी।
0: लेकिन आजकल पल उसने सीढ़ियां चढ़ी और फिर
1: आज वो शिखर तक पहुंच गया। लेकिन आजकल बिल्कुल उल्टा है, किस व्यक्ति ने किसे कितनी ज्यादा टोपियां पहनाई, कौन व्यक्ति कितना जल्दी कितने तरीके से, और गलत काम हो चाहे सही काम हो, उसने कितना जल्दी पैसा बना लिया, वो कितना जल्दी सफल हो गया, फिर उसके तरीके बेमानी हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति को स्मार्ट कहा जाता है। तो ये जो परिभाषाएं बदल रही हैं, हमारे पैमाने बदल रहे हैं, ये भी कई बार हमें चिंता देते हैं।
0: बिल्कुल, और आज के समय में जो सोच बदली है वो बिल्कुल तुरंत फुरंत वाली सोच हो गई है, जिसे हम इंस्टेंट सोच कह सकते हैं। आप युवाओं को ही देख लीजिए, बिल्कुल जल्दी से डिग्री चाहिए और डिग्री मिलते ही जॉब, बस जॉब चाहिए अभी।
1: बिल्कुल, और जॉब के बाद में उनके सपने बिल्कुल वही हो जाते हैं। मुझे तो ये कहना पसंद है हमारे युवा साथियों, क्योंकि युवा जो आपकी ओर जब हम देखते हैं साथियों, तो अब हमें ये आशा होती है कि हम नए सपनों की ओर देख रहे हैं, हम नई ऊर्जा की ओर देख रहे हैं, हम नई सोच की ओर देख रहे हैं। लेकिन जब हम आपको भी वही सब कुछ करते देखते हैं जो बाकी सब कर रहे हैं या आपसे पहले की पीढ़ी ने किया, तो ये मन में आता है कि इनके मन में नए सपने क्यों नहीं है, इनके मन में नई उड़ाने क्यों नहीं है। क्या आप जब आप छठी या सातवीं कक्षा में होते हैं तभी से व्यक्ति का जीवन को जीने का पैमाना तय हो जाता है, वो अपने आप को सांचे में ढाल लेता है कि ये मेरा जीवन है, मुझे डिग्री लेनी है, मुझे नौकरी करनी है, मुझे हर महीना इतना कमाना है, इस उम्र तक जाने तक मुझे कार ले लेनी है, उस उम्र तक जाने तक घर बना लेना है, उस उम्र तक जाने तक इतना इन्वेस्टमेंट कर लेना है कि आने वाला इस जिंदगी में यदि मेरे पास नौकरी ना भी रहे तो पैसे की कमी ना रहे, कि यहां पर उसे मोक्ष मिल जाता है।
0: यहां पर यह भी कहना चाहूंगी अंतरा जी, हमारे श्रोता साथियों से, सभी युवा साथियों से खासकर, कि पुरानी जो पीढ़ियां हैं उनकी सोच को आप एक बार अपने आप में आत्मसात कर रहे हो वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन आज के समय के हिसाब से खुद को बदलना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज के समय के हिसाब से युवाओं का खुद का बढ़ना और आगे चलना ज्यादा महत्वपूर्ण है मुझे लगता है। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे नौकरी लगने के बाद जो होता है युवाओं के साथ, खासकर कि जिस तरह उन्होंने अभी तक डिग्री और प्लेसमेंट के लिए बिल्कुल हड़बड़ी की है, उसी तरह उनका अब धीरे धीरे जॉब में वही चीज दिखाई देने लग जाती है धीरे, आज के समय में खास हम बात करें तो। इसके आगे खास जो है, हम शायद ये कह सकते हैं क्या हमारे युवा साथियों के लिए कि उनमें धैर्य की कमी है, आपको क्या लगता है?
1: बिल्कुल, धैर्य की कमी है ये मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, परिस्थितियों का आकलन करने की क्षमता जरूर प्रभावित हुई है कि किस परिस्थिति में उन्हें रुकना है और किस परिस्थिति में बहुत जल्दी अपनी प्रतिक्रिया देनी है। और मुझे एक बहुत अच्छा उदाहरण याद आ रहा है आस्था की, जो एक सोच बन गई है हमारे युवा साथियों की कि पैसा ही सब कुछ है, हम पैसे के लिए जीते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और ये कहा जाता है कि पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन जब उनसे कहा जाता है पैसों से रिश्ते नहीं खरीदे जा सकते, पैसों से संबंध नहीं खरीदे जा सकते, तो अक्सर युवा साथी ये कहते हैं कि ये तो बड़े पुराने रटे रटाए से डायलॉग हैं। तो साथियों, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हुआ किए, उनके पिताजी सेना में लद्दाख में पदस्थ रहे और उनके पास काम ये हुआ करता था कि सेना का पूरा खजाना उनके पास होता था। उस व्यक्ति की आप भी थी ये थी साथियों कि पूरी तरीके से पहाड़ियों पर जो बर्फ जमी हुई होती है, शून्य से कई डिग्री नीचे के तापमान में वो व्यक्ति अपने हाथ में ढेर सारा पैसा लेकर बर्फ के बीच बैठा रहता था। उसे समझ में नहीं आता था कि इस पैसे से मैं क्या करूं। उस समय उस व्यक्ति को पैसों की नहीं, उस समय यदि उसके पास में एक कोई व्यक्ति प्रेम से आकर बैठकर उससे दो मिनट भी बातें कर लेता तो उसके ऊपर वो सारा पैसा न्योछावर करने को तैयार था। अब आप बताइए, ऐसे समय में, ऐसी विकट परिस्थिति में उन पैसों की क्या कीमत हुई? कीमत तो उसी चीज की हुई जो किसी व्यक्ति के साथ संबंध बनाकर रखने से होती है।
0: बहुत ही खूब बात कही आपने अंतरा जी, और यहां हमारे युवा साथियों को भी ये समझना चाहिए, क्योंकि आज के समय में उनकी सोच बिल्कुल बदल चुकी है। आज के समय में वो ये मानते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, जैसा आपने कहा कि रिश्ते खरीदे नहीं जा सकते पैसे से, लेकिन फिर भी वो आज के समय में पैसे को अपनी पहली कहना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण वो पैसे को ही मानते हैं, सबसे पहले नंबर पर उनके लिए पैसा आता है,
1: प्राथमिकता पैसे को ही।
0: बिल्कुल, प्राथमिकता वाली जो बात आ जाती है आज के समय में, शायद

0: युवा पीढ़ी में ये फर्क आ गया है सोच में कि उनकी प्राथमिकताएं बदल गई है।
1: जी प्राथमिकताएं बदल गई। और कुछ कहना चाहेंगे?
0: बिल्कुल, मैं आगे बस इतना आपसे पूछना चाहूंगी, मैं यहां कुछ कहना तो नहीं चाहूंगी, सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जो पीढ़ियों का अंतर आ गया है
1: जी
0: हर 3-4 साल में, या जो मार्केट में जो कुछ भी बदलाव आया है, क्या आपको लगता है इसने युवाओं की सोच को या उनके लक्ष्य को प्रभावित किया है?
1: देखिए, मुझे लगता है कि परिस्थितियां चाहे जो भी कुछ हो, व्यक्ति में अपनी सोच हमेशा से एक सही तरीके से विकसित करने की क्षमता उसे अपने आप में मिली होती है। हम देखते हैं चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, एक उदाहरण हम एक बहुत प्रसिद्ध किताब में पढ़ते हैं, एक शराबी पिता की 2 संतानें थी, उसमें से एक शराबी निकली और एक ने कभी शराब को छुआ नहीं। जिसने बहुत शराब पी उसका कहने का उसके पास कारण देने के लिए ये था कि मेरे पिता को मैंने जिंदगी भर शराब पीते हुए ही देखा, तो मैं शराब क्यों ना पीऊं। जबकि दूसरा व्यक्ति जो बहुत सफल बना, उसने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, उसका उत्तर देने का ये तरीका था कि मैंने अपने पिता को देखा है कि किस तरीके से शराब पीकर उन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, तो ऐसे में मैंने ये सीखा कि मैं शराब को कभी हाथ न लगाऊं।
0: इसी तरह जो युवाओं की सोच सकारात्मक, उसे जो भी आप सामने देख रहे हो, जो उदाहरण आप देख रहे हो, उसको युवा सकारात्मक लेते हैं या नकारात्मक लेते हैं, ये उनकी अपनी सोच पर निर्भर करता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि जिंदगी आप अपने तरीके से बनाते हैं। जिंदगी को बनाने के लिए प्रत्येक के लिए कोई सांचा तय नहीं है। यदि 10 व्यक्ति भी MBA करके निकले हैं तो प्रत्येक की क्षमता अलग रखेंगी।
0: बिल्कुल,
1: प्रत्येक व्यक्ति को आप प्रत्येक स्थान पर फिट नहीं कर सकते, और इस चीज को हमें सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में यदि क्षमता अलग है तो उस केवल अलग क्षमता को ही हम क्यों न देखें। हम ये क्यों देखें कि इसमें बाकी क्षमताएं नहीं है? नहीं, इसमें एक क्षमता बाकी क्षमताओं से अधिक है, तो हम उसे संवारें।
0: वो यहां पर मैं वही बात दोहराना चाहूंगी अंतरा जी, कि वो जो प्रतियोगिता के दौर वाली बात हमने करी थी हमारे युवा साथियों से, बस हम ये कह सकते हैं कि इसकी जड़ में वही कारण है, जो प्रतियोगिता आ गई है उसमें युवा, आज के युवा अपनी क्षमताओं को भूलकर बस होड़ में लग गए हैं, जो भेड़ चाल कहते हैं हम, भेड़ चाल में लगे हुए हैं और बस एक होड़ सी हो गई है उनमें कि नहीं, उसमें है, वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। भले ही उनकी फिर वहां पर परिस्थितियां, चाहे आर्थिक परिस्थितियां अनुकूल हों या नहीं हो, पारिवारिक परिस्थितियां कैसी हैं, ये सारी चीजों का जो फर्क होता है वो बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है।
1: बिल्कुल, और आस्था, मैंने 2-3 उदाहरणों में ये भी देखा जो कि मैं अपने युवा साथियों के साथ यहां पर बांटना चाहूंगी, कि कई बार ये होता है कि जो माता पिता अपने बच्चों को बड़ा करते समय जब उन्हें बहुत सारी सुविधाएं देते हैं, कुछ ऐसी सुविधाएं जो शायद माता पिता ने भी कभी ना देखी हो, उस समय उन्हें बच्चों को अपने द्वारा भोगे गए अभावों को इतना अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से बताया जाता है कि बच्चों के मन में गरीबी, अभाव और संघर्ष ये एक प्रकार से खलनायक बन जाते हैं। वे गरीबी से भागना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि धनवान होना सुखद है, धनवान होना सुलभ है। वे गरीबी से या अभावों से इसलिए भागना चाहते क्योंकि गरीबी या अभाव से उन्हें नफरत है।
0: बिल्कुल, वो उन्हें अभिशाप की तरह लगने लगता है।
1: तो ये जो सोच होती है ये इस कारण आती है क्योंकि माता पिता द्वारा बार बार बच्चों को बताया जाता है कि हमने तो इतने अभावों में जिंदगी गुजारी है, वो अभाव हम आपके लिए नहीं देना चाहते, इसलिए हम इतनी मेहनत करते हैं।
0: बिल्कुल, और क्या आपको लगता है कि जैसा कि हमने शुरू में बात की थी हमारे युवा साथियों से रियलिटी शो को लेकर,
1: जी,
0: आपको लगता है कि ये जो रियलिटी शो आज के समय में बताए जा रहे हैं कि बस साम दाम दंड भेद सब लगा के बस जीतना है और बढ़ना है,
1: जी,
0: आपको लगता है कि युवाओं के हिसाब से बिल्कुल सटीक बैठते हैं?
1: युवा, आज के जो हमारे कार्यक्रम का विषय हमने रखा है आस्था, जीवन का रियलिटी शो, इसी चीज से हमने प्रेरित होकर रखा है कि जिस प्रकार से रियलिटी शो में चीजें दिखाई जाती हैं, उस प्रकार से यदि कोई करे तो उसे 4 दिन की चांदनी जरूर मिलेगी, लेकिन आगे अंधेरी रात ही मिलेगी। क्योंकि यदि हम ये देखें कि रियलिटी शो के जितने भी हीरोज हुए, जितने भी हीरोइंस हुए, उनको आप कितने दिन तक याद रख पाए?
0: वो बात बिल्कुल सही है आपकी। और एक बात यहां मैं युवाओं से ये भी कहना चाहूंगी कि इन रियलिटी शोज को देखकर हमारे युवा ये तो मान के बैठ जाते हैं कि किसी भी रास्ते को अपनाकर हमें सफलता पानी ही है, लेकिन उसके बाद में उन्हें वो सीख नसीब नहीं हो पाती एक
1: तरह। तो ऐसा कार्यक्रम के अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी हमारे युवा साथियों से कि सफलता को पाना जितना मुश्किल है, उससे ज्यादा मुश्किल है सफलता को बनाकर रखना।
2: दोस्तों, अभी आपने सुना कार्यक्रम युग संचार, जिसे प्रस्तुत कर रही थी अंतरा करवड़े और आस्था उपमन्यु, और इसका शीर्षक था जीवन का रियलिटी शो, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों आइए सुनते हैं भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वाज मुंबई की।

दोस्तों अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वाज मुंबई की। साथियों इसी के साथ साथ आज्ञा दीजिए ग्लोरिया गांगले को, अगली मुलाकात में आपसे बात करेंगे विवेक पीटर रॉबर्ट। धन्यवाद।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोता मित्रों को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अभी की समय सारिणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार, नारी सशक्तिकरण, मन दर्पण और अंत में पर्यावरण। तो आइए साथियों, समय का सदुपयोग करते हुए हम अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम सर्वधर्म विचार से। तो आइए मित्रों, सुनते हैं कार्यक्रम सर्वधर्म विचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है देश का धर्म निरपेक्ष चरित्र। इस वार्ता के प्रस्तुतकर्ता हैं फादर हरमन मंडोल SVD।

सर्वधर्म विचार के तहत लीजिए सुनते हैं वार्ता जिसका शीर्षक है देश का धर्मनिरपेक्ष चरित्र। प्रिय श्रोता मित्रों नमस्कार, हिमकर श्याम अपने लेख कहां गया देश का धर्मनिरपेक्ष चरित्र में लिखते हैं, देश की एकता और अखंडता के सामने आज जितनी बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई है उतनी इससे पहले कभी नहीं थी। सत्ता की राजनीति ने एकता के सूत्रों को न सिर्फ कमजोर किया है बल्कि उसे अपने फायदे के लिए तहस नहस भी किया है। सहिष्णुता का झीना आवरण उतारता और धर्मनिरपेक्ष भारत का सपना बिखरता दिखाई दे रहा है। देश में अलगाववाद का नया दौर शुरू हो गया है और भविष्य में इसके और तीव्र होने की आशंका है। राष्ट्रीयता का मसला इतना महत्वपूर्ण है कि उसे नकारा नहीं जा सकता। विघटनकारी शक्तियों से हमारे देश की सुरक्षा और स्थिरता दोनों को खतरा है। ऐसी ताकतों को नियंत्रित रख पाने में हमारा तंत्र पूरी तरह से विफल रहा है। असम और म्यांमार में हिंसा की प्रतिक्रिया स्वरूप जो कुछ हुआ, जिस तरह से देश के विभिन्न हिस्सों में उग्र प्रदर्शन किए गए, वह राष्ट्रीय एकता और देश के सांप्रदायिक चरित्र पर सवालिया निशान लगाते हैं। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति इत्यादि के आधार पर बनी अस्मिताओं से हमारा अस्तित्व बनता है। इन अस्मिताओं ने हमेशा ही शांतिपूर्ण सह अस्तित्व नहीं रहता और विभिन्न समूहों के हित परस्पर विरोधी भी हो जाते हैं। कभी धर्म, कभी क्षेत्र, कभी भाषा और कभी संस्कृति के नाम पर अलगाववादी शक्तियां सर उठाती रही हैं। सरकार की नीति हमेशा से इन तत्वों को पुचकारने की रही है। मित्रों, सरकार को अपने वोट बैंक की अधिक चिंता है और अन्य राजनीतिक पार्टियां अल्पकालिक फायदों पर ज्यादा नजर रखती हैं। प्रायः हर राजनीतिक दल अपने वोट के नजरिए से चीजों को तोलता और देखता है। धार्मिक संवेदनाओं का खुले इस्तेमाल अपना वोट बैंक बचाने और बनाने के लिए किया जाता रहा है। वह चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या अयोध्या का, गुजरात के दंगे का हो या असम की ताजा तरीन घटना, सब राजनीति के इसी सोच के प्रतिफल हैं। असम में वोटों के खातिर सरकार ने लाखों घुसपैठियों को न सिर्फ रहने की जगह दी, उन्हें भारत का नागरिक होने का हक भी प्रदान किया। इसका परिणाम यह हुआ कि असम सांप्रदायिक हिंसा की भेंट चढ़ा, जिसमें लाखों लोग बेघर हो गए और न जाने कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। असम की आग देखते देखते पूरे देश में फैल गई। पूर्वोत्तर के लोगों को जिस तरह उत्तर और दक्षिण भारत के शहरों से भागना पड़ा है और उसमें देश के सांप्रदायिक तत्वों और पाकिस्तान में बैठे कट्टरपंथियों द्वारा संचालित वेबसाइटों, फेसबुक और ट्विटर ने जैसी भूमिका निभाई है, वह चिंता का विषय है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर देश में पाकिस्तानी झंडे लहराने और शहीद स्मारक को तोड़ने वाले लोगों को मनमानी छूट नहीं मिलनी चाहिए। सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय पाना और जीवन को दोबारा पटरी पर लाना बेहद कठिन होता है। सांप्रदायिक हिंसा से समाज पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है, जिससे समाज में वैमनस्यता जन्म लेती है। राजनीति के अलावा अलग अलग गुटों का छद्म स्वार्थ भी हिंसा की जमीन तैयार करता है। धार्मिक और क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काने और उनसे सहानुभूति रखने वालों के अपने अपने हित और औचित्य होते हैं। सांप्रदायिकता को वैधता प्रदान करने के लिए हर समुदाय अपने तर्क गढ़ता है। अपने को सहिष्णु और उदार मानना और दूसरे को कट्टर और शंका की दृष्टि से देखना ठीक नहीं है। हिंदू और मुसलमान ये दो ऐसे समुदाय हैं जिसने ये हमेशा ही संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया है। इनके बीच वैमनस्य की ऐसी आग है जो बुझती नहीं है, कुछ समय के लिए ठंडी होती है और जरा सी हवा मिलने पर फिर भड़क उठती है। देश के अल्पसंख्यकों में सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन भी आते हैं, लेकिन उनके प्रति शक और संघर्ष की वह भावना नहीं दिखती है जो दोनों समुदायों का आपस में है। मुट्ठी भर लोग धार्मिक जुनून भड़काकर लोगों के दिमाग में हमेशा ही जहर भरते रहते हैं। इन्हें जब भी मौका मिलता है विष व मन से नहीं चुकते, वह हमारे आपसी पूर्वाग्रहों और अविश्वासों का फायदा उठाते रहे हैं। इन पूर्वाग्रहों और अविश्वासों के कारण ही
अमन चैन का माहौल कभी कायम नहीं हो पाया। अंग्रेजों ने इस आपसी फूट का खूब फायदा उठाया। स्वतंत्रता के बाद देश ने एक धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक व्यवस्था बनाने का सपना देखा था, हालांकि धर्मनिरपेक्षता को कहीं अक्षरशः परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन आमतौर पर उसके मायने यह होते हैं कि सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव होगा और सभी नागरिकों को, फिर उनकी धार्मिक आस्था जो भी हो, समान अवसर और व्यवहार प्राप्त होंगे। विडम्बना यह है कि धर्मनिरपेक्षता को कभी ईमानदारी से लागू नहीं किया गया और देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर निरंतर खतरे के बादल मंडराते रहे। इस शब्द को लेकर हमेशा ही राजनीति होती रही है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हो रहे तुष्टिकरण के कारण समुदायों के बीच अंतर उभर कर सामने आ गए। इससे सांप्रदायिक भेदभाव गहरे हुए और गंगा जमुनी संस्कृति की जड़ें हिल गई। समुदाय विशेष के प्रति हद से ज्यादा उदारता धर्मनिरपेक्षता के हित में नहीं है। अल्पसंख्यक के नाम कोई समुदाय इतनी अधिक विशेषाधिकार पाता है कि बहुसंख्यक समुदाय को इससे खतरा महसूस होने लगता है। तुष्टिकरण की नीति के कारण बहुसंख्यक समाज में अक्सर यह संदेश जाता है कि अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए उनके हितों की तिलांजलि दी जा रही है। अल्पसंख्यक समुदाय की अवहेलना न्यायिक और मानवीय संदेश देने वाला निर्णय नहीं कहा जा सकता है। मित्रों, धर्म और क्षेत्र के नाम पर मुखर होने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे क्षेत्रों व समुदायों के बीच शांति स्थापित करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। सबको यह समझना चाहिए कि देश में रहने वाले सर्वप्रथम भारतीय हैं, उसके बाद ही कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई है। आम धारणा है कि मुसलमान सिर्फ अपने धर्म की परवाह करते हैं और अपने देश की नहीं। एक साजिश के तहत मुस्लिम समाज को कट्टरपन, दकिया नुसीपन और पृथकतावादी मानसिकता के रास्ते पर धकेला जा रहा है। वह भ्रष्टाचार, आर्थिक विकास, राष्ट्रीय एकता, समाज सुधार आदि सब प्रश्नों से मुंह मोड़ कर केवल मुसलमान होने के नाते सोचता और निर्णय लेता है। इस संकुचित और पृथकतावादी मानसिकता के कारण कई तरह की शंकाएं पैदा होती हैं। आखिर क्या वजह है कि जमियाते उलेमा हिंद तथा दारुल उलूम देवबंद जैसी संस्थाओं द्वारा वंदे मातरम के खिलाफ फतवा जारी करना पड़ता है? जहां कोई अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक समुदाय के साथ एकाकार होने से इनकार करता है, वहां स्थानीय सांप्रदायिक संघर्ष उठ खड़े होते हैं। मुसलमानों की तीव्र अति संवेदनशीलता, छोटे बड़े मसलों पर उनका आक्रामक और उग्र रवैया उन्हें दूसरों से अलग थलग करता है। अल्पसंख्यक समुदाय को असुरक्षा का भाव एक दूसरे के नजदीक लाता है और एकजुट समुदाय की तरह चलने के लिए प्रेरित करता है। हाल के वर्षों में भारत कट्टरपंथी हमलों का सबसे आसान निशाना बनकर उभरा है। इस्लामी कट्टरपंथी अपने मनसूबों को पूरा करने के लिए समुदाय के गुमराह युवकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे युवकों को भी इस्लामी कट्टरता में अपना भविष्य नजर आ रहा है। मुसलमान अपनी पहचान बनाए रखने के लिए जितना मुखर होते हैं, हिंदुओं में उसकी प्रतिक्रिया उतनी ही उग्र होती है। हिंदुत्व के उमड़ते ज्वार में बहते जा रहे हैं और वे अब मुसलमानों से कोई तालमेल बिठाना नहीं चाहते। हिंदुओं में भारतीय और हिंदू को एक दूसरे को पर्याय मानने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अधिकांश हिंदू मानस अपने को भारतीय मानता है। उन्हें भी यह समझना होगा कि देश सिर्फ हिंदुओं का नहीं, हिंदुओं के अलावा यह देश मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध सबका है। वहीं अल्पसंख्यक समुदायों को भी बेमानी बातों में उलझने के बजाय अपने व्यवहार से यह बताने की कोशिश करनी चाहिए कि अपने देश के प्रति उनका प्रेम उतना ही गहन है जितना अपने धर्म के प्रति। खुद को अलग रखने की प्रवृत्ति उनकी पीड़ा का सबसे बड़ा कारण बन गया है। बहुसंख्यक मुस्लिम तबका अपनी बिरादरी के उन कट्टरपंथियों की विध्वंसक कार्रवाइयों पर उतना ही चिंतित है जितना समाज का दूसरा समुदाय। एक खास वर्ग के कारण पूरा समुदाय बदनाम हो रहा है। हर मुसलमान को यह एहसास कराना कि वह राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है गलत है। समुदाय के कुछ लोगों की हरकतों के कारण सभी मुसलमानों को एक चश्मे से देखना उचित नहीं है। अब हमें संघर्ष का रास्ता छोड़कर समन्वय का रास्ता अपनाना चाहिए। हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे की संवेदनाओं और भावनाओं का सम्मान करना होगा। ऐसे व्यवहारिक उपाय ढूंढने होंगे जिससे पूर्वाग्रह छूट सके, गलतफहमियां दूर हो सके और दोनों समुदाय
एक दूसरे के करीब आए। मित्रों, हमारी राष्ट्रीय चेतना उत्तरोत्तर शिथिल हो रही है और जाति, क्षेत्र, भाषा व संप्रदाय की संकीर्ण चेतनाएं प्रबल हो रही है। क्षेत्रीयता और सांप्रदायिकता के उभार के कारण लोग अपने ही देश में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अलगाववादी और कट्टरवादी शक्तियों को शक्ति से नहीं कुचला गया तो वह आधारशिला ही ढह जाएगी, जिस पर एक उदार, धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील समाज बनाने का सपना देखा गया था। कट्टरवाद किसी भी सूरत में ठीक नहीं है, चाहे वह धार्मिक हो या सामाजिक। कट्टरवाद से केवल नुकसान ही होता है। कट्टरवादी मानसिकता के कारण इंसान ऐसा रास्ता चुन लेता है जिसकी इजाजत न तो मानवता देती है, न ही विश्व का कोई धर्म देता है। कट्टरपंथ वही संभव होता है जहां लोकतंत्र नहीं होता। किसी भी लोकतांत्रिक देश के विकास के लिए परस्पर सौहार्द का होना नितांत आवश्यक है। पूरे देश और सभी क्षेत्रों का समान आर्थिक विकास, भाषा और धर्म के मामले में सत्य अर्थों में सहिष्णुता तथा जातिवाद को समाप्त करने की सुदृढ़ चेष्टा यदि रही तो भारत सशक्त और संगठित देश के रूप में फिर से उठ खड़ा होगा। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था देश का धर्म निरपेक्ष चरित्र, और इस वार्ता के प्रस्तुतकर्ता थे फादर हरमन बंडोड SVD। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत्य प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत। आइए दोस्तों, अब हम सुनते हैं सभी नारियों के लिए विशेष कार्यक्रम। दोस्तों, आप सभी सही समझ रहे हैं कि मैं कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के बारे में ही कह रहा हूँ। तो आइए सहेलियों, प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है संपर्क का दायरा बढ़ाइए, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत प्रस्तुत है वार्ता संपर्क का दायरा बढ़ाइए। पहले आज के जमाने में किसी भी व्यक्तित्व के विषय में बार बार ये कहा जाता है कि उसका पीआर बड़ा स्ट्रांग है, उससे संपर्क बनाए रखना चाहिए। अब यहाँ पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग अनायास ही प्रसिद्ध हो जाते हैं और उनका साथ हमें अच्छा लगने लगता है। कई बार ऐसा भी लगता है कि यदि हम उनके साथ रहेंगे तो हमारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, लेकिन जरा गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि वास्तव में ये सिर्फ इन व्यक्तियों के व्यक्तित्व का ही कमाल नहीं होता, कमाल होता है तो इनके संपर्कों में। जी हाँ, आपकी समस्या को चुटकियों में हल कर देने वाली आपकी सहेली घर बैठे ही बिजली का बिल भरवाती है, बिगड़ा हुआ टेलीफोन सुधरवाती है और गर्मी के दिनों में टैंकर भी उसे बड़ी आसानी से मिल जाता है, है ना? ऐसे में काम आता है उसका वो संपर्कों का जाल जो उसने अपने काम और मृदु संभाषण से बुना है। बहनों, हम में से कई बहनें ऐसी होती हैं जो अपनी कुछ एक सहेलियों के बीच ही अच्छा महसूस करती हैं। उन्हें नई सहेलियां बनाना या फिर नए लोगों के बीच घुलना मिलना बिल्कुल नहीं सुहाता। ऐसे में उनका जीवन एक लीक पर चलने लगता है। किसी से कोई काम करवाना हो या फिर किसी परेशानी का हल चाहिए होता है, तब या तो वे अपने पति पर निर्भर होती हैं या फिर अपने मायके पर। क्या कहा कि आपके साथ भी ऐसा ही है? तो बहनों, ये आज का कार्यक्रम तो आप ही के लिए खास बना हुआ है, ये समझ लीजिए। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि संपर्क अच्छे होने वाला व्यक्ति सभी को अच्छा लगता है, तो आप भी ऐसे व्यक्तियों को ढूंढकर उनसे दोस्ती कीजिए जिनके संपर्कों का दायरा काफी फैला हुआ हो। तब ये देखें कि ऐसे व्यक्ति आपके आसपास कौन से हैं, उनकी पहचान आप किस तरीके से करेंगे। बहनों, सबसे पहले तो ये देखें कि जब भी आपको कोई परेशानी आती है तब उसे सुलझाने के लिए सबसे पहला नाम परिवारजनों के अलावा किसका आता है। वो व्यक्ति कौन होता है जो आपको सारी परेशानियों से उबारने के लिए तैयार बैठा रहता है और आपका भी उसके ऊपर विश्वास होता है। अब तक आपको किसके साथ अपने रहने से बहुत आश्वस्त प्रकार का विचार मन में आता है? यदि आप ये सोचते हैं कि यदि ये फला व्यक्ति हमारे साथ हो तो फिर किसी भी प्रकार की परेशानी क्यों ना आ जाए, हम उसे पार जरूर पा लेंगे, ऐसा कौन व्यक्ति है? आप अपने बच्चों को किसके जैसा बनने, बोलने और व्यवहार करने के विषय में बताती हैं? मैंने हम सभी के घर में, समाज में, आसपास कहीं न कहीं कोई ऐसे आदर्श व्यक्तित्व जरूर होते हैं जो हमें आदर्श लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि उनके व्यक्तित्व, उनके विचार और उनके व्यवहार करने का तरीका हमारे बच्चों के आगे आने वाले भविष्य में भी झलके। इसलिए हम आते जाते बच्चों को आदतों के विषय में, पढ़ाई के विषय में या भविष्य के बारे में सोचने के विषय में जब भी डांटते हैं या समझाते हैं तब कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के उदाहरण जरूर देते हैं। तो ये गौर करें कि ऐसे विशिष्ट व्यक्ति कौन है। वो कौन होते हैं जिन्हें जब आप कोई खबर देने जाते हैं तब वो उनके पास पहले से मौजूद होते हैं? बहनों, ये तो आपके आसपास की कोई सहेली जरूर होती है जिनके पास आप कोई भी खबर देने जाएं उनके पास वो पहले से मौजूद होती है। मुझे तो ये पता था, ऐसा कहने वाली सहेली कौन है? दूसरा, आपके समूह में या परिचितों में ऐसा कौन है जिसके निर्णय सभी आसानी से मान लेते हैं? ये कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं बहनों जो यदि किसी एक व्यक्तित्व में हो या इनमें से कुछ विशेषताएं भी किसी व्यक्तित्व में हो तो ये मान लीजिए इस व्यक्ति के संपर्क का दायरा बहुत अच्छा है, इस व्यक्ति की संभाषण कला बहुत अच्छी है, किसी भी विकट परिस्थिति में निर्णय लेने की इस व्यक्ति की क्षमता बहुत अच्छी है। और बहुत बेहतर होगा यदि आप ऐसे व्यक्ति के साथ स्वयं भी संपर्क बनाएं और सीखें कि कैसे इन गुणों का विकास किया जाता है। बहनों, ये सभी प्रश्नों के उत्तर में जो एक व्यक्तित्व सामने आता है तब ये समझ लीजिए कि इस व्यक्ति से हमें संपर्क बढ़ाना है। अब ये देखिए कि संपर्क बनाकर अपना काम निकाला जा सके उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। जी नहीं, आपको किसी भी प्रकार का कपट नहीं करना है, लेकिन कई बार ये होता है कि हम कुछ चीजों के विषय में विचार ही नहीं कर पाते लेकिन वे वास्तव में होती हैं। अब आप यदि ये चाहती हैं कि सामने वाले व्यक्ति से आपकी अच्छी दोस्ती हो और वो आपके समय पर काम आ सके तो सबसे पहली बात यह है कि आपको स्वयं को भी उस व्यक्ति के लिए समय पर काम आना होगा। कई बार हम देखते हैं कि बिना किसी स्वार्थ के
अपनी ही जेब से पैसा खर्च करते हुए कोई दोस्त किसी की मदद करता है। हमें अचरज होता है कि ऐसी मदद से क्या हासिल होगा, लेकिन किसी की मृत्यु पर सांत्वना या सफलता पर किसी का खुश होना, बहनों, ये हमारे बनाए हुए रिश्तों पर ही निर्भर होता है। इस प्रकार की बातें कभी पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। इस प्रकार की बातें तभी मिलती हैं जब आप स्वयं अपने प्रयासों से अपने रिश्तों को बनाए रखें। सच्चे संपर्क एक से शुरू होकर अनंत तक जाते हैं, लेकिन इसमें आपको कहां तक जाना है और आप कितना और किसके साथ अपने स्वभाव के अनुरूप निभा कर सकती हैं, ये सीमा आपको स्वयं ही तय करना है। संपर्क सिर्फ दोस्ती में नहीं, आपका व्यापार है तो आपके ग्राहक भी आपके संपर्क हो सकते हैं। कहा जाता है कि संपर्कों में माहिर व्यक्ति को अपने नौकरों की छुट्टियों के क्रियाकलापों की भी जानकारी होती है। इसलिए यदि संपर्क आपको बनाने हैं तो किस प्रकार से बनाने हैं, उनसे क्या लाभ होना है, कई बार बिना लाभ के भी सिर्फ रिश्तों को बनाने के लिए भी आपको संपर्क बनाने चाहिए। और बहनों, सिर्फ एक रास्ता तोड़ने के लिए संपर्क नहीं बनाने हैं, उसके स्थान पर उन्हें अपने जीने का तरीका बनाएं। और जीवन का सबसे बड़ा सत्य जो आपको जीवन की संध्या में समझ में आएगा वो है कि बुढ़ापे में संपर्क जीना आसान बना देते हैं। आप देखेंगे कि इन दिनों किसी के भी पास समय नहीं है, ऐसे में आप अपने मित्रों की संख्या से लगाकर संबंधियों के जाल तक में रुचि लेकर अपने महत्व को एक बार बढ़ाइए। और कुछ बातों को यदि ध्यान में आप रखेंगे ना, तब अपनी बोरियत को भी दूर कर पाएंगे और सारी सुविधाएं आपको भी मिलने लगेंगी। और ऐसा होने पर वो होगा जो आप हमेशा चाहती हैं। जी हाँ, लोग आपसे संपर्क बनाना चाहेंगे और ये होगी आपके व्यक्तित्व की सही जीत। बहनों, बहुत जल्दी अपने आप को बदलिए यदि आप संपर्क बनाने में माहिर नहीं हैं। संपर्क बनाना यानी किसी से काम निकालने के लिए संपर्क बनाना नहीं है। आपको इस दुनिया में इस समय क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ये सोचना है। आपको ये देखना है कि आने वाले समय में आपका भविष्य किस प्रकार का होगा। क्या आप एकाकीपन से जूझ सकती हैं? यदि नहीं तो संपर्क आपको चाहिए। संपर्कों का दायरा स्वार्थवश बढ़ाने के स्थान पर सबसे पहले तो संपर्क क्या होते हैं ये सीखिए। यदि सामने वाले व्यक्ति को आपकी जरूरत है, एक बार उसके काम आकर देखिए, फिर देखिए उसके चेहरे पर जो मैत्रीपूर्ण मुस्कान होगी वो आपका जीना वाकई आसान कर देगी। तो बहनों, संपर्क एक ऐसी संपत्ति है जो संसार में किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति को एक बहुत अच्छा, सही और सफल जीवन दे सकती है। तो आने वाले समय में आपको ये देखना है कि संपर्क आपके जीवन के सूत्र में हो और आपके जीवन के सूत्र एक सफलता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हों।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था संपर्क का दायरा बढ़ाइए, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।